0: देश में कर्फ्यू रहता था।
1: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं, तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
0: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्यौहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
1: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
2: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
3: बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया? तो पहला सवाल तो ये अपने आप में प्री कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि प्रशासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
1: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
4: दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में उतरे और छात्रों की आत्महत्या को लेकर सवाल खड़े किए, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
5: हाथों में संविधान की कॉपी लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके आज सुबह अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने जंतर मंतर का रुख किया।
6: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीपके अमेरिका से सीधे आईजीआई एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, न मंच था, न बैनर था, न कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया भीड़ की संख्या बढ़ती गई, स्टेज भी लगा, मंच भी लगा और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
5: नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। अभिजीत दीपके के साथ सोनम वांगचुक भी मंच पर नजर आए। अभिजीत ने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया।
7: मैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों का सुसाइड करने का वेट करेंगे आप? जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
5: अभिजीत ने अपने इस आंदोलन को सफल बताया तो वहीं साफ किया कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश भर में नजर आने वाला है।
7: 15 दिन पहले जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी।
5: 5 घंटे तक जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी लौट गए, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ना देने पर अगले शनिवार को एक बार फिर जंतर मंतर आने का ऐलान किया है। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
4: दिल्ली के जंतर मंतर में एक और जिनजी की सरकार से नाराजगी दिखाई दी गई, तो दूसरी तरफ दिल्ली के ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरकार के समर्थन में युवाओं को एकजुट किया गया।
5: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 6,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। वहीं मैथिली ठाकुर, फिल्म स्टार विक्रांत मेस्सी, बोट फाउंडर अमन गुप्ता और गुरिंदर वीर सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मंच साझा किया।
8: आज मैं माय भारत यूथ कन्वेंशन में मेरे साथ ही कितने सारे लोग हैं। जोर से बोलो कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की
5: जय। एक और जहां विपक्ष युवाओं की नाराजगी और जेन जी आंदोलन की लगातार बात कर रहा है, तो वहीं सरकार ने मंच से ये संदेश देने की कोशिश की कि देश के युवाओं को सरकार पर पूरा भरोसा है।
9: माय भारत, मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी वॉलंटियर क्षमता, अपना आइडियाज को साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है।
10: देश का युवा जो विजनरी है, जिसमें साहस है, जो क्रिएटिव है, वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे, अपना भविष्य भी निर्माण करे और देश का भी निर्माण करे, उसके लिए आज ये इवेंट था।
5: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए यूथ फॉर विकसित भारत अभियान को सरकार युवाओं के लिए एक बड़ा कदम बता रही है, जिसके जरिए युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
4: अब बात यूपी के देवरिया की, जहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। अब बिजली कटी तो आधी रात को बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी पावर हाउस पहुंच गए और बिजली विभाग के अधिकारियों को हड़काया। विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता अगर बिजली कटौती की वजह से सो नहीं पा रही है तो बिजली अधिकारी को हम चैन से सोने नहीं देंगे, बिजली अफसरों के घरों की भी लाइट काटेंगे। अब इस दौरान बिजली कटौती की शिकायत के लिए पावर हाउस के सरकारी नंबर पर लगातार लोग फोन कर रहे थे। कई फोन कॉल तो खुद विधायक ने उठाए।
11: हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की कब से लाइट नहीं है, कितने बजे से? ठीक है, मैं शलभ मणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, विधायक देवरिया। ठीक है, बिजली घर पे ही बैठे हैं, इन लोगों की लाइट काटने आए हैं। आप लोगों की लाइट नहीं है तो आज हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की सबकी लाइट काट देंगे। ठीक है ना, देखिए सर, 10-11 बजे से लाइट नहीं है। आप लोगों पर रिपोर्टिंग ही नहीं भाई, कहाँ कहाँ लाइट नहीं है। आप लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। 10 बजे से लाइट नहीं है इनके मोहल्ले में, गोरखपुर और के पास।
4: अब बात करते हैं फैसल खान और खान सर की, जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
12: पटना में दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैसल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुँच चुकी है। फैजल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
13: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सरेंडर करने का। पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉनवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
12: कल आर्म्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था।
13: के लिए पुलिस कुछ भी लेख दे, अगर ऐसा होता तो खान सर भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और FIR में लिख देने से कोई एविडेंस नहीं होता।
12: उधर फैजल खान की गिरफ्तारी की खबरों के बीच कल रात कोचिंग के बाहर भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रहा। PCR वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती नजर आई।
14: मौजूद है और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के। ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। तस्वीर देखिए, ये खान सर के कोचिंग के बाहर का नजारा है।
12: घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
15: किसके ऊपर करने आया है?
16: हमारा गाड़ी अभी तक नहीं की है, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे?
12: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
4: बिहार में राबड़ी के बंगले को लेकर जारी सियासत अब सुरक्षा तक पहुंच गई है। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने मौजूद सुरक्षा को भी लेने से इनकार कर दिया है।
1: आवास के बाहर पसरा सन्नाटा और कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं। एक बार तो ये यकीन करना भी मुश्किल है कि ये पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बंगला है। एक दिन पहले वाई प्लस सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद अब लालू राबड़ी ने नाराजगी जताते हुए पूरी सुरक्षा वापस कर दी है।
17: राबड़ी देवी और लालू परिवार को जो सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर जो है ये ताजा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और कल से हम देख रहे हैं जब सरकार का एक नया फरमान आया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जो जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस सुरक्षा को सरकार ने वापस लिया और केवल बिहार पुलिस की सुरक्षा जो स्पेशल पुलिस होती है उसकी सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद से ही लालू परिवार राबड़ी देवी जो है वो इसको लेकर काफी बिफर गए और उसके बाद कल देर रात से हम देख रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड आवास जो कि राबड़ी देवी और उनका परिवार यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा है यहाँ कल रात से ही एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है।
1: इस बीच तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए अपनी सुरक्षा लौटा दी, जिसे लेकर आरजेडी अब सरकार पर लगातार हमले कर रही है। सुरक्षा कवच में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। सात खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार को नुकसान शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया है। अगर लालू जी एवं उनके परिवार का सुरक्षा कवच है और अगर लालू जी राबड़ी देवी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई तो अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है।
18: सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को।
19: ये सुरक्षा उनको क्यों दिया गया था? कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, जब ये संवैधानिक व्यवस्था, ये नहीं है कि हथुआ मामा का बेटा है तो सब दिन वही रहेगा। जनता जिसको चुन करके देती है सत्ता में और जो कानून कहता है वो सुरक्षा मिलता।
1: समीक्षा में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन लालू और राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं लालू राबड़ी की जेड प्लस सिक्योरिटी वापस ली गई थी, लेकिन नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोनों नेताओं के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, जिसके तहत 2 से 8 जवान सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश था। इसके साथ बुलेट प्रूफ कार, जिला बल से स्क्वाड की नियुक्ति का निर्देश था।
17: ये बिहार पुलिस की जो सुरक्षा, जो नई व्यवस्था उनको प्रदान की गई थी, उस सुरक्षा को भी यहाँ लेने से देखिए लालू परिवार ने जो है वो मना कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ बिहार पुलिस के जो विशेष दस्ता है वो जो नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत इनको यहाँ पर भेजा गया है। इन तमाम लोगों को भी जो है 10 सर्कुलर रोड आवास में जाने नहीं दिया गया है, इनको बाहर कर दिया गया है परिवार के द्वारा। और जाहिर सी बात है ये तमाम जो बिहार पुलिस के यहाँ पर कर्मी हैं वो लोग बाहर ही खड़े हैं, राबड़ी देवी के आवास के बाहर ही इसी तरीके से खड़े हैं। अब इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है।
1: राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत चल ही रही थी, जिस पर अब सुरक्षा को लेकर विवाद की एंट्री हो चुकी है। रोहित सिंह, पटना आज तक।
4: यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन में जारी है, जिसकी गूंज अब संभल में सुनाई दी, जहां सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिया गया और इस अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया।
15: संभल के नखासा थाना इलाके के कसेरुआ गांव में स्थित मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है और आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद है उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। दो दो बुलडोजर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहाँ पर जो है लगाए गए हैं। पूरा पुलिस फोर्स गाँव में तैनात किया गया है और ये देखा जाए तो ये 120 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी, जिसको हटाने के लिए जनवरी महीने में जो है लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी और उसके बाद इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई। लेकिन आज अब इस पूरे मस्जिद पर धारा 67 के तहत जो कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है और आप यहां जो देख सकते देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर है वो इस पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। और एहतियातन अगर जो देखा जाए तो देखिए छतों पर आपको जो पुलिसकर्मी आपको जो तैनात नजर आएंगे, यहां अगर आपको जो देखा जाए तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फिलहाल आपको जो है ये वो पुलिसकर्मियों की आपको जो है लगातार छतों पर जो तैनाती दिखाई देगी। जो है सामने देखिए तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह आपको यहाँ इस पूरे इलाके में लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए दिखाई देंगे और इसी तरह से देखिए आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। सामने आप देखेंगे तो देखिए बुलडोजर के ठीक बराबर में देखिए भारी संख्या में आपको पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर जो तैनात जो नजर आएगा, जो कि आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी तरह से जो पूरे गांव का अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स को तैनात करके पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है, जिससे कि कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो न डाली जाए सोशल मीडिया पर। वहीं इसी के साथ जो आसपास के इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, वहां से भी इस पूरे गांव की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस को फोर्स को जो तैनात किया गया है। और
4: बक्सर का इटाढ़ी गुमटी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, मात्र 4 दिन हुए थे पुल के उद्घाटन को और अब पुल बंद कर दिया गया है। 26 करोड़ 40 लाख की लागत से बने हुए रोड ओवरब्रिज के ऊपरी परत धंस गए। लगभग 11 साल के इंतजार के बाद आम जनता के लिए कुछ ही दिन पहले उद्घाटन किया गया, लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ सहूलियत होगी सोचा, लेकिन चौथे दिन ही पुल के पिलर नंबर 5 के ऊपरी परत ही धंस गई।
20: आप सोच सकते हैं कि जिस चीज को 11 साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के बाद अगर मिलता है तो 4 दिनों में ध्वस्त हो जाता है, तो सोचिए नहीं, ये देखिए कैसे, क्योंकि ये जो पुल है करीब 4 दिन पहले इसको खोला गया था चलने के लिए, लेकिन 4 दिनों में ये पुल टूट गया, यानी कि कहिए कि ध्वस्त हो गया और इसको बंद कर दिया गया है। ये दरअसल बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बना 26 करोड़ 40 लाख का वो नया पुल है जिसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लोग धरने पर बैठे, उसके बाद ये पुल मिला तो ऐसे हालात में मिला कि 4 दिन बाद ये इस परिस्थिति में आ गया कि लोग अब घेर कर देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। ये एक दर्दनाक घटना तो नहीं कही जा सकती है, शर्मनाक घटना कही जा सकती है, और शर्मनाक घटना के कौन कौन विलेन है ये तो तय जनता को करना है। ऐसे में जनता सामने खड़ी है, हम उससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो घटना घटी है आपको आश्चर्यचकित तो नहीं करती होगी ना?
21: ना ना, ये तो मतलब वही होना था जो हुआ है, इसे पहले भी हुआ है कई बार, ये तो देखने वाली चीज है, ये तो सामने है जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है,
22: बस वही है जो देख रहे हैं, टूट गया है पुल
20: 4 दिन पहले।
22: हाँ, 4 दिन पहले बना था, आज टूट गया, फिर ट्रक चढ़ी है, वो तो अच्छी बात है, किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
20: सर, आपको लगता है कि मतलब ये पुल लगता था कि चलेगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा, तो इतना जल्दी फंसेगा ये तो विश्वास नहीं होगा?
23: ये विश्वास नहीं था इतना जल्दी फंस जाएगा।
20: देखिए, लोगों को लगातार सूचनाएं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बहुत मिलती रहेगी है कि पुल भस रहा है और पुल भसेगा भी, लेकिन 4 दिनों में अगर पुल भसने लगे तो बिहार की उस सरकार को क्या कहेंगे जो कई परिवर्तन के बाद इस समय भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे विकास का क्या मतलब है जो 4 दिन तक टिके नहीं। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।
4: आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई। धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स की T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल कर लिया गया है।
0: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया, खुद वैभव के साथियों ने, दुनिया भर के दिग्गजों ने, और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई

0: इसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के इस सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती थी तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सेलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले वो सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन हैं। आईपीएल के 23 मैच में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होने वाला है, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं, ये अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली इस टीम को अपने खजाने में ऐसा ही हीरा चाहिए। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात दुनिया की करते, जहां खाड़ी युद्ध में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत की कोशिशों के बीच धमाके की गूंज ने युद्ध विराम की उम्मीदों को तोड़ा है।

0: पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया है। इस मंजर ने डरा दिया है कि खाड़ी में फिर से महायुद्ध 2.0 की लपटें सुलगने लगी हैं। इस माहौल ने बता दिया है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग छिड़ने वाली है। दहशत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला चुका है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। ईरान के सर्विलांस रडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के रडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। अमेरिका ने दावा किया कि 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल टारगेट तक पहुंची ही नहीं। मतलब साफ है कि जो सीज फायर फिलहाल अस्थाई है, वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में झड़प शुरू हो चुकी है। यह चिंगारी किसी भी वक्त भीषण युद्ध का शक्ल ले सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब आपको लेकर चलते हैं युद्ध के उस मोर्चे की ओर जहां पिछले 4.5 साल से रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है। अब बड़ी खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए युद्ध रोकने की जरूरत नहीं। पुतिन का यह बयान तब आया है जब जेलेंस्की ने खुला पत्र लिखकर रूसी राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा जाहिर की।

0: यूक्रेनी शहर जैपोरेजिया पर भीषण अटैक किया, वो भी तब जब शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए सीज फायर की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बातचीत करने के लिए जंग रोकने की जरूरत नहीं। रूस के ताजा हमलों में जैपोरेजिया के रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, 16 घायल हैं, वाहनों और नागरिक बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि बातचीत के लिए सीज फायर की जरूरत ही नहीं है।
1: Новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. Но за последнее время, повторяю, почти 2500 квадратных километров.
0: इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति को खुला पत्र लिखा है और सीधे वार्ता का प्रस्ताव रखा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी नेताओं के बीच बैठक की पहल को सराहा है और इसे अच्छी पहल बताया।
2: I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing, but I think it would be great if they met. They should get it done.
0: आर पार की जंग और शांति वार्ता की कोशिशों के बीच दोनों देशों की तरफ से अच्छी पहल हुई है। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे के 185 कैदियों की अदला बदली की है, जिसे शांति की शुरुआत के लिए पहला बड़ा कदम बताया जा सकता है। हालांकि कैदियों की अदला बदली पहले भी हो चुकी है, लेकिन 4 साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग अभी तक थमी नहीं। आज तक ब्यूरो।
3: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बंधन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार। राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगी गई है रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच। नीट री एग्जाम के प्रश्न पत्र लीक होने के दावों को एनटीए ने किया खारिज, कार्रवाई की थी चेतावनी, महानिदेशक ने कहा क्वेश्चन पेपर लाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल। और भारत की T20 टीम में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की एंट्री, आयरलैंड इंग्लैंड के दौरे में मिली जगह, कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव बाहर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, महंगाई और बढ़ गई है। जी हां, आप 14 किलो 200 ग्राम वाला जो सिलेंडर है एलपीजी का, उसकी कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत को बढ़ा दिया गया और ये बढ़कर होगी 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए। और ये जो दरें हैं बढ़ी हुई, वो आज से लागू हो जाएंगी। पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार हुआ है जब एलपीजी सिलेंडर के दाम इस तरह से बढ़ा दिए गए हों। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। उस समय पश्चिम एशिया में बढ़े हुए तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में आई उथल पुथल के बाद अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। तो दिल्ली में अब 942 रुपए का एलपीजी सिलेंडर आपको मिलेगा। 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई, 60 रुपए की बढ़ोतरी पहले ही सिलेंडर में की जा चुकी है और अब कीमत है इसकी बढ़ने के बाद 942 रुपए। यूपी में 2027 के लिए हर पार्टी ने कमर कसी हुई है। योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि दोनों की तरफ से वार पलटवार किया गया है।
1: तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
2: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
1: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
2: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं, तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
1: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
2: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है, तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
3: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
4: बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को, तो एनकाउंटर क्यों करा गया? सवाल तो ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि जो शासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
2: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: और उधर आज दिल्ली में जंतर मंतर के कांग्रेस जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में उतरी थी, और जहां छात्रों की आत्महत्या को लेकर बड़े सवाल भी पूछे गए, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की गई थी।
5: हाथों में संविधान की कॉपी लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक के आज सुबह अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने जंतर मंतर का रुख किया।
6: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधे आईजीआई एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, न मंच था, न बैनर था, न कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया भीड़ की संख्या बढ़ती गई, स्टेज भी लगा, मंच भी लगा और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
5: नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। अभिजीत दीपक्के के साथ सोनम वांगचुक भी मंच पर नजर आए। अभिजीत ने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया।
7: मैं धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों के पास सुसाइड करने का वेट करेंगे आप? जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
5: अभिजीत ने अपने इस आंदोलन को सफल बताया तो वहीं साफ किया कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश भर में नजर आने वाला है।
7: 15 दिन पहले जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी।
5: 5 घंटे तक जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी लौट गए, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ना देने पर अगले शनिवार को एक बार फिर जंतर मंतर आने का ऐलान किया है। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: तो दिल्ली के जंतर मंतर में एक और जहां जेनजी की तरह सरकार से नाराजगी दिखाने की कोशिश की गई थी जेनजी की तरफ से, तो उसी तरफ कुछ किलोमीटर दूरी पर सरकार के समर्थन में भी कुछ युवाओं को एकजुट किया गया था, वो भी देखिए।
5: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 6,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। वहीं मैथिली ठाकुर, फिल्म स्टार विक्रांत मेस्सी, बोट फाउंडर अमन गुप्ता और गुरिंदर वीर सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मंच साझा किया।
8: आज मैं माई भारत यूथ कन्वेंशन में मेरे साथ देखिए कितने सारे लोग हैं। एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की,
5: एक और जहां विपक्ष युवाओं की नाराजगी और जेएनजी आंदोलन की लगातार बात कर रहा है, तो वहीं सरकार ने मंच से ये संदेश देने की कोशिश की कि देश के युवाओं को सरकार पर पूरा भरोसा है।
9: माय भारत, मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी वॉलंटियर क्षमता, अपना आइडियाज साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है।
10: देश का युवा जो विजनरी है, जिसमें साहस है, जो क्रिएटिव है, वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे, अपना भविष्य भी निर्माण करे और देश का भी निर्माण करे, उसके लिए आज ये इवेंट था।
5: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए यूथ फॉर विकसित भारत अभियान को सरकार युवाओं के लिए एक बड़ा कदम बता रही है, जिसके जरिए युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: और यह खबर है यूपी के देवरिया से, जहां बिजली कटौती से लोग बड़े परेशान हैं। कई क्षेत्रों में बिजली कटी तो आधी रात को बीजेपी विधायक शलमणि त्रिपाठी पावर हाउस पहुंच गए। बिजली विभाग के ऑफिसर्स को अड़काया गया। विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता अगर बिजली कटौती की वजह से नहीं सो पा रही है तो फिर बिजली ऑफिसर्स को हम चैन से नहीं सोने देंगे। बिजली ऑफिसर्स के घरों की भी लाइट काटी जानी चाहिए। इस दौरान बिजली कटौती की शिकायत के लिए पावर हाउस के सरकारी नंबर पर लोग लगातार फोन भी करते रहे। कई फोन कॉल खुद विधायक ने उठाए।
11: कब से लाइट नहीं है, कितने बजे से, कहाँ से बोल रहे हैं आप? चिड़िया ठाला से ना लाइट? कब से लाइट नहीं है, कितने बजे से? ठीक है, मैं शलभमणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, विधायक देवरिया। ठीक है, लाइट बिजली घर पे ही बैठे हैं, इन लोगों की लाइट काटने आए हैं। आप लोगों की लाइट नहीं है तो आज हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की सबकी लाइट काट देंगे। ठीक है ना, देखिए सर, 10-11 बजे से लाइट नहीं है। आप लोगों पर रिपोर्टिंग ही नहीं भाई, कहाँ कहाँ लाइट नहीं है। आप लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। 10 बजे से लाइट नहीं है इनके मोहल्ले में, गोरखपुर और के पास।
0: और अब बात करते हैं फैजल खान उर्फ खान सर के बारे में, जिन पर सरकारी जिनके ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
12: पटना में दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैजल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है। फैजल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
13: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सर। पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
12: कल आर्म्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था।
13: के लिए पुलिस कुछ भी लिख दे, अगर ऐसा होता तो खान सर भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और FIR में लिख देने से कोई एविडेंस नहीं होता।
12: उधर फैजल खान की गिरफ्तारी की खबरों के बीच कल रात कोचिंग के बाहर भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रहा। PCR वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती नजर आई।
14: मौजूद है और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। तस्वीर देखिए, ये खान सर के कोचिंग के बाहर का नजारा है।
12: घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
15: इसके ऊपर करने आया है हमारा
16: गाड़ी अभी तक जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
12: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: और उधर बिहार में रावड़ी के बंगले को लेकर जारी सियासत अब सुरक्षा तक पहुंच गई है। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने मौजूद सुरक्षा लेने से भी इनकार कर दिया है।
2: आवास के बाहर पसरा सन्नाटा और कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं। एक बार तो ये यकीन करना भी मुश्किल है कि ये पटना में पूर्व CM राबड़ी देवी का बंगला है। एक दिन पहले Y+ सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद अब लालू राबड़ी ने नाराजगी जताते हुए पूरी सुरक्षा वापस कर दी है।
17: राबड़ी देवी और लालू परिवार को जो सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर जो है ये ताज़ा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और कल से हम देख रहे हैं जब सरकार का एक नया फरमान आया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस सुरक्षा को सरकार ने वापस लिया और केवल बिहार पुलिस की सुरक्षा, जो स्पेशल पुलिस होती है उसकी सुरक्षा प्रदान की, उसके बाद से ही लालू परिवार, राबड़ी देवी जो है वो इसको लेकर काफी बिफर गए। और उसके बाद कल देर रात से हम देख रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड आवास, जो कि राबड़ी देवी और उनका परिवार यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा है, यहाँ कल रात से ही एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है।
2: इस बीच तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए अपनी सुरक्षा लौटा दी, जिसे लेकर आरजेडी अब सरकार पर लगातार हमले कर रही है। सुरक्षा कवच में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। सात खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी, राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार को नुकसान, शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया है। अगर लालू जी एवं उनके परिवार का सुरक्षा कवच है और अगर लालू जी, राबड़ी देवी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है।
18: सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को।
19: ये सुरक्षा उनको क्यों दिया गया था? कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, जब ये संवैधानिक व्यवस्था, ये नहीं है कि हथुआ मामा का बेटा है तो सब दिन वही रहेगा। जनता जिसको चुन करके देती है सत्ता में, और जो कानून कहता है वो सुरक्षा मिलता।
2: समीक्षा में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन लालू और राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं लालू राबड़ी की जेड प्लस सिक्योरिटी वापस ली गई थी, लेकिन नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोनों नेताओं के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, जिसके तहत 2 से 8 जवान सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश था। इसके साथ बुलेट प्रूफ कार, जिला बल से स्क्वाड की नियुक्ति का निर्देश था।
17: ये बिहार पुलिस की जो सुरक्षा, जो नई व्यवस्था उनको प्रदान की गई थी, उस सुरक्षा को भी यहाँ लेने से देखिए लालू परिवार ने जो है वो मना कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ बिहार पुलिस के जो विशेष दस्ता है, वो जो नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत इनको यहाँ पर भेजा गया है, इन तमाम लोगों को भी जो है 10 सर्कुलर रोड आवास में जाने नहीं दिया गया है, इनको बाहर कर दिया गया है परिवार के द्वारा। और जाहिर सी बात है ये तमाम जो बिहार पुलिस के यहाँ पर कर्मी हैं वो लोग बाहर ही खड़े हैं, राबड़ी देवी के आवास के बाहर ही इसी तरीके से खड़े हैं। अब इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है।
2: राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत चल ही रही थी, जिस पर अब सुरक्षा को लेकर विवाद की एंट्री हो चुकी है। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: और उधर यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन भी लगातार जारी है, जिसकी गूंज संभल में सुनाई दी, जहां सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिया गया था। तस्वीरें देखिए जरा, और आपको बता दें कि अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए थे। और आपको ये भी बता दें कि नोटिस काफी दिन पहले इस मस्जिद को ढहाने के दे दिए गए थे। सरकारी जमीन पर मुस्तफा कादरी मस्जिद को बनाया गया था, जहां पर बुलडोजर ने इसे जमींदोज किया है। संभल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भारी सुरक्षा के बीच इस अवैध निर्माण को गिराया गया है, जो सरकारी जमीन पर बनाया गया था।
20: संभल के नखासा थाना इलाके के कसेरुआ गांव में स्थित मुस्तफ़ा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है और आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो कि सरकारी ज़मीन पर बनी हुई मस्जिद है उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। दो दो बुलडोजर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहाँ पर जो है लगाए गए हैं। पूरा पुलिस फोर्स गाँव में तैनात किया गया है और ये देखा जाए तो ये 120 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी जिसको हटाने के लिए जनवरी महीने में जो है लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी और उसके बाद इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होने का मामला सामने आया था जिसके बाद इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई। लेकिन आज अब इस पूरे मस्जिद पर धारा 67 के तहत जो कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है और आप यहां जो देख सकते देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर है वो इस पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। और एहतियातन अगर जो देखा जाए तो देखिए छतों पर आपको जो पुलिसकर्मी आपको जो तैनात नजर आएंगे। यहां अगर आपको जो देखा जाए तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फिलहाल आपको जो है ये वो पुलिसकर्मियों की आपको जो है लगातार छतों पे जो तैनाती दिखाई देगी। जो है सामने देखिए तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह आपको यहाँ इस पूरे इलाके में लगातार इस पूरी स्थिति पे नजर बनाए हुए दिखाई देंगे। और इसी तरह से देखिए आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। सामने आप देखेंगे तो देखिए बुलडोजर के ठीक बराबर में देखिए भारी संख्या में आपको पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर जो तैनात जो नजर आएगा जो कि आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी तरह से जो पूरे गांव का अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स को तैनात करके पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है जिससे कि कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो न डाली जाए सोशल मीडिया पर। वहीं इसी के साथ जो आसपास के इलाके हैं आसपास के जो गांव हैं वहां से भी इस पूरे गांव की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस को फोर्स को जो तैनात किया गया है। और
21: उधर बक्सर का इडारी मुमटी पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और आपको बता दें कि 4 दिन पहले इस पुल का उद्घाटन हुआ और अब पुल बंद करना पड़ा है इसके क्षतिग्रस्त होने की वजह से। 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आई है इस ओवरब्रिज को बनाने में। आपको बता दें कि इसकी ऊपरी परत पूरी तरह से धसी हुई है। करीब 11 साल के इंतजार के बाद आम जनता के लिए कुछ ही दिन पहले इसका उद्घाटन किया गया था। लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली थी कि सहूलियत हो गई है लेकिन चौथे ही दिन पुल के पिलर नंबर 5 के ऊपर ये परत पूरी तरह से धस गई।
22: आप सोच सकते हैं कि जिस चीज़ को 11 साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के बाद अगर मिलता है तो 4 दिनों में ध्वस्त हो जाता है तो सोचिए नहीं ये देखिए कैसे, क्योंकि ये जो पुल है करीब 4 दिन पहले इसको खोला गया था चलने के लिए लेकिन 4 दिनों में ये पुल टूट गया यानी कि कहिए कि ध्वस्त हो गया और इसको बंद कर दिया गया है। ये दरअसल बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बना 26 करोड़ 40 लाख का वो नया पुल है जिसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लोग धरने पर बैठे, उसके बाद ये पुल मिला तो ऐसे हालात में मिला कि 4 दिन बाद ये इस परिस्थिति में आ गया कि लोग अब घेर कर देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। ये एक दर्दनाक घटना तो नहीं कही जा सकती है, शर्मनाक घटना कही जा सकती है। और शर्मनाक घटना के कौन कौन विलेन है ये तो तय जनता को करना है। ऐसे में ये जनता सामने खड़ी है, हम उससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो घटना घटी है आपको आश्चर्यचकित तो नहीं करती होगी ना?
23: ना ना, ये तो मतलब वही होना था जो हुआ है, इसे पहले भी हुआ है कई बार, ये तो देखने वाली चीज है, ये तो सामने है जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है।
24: बस वही है जो देख रहे हैं, टूट गया है पुल
22: 4 दिन पहले।
24: हाँ, 4 दिन पहले बना था, आज टूट गया, फिर ट्रक चढ़ी है, वो तो अच्छी बात है, किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
22: सर आपको लगता है कि मतलब ये पुल लगता था कि चलेगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा, तो इतना जल्दी फंसेगा ये तो विश्वास नहीं होगा?
25: ये विश्वास नहीं था इतना जल्दी फंस जाएगा।
22: देखिए लोगों को लगातार सूचनाएं टीवी के माध्यम से अखबारों के माध्यम से ये बहुत मिलती रहेगी है कि पुल भस रहा है और पुल भसेगा भी, लेकिन 4 दिनों में अगर पुल भसने लगे तो बिहार की उस सरकार को क्या कहेंगे जो कई परिवर्तन के बाद इस समय भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास के कई दावे किए जा रहे हैं लेकिन ऐसे विकास का क्या मतलब है जो 4 दिन तक टिके नहीं। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।
21: और अब बात करेंगे क्रिकेट की। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई है। धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स की T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल किया गया है।
26: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया, खुद वैभव के साथियों ने, दुनिया भर के दिग्गजों ने, और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ना उम्र की सीमा, ना दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ। वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर इसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। ये तूफान आईपीएल के इस सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती थी तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सेलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले वो सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन है। आईपीएल के 23 मैच में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होने वाला है, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं, ये अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली इस टीम को अपने खजाने में ऐसा ही हीरा चाहिए। आज तक ब्यूरो।
21: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
3: Technology changes fast. What matters is whether your skills can keep up. At WGU, we partner with industry leaders to design degrees that go deeper than the latest buzzword. Long before AI made headlines, we were integrating AI-driven skills into our programs. With flat rate tuition, flexible pacing, and built-in certifications, WGU helps you graduate with skills employers trust and a degree that lasts. Learn more at wgu.edu.
4: रत्न का वजन आपके वजन के ऊपर निर्भर करता है? क्या रत्न कुछ समय के बाद काम करना बंद कर देते हैं? क्या रत्नों का वजन और उनका समय जानना जरूरी है? रत्नों का क्या होना चाहिए वजन और कब हो जाती है रत्नों की एक्सपायरी, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य।
6: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your coffee house favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
1: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
7: This is the sound of Jack. Buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
8: Oh, ouch.
7: However you make money work,
5: we can work with that.
8: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

देश को फिर लगा महंगाई का झटका। अब घरेलू गैस सिलेंडर हुआ 29 रुपए महंगा। कांग्रेस बोली महंगाई मैन ने चलाया चाबुक। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार। राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां। अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण। 5 जुलाई तक मांगी है रिपोर्ट। नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच। नीट री एग्जाम को प्रश्न पत्र लीक होने के दावों को एनटीए ने खारिज किया। कार्रवाई की दी चेतावनी। महानिदेशक ने कहा क्वेश्चन पेपर लाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल। और भारत की टी20 टीम में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की एंट्री। आयरलैंड इंग्लैंड दौरे में मिली है जगह। कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार यादव बाहर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि 14 किलो वाला जो सिलेंडर है, मतलब जो आपका घरेलू सिलेंडर है, उसके दाम में 29 रुपए की और बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में ये सिलेंडर अब बढ़कर हो गया है 942 रुपए का, जिसके लिए आपको पहले 913 रुपए देने होते थे, और ये दर आज से लागू कर दी गई है। पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें तो ये दूसरी बार है जब एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले 7 मार्च को भी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए बढ़ाए गए थे। उस समय पश्चिम एशिया में बढ़े हुए तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में आई उथल पुथल के कारण अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। तो आपको बता दें कि दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है और इस बार 29 रुपए सिलेंडर महंगा किया गया है। 7 मार्च को भी रेट बढ़ाए गए थे, 60 रुपए तब बढ़ा दिए गए थे, और ये बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हो जाएंगी। अब आपको घरेलू सिलेंडर जो 14 किलो वाला है उसके लिए 942 रुपए देने होंगे। और उधर यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, जिसकी गूंज आज संभल में भी सुनाई दी है, क्योंकि सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिया गया था और किस तरीके से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, ये तस्वीरें देखिए। किसी भी तरह की कोई प्रशासन को परेशानी ना आए, इसके लिए खास सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए थे। पहले ही नोटिस दे दिया गया था, सरकारी जमीन पर इस अवैध निर्माण को बनाया हुआ था और बुलडोजर एक्शन के तहत इस पूरे के पूरे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है।
1: संभल के नखासा थाना इलाके के कसेरुआ गांव में स्थित मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है, और आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद है उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। दो दो बुलडोजर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहाँ पर जो है लगाए गए हैं। पूरा पुलिस फोर्स गाँव में तैनात किया गया है, और ये देखा जाए तो ये 120 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी, जिसको हटाने के लिए जनवरी महीने में जो है लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी, और उसके बाद इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई। लेकिन आज अब इस पूरे मस्जिद पर धारा 67 के तहत जो कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है, और आप यहां जो देख सकते देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर है वो इस पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। और एहतियातन अगर जो देखा जाए तो देखिए छतों पर आपको जो पुलिसकर्मी आपको जो तैनात नजर आएंगे, यहां अगर आपको जो देखा जाए तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फिलहाल आपको जो है ये वो पुलिसकर्मियों की आपको जो है लगातार छतों पर जो तैनाती दिखाई देगी। जो है सामने देखिए तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह आपको यहाँ इस पूरे इलाके में लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए दिखाई देंगे, और इसी तरह से देखिए आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। सामने आप देखेंगे तो देखिए बुलडोजर के ठीक बराबर में देखिए भारी संख्या में आपको पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर जो है तैनात जो नजर आएगा, जो कि आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी तरह से जो पूरे गांव का अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स को तैनात करके पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है, जिससे कि कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो ना डाली जाए सोशल मीडिया पर। वहीं इसी के साथ जो आसपास के इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, वहां से भी इस पूरे गांव की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस को फोर्स को जो तैनात किया गया है। और
0: बक्सर का इडारी गुमटी पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। 4 दिन हुए इस पुल का उद्घाटन हुए और अब इस पुल को बंद करना पड़ा है। आपको यह भी बता दें कि 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था ओवर ब्रिज, ऊपरी परत इसकी धस गई है। करीब 11 साल इंतजार करना पड़ा है यहाँ की आम जनता को, तब जाकर तो ये पुल मिला, और कुछ ही दिन के भीतर उद्घाटन के बाद इस पुल की हालत देखिए जरा। लोगों ने भी राहत की सांस ली ही थी कि कुछ ही दिनों के भीतर ये हालत हो गई है पुल की। चौथे पुल के पिलर नंबर 5 के ऊपर पूरी की पूरी परत इस तरह से नजर आई है, देखिए।
2: आप सोच सकते हैं कि जिस चीज को 11 साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के बाद अगर मिलता है तो 4 दिनों में ध्वस्त हो जाता है, तो सोचिए नहीं, देखिए कैसे, क्योंकि ये जो पुल है करीब 4 दिन पहले इसको खोला गया था चलने के लिए, लेकिन 4 दिनों में ये पुल टूट गया, यानी कि कहिए कि ध्वस्त हो गया और इसको बंद कर दिया गया है। ये दरअसल बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बना 26 करोड़ 40 लाख का वो नया पुल है जिसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लोग धरने पर बैठे, उसके बाद ये पुल मिला। तो ऐसे हालात में मिला कि चार दिन बाद ये इस परिस्थिति में आ गया कि लोग अब घेर कर देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। ये एक दर्दनाक घटना तो नहीं कही जा सकती है, शर्मनाक घटना कही जा सकती है। और शर्मनाक घटना के कौन कौन विलेन है ये तो तय जनता को करना है। ऐसे में ये जनता सामने खड़ी है, हम उससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो घटना घटी है आपको आश्चर्यचकित तो नहीं करती होगी ना?
3: ना ना, ये तो मतलब वही होना था जो हुआ है, इससे पहले भी हुआ है कई बार। ये तो देखने वाली चीज है, ये तो सामने है जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है,
4: बस वही है जो देख रहे हैं। टूट गया है पुल
2: चार दिन पहले।
4: हाँ, चार दिन पहले बना था, आज टूट गया, फिर ट्रक चढ़ी है। वो तो अच्छी बात है कि किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
2: सर, आपको लगता है कि मतलब ये पुल लगता था कि चलेगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा, तो इतना जल्दी फंसेगा ये तो विश्वास नहीं होगा?
5: ये विश्वास नहीं था इतना जल्दी फंस जाएगा।
2: देखिए, लोगों को लगातार सूचनाएं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बहुत मिलती रहेगी है कि पुल फंस रहा है और पुल फंसेगा भी। लेकिन चार दिनों में अगर पुल फंसने लगे तो बिहार की उस सरकार को क्या कहेंगे जो कई परिवर्तन के बाद इस समय भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे विकास का क्या मतलब है जो चार दिन तक टिके नहीं। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।
0: यूपी में भी 2027 के लिए हर पार्टी ने कमर कसी हुई है। योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में हैं।
6: राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी, अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था, किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
7: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
6: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
7: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं, तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
6: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। माँ दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
7: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
8: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है, मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
9: बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया? सवाल तो ये है, ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि शासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
7: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक के विरोध में उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां छात्रों की आत्महत्या को लेकर भी सवाल खड़े किए गए, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की गई।
10: हाथों में संविधान की कॉपी लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके आज सुबह अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने जंतर मंतर का रुख किया।
6: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीपके अमेरिका से सीधे आईजीआई एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, ना मंच था, ना बैनर था, ना कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया भीड़ की संख्या बढ़ती गई, स्टेज भी लगा, मंच भी लगा और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
10: नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। अभिजीत दीपके के साथ सोनम वांगचुक भी मंच पर नजर आए। अभिजीत ने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया।
11: मैं धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों के पास सुसाइड करने का वेट करेंगे आप? जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
10: अभिजीत ने अपने इस आंदोलन को सफल बताया तो वहीं साफ किया कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश भर में नजर आने वाला है।
11: 15 दिन पहले जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी।
10: 5 घंटे तक जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी लौट गए, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ना देने पर अगले शनिवार को एक बार फिर जंतर मंतर आने का ऐलान किया है। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में एक और जहां पर जेंजी की सरकार से नाराजगी नजर आई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरकार के समर्थन में युवाओं को एकजुट किया गया था। देखिए,
10: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 6,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। वहीं मैथिली ठाकुर, फिल्म स्टार विक्रांत मेस्सी, बोट फाउंडर अमन गुप्ता और गुरिंदर वीर सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मंच साझा किया।
12: आज मैं माई भारत यूथ कन्वेंशन में मेरे साथ देखिए कितने सारे लोग हैं। एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
10: एक और जहां विपक्ष युवाओं की नाराजगी और जेएनजी आंदोलन की लगातार बात कर रहा है, तो वहीं सरकार ने मंच से ये संदेश देने की कोशिश की कि देश के युवाओं को सरकार पर पूरा भरोसा है।
13: माय भारत, मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी वॉलंटियर क्षमता, अपना आइडियाज को साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है।
14: देश का युवा जो विजनरी है, जिसमें साहस है, जो क्रिएटिव है, वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे, अपना भविष्य भी निर्माण करे और देश का भी निर्माण करे, उसके लिए आज ये इवेंट था।
10: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए यूथ फॉर विकसित भारत अभियान को सरकार युवाओं के लिए एक बड़ा कदम बता रही है, जिसके जरिए युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे यूपी के देवरिया के बारे में, जहां बिजली कटौती से लोग बड़े परेशान नजर आए। और आपको बता दें कि कई इलाकों की जब बिजली कटी तो आधी रात को बीजेपी के जो विधायक हैं शरमणी त्रिपाठी पावर हाउस पहुंचे, बिजली विभाग के ऑफिसर्स को हड़काया। विधायक ने कहा है कि हमारे पूरे इलाके की जनता अगर बिजली कटौती की वजह से परेशान है, नहीं सो पा रही है, तो फिर बिजली ऑफिसर्स को हम चैन की नींद नहीं सोने देंगे। बिजली ऑफिसर्स के घरों की लाइट्स को भी काट डालेंगे। इसी दौरान बिजली कटौती की शिकायत के लिए पावर हाउस के सरकारी नंबर पर लोग लगातार फोन कर रहे थे और कई फोन कॉल्स को खुद विधायक ने उठाया।
15: देखिए कहां से बोल रहे
16: हैं?
15: श्री अठाला से ना? लाइट कब से लाइट नहीं है? कितने बजे से? ठीक है, मैं शलभमणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, विधायक देवरिया। ठीक है, बिजली घर पे ही बैठे हैं, इन लोगों की लाइट काटने आए हैं। आप लोगों की लाइट नहीं है तो आज हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की सबकी लाइट काट देंगे। ठीक है ना? देखिए सर, 10-11 बजे से लाइट नहीं है। आप लोगों पर रिपोर्टिंग ही नहीं भाई, कहाँ कहाँ लाइट नहीं है। आप लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। 10 बजे से लाइट नहीं है इनके मोहल्ले में, गोरखपुर और के पास।
0: अब बात करते हैं फैजल खान उर्फ खान सर के बारे में, जिन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
17: पटना में दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैजल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है। फैजल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
18: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सरेंडर करने का। पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
17: कल आर्म्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था।
18: के लिए पुलिस कुछ भी लेख दे, अगर ऐसा होता तो खान सर भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और FIR में लिख देने से कोई एविडेंस नहीं होता।
17: उधर फैजल खान की गिरफ्तारी की खबरों के बीच कल रात कोचिंग के बाहर भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रहा। PCR वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती नजर आई।
19: मौजूद है और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहां पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहां पे खड़े हैं। तो तस्वीर देखिए, ये खान सर के कोचिंग के बाहर का नजारा है।
17: घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
20: इसके ऊपर करने आया है
21: जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
17: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में हो गई है एंट्री। धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स की T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल किया गया है।
22: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। IPL की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया। खुद वैभव के साथियों ने, दुनिया भर के दिग्गजों ने और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ना उम्र की सीमा, ना दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ। वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर इसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और।

0: खत्म होती थी तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सेलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले वो सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियन हैं। आईपीएल के 23 मैच में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होने वाला है, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं, ये अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली इस टीम को अपने खजाने में ऐसा ही हीरा चाहिए। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
4: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
5: रत्न का वजन आपके वजन के ऊपर निर्भर करता है। क्या रत्न कुछ समय के बाद काम करना बंद कर देते हैं? क्या रत्नों का वजन और उनका समय जानना जरूरी है? रत्नों का क्या होना चाहिए वजन और कब हो जाती है रत्नों की एक्सपायरी, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
6: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
8: continue to face political pressure to reach a peace deal,
7: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
9: Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event, with specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 7/6/26. See dealer for warranty details.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

देश को फिर लगा महंगाई का झटका। अब घरेलू गैस सिलेंडर हुआ 29 रुपए महंगा। कांग्रेस बोली महंगाई में ने चलाया चाबुक। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार। राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां। अखिलेश का पलटवार। यूपी में महा जंगल राज। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण। 5 जुलाई तक मांगी है रिपोर्ट। नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच। नीट्री एग्जाम को प्रश्न पत्र लीक होने के दावों को एनटीए ने खारिज किया। कार्रवाई की दी चेतावनी। महानिदेशक ने कहा क्वेश्चन पेपर लाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल। और भारत की टी20 टीम में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की एंट्री। आयरलैंड इंग्लैंड दौरे में मिली है जगह। कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार यादव बाहर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रहों को अच्छा करने के लिए, ग्रहों से लाभ लेने के लिए हम बहुत सारे रत्न धारण करते हैं, लेकिन उसमें दो चीजों को समझना जरूरी होता है कि रत्नों का वजन कितना होना चाहिए और कौन सा रत्न कब तक धारण करना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे रत्नों की एक्सपायरी के बारे में और उसके वजन के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

जून 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः 7:55 तक चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको रत्नों की महत्वपूर्ण चीजों के बारे में, उसके वजन के बारे में, उसकी एक्सपायरी के बारे में बता रहे हैं। रत्नों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? देखिए, रत्न एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत हैं। ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करवा देते हैं। शरीर की एनर्जी ग्रहों की एनर्जी के साथ मिल जाती है, और इसी आधार पर जब आप कोई रत्न पहनते हैं तो आपको लाभ होता है या हानि होती है। रत्न आप पहन रहे हैं या किसी को पहना रहे हैं, दो चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, रत्न का वजन कितना है, और दूसरा, कोई भी रत्न कितने समय तक धारण किया जाएगा। इन दोनों चीजों को देखे बिना अगर आप रत्न पहनते हैं तो वो खतरनाक हो सकता है, या हो सकता है कि आप ज्यादा वजन का रत्न पहन लें या ज्यादा समय तक रत्न पहन लें तो उससे आपको नुकसान हो जाए। इसीलिए किसी भी रत्न का वजन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भी महत्वपूर्ण है कि जो रत्न आप पहन रहे हैं वो कितने समय तक पहनना चाहिए। रत्नों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले की सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान को अगर लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंता समाप्त हो जाएगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है, आ सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो आप कोई रत्न पहनने जा रहे हैं या किसी को पहनाने जा रहे हैं तो रत्न का वजन कितना होना चाहिए, कितने कैरेट का हो या कितनी रत्ती का हो, इसको कैसे समझें, किन बातों का ध्यान दें। देखिए, रत्न पहनते समय ग्रहों की स्थिति और आवश्यकता, किसी ग्रह को रत्न की ऊर्जा की कितनी जरूरत है, ये दोनों देखना होगा, तब जाकर आप रत्न के वजन का अनुमान लगा सकते हैं। रत्न का वजन कितना होना चाहिए वो ग्रहों के अंश के आधार पर करें, ग्रहों की डिग्री के आधार पर करें। बहुत सारे लोग व्यक्ति के वजन के आधार पर रत्न पहनाते हैं कि व्यक्ति ज्यादा मोटा है, ज्यादा वजन वाला है तो बड़ा रत्न पहना दो, और व्यक्ति दुबला पतला है, कम वजन वाला है तो छोटा रत्न पहना दो, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रहों की डिग्री पर रत्न पहनाया जाता है, किसी रत्न की रश्मि की, किसी रत्न की एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता है तो बड़ा रत्न पहनिए, और किसी रत्न की ऊर्जा की कम आवश्यकता है तो छोटा रत्न धारण करिए। जैसे आपको मंगल का रत्न पहनाना है, मंगल कुंडली में 8-9 डिग्री का है, कमजोर है, क्योंकि मंगल ताकतवर होते हैं लगभग 27-28 डिग्री पर। अब मंगल 8-9 डिग्री के हैं, कमजोर हैं, तो आपको लगभग 14-15 रत्ती का एक बड़ा मूंगा पहनाना होगा। और मंगल अगर 27-28 डिग्री के हैं, पर्याप्त मजबूत हैं, और तब भी अगर मूंगा पहनना है तो 5-6 रत्ती का मूंगा पहना सकते हैं। यानी ग्रह की डिग्री कितनी है और उसकी जरूरत कितनी है, उसके आधार पर रत्न का वजन डिसाइड होता है। रत्नों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, अपने रिश्तों का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बनेंगे, इस समय विवाद तय हो सकता है। आज किसी फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ के योग हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न स्निग्धा ने लिखा है कोलकाता पश्चिम बंगाल से। इनकी जन्म की तारीख है 8 अक्टूबर सन 2000। जन्म का समय सुबह के 5:55 और जन्म का स्थान है कोलकाता। स्निग्धा पूछ रही हैं कि मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, किस तरह का करियर मेरे लिए आगे जीवन में बेहतर होगा। स्निग्धा, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, कला संगीत या क्रिएटिव फील्ड में जाएं, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता जल्दी मिलेगी। और आपकी कुंडली में मई 2027 के बाद करियर में सफलता की संभावनाएं बेहतर दिखाई दे रही हैं। एक मोती बनवा के पहन ले, लगभग 7-8 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। देखिए, बहुत सारे लोग रत्न पहनते हैं, सालों साल तक पहने रहते हैं। पता चला 20 साल से मूंगा पहन रहे हैं, 10 साल हो गया मोती पहन रहे हैं। क्या रत्नों की एक्सपायरी होती है? कुछ समय के बाद रत्नों को बदलना जरूरी है? क्या रत्न बदलते रहना चाहिए? देखिए, रत्नों की एक ऊर्जा होती है, रत्नों की एक एनर्जी होती है जो शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करती है, संतुलित करती है। कुछ समय बाद रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ मिल जाती है, और जब रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा एक हो जाती है, तब वो रत्न शरीर के लिए इम्यून हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। ऐसी दशा में रत्न को या तो बदल देना चाहिए या रत्नों को दोबारा से ऊर्जावान कर लेना चाहिए, रत्नों को दोबारा से रिचार्ज कर लेना चाहिए। यानी आप अगर लंबे समय तक कोई रत्न पहनेंगे, एक ही रत्न, तो वो रत्न कुछ सालों के बाद काम करना बंद कर देगा। ऐसी स्थिति में आपको रत्न समय पूरा होने पर बदल देना चाहिए
या रत्नों को दोबारा से गंगा जल में डुबाकर, कच्चे दूध में डुबाकर, मंत्र जप करके दोबारा से उसमें एनर्जी भर देनी चाहिए। किसी रत्न को पहनने का समय क्या है, एक्सपायरी क्या है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी में समस्या दूर होगी, खान पान का ध्यान बनाए रखें, अनाज का अगर आज दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपको बताते हैं कि आप कोई भी रत्न अगर धारण करते हैं तो कितने समय तक किसी रत्न को पहनना चाहिए। जब आप मोती पहनते हैं तो लगभग 2 से 2.5 साल तक मोती का प्रभाव बना रहता है, इसके बाद मोती बदल देनी चाहिए। मूंगा 3 से 4 साल तक या ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक ठीक काम करता है, इसके बाद मूंगा बदल देना चाहिए। माणिक्य 5 साल से 7 साल तक ऊर्जावान रहता है, तब तक माणिक्य अच्छा काम करता है, इसके बाद माणिक्य बदल देना चाहिए। पन्ना लगभग 5 साल तक काम करता है और बहुत अच्छा अगर पन्ना है तो 7-8 साल तक काम करेगा, इसके बाद पन्ना बदल देना चाहिए। पीला पुखराज, हीरा और नीलम 10 साल से ज्यादा कभी कभी 20 साल तक प्रभावशाली रहते हैं। ये लंबे समय तक अपनी एनर्जी देते रहते हैं। गोमेद और लहसुनिया 2.5 से 3 सालों तक अच्छा काम करते हैं, इसके बाद इनको बदल देना चाहिए। जब आप रत्न बदल देते हैं तो उसके बाद नया रत्न अपनी जरूरत के हिसाब से पहनिए, पुराना रत्न आप शुद्ध करके किसी और को प्रयोग में लाने के लिए दे सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा लाल।

योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का अगर आज दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

रखें, परिवार को लेकर चिंता हो सकती है, आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई रत्न आपने धारण किया है और वो टूट जाता है तो दोबारा से उस रत्न के जगह कोई और रत्न नहीं पहनना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, आप कोई रत्न धारण करते हैं और अगर आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो अक्सर उसके पहले रत्न टूट जाता है, आपको सूचना देता है और आपको समस्या से बचा लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रत्न आपको दोबारा नहीं पहनना चाहिए। जो रत्न टूट गया है उसको तो जल प्रवाहित कर दीजिए, लेकिन उसी तरह का दूसरा रत्न भी आप बनवा करके पहन सकते हैं। नीलम के बारे में ये बात जरूर है कि अगर आपने नीलम पहना है और नीलम खंडित हो जाता है तो दोबारा नीलम पहनने के पहले खूब विचार करके, खूब सलाह लेके तभी धारण करिएगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं।

होंगी। नंबर तीन, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर चार, चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर पांच, परिवार में शुभ कार्य होंगे। नंबर छह, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर सात, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर आठ, लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखिएगा। और नंबर नौ, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर आरती करिएगा। ऐसा करने से जीवन में, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनिल तिवारी जी ने हमें लिखा है, जबलपुर मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। 11 फरवरी 1980 का जन्म है। शाम के 7:45 जन्म स्थान है जबलपुर। अनिल जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, पैसे की दिक्कतें परेशान कर रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। देखिए, आपकी कुंडली में जो शनि की वर्तमान स्थिति है उसकी वजह से थोड़ा सा पैसे का प्रेशर बन गया है, लेकिन मामला इतना गंभीर नहीं है, जीवन आपका आराम से चल रहा है। हाँ, ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, तो ज्यादा पैसा आने की, बेहतर पैसा आने की संभावना मार्च 2027 के बाद दिखाई देती है। उसके बाद आपका जीवन ज्यादा बेहतर होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज शाम के समय श्री सूक्तम का पाठ करें या श्री सूक्तम सुने तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से जाएं कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता जरा सा खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो अपने साथ एक लाल फूल रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का।
तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। मेष राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा। कर्क राशि वालों को चिंताएं बढ़ सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है तो आज या इस समय में किसी नए काम की शुरुआत ना करें। आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल का और गुड़ का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: इंडिया के दाम एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। एलपीजी में 14 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में 913 रुपए बढ़ाए गए हैं। अब बढ़कर कीमत हो गई है 942 रुपए। आज से नई दरें लागू। पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार है जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ाई गई थी। लगातार बढ़ती हुई महंगाई पर कांग्रेस का वार, कहा महंगाई में मोदी का चाबुक फिर से चला है। जनता से वसूली करो, दोस्त की तिजोरी भरो। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन। देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को बढ़ाने पर चर्चा। संकट के बीच भारत की नई आर्थिक रणनीति, प्रधानमंत्री मोदी और ईएसी की अहम बैठक हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस। यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी, कहा 2017 से पहले यहां दुर्गा पूजा के वक्त दंगा हुआ था। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया, बोले राम का नाम लेने पर भी प्रतिबंध था, चलती थी गोलियां, भगवान राम का भक्त अयोध्या नहीं जा सकता था। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सीपीएम ने बीजेपी के साथ डील के आरोपों पर कांग्रेस से मांगी सफाई। 8 जून को कांग्रेस ने बुलाई है बैठक, डीएमके ने मीटिंग में नहीं जाने का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कॉकरोच जनता पार्टी पर साधा निशाना, कहा कुछ ताकतें देश के युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर धकेलने की कोशिश में है। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके पर बीजेपी अध्यक्ष ने निशाना साधा, कहा विदेश में बैठे कुछ लोग सोचते हैं कि वो भारत के युवाओं को दे सकते हैं दिशा। सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर के दावे झूठे हैं, दिल्ली पुलिस के आधिकारिक बयान में कहीं ये बात नहीं कही गई। अखिलेश यादव ने को लेकर केजरीवाल तक ने कॉकरोच जनता पार्टी के बहाने सरकार को घेरा, कहा युवाओं में भारी गुस्सा है, आवाज सुननी होगी। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन, वंचित वर्गों के मुद्दे उठाएगी पार्टी। रीनीट पेपर लीक की खबरों को पूरी तरह से फर्जी बताया गया, एनटीए ने जारी किया है सख्त चेतावनी। 8 जून को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंचे। 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में डीएमके नहीं होने जा रही है शामिल। बंगाल में मदरसों का सर्वे शुरू करने के निर्देश, 5 जुलाई तक जिला स्तर पर मांगी है रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने ममता के खिलाफ यूसुफ पठान की लोकसभा सीट छोड़ने का संदेश पहुंचाने की बात से किया इनकार, गांगुली ने कहा ममता बनर्जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। पटना कोचिंग फायरिंग मामले में फैजल खान आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, वकील का दावा, उन्हें सोमवार को अग्रिम जमानत मिलेगी। पटना में 8 जून को ऑटो चालकों की हड़ताल है, पूरे शहर में सेवाएं प्रभावित रहेंगी। पटना में केजीएस कोचिंग में फायर सेफ्टी की मिली कमियां, केजीएस को कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए। भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता पवन सिंह ने सम्राट चौधरी से की मुलाकात, पवन सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी से बिहार के विकास और कलाकारों को लेकर चर्चा हुई। बिहार के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू सिंह गैर निर्धारण हत्या के मामले में दोषी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 9 जून को सजा पर बहस करेगी। उत्तर 24 परगना में टीएमसी विधायक मदन मित्रा को विरोध का सामना करना पड़ा, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टीएमसी विधायक पर फेंके थे अंडे। पश्चिम मिदनापुर में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका, पुलिस ने पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुजय आजरा को जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया। कांग्रेस कोलकाता में एक तृणमूल कांग्रेस पार्षद पप्पादित्य दास गुप्ता को रंगदारी के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है, मामले की जांच जारी। तेलंगाना में फर्जी सरकारी दस्तावेज केस में वाईएसआरसीपी के पूर्व विधायक ब्रह्म नायडू गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। दिल्ली में अवैध निर्माण पर रेखा गुप्ता का सख्त रुख, 6 दिनों में 114 प्रॉपर्टीज को सील किया गया। राजकोट में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, यूपी में सूर्या की हत्या की घटना को बताया फ्रेंड जिहाद, दक्षिण गुजरात में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का बड़ा बयान। गुजरात के राजकोट में पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, 7 जून तक हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन। सूरत में 100 से ज्यादा घरों के डिमोलिशन कर लेकर विवाद है, बीजेपी नेता ने किया जांच की मांग, कांग्रेस ने पुलिस पर लगाए हैं गंभीर आरोप। पीलीभीत में बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। बारामती में टेम्पो स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर, 3 भाई बहनों की मौके पर जान चली गई। जून के तीसरे हफ्ते में दिल्ली पहुंचेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने जानकारी दी, 4 जून तक केरलम पहुंचा है मॉनसून। पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में प्रवेश कर चुका है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों में मॉनसून पूर्वोत्तर के सभी राज्यों तक पहुंचने की उम्मीद है। अगले 10 दिनों में बिहार, झारखंड और ओडिशा पहुंचने की भी संभावना। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी है, कई जिलों में कल गिरे थे ओले। बिहार में आंधी और बारिश से तापमान गिरा। गुजरात को छोड़कर देशभर में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई, कई राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ओडिशा के बालंगिरी में आंधी बारिश से तबाही, चलती बाइक पर पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हुई, 2 घायल हुए। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में जोरदार बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड, चारों ही तरफ बर्फ की सफेद चादर। दक्षिण के कई राज्यों में बारिश और हैदराबाद में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। कर्नाटक में कई शहरों में मूसलाधार बारिश हुई, धारवाड़ में भारी बरसात के बाद जल जमाव से दिक्कत। केरल में भी मानसूनी बारिश तेज हुई, कन्नूर में गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत। तमिलनाडु में रामनाथपुरम में जेसीबी से खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई, मरम्मत का काम जारी। दिल्ली में एक दुकान में भीषण आग लगी थी, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, लाखों का नुकसान। सूरत के एसबीआई बैंक में 50 लाख रुपए की डकैत हुई, मामले में लूटकांड का मास्टरमाइंड सूरत लाया गया, अब तक 4 की गिरफ्तारी। सूरत में फिल्मी स्टाइल में लाखों की लूट हुई, 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया, नौकरी से निकाले गए पूर्व कर्मचारी ने साजिश रची थी। यूपी के बांदा में आरोपी की 24 लाख रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया, आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ओडिशा में आयसे दाल संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 5 आलीशान मकान, नकदी और जेवर बरामद किए गए। सुपौल में इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके से एसएसबी के जवानों ने 1733 किलो गांजे को बरामद किया, तस्वीरें सामने आई। गोरखपुर में 7 युवक नदी में रील बना रहे थे, डूबने से 2 युवकों की मौत हुई। अरावली में तालाब में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत हुई है, गांव में पसरा मातम। अलीगढ़ में बदमाशों ने सरेरा महिला के पैर में गोली मारी थी, वारदात के बाद आरोपी फरार हुए, महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरिद्वार में चलती बस में लगी थी भीषण आग, कोई हताहत नहीं हुआ। गुरुग्राम में क्रेडिट कार्ड के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 की गिरफ्तारी। एक फ्लैट से चलाया जा रहा था ये फर्जी कॉल सेंटर। केरल के वायनाड में एक स्कूल में 164 छात्र बीमार, उल्टी बुखार के बाद 30 बच्चे अस्पताल में भर्ती। एमपी के रतलाम में वाटर पार्क के ओट में अवैध स्पा का खुलासा, 3 विदेशी युवती और एक स्थानीय युवक को पूछताछ के लिए पुलिस लेकर गई। मंडी के पालमपुर में छात्र का संदिग्ध मौत की खबर, कमरे में मिला था इंजेक्शन और नशीली दवाइयां। मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के लिए आए श्रद्धालु की मौत हुई, अचानक से तबियत बिगड़ने से गई थी जान, एमपी का रहने वाला था ये मृतक। इंदौर के विदुर नगर कैफे हत्याकांड का खुलासा हुआ, पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के रोहतास में प्रेम प्रसंग में 6 बच्चों की मां की पीट पीट कर हत्या की गई, शादीशुदा प्रेमी पर हत्या के आरोप लगे हैं। कानपुर में प्रेमिका की हत्या करने वाले अस्पताल संचालक ने माफी मांगी है, गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने निकाला था 3 ही हत्यारों का जुलूस। पंजाब के नवांशहर में 16 साल की लड़की का बेरहमी से कत्ल किया गया, मृतक की मां के आशिक पर आरोप लगे हैं। सूर्य हत्याकांड के बाद अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है, गाजियाबाद के इंदिरापुरम और लोनी में 2 मदरसों को सील किया गया। देहरादून में परीक्षा से नकल रोकने के बाद हंगामा देखा गया, शिक्षक के साथ पुलिसकर्मी ने कर दी थी मारपीट, घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल। गर्भवती प्रेमिका की हत्या के आरोपी का सीतापुर पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है, लखनऊ में मिली थी गर्भवती छात्रा की लाश। यूपी के चंदौली में साइकिल सवार की गोली मारकर हत्या से सनसनी हमलावर की तलाश जारी। हरियाणवी स्टेज डांसर डिम्पल चौधरी के साथ यूपी के हाथरस में बदसलूकी, डिम्पल चौधरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी, 3 जून को कार्यक्रम हुआ था। एम्स भुवनेश्वर में डॉक्टर्स का कमाल, 47 साल की एक महिला के हाथ से अलग किया 7 किलोग्राम का बड़ा ट्यूमर। डल झील में पर्यटकों की बढ़ती आमद से शिकारा सवारी की मांग बढ़ गई, स्थानीय नाव चालकों के कारोबार को नई रफ्तार मिली। नैनीताल में नन्हे जादूगर की प्रतिभा के मुरीद हुए देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा, मासूम बच्चे की मदद करने के लिए इच्छा जताई। जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने आज आम महोत्सव का आयोजन किया था, 30 प्रकार के आमों की लगाई गई थी प्रदर्शनी। पूर्वा एक्सप्रेस से 95 कछुओं की तस्करी को नाकाम किया गया, बंगाल के राजगंज स्टेशन पर यूपी का तस्कर गिरफ्तार हुआ। फ्रेंच ओपन 2026 का महिला सिंगल्स खिताब पर रूसी खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा का कब्जा, पोलैंड की माजा को सीधे सेटों में हराया। 19 वर्षीय रूसी टेनिस खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। 1992 में मोनिका सेलेव के बाद सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी। 19 साल की रूसी खिलाड़ी का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। मीरा एंड्रीवा 2005 के बाद जन्मी पहली खिलाड़ी है जिन्हें कोई ग्रैंड स्लैम मिला है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म हुआ। भारत का स्कोर 3 विकेट पर 368 रन। 103 रन बनाकर नाबाद है टीम इंडिया का कप्तान शुभमन गिल। केएल राहुल ने भी जड़ा है शतक। भारत ने तीसरा अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीता। 4-1 के शानदार स्कोर के साथ डिफेंडिंग चैंपियन जापान को हराया। भारत ने तीसरी बार अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब भी अपने नाम किया। आशीष तानी कुर्ती ने लगाई थी गोल की हैट्रिक। भारत की बेटियों ने बढ़ाया मान। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में जीता है ब्रॉन्ज। कोरिया को चारों खाने चित कर दिया, 3-0 से बात दी। संदीप कुमारी को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। मुकाबले में दूसरे ही मिनट में शानदार गोल दागकर भारत को दिलाई थी बढ़त। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों को दिए बधाई। देश के लिए बताया गर्व का पल। डॉन 3 विवाद के बीच ऋतिक रोशन के पोस्ट ने खलबली मचाई। पोस्ट से फैंस लगा रहे अंदाजा। एक्टर को डॉन 3 के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं निर्देशक फरहान। रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 में इस बार अक्षय कुमार के बाद रणबीर सिंह की भी एंट्री की खबरें हैं। सरप्राइज कैमियो में रणबीर का होना संभव है। हुमा कुरैशी की नई फिल्म बेबी डू डाई डू का टीजर जारी किया गया। एक महिला सीरियल किलर के इर्द गिर्द घूमती है कहानी। फिल्म गवर्नर से पहले मनोज वाजपेयी ने फैंस के लिए शेयर किया है खास मैसेज। 12 जून को रिलीज होगी फिल्म। नेहा कक्कड़ ने अपना बर्थडे मनाया। 38वां बर्थडे मनाया गया, परिवार के साथ सेलिब्रेट किया। दक्षिणी लेबनान में कई जगहों पर जोरदार हवाई हमलों की खबर सामने आई है जिसके बाद मारजायून इलाके में धुएं के गुबार देखे गए। लेबनानी सेना के मुताबिक खारदाली नाबितीहे रोड पर एक सैन्य वाहन पर इजरायली हमले में 2 अधिकारियों और 1 सैनिक की मौत हो गई। इजरायली सेना ने दावा किया है कि गाड़ी को निशाना बनाया गया था क्योंकि खतरे के संकेत मिले थे और उस इलाके में हिजबुल्ला की गतिविधियों की आशंकाएं थी। 2 अमेरिकी एयरफोर्स फाइटर जेट्स ने मिडिल ईस्ट के ऊपर पेट्रोलिंग की। यूएस सेंट्रल कमांड के ट्वीट से यह जानकारी मिली। बोलीविया में 3 हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच हालत और ज्यादा तनावपूर्ण हुए। सुरक्षा बलों ने हाईवे से प्रदर्शनकारियों को हटाने की कार्रवाई की। अमेरिका ईरान में फिर से भीषण जंग हुई। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर 7 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कतर बहरीन में ईरानी मिसाइल हमले की निंदा की गई। बहरीन विदेश मंत्रालय ने संप्रभुता का खुला उल्लंघन और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताया। आईआरजीसी के मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने धमकी दी, कहा युद्ध जारी रहा और नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाई गई तो हम युद्ध को हिंद महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर तक फैला देंगे। ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को किसी भी दूसरे देश भेजने के दावे को खारिज कर दिया है, ईरानी मीडिया का दावा। दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हमला जारी है। हमले की चपेट में आया सैन्य वाहन। लेबनान के 2 सैन्य अधिकारी और 1 सैनिक की मौत की खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
2: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
7: नो एडेड शुगर, प्रिजर्वेटिव के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
8: लायन डेट नट बाइट्स।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: In association with
13: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
14: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
15: Samakool Cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Samakool Cooler, life banaye wonderful.
16: Hint, bade aaram se.
17: Vimal, bolo zuba kesri.
18: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
19: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
20: जब उसके खिलाफ आज तक का कोई आपराधिक मुकदमा न्यायालय ने कभी सजा नहीं दी, न तो कभी चोरी में, न तो डकैती में, न तो इस तरीके के। फिर एक 302 का 307 का मुकदमा उसके ऊपर है और किसी ने कहा अपहरण का मुकदमा लिखा रखा है, जैसे SP ने कहा। तो इतना तो बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप इनकाउंटर। अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये फिर इसके मतलब इनका LIU क्या कर रहा था? कैसे समाज के लोगों ने आंदोलन किया, बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं फोर्स लगाया इन लोगों ने? खाली जब आंदोलन हो गया तो कहेंगे आप रासुका लगा देंगे। ये तो डिटेक्टरशिप हो गई।
21: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे।
22: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो।
21: अधूरा प्यार ही
22: तुम्हें दुनिया की सिम यार, ठीक है मत दोहराओ।
23: बिजुरी आई गए।
22: हाँ हाँ, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ हाँ हाँ।
23: यह अब ही नसिया पाया भैया।
21: यही। अरे थोड़ा सा और ऊपर।
23: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ।
21: हाँ यही यही यही यही खुजा जोर से।
24: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव TV को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू।
4: सियासी तलवारें बयान से निकल चुकी हैं, तंज तेज हो गया है। 2027 की तरफ बढ़ती यूपी की राजनीति में शब्द अब शस्त्र बन चुके हैं। सीएम योगी 2017 की याद दिला रहे हैं।
3: 16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था।
4: वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव योगी सरकार को महाजंगल राज का चेहरा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने लिखा, असफल मुख्यमंत्री काल में महाजंगल राज, अवैध खनन, कब्जा, हत्या, डकैती, बलात्कार। ये दो विचारों की भिड़ंत है, दो विमर्शों का युद्ध है, दो वोट बैंकों की व्यूह रचना है। योगी कहते हैं कि पहले माफिया प्रदेश को तबाह कर रहे थे। चुनावी इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में मुद्दों के साथ माहौल जीतता है, तथ्य के साथ धारणा भी जीतती है। उसी को पुख्ता करने के लिए सीएम योगी लगातार अखिलेश राज की याद दिला रहे हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर टोटी वाले तंज को तराशा है, अखिलेश की दुखती सियासी रग पर हाथ रख दिया है।
5: हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है।
4: टोंटी सुनने में छोटा शब्द है, लेकिन ये यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी को कांटे की तरह चुभता है। दरअसल 9 साल पहले टोंटी का विवाद यूपी में उठा था। हुआ कुछ यूं कि साल 2017 में अखिलेश यादव की सरकार गई और योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का बंगला छोड़कर गए तो नए सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उस बंगले में कुछ सुधार कराने का काम शुरू हुआ। सियासी शोर हुआ कि लखनऊ में अखिलेश बंगला छोड़कर गए तो सीएम आवास में लगी टोटी भी अपने साथ लेकर चले गए, जो आज तक सियासत के ब्लैक होल में घूम रही है। अखिलेश भी इस पर कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सीएम यानी करप्ट माउथ। विज्ञान कहता है कि किशोरावस्था में किया गया वनस्पति का अत्यधिक सेवन व्यक्ति के बोलने और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है।

देश को महंगाई का झटके पे झटका, घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा, कांग्रेस का हमला, महंगाई मैन मोदी ने फिर से चलाया चाबुक। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर एक्शन, जबरदस्ती वसूली के केस में पूर्व विधायक मिदनापुर से गिरफ्तार, कोलकाता में हिरासत में टीएमसी पार्षद, एमएलए मदन मित्रा पर कमारहट्टी में चले अंडे। बंगाल में अवैध मदरसों के हिसाब किताब की तैयारी, सरकार ने मदरसों का शुरू किया है सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगी गई रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी। पटना में खान कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, फायर सेफ्टी इंतजाम पूरे न होने के आरोप, प्रशासन का सेंटर सील करने का प्लान। नीट री एग्जाम के प्रश्न पत्र लीक होने के दावों को एनटीए ने किया खारिज, कार्रवाई की दी चेतावनी, महानिदेशक ने कहा क्वेश्चन पेपर लाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सुबह के 8 बज चुके हैं। बुलेटिन में बात कर रहे हैं हम उन 8 खबरों के बारे में जो आज दिन भर सुर्खियां बनी रहेंगी, जिन खबरों को हम आपको हर अपडेट आपको दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आम आदमी के बारे में, क्योंकि महंगाई का जबरदस्त झटका लगा है आम आदमी को। और आपको ये भी बता दें कि एक और झटका इसे इसलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि दूसरी बार एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है, 29 रुपए का इजाफा किया गया है। इसके अलावा हम आपको बताने वाले हैं नीट री एग्जाम के बारे में, क्योंकि एनटीए की चेतावनी क्यों उसे जारी करनी पड़ी ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आर्थिक मोर्चे पर मजबूती के लिए प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में क्या निकला है। साथ ही साथ हम बात करेंगे यूपी की सियासत के बारे में भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले का दौर जारी है। इसी के साथ संबल में जारी बुलडोजर एक्शन पर भी हम बात करेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल की भी बात होगी क्योंकि सरकार ने प्रदेश में चल रहे मदरसों के सर्वे को लेकर अब बड़ा आदेश जारी कर दिया है। नजर रहेगी पटना के कोचिंग सेंटर फैजल खान के पूरे मामले पर क्योंकि उसे अब सील करने की तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने कैसे मजबूत शुरुआत की है और हम शुरुआत करेंगे बिहार से, फैजल खान के केएसजी सेंटर पर। आपको बता दें कि फायर सेफ्टी नियमों का पालन न होने का मामला सामने आया है। बिहार के अग्निशमन सेवा के डीआईजी हैं मनोज कुमार और उन्होंने ये जानकारी दी है कि वहां फायर सेफ्टी नियम पूरे नहीं हैं, जिसके मुताबिक केजीएस के कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी को लेकर काफी कमियां पाई गई हैं और इन कमियों को दूर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगर इसे केजीएस में दूर नहीं किया जाता तो कोचिंग सेंटर को सील करने समेत तमाम अन्य तरह की कार्रवाई अग्निशमन अधिकारी करेंगे। तो लगातार खान सर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि तमाम जो नियमों का पालन होना चाहिए वो इस इंस्टीट्यूट में नहीं किया गया। क्या कहा गया है अग्निशमन डिपार्टमेंट की तरफ से, सुनिए।
1: देखिए, जांच करने के जो प्रक्रिया है उसमें इनिशियल स्टेज होता है कि उसको जांच की जाती है, फिर उसको नोटिस किया जाता है, फिर शोकॉज किया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, ABCDEFG और H तक फॉर्म है जिस फॉर्म के। देखिए, जांच करने के जो प्रक्रिया है उसमें इनिशियल स्टेज होता है कि उसको जाँच की जाती है, फिर उसको नोटिस किया जाता है, फिर शोकॉज किया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, ABCDEFG और H तक फॉर्म है जिस फॉर्म के हिसाब से उन पर कार्रवाई की है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, चूंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है।
2: क्या पाया गया उस कोचिंग में?
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है, यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है, जो यदि वे उसका मिट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहां के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहां के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन सुनिश्चित कराएं। मुझे ये नहीं, हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी कोई किसी प्रकार की कोई ट्रबल डाले, हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन किया जाए ताकि आमजनों की क्षति को रोका जा सके।
3: अगर अनुपालन नहीं किया जाएगा तो क्या कोचिंग सील की जाएगी?
1: यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी, यथाविनिश प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है।
0: और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जुड़ गए हैं। शशि भूषण, इस पूरे मामले पर खान सर प्रशासन की तरफ से, इंस्टीट्यूट प्रशासन की तरफ से कोई सफाई आई है क्या कि फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा?
4: शशि, देखिए, जो केजीएस है खान ग्लोबल स्टडीज, उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है उसके प्रबंधन की तरफ से, लेकिन एक बात जरूर है कि जो फैजल खान है उनकी और उनके केजीएस की जो परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, वो लगातार बढ़ती आ रही है। और मुसल्लपुर पटना का इलाका है, मुसल्लपुर हाट का, जहां पर ये उनका सबसे पुराना कोचिंग संस्थान है, जहां जो विवाद है वो भी सामने आया था पिछले दिनों 2 जून की रात, वहां कमियां पाई गई हैं। और ये कोई छोटे अधिकारी नहीं कह रहे हैं
0: जी।
4: जो बिहार फायर सर्विसेज के डीआईजी हैं मनोज कुमार नट्ट, उन्होंने खुद इसको कबूल किया है की जो छात्रों की ऑक्यूपेंसी है उसके हिसाब से, और जो एक फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए वो कमियां वहां पाई गई हैं। लेकिन एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत हमने नोटिस दिया है, उसको अगर दुरुस्त वो कर लेते हैं तब तो ठीक है, वरना हर हाल में जो विधिसम्मत कार्रवाई है मतलब सीलिंग तक की कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक बड़ा मुश्किल है, एक नई परेशानी है फैजल खान और उनके कोचिंग संस्थान के लिए। लेकिन मामला यही नहीं रुक रहा है शशि, एक पटना में हॉस्पिटल भी चलाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी चलाते हैं फैजल खान, और उस हॉस्पिटल का भी फायर ऑडिट आगे आने वाले दिनों में हो सकता है, जो जानकारी हम तक है इस बात के संकेत फायर डिपार्टमेंट ने दे दिए हैं कल। तो ये एक अपने आप में संकट है, एक तो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है फैजल खान के ऊपर, जो मारपीट की घटना हुई, फायरिंग की घटना हुई उसको लेकर के, और दूसरी देखिए जो मयूर विहार में घटना हुई थी होटल में आग लगने की, उसके बाद देश भर में जो फायर डिपार्टमेंट है वो ऑडिट करा रहा है, जांच करा रहा है, और उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि अगर आप कोई संस्थान चलाते हैं जिसमें काफी संख्या में वहां लोगों की मौजूदगी रहती है तो आपका दो कम से कम उसके गेट्स होने चाहिए, एग्जिट गेट और इंटर गेट होने चाहिए अलग अलग।
0: लेकिन इसीलिए तमाम नियमों को पालन करने के लिए कहा गया। और आपको बता दें कि लगातार खान सर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अपने दर्शकों को बता दें कि फैजल खान उर्फ खान सर पर अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, लेकिन उनकी ओर से अग्रिम जमानत की कोशिशें जारी हैं।
5: पटना में दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैजल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है। फैजल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
6: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सरेंडर करने का। पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
5: टाम्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था। घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
7: इसके ऊपर करने आया है हमारा
8: अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है, आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
5: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट का दोबारा एग्जाम 21 जून को होना है, लेकिन उससे पहले कुछ लोग इसके पेपर लीक के दावे कर रहे हैं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने इन दावों को गलत साबित किया है। उन्होंने कहा है कि बयान जारी करके कि ये दावे पूरी तरह से झूठे हैं, धोखाधड़ी वाले हैं और इनका मकसद है लोगों को गुमराह कर देना। अपने बयान में NTA ने कहा है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट 2026 के री एग्जाम का पेपर लीक होने का या बिकने का दावा किया जा रहा है और ऐसे सभी दावे झूठे हैं जिनका मकसद लोगों को गुमराह करना है। NTA ने कहा है कि इस तरह के दावे नकल कराने वाले गिरोहों का काम है जो छात्रों और उनके परिवारों की चिंता का फायदा उठाते हैं। इनका मकसद है नकली पेपर बेचकर पैसे ऐंठना। देश भर में एक बार फिर से घरेलू LPG सिलेंडर महंगा हो गया और इस बार आपको बता दें कि 29 रुपए कीमत बढ़ाई गई है। 3 महीने के भीतर LPG के दाम 2 बार बढ़ा दिए गए हैं, यानी घरेलू सिलेंडर पहले 60 रुपए बढ़ाया गया था और अब इसे 29 रुपए महंगा कर दिया गया है। ये आपको ये भी बता दें कि जहां पहले आप खर्च कर रहे थे 913 रुपए एक सिलेंडर के लिए, अब उसके लिए आपको 942 रुपए देने होंगे। पिछले 3 महीने में ये दूसरी बार है जब LPG सिलेंडर्स के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 7 मार्च को भी LPG सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में लगातार उथल पुथल मची हुई है और इसी वजह से तेल और गैस सिलेंडर की कीमतों पर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ गए। आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, ये दूसरी बार है जब घरेलू सिलेंडर में बढ़ोतरी की गई है, पहले 60 रुपए और 3 महीने के भीतर भीतर अब 29 रुपए बढ़ा दिए गए। एक एक करके चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, CNG की बात करें या घरेलू सिलेंडर की, हर चीज लगातार बढ़ रही है। बजट से बाहर
9: होगा, देखिए आमदनी तो घट नहीं रही है, ऊपर से जो पश्चिम एशिया का संकट है उसने कमर तो चौतरफा तोड़ी है, महंगाई पहले ही बेस है साहब, तो घर का बजट जाहिर इससे जरूर बिगड़ेगा। हालांकि प्रथम दृष्टया ये भी लग सकता है कि ये तो 29 रुपए एक पूरा सिलेंडर है, 14 किलो का है, महीना भर चल जाता, क्या ही इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर परिस्थितियों में देखेंगे कि आपका डीजल महंगा हो चुका है, आपका पेट्रोल महंगा हो चुका है, और उसी के साथ साथ कमर्शियल सिलेंडर है, तो आपके बाहर की चीजें जो है जो महंगाई है, जो किचन में आपका बजट है महीने का वो पहले बिगड़ चुका है, उसमें भी अगर अब एलपीजी का जो तड़का लगा है महंगाई का एक और जो ईएमआई, और देखिए जी रात को 1:30 बजे, रात को 12:30 बजे, 1 बजे जाकर के ये हुआ है और जो आज से लागू किया जाएगा, तो हाँ महंगाई का चौतरफा अटैक है। सरकार के पास दरअसल एक कारण ये है कि हर चीज पश्चिम एशिया का संकट बना हुआ है, लेकिन जिसकी जेब पर सीधा उसका असर पड़ेगा वो थोड़ी नहीं सोचेगा पश्चिम एशिया का संकट हुआ है उससे क्या फर्क पड़ता है। सीधी बात है कि आम आदमी के लिए तो बड़ा झटका है, उसके ऊपर तो महंगाई की मार है सीधे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो महंगाई के बीच आम आदमी को राहत देने के उपायों पर चर्चा के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, उनकी अध्यक्षता की, और इस बैठक में जाने माने अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव समेत दुनिया भर में बढ़ती हुई अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक रफ्तार को बनाए रखने की रणनीति पर चर्चा की है। बैठक में दुनिया में बदलती हुई आर्थिक स्थिति पर भी मंथन किया गया, जिसमें एनर्जी मार्केट, महंगाई का दबाव, सप्लाई चेन और रुकावट और व्यापार के फ्लो पर भी खास ध्यान दिया गया। बैठक में भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति पर जियोपॉलिटिकल संभावित असर का विश्लेषण भी किया गया था। वहीं घरेलू आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए भी खास उपायों की जरूरत पर जोर दिया गया। और अब बात करेंगे सियासत की, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रांची के 2 दिवसीय दौरे पर वो पहुंचे हैं और राज्यसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति तय करने के साथ ही साथ कई कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने इशारों ही इशारों में कॉकरोच जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला।
10: झारखंड दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रांची में बुद्धिजीवियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान इशारों इशारों में कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत का युवा राष्ट्र निर्माण और इनोवेशन पर ध्यान दे रहा है। रांची में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिना किसी का नाम लिए विपक्षी ताकतों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विदेशों में बैठे कुछ लोग ये मानते हैं कि वे भारत के युवाओं को दिशा दे सकते हैं, लेकिन देश का युवा किसी के हाथ की कठपुतली बनने वाला नहीं है।
11: कुछ लोग विदेश से बैठकर, विदेश की जमीन पर बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा देंगे। भारत का युवा चंद लोगों की मुट्ठी से कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला।
10: इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि विरोध करना लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए। नितिन नवीन ने पड़ोसी देशों में चलाए गए व्यवस्था विरोधी अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति भारत के युवाओं के हित में नहीं है। उनका कहना था कि देश का युवा अनुशासन, समर्पण और विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
11: चेतावनी देता हूं कि भारत का युवा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेगा, हम लोकतंत्र के आधार पर निश्चित रूप से हर प्रकार का विरोध करेंगे, पर लोकतंत्र के मापदंड को खत्म नहीं करेंगे। भारत का युवा निर्माण करने के लिए जानता है, भारत का युवा अनुशासन के साथ देश के निर्माण के लिए काम करेगा।
10: कुल मिलाकर झारखंड से बीजेपी ने युवाओं और विकास के मुद्दे को केंद्र में रखकर विपक्ष पर निशाना साधा है। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी का राजनीतिक असर आने वाले दिनों में कितना दिखाई देता है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे पंजाब की राजनीति के बारे में, क्योंकि पंजाब में अगले साल होने विधानसभा के इलेक्शन और पंजाब में बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर केवल सिंह ढिल्लों की नियुक्ति, पार्टी में नाराजगी की खबरें इसके बाद सामने आ रही हैं। उधर पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। अमित शाह से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। और यह खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां उत्तरी 24 परगना में टीएमसी विधायक मदन मित्रा पर भीड़ ने किया है हमला। नाराज लोगों ने उन पर अंडे फेंके। मदन मित्रा पर यह हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी पहुंचे हुए थे। वहीं नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, उन्होंने मदन मित्रा पर अंडे फेंके, नारेबाजी की गई और किसी तरह वो यहां से बच निकलने में कामयाब रहे हैं। लोग काफी नाराज नजर आ रहे थे। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब टीएमसी के किसी भी नेता पर इस तरीके से हमला किया गया हो। देखिए किस तरीके से गाड़ी को भी घेरने की कोशिश यहां नाराज लोगों ने की है। और एक खबर वेस्ट मिदनापुर से है, जहां पुलिस ने टीएमसी के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के वेस्ट मिदनापुर से जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुजॉय हाजरा की गिरफ्तारी जबरदस्ती उगाही और जमीन घोटाले के मामले में की गई है। जानकारी ये मिली है कि हाजरा हाल ही में इलाज के लिए चेन्नई गए हुए थे। खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो टीएमसी के नेताओं पर एक्शन से जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर। कोलकाता पुलिस ने टीएमसी पार्षद को हिरासत में ले लिया है। और आपको बता दें कि टीएमसी पार्षद पापाजित के दास गुप्ता पर जबरदस्ती वसूली के आरोप लगे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इनका नाम है बापादित्य दास गुप्ता। टीएमसी के पार्षद हैं, जिन्हें पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया है। और आरोप यह है कि इन्होंने जबरदस्ती वसूली की है और इसी मामले में इन्हें हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी के संभल में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। और ताजा जो मामला है वो है कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद का, जहां कोर्ट के आदेश के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। लेकिन कार्रवाई के दौरान परिसर से कुछ पोस्टर और एक हरा झंडा भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच में पुलिस की टीमें जुट गई हैं।
10: यूपी के संभल में प्रशासन ने कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान मस्जिद परिसर से कुछ पोस्टर और एक हरे रंग का झंडा मिलने के बाद पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी। संभल के कसेरुआ गांव में शनिवार को प्रशासन का बुलडोजर मुस्तफा कादरी मस्जिद पर चला। प्रशासन का दावा है कि कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया था। तहसीलदार न्यायालय और बाद में जिला न्यायालय में अपील खारिज होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई।
12: कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का मामला आया था, जिसमें तहसीलदार कोर्ट में वाद दर्ज करके उसमें नोटिस दिए गए थे। नोटिस के पश्चात कब्जा पाया गया था और उसके खिलाफ जिलाधिकारी कोर्ट में भी अपील की गई थी। पर्याप्त सुनवाई का अवसर देकर के इनको साक्ष्य प्रमाणीकरण का मौका दिया गया, किंतु कोई भी साक्ष्य कब्जे को लेकर के प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके क्रम में कोर्ट से ध्वस्तीकरण का आदेश प्राप्त हुआ, उसका अनुपालन हम लोग करा रहे हैं।
10: कार्रवाई के दौरान पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। 4 से 5 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई, जबकि छतों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। ध्वस्तीकरण के दौरान मस्जिद परिसर से कुछ धार्मिक पोस्टर और चांद सितारा बना एक हरा झंडा भी बरामद हुआ। पुलिस ने इन सामग्रियों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसपी का कहना है कि बरामद वस्तुओं की प्रकृति और उनसे जुड़े लोगों की पहचान के लिए विस्तृत जांच कराई जाएगी।
13: विभिन्न प्रकार के पोस्टर्स जो हैं वो भी इस मस्जिद परिसर से मिले हैं। ये कब्रिस्तान की जमीन पे बनी हुई थी, उसको तोड़ने का कार्य प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। पुलिस ने सुरक्षा यहाँ पे सुरक्षा दी जा रही है।
14: क्या सर कोई झंडा वगैरह भी सर यहाँ पर?
13: हाँ, एक झंडा है जिसमें इस तरीके का झंडा है। इसके क्या मायने हैं, इसके बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में पता लगाएगा।
10: संभल में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले में ध्वस्तीकरण के साथ साथ बरामद सामग्री की जांच भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
0: दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ रेखा गुप्ता सरकार का एक्शन भी लगातार तेज होता जा रहा है, क्योंकि एमसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 दिनों में 114 अवैध प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया है, जबकि 94 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। और खास बात यह है कि सिर्फ 6 जून को ही 69 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया था। सरकार का कहना यह है कि अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं इस कार्रवाई को लेकर राजधानी में सियासी बहस भी तेज हो चुकी है। और यह खबर है ओडिशा से, जहां 6,000 रुपए मासिक वेतन पर सरकारी नौकरी शुरू करने वाले ओडिशा के बैकुंठनाथ बेहरा की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। बैकुंठनाथ कंधमाल में ITTDA के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। आप देखिए, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कमाई और करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा किया गया है। ITDA में ये इंजीनियर थे और कहा यह जा रहा है कि 6,000 रुपए महीना कमाने वाले शख्स की कमाई करोड़ों में निकली है। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इस पूरे मामले में जानकारी मिल रही है सूरत के SBI बैंक से, जहां 50 लाख रुपए की दिनदहाड़ी लूट की गई थी और इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है। इस सनसनीखेज वारदात के मास्टरमाइंड कुंदन भगत को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेऊर जेल से कस्टडी में लेकर उसे सूरत लाया गया है। NIA कोर्ट की मंजूरी के बाद पुलिस अब उसे पूछताछ के लिए ले जा रही है। हालांकि अब तक लूट की रकम को बरामद नहीं किया जा सका।
10: दिन दहाड़े बैंक में धावा, हथियारों के बल पर 50 लाख रुपए की लूट और इस पूरी साजिश की पटकथा जेल की सलाखों के पीछे लिखी जा रही थी। अब इस हाई प्रोफाइल बैंक डकैती के मास्टरमाइंड कुंदन भगत को बिहार की बेऊर जेल से सूरत लाया गया है, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। सूरत के वराछा इलाके में 27 अप्रैल को 7 से अधिक हथियारबंद बदमाश SBI बैंक में घुस गए थे। उन्होंने पिस्टल की नोक पर कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया और करीब 50 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। जांच के दौरान पुलिस ने 1000 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले और तकनीकी सर्विलांस के जरिए खुलासा किया कि इस पूरी वारदात को बिहार के अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह कुंदन भगत गैंग ने अंजाम दिया था। पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि कुंदन भगत जेल में रहते हुए ही पूरे गिरोह का संचालन कर रहा था। उसने अलग अलग राज्यों के अपराधियों को जोड़कर एक सिंडिकेट बनाया, उन्हें कोडनेम दिए और बैंक की रेखी कराकर इस लूट की साजिश रची।
15: मुख्य आरोपी कुंदन कुमार और कुंदन भगत ये पटना के बेऊर जेल में NIA के केस में एक अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड नंबर 6। इसके ऊपर UAPA और आर्म्स एक्ट जैसे बड़े सेक्शंस लगे हुए हैं। इस आरोपी को भी हम सूरत लेके आए हैं और पूछताछ इस पे हम कर रहे हैं और जो भी इसमें डिटेल्स अलग अलग और कौन कौन से आरोपी हैं और उनका क्या MO है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं।
10: हालांकि 50 लाख रुपए की लूट में से अब तक केवल 93,000 रुपए ही बरामद हो पाए हैं। 49 लाख रुपए से अधिक की रकम अब भी गायब है और कई आरोपी फरार हैं। पुलिस को उम्मीद है कि मास्टरमाइंड कुंदन भगत से पूछताछ के दौरान लूटी गई रकम और फरार आरोपियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। जेल के भीतर से रची गई इस फिल्मी डकैती की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के बाद जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। सूरत आज तक।
0: और अब बात करेंगे खेल के बारे में। आज भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे मैच का है दूसरा दिन और अब से थोड़ी देर में मुकाबला शुरू होगा, लेकिन भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के साथ इकलौते टेस्ट के पहले दिन रनों की खूब दावत उड़ाई है। न्यू चंडीगढ़ में पहली बार खेले जा रहे टेस्ट में भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल, KL राहुल ने शतक लगाए तो साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने अर्धशतक बनाए हैं। टीम इंडिया ने पहले दिन के खेल में 3 विकेट पर 368 रन का स्कोर बनाया। शुभमन गिल 103 रन बनाकर नाबाद रहे। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
18: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
19: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
20: Oh, ouch.
19: However you make money work, we can work with that.
21: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
22: Today's jazz brings the movement forward. Modern voices, contemporary sound, and players shaping what jazz sounds like now. From Herbie Hancock to Pat Metheny, Esperanza Spalding, and more. Feel the jazzy energy with Deep Roots. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Jazz to start listening now.
2: ಸೋಕುಡು.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
4: Take a date, not bites.
5: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
9: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
15: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
9: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
15: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
9: छात्रों को दिया मंच।
15: उज्मा हमारे साथ कोटा से, और अदिति मुंगेर से हैं, और तानिया कोटा से हैं, और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
16: नहीं, देखिए इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
17: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
9: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
15: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
9: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया, खुद वैभव के साथियों ने देखा, दुनिया भर के दिग्गजों ने देखा और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। न उम्र की सीमा, न दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ। वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर उसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के सीजन में जब आया तो मैच कर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सिलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन हैं। आईपीएल के 23 मैचों में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होगा, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए टेबरों वाली टीम को ऐसा ही तो हीरो चाहिए है। आज तक हीरो।
3: मैं कहूंगा कि भारत हमेशा एक संप्रभु देश के रूप में कार्य करता है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों का कोई भी संभावित खतरा तुरंत उल्टा पड़ जाएगा और मुझे यह निश्चित रूप से पता है। हम लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी के साथ गहन बातचीत कर रहे हैं और वे इसे अच्छी तरह जानते हैं। हम सभी को वह समय याद है जब प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और मुझे पता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब वे प्रधानमंत्री हैं, सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और मेरी समझ से अमेरिका और भारत के संबंध सफलतापूर्वक विकसित हो रहे हैं। भारत एक संप्रभु देश है और उसे चुनने की स्वतंत्रता है। भारत उन उत्पादों को चुनता है जिन्हें वह सबसे आधुनिक और अपने लिए सबसे बेहतर मानता है और जो मुनासिब कीमत पर अच्छी क्वालिटी देते हैं। चाहे लोग कुछ भी कहें, भारत हमेशा से इसी तरह काम करता आया है। कैसे? दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे।

देश को महंगाई का झटके पे झटका, घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा, कांग्रेस का हमला, महंगाई मैन मोदी ने फिर से चलाया चाबुक। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर एक्शन, जबरदस्ती वसूली के केस में पूर्व विधायक मिदनापुर से गिरफ्तार, कोलकाता में हिरासत में टीएमसी पार्षद, एमएलए मदन मित्रा पर कमारहटी में चले अंडे। बंगाल में अवैध मदरसों के हिसाब किताब की तैयारी, सरकार ने मदरसों का शुरू किया है सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगी गई रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी। पटना में खान कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, फायर सेफ्टी इंतजाम पूरे न होने के आरोप, प्रशासन का सेंटर सील करने का प्लान। नीट री एग्जाम के प्रश्न पत्र लीक होने के दावों को एनटीए ने किया खारिज, कार्रवाई की दी चेतावनी, महानिदेशक ने कहा क्वेश्चन पेपर लाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल।

फिर बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर हो गई है 942 रुपए। नई दरें आज से लागू। पिछले 3 महीनों में दूसरी बार है जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले 7 मार्च को भी सिलेंडर के 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। लगातार बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का वार, कहा महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर से चला है, जनता से वसूली करो, दोस्त की तिजोरी भरो। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन किया गया, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को बढ़ाने पर चर्चा। वैश्विक संकट के बीच भारत की नई आर्थिक रणनीति, प्रधानमंत्री मोदी और ईएसी की अहम बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस। यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टी पर बरसे हैं सीएम योगी, कहा 2017 से पहले यहां दुर्गा पूजा के वक्त में दंगा हुआ था। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया, बोले राम का नाम लेने पर प्रतिबंध था, चलती थी गोलियां, भगवान राम का भक्त अयोध्या नहीं जा सकता था। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सीपीएम ने बीजेपी के साथ डील के आरोपों पर कांग्रेस से मांगी है सफाई, 8 जून को कांग्रेस ने बुलाई है बैठक, डीएमके ने मीटिंग में नहीं जाने का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कॉकरोच जनता पार्टी पर ज्यादा निशाना, कहा कुछ ताकतें देश के युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर धकेलने की कोशिश में है। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके पर बीजेपी अध्यक्ष का निशाना, कहा बैठक में विदेश में बैठे कुछ लोग सोचते हैं कि वो भारत के युवाओं को सही दिशा दे सकते हैं। सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर के झूठे दावे, दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान में कही ये बात। अखिलेश यादव से लेकर केजरीवाल तक आक्रोश, जनता पार्टी के बहाने सरकार को उन्होंने घेरा, कहा युवाओं में भारी गुस्सा है, आवाज सुननी होगी। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन, वंचित वर्गों के मुद्दों को उठाएगी पार्टी। रीनीट पेपर लीक के मामलों पर पूरी तरह फर्जी है यह खबर, एनटीए की तरफ से सख्त चेतावनी भी जारी की गई। 8 जून को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंचे। 8 जून को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में डीएमके नहीं शामिल होगी। बंगाल में मदरसों का सर्वे शुरू करने के निर्देश, 5 जुलाई तक जिला स्तर पर मांगी गई रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने ममता बनर्जी के लिए यूसुफ पठान की लोकसभा सीट छोड़ने का संदेश पहुंचाने की बात से इनकार किया, गांगुली ने कहा ममता बनर्जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। पटना कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में फैजल खान का आत्मसमर्पण नहीं करने की बात, वकील का कहना है कि उन्हें सोमवार को अग्रिम जमानत मिल जाएगी। पटना में 8 जून को ऑटो चालकों की पूरी हड़ताल है, पूरे शहर में सेवाएं प्रभावित रहेंगी। पटना में केजीएस कोचिंग में फायर सेफ्टी की मिली है कमियां, केजीएस को कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए। भोजपुरी गायक और बीजेपी के नेता पवन सिंह ने सम्राट चौधरी से मुलाकात की, पवन सिंह ने कहा सम्राट चौधरी से बिहार के विकास और कलाकारों को लेकर चर्चा की गई। बिहार में साहिबगंज से बीजेपी के विधायक राजू सिंह गैरे रातन हत्या के मामले में दोषी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, 9 जून को सजा पर बहस होगी। उत्तर 24 परगना में टीएमसी विधायक मदन मित्रा को विरोध का सामना करना पड़ा, पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टीएमसी विधायक पर अंडे फेंके। पश्चिम मिदनापुर में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, पुलिस ने पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक सुजय हाजरा को जमीन घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता में एक और तृणमूल कांग्रेस पार्षद बापिदित्य दास गुप्ता को रंगदारी के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है, मामले में जांच जारी। तेलंगाना में फर्जी सरकारी दस्तावेज केस में वाईएसआरसीपी के पूर्व विधायक ब्रह्मन नायडू गिरफ्तार किए गए, मामले की जांच जारी। दिल्ली में अवैध निर्माण पर रेखा गुप्ता सरकार का सख्त एक्शन, 6 दिनों के भीतर 114 प्रॉपर्टीज को सील किया गया। राजकोट में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, यूपी में सूर्या की हत्या की घटना को बताया फ्रेंड जिहाद, दक्षिण गुजरात में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण पर दिया बड़ा बयान। गुजरात के राजकोट पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, 7 जून तक हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन। सूरत में 100 से ज्यादा घरों के डिमोलिशन को लेकर विवाद, बीजेपी के नेता ने की जांच की मांग, पुलिस ने गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए गए। पीलीभीत में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी।
बाराबंकी में टेम्पो और स्कूटी के बीच में जोरदार टक्कर हुई, तीन भाई बहनों की मौके पर मौत की खबर। जून के तीसरे हफ्ते में दिल्ली पहुंचेगा मानसून, मौसम विभाग ने जानकारी दी, चार दिन लेट से केरलम पहुंचा है मानसून। पश्चिम मध्य और मध्य पूर्व अरब सागर, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में प्रवेश कर चुका है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आईएमडी के मुताबिक अगले तीन दिनों में मानसून पूर्वोत्तर के सभी राज्यों तक पहुंचने की उम्मीद है, अगले 10 से दिनों में बिहार, झारखंड और ओडिशा भी पहुंचेगा मानसून। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी है, कई जिलों में गिरे हैं ओले, बिहार में आंधी और बारिश के बाद तापमान गिरा। गुजरात को छोड़कर देश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई, कई राज्यों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ओडिशा के बालंगिरी में आंधी बारिश से तबाही हुई, चलती बाइक पर पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, दो लोग घायल हुए। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में जोरदार बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड जारी है, चारों ओर बर्फ की सफेद चादर नजर आई। दक्षिण के कई राज्यों में बारिश, हैदराबाद में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। कर्नाटक में भी कई शहरों में मूसलाधार बारिश हुई, धारवाड़ में भारी बरसात के बाद जल जमाव से दिक्कतें। केरल में भी मानसूनी बारिश तेज हो गई है, कन्नूर में गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कतें। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में जेसीबी से खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई, मरम्मत का काम जारी। दिल्ली में एक दुकान में लगी थी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर काबू पाया, लाखों के नुकसान की खबर। सूरत के एसबीआई बैंक में 50 लाख रुपए की डकैती हुई, मामले की लूटकांड का मास्टरमाइंड सूरत लाया गया, अब तक चार की गिरफ्तारी। सूरत में फिल्मी स्ट्राइप में लाखों की लूट हुई, तीन आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया, नौकरी से निकाले गए पूर्व कर्मचारी ने रची थी लूट की साजिश। यूपी के बांदा में आरोपी की 24 लाख रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया, आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज। ओडिशा में आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 5 आलीशान मकान, नकदी और जेवर बरामद किए गए। सुपौल में इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके से एसएसबी के जवानों ने 1733 किलो गांजा बरामद किया है, तस्वीरें सामने आई। गोरखपुर के साथ युवक नदी में बना रहे थे रील, डूबने से दो युवकों के मौत की खबर। रावली में तालाब में डूबने से तीन नाबालिग बच्चों की मौत की खबर आई, गांव में पसरा है मातम। अलीगढ़ में बदमाशों ने सरेरा महिला के पैर में गोली मारी थी, वारदात के बाद आरोपी फरार हुए, महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरिद्वार में चलती बस में लगी थी भीषण आग, कोई हताहत नहीं हुआ। गुरुग्राम में क्रेडिट कार्ड के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया, 5 गिरफ्तार, दिल्ली के एक फ्लैट से चलाया जा रहा था फर्जी कॉल सेंटर। केरल के वायनाड में एक स्कूल में 164 छात्र बीमार, उल्टी बुखार के बाद 30 बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए गए। एमपी के रतलाम में वाटर पार्क की ओट में अवैध स्पा का खुलासा किया गया, 3 विदेशी युवती और एक स्थानीय युवक को पूछताछ के लिए पुलिस लेकर आई था। मरने के पालमपुर में छात्र की संदिग्ध मौत के बाद कमरे से इंजेक्शन और नशीली दवाइयां बरामद की गई। मथुरा, वृंदावन और बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने के बीच ही एक श्रद्धालु की मौत की खबर, अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद जान गई, मध्य प्रदेश का रहने वाला था मृतक।

0: इंदौर के विधुनगर कैफे हत्याकांड का खुलासा हुआ, पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के रोहतास में प्रेम प्रसंग में 6 बच्चों की मां की पीट पीट कर हत्या, शादीशुदा प्रेमी पर हत्या के आरोप लगे। कानपुर में प्रेमिका की हत्या करने वाले अस्पताल संचालक ने माफी मांगी, गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने निकाला था तीनों ही हत्यारों का जुलूस। पंजाब के नवांशहर में 16 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या की गई, मृतक की मां के आशिक पर आरोप है। सूर्या हत्याकांड के बाद अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई, गाजियाबाद के इंदिरापुरम और लूनी में 2 मदरसों को सील किया गया। देहरादून में परीक्षा में नकल से रोकने पर बवाल हुआ, शिक्षक के साथ पुलिसकर्मी ने मारपीट कर डाली, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गर्भवती प्रेमिका की हत्या के आरोपी का सीतापुर पुलिस ने एनकाउंटर किया, लखनऊ में मिली थी गर्भवती छात्रा की लाश। यूपी के चंदौली में साइकिल सवार की गोली मारकर हत्या से सनसनी हमलावर की तलाश जारी। हरियाणवी स्टेज डांसर डिंपल चौधरी के साथ यूपी के हाथरस में बदसलू की, डिंपल चौधरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी, 3 जून को हुआ था उस कार्यक्रम। एम्स भुवनेश्वर में डॉक्टर्स का कमाल, 47 साल की एक महिला के हाथ से अलग किया है 7 किलोग्राम का बड़ा ट्यूमर। डल झील में पर्यटकों की बढ़ती हुई आमद से शिकारा सवारी की मांग बढ़ गई, स्थानीय नाव चालकों ने कारोबार को लेकर नई रफ्तार की बात कही। नैनीताल में नन्हे जादूगर की प्रतिभा के मुरीद हुए देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा, मासूम बच्चे की मदद करने की इच्छा जताई। जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने आम महोत्सव का आयोजन किया, 30 प्रकार के आमों की लगाई गई थी प्रदर्शनी। पूर्वा एक्सप्रेस से 95 कछुओं की तस्करी नाकाम हुई, बंगाल के रानीगंज स्टेशन पर यूपी का तस्कर गिरफ्तार किया गया। फ्रेंच ओपन 2026 का महिला सिंगल्स खिताब पर रूसी खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा का कब्जा, पोलैंड की माजा च्वालिंस्का को सीधे सेटों में हराया। 19 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी है, 1992 में मोनिका सेलेब के बाद सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी। 19 साल की रूसी खिलाड़ी का यह पहला ग्रैंड स्लैम अवार्ड है। मीरा एंड्रीवा 2005 के बाद जन्मी पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले ही दिन खेल खत्म हुआ, भारत का स्कोर 3 विकेट पर 368 रन। 103 रन बनाकर नाबाद है टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के, राहुल भी जड़ चुके हैं शतक। भारत ने तीसरा हॉकी 18 हॉकी एशिया कप जीत लिया है, 4-1 से शानदार स्कोर के साथ डिफेंडिंग चैंपियन जापान को हराया। भारत ने तीसरी बार अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब अपने नाम किया, आशीष तानी पूर्ति ने लगाई थी गोल की हैट्रिक। भारत की बेटियों ने बढ़ाया मान, अंडर 18 हॉकी एशिया कप में जीता है ब्रॉन्ज, कोरिया को चारों खाने चित करके 3-0 से मात दी। संदीप कुमारी को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच, मुकाबले के दूसरे ही मिनट में शानदार गोल दागकर भारत को दिलाई थी बढ़त। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों को बधाई दी, देश के लिए बताया है गर्व का पल। डॉन 3 विवाद के बाद ऋतिक रोशन की पोस्ट से हलचल है, पोस्ट से फैंस लगा रहे हैं अंदाजा कि एक्टर को डॉन 3 के लिए मनाने की कोशिशें लगातार कर रही हैं फरहान। रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 में इस बार अक्षय कुमार के बाद रणबीर सिंह की भी एंट्री की खबरें हैं, सरप्राइज कैमियो में रणबीर का होना संभव है। हुमा कुरैशी की नई फिल्म का टीजर जारी किया गया, एक महिला सीरियल किलर की इर्द गिर्द है ये पूरी कहानी। फिल्म गवर्नर से पहले मनोज वाजपेयी ने फैंस के लिए शेयर किया है खास मैसेज, 12 जून को रिलीज होगी ये फिल्म। नेहा कक्कड़ ने अपना जन्मदिन मनाया, परिवार के साथ सेलिब्रेशन की तस्वीरों को शेयर भी किया। दक्षिणी लबनान में कई जगहों पर जोरदार हवाई हमलों की खबर सामने आई, जिसके बाद मरजायून इलाके में धुएं के गुबार देखे गए। लिबनानी सेना के मुताबिक खारदाली नबातिये रोड पर एक सैन्य वाहन पर इजरायली हमले में 2 अधिकारी और एक सैनिक की मौत हो गई। इजरायली सेना ने दावा किया कि गाड़ी को निशाना बनाया गया क्योंकि खतरे के संकेत मिले थे और उसी इलाके में हिजबुल्ला की गतिविधियों की आशंकाएं थी। 2 अमेरिकी एयरफोर्स फाइटर जेट्स ने मिडिल ईस्ट के ऊपर पेट्रोलिंग की, यूएस के सेंट्रल कमांड ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। बोलिविया में 3 हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हुए, सुरक्षा बलों ने एक हाईवे पर प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कार्रवाई की। अमेरिका ईरान में फिर से भीषण जंग, ईरान ने कुवैत और बहरीन पर 7 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला। कतर बहरीन ने ईरानी मिसाइल हमले की कड़ी निंदा की है। बहरीन विदेश मंत्रालय ने संप्रभुता का खुला उल्लंघन और खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताया। आईआरजीसी के मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने धमकी दी, कहा युद्ध जारी रहा तो नौ सैनिक नाकेबंदी नहीं हटाई जाएंगे और हम युद्ध को हिंद महासागर, लाल सागर और भूमध्य सागर तक फैला देंगे। ईरान से संवर्धित यूरेनियम को पहली दूसरे देश भेजने के दावे को खारिज किया गया है, ईरानी मीडिया का दावा। दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हमला जारी, हमले की चपेट में आया था सैन्यवान, लेबनान के 2 सैन्य अधिकारी और एक अन्य की मौत की खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

और ये भी महत्वपूर्ण है कि जो रत्न आप पहन रहे हैं वो कितने समय तक पहनना चाहिए। रत्नों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान को अगर लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंता समाप्त हो जाएगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है, आ सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो आप कोई रत्न पहनने जा रहे हैं या किसी को पहनाने जा रहे हैं तो रत्न का वजन कितना होना चाहिए, कितने कैरेट का हो या कितनी रत्ती का हो, इसको कैसे समझें, किन बातों का ध्यान दें। देखिए, रत्न पहनते समय ग्रहों की स्थिति और आवश्यकता, किसी ग्रह को रत्न की ऊर्जा की कितनी जरूरत है, ये दोनों देखना होगा, तब जाकर आप रत्न के वजन का अनुमान लगा सकते हैं। रत्न का वजन कितना होना चाहिए वो ग्रहों के अंश के आधार पर करें, ग्रहों की डिग्री के आधार पर करें। बहुत सारे लोग व्यक्ति के वजन के आधार पर रत्न पहनाते हैं कि व्यक्ति ज्यादा मोटा है, ज्यादा वजन वाला है तो बड़ा रत्न पहना दो, और व्यक्ति दुबला पतला है, कम वजन वाला है तो छोटा रत्न पहना दो, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रहों की डिग्री पर रत्न पहनाया जाता है, किसी रत्न की रश्मि की, किसी रत्न की एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता है तो बड़ा रत्न पहनिए, और किसी रत्न की ऊर्जा की कम आवश्यकता है तो छोटा रत्न धारण करिए। जैसे आपको मंगल का रत्न पहनाना है, मंगल कुंडली में 8-9 डिग्री का है, कमजोर है, क्योंकि मंगल ताकतवर होते हैं लगभग 27-28 डिग्री पर। अब मंगल 8-9 डिग्री के हैं, कमजोर हैं।

पहनाना होगा। और मंगल अगर 27-28 डिग्री के हैं, पर्याप्त मजबूत हैं, और तब भी अगर मूंगा पहनना है तो 5-6 रत्ती का मूंगा पहना सकते हैं। यानी ग्रह की डिग्री कितनी है और उसकी जरूरत कितनी है, उसके आधार पर रत्न का वजन डिसाइड होता है। रत्नों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, अपने रिश्तों का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बनेंगे, इस समय विवाद तय हो सकता है। आज किसी फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ के योग हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न स्निग्धा ने लिखा है कोलकाता पश्चिम बंगाल से। इनकी जन्म की तारीख है 8 अक्टूबर सन 2000। जन्म का समय सुबह के 5:55 और जन्म का स्थान है कोलकाता। स्निग्धा पूछ रही हैं कि मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, किस तरह का करियर मेरे लिए आगे जीवन में बेहतर होगा। स्निग्धा, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, कला संगीत या क्रिएटिव फील्ड में जाएं, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता जल्दी मिलेगी। और आपकी कुंडली में मई 2027 के बाद करियर में सफलता की संभावनाएं बेहतर दिखाई दे रही हैं। एक मोती बनवा के पहन ले, लगभग 7-8 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। देखिए, बहुत सारे लोग रत्न पहनते हैं, सालों साल तक पहने रहते हैं। पता चला 20 साल से मूंगा पहन रहे हैं, 10 साल हो गया मोती पहन रहे हैं। क्या रत्नों की एक्सपायरी होती है? कुछ समय के बाद रत्नों को बदलना जरूरी है। क्या रत्न बदलते रहना चाहिए? देखिए, रत्नों की एक ऊर्जा होती है, रत्नों की एक एनर्जी होती है जो शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करती है, संतुलित करती है। कुछ समय है रत्नों की एक एनर्जी होती है जो शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करती है, संतुलित करती है। कुछ समय बाद रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ मिल जाती है, और जब रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा एक हो जाती है तब वो रत्न शरीर के लिए इम्यून हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। ऐसी दशा में रत्न को या तो बदल देना चाहिए या रत्नों को दोबारा से ऊर्जावान कर लेना चाहिए, रत्नों को दोबारा से रिचार्ज कर लेना चाहिए। यानी आप अगर लंबे समय तक कोई रत्न पहनेंगे, एक ही रत्न
तो वो रत्न कुछ सालों के बाद काम करना बंद कर देगा। ऐसी स्थिति में आपको रत्न समय पूरा होने पर बदल देना चाहिए या रत्नों को दोबारा से गंगा जल में डुबाकर, कच्चे दूध में डुबाकर, मंत्र जप करके दोबारा से उसमें एनर्जी भर देनी चाहिए। किसी रत्न को पहनने का समय क्या है, एक्सपायरी क्या है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी में समस्या दूर होगी, खान पान का ध्यान बनाए रखें, अनाज का अगर आज दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपको बताते हैं कि आप कोई भी रत्न अगर धारण करते हैं तो कितने समय तक किसी रत्न को पहनना चाहिए। जब आप मोती पहनते हैं तो लगभग 2 से 2.5 साल तक मोती का प्रभाव बना रहता है, इसके बाद मोती बदल देनी चाहिए। मूंगा 3 से 4 साल तक या ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक ठीक काम करता है, इसके बाद मूंगा बदल देना चाहिए। माणिक्य 5 साल से 7 साल तक ऊर्जावान रहता है, तब तक माणिक्य अच्छा काम करता है, इसके बाद माणिक्य बदल देना चाहिए। पन्ना लगभग 5 साल तक काम करता है और बहुत अच्छा अगर पन्ना है तो 7-8 साल तक काम करेगा, इसके बाद पन्ना बदल देना चाहिए। पीला पुखराज, हीरा और नीलम 10 साल से ज्यादा, कभी कभी 20 साल तक प्रभावशाली रहते हैं। ये लंबे समय तक अपनी एनर्जी देते रहते हैं। गोमेद और लहसुनिया 2.5 से 3 सालों तक अच्छा काम करते हैं, इसके बाद इनको बदल देना चाहिए। जब आप रत्न बदल देते हैं तो उसके बाद नया रत्न अपनी जरूरत के हिसाब से पहनिए। पुराना रत्न आप शुद्ध करके किसी और को प्रयोग में लाने के लिए दे सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा लाल।

योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का अगर आज दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

रखें, परिवार को लेकर चिंता हो सकती है, आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई रत्न आपने धारण किया है और वो टूट जाता है तो दोबारा से उस रत्न के जगह कोई और रत्न नहीं पहनना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, आप कोई रत्न धारण करते हैं और अगर आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो अक्सर उसके पहले रत्न टूट जाता है, आपको सूचना देता है और आपको समस्या से बचा लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रत्न आपको दोबारा नहीं पहनना चाहिए। जो रत्न टूट गया है उसको तो जल प्रवाहित कर दीजिए, लेकिन उसी तरह का दूसरा रत्न भी आप बनवा करके पहन सकते हैं। नीलम के बारे में ये बात जरूर है कि अगर आपने नीलम पहना है और नीलम खंडित हो जाता है तो दोबारा नीलम पहनने के पहले खूब विचार करके, खूब सलाह लेके तभी धारण करिएगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं।

चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 5, परिवार में शुभ कार्य होंगे। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखिएगा। और नंबर 9, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर आरती करिएगा। ऐसा करने से जीवन में, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनिल तिवारी जी ने हमें लिखा है, जबलपुर मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। 11 फरवरी 1980 का जन्म है। शाम के 7:45 जन्म स्थान है जबलपुर। अनिल जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, पैसे की दिक्कतें परेशान कर रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। देखिए, आपकी कुंडली में जो शनि की वर्तमान स्थिति है उसकी वजह से थोड़ा सा पैसे का प्रेशर बन गया है, लेकिन मामला इतना गंभीर नहीं है, जीवन आपका आराम से चल रहा है। हाँ, ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, तो ज्यादा पैसा आने की, बेहतर पैसा आने की संभावना मार्च 2027 के बाद दिखाई देती है। उसके बाद आपका जीवन ज्यादा बेहतर होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज शाम के समय श्री सूक्तम का पाठ करें या श्री सूक्तम सुने तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से जाएं कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता जरा सा खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो अपने साथ एक लाल फूल रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा।
अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा कर्क राशि वालों को। चिंताएं बढ़ सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है तो आज या इस समय में किसी नए काम की शुरुआत ना करें। आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल का और गुड़ का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, सीबीआई ने आज देश के अलग अलग शहरों में छापेमारी की और यह कार्रवाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस बैंक से जुड़े 661 करोड़ रुपए के सरकारी फंड के गबन के मामले में की गई है। सीबीआई ने पंचकुला, चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर में कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस छापेमारी के दौरान हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के ठिकानों पर और साथ ही नोएडा के एक कंसल्टेंसी फर्म और उसके निदेशक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार छापेमारी सीबीआई की तरफ से की जा रही है। 661 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और बड़ी और अहम खबर अमेरिका से ओहियो से, जहां पर एक फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी की खबर आई और इस गोलीबारी में कम से कम 12 लोगों के जख्मी होने की जानकारी है। इस फायरिंग की घटना के बाद पुलिस हमलावर की तलाश के लिए लगातार अभियान में जुटी हुई है। जानकारी यह मिली है कि 2 जख्मी लोगों की हालत बड़ी गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां गोलीबारी को अंजाम दिया गया है। और अभी खबर है अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बारे में। एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए हैं और जानकारी के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान के रडार साइट को निशाना बनाया है। एक दिन पहले ईरान ने हॉर्मुज की ओर 4 ड्रोन्स दागे थे। दावा यह किया गया था उन सभी ड्रोन्स को मार गिराने के बाद अमेरिका ने अब ईरान के रडार साइट्स पर हमला बोला है। तो जिस युद्ध के खत्म होने का इंतजार पूरी दुनिया को है, जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद और चोक्ड है, लेकिन अभी तक ये युद्ध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा।

0: पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया है। इस मंजर ने डरा दिया है कि खाड़ी में फिर से महायुद्ध 2.0 की लपटें सुलगने लगी हैं। इस माहौल ने बता दिया है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग छिड़ने वाली है। दहशत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला चुका है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। ईरान के सर्विलांस रडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के रडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। अमेरिका ने दावा किया कि 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल टारगेट तक पहुंची ही नहीं। मतलब साफ है कि जो सीज फायर फिलहाल अस्थाई है, वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में झड़प शुरू हो चुकी है। यह चिंगारी किसी भी वक्त भीषण युद्ध का शक्ल ले सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: तो अमेरिकी हमले को लेकर ईरान ने बयान जारी किया है और इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। ईरान की तरफ से कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मूलभूत सिद्धांतों का यह उल्लंघन है।

0: रूस ने यूक्रेनी शहर जैपोरेजिया पर भीषण अटैक किया, वो भी तब जब शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए सीज फायर की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बातचीत करने के लिए जंग रोकने की जरूरत नहीं। रूस के ताजा हमलों में जैपोरेजिया के रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, 16 घायल हैं, वाहनों और नागरिक बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि बातचीत के लिए सीज फायर की जरूरत ही नहीं है।
1: नए населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. Но за последнее время, повторяю, почти 2500 квадратных километров.
0: इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति को खुला पत्र लिखा है और सीधे वार्ता का प्रस्ताव रखा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी नेताओं के बीच बैठक की पहल को सराहा है और इसे अच्छी पहल बताया। आर पार की जंग और शांति वार्ता की कोशिशों के बीच दोनों देशों की तरफ से अच्छी पहल हुई है। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे के 185 कैदियों की अदला बदली की है, जिसे शांति की शुरुआत के लिए पहला बड़ा कदम बताया जा सकता है। हालांकि कैदियों की अदला बदली पहले भी हो चुकी है, लेकिन 4 साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग अभी तक थमी नहीं। आज तक ब्यूरो
2: तो 4.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी हुई जंग में। और आपको यह भी बता दें कि रूसी राष्ट्रपति साफ कर चुके हैं कि शांति वार्ता के लिए युद्ध रोकने की जरूरत नहीं है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब जेलेंस्की ने खुला पत्र लिखकर रूसी राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। तो दो मोर्चे युद्ध के और पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई इसी पर कि कब विश्व में शांति आएगी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

देश को महंगाई का झटके पे झटका, घरेलू गैस सिलेंडर 30 रुपए महंगा हुआ, कांग्रेस का हमला, महंगाई मैन मोदी ने फिर से चलाया चाबुक, सरकार का दावा दुनिया में सबसे सस्ती गैस भारत में। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर एक्शन, जबरदस्ती वसूली केस में पूर्व विधायक मिदनापुर से गिरफ्तार, कोलकाता में हिरासत में ले गए टीएमसी पार्षद, एमएलए मदन मित्रा पर कमारहाटी में अंडे चले। बंगाल में अवैध मदरसों के हिसाब किताब की तैयारी, सरकार ने मदरसों का शुरू कर दिया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगी गई रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच। पटना में खान कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारियां, फायर सेफ्टी इंतजाम पूरे न होने के आरोप, प्रशासन का सेंटर सील करने का प्लान। और नीट री एग्जाम के प्रश्न पत्र लीक के दावों को एनटीए ने किया खारिज, कार्रवाई की दी चेतावनी, महानिदेशक ने कहा क्वेश्चन पेपर लाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल।

0: फिर से बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर हो गई है 942 रुपए। नई दरें आज से लागू। पिछले 3 महीनों में दूसरी बार है जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। लगातार बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का वार, कहा महंगाई मैन मोदी का चाबुक एक बार फिर से चल गया। जनता से वसूली करो, दोस्त की तिजोरी भरो। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन। देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को बढ़ाने पर चर्चा। वैश्विक संकट के बीच भारत की नई आर्थिक रणनीति, प्रधानमंत्री मोदी और ईएसी की अहम बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस। यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टी पर बरसे हैं सीएम योगी, कहा 2017 से पहले यहां दुर्गा पूजा के वक्त हुआ दंगा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया, बोले राम का नाम लेने पर प्रतिबंध था, चलती थी गोलियां, भगवान राम का भक्त अयोध्या भी नहीं जा सकता था। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सीपीएम ने बीजेपी के साथ डील के आरोपों पर कांग्रेस से सफाई मांगी। 8 जून को कांग्रेस ने बुलाई है बैठक, डीएमके ने मीटिंग में नहीं जाने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधा, कहा कुछ ताकतें देश के युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर धकेलने की कोशिश में हैं। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके पर बीजेपी के अध्यक्ष का निशाना, कहा विदेशों में बैठे कुछ लोग सोचते हैं कि भारत के युवाओं को दिशा दे देंगे। बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर के दावे झूठे हैं, दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान में तमाम बातें कही। अखिलेश यादव से लेकर केजरीवाल तक कांग्रेस जनता पार्टी के बहाने सरकार को घेरते हुए नजर आए, कहा युवाओं में भारी गुस्सा है, आवाजें सुननी होंगी। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन, वंचित वर्गों के मुद्दों को उठाएगी पार्टी। रीनीट पेपर लीक के मामले में पूरी तरह से खबरों को फर्जी बताया गया, एनटीए ने जारी की है सख्त चेतावनी। 8 जून को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पहुंचे दिल्ली। 8 जून को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में डीएमके नहीं होगी शामिल। बंगाल में मदरसों का सर्वे शुरू करने का निर्देश दिया गया, 5 जुलाई तक जिला स्तर पर मांगी गई रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने ममता के लिए यूसुफ पठान की लोकसभा सीट छोड़ने के संदेश को पहुंचाने की बात से इनकार किया, गांगुली ने कहा ममता बनर्जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। पटना कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में फैजल खान आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, वकील का कहना है कि उन्हें सोमवार को अग्रिम जमानत मिलेगी। पटना में 8 जून को ऑटो चालकों की हड़ताल, पूरे शहर में सेवाएं प्रभावित होंगी। पटना में केजीएस कोचिंग में फायरिंग सेफ्टी की कमियां काफी पाई गई हैं, केजीएस को कमियां दूर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता पवन सिंह ने सम्राट चौधरी से मुलाकात की, पवन सिंह ने कहा सम्राट चौधरी से विकास के साथ ही कलाकारों को लेकर भी चर्चा की गई। बिहार के साहिबगंज से बीजेपी के विधायक राजू सिंह गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 9 जून को सजा पर बहस करेगी। बक्सर वरुणा आरओबी संधा पर बिहार सरकार का स्पष्टीकरण, बिना कमीशनिंग शुरू हुआ था यातायात। निर्माणाधीन आरओबी में आंशिक घसाव देखा गया, मुख्य संरचना सुरक्षित है, जांच और मरम्मत का काम जारी। शिवपुरी में सोशल मीडिया पर सोने और पैसों के साथ फोटो डालना पड़ा महंगा, चोरों ने दीवार पर लगे हुए तार काट डाले, लाखों की चोरी को अंजाम दिया। उत्तर 24 परगना में टीएमसी विधायक मदन मित्रा को विरोध का सामना करना पड़ा, प्रदर्शनकारी लोगों ने टीएमसी के विधायक पर अंडे फेंके। पश्चिम मिदनापुर में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका, पुलिस ने पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुजय हाजरा को जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया है। कोलकाता के में एक और तृणमूल कांग्रेस पार्षद बप्पादित्य दास गुप्ता को रंगदारी के मामले में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तेलंगाना में फर्जी सरकारी दस्तावेज केस में वाईएसआरसीपी के पूर्व विधायक ब्रह्म नायडू गिरफ्तार किए गए, मामले में जांच जारी। दिल्ली में अवैध निर्माण पर रेखा गुप्ता सरकार सख्त है, 6 दिनों के भीतर 114 प्रॉपर्टीज को सील किया गया। राजकोट में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, यूपी में सूर्य की हत्या का घटना को बताया फ्रेंड जिहाद, दक्षिण गुजरात में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण पर बयान दिया। गुजरात के राजकोट पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, 7 जून तक हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन। सूरत में 100 से ज्यादा घरों के डिमोलिशन को लेकर विवाद है। बीजेपी नेता ने की जांच की मांग। कांग्रेस ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। पीलीभीत में बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी की गई। बारामती में टेम्पो स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हुई, 3 भाई बहनों की मौके पर मौत। जून के तीसरे हफ्ते में दिल्ली पहुंचेगा मानसून। मौसम विभाग ने जानकारी दी है, 4 दिन लेट से केरलम पहुंचा है मानसून। पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में प्रवेश कर चुका है दक्षिण पश्चिम मानसून। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों में मानसून पूर्वोत्तर के सभी राज्यों तक पहुंचने की उम्मीद है। अगले 10 दिनों में बिहार, झारखंड और उड़ीसा पहुंचने की संभावना। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी है, कई जिलों में कल गिरे थे ओले। बिहार में आंधी और बारिश से तापमान भी गिरा। गुजरात को छोड़कर देशभर में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई, कई राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ओडिशा के बालंगिरी में आंधी बारिश से तबाही, चलती बाइक पर गिर गया था एक पेड़, शख्स की मौत हुई है, 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में जोरदार बर्फबारी से कड़ाके की ठंड, चारों ही तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। दक्षिण के कई राज्यों में बारिश, हैदराबाद में झमाझम बरसात में मौसम सुहाना हुआ। कर्नाटक में भी कई शहरों में मूसलाधार बारिश हुई, धारवाड़ में भारी बरसात के बाद जल जमाव से दिक्कत। केरल में भी मानसूनी बारिश तेज हुई, कन्नूर में गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत हुई। तमिलनाडु में रामनाथपुरम में जेसीबी से खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, मरम्मत का काम जारी। दिल्ली में एक दुकान में भीषण आग लग गई थी, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया, लाखों का नुकसान। सूरत के एसबीआई बैंक में 50 लाख रुपए की डकैती, मामले में लूट कांड का मास्टरमाइंड सूरत लाया गया, अब तक 4 की गिरफ्तारी। सूरत में फिल्मी स्टाइल में लाखों रुपए की लूट की गई, 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। नौकरी से निकाले गए पूर्व कर्मचारी ने साजिश रची थी। यूपी के बांदा में आरोपी की 24 लाख रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया, आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज। ओडिशा में आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 5 आलीशान मकान, नकदी और जेवर बरामद किए गए। सुपौल में इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके में एसएसबी के जवानों ने 1733 किलो गांजे को बरामद किया, तस्वीरें सामने आई। गोरखपुर में 7 युवक नदी में बना रहे थे रील, डूबने से 2 युवकों की मौके पर जान चली गई। अरावली में तालाब में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत की खबर, गांव में पसरा हुआ है मातम। अलीगढ़ में बदमाशों ने सरेराह महिला के पैर में गोली मारी थी, वारदात के बाद बदमाश फरार हुए, अस्पताल में महिला को भर्ती करवाया गया। हरिद्वार में चलती हुई बस में भीषण आग लगी थी, कोई हताहत नहीं हुआ। गुरुग्राम में क्रेडिट कार्ड के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया, 5 की गिरफ्तारी। दिल्ली में एक फ्लैट से चलाया जा रहा था फर्जी कॉल सेंटर। केरल के वायनाड में एक स्कूल में 164 छात्र बीमार हुए, उल्टी बुखार के बाद 30 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एमपी के रतलाम में वाटर पार्क में अवैध स्पा का खुलासा किया गया, 3 विदेशी युवती और एक स्थानीय युवक को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर गई। मंडी के पालमपुर में छात्र की संदिग्ध मौत हुई, कमरे से मिले इंजेक्शन और नकली दवाइयां। एम्स भुवनेश्वर में डॉक्टर्स का कमाल, 47 साल की एक महिला के साथ पुलिस ने उसके हाथ से 7 किलोग्राम का ट्यूमर अलग किया। डल झील में पर्यटकों की बढ़ती हुई आमद से शिकारा सवारी की मांग बढ़ गई है, स्थानीय गांव के चालकों नाव के चालकों ने कारोबार को नई रफ्तार मिलने की बात कही। नैनीताल में नन्हे जादूगर की प्रतिभा के मुरीद हो गए देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा, मासूम बच्चे की मदद करने की इच्छा जताई है। जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने आम महोत्सव का आयोजन किया, 30 प्रकार के आमों की लगाई गई थी प्रदर्शनी। पूर्व एक्सप्रेस से 95 कछुओं को बरामद किया गया, बंगाल के रानीगंज स्टेशन पर यूपी का तस्कर गिरफ्तार हुआ। फ्रेंच ओपन 2026 का महिला सिंगल्स खिताब पर रूसी खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा का कब्जा, पोलैंड की माजा च्वालिन्स्का को सीधे सेटों में हराया। 19 वर्षीय रूसी टेनिस खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनी, 1992 में मोनिका सेलेब ने सबसे कम उम्र की चैंपियन जीती थी। 19 साल की रूसी खिलाड़ी का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, मीरा एंड्रीवा 2005 के बाद जन्मी पहली खिलाड़ी है जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले दिन का खेल खत्म हुआ, भारत का स्कोर रहा 3 विकेट पर 368 रन। 103 रन बनाकर नाबाद है टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल ने भी जड़ा अर्धशतक, केएल राहुल ने शतक जड़ा। भारत ने तीसरा अंडा 18 हॉकी एशिया कप जीत लिया है। 4-1 के शानदार स्कोर के साथ डिफेंडिंग चैंपियन जापान को हराया। भारत ने तीसरी बार अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। आशीष तानी पुर्ती ने लगाई थी गोल की हैट्रिक। भारत की बेटियों ने बढ़ाया मान, अंडर 18 हॉकी एशिया कप में जीता है ब्रॉन्ज। कोरिया को चारों खाने चित्त कर दिया, 3-0 से मात दी। संदीप कुमारी को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। मुकाबले के दूसरे ही मिनट में शानदार गोल दागकर भारत को दिलाई बढ़त। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों को दिया बधाई, देश के लिए गर्व का पल बताया। डॉन 3 विवाद के बीच ऋतिक रोशन का पोस्ट हलचल मचा रहा है। पोस्ट में फैंस लगा रहे हैं अंदाजा, एक्टर को डॉन 3 के लिए मनाने की कोशिशें जारी हैं। रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 में, इस बार अक्षय कुमार के बाद रणवीर सिंह की भी एंट्री है। सरप्राइज कैमियो में रणवीर नजर आ सकते हैं। हुमा कुरैशी की नई फिल्म लगा रहे हैं अंदाजा, एक्टर को डॉन 3 के लिए मनाने की कोशिशें जारी हैं। रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 में, इस बार अक्षय कुमार के बाद रणवीर सिंह की भी एंट्री है। सरप्राइज कैमियो में रणवीर नजर आ सकते हैं। हुमा कुरैशी की नई फिल्म का टीजर जारी किया गया। एक महिला सीरियल किलर के इर्द गिर्द घूमती है पूरी कहानी। फिल्म गवर्नर से पहले मनोज वाजपेयी ने फैंस के लिए शेयर किया है खास मैसेज। 12 जून को रिलीज हो रही है फिल्म। नेहा कक्कड़ ने मनाया अपना 38वां बर्थडे, परिवार के साथ सेलिब्रेशन की तस्वीरों को शेयर किया। दक्षिणी लेबनान में कई जगहों पर जोरदार हवाई हमलों की खबर सामने आई, जिसके बाद मारजायून इलाके में धुएं के बड़े गुबार देखे गए। लेबनानी सेना के मुताबिक खारदाली नाप्यो रोड पर एक सैन्य वाहन में इजरायली हमले में 2 अधिकारियों और एक सैनिक की मौत की खबर है। इजरायली सेना ने दावा किया कि गाड़ी को निशाना बनाया गया जो खतरे के संकेत मिले थे और उस इलाके में हिजबुल्ला की गतिविधियों की आशंकाएं थी। 2 अमेरिकी एयरफोर्स फाइटर जेट्स ने मिडिल ईस्ट के ऊपर पेट्रोलिंग की। यूएस सेंट्रल कमांड ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। बोलीविया में 3 हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। सुरक्षा बलों ने हाईवे से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कार्रवाई की। अमेरिका ईरान में फिर से भीषण जंग शुरू हुई। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर 7 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला था। कतर और बहरीन ने ईरानी मिसाइल हमले की कड़ी निंदा की है। बहरीन विदेश मंत्रालय ने संप्रभुता का खुला उल्लंघन और खाड़ी क्षेत्र के लिए सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताया। आईआरजीसी के मेजर जनरल मोहसिन रजाई की धमकी, कहा युद्ध जारी रहा, नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाएगी तो हम युद्ध को हिंद महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर तक फैला देंगे। ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को किसी दूसरे देश भेजने के दावे को खारिज कर दिया, ईरानी मीडिया का दावा। दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हवाई हमला जारी। हमले की चपेट में आया था सैन्य वाहन। लेबनान के 2 सैन्य अधिकारी और एक सैनिक भी इसमें मारे गए। और इस वक्त बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, फैजल खान के केजीएस कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी नियमों का पालन न होने का मामला सामने आया है। बिहार अग्निशमन सेवा के डीआईजी हैं मनोज कुमार, उन्होंने ये जानकारी दी है, जिनके मुताबिक केजीएस के कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी को लेकर कमियां पाई गई और इन कमियों को दूर करने का निर्देश दे दिया गया है। अगर इन कमियों को इस सेंटर के द्वारा ठीक नहीं किया जाता, इन कमियों को दूर नहीं किया जाता तो अन्य बिल्डिंग्स की तरह बड़ी कार्रवाई की जाएगी और आपको बता दें कि उसे सील भी किया जा सकता है।
1: देखिए, जांच करने के जो प्रक्रिया है उसमें इनिशियल स्टेज होता है कि उसको जांच की जाती है, फिर उसको नोटिस किया जाता है, फिर शोकॉज किया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, ABCDEFG और H तक फॉर्म है, जिस फॉर्म के हिसाब से उन पर कार्रवाई की है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, चूंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था, उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है।
2: क्या पाया गया उस कोचिंग में
1: जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है, यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है, जो यदि वे उसका मिर्च कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं, वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन सुनिश्चित कराएं, मुझे ये नहीं, हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी कोई किसी प्रकार की कोई ट्रबल डाले। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन किया जाए ताकि आम जनों की क्षति को रोका जा सके।
2: अगर अनुपालन नहीं किया जाएगा तो क्या कोचिंग सील की जाएगी?
1: यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी, यथाविनिश प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है।
0: तो आपको बता दें कि फैजल खान उर्फ खान सर पर अब गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है, लेकिन उनकी ओर से अग्रिम जमानत की कोशिशें जारी हैं।
3: पटना में दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैजल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है। फैजल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
4: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सरेंडर करने का। पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
3: टाम्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था। घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
5: किसके ऊपर करने आया है?
6: हमारी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
3: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी Sokudo
7: Durable Pipes Fittings and Tanks A Complete Range of Sanitary Solutions
8: Akajay The number one Korean skincare brand now in India

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: In association with
2: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
3: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
4: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
1: हिंट, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबा केसरी।
5: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेर आर यू?
6: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
7: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
8: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था?
9: ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
7: 20 लोगों की जान चली गई और देखिए जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।
10: जब उसके खिलाफ आज तक का कोई आपराधिक मुकदमा न्यायालय ने कभी सजा नहीं दी, न तो कभी चोरी में, न तो डकैती में, न तो इस तरीके के। फिर एक 302 का 307 का मुकदमा उसके ऊपर है और किसी ने कहा अपहरण का मुकदमा लिखा रखा है, जैसे एसपी ने कहा। तो इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप इनकाउंटर। अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर हैं, वो कुछ छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोटर अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये फिर इसके मतलब इनका एलआईयू क्या कर रहा था? कैसे समाज के लोगों ने आंदोलन किया बताया? क्यों नहीं फोर्स लगाया इन लोगों ने? खाली जब आंदोलन हो गया तो कहेंगे आप रासुका लगा देंगे। ये तो डिटेक्टरशिप हो गई।
11: बहुत चुल मच रहा है कसम से। आज घर जाकर देहिया पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे हम।
12: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। आपका जो दर्द है सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू।
3: सियासी तलवारें बयान से निकल चुकी हैं, तंज तेज हो गया है। 2027 की तरफ बढ़ती यूपी की राजनीति में शब्द अब शस्त्र बन चुके हैं। सीएम योगी 2017 की याद दिला रहे हैं।
4: 16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था।
3: वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव योगी सरकार को महाजंगल राज का चेहरा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने लिखा, असफल मुख्यमंत्री काल में महाजंगल राज, अवैध खनन, कब्जा, हत्या, डकैती, बलात्कार। ये दो विचारों की भिड़ंत है, दो विमर्शों का युद्ध है, दो वोट बैंकों की व्यूह रचना है। योगी कहते हैं कि पहले माफिया प्रदेश को तबाह कर रहे थे। चुनावी इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में मुद्दों के साथ माहौल जीतता है, तथ्य के साथ धारणा भी जीतती है। उसी को पुख्ता करने के लिए सीएम योगी लगातार अखिलेश राज की याद दिला रहे हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर टोटी वाले तंज को तराशा है, अखिलेश की दुखती सियासी रग पर हाथ रख दिया है।
5: हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है।
3: टोटी सुनने में छोटा शब्द है, लेकिन ये यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी को कांटे की तरह चुभता है। दरअसल 9 साल पहले टोटी का विवाद यूपी में उठा था। हुआ कुछ यूं कि साल 2017 में अखिलेश यादव की सरकार गई और योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का बंगला छोड़कर गए तो नए सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उस बंगले में कुछ सुधार कराने का काम शुरू हुआ। सियासी शोर हुआ कि लखनऊ में अखिलेश बंगला छोड़कर गए तो सीएम आवास में लगी टोटी भी अपने साथ लेकर चले गए, जो आज तक सियासत के ब्लैक होल में घूम रही है। अखिलेश भी इस पर कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सीएम यानी करप्ट माउथ। विज्ञान कहता है कि किशोरावस्था में किया गया वनस्पति का अत्यधिक सेवन व्यक्ति के बोलने और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.

देश को महंगाई का झटके पे झटका, घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा। कांग्रेस का हमला, महंगाई मैन मोदी ने फिर से चलाया चाबुक। सरकार का दावा, दुनिया में सबसे सस्ती गैस भारत में। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर एक्शन, जबरदस्त जबरन वसूली केस में पूर्व विधायक मिदनापुर से गिरफ्तार। कोलकाता में हिरासत में टीएमसी के पार्षद, एमएलए मदन मित्रा पर कमारहट्टी में चले अंडे। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर खतरा। एमएलसी चुनाव में एनडीए कोटे से नहीं मिला टिकट, जेडीयू बीजेपी के उम्मीदवारों का नामांकन। पटना में खान कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, फायर सेफ्टी इंतजाम पूरे न होने का आरोप। प्रशासन का सेंटर सील करने का प्लान। और नीट री एग्जाम के प्रश्न पत्र लीक होने के दावों को एनडीए ने खारिज किया, कार्रवाई की दी है चेतावनी। महानिदेशक ने कहा क्वेश्चन पेपर लाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल।

इस वक्त जब आप अपने घरों में बैठे हैं तब पृथ्वी के दो बड़े हिस्सों में बारूद से आसमान काला होता जा रहा है। सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि क्या दुनिया इतिहास के सबसे खतरनाक मुहाने पर खड़ी है और क्या हम एक साथ दो महाविनाशक युद्ध के गवाह बनने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा वॉर बुलेटिन। आज वॉर रूम ब्रेकिंग्स में हम आपको सीधे ले चलेंगे उन मोर्चों पर जहां फैसले अब डिप्लोमेसी की मेज पर नहीं बल्कि मिसाइलों के धमाकों से हो रहे हैं। खाड़ी के समुंदर में अमेरिका और ईरान के बीच शहबाद का नया खेल शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ पुतिन के एक आदेश ने यूक्रेन को दहला दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, यूक्रेन के ड्रोन अब मॉस्को की दहलीज लांग रहे हैं। वहीं इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर चक्रव्यूह रच रहा है। शुरुआत करते हैं आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिमी एशिया से आ रही है। लेबनन में सीज फायर की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच लड़ाई अब भी जारी है। अमेरिका की मध्यस्थता में समझौता जो तैयार हुआ उस पर भी अभी सवाल है। हिजबुल्ला ने सीज फायर की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान से शांति समझौते पर चल रही बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की तारीफ की है। उन्होंने इच्छा जताई है कि वो खामनेई से मुलाकात करना चाहते हैं, यानी कि वेस्ट एशिया में नया समीकरण बन रहा है।

0: कई दौर की बातचीत हो चुकी है, कई हमले और जवाबी हमले भी हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच संभावित डील पर अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। वेस्ट एशिया में सीज फायर अब भी जारी है, लेकिन तनाव भी बना हुआ है। एक तरफ अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ ईरान भी लगातार सख्त रुख दिखा रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने नई चर्चा छेड़ दी। ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से मुलाकात को लेकर सकारात्मक संकेत दिए और उनकी कार्यशैली की तारीफ भी की।
1: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
0: दिलचस्प बात यह है कि 28 फरवरी के हमले के बाद से ही मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं, लेकिन ईरान की राजनीति और सुरक्षा से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिए कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व की गतिविधियों पर अमेरिका करीबी नजर बनाए हुए है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप और मोजतबा खामेनेई की मुलाकात की कोई जमीनी तैयारी हो रही है, या फिर ये सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। फिलहाल डील पर सस्पेंस बरकरार है।
2: I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. So the way to think about it is the following. You have the supreme leader, and understand that at the end of the day, the supreme leader in their system is, there really is no analogy to it in our system or anybody else's system. It is a theological office.
0: ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उनके इस बयान ने दोनों देशों के बीच जारी कूटनीतिक बातचीत पर नए सवाल खड़े कर दिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है हॉर्मुज से। यह दावा किया जा रहा है कि ईरानी बंदरगाहों पर लगी रोक के बाद से अमेरिका 129 जहाजों की आवाजाही रोक चुका है। ईरानी तेल से जुड़े प्रतिबंध भी अब तक हटाए नहीं गए हैं, यानी युद्ध विराम के बावजूद आर्थिक मोर्चे पर दबाव जारी है। इस तनाव का सबसे खतरनाक केंद्र बना हुआ है खाड़ी का पानी, वो समुन्दर जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक रास्ता है। वहां अब पानी कम, बारूद ज्यादा नजर आ रहा है। एक तरफ बातचीत की मेज सजाने की कोशिश है, दूसरी तरफ समुन्दर में जंगी जहाजों की तैनाती है। दोनों ही तरफ से लगातार एक दूसरे के हितों को निशाना बनाना आम होता जा रहा है। सीज फायर अभी है, लेकिन पहले और दूसरे धमाकों के बीच, या कह लें हमले और जवाब के दरमियान, एक तरफ ईरान की मिसाइलें तैनात हैं, दूसरी तरफ अमेरिका की उंगली ट्रिगर पर है। क्या ये महज कूटनीति का दबाव है या फिर एक बहुत बड़े टकराव की आहट? सवाल है कि मिसाइल, ड्रोन और कूटनीति के बीच क्या है असली तस्वीर? क्या बातचीत सफल होगी या बढ़ेगा टकराव?

वेस्ट एशिया इस वक्त एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ शांति की धुंधली सी उम्मीद है तो दूसरी तरफ एक भयानक युद्ध का मुहाना।

0: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद से अमेरिका और ईरान दोनों ने संकेत दिए हैं कि वो ऑल आउट वॉर यानी पूर्ण युद्ध नहीं चाहते, लेकिन दोनों ही तरफ से हमले जारी हैं। और इस बीच ट्रंप ने नई चेतावनी दे दी है।
1: It is. It's a different part of the world. You know, I'd say that part of the world sees fires when you're shooting in a more moderate manner.
0: अमेरिका ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, तो जवाब में ईरान ने भी मिसाइलों और ड्रोनों से अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी में उसके सहयोगियों को निशाना बनाया।

0: कुवैत के मुख्य एयरपोर्ट पर हुए एक ईरानी हमले में एक शख्स की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। लेकिन इन खूनी झड़पों के बीच भी पर्दे के पीछे कूटनीति की सांसें चल रही हैं।
1: ईरान अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योग्राफिकली उसको मालूम है कि उसके ऊपर बूट्स ऑफ ग्राउंड अमेरिका को रखना बहुत बहुत कठिन है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ईरान को कि उसको लग रहा है कि उसका पलड़ा भारी है। इसके बावजूद भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है ईरान का। और अमेरिका का मानना है कि क्योंकि ईरान जो है सिर्फ तेल के ऊपर निर्भर है और वो सारा का सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही घेराबंदी कर दी जाए तो ईरान आज नहीं तो कल तो कहीं ना कहीं कैपिचुलेट करेगा, कहीं ना कहीं उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। तो वो भी डिले कर रहा है। तो छोटी छोटी छोटी बातों के ऊपर जो डील है जिसको डील कहने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका, वो डील नहीं हो पा रहा है। बातचीत तो हो रही है, दोनों चाहते हैं कि लड़ाई ना हो पर कब खत्म हो उसके ऊपर शायद किसी का नहीं है।
0: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये मोर्चा खोला था तब उनका और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आकलन था कि उनकी हवाई ताकत ईरान के इस्लामी शासन को घुटनों पर ला देगी, लेकिन ये आकलन गलत साबित हुआ। दशकों से प्रतिबंध झेल रहे ईरान का प्रतिरोध कम नहीं हुआ।
2: जो एक मिथ बनाया हुआ था, एक उन्होंने जो बनाई हुई थी ऐसी कि छवि, वो इस बारी वो खराब हो गई अमेरिका की, क्योंकि उन सबका नुकसान हुआ और उनको ये पता लग गया कि अमेरिका हमें बाद में बचाएगा, इसराइल को पहले बचाएगा, और अगर हमें बचाएगा भी तो पूरी तरह से हमें सुरक्षित नहीं कर सकता क्योंकि ईरान उनका नेबर है, बिल्कुल साथ में है और किसी भी टाइम मिजाइल मारता और 2 मिनट लगते हैं वहां मिजाइल पहुंचने में, और कोई फूल प्रूफ सिक्योरिटी, आयरन डोम, पैट्रियोटिक मिसाइल्स कुछ नहीं काम करता। उस टाइम आपने कुवैत में अभी देखा क्योंकि ड्रोन भी साथ में आते हैं। तो इसलिए अमेरिकन जो है उनके ऊपर थोड़ा विश्वास इन कंट्रीज को उठ गया है, और आप आते टाइम पे देखोगे सब गल्फ कंट्रीज अपने मुआहदे ईरान से भी करेंगे और बाकी भी अपना अलायंस बनाएंगे, जैसे यूएई के साथ इंडिया का है, सऊदी के साथ पाकिस्तान का है, ताकि कुछ एक रीजनल अलायंस बना के अपनी सुरक्षा को निर्धारित करें।
0: एक तरफ अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रंप के युद्ध अधिकारों को सीमित करने वाला वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास कर दिया।
3: The concurrent resolution is adopted.
0: अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के पाला बदलने से ट्रंप को बड़ा राजनीतिक झटका लगा। ट्रंप ने अब साफ किया है कि जब तक किसी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं जाती वे ईरान पर दोबारा ऑल आउट वॉर शुरू नहीं करेंगे।

0: ट्रंप के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। उनके सबसे करीबी सहयोगी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू शुरू से ही इस युद्ध विराम के खिलाफ रहे हैं। वही खाड़ी के अमीर अरब देश इस तनातनी से सबसे ज्यादा परेशान है। उनकी पूरी आर्थिक रणनीति इस बात पर टिकी है कि ये क्षेत्र व्यापार के लिए सुरक्षित रहे, लेकिन युद्ध के शुरुआत से ही इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अरब देशों में ईरान को लेकर लगातार मतभेद भी साफ दिख रहे हैं।
1: ईरान को लगता है ये खाड़ी के देश जो है वो अमेरिका की तरफ उनका झुकाव है, और अमेरिका ने ही उनको एक तरीके से जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहते हैं, तो वो बार बार इस बात को संदेश देना चाहता है अपने ही मजहबी लोगों को, ये आप जो अमेरिका के ऊपर निर्भर करते हैं वो आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप जो आपके पड़ोसी हैं ईरान उनके साथ आप अच्छे संबंध रखेंगे तो सबका फायदा होगा। यही कारण है कि आज की तारीख में इतना सब कुछ होने के बाद ईरान ने दो बार भी नहीं सोचा खाड़ी के देशों के ऊपर हमला करने का। कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि इसका फायदा जो है वो अमेरिका उठाने की कोशिश कर रहा है।
0: सवाल है कि ऐसी सूरत में आगे क्या? जानकारों के मुताबिक ईरान सीज फायर का फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वो हॉर्मुज स्ट्रेट तभी खोलेगा जब उसे प्रतिबंधों में राहत मिले। वहीं अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क पर सख्त रुख बनाए हुए हैं। खाड़ी में हलचल बढ़ रही है, लेकिन अगर ईरान अमेरिका की शर्तों को नहीं माना तो फिर आगे क्या होगा? क्या सुपर पावर अमेरिका केवल प्रतिबंधों के भरोसे रहेगा, या बात आर्थिक दबाव से आगे बढ़कर सैन्य कार्रवाई तक पहुंचेगी? वॉशिंगटन के बंद कमरों में ईरान को घेरने की जो रणनीति बनी है वो तेहरान पर अब तक का सबसे बड़ा दबाव बना रही है। आखिर क्या है अमेरिका के पास वो विकल्प जो खाड़ी का नक्शा बदल सकते हैं?

0: अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध विराम यानी सीज फायर चल रहा है वो किसी भी वक्त टूट सकता है। दोनों देश बारूद के ढेर पर बैठे हैं, बस एक चिंगारी की देर। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। अखबार का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चल रहे सीज फायर को कभी भी खत्म कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने अपने करीबियों से साफ कह दिया है कि अगर तेहरान ने किसी भी अमेरिकी सैनिक को नुकसान पहुंचाया तो वो इस युद्ध विराम को तुरंत खत्म कर देंगे।
1: अमेरिकन सैनिकों का नुकसान हो तो नेचुरली अगर हमला तो उन्होंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं पहले हमला करने में, और अगर अभी भी हमला करना है तो मतलब यह है कि सीज फायर को तोड़ देंगे। पर नुकसान उनका कहने का यही मकसद है कि हमारे ऊपर आप मत करिए पहले, क्योंकि अभी आपने देखा जो कुवैत में हुआ जब इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारी कुवैत में, तो एयरपोर्ट था वहां 60-70 लोग और जख्मी हुए हैं, एक इंडियन है किल्ड भी हुआ है, और उसके बाद काफी नुकसान हुआ है। वो एक ईरान का सिंबॉलिक मैसेज था गल्फ कंट्रीज को कि अमेरिका के ऊपर डिपेंड मत करो आप, हमारा जब जी चाहेगा आपको आने वाले टाइम में हम तभी एकदम से डिसरप्ट कर सकते हैं, आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसको खराब कर सकते हैं।
0: दोनों देशों के बीच ग्राउंड पर छोटी मोटी झड़पें तो हो रही हैं, लेकिन बड़े हवाई हमले फिलहाल रुके हुए हैं। ट्रंप खुद भी तुरंत एक नया युद्ध नहीं चाहते, इसीलिए वो पिछले कुछ हफ्तों से इन झड़पों को बर्दाश्त भी कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रहे इन हमलों ने ट्रंप पर दबाव बहुत बढ़ा दिया है। अब तो इस सीज फायर के टिकने पर ही सवाल खड़े हो गए हैं।
1: अमेरिका और इजराइल दोनों इस टाइम युद्ध से निकलना चाहते हैं। इजराइल को अपना जो ऑब्जेक्टिव है ग्रेटर इजराइल या एक्सपेंशन लेबनान में, ताकि जो हिजबुल्ला के रॉकेट शॉकेट हैं वो उनके नॉर्दर्न इसराइल तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने एक सेफ जोन अपना लिटानी रिवर तक उन्होंने बना लिया है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। वहां चलती है हिजबुल्ला की, अगर हिजबुल्ला उसके साथ नहीं है तो वो सीज फायर या जो भी मुआयदा हुआ है, जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ है, वो फेल हो जाएगा, और वही हुआ, अगले दिन ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये बड़ी पेचीदा सी बात बन गई है, मुझे कोई इतनी जल्दी इसका मेजर सोल्यूशन निकलते नहीं नजर आ रहा। सिर्फ यही लग रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा कि 2 महीने आप सीज फायर और बढ़ा दो, उसमें बातचीत करते हैं। फिलहाल अमेरिका का जो मेजर इंटरेस्ट है और पूरी दुनिया का है कि जो गल्फ है उसको खोल दो और चाहे शिपिंग आनी जानी शुरू हो जाए।
0: वैसे डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज तो आप जानते ही हैं, उनके लिए सीज फायर की परिभाषा भी थोड़ी अलग है।
2: It is. It's a different part of the world. You know, I'd say that part of the world ceasefires when you're shooting in a more moderate manner.
0: अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो पाएगा? बातचीत चल रही है, लेकिन इस डील के बीच डोनाल्ड ट्रंप की 3 शर्तें ऐसी हैं जिन पर पेंच बुरी तरह फंस गया है। पहली शर्त है हॉर्मुज को तुरंत खोला जाए, जिससे दुनिया भर में तेल का व्यापार पहले की तरह नॉर्मल हो। दूसरी शर्त, ईरान को अपना एनरिच यूरेनियम देना होगा। और तीसरी शर्त है ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम पर लंबे समय के लिए पाबंदी लगाई जाए। अब जाहिर सी बात है, ईरान इन शर्तों को आसानी से तो मानने से रहा, ईरान का कड़ा रुख सामने आया। उसने साफ कह दिया है कि वो अपनी मिसाइल और न्यूक्लियर ताकत को किसी भी कीमत पर कम नहीं करेगा। उल्टा ईरान ने अपनी शर्तें रख दी। ईरान चाहता है कि लेबनान में पूरी तरह से युद्ध विराम हो। ईरान पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं और विदेशों में जो उसकी संपत्ति फ्रीज है वो उसे वापस मिले।
3: 3 मुद्दे अगर मैं कहूँ, अमेरिका चाहता है न्यूक्लियर, एक कि जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की काबिलियत या ईरान ना बनाए और ना बनाने की उसके काबिलियत होनी चाहिए, और जो आज की तारीख में उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम है जिसके तादाद तकरीबन 440 किलो और 60% से ज्यादा उसका एनरिचमेंट है, उसको वो यूएसए को सौंपे या फिर आईएईए को सौंपे। और तीसरी बात जो बार बार आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अमेरिका चाहता है कि इसमें कोई भी टोल वसूली ना हो। आज यहाँ ईरान है, ईरान को लगता है कि न्यूक्लियर को लेकर के वो उसकी उसका हक है, इट्स द राइट एंड सॉवरेन राइट ऑफ ईरान, वो क्या करना चाहता है उसकी मर्जी है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के ईरान चाहता है कि उसको वेपनाइज किया जाए। और तीसरी बड़ी बात जो ईरान चाहता है कि उसके जो फ्रोजन एसेट्स हैं जिसके तकरीबन 25 अरब डॉलर है वो रिलीज किया जाए, तभी वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खुला छोड़े। 100 दिन होने को आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हालत बाकी बहुत ही नाजुक, और इसको पूरे विश्व भर में अब एक तरीके से कहेंगे किल्लत और परेशानी शुरू हो चुकी है।
0: देखा जाए तो ट्रंप जिस तेवर के साथ बात करते हैं वो दुनिया को चौंकाता भी है और थोड़ा डराता भी है। जून 2025 की वो भीषण 12 दिनों की जंग कौन भूल सकता है, या फिर वो द्वार जब अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू होते ही सुप्रीम लीडर समेत पूरी ईरानी सुप्रीम काउंसिल को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। ट्रंप के फैसलों ने हमेशा दुनिया के होश उड़ाए हैं। डिप्लोमेसी अपनी जगह है और धमकियां अपनी जगह। अब सवाल ये है कि अगर बातचीत फेल हो गई और ईरान टस से मस नहीं हुआ तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो डोनाल्ड ट्रंप के पास प्लान बी के तौर पर 3 बेहद विनाशकारी विकल्प तैयार है। ये ट्रंप के तर्कश के वो 3 तीर हैं जो ईरान को पूरी तरह संकट में डाल सकते हैं। विकल्प नंबर 1, पूर्ण सैन्य हमला। ये ट्रंप का सबसे बड़ा और आखिरी हथियार है। अगर राजनयिक प्रयास और सौदेबाजी पूरी तरह फेल हो जाती है तो ट्रंप अमेरिकी कमांडरों को ईरान के परमाणु संयंत्रों और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी का सीधा आदेश दे सकते हैं। इसके लिए अमेरिकी सेना को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा जा चुका है। विकल्प नंबर 2, आर्थिक प्रतिबंधों को चरम पर पहुंचाना। अगर ट्रंप सीधे मिलिट्री एक्शन से बचना चाहेंगे तो वो मैक्सिमम प्रेशर की नीति को इस हद तक ले जाएंगे जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा जिससे ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से पूरी तरह अपंग हो जाएगा। विकल्प नंबर 3, क्षेत्रीय गठबंधनों से ईरान की घेराबंदी। अमेरिका अकेले नहीं लड़ेगा, वो खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन और अपने सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल के साथ मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेरेगा। रणनीति साफ है, ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को जड़ से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है, ट्रंप ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है और अब गेंद ईरान के पाले में है। या तो ईरान शर्तों को मान ले या फिर अमेरिकी सेना के उस भीषण प्रहार को झेलने के लिए तैयार रहे जो पूरे वेस्ट एशिया का भूगोल बदल सकता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी.
3: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून. टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स 50 बक्स राइट इन हिज पॉकेट. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
4: Oh, ouch.
3: However you make money work, we can work with that.
5: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
6: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
7: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
6: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
8: You're listening to MSNBC.
6: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
9: Sokudo.
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: बहुत टायर्ड हो गई।
5: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
6: लायन डेट नट बाइट्स।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
8: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
9: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
10: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था NTO को पता नहीं।
8: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
11: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
9: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ। NTA जागी पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है खबरदार किया है हर दल की सरकार को जगाया है बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
8: जहां खबर वहां खबरदार।
12: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: मोंटी कार्लो इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया, खुद वैभव के साथियों ने देखा, दुनिया भर के दिग्गजों ने देखा और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। न उम्र की सीमा, न दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ। वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर उसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सिलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन है। आईपीएल के 23 मैचों में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होगा, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली टीम को ऐसा ही तो हीरो चाहिए है। आज तक भी

0: अगली ब्रेकिंग न्यूज लेबनन और इसराइल से आ रही है। लेबनन के राष्ट्रपति ने गंभीर आरोप लगाया है। आरोप ये कि इस पूरे क्षेत्रीय तनाव में ईरान लेबनन को लगातार बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जो सीमावर्ती इलाकों में झड़प है वो भी जारी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सीज फायर टिक पाएगा या हालात फिर से बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ेंगे।
1: बात केवल अमेरिका और ईरान की नहीं है, ईरान समर्थित जितने भी प्रॉक्सी संगठन हैं, वो इस वक्त इसराइल के निशाने पर हैं। गाजा में सीज फायर की खबरें आती जरूर है लेकिन शांति पूरी तरह से कायम नहीं हो पाई है। इसराइल इस वक्त सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं लड़ रहा, गाजा में हमास, लेबनन में हिजबुल्ला और यमन में हूती। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसी नई क्षेत्रीय रणनीति तैयार की है जिसने हिजबुल्ला को बेचैन कर दिया है। इसराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है लेकिन उसका प्रहार पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है। लेबनान में सीज फायर और अमेरिकी दखल के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब आगे क्या। गाजा से लेकर लेबनान बॉर्डर तक टॉप रॉकेट के धमाके थोड़े कम हुए हैं लेकिन इजराइल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, समझौता अपनी जगह लेकिन इजराइल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। इसका सबूत रहा हिजबुल्लाह का राफी मिलो पर किया गया हमला। IDF ने खुलासा किया है कि दक्षिणी लेबनान के दौरे पर गए इजरायली नॉर्थन कमांड के चीफ मेजर जनरल राफी मिलो की गाड़ी पर हिजबुल्लाह के एक आत्मघाती ड्रोन ने सीधा हमला किया। इस हमले ने सीज फायर की खोखली हकीकत को दुनिया के सामने ला दिया। एक तरफ सीज फायर के लिए लितानी नदी के दक्षिण से हिजबुल्लाह को हटाने और नो गो जोन बनाने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की अपनी शर्तें हैं। हिजबुल्लाह के राजनीतिक परिषद के डिप्टी हेड महमूद कमाती ने साफ धमकी दी है कि अगर इजराइल ने बेरूत पर दोबारा हमले किए तो तेल अवीव और हाइफा जैसे इजराइल के बड़े शहर उनके रॉकेटों के निशाने पर होंगे। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने भी कह दिया है कि जब तक इजरायली सेना लेबनान से पूरी तरह बाहर नहीं जाती उनके सैनिक रोज मारे जाएंगे।
2: इस वक्त पलड़ा भारी है इजरायली का और अमेरिकन का। अगर ये तीनों मिल जाए, हमस, हूती और हिजबुल्ला, तो ये चारों तरफ से इजरायल के ऊपर हमला कर सकते हैं और उनका सूत्रधार जो IRGC है ईरान की, वो उनकी मदद भी करते हैं, आइडियोलॉजिकली मदद भी करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं और साथ में उनको ब्लूप्रिंट भी देते हैं बहुत सारे ड्रोन्स को बनाने के लिए या मिसाइल्स को बनाने के लिए। तो उसके लिए एक बहुत ही चुनौती बन जाएगी और सैचुरेशन अटैक अगर होते हैं तो इसराइल में काफी नुकसान होने का अंदेशा है। और इंडिविजुअली इस वक्त इसराइल के पास एक ही सिंगल ऑब्जेक्टिव है और वो बहुत क्लियर है, वो है उन्होंने इस वक्त हिजबुल्लाह को खत्म करना है। हमस को वो नियरली खत्म कर चुके हैं, हूती की बारी अगली है।
1: लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू का विजन और उनका प्लान अब बिल्कुल साफ है। मोसाद के नए चीफ के तौर पर रोमन गोफमैन की ताजपोशी करते हुए नेतन्याहू ने ईरान की रेजीम और उसके पूरे नेटवर्क को सीधा और सख्त संदेश दे दिया।
3: The Mossad will continue to be at the spearhead of our struggle against Iran's aggression. In continuation of the consistent policy we have been leading for years, we will not allow the Iranian regime to turn back the clock. We will not let them acquire nuclear weapons. We will not let them threaten our existence. This reign of terror, whose end is to vanish from the world, and we will help it reach that destination. This regime will not return to threaten us with nuclear bombs and thousands of deadly ballistic missiles. This is my directive and this is your mission. This is your mission, Roman, and that of all the thousands who are here today.
1: नेतन्याहू जानते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है, इसीलिए इजराइल ने अपनी सैन्य तैयारी और तेज कर दी।
2: सदर्न लेबनान में इजराइल के लिए डेफिनेटली सफलता है क्योंकि उन्होंने एक बड़ा ही प्लान तरीके के साथ इसराइल के ऊपर अटैक किया है और उन्होंने वहां पे तीन जोन्स बनाई हैं। सबसे पहले 15 किलोमीटर की जोन जो है इजरायली बॉर्डर के नॉर्थ में, वो उन्होंने बोला है ये एक किस्म की मिलिटराइज्ड जोन होगी या बफर जोन होगी ताकि जो नॉर्दर्न इसराइल के लोग हैं जो इस वक्त घरों को छोड़कर वहां से डिस्प्लेस हो चुके हैं उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये मिलिटराइज जोन है, यहाँ पे कोई भी सिविलियन या कोई भी हिजबुल्ला जो लेबनन के हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने येलो लाइन बनाई है लिटानी रिवर के ऊपर, तो लिटानी रिवर के ईस्ट और साउथ के अंदर ये सारी की सारी हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है। परंतु फिर भी जो बढ़त है वो इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पास ही है।
1: लेकिन नेतन्याहू के सामने भी चुनौतियां हैं। उत्तरी इसराइल के लोग लगातार ड्रोन और रॉकेट हमलों से परेशान हैं। सर्वे बताते हैं कि वहां कई लोग सरकार की लेबनान नीति से नाराज हैं। आम राय यही है कि हिजबुल्लाह के खतरे का स्थायी समाधान सिर्फ उसे कमजोर या खत्म करने से ही होगा।
2: सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉर्दर्न इसराइल के लोग हैं जो ऑलरेडी डिस्प्लेस हो रखे हैं, और डिस्प्लेस क्यों है क्योंकि लेबनन की तरफ से उनके ऊपर लगातार इंकर्शन होती हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं। अब क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जो 15 किलोमीटर की बफर जोन बना ली है और उनके बहुत सारे जो कैंपेन्स हैं वो सफल होते जा रहे हैं इन सदर्न लेबनन, तो ये लोग चाहते हैं कि इसको अभी यहाँ छोड़ा ना जाए, ये एक डिसाइसिव विक्ट्री आई जाए करी जाए। तो अब ये लोग चाहते हैं कि एक मौका है सीज फायर होने से पहले पहले ये जो हिजबुल्ला का वजूद है वो सदर लेबनान से पूरी तरह मिट जाए और ये जो इलाके हैं नॉर्दर्न इसराइल के ये उनकी पहुंच से बाहर हो जाएं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इजरायली सेना जो है आगे बढ़े और उसकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको हर हालत में सक्सेस मिले और वो सीज फायर जो है जिसकी बात अमेरिका आजकल कर रहा है, इसराइल को बोल रहे हैं सीज फायर करने के लिए, वो उसकी बात ना माने।
1: साफ है कि इजराइल के सामने दोहरी चुनौती है। अंदरूनी तौर पर जनता का दबाव है कि वो हिजबुल्लाह और हमास को पूरी तरह मटिया मेट करें, और बाहरी तौर पर अमेरिका का दबाव है कि सीज फायर को लागू किया जाए। लेकिन मोसाद के नए चीफ के आते ही इजराइल ने जो तेवर दिखाए हैं उससे एक बात तो तय है, चाहे गाजा हो या लेबनान, जब तक इजराइल की सुरक्षा 100% पक्की नहीं हो जाती तब तक वेस्ट एशिया में ईरान चैन से नहीं रह सकता। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, ये रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है। युद्ध में एक बड़ा मोड़ आता हुआ दिख रहा है। जेलेंस्की ने पुतिन को शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा है। रूस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि समझौता करो, जंग अभी खत्म हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर जेलेंस्की पुतिन से सीधे मुलाकात करें तो ये अच्छा होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रूस के साथ बढ़ते तनाव और सैन्य टकराव के खतरे के बीच अमेरिका जर्मनी को टोमाहॉक मिसाइलों देने का सौदा रद्द कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो नेटो की रणनीति और जर्मनी की सुरक्षा दोनों पर बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। पश्चिम एशिया की इस सुलगती आग के बीच अब रुख करते हैं उस दूसरे मोर्चे का, जहां पिछले कई सालों से बारूद बरस रहा है लेकिन अब वहां पुतिन ने गियर बदल दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर दहल उठी है। आसमान से बरसती मौत ने यूक्रेन के पावर ग्रिड्स और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। क्या रूस इस युद्ध को किसी अंतिम और सबसे खतरनाक चरण में ले जा चुका है? रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब एक नए और बेहद खतरनाक चरण में पहुंच चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमान से बरसती मौत और चारों तरफ जलती इमारतें इस बात की गवाही दे रही हैं कि मॉस्को ने अपनी रणनीति बदल दी है। आखिर पुतिन ने अचानक इतने ताबड़तोड़ हमले क्यों किए? क्या यूक्रेन किसी बड़े पलटवार की तैयारी में है, या फिर आने वाले दिनों में रूस और भी आक्रामक होने वाला है, या ये हमले यूक्रेन की हमलावर नीति का खेल बदल देंगे? ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें हैं जो रूसी हमले से हुई तबाही का मंजर बयान कर रही है। आसमान मिसाइलों की रोशनी और धुएं से पटा हुआ था और जमीन धमाकों से दहल रही थी। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। कीव, खारकीव और निप्रो जैसे कई बड़े शहरों पर 60 से ज्यादा विनाशकारी मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोनों से एक साथ धावा बोला गया। बमों की इस बरसात से कई बहुमंजिला इमारतें आग की लपटों में घिर गईं। धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को हवा में रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन हमले की रफ्तार और तादाद इतनी ज्यादा थी कि कीव का सुरक्षा कवच नाकाम साबित हुआ।
4: मैं समझता हूँ ये एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि देखिए 4-5 साल अगर आपको निकल जाए लड़ाई लड़ते हुए सुपर पावर होने के बावजूद, तो अफेक्ट तो आपको भी करता है, आपकी पॉपुलेशन को भी करता है। तो रूस भी चाहता है कि किसी तरह युद्ध ये टले, लेकिन बात यह है कि किस टर्म्स के ऊपर में टलेगा वो एक बड़ी बात है। लेकिन चूंकि ज़्यादातर यूक्रेन की 25-26% टेरिटरी उन रशिया के कब्जे में है, जो वॉर से पहले जो नहीं थी उनके पास, तो उससे नेचुरली है कि रशिया के पास में इस वक्त एक तरह से इस कुछ परसेंटेज का जो कहूँगा मैं बैलेंस उनकी तरफ फेवर में है ज़्यादा। तो कोशिश तो दोनों साइड की है कि किसी तरह से ऐसी डील हो जाए जिसमें दोनों का फेस सेविंग हो जाए, लेकिन ऐसा आप जानते हैं कि इस तरह के युद्ध में जब दोनों लोग इस तरह की पोजीशन वर्टिकल ले रखी है तो इतना आसान नहीं होता है युद्ध विराम कराना भी।
1: रूस ने इस बार सिर्फ रिहायशी इलाकों को ही नहीं बल्कि यूक्रेन के सामरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे यूक्रेन के एक बड़े एयरबेस को रूसी बैलिस्टिक मिसाइल ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यहां बने फ्यूल स्टोरेज और गोला बारूद के गोदाम पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जिससे यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि एयरक्राफ्ट्स को कितना नुकसान पहुंचा है इसकी पुष्टि होना अब भी बाकी है।
4: जहां तक ये युद्ध है तो लगभग 4 साल में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हुआ है, इंक्लूडिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले दोनों साइड ने किया है, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर किया है, रशिया ने भी यूक्रेन के ऊपर किया है, और यहाँ तक कि जो ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर तक अटैक हुए हैं कई बार, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी उसका काफ़ी विरोध किया है कि और यूक्रेन को भी कहा है कि इसके ऊपर अटैक ना करें किसी तरह से, क्योंकि उस पर रशियंस का कब्जा है भी। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को या शहर में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब एक फेयर गेम के रूप में हो रहा है। जहाँ तक लगता है कि दोनों साइड में अभी ये एक कोशिश है कि किसी तरह से इस युद्ध को रोका जा सके, आगे वो सीज फायर पूरी होगी या एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बनेगा या क्या होगा ये देखना पड़ेगा।
1: कीव का पोडिल्स्काई इलाका इस हमले का सबसे बड़ा गवाह बना, जहां एक 9 मंजिला इमारत जमीन दोज हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार रूस ने यहां डबल टैप तकनीक का इस्तेमाल किया, यानी एक जगह हमला करने के कुछ देर बाद ठीक उसी जगह दोबारा हमला किया गया। निप्रो शहर में भी ऐसा ही हुआ, जहां मलबे से लोगों को निकालते वक्त हुए दूसरे हमले में एक बचाव कर्मी की जान चली गई। इन हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रिहायशी इमारतें, इंडस्ट्रियल प्लांट्स और पावर स्टेशंस तबाह हो गए हैं। कई शहरों में बिजली पूरी तरह गुल हो गई है। रूस इन हमलों की तैयारी पिछले कई दिनों से कर रहा था, जिसकी चेतावनी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने 2 दिन पहले ही दी थी।
5: Шановні українці, українки, сьогодні кілька важливих речей. Перше, ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш. Вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати, хто повністю виконує домовленості. Програма «Пьорл» має працювати, це стосується… Це ключовий пріоритет наш. Вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати, хто повністю виконує домовленості. Програма «Пьорл» має працювати, це стосується...
1: चार साल से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन अब विनाश की कगार पर है। उसके अपने हथियार खत्म हो रहे हैं और वह पूरी तरह से मित्र देशों की मदद पर निर्भर है। यही वजह है कि यूक्रेन अब पश्चिमी देशों से और ज्यादा आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स की गुहार लगा रहा है। रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों ने साफ कर दिया है कि वह इस युद्ध को किसी भी कीमत पर अगले चरण में ले जाना चाहते हैं। यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी हवाई सुरक्षा साबित हो रही है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका और यूरोपीय देश उसकी इस अपील पर क्या कदम उठाते हैं और युद्ध का ये नया चरण दुनिया को किस मोड़ पर लेकर जाता है। पुतिन के इस हमले के पीछे की एक बड़ी वजह यूक्रेन की हिमाकत भी है। दरअसल अब यूक्रेन केवल डिफेंसिव मोड में नहीं है बल्कि जवाब भी दे रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना के ड्रोन अब रूस की सीमा लांघकर अंदर तक पहुंच रहे हैं। रूस के ऑयल टर्मिनल, पुतिन के सैन्य अड्डे, उनके रणनीतिक ठिकाने, ये सब यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन की जद में है। युद्ध का तरीका बदल रहा है। जो जंग कभी यूक्रेन की धरती पर शुरू हुई थी वो अब रूस के शहरों तक पहुंच चुकी है।

0: रूस और यूक्रेन के बीच का घमासान अब सिर्फ सरहदों या मोर्चों तक सीमित नहीं रहा। ये एक दूसरे को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ने के दौर में पहुंच चुका है। कीव पर हुए भीषण रूसी हमले से कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन ने भी रूस के भीतर एक बड़ा और रणनीतिक पलटवार किया। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ताकत, उसके तेल कारोबार पर सीधा वॉर किया। यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस की तेल रिफाइनरीज और पंपिंग स्टेशनों को निशाना बनाया, जिससे बड़े पैमाने पर आग लग गई। यूक्रेन का दावा है कि सारातोव तेल रिफाइनरी पर हमला बेहद सटीक था और इसका बड़ा हिस्सा जल उठा। अब जंग का तरीका बदल चुका है। टैंक और सीमा पार करने की जगह ड्रोन से सीधे दुश्मन के अहम ठिकानों को निशाना बना रहे हैं।
1: एक तरफ रशिया है और एक तरफ यूक्रेन है, और यूक्रेन को जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो कंट्रीज हैं, वो काफी सपोर्ट करते रहे हैं अब तक। हालांकि अमेरिका का रुख थोड़ा बदल गया है इस वक्त, लेकिन सबके बावजूद ये एक तरह से कुछ भी कहें हम तो रूस का पलड़ा भारी है, क्योंकि रूस ने 25-26% से ज़्यादा यूक्रेन की टेरिटरी को ले लिया है। लेकिन चूंकि यूक्रेन में अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो टेक्नोलॉजिकल भी काफ़ी एडवांस हैं, मिलिट्री पावर रह चुके, एक तरह सप्लाई करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं काफ़ी टैंक्स का भी, हर तरह की आर्टिलरी और ड्रोन्स में उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। अभी आपने देखा कि ईरान वॉर में भी गल्फ कंट्रीज़ को काफ़ी उन्होंने एंटी ड्रोन जो फैसिलिटीज और ये सब प्रोवाइड करी है। तो नेचुरली यूक्रेन टक्कर तो ले रहा है, लेकिन संतुलन जो है अभी भी रशिया के फेवर में है।
0: कहावत है कि युद्ध किसी एक मोर्चे पर नहीं लड़ा जाता। यूक्रेन के ड्रोन यहीं नहीं रुके, एक दूसरे हमले में किरोव इलाके के लाचारेवो पंपिंग स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया गया। वहीं रूस के सीमावर्ती बेलगोरोद इलाके में भी कल रात धमाकों की आवाज से लोग सहम गए। जेलेंस्की जानते हैं कि जंग के इस लंबे खिंचते दौर में उनके पास सैन्य संसाधनों और हथियारों की भारी कमी है। वह रूस की विशाल सेना से सीधे नहीं टकरा सकते, इसलिए उन्होंने रणनीति बदली। वह चुन चुन कर रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर चोट कर रहे हैं। ये सारातोव रिफाइनरी कोई मामूली ठिकाना नहीं है। साल 2024 में इसी रिफाइनरी ने करीब 1,35,00,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया था, यानी पूरे रूस के कुल तेल उत्पादन का करीब 5%। रूस की योजना थी कि इस वैश्विक उथल पुथल के बीच वह तेल का निर्यात बढ़ाकर भारी मुनाफा कमाए, लेकिन इस हमले ने खेल ही पलट दिया।
2: बहुत ही नाजुक स्थिति से पूरी पूरा विश्व गुजर रहा है। एक तो कोविड हुआ और कोविड के तुरंत बाद जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के बीच में शुरू हो गया, फिर इसराइल और ईरान और इसराइल, हमास, लेबनन, वहां पे हूदी, यूएसए ने मिलकर के इसराइल के साथ ईरान को के साथ लड़ाई की, तो ये सबको देखते हुए बहुत ही नाजुक स्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा है। इसका असर एनर्जी सिक्योरिटी पे पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व का 20% तेल गुजरता है और विश्व में तकरीबन एक दिन में 100 बिलियन बैरल पर डे इस्तेमाल होता है। तेल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, $100 per barrel। तो अगर यही रेट रहे तो जो भी पैसा इस देश ने बचाया होगा वो इसी में जाएगा, तो उनके बाकी जो तरक्की है वो नहीं हो पा रही है, तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ रहा है।
0: तकनीकी तौर पर रिफाइनरी में लगी इन आगों को भले ही बुझा लिया गया हो, लेकिन इस तरह के तबाह हुए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने में महीनों का वक्त और करोड़ों की रकम लगती।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी.
2: Oh, I have had no luck lately. Wait, lady luck?
3: Britsky, I got you. I've had so much luck on SpinQuest.com. They have all of my favorite games, slot games, live blackjack craps, and bubble craps. You can even get a $30 coin pack for just $10.
2: $10 for 30? I'm headed over to SpinQuest.com right now.
4: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
5: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
6: Oh, yeah.
5: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
9: In association with
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
10: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
11: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.
5: नीड बेटर इंटरनेट? Cox इंटरनेट हैज द फास्ट रिलायबल स्पीड्स यू आर लुकिंग फॉर. परफेक्ट फॉर सीमलेस स्ट्रीमिंग, गेमिंग एंड वर्किंग फ्रॉम होम. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
6: Oh, yeah.
5: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
12: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
13: Oh, ouch.
12: However you make money work, we can work with that.
14: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
15: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists, day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
16: मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी. पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर. पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है. सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का.
17: सोचिए ये शब्द किसका कलेजा नहीं चीर देंगे.
18: हम कर्ज ले लेके पढ़ा रहे थे, हम किसी से मांग मांग के उसकी फीस भर रहे थे.
19: कितने सारे सपने दिखा के चली गई उसके नाम की आगे कर.
17: मध्य प्रदेश की आकांक्षा की मौत सिस्टम पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सुनाई तो पड़ रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कुछ दिनों के हंगामे के बाद पेपर लीक माफिया और शिक्षा तंत्र में बैठे धंधेबाजों पर फिर तो चुप्पी नहीं ओढ़ ली जाएगी. आज जो विपक्ष में है वे नीट पेपर लीक और सीबीएसई ओएसएम की गड़बड़ी पर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं.
19: दुख है,

0: लेकिन कार्रवाई में कभी कमी नहीं रखा।
1: How many questions normally will someone apply for?
2: I guess अभी जो problem आ रही है, they can apply for all the questions.
1: So how many total questions?
2: 30-35 around questions होते हैं.
1: So huge amount of money.
2: Huge amount of money is involved.
3: विपक्ष को सवाल पूछने भी चाहिए, जवाबदेही तय होनी ही चाहिए. लेकिन शिक्षा तंत्र को फेल करने वालों का जाल बहुत गहरा है और बहुत पुराना है. 2002 से 2025 के बीच 1,00,000 से अधिक उम्मीदवारों वाली 45 लीक परीक्षाओं ने 3,86,00,000 छात्रों को प्रभावित किया. लीक के इन मामलों में 1,658 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 925 पर चार्जशीट दाखिल की गई, 2 मामलों में 18 लोग दोषी करार दिए गए, 43 आरोपी जेल में बंद हैं. आरोपों के मुताबिक पेपर लीक माफिया का कोचिंग माफिया के साथ सांठगांठ होता है. इस बार की नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी आरोपियों के तार कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं. इसलिए शिक्षा तंत्र के ओवरहॉल की जरूरत है. छात्र तो अपना भविष्य बनाने की परीक्षा देते हैं, अब की बार सरकार को परीक्षा में पास होकर दिखाना है. आज तक ब्यूरो
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health.
1: देश को महंगाई का झटके में झटका, घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा। कांग्रेस का हमला, महंगाई मैन मोदी ने फिर से चलाया चाबुक, सरकार का दावा, दुनिया में सबसे सस्ती गैस भारत में। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर एक्शन, जबरदस्ती वसूली के मामले में पूर्व विधायक मिदनापुर से गिरफ्तार, कोलकाता में हिरासत में टीएमसी के पार्षद, तो एमएलए मदन मित्रा पर कमारहाटी में चले अंडे। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रसाद प्रकाश के मंत्री पद को लेकर खतरा, एमएलसी चुनाव में एनडीए कोटे से नहीं मिला टिकट, जेडीयू बीजेपी के उम्मीदवारों का नामांकन। पटना में खान कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, फायर सेफ्टी इंतजाम पूरे न होने के आरोप, प्रशासन का सेंटर सील करने का प्लान। और नीट री एग्जाम के प्रश्न पत्र के लीक होने के दावों को एनटीए ने किया खारिज, कार्रवाई की दी चेतावनी, महानिदेशक ने कहा क्वेश्चन पेपर लाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल।

पटना कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में फैजल खान आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वकील का कहना है कि उन्हें सोमवार को अग्रिम जमानत मिलेगी। पटना में 8 जून को ऑटो चालक की हड़ताल, पूरे शहर में सेवाएं प्रभावित होंगी। पटना में केजीएस कोचिंग में फायर सेफ्टी को मिली है कमियां, केजीएस को कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए। पटना कोचिंग विवाद में बढ़ गई है खान सर की मुश्किलें, आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराएं लागू की गई, 3 साल तक की सजा संभव। समल में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से सियासी घमासान, एसपी सांसद बर्क और विधायक पिंकी यादव ने प्रशासन को घेरा। फिर से बड़े एलपीजी सिलेंडर के दाम, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत हो गई 29 रुपए ज्यादा। दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर की घरेलू कीमत 913 से बढ़कर हो गई है 942 रुपए, नई दरें आज से लागू। पिछले 3 महीनों में दूसरी बार है जब एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर के दामों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। लगातार बढ़ती हुई महंगाई पर कांग्रेस का वार, कहा महंगाई मैन मोदी ने चाबुक फिर से चलाया है, जनता से वसूली करो, दोस्त की तिजोरी भरो। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को बढ़ाने पर चर्चा। वैश्विक संकट के बीच भारत की नई आर्थिक रणनीति, प्रधानमंत्री मोदी और ईएसी की अहम बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस। यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टी पर बरसे हैं सीएम योगी, का 2017 से पहले यहां दुर्गा पूजा के वक्त दंगा हुआ था। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया, बोले राम का नाम लेने पर भी प्रतिबंध था, चलती थी गोलियां, भगवान राम का भक्त अयोध्या नहीं जा सकता था। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सीपीएम ने बीजेपी के साथ डील के आरोपों पर कांग्रेस से सफाई मांगी है, 8 जून को कांग्रेस ने बुलाई बैठक, डीएमके ने मीटिंग में नहीं जाने का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कॉकरोच जनता पार्टी पर साधा निशाना, कहा कुछ ताकतें देश के युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर धकेलने की कोशिश में जुटी हैं। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके पर बीजेपी अध्यक्ष का निशाना, कहा विदेश में बैठे कुछ लोग सोचते हैं कि वो भारत के युवाओं को दे सकते हैं दिशा। बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर के दावे झूठे हैं, दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान में कही है ये बात। अखिलेश यादव से लेकर केजरीवाल तक ने कॉकरोच जनता पार्टी के बहाने सरकार को घेरा, कहा युवाओं में भारी गुस्सा है, सुननी होगी आवाज। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन, वंचित वर्गों के मुद्दे उठाएगी पार्टी। रीप्रोग्राम को लेकर जो लीक की खबरें हैं वो पूरी तरह से फर्जी है, एनटीए ने जारी कर दी है सख्त चेतावनी। कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंचे, कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में डीएमके शामिल नहीं होगी। बंगाल में मदरसों का सर्वे शुरू करने के निर्देश, 5 जुलाई तक जिला स्तर पर मांगी गई रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों पर जांच होगी। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने ममता के लिए यूसुफ पठान की लोकसभा सीट छोड़ने के संदेश पहुंचाने की बात से इनकार किया, गांगुली ने कहा ममता बनर्जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। उत्तर 24 परगना में टीएमसी विधायक मदन मित्रा को विरोध का सामना करना पड़ा, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टीएमसी विधायक पर फेंके थे अंडे। पश्चिम मिदनापुर में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका, पुलिस ने पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक सुजय हाजरा को जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया। कोलकाता में एक और तृणमूल कांग्रेस पार्षद बप्पादित्य दास गुप्ता को रंगदारी के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया, मामले की जांच जारी। तेलंगाना में फर्जी सरकारी दस्तावेज केस में वाईएसआरसीपी ने पूर्व विधायक ब्रह्म नायडू को गिरफ्तार किया, मामले की जांच जारी। दिल्ली में अवैध निर्माण पर रेखा गुप्ता सरकार सख्त है, 6 दिनों में 114 प्रॉपर्टीज को सील किया गया। राजकोट में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, यूपी में सूर्या की हत्या की घटना को बताया फ्रेंड जिहाद, दक्षिण गुजरात के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया। गुजरात के राजकोट पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, 7 जून को हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन। सूरत में 100 से ज्यादा घरों के डिमोलिशन को लेकर विवाद, बीजेपी नेता ने की जांच की मांग, कांग्रेस ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पीलीभीत में बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी, जमकर नारेबाजी की गई। बारामती में टेम्पो स्कूटर के बीच में टक्कर हुई, 3 भाई बहनों की मौके पर जान चली गई। बक्सर वरुणा आरोपी धसाफ पर बिहार सरकार का स्पष्टीकरण, बिना कमीशनिंग शुरू हुआ था यातायात। निर्माणाधीन आरोपी में आंशिक धसाव, मुख्य संरचना संरक्षित है, जांच और मरम्मत का काम जारी। कटिहार में ठेले पर दिखाई दी स्वास्थ्य व्यवस्था, 4 घायल बुजुर्ग महिला को एम्बुलेंस न मिलने पर परिजनों ने ठेले से ले जाकर भर्ती कराया।
जून के तीसरे हफ्ते में दिल्ली पहुंचेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने जानकारी दी, चार दिन लेट से केरलम पहुंचा है मॉनसून। मध्य पूर्व अरब सागर, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में प्रवेश कर चुका है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। आईएमडी के मुताबिक अगले तीन दिनों में मॉनसून पूर्वोत्तर के सभी राज्यों तक पहुंचने की उम्मीद है। अगले 10 दिनों में बिहार, झारखंड, ओडिशा पहुंचने की संभावना। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी है, कई जिलों में कल गिरे थे ओले। बिहार में आंधी और बारिश से तापमान गिरा। गुजरात को छोड़कर देश भर में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हैं, कई राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ओडिशा के बलांगिरी में आंधी बारिश से तबाही, चलती बाइक पर पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हुई, दो लोग घायल हुए। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में जोरदार बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड है, चारों ओर बर्फ की सफेद चादर। दक्षिण के कई राज्यों में बारिश और हैदराबाद में झमाझम बरसात से मौसम हो गया है सुहाना। कर्नाटक में भी कई शहरों में मूसलाधार बारिश, धारवाड़ में भारी बरसात के बाद जल जमाव से दिक्कत। केरल में भी मानसूनी बारिश तेज हुई, कन्नूर में गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत। यूपी के झांसी में आधी रात के बाद हत्यारोपियों की पुलिस ने की हाफ एनकाउंटर, गोली लगने से एक घायल हुआ, दूसरे ने डर कर किया सरेंडर। दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर 24 घंटे पहले की थी हत्या, घटना में प्रयोग हथियार और तमंचा कारतूस बरामद। मरेली में युवती का आरोप है कि पहचान छुपाकर प्रेम संबंध बनाए, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए, मुकदमा दर्ज। शिवपुरी में सोशल मीडिया पर सोने और पैसों के साथ फोटो डालना पड़ा महंगा, चोरों ने दीवार पर लगे हुए तारों को काटकर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। दिल्ली अग्निकांड के बाद अलीगढ़ में होटल्स की सघन जांच, फायर विभाग ने खामियों पर चेतावनी दी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में जेसीबी से खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई, मरम्मत का काम जारी। दिल्ली में एक दुकान में भीषण आग लगी थी, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया, लाखों का नुकसान। सूरत के एसबीआई बैंक में 50 लाख रुपए की डकैती मामले में लूटकांड का मास्टरमाइंड सूरत से गिरफ्तार किया गया, अब तक चार की गिरफ्तारी। सूरत में फिल्मी स्टाइल में लाखों की लूट हुई, तीन आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया, नौकरी से निकाले गए पूर्व कर्मचारी ने लूट की साजिश रची थी। यूपी के बांदा में आरोपी की 24 लाख रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया, आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। ओडिशा में ऐसे दावे संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 5 आलीशान मकान, नकदी और जेवर बरामद किए गए। सुपौल में इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके से एसएसबी के जवानों ने 1733 किलो गांजे को बरामद किया, तस्वीरें सामने आई। गोरखपुर में 7 युवक नदी में बना रहे थे रील, डूबने से 2 की जान चली गई। अरावली में तालाब में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत हुई है, गांव में पसरा मातम। अलीगढ़ में बदमाशों ने सरेरा महिला के पैर में गोली मारी थी, वारदात के बाद आरोपी फरार, महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरिद्वार में चलती बस में लगी थी भीषण आग, कोई हताहत नहीं हुआ। गुरुग्राम में क्रेडिट कार्ड के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। दिल्ली में एक फ्लैट से चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर। दिल्ली के वायनाड के एक स्कूल में 164 छात्र बीमार, उल्टी बुखार के बाद 30 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एमपी के रतलाम में वाटर पार्क की ऊंट में अवैध स्पा का खुलासा हुआ, 3 विदेशी युवती और एक स्थानीय युवक को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले आई। मंडी के पालकपुर में छात्र की संदिग्ध मौत के मामले में कमरे से इंजेक्शन और नशीली दवाइयों को बरामद किया गया। एम्स भुवनेश्वर में डॉक्टर्स का कमाल, 47 साल की एक महिला के हाथ से अलग किया 7 किलोग्राम का बड़ा ट्यूमर। डल झील में पर्यटकों की बढ़ती हुई आमद से शिकारा सवारी की मांग बढ़ गई है, स्थानीय नाव चालकों के कारोबार को नई रफ्तार मिली। नैनीताल के नन्हे जादूगर की प्रतिभा के मुरीद हो गए हैं देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा, मासूम बच्चे की मदद की इच्छा जताई। जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने आम महोत्सव का आयोजन किया, 30 प्रकार के आमों की लगाई गई थी प्रदर्शनी। पूर्व एक्सप्रेस के 95 कुछों की तस्करी नाकाम की गई है, बंगाल के रानीगंज स्टेशन पर यूपी का तस्कर गिरफ्तार किया गया। भारत ने हॉकी अंडर 18 एशिया कप को जीता, 4-1 से शानदार स्कोर के साथ डिफेंडिंग चैंपियन जापान को हराया। भारत ने तीसरी बार अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब अपने नाम किया, आशीष तानी पूर्ति ने लगाई थी गोल की हैट्रिक। भारत की बेटियों ने बढ़ाया मान, अंडर 18 हॉकी एशिया कप में जीता ब्रॉन्ज, कोरिया को चारों खाने चित किया, 3-0 से मात दी। संदीप कुमारी को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच, मुकाबले के दूसरे ही मिनट में शानदार गोल दागकर भारत को दिलाई बढ़त। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों को दिया बधाई, देश के लिए बताया गर्व का पल।
डॉन तीन विवाद के बीच ऋतिक रोशन के पोस्ट ने मचाई हलचल। पोस्ट से फैंस लगा रहे हैं अंदाजा कि एक्टर को डॉन तीन के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं निर्देशक फरहान। रोहित शेट्टी की गोलमाल पांच में इस बार अक्षय कुमार के बाद रणबीर सिंह की भी एंट्री की खबरें हैं। सरप्राइज कैमियो में रणबीर नजर आ सकते हैं। उमा कुरैशी की नई फिल्म का टीजर जारी किया गया। एक महिला सीरियल किलर के इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी। फिल्म गवर्नर से पहले मनोज वाजपेयी ने फैंस के लिए शेयर किया खास मैसेज। 12 जून को रिलीज की जाएगी फिल्म। नेहा कक्कड़ ने मनाया अपना 38वां बर्थडे। परिवार के साथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर छोड़े गए ईरान के दो हमलावर ड्रोन्स को मार गिराया। सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी। एक ही दिन पहले अमेरिकी सेना ने ईरान के 4 ड्रोन्स को हवा में नष्ट कर दिया था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने रडार और तटीय निगरानी सुविधाओं पर हुए अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है। युद्ध विराम को घोर उल्लंघन बताया है। शनिवार को अमेरिका ने वरुक और केशम द्वीप पर मौजूद रडार को तबाह कर दिया था। अमेरिका और ईरान में फिर से बढ़ते हुए टकराव के बीच पाकिस्तान ने राजनयिक कोशिशें तेज कर दी है। तेहरान में पाक गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अपने ईरानी समकक्ष इस्केंदर मोमेनी से मुलाकात की। ईरान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने लेबनानी सेना के गश्ती दल पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। लेबनान की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन इसे बताया। इसराइल ने एक बार फिर से गजा के रिहायशी इलाकों पर किए हमले। 2 महिलाओं और एक बच्चों समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। 15 फिलिस्तीनी गंभीर रूप से घायल हुए। कई घरों को पहुंचा है नुकसान। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने गोला बारूद कारखाने का दौरा किया। अगले 5 सालों में मिसाइल उत्पादन क्षमता को 2.5 गुना बढ़ाने का आदेश दिया। एक दिन पहले किम ने युद्धपोत का दौरा किया था। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली ने नॉर्मंडी में डी-डे की 82वीं वर्षगांठ पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड और नॉर्वे के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। अमेरिका के ओहायो राज्य में टोलेडो शहर में गोलीबारी हुई। एक फेस्टिवल के दौरान फायरिंग में 8 लोगों की मौत गोली लगने की खबर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई की हालत नाजुक। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में भीषण तूफान के दौरान बेसबॉल खेलने के लिए लगाए गए सफेद तंबू के उड़ने की खबर। 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। तूफान वेस्ट वर्जीनिया विश्वविद्यालय और कैल पॉली के बीच बेसबॉल चैंपियनशिप खेल के दौरान आया था।

इक्वाडोर के मांटा बंदरगाह के पास समुद्र में भीषण आग लगी थी। 14 मछली पकड़ने गई नावें और 21 छोटी नाव जलकर खाक हुई। बंदरगाह से 80 मीटर दूर लंगर डाले जहाज तक पहुंच गई थी लपटे। कड़ी मशक्कत के बाद इसे बुझाया गया। और अब बात करेंगे YouTube वाले खान सर के बारे में, क्योंकि पटना में कोचिंग क्लासेस चलाने वाले खान सर पर यानी कि फैजल खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पहले कोचिंग वॉर में फायरिंग के बाद फैजल खान पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और अब उनके कोचिंग सेंटर पर भी खतरा मंडरा रहा है। जांच में फैजल खान के कोचिंग सेंटर पर फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पाई गई है, जिसके बाद उनके सेंटर से केस सील होने का खतरा बढ़ गया। आपको यह भी बता दें कि फायरिंग केस, गिरफ्तारी के एक संकट से जूझ रहे फैजल खान की कोचिंग सेंटर पर अब खतरा बढ़ता जा रहा है। आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है, देखिए।

0: पहले आर्म्स एक्ट में केस, फिर गिरफ्तारी का संकट और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर आ गई है। खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान के कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया, जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गईं।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है, जो यदि वे उसका मिर्च कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशामक पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशामक पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं।
0: जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। अगर जल्द ही इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, यहां तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है।
1: देखिए जांच करने के जो प्रक्रिया है उसमें इनिशियल स्टेज होता है कि उसको जांच की जाती है, फिर उसको नोटिस किया जाता है, फिर शोकॉज किया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म है, ABCDEFG और H तक फॉर्म है, जिस फॉर्म के हिसाब से उन पर कार्रवाई की है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, चूंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम किया जाता है, फिर शोकॉज किया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म है, ABCDEFG और H तक फॉर्म है, जिस फॉर्म के हिसाब से उन पर कार्रवाई की है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, चूंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है।
0: फैजल खान पहले ही आर्म्स का केस दर्ज होने के बाद संकट में घिरे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की तैयारी है।
2: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सर।
3: जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, नॉन बेलेबल सेक्शन लगा है कि उनके कहने पर गार्ड्स ने फायरिंग की थी, तो क्या लगता है कि खान सर को इस मामले में बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है?
2: बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंसर्ट कर दिया गया है FIR में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा।
3: आप लोग को क्या लगता है, आप उनके वकील हैं तो इस परिस्थिति में पुलिस उनको अरेस्ट भी कर सकती है?
2: पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
0: लेकिन इस सब के बीच अब फायर डिपार्टमेंट की जांच फैजल खान की परेशानी और बढ़ा सकती है।
1: यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी, यथाविनिश प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है।
0: दरअसल हाल में बिहार के मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद से प्रशासन हरकत में है। इसी कड़ी में फैजल खान के कोचिंग सेंटर की जांच हुई और अब कोचिंग सेंटर के सील होने का खतरा मंडरा रहा है। पटना से शशिभूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।
4: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहित सिंह जुड़ गए हैं। रोहित, लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, दूसरी तरफ अब उनके कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है, कई खामियां पाई गई हैं।
5: बिल्कुल शशि, देखिए अग्निशमन विभाग ने ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि खान सर यानी कि फैजल खान का जो कोचिंग संस्थान चलता है मुसलमपुर घाट इलाके में पटना में, उसमें गंभीर लापरवाही जो है बरती जा रही है, खासकर फायर सेफ्टी नियमों को लेकर जो है घोर वहां पर कह सकते हैं लापरवाही है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2 मार्च को इसी साल खान सर और फैजल खान को जो है वो नोटिस जारी किया गया था फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अब फिर से जब फायर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वहां पर ऑडिटिंग की गई है, उसकी जांच की गई है, तो फिर पाया गया है कि नियमों की घनघोर वहां अनदेखी की जा रही है। और इसीलिए अब समय दिया गया है 1 सप्ताह का कि अगर वहां पर सब कुछ फायर सेफ्टी मेजर को अगर ठीक दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर 1 सप्ताह के बाद ये फैजल खान का जो कोचिंग संस्थान चल रहा है उसको सील भी किया जा सकता है। और ये सिर्फ पटना में केवल सिर्फ ये फैसल खान की कोचिंग को लेकर ही नहीं बल्कि तमाम होटल हॉस्पिटल और कोचिंग संस्थान को भी इसी तरीके के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। जी
4: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका रोहित। बिहार में 18 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव ने सिर्फ सीटों के गणित को ही नहीं बल्कि एनडीए के भीतर सत्ता संतुलन को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है। सबसे ज्यादा चर्चाएं आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और कैबिनेट मंत्री दीपक प्रकाश के राजनीतिक भविष्य को लेकर की जा रही हैं। आपको बता दें कि एमएलसी उम्मीदवारों की सूची में दीपक प्रकाश का नाम नहीं होने के बाद राजनीतिक गलियारों में अब सवाल उठने लगा है कि क्या दीपक प्रकाश को मंत्री पद छोड़ने की नौबत आ सकती है, मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। दरअसल बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव होना है और बिहार विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए एनडीए के लिए 10 में से 9 सीटें जीतना करीब करीब तय माना जा रहा है। बीजेपी ने एमएलसी चुनावों के लिए अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जेडीयू ने भी 4 उम्मीदवारों के नामों को तय कर लिया है और एक सीट चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को मिली है। तो एनडीए के उम्मीदवारों की सूची में एक नाम की अनुपस्थिति सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई और ये नाम है बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश का। संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक किसी भी ऐसे मंत्री को जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। दीपक प्रकाश अभी नए एमएलए हैं, नए एमएलसी हैं, ऐसे में उनके मंत्री पद पर संकट अभी भी बना हुआ है। अब बात करेंगे महंगाई के झटके के बारे में क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर फिर से महंगा हुआ और इस बार आपको बता दें कि 29 रुपए बढ़ाए गए हैं प्रति सिलेंडर पर। 3 महीने के भीतर दूसरी बार है ये जब एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़ाए गए हैं। कीमत बढ़ने के बाद दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाला जो सिलेंडर है घरेलू उसकी कीमत 913 रुपए से बढ़कर हो गई है 942 रुपए। पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार है जब एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। 7 मार्च को सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ाई गई थी और एक बार फिर से 29 रुपए इसमें इजाफा किया गया है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में आई उथल पुथल की वजह से तेल और गैस सिलेंडर की कीमतों पर इसका बहुत बड़ा असर है। इसी के साथ हमें रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: In association with
4: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
5: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
6: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
3: हिंट, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
7: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
8: पत्रकारिता के गुर यहां नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
3: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
9: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी?
3: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
9: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
3: छात्रों को दिया मंच।
9: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
10: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
11: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
3: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
9: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
3: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

महंगाई का झटके पे झटका, घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा। कांग्रेस का हमला महंगाई में, मोदी ने फिर चलाया चाबुक। सरकार का दावा, दुनिया में सबसे सस्ती गैस भारत में। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर एक्शन, जबरदस्ती वसूली केस में पूर्व विधायक मिदनापुर से गिरफ्तार। कोलकाता में हिरासत में टीएमसी पार्षद, एमएलए मदन मित्रा पर कमारहाटी में चले अंडे। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर खतरा। एमएलसी चुनाव में एनडीए कोटे से नहीं मिला है टिकट, जेडीयू बीजेपी के उम्मीदवारों का नामांकन। पटना में खान कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। फायर सेफ्टी इंतजाम पूरे न होने के आरोप, प्रशासन का सेंटर सील करने का प्लान। और नीट री एग्जाम के प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को लेकर एनटीए ने किया इसे खारिज। कार्रवाई की दी चेतावनी। महानिदेशक ने कहा क्वेश्चन पेपर लाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सुबह के 11:30 बजे हैं और इस बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में जारी सियासत के बारे में, क्योंकि टीएमसी के संकट भरे दिन चल रहे हैं अब। और बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार पार्टी के नेताओं में असंतोष है और इसका असर बंगाल विधानसभा से लेकर संसद तक भी नजर आने लगा है। साथ ही साथ बंगाल के दागी टीएमसी नेताओं का बढ़ता हुआ विरोध या फिर दागी नेताओं के खिलाफ जारी एक्शन भी पार्टी की चिंता को बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु सरकार ने अपने फैसलों से बता दिया है कि हिंदुत्व उनके एजेंडे में कितना ज्यादा अहम है। राज्य सरकार ने अब मदरसों के सर्वे का फरमान भी जारी कर दिया है। तो बंगाल में शुभेंदु सरकार का नया फरमान आया है। फरमान है सभी मदरसों के सर्वे का। हिंदुत्व के नारे बुलंद करने के क्रम में शुभेंदु सरकार का यह फैसला अहम है। राज्य सरकार ने जो फरमान जारी किया है उसके मुताबिक सभी मदरसों का सर्वे होगा, उनकी वैधता जांची जाएगी, कागजों की जांच होगी। सरकार भविष्य की प्लानिंग का हवाला देकर मदरसों से आंकड़े जुटाने का हवाला दे रही है, लेकिन ऐसे फैसलों पर सियासत तेज है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रा और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे की जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ने वाले मौलवी की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाए। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है।
1: बंगाल का भूमि में धीरे धीरे धीरे धीरे सेकुलरिज्म और अपने वोट बैंक की लालच, इसमें विकास प्रगति पीछे चला गया। तुष्टीकरण की राजनीति आगे चलना पड़ा।
0: मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। वैसे बंगाल में बीजेपी सरकार के 1 महीने के कार्यकाल में सीएम शुभेंदु ने कई फैसले किए हैं जिसके बहाने सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। सरकार बनने के बाद से शुभेंदु अधिकारी ने अहम फैसले किए हैं, उनमें बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य किया जा रहा, बंगाल में लाउड स्पीकर से अजान बंद करना, राज्य में इमाम मुअज्जिन का भत्ता बंद करना और सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद करने का फैसला। मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लें। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसा है। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 226/27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले में मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ आवंटित किया था। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डेटाबेस तैयार करना है ताकि भविष्य में मदरसे से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति पर चोट जरूरी है।
1: तुष्टीकरण की राजनीति से बंगाल झील रहा था, खास करके पिछले कुछ वर्षों में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या खराब हुआ।
0: मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारियां पूरी हैं। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तपस सिंह गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी तपस जुड़ गए हैं कोलकाता से। तपस, इस पूरे मामले में किस तरह की जानकारियां और मिल रही हैं और जिस तरीके से तमाम पेपर्स, तमाम जांचों की सरकार बात कर रही है, बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी मदरसों के लिए, क्योंकि तमाम जो जांचें हैं या जो पैरामीटर्स हैं वो तो बहुत सारी जगहों पर वैसे भी पूरे नहीं किए जाते।
2: जी बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए अगर दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, दक्षिण 24 परगना, इन इलाकों में काफी सारे गैर मान्यता प्राप्त मद्रासा काफी सालों से वहां काम कर रहे हैं और अब सरकार ने ये मुहिम छेड़ी है कि ये तमाम जो एडेड और अनएडेड मद्रासा हैं सबके एक डेटाबेस बनाया जाए, क्योंकि 2014 में आपको याद होगा कि जब खागरागर विस्फोट हुआ था तब जाकर भारी तादाद में जो आर्म्स है वो रिकवर किया गया था ऐसे ही अनएडेड मद्रासा से, और उसके बाद लगातार तृणमूल सरकार के खिलाफ ये आरोप रहा है कि उनके तरफ से मद्रासा के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इस सरकार ने ये अपना रवैया साफ कर दिया, कार्रवाई होगी, लेकिन ये भी साथ में कहा गया है कि इसमें किसी भी प्रकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा वर्ष है वो जैसा है वैसा चलता रहेगा और पढ़ाई में कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आएगी, सिर्फ जो कागजात हैं उन कागजात को देखा जाएगा, परखा जाएगा, अगर कहीं लगा कि जो नियम है उस नियम के बाहर जाके कोई मद्रासा चल रहा है तो उनके खिलाफ बाद में कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो भी वहां पे पढ़ते हैं उन बच्चों के पढ़ाई में कोई भी असर नहीं आएगा साफ तौर पर कहा गया है। और सारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उन्हें 5 जुलाई तक बारीकी से एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है।
0: आप बने रहे तपस हमारे साथ। अपने दर्शकों को मैं भी बता दें कि बंगाल में चुनाव के बाद टीएमसी में मची भगदड़ के बीच ममता बनर्जी आज कोलकाता से दिल्ली रवाना होने वाली हैं। माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद वो दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ लेंगी। सोमवार को ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने वाली हैं। और आपको ये भी बता दें कि पार्टी के जो सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, उस बैठक में शामिल होने के लिए पहले ही, यानी एक दिन पहले ही दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सियासत घोर आपदा में है। टीएमसी चुनाव हार चुकी है, पार्टी में कलह मची हुई है, विधायक तो टूट ही चुके हैं, अब संसदीय दल में भी टूट की खबर है। टीएमसी पर आए संकट के बीच ममता बनर्जी विपक्षी एकता के जरिए मुसीबत को टालने की उम्मीद कर रही हैं।
3: चार मई को बंगाल के चुनावी नतीजों के अगले ही दिन जब ममता बनर्जी ने यह बयान दिया, तो क्या तभी उन्हें अपनी पार्टी पर आने वाले सियासी खतरे का अंदाजा हो गया था? क्या ममता को आभास हो गया था कि 15 साल की सत्ता हाथों से जाने का सीधा असर उनकी पार्टी पर होगा? ममता बनर्जी के मन में क्या था ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन महीने भर का घटनाक्रम ये बता रहा है टीएमसी पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। पहले फर्जी हस्ताक्षर मामले में 2 विधायक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गए, ममता ने कार्रवाई की तो दोनों विधायकों ने अपना गुट बनाकर 60 MLA को साथ ले लिया। ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, लेकिन संकट अभी थमा नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीएमसी के 28 में से 23 सांसद बाकी विधायकों के संपर्क में है।
4: ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
3: यानी चुनाव के बाद बंगाल में टीएमसी के भीतर शुरू हुई लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है, और इस बदले घटनाक्रम के बीच ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन से बड़ी उम्मीद लगाए हुई है। वैसे खबर है कि इंडिया गठबंधन की यह बैठक ममता बनर्जी के ही कहने पर बुलाई जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी नतीजों के ठीक बाद कह चुकी हैं कि अब वो आजाद पंछी हैं और पूरी तरह मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता पर काम करेंगी।
5: I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me. Rahul Gandhi rang up me. Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister. All the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you.
3: पहले इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की हसरत के साथ कांग्रेस की मीटिंग से दूर रहने वाली ममता बनर्जी इस बार खुद दिल्ली की बैठक में शामिल होने वाली है, क्योंकि अब मसला सिर्फ विपक्षी एकता का नहीं, उनकी पार्टी की फूट का भी है। अगर सांसदों में टूट हुई तो टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए अभिषेक बनर्जी एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। कोशिश विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की है ताकि टीएमसी के संकट को कुछ कम किया जा सके। आज तक ब्यूरो।
0: और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ तपस लगातार बने हो। तपस, सवाल अब यह है कि ये जो बैठक है जो दिल्ली में होने जा रही है, अभिषेक बनर्जी पहले ही पहुंच चुके हैं, ममता पहुंचने वाली हैं, कितनी मददगार होगी खास तौर से बंगाल के भीतर? जिस तरह से तमाम जो नेता हैं अंडे फेंके जा रहे हैं, हमला किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, पार्टी में फूट पड़ी हुई है, बहुत बुरे हालात में है तृणमूल कांग्रेस।
2: जी बिल्कुल, देखिए तृणमूल कांग्रेस अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और हमें पता है कि एक के बाद एक बड़े नेता, कद्दावर नेता सारे आकर अपनी जुबान खोल रहे हैं और कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी के खिलाफ वो बात बोलते नजर आ रहे हैं। अब खबरें ऐसी भी है कि कई सारे सांसदों जो है वो रिबेल हो चुके हैं, वो बागी हो चुके हैं, वो कैंप को कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में अभिषेक बनर्जी कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंचेंगी और उसके बाद इंडी बैठक में वो शामिल होंगी। लेकिन जो असल मसला है कि इस भापने की कोशिश में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की, कितने ऐसे सांसद हैं जो दूसरे कैंप के साथ अभी भी संपर्क में है, क्या उनसे बातचीत करके क्या कुछ बदला जा सकता है, इसकी जीतो और कोशिश में रहेंगे। क्योंकि अगर सांसद तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी के खेमे से निकल जाते हैं तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं जो अहमियत होगी ममता बनर्जी की वो कम हो जाएगा। तो वैसे में देखना यह होगा कि ममता बनर्जी आज पहुंचने के बाद क्या कुछ करती हैं। ये तो खबरें आ रही है सूत्रों के मुताबिक कई सांसदों के साथ उनकी मीटिंग है, बैठक होगी, उसके बाद कुछ विषय में चर्चा किया जाएगा कि आगे जाकर रोडमैप क्या होगा। लेकिन उनके लिए एक सिरदर्द का सबब यह है कि ज्यादातर सांसद जो है वो इस समय पूरी तरीके से बागी हो चुके हैं। अब जो विधानसभा में हमें देखने को मिला है, क्या ऐसा ही मंसर हमें अब सांसद में देखने को मिलेगा, इसको लेकर काफी ज्यादा जोरों की चर्चा इस समय पश्चिम बंगाल के राजनीति में हो रही है। अब ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि आगे जाकर उनका रोडमैप क्या होगा या फिर वो स्थिति को संभालने के लिए कितनी तैयार होती है।
0: तो सबकी नजरें रहेंगी इस बैठक पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका तपस। कल दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले कांग्रेस और सीपीएम के बीच दरार उभर कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जानकारी है कि हाल ही में हुए केरल चुनाव के दौरान पिनराई विजयन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से सीपीएम नाराज है। सीपीएम की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिखकर जवाब भी मांगा गया। दरअसल केरल में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने पिनराई विजयन पर बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगाए थे। उसी बयान को लेकर अब सीपीएम ने कांग्रेस से जवाब मांगा है। सोचिए, विपक्षी एकता की बैठक से ठीक पहले सीपीएम ने साफ कर दिया है, नाराजगी जाहिर की है और पत्र लिखा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। और अब खबर है बंगाल में टीएमसी नेताओं पर जारी एक्शन के बारे में। आज एक और टीएमसी पार्षद के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा। आरोप अब यह है कि टीएमसी पार्षद जसीमुद्दीन पर पॉक्सो एक्ट के तहत 2023 में मामला दर्ज किया गया था। उस मामले में इस वक्त कोलकाता पुलिस की टीम पार्षद के आवास पर पहुंची और बयान दर्ज करवाया जा रहा है। ऐसे किसी टीएमसी नेता पर एक्शन का यह कोई पहला मामला नहीं है। इन दिनों लगातार शुभेंदु सरकार एक्शन में है। किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो किसी पर जबरदस्ती उगाही और धमकी देने के आरोप हैं और तमाम मामलों को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है।
3: कहीं टीएमसी विधायक पर हमला तो कहीं पूर्व विधायक पर एक्शन, कहीं कटमणि लौटाने को बेचैन दिखे टीएमसी नेता। बंगाल में एक महीने की सरकार के कानूनी एक्शन का साइड इफेक्ट दिख रहा है।
1: बंगाल को, कलकत्ता को, भवानीपुर को फिर खड़ा करने का काम हम लोग करेगा। गुंडा सब भाग गया, बाकी जो बचे खुचे हैं मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सब अच्छा होगा।
3: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपना वादा दोहरा रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि बंगाल में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सरकार की सख्ती के बीच एक ओर प्रशासन दागियों की गर्दन दबोचने में दिन रात लगा हुआ है तो दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा पार्टी के नेताओं पर टूटा है। उत्तरी 24 परगना में टीएमसी विधायक मदन मित्रा पर भीड़ ने हमला कर दिया। नाराज लोगों ने उन पर अंडे फेंके। मदन मित्रा पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी पहुंचे थे। वहीं नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, उन्होंने मदन मित्रा पर अंडे फेंके। एक तस्वीर हुगली से भी आई है जहां भीड़ टीएमसी के नेता को सड़क पर खींचते हुए थाने तक ले गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गमछा पहने तृणमूल नेता तपस चक्रवर्ती को लोग खींचकर थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी का दावा है कि कई भ्रष्टाचार और तोलाबाजी के मामलों में इस नेता का नाम सामने आया था, लेकिन तब ये सत्ता के दम पर लोगों को डरा धमका देता था। इन दिनों बंगाल में ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहे हैं। वेस्ट मिदनापुर पुलिस ने टीएमसी के एक नेता को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के वेस्ट मिदनापुर जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुजॉय हाजरा की गिरफ्तारी जबरन उगाही और जमीन घोटाले में की गई है। जानकारी के मुताबिक हाजरा हाल ही में इलाज के लिए चेन्नई गए थे। खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचते ही पुलिस ने पकड़ा। वहीं 6 जून को कोलकाता पुलिस ने एक टीएमसी पार्षद को हिरासत में ले लिया। टीएमसी पार्षद पापादित्य दास गुप्ता पर जबरन वसूली का आरोप है। उधर उत्तर 24 परगना जिले गोपालनगर में टीएमसी ट्रेड यूनियन के नेता कथित तौर पर कटमनी के नाम पर लिए पैसे वापस करते दिखे। आरोपों के मुताबिक नेताओं ने टोटो ड्राइवरों से ये अवैध वसूली की थी। आरोप है कि स्थानीय टीएमसी नेताओं ने टोटो यूनियन में शामिल होने के लिए टोटो ड्राइवरों से कथित तौर पर कट मनी ली थी। हालांकि जिन लोगों से कट मनी लिया गया था उनमें से कई नाराज दिखे। उन्होंने नाराजगी जताई तो गोपालनगर पुलिस ने मोर्चा संभाला और ट्रेड यूनियन के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे मामलों को लेकर दो टूक कह चुकी है कि गुनहगार नहीं बचेंगे।
1: बंगाल में एक राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार का स्थापना हो गया और मैं मुख्यमंत्री का नाते ज्यादा बात तो नहीं बोल सकता हूं, थोड़ा लिमिटेशन है, लेकिन मेरा 1 महीना पूरा नहीं हुआ। 9th को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। आप आपका भाई के ऊपर विश्वास रखिए।
3: ताबड़तोड़ एक्शन के बाद से दागियों में खलबली मची है। हुगली से पार्था रहा और कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.

जब उसके खिलाफ आज तक का कोई आपराधिक मुकदमा न्यायालय ने कभी सजा नहीं दी, न तो कभी चोरी में, न तो डकैती में, न तो इस तरीके के प्रयोग। एक 302 का 307 का मुकदमा उसके ऊपर है और किसी ने का अपहरण का मुकदमा लिखा रखा है, जैसे SP ने कहा। तो इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप इनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है, मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर हैं, वो कुछ छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये फिर इसके मतलब इनका LIU क्या कर रहा था, कैसे समाज के लोगों ने आंदोलन किया, बताए क्यों नहीं फोर्स लगाया इन लोगों ने, खाली जब आंदोलन हो गया तो कहेंगे आप राष्ट्र का लगा देंगे, ये तो डिटेक्टरशिप हो गई।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पश्चिम बंगाल में मदरसों पर शुभेंदु सरकार की सख्त नजर, वही खाते लेकर तमाम दस्तावेजों का सर्वेक्षण संचालन में नियम कायदे की जांच, 5 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट। बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में असंतोष और गहराया, विजयन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग बबूला, खड़गे को खत लिखकर नाराजगी जाहिर की, आज दिल्ली पहुंच रही हैं ममता बनर्जी। देश को महंगाई का झटके पे झटका, घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा, कांग्रेस का हमला, महंगाई मैन मोदी ने फिर से चलाया चाबुक, सरकार का दावा, दुनिया में सबसे सस्ती गैस भारत में। पटना में खान कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, फायर सेफ्टी इंतजाम पूरे न होने के आरोप, प्रशासन का सेंटर सील करने का प्लान।

0: God.
1: और वो शेर हमारी तरफ आ रहा है।
2: चाले लपा चिले भी पड़ से।
1: हम थोड़ा सा पीछे की तरफ हट रहे हैं इस समय। वाकई आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बंदूकें तनी हो और आपके सामने शेर आ जाए, दोनों में फर्क है। हम जंगल के राजा के साम्राज्य में इस समय खड़े हैं।
3: उसका एक टेरिटरी एरिया होता है, वो उसका राजा होता है।
4: जितना ज्यादा लायन ताकतवर रहेगा उतनी उसकी टेरिटरी बड़ी रहेगी।
5: तो रॉयल नहीं मले, वो राजा की तरह ही रहते।
1: आज रास्ता रोक रोक कर ही शेर अपने दर्शन खुद हमें दे रहे हैं। दुनिया में इससे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय क्या हो सकता है? हम जंगल के

0: राजा के साम्राज्य में इस समय खड़े हैं। एक पूरा परिवार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सोचिए कि एक ऐसी दहाड़ जो 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, अगर अपनी पर आ जाए तो एक समय में 50 किलो मांस की खुराक इनकी हो सकती है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके सामने ये अगर डट जाए तो वो एक पल को भी टिक जाए। ये जंगल के राजा की कहानी है और आज हम दुनिया की सबसे अद्भुत कहानी आपको सुनाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप चलिए हमारे साथ इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सफर पर।
1: जिसकी मौजूदगी भर से जंगल की हवा बदल जाती है, जिसकी आहट सुनाई नहीं देती लेकिन एहसास पूरे जंगल को हो जाता है, जिसकी महक भर से चीतलों के झुंड चौकन्ने हो जाते हैं, और जिसकी एक दहाड़ कई कई किलोमीटर दूर तक जंगल का कानून सुना देती है। हम उसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय गीर के सबसे खूंखार बंबर शेर की तलाश में निकल पड़े।

जब भी जैसे हमारे कैमरे पर आप देखते हैं कि हमने आपको टाइगर्स दिखाया, चीता दिखाया, आज हम शेर देखने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि आप पहुंचे वहां पर आपने देख लिया। कई कई अटेम्प्ट समय लगते हैं, कई कई घंटे, कई बार कुछ कुछ दिन भी लग जाते हैं। लेकिन गिर, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के जो ट्रैकर्स हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं, वो इस जंगल का एक हिस्सा है एक तरह से, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है। हम देखते हैं कि कितना समय हमें लगता है शेर की ऐसे ही एक प्राइड को देखने में। वैसे गिर में और भी बहुत कुछ है, चलिए हमारे साथ।

0: देखिए, हिरन नदी है यहाँ पे, और यहाँ के जो क्रोकोडाइल्स हैं ना, यहाँ के जो मगरमच्छ हैं, वो बहुत बड़े। और देखिए यहाँ पर सामने, मोशन कैमरा उधर करके दिखाओ, ये देखिए कितनी कितना बड़ा। ये अभी सुस्ता रहा है बाहर, गर्मी में अपने आप को ठंडा रखने का इनका तरीका होता है कि अपनी पूरे जबड़े को खोलकर ये बैठते हैं।
1: के जंगल में सूरज की तपिश कम होना शुरू हो चुकी थी। यही वो घड़ी है जब जंगल का असली खेल शुरू होता है। दिन भर झाड़ियों की छांव में आराम करने वाले शिकारी अब अपने इलाकों से बाहर निकलने लगते हैं।
0: कोई टाइम होता है क्या कि इस टाइम में आते ही हैं या दोपहर?
2: जो एनिमल है ना, उसका अलग अलग है और अलग अलग उनका स्वभाव है। जैसे नीचा से है, लायन वगैरह है, तो ज्यादातर जैसे कि लेस इंपोर्टेंट कैट है, जो जितनी कैट जो मांसाहारी हो ज्यादातर रात को।
0: अच्छा,
2: पानी का तो क्या है कि वो खाना खाने के बाद अर्ली मॉर्निंग या शाम
3: अर्ली मॉर्निंग इवनिंग
1: हम भी निकल पड़े गिर के सबसे ताकतवर अल्फा मेल बब्बर शेर को देखने।

0: अभी हम लोग किस तरफ जा रहे हैं?
1: अभी हम ये रूट नंबर रूट 6 नंबर का रूट है उस पर जा रहे हैं।
2: गिर के जंगलों में शेरों की संख्या जितनी समृद्ध हो चुकी है, हम केवल शेर आपको दिखाएंगे नहीं, शेरों से आपको वाकिफ कराएंगे। और इतना करीब से जब उसकी निगाह हमारी निगाहों से टकराए, शरीर में सिहरन दौड़ जाए, इस तलाश में हमारे साथ चले जंगल की चप्पे चप्पे से वाकिफ बहुत से खास लोग।
3: मेरा नाम मनोज त्रिवेदी, मुझे वैसे मोंटी के नाम से जानते हैं यहाँ पे। मैं लास्ट 25 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। जो भी वीवीआईपी आते अक्सर मैं उसके साथ रहा हूँ।
4: मेरा नाम सोनल शिलू है, मैं यहाँ पे फॉरेस्टर हूँ और अभी वन्य प्राणी अवलोकन में मैं काम कर रही हूँ। 2011 से मैं यहाँ गिर में काम कर रही हूँ।
5: मेरा नाम घनश्याम बारिया है, मैं 2018 से यहाँ वाइल्ड लाइफ डिवीजन में ड्यूटी ज्वाइन किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और तब से मैं तकरीबन 9-9.5 साल से यही हूँ।
6: मेरा नाम विजय शेख है और मैं वाइल्ड लाइफ डिवीजन शासन गिर में फॉरेस्ट गार्ड तरीके अभी मेरी फर्ज है और मैं यहाँ 9 साल से वन विभाग में काम कर रहा हूँ।
7: मेरा नाम बावलिया हरीश है और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ड्राइवर का जॉब कर रहा हूँ।
2: ये सफर केवल एक जानवर को देखने की नहीं बल्कि उस जंगल को समझने की है जहाँ हर झाड़ी की ओर से एक अनजाना रहस्य झांकता है और हर आवाज किसी शिकारी की मौजूदगी का संकेत देती है। गिर कोई घना अंधेरा जंगल नहीं, यहाँ दूर दूर तक फैले सूखे पेड़ हैं, बबूल की कांटेदार झाड़ियाँ हैं, घास के मैदान हैं।
8: ये सारे जो पेड़ है वो ग्रीन दिखे क्या? सारे पेड़ उस टाइप के पेड़ सारे आपको ग्रीन दिखे।
9: हाँ,
8: तो हमारे पास भी एनिमल्स है ना।
9: हाँ।
8: ये अरबी वर्ड में
9: हाँ।
8: ब्राउजिंग भी करते हैं और ग्रेजिंग भी करते हैं, दोनों टाइप करते हैं। मतलब जैसे हरी घास है नीचे से ग्रेजिंग करेंगे और अगर पेड़ में नई पत्ती आई है
9: हाँ।
8: तो ब्राउजिंग भी करेंगे।
9: अच्छा,
2: यही खुलापन गिर को खास बनाता है। यहाँ शेरों को अपने शिकार पर नजर रखने में आसानी होती है और सफारी पर निकले लोगों को जंगल के राजा की एक झलक मिलने की उम्मीद।
3: आप लायन सेंचुरी में जा रहे हैं, लायन सेंचुरी में जाने से मतलब लायन हमारा रॉयल एनिमल्स है सर। टाइगर और लेपर्ड वो थोड़ा साई एनिमल्स है, वो अगर किसी के प्रेजेंट है तो छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन लायन अगर किसी के प्रेजेंट है तो खुद को अपने प्रेजेंट करेंगे कि मैं यहाँ पे हूँ, आप देख लो जरा, थोड़ा ऐसे हो जाएगा। मतलब तो लायन एकदम रॉयल है सर, तो वो
9: मतलब छुप कर निकलेगा नहीं, वो सामने आराम से रहेगा,
3: आराम से रहेगा, आराम से जाएगा, इसीलिए तो उसको किंग कहा गया। टाइगर को किंग नहीं, लेपर्ड को किंग नहीं सर, लायन को सिर्फ किंग कहा, तो उसमें किंग वाले वाकई में वो है सर, उसके गुण है उसमें किंग वाले।
2: हमारी गाड़ी धीरे धीरे जंगल के कच्चे रास्तों पर आगे बढ़ने लगी, लेकिन गिर केवल शेरों का जंगल नहीं है। रास्ते में हिरणों के झुंड मिले, उनके साथ मिले लंगूर। जंगल की भाषा में ये केवल पड़ोसी नहीं, एक दूसरे के चौकीदार हैं। एक खतरा देखता है, दूसरा खतरे की खबर पूरे जंगल में फैला देता है। उनको साथ देखकर हमारे मन में यही सवाल आया, ये रिश्ता क्या कहलाता है?
3: बंदर भी है उसके साथ में, कंपनी रहती है उन लोगों की।
9: मतलब कंपनी क्यों रहती है? आसपास रहते हैं जनरली।
3: जैसे ये नई लिप्स खा रहा है, देखिए आप ऊपर, तो उसमें से नीचे गिरेगी तो नीचे डियर खाएंगे।
9: अच्छा, बंदर खा रहे हैं उसमें से जो गिरेगा वो हिरन नीचे खा लेंगे उनको।
3: हाँ।
9: कम मेहनत में पेट भर खाना,
3: और ऊपर बैठे बैठे सीसीटीवी वाला काम भी वो करेंगे।
9: तो उसको ऊपर का काम बंदर,
3: मतलब व्यू बड़ा रहेगा ना।

0: कि आप अच्छे से बैठे हैं रहनी तक।
1: हाँ देखा,
2: आगे हमारी नजर एक शाख पर बैठे उल्लू पर पड़ी।
0: इसके जो पंख है ना, हाँ। अभी देखिए वो मुंह दे रहा,
1: हाँ हाँ।
0: इसके पंख की आवाज नहीं आएगी। नाइट में मूवमेंट करनी होती है, नाइट में एकदम साइलेंट फॉरेस्ट होता है, एकदम साइलेंट।
1: अच्छा,
0: तो थोड़ी सी भी आवाज, हल्की भी सी आवाज उसके पंख की नहीं आएगी। बाकी के जो एनिमल बर्ड्स होते हैं,
1: हाँ।
0: वो जैसे पंख फैलाएंगे, हाँ। तो उसकी आवाज आएगी,
1: फड़फड़ाने की,
0: फड़फड़ाने की
1: आवाज नहीं आती,
0: इसकी नहीं आती।
2: लेकिन हम अंजामे गुलिस्ता जाने बिना आगे बढ़ गए। हमारी गाड़ी ने दोबारा स्पीड पकड़ ली।
1: यहाँ पे कौन कौन से डियर हैं?
0: हमारे पास चौसिंगा है, चिकारा है, बॉर्डर पेरिफेरी में ब्लैक बक दिखते हैं, हिरन है, नीलगाय है, साबर है और स्पॉटेड डियर है।
2: इस बीच जंगल में हमको शेर के नाखूनों के निशान दिखने लगे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे वो कहीं आसपास ही।
0: ये नीचे नीचे देखो, बहुत सारे
1: नाखून का निशान है।
0: तो ऐसे मार्क करेगा वो,
1: तो ऐसा मार्क क्यों करता है?
0: टेरिटरी के लिए,
1: टेरिटरी
0: एनिमल्स है ना, तो टेरिटरी के लिए ऐसा मार्क करता है।
1: उसके बताओ एक एक नाखून का निशान कितना बड़ा है, उनके अपने नाखून सैनिटाइज
0: हो जाएंगे, उसके नाखून भी सैनिटाइज हो जाएंगे। ऐसे यूरिन स्प्रे करेगा, फिर अपने बाल लगाएगा पेड़ के साथ, फिर पीछे वाले पैरों से वहाँ थोड़ा खुदाई जैसा करेगा, फिर रोर करेगा। तो ये सारे टेरिटरी मार्किंग के उसके वो है, तो ऐसे मार्क करता है वो टेरिटरी।

गिर के इन जंगलों में जो हिरण की आबादी है अलग अलग प्रजातियों के, वो अपने आप में इतनी पर्याप्त है कि शेरों को शिकार के लिए जूझना नहीं पड़ता है किसी भी मौसम में। भरपेट अच्छा पौष्टिक खाना उन्हें यहीं इन घने जंगलों में मिल जाता है।

0: बारिश के बाद घास आएगी, मतलब और ग्रीन लुक आएगा,
1: एकदम ग्रीन चादर जैसा हो जाएगा पूरा। ये पीकॉक की डेंजर कॉल, उसको कुछ मतलब ऐसा लगा तो इस टाइप की डेंजर कॉल देके वो उड़ते हैं।
0: के जंगलों को जो ये कहा जाता है ना कि यहाँ पर शेरों के कॉन्जर्वेशन की, इन लोग को जो बचाया गया है, जो उनकी आबादी बढ़ी है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पर जो फॉरेस्ट के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, आप सब लोग हैं, क्या वजह है, क्या मतलब, क्या अलग, किस तरीके से काम करते हैं?
2: सबसे पहले तो यहाँ के जो स्टाफ है ना, वो गिर को ना अपनी माँ की तरह देखते हैं, तो अपनी देवी जैसे वन देवी मानते हैं, तो वो सब ऐसे नहीं लग रहे हैं कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि गिर हमारी माँ है, तो माँ के लिए तो बच्ची सब कुछ करेंगे, तो हम तो सिर्फ अपना फर्ज, जो बच्चों का जो फर्ज है वो अदा कर रहे हैं, तो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको उसने हमको जो दिया है वो उसने हमने दिया है। रखिए श्वेता सिंह, ये तो है हमारे गिर के किंग, ये अपने रुबाब में ही रहेंगे, आप तैयार रखिए अपने कैमरे की टीम।
0: वाह क्या बात है, ये जंगल शायरी।
3: गिर एशियाई शेरों का आखिरी प्राकृतिक घर है। यहाँ 1500 वर्ग किलोमीटर के जंगल में करीब 900 एशियाई शेर रहते हैं। उबड़ खाबड़ रास्तों पर हमारी गाड़ी दोबारा दौड़ रही, तभी अचानक गाइड का इशारा हुआ, गाड़ी रुक गई। सामने झाड़ियों के बीच कोई हलचल सी थी,
1: थोड़ा सा ही होता है।
0: क्या बोल रहे?
1: फीमेल आ रही है, लाइनस आ रही है,
0: लाइनस आ रही
1: है। हाँ हो रही।
0: किधर? उधर लाइनस
1: ना ना दीपन चे
0: आ रही है।
1: आप ये जो पेड़ है ना, ये
0: जी जी जी,
1: इसकी बिल्कुल पीछे यहाँ से देखिए एकदम लास्ट में अभी आ रही
2: है। ये
0: यहाँ पे। अच्छा हाँ हाँ दिखी दिखी दिखी, दिख रही है इधर इसकी सीध में बिल्कुल,
1: टेल भी दिख रही है।
0: हाँ हाँ
3: झाड़ियों की ओट में एक शेरनी बहुत खामोशी से हमारी तरफ देख रही थी, इतनी शांत कि अगर हमारे साथ गाइड न होते तो हमें पता भी न चलता।
0: एक शेरनी आ रही है इस तरफ, हालांकि अभी शायद गाड़ियों की मूवमेंट को देखकर वो वहीं पर बैठ गई है।
3: जंगल का यही नियम है, जो दिख जाए वो शिकारी नहीं होता, असल शिकारी वो होता है जो दिखाई नहीं देता। लेकिन रोमांच अभी तो शुरू हुआ है, अचानक खबर मिली कि पास में एक प्राइड मौजूद है।
0: ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, इसका मतलब है कि कुछ है यहाँ पर, शायद शेर।
3: प्राइड यानी शेरों का झुंड। एक प्राइड में एक या दो शेर होते हैं जो अक्सर भाई होते हैं, साथ में होती हैं 9 से 10 शेरनियां और उनके कई शावक।
2: वो देखिए वहां पे सो रहा है।
0: कहाँ? ओह अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
3: कुछ सेकंड्स बाद हमने जो देखा उसे देखकर यही कहा जा सकता है अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय।
0: एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ
2: चार फीमेल है,
0: नौ दस कब्स है ना, ये जो छोटे छोटे सो रहे हैं इधर, तो जिन जिन कब्स को देखने के लिए, जिन हाँ थोड़ा सा आगे ले लीजिए, जिन शावकों को देखने के लिए हम पूरे जंगल में भटक रहे थे, वो यहाँ पर इस बरगद की छाँव में सो रहे हैं। गर्मी में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप शेड ढूंढ पाएँ इन जीवों के लिए, और शेड आप ढूंढ पाएँ और पानी का स्रोत, तो यहाँ पर पानी भी है और यहाँ पर शेड भी है और पूरा परिवार आराम से।
3: तीन शेरनिया और उनके साथ सात शावक, कोई खेल रहा था, कोई माँ के शरीर से लिपटा था, कोई उत्सुकता से हमारी तरफ देख रहा था।
0: कितने बच्चे हैं इसके?
2: ये सात बच्चे हैं।
0: सात बच्चे
1: एक फीडिंग करने के लिए कर
0: रहा है। अच्छा,
1: फीडिंग के लिए मदर कर रहा है।
0: ओ कितना प्यारा है
1: बच्चा, फीडिंग करना, मदर को नहीं करवाना इसलिए खड़ी हो गई।
0: अच्छा, कितना बड़ा होगा ये? तीन महीने। पूरी दुनिया में सिर्फ यहाँ पे गिर में आपको ये जो मेजेस्टिक एशियाटिक लायंस हैं वो मिलते हैं। ये जो बब्बर शेर हैं वो केवल और केवल गिर में पूरी पृथ्वी पर यहीं पर मिलते हैं। और ये जो आपको शेरनियाँ दिख रही हैं उनके साथ सात शावकों का होना एक बहुत शुभ संकेत है कि किस तरीके से कोशिशों के साथ ये पूरी आबादी बढ़ रही है, पनप रही है। वरना तो एक समय ऐसा भी आया था जब केवल 20 एशियाटिक लायंस बचे थे धरती पर, लेकिन उस समय जो जूनागढ़ के नवाब थे उनकी तरफ से कोशिशें शुरू हुई और धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हुए वर्तमान के गुजरात में ये कोशिशें इस स्तर पर हैं कि आज लगभग 900 के आसपास का आंकड़ा बताया जाता है एशियाटिक लायंस का।
3: जंगल का सबसे खूंखार शिकारी और उसके बीच बचपन की सबसे अविश्वसनीय तस्वीरें, लेकिन बब्बर शेर को अपने सामने चलकर आते हुए देखने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई थी अभी। इस बीच शाम ढलने लगी और हमें रिजर्व एरिया से बाहर की तरफ जाना पड़ा, पर हमने तय किया अगले दिन दोबारा सुबह सुबह अल्फा मेल बब्बर शेर को देखने पहुंचेंगे। खूंखार शेर को देखने के लिए, उन्हें समझने के लिए हमने बात की उन शेर दिलों से जिनकी जिम्मेदारी गिर के जंगलों में शेर का ख्याल रखने की है।
4: मेरा नाम है मोहम्मद भाई, मैं करीब 25-30 साल से इसमें काम कर रहा हूँ।
5: मेरा नाम सागर मांजरिया है, मैं पिछले 17 साल से वाइल्ड लाइफ डिवीजन में रेस्क्यू ट्रैकर के पोस्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ।
6: मारू नाम सुरेश बेशेखवा, हूँ 2007 से काम करूँ छू। हम
0: जंगल में जिप्सी से उतरना अलाउड नहीं होता है। हम जंगल में नहीं, जो रिजर्व एरिया है उसके बाहर बैठे हैं, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ बैठी हूँ ये इकलौते लोग हैं जो जंगल में उन शेरों के बीच भी पैदल जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं उनको सामान्य शब्दों में उनका परिचय करूँ तो ये ट्रैकर्स हैं और ये धड़कन है इस जंगल की। आप लगातार 25 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप लोग पैदल जाते हैं जंगल के अंदर?
4: हाँ, 25-30 साल हो गए।
0: क्या होता है, कैसे सुबह कितने बजे आप लोग, और एक लाठी रहती है सिर्फ पास में?
4: लाठी रहती है हमारी पास। सुबह हम 5:30 बजे निकलते हैं ना, 5:30-7 बजे तो अंदर इंटरेस्ट हो जाते जंगल में। तो पहले अंधेरा होता है, टॉर्च से हम देख लेते हैं रास्ते पे कि पगमार कहाँ पे कहाँ नहीं है। उसके बाद हमारा जो इलाका है ना वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं तो कोई रोरिंग सुनते हैं हम अलार्म कॉल, कोई लाइन रोरिंग किया, उसके बाद कोई सांबर चीतल है ना वो बोलते रोड से अंदर की साइड में, तो थोड़ा उजाला होने देते, उसके बाद अंदर जाते। बाकी तो हम क्या है, रास्ते पे जो हम पगमार देखते हैं ना तो पता चल जाता है भाई लाइन ही किया है कि लेपोट किया है। उसके बाद हम अंदर जाते ऐसे घूमते रहते, देखते रहते, अगर लाइन मिल गया पांच मिल गया, दो मिल गया, जो भी मिले तो उसका पूरा बॉडी देख लेते दोनों साइड में, सिर पे कोई पैर पे तो कोई भी चोट तो नहीं है ना, क्योंकि मैम रात को ही क्या बच्चे वाले का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि रात में झगड़ा होता है, अगर दूसरा मेल आ गया तो उसको बच्चे को मार देगा वो।
0: आप लोग पर नहीं अटैक करता है?
5: लायन मैम क्या है, बहुत रॉयल एनिमल है, वो कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम एकदम नजदीक चले जाते हैं बिना पता है, नहीं उसको पता है नहीं हमको पता, फिर भी इतना रॉयल है कि वो एक बार ऐसी आवाज निकालेगा, वो बताएगा कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ आप दूर रहो, और फिर एक दो बार फिर वो चाँद तो ऐसे डायरेक्ट करेगा ही नहीं है, वो एक दो बार घुर्राएगा आपको वार्न करेगा फिर मतलब चला जाएगा, फिर ये आप उसको लगेगा कि मैं ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, वो ज़्यादा आदमी ऐसे नज़दीक आ रहा है तो वो जगह छोड़ कर दूसरी जगह, इतना रॉयल एनिमल है तो उसका वजह से वो अटैक नहीं करता है।
0: तो आपका सब एक्सपीरियंस अच्छा रहा है?
6: हाँ अच्छा
0: रहा। लाइन के साथ
6: और भी बच्चे वाली होती है तो उसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि कहाँ पर है, और हम जा रहे हैं बच्चे वाली है, वो भी वो नहीं करेगी, ऐसे रहता है सब।
0: कोई कोई इंसिडेंट याद आता है आप में से किसी को भी कि मतलब आपको अचानक सामने आ गया शेर, और मतलब ऐसा कुछ
4: अचानक क्या है, जो गिर में के जो स्टाफ के जो ट्रेकर है सब वो समझते भाई जो हमें लाइन के पीछे चलना है तो कैसे चलना है, शिकार के मुंह में लाइन चलता है तो हमें पीछे कैसे चलना है,
0: कैसे मतलब
4: कि भाई पता है पैर हमारा ऊपर पड़ता है ना, पैर के ऊपर पत्ते के ऊपर उसका भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, वो शिकार के मुंह में होता है ना लाइन तो ऐसे होता है, तो उसको डिस्टर्ब होगा ना तो घुराएगा एक दो बार, क्योंकि उसको बात वो पसंद नहीं है,
0: क्यों उसका शिकार भी तो सुन लेगा वो।
4: हाँ
0: तो उसका सरप्राइज खत्म,
4: इसीलिए थोड़ा गुस्से में होता है।
0: अच्छा
4: है ना, हम तो समझ जाते कि भले ठीक है तो पसंद नहीं है तो नहीं जाने दो, हम छुप छुप के चलते।
0: अच्छा
4: वो जैसे छुप के चलता है तो हमें पेड़ पे छुप जाते हैं, जाड़ा आता है उसमें छुप जाते हैं, भाई क्या कर रहा है वो, छुप के ट्राई कर रहा है शिकार के मुंह में, तो करने दो उसको।
3: अगली सुबह जंगल का मिजाज बदला हुआ था, हवा में ठंडक थी, सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर जमीन पर गिर रही थी, और हम एक बार फिर अपनी गाड़ी पर सवार इस उम्मीद में कि आज राजा से आमना सामना होगा। सुबह की शुरुआत भी शानदार हुई, सबसे पहले कुछ शेरनियां अपने बच्चों के साथ दिखाई पड़ी, शावक खेलते हुए माए चौकन्नी, सुबह की शुरुआत भी शानदार हुई सबसे पहले कुछ शेरनियां अपने बच्चों के साथ दिखाई पड़ी शावक खेलते हुए माए चौकन्नी।
0: सुबह सुबह का समय है और ये तीन शेरनियां अपने बच्चों के साथ आगे की तरफ बढ़ रही हैं। रात का समय जो होता है वो समय होता है जब शेर सबसे अधिक शिकार करते हैं, और ख़ासकर गर्मी के समय में दिन में मूवमेंट कम, लेकिन सुबह सुबह जब इस तरीके से जितने बजे हम आए हैं इस समय जब आप आते हैं तो ये बहुत ही रेयर बहुत ही दुर्लभ तस्वीर आप देख पाते हैं। आप देखिए वो हालांकि वो शेरनी भी अब घूर कर हमारी तरफ देख रही है इस समय, यही कारण होता है कि आप थोड़ा धीरे बोलते हैं, आप कोई आवाज़ नहीं करते हैं ताकि उनकी जो दिनचर्या है उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान न हो।
1: पेड़ पे मार्किंग करेगी मैम, वो जो पेड़ है ना पलस वाला, मैंने
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ देखिए वहाँ उसने स्मेल ली। अब अभी भी स्मेल ले रही है, देखिए आप मैंने कल बताया था ना तो स्मेल ले रही है अभी जो
0: अच्छा,
1: नाखून से
0: हाँ
1: अभी नाखून से किया है अब नाखून लगा रही है वहाँ।
0: तो जो शेरनी
1: वो दे रही है
0: वो देखिए वो पेड़ पे अपनी मार्किंग पेड़ पर मार्किंग कर रही है, हल्का सा उसका आप रोर सुन सकते हैं, और जो हमें बता रहे हैं उसके अनुसार वो अपने ग्रुप को एक साथ एक जगह इकट्ठा अपनी जो पूरी प्राइड है उसको एक साथ रखने की ये कोशिश है। जो शेर और शेरनियाँ होते हैं उनको आदत होती है इन गाड़ियों की, लोगों की, वो दूर चली जाती हैं, लेकिन आप उस नन्हे से शावक को देखिए, वो पूरी क्यूरियोसिटी में हमारी तरफ देख रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो डरता नहीं है, वो किसी चीज़ से डर नहीं रहा है, उसको केवल ये जानना है कि ये कौन है। वो पास में बैठा है, कुछ सालों बाद हो सकता है उसको भी ये बात समझ में आ जाए और वो ध्यान देना बंद कर दे, लेकिन अभी उसके लिए हम लोग उतनी ही बड़ी क्यूरियोसिटी, उतने ही बड़े कौतूहल का विषय हैं जितना कि वो हमारे लिए है।
3: जब हम शेरनियों को देखने लगे तभी जंगल में एक आवाज गूंजी, गहरी भारी 8 किलोमीटर तक सुनाई देने वाली दहाड़।
0: इस डायरेक्शन से एक रोर की आवाज आ रही है।
1: ये मेल लाइन रोर कर रहा है, मेल लाइन के रोर है,
0: मेल लाइन का रोर है।
3: ये जंगल के राजा का साफ ऐलान था कि मैं पास ही। शेरनियां भी बेहद सतर्क थी और कुछ बेचैन सी दिख रही।
0: जंगल की आवाजें सुन के सब पूरी तरह से सतर्क है।
3: हम भी इस पशुपेश में फंसे थे कि जिसकी दहाड़ है वो इन्हीं के झुंड का है या कोई बाहरी।
0: कोई दूसरा लायन अगर इनकी टेरिटरी में घुस जाता है तो सबसे बड़ी समस्या एक ऐसी शेरनी के लिए बड़ी होती है जिसके बच्चे छोटे हैं, कि अगर बाहर से कोई लायन आता है तो वो उन बच्चों को निशाना बनाता है, उन सभी बच्चों को ख़त्म करता है, न केवल जो मेन लायन है उस प्राइड का।
3: गाड़ी में बैठे हम सब सतर्क, कैमरे तैयार, हम सब उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। इस बीच जंगल खामोश हो गया और अचानक पेड़ों के बीच में हमें वो दिखाई दिया जिसकी तलाश में हम आए थे, एक रोबीला बब्बर शेर ठीक हमारे सामने। जमीन पर, पेड़ों पर, अपने इलाके पर अपनी पहचान छोड़ते हैं। उसकी चाल में ऐसा रौब था कि आसपास के सारे लोग रास्ता छोड़ दें, सारे जीव इधर से उधर हो जाएं।
1: हाल से तमाई हाल એટલે પાછી લેવી પડશે
7: મુંડે
1: પાગડી જાય છે આ
7: દાદા બચા 5 એરન
1: 10 એક મિનિટ
0: મુંડે ઉસકો નીકળને તો
1: તું પાછળ જવા દે જવા દે જવા દે।
0: दिन में 20 घंटा सोता है एक शेर, तो इसीलिए ये भी मार्किंग कर रहा है। दिन में 24 घंटे में से 20 घंटे एक शेर जो है वो आराम कर सकता है, सो सकता है, और इसीलिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत हैं। ऐसी तस्वीरें या फिर अगर आंखों के सामने जैसे हम देख पा रहे हैं, बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होती है। जो हमें एक्सप्लेन किया था कि एक शेर मार्किंग क्यों करता है, एक तो अपनी टेरिटरी की बात हो जाती है, दूसरी चीज़ है कि उसके जो पंजे हैं वो शिकार के बाद एक तरीके से उन्हें सैनिटाइज करने का तरीका हो जाता है, और वो शेर हमारी तरफ आ रहा है।
1: ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर तो हाल जावा दे जावा दे जावा दे जावा दे जावा दे
0: एकदम जावा दे पीछे की तरफ हट रहे हैं इस समय, क्योंकि जब जंगल का राजा चलता है तो आपको उसको रास्ता देना होता है।
1: ये देखिए, ये अभी हेयर वाला मार्किंग,
0: ये हेयर वाली मार्किंग कर रहा है, मतलब ये पंजों के साथ मार्किंग होती है, दूसरी बाल के साथ मार्किंग होती है। वाकई आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बंदूकें तनी हो और आपके सामने शेर आ,
1: यूरिन स्प्रे कर रहा है, यूरिन स्प्रे।
0: तो तीन तरीके से मार्किंग होती है, उसने तीनों तरीके से किया है। वो बता रहा है कि ये जंगल मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है। उसने अपनी नाखूनों के साथ मार्किंग की है, यूरिन स्प्रे के साथ मार्किंग की है, और वो आगे बढ़ता है। दो ही चीज़, या तो आप अपनी जगह में रहिए, आप अगर वो आपके रास्ते पर आ रहा है जहाँ पर आप हैं तो आप पीछे हटकर उसे रास्ता देते जाते हैं।
1: फिर से मार्क दे रहा है, मार्किंग करते करते जाएगा ताकि और कोई मेल आएगा ना,
0: हाँ,
1: तो मार्किंग वो उसकी मार्किंग।
0: ये हमारी जो कैमरा टीम है उसके बगल से बिल्कुल गुजरते हुए, और ये बिल्कुल बगल में, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। तो ये पूरे पूरे एरिया को, पूरी टेरिटरी को मार्क करेगा। अभी ये अपनी प्राइड के पास जा रहा है, जहाँ पर तीन शेरनियों को हमने देखा था। तीन शेरनियाँ और शावक जो हैं वो अपनी प्राइड के पास इस समय जा रहा है। और वही कॉल जो दूर से आता जा रहा था, जब हमारे कानों को नहीं भी एहसास हो रहा था, तब वो उसकी कॉल को वो शेरनियाँ सुन पा रही थी और अपनी पूरी प्राइड को एक साथ एक जगह पर रोक रही थी। अब यहाँ पर ये जो शेर है इस समय, हालांकि उसकी जो मूवमेंट है उससे वो सतर्क चारों तरफ देख रहा है।

0: इलाके में मार्किंग दे रहा है, पूरे सब पेड़ पे दे रहा है अभी तो।
1: ये हमारी जो कैमरा टीम मेरे पीछे है वो उन लोग को थोड़ा पीछे होना पड़ रहा है क्योंकि जंगल के राजा ये तय कर रहे हैं कि उनको कहाँ जाना है, तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, आप रास्ता दे सकते हैं, वरना अगर वो रास्ता बनाने पे आए इतने करीब से इतने पास से मैंने कभी जंगल के राजा को नहीं देखा है उसके एरिया में उसके क्षेत्र में।
2: एक व्यस्त नर एशियाई शेर का वजन आमतौर पर 160 से 190 किलोग्राम तक होता है, जबकि कुछ बड़े नर 200 किलोग्राम से अधिक भी हो सकते हैं। इसकी नाक से पूंछ तक कुल लंबाई लगभग 9 से 10 फीट तक होती है और कंधों तक ऊंचाई करीब 4 फीट होती है। एशियाई शेर के जबड़ों की बाइट फोर्स लगभग 650 PSI मानी जाती है, जो उसे नीलगाय, सांभर और जंगली सुअर जैसे बड़े शिकार को पकड़ने और मारने में सक्षम बनाती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान पेट के नीचे लटकती मोटी खाल और उसके झबरीले बाल होते हैं। हमारे सामने जो था वो केवल एक जीव नहीं था, ये गीर का बादशाह था।
3: शेर की एक अपनी पहचान है, वो लॉयल एनिमल है, उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकदम हमारे बगल में से निकला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसने हमारी तरफ देखा ही नहीं, वो अपने अपने काम में वो मस्त रहता है। और उसका एक टेरिटरी एरिया होता है, वो उसका राजा होता है, उसकी ताकत उसकी एक अदा ही अलग है।
4: कभी कभी ऐसा लगता है मगर हमला नहीं करेगा सर, क्योंकि रॉयल एनिमल है, वो राजा की तरह ही रहता है सर, वो एक तरह का राजा ही है, वो पूरा अपना गिर का राजा है पूरा सर।
2: हमें अपना रास्ता छोड़ने को मजबूर करके बब्बर शेर हमारी आंखों से ओझल हो गया। पर रोमांच का सिलसिला यही नहीं रुका, कुछ आगे बढ़े तो सड़क के बीचों बीच एक शेरनी बैठी हुई है, आराम से बिना किसी चिंता के। हो भी क्यों ना, ये पूरा इलाका उसी का था, हम तो बस मेहमान थे। गाड़ी रुक गई, कुछ मिनट तक वो हमें देखती रही और हम उसे।
1: आज
2: हो भी क्यों ना, ये पूरा इलाका उसी का था, हम तो बस मेहमान थे। गाड़ी रुक गई, कुछ मिनट तक वो हमें देखती रही और हम उसे।
1: आज रास्ता रोक रोक कर ही शेर अपने दर्शन खुद हमें दे रहे हैं। अब ये एक लाइनस जो रास्ते में यहाँ पर है,
0: अब ये लाइनस खड़ी हो गई, देखिए
1: अब ये लाइनस आगे जा रही है, ये क्योंकि इसके
0: ये भी रोड
1: इस जो रास्ते में यहाँ पर है,
0: अब ये लाइनस खड़ी हो गई, देखिए
1: अब ये लाइनस आगे जा रही है, ये क्योंकि इसके
0: ये भी रोड।

0: ये किस तरह का रोल है?
1: वो उसका ग्रुप कहीं दूर है तो उसका मैसेज दे रहे हैं।
0: अच्छा,
2: आई थिंक
0: एक तरीके से आपस में कम्युनिकेट करने का भी तरीका होता है, क्योंकि ये अकेले यहाँ पर है, पर जो लायन है वो एक साथ रहते हैं, पैक एनिमल्स होते हैं, वो टाइगर की तरह से अकेले अकेले नहीं घूमते, अकेले अकेले शिकार नहीं करते। तो मुमकिन है कि अपने जो अपने जो अपना जो बाकी साथी हैं उनको एक संदेश भी इस तरह के रोर के साथ हो।
2: ये जो सारे मार्किंग है ना, उसके फुटप्रिंट भी दिखते हैं आपको उसमें, और तब पता चल जाता है यहाँ फुटप्रिंट है, यहाँ है, वहाँ।
0: आपकी किस्मत नहीं होती है तो आप केवल वो मार्किंग्स देखते हैं, लेकिन किस्मत होती है तो शेरनी के उठने के बाद वो मार्किंग।
3: दिन का सबसे अकल्पनीय दृश्य अभी बाकी था। हमारी किस्मत हमारे साथ थी, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पानी के स्रोत के पास पहुंचे और हमारे सामने फिर था एक पूरा परिवार।
0: इससे प्यारी तस्वीर आपको क्या मिली कि पूरा जो प्राइड है यहाँ पर पानी पी रहा है। वैसे तो देखिए सौराष्ट्र का इलाका है, सौराष्ट्र के इलाके में पानी एक समस्या इंसानी बस्तियों के लिए भी रहती है, लेकिन जो वन कर्मी है वो पूरी ये व्यवस्था करते हैं कि जंगली जीव जंतुओं को किसी भी तरीके से पानी की कमी कभी ना हो।
4: मानसून में तकरीबन बारिश अच्छी होती है तो हर जगह पानी मिल जाता है, मगर जैसे जैसे समर आता है, जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो नेचुरल जो पानी होता है तो तकरीबन ज़्यादातर सूख जाते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट ने यहाँ आर्टिफिशियल वाटर पॉइंट बनाए हैं जो हर 400 या 500 मीटर के बीच में बनाए हुए हैं। तो वहाँ हमने पवन सा के विंड फार्म से और टैंकर से और सोलर पैनल से ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था की है कि वहाँ पानी मिल सकता है।
0: ये फैमिली टाइम है, एक ऐसा दुनिया का एकमात्र जीव जिसके साथ हर पॉजिटिव चीज़ को जोड़ा जाता है, मतलब शेर दिल से लेकर सिंह की दहाड़ तक हर एक चीज़ आपको प्रेरणा देती है।
3: शेरनिया, शावक और पानी पीने का सिलसिला, किसी ने सर उठाकर इधर देखा, कोई पानी में अपना चेहरा झुकाए रहा। जंगल का ये दृश्य जितना अशांत था उतना ही दुर्लभ था।
0: ये यहाँ क्यों आ रही है?
2: नहीं, बीच से चली जाएगी।
0: अच्छा,
2: आवाज़ है।
0: अच्छा, उसको जाने का रास्ता चाहिए, इसीलिए हम वो जाने का रास्ता उसके लिए छोड़ रहे हैं।
3: हमने कई अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय तस्वीरें देखी थी, गुर्राती शेरनी, दहाड़ता शेर,
0: वो जाने का रास्ता उसके लिए छोड़ रहे हैं।
3: हमारे जंगल का सफर खत्म हो रहा था, हमने कई अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय तस्वीरें देखी थी, गुर्राती शेरनी, दहाड़ता शेर, सड़क पर बैठी रानी, सात शावकों वाला परिवार, मोर, चीतल, सांबर, बंदरों से भरा जंगल। चेहरे पर इत्मीनान, दिल में खुशी लिए हम बाहर की तरफ निकल रहे थे, पर किस्मत एक बार फिर मेहरबान हो गई। हम कुछ ही दूर बढ़े कि हमारे कैमरा पर्सन मोहसिन और हितेश को एक अद्भुत दृश्य नजर आया।
0: कहाँ? ओह गॉड, शेरनी या शेर?
3: हमारे सामने थी एक शेरनी पेड़ की छाव में सुस्ताती हुई और साथ में एक विशाल काय बब्बर शेर। हमारी मौजूदगी से पूरी तरीके से बेपरवाह।
0: एक इधर लेटा है, एक इधर लेटा है। नहीं नहीं, ये लाइनस है, ये लाइनस है, ये इधर शेर नहीं, उधर शेर, दोनों सुस्ता रहे हैं। बढ़िया पेड़ में की छाया मिला हुआ है दोनों को। एक्चुअली सही बोल रहे थे आप, रॉयल है वो भी उठा। देखो एक बात सिंपल है, आप चाहे तेंदुआ देख लें, चीता देख लें, बाघ देख लें, लेकिन जो शेर होता है ना वो शेर ही होता है। अगर आपकी तरफ देख ले तो आपको लगता है खून जम जाए आपका।
3: शायद ये वही शेर था जो हमको पहले मिला था, या फिर शायद इस प्राइड का दूसरा शेर हो। हमारी फॉरेस्ट टीम ने हमें बताया कि ये शेरनी गर्भवती है।
5: ये जो दो लायन है ना, हाँ। ये अभी इस एरिया में बहुत ताकतवर है और इनके दो प्राइड है। एक जो लायनस है उसके छोटे छोटे अभी बच्चे हैं, हाँ। ये अभी प्रेग्नेंट है, अभी बच्चे देगी मॉनसून में।
3: साथ में लेटा शेर कभी हमारी आंखों में आंखें डालकर देखता, कभी करवट ले लेता। ऐसा लगा जैसे राजा अपने महल में आराम फरमा रहे हैं।
2: वो लायनस एक और पीछे बैठी है, देखा आपने? फोटो पॉइंट पे
0: तीन, वो भी एक और,
2: हाँ, एक सामने सामने तीन है, वहीं पे तीन तीन दिखते।
0: अच्छा, तीन है,
2: वहीं पे तीन है।
3: हम इस इंतजार में काफी देर रहे कि शायद शेर दोबारा उठकर हमारे पास आए, हम उसको एक बार फिर बिल्कुल करीब से देखें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल जंगल के जीवन का एक अहम पहलू बाकी था, इन 900 शेरों पर कैसे नजर रखी जाती है, किस तकनीक से यह तय किया जाता है कि ये किसी हादसे का शिकार न हो, कैसे इनकी बीमारियों में इनकी मदद की जाती, हम ये जानना चाहते थे।
6: नमस्कार, मेरा नाम अग्निश्वर व्यास है, मैं सेंचुरी सुपरिटेंडेंट शासन के पद पर पदस्थ हूँ। मैं भारतीय वन सेवा के 2014 बैच से हूँ और लगभग 12 साल से गुजरात में कार्य कर रहा हूँ।
0: ये क्या जगह है?
6: ये जब आप आए हैं, ये है हमारा गिर हाईटेक मॉनिटरिंग यूनिट। जैसा कि हम लोग जब भी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो उसमें साइंटिफिक अप्रोच का होना बहुत जरूरी है, तो हमारे यहाँ पर हम साइंस को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करते हुए लाइन कंजर्वेशन में काम करते हैं।
0: क्या हम देख
6: तो हम हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं लिए गए हाईटेक यूनिट के अंदर उनको देखेंगे। हम पहले हाई स्पीड मॉनिटरिंग यूनिट की तरफ चलते हैं। ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है, गिर स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो लाइन जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कॉरिडोर के अंदर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है ताकि जब भी लाइन डिस्पर्स हो रहा है या मूव कर रहा है तो वो सेफ रहे। तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी साइंटिफिक इंटरवेंशन करते रहते हैं जिससे हम लोग अपने लाइन की सेफ्टी को बढ़ा सके।
0: तो ये तो मैंने आते हुए देखा, वाइल्ड लाइफ एरिया गो स्लो
6: जी,
0: लेकिन ये आप एक और इस तरह का अलर्ट आता है वाइल्ड लाइफ अहेड।
6: अगर हमने जहां पे ये सिस्टम एस्टेब्लिश किया है, हाँ। तो नॉर्मली आपको बोर्ड इंडिकेट करेगा वाइल्ड लाइफ एरिया गो स्लो। अगर इस तरीके से किसी कैमरे में वाइल्ड लाइफ डिटेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल एक लायन का मूवमेंट है, तो उस हिसाब से बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले चेंज होता है, इट विल इंडिकेट वाइल्ड लाइफ अहेड। आप देख सकते हैं कि एक लायन रोड को क्रॉस कर रहा है।
0: दूसरा रूम
6: हम आपको दिखाएंगे कि जो आपने सफारी किया, तो जितने भी हमारे सफारी के व्हीकल्स हैं उसको हम लोग किस तरीके से उनकी स्पीड, उनके रूट, उसको रेगुलेट करते हैं और जीपीएस की हेल्प से उसको मॉनिटर करते हैं।
0: मतलब क्या इसमें प्राइवेट भी व्हीकल्स होते हैं?
6: यस, ऑल प्राइवेट व्हीकल्स। अब क्योंकि ये प्राइवेट व्हीकल है, इसमें प्राइवेट ड्राइवर जा रहा है, तो वो उसको जो डेजिग्नेटेड रूट दिया है उससे डाइवर्ट ना हो, वाइल्ड लाइफ के एरिया में स्पीड ना बढ़ाए, तो वो सब मॉनिटर करने के लिए हमने एक डैशबोर्ड बनाया है। इस डैशबोर्ड पे जितने भी हमारे व्हीकल हम लोगों ने फॉरेस्ट के अंदर अलाउ किए हैं उन सब के अंदर एक जीपीएस यूनिट इंस्टॉल्ड है। ये भी बताएगा कि कितने रनिंग स्टेटस में है, कितने आइडियल है, कितने स्टॉप्ड है। जैसे ही वो जंगल के अंदर जाएंगे तो उसका जीपीएस का रीडिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई जंगल में जाके ओवर स्पीडिंग करता है तो हमारा यूनिट हमें अलार्म देता है कि दिस पर्टिकुलर व्हीकल हैज इंक्रीज द स्पीड, तो हम यहां से उनको पेनलाइज भी कर सकते हैं, उनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम जंगल के अंदर भी पूरी नजर रखते हैं कि हमारे लाइन को कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए टूरिज्म एक्टिविटीज से।
0: एक चीज मैं देख रही हूँ, ये एक फोटो जिसमें एक कॉलर दिख रहा है लाइनस को
6: जी। तो इसके बारे में हम आपको अपने हाईटेक यूनिट का जो रिसर्च यूनिट है उसके बारे में बताएंगे कि कैसे हम लोग लाइन कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंदर रेडियो कॉलरिंग को यूज करके लाइन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं।
5: ये स्पेसिफिक है, ये जो है लायन का कॉलर है,
0: इसीलिए बड़ा है सबसे।
5: हाँ, ये बड़ा है। और ये देखेंगे, ये लेपर्ड का।
0: अच्छा,
5: इसी तरीके
0: लेपर्ड्स कितने हैं सर यहाँ?
6: लेपर्ड्स का नंबर हमारे यहाँ पे 600 प्लस है।
0: अच्छा।
6: और हम लोग कुछ कुछ एरिया के अंदर, नॉट ओनली सौराष्ट्र रीजन, साउथ गुजरात में भी अलग अलग जगह पे रेडियो कॉलरिंग के इनिशिएटिव।
0: लेपर्ड्स एंड लायंस में किसी तरह का कोई वो नहीं है?
6: लेपर्ड एंड लायन को एग्जिस्ट करते हैं और दोनों अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि अगर ग्राउंड की टेरिटरी को लायन रूल कर रहा है तो लेपर्ड पेड़ के ऊपर जाकर रूल करता है।
5: जी, और ये जो डिवाइस है ये सैटेलाइट है, तो इनके इनके हिसाब से हमें इनकी लोकेशंस मिलती रहती है।
0: अच्छा,
5: तो जब भी ग्राउंड स्टाफ है उनको लोकेशंस चाहिए होता है तो यहाँ से हम उनको हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये उनको लोकेशंस ढूंढने के लिए डिवाइस है।
0: अच्छा,
5: तो ये उनके एंटेना है और उसके साथ साथ ये उनके रिसीवर्स है और ये बाकी के जो बर्ड स्पीसीज है उनके टैग्स है और ये जो है छोटा सा ये रस्टी स्पॉटेड के लिए है।
3: सच है, गिर केवल शेरों को देखने की जगह नहीं है, ये उस दुनिया की झलक है जहाँ इंसान तो बस मेहमान है, असली मालिक तो जंगल के वो जीव हैं जिनकी मौजूदगी से हर सफर अद्भुत अविश्वसनीय और कल्पनीय बन जाता है।
7: बब्बर, शेर जब सुस्ताता है तो आपको देखकर बड़ा सुकून सा लगता है, लेकिन जब यही अपने शिकार वाले मूड में आ जाए तो फिर सामने किसी की क्या बिसात। अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन, हितेश कुमार इस बब्बर शेर और मोहम्मद अनस जुबैर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील
2: बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
13: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
14: मैं आपको टॉप एंगल से तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
15: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
16: ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
14: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
1: I drive my bus in a busy city. That's why road safety is so important to me. I know that I must slow down and be extra careful when I make a wide turn. Buses need more room than cars. Everyone can help keep our roads safe. Next time you're driving, remember to give buses plenty of time and space to finish turning before driving ahead. Let's all plan to share the road safely. Learn how at www.sharetheroadsafely.gov.
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।
0: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: and tanks, a complete range of sanitary solutions.
1: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
3: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे।
5: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
4: अधूरा प्यार ही
5: तुम्हें दुनिया की सिम यार ठीक है मत दोहराओ
6: बिजुरी आई गए
5: हाँ थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा राइट ओ थोड़ा राइट
6: यह अब ही नसिया पाया भैया
4: यही
7: अरे थोड़ा सा और ऊपर
6: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ
7: हाँ यही यही यही यही खुजा जोर से
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। नरेंद्र मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन 12 वर्षों में देश ने कई बड़े फैसले देखे, कई राजनीतिक पड़ाव देखे और नेतृत्व की एक ऐसी शैली देखी जिसने भारतीय राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ चुनावी जीत और सरकारी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। इस कहानी में उनका संघर्ष है, उनकी सोच है, उनका विजन है और उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने उन्हें करीब से देखा और उनके साथ काम किया। आज कहानी में मोदी सरकार के नेतृत्व की इनसाइड स्टोरी।
1: मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना। 27 फरवरी पहली बार मैं असेंबली में गया। जीवन में पहली बार विधानसभा गृह में गया। सीएम बना तो मुझे आश्चर्य था कि मैं सीएम कैसे बन गया। दायित्व आया है तो मैं निभा रहा हूं, उसे अच्छे ढंग से करना ही मेरा मकसद रहता है।
2: मां अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करती थी, पानी भरती थी, हमें बढ़ा के।
1: मैं उस राज्य से आता हूं जहां मैंने माताओं बहनों को सर पे घड़ा लेकर के दो दो तीन तीन किलोमीटर पानी के लिए जाते देखा है।
3: मैं पूरे देश में कहा था 26 जनवरी को ठीक सुबह 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक में आऊंगा और श्रीनगर के लाल चौक में 11 बजे फैसला होगा किसने अपनी मां का दूध किया।
0: बारह साल पहले शुरू हुआ एक राजनीतिक सफर आज भी देश की राजनीति के केंद्र में है। लेकिन किसी भी नेता को सिर्फ चुनावी जीत, भाषण या फैसलों से नहीं समझा जा सकता। उसकी असली पहचान उन लोगों के अनुभव में छिपी होती है जो उसके साथ काम करते हैं।

0: अगर आप अच्छे निर्णय और सही समय पर निर्णय करते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका ही उदाहरण है।
1: हैट्रिक है। अगर आज चर्चा करनी है और आज का कोई हीरो है तो मेरे 6 करोड़ गुजराती।
2: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार से आए हुए एक कार्यकर्ता को बहुत बड़े कार्य के लिए दायित्व दिया है।
3: आज से लेकर के वहां तक की यात्रा है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
4: देश के 21 से ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं।
5: भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
6: श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
7: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि

0: एक नेता को देश उनके भाषणों से पहचानता है और एक प्रधानमंत्री को उनके फैसलों से।
1: कल 370 देश की एकता में रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा था। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी, जो कि हमारी संविधान की भावना थी, और इसलिए धारा 370 को हमने जमीन में उतार दिया।
2: मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के नर्क से मुक्ति दिलाने का बीड़ा भी हमारी सरकार ने उठाया।
3: जीएसटी लाकर हमने वन नेशन वन टैक्स का संकल्प साकार किया। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी।
0: लेकिन किसी शख्स की असली पहचान उन लोगों से होती है जो उनके साथ काम करते हैं, जो उसे करीब से देखते हैं, जो उनकी कार्यशैली के गवाह होते हैं।
4: मुझे ये लगा कि मोदी जी ये चाहते हैं कि तिरंगा केवल श्रीनगर के लाल चौक पर नहीं, देश की जनता के मन में लहराना चाहिए, हर युवा के दिल में लहराना चाहिए। तो जोड़ो सबको। उसके जो आइडियाज देखे तो मैंने पहचाना कि ये तो अलग ही पर्सनालिटी है और अलग ढंग से काम करते हैं।
5: संघ के माध्यम से देश का युवा क्या कर सकता है, वो उन्होंने बहुत अच्छे सटीक तरीके से बहुत कम समय में समझाया था।
0: साल बदले, चुनाव बदले, राजनीतिक समीकरण बदले, लेकिन एक तस्वीर बार बार दोहराई गई। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में नरेंद्र मोदी का शपथ लेना।
6: मैं नरेंद्र दामोदर दास ईश्वर की शपथ लेता।
0: 3 बार चुनाव को, 3 बार जनादेश और 3 बार देश की बागडोर संभालने का रिकॉर्ड। लेकिन सवाल है कि आखिर वो कौन सी बात है जो नरेंद्र मोदी को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। वडनगर की गलियों से निकलकर दिल्ली के सत्ता शिखर पर पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये अनुशासन, समर्पण और लगातार खुद को चुनौती देने की कहानी भी है। आज कहानी में देखिए आखिर कौन से अनुभव थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को गढ़ा, हिमाचल की यात्रा ने उनकी सोच को कैसे बदला, संघ के जीवन ने कौन से संस्कार दिए और कौन से ऐसे निर्णायक मोड़ थे जिन्होंने आगे चलकर उनके राजनीतिक सफर की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 12 सालों से देश देख रहा है, उनकी रैलियों में शामिल होता है, उनके फैसलों पर विचार करता है, उनके भाषणों को सुनता है और उनकी राजनीति पर नजर रखता है। लेकिन हर बड़े फैसले के पीछे कुछ ऐसे पल भी होते हैं जो कैमरों से दूर रह जाते हैं।
5: गांव के लिए, व्यक्ति के लिए और क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट के काम ढूंढे, और आज ट्राइबल क्षेत्र गुजरात का सभी ट्राइबल क्षेत्रों में सबसे डेवलप्ड क्षेत्र है।
7: मेरा बचपन बीता है लेकिन वो जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है जी, और शायद वही मेरा एक प्रकार से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुसीबत यूनिवर्सिटी है मेरे लिए जो मुझे सिखाती है।
0: 10 जून 2026 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक और तारीख दर्ज होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे, एक ऐसा पड़ाव जो अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था। कुछ ऐसी कहानियां जो सिर्फ इतिहास नहीं बनाती बल्कि उस व्यक्ति को भी गढ़ती हैं जो इतिहास लिख रहा होता है। आज कहानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से जिन्होंने उनके नेतृत्व, सोच और व्यक्तित्व को आकार दिया।
8: वडनगर की गलियों से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर हर किसी ने देखा, लेकिन उस सफर के पीछे अनुभव, संघर्ष और सोच को कम ही लोग जानते हैं। बचपन में तालाब के किनारे बिताए दिन, हिमालय की यात्रा, संघ का जीवन और फिर राजनीति के शिखर तक पहुंचने की कहानी में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को आकार दिया है। आगी, आगी, आगी, आगी, आगी।
9: नहीं मिटने दूंगा।
6: नरेंद्र दामोदर दास मोदी
9: माँ का दूध पिया है जो लाल चौक में आके हमारे राम आ गए।

0: किसी भी नेता की कहानी सिर्फ उसके पद से नहीं बनती, उसकी असली कहानी उन रास्तों में छिपी होती है जिन पर चलकर वो वहां तक पहुंचता है। नरेंद्र मोदी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1950 में जन्म और उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने भारतीय राजनीति के स्थापित समीकरणों को बदल कर रख दिया। नरेंद्र मोदी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। सपने बड़े थे लेकिन साधन सीमित थे। संघर्ष था, जिज्ञासा थी और कुछ अलग करने की बेचैनी भी।
1: गली गली में गूंजे नारा महागुजरात।
0: गुजरात के मेहसाणा जिले का छोटा सा कस्बा है वडनगर और यहीं से शुरू हुई नरेंद्र मोदी की कहानी। रेलवे स्टेशन पर पिता दामोदरदास मोदी की छोटी सी चाय की दुकान थी। परिवार बड़ा था और आर्थिक संसाधन सीमित थे। ऐसे में छोटी उम्र से ही नरेंद्र मोदी पिता का हाथ बटाने लगे।
2: अरे नरेंद्र बेटा, ये सब अभी बराबर है, पहले बाकड़ा साफ करे, लोगों को बैठना है और सुन, काम जरा जल्दी जल्दी करा है।
3: अरे तुम्हारा बेटा नरेंद्र बहुत अच्छा लड़का है,
2: आज्ञाकारी पुत्र है, देखना बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा ये।
4: बाबूजी केतली में चाय निकाल दो, ट्रेन आने वाली है।
2: आ बस बेटा ये निकाल दी है, ये ले जा। और सुन, ज्यादा तेज नहीं भागना, नहीं तो दोनों गिर जाओगे, चाय भी और तुम भी है?
0: कहा जाता है कि यही वो जगह है जहाँ उन्होंने लोगों को पढ़ना सीखा।
5: जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। जहां तक रेलवे स्टेशन की बात है, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है, मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया और जिंदगी अपने लिए नहीं औरों के लिए भी हो सकती है, ये रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उससे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा समझा।
0: नरेंद्र मोदी के बचपन का एक और दिलचस्प अध्याय है वडनगर की लाइब्रेरी। जब दूसरे बच्चे खेल के मैदान में ज्यादा वक्त बिताते थे तब नरेंद्र मोदी घंटों किताबों के बीच दिखाई देते थे। इतिहास, संस्कृति, समाज और अध्यात्म से जुड़ी किताबें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर्षित करती थीं। खास तौर पर स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। विवेकानंद के लेखन ने उनमें आत्मविश्वास, राष्ट्रभाव और सेवा के संस्कार को मजबूत किया।
6: मुझ पर जो प्रभाव पैदा हुआ वो स्वामी विवेकानंद जी का हुआ। मैं छोटी आयु में मेरे गांव के अंदर भी एक अच्छी लाइब्रेरी थी, गायकवाड़ जी ने बनाई हुई थी, कोई भी मुझे मिलना चाहता था, खोजना चाहता था तो मैं ज्यादातर लाइब्रेरी में मिलता था और लाइब्रेरी के जो व्यवस्थापक थे वो भी मुझे बहुत नाराज रहते थे क्योंकि 5 बजे को बंद करने का समय है तो 5 बजे के 1 मिनट के बाद मैं बाहर निकलता था तो वो उनको अगर 2 मिनट पहले ही बंद करना होता तो कर नहीं पाते थे। उसी के नाते मुझे अभी भी याद रखते हैं, वो अभी तो बहुत वयोवृद्ध हो गए लेकिन अभी भी वो याद रखते हैं।
0: हर बच्चे की तरह नरेंद्र मोदी के
6: तो हो गए लेकिन अभी भी वो याद रखते हैं और विवेकानंद जी को मैं बहुत पढ़ता रहता था।
0: हर बच्चे की तरह नरेंद्र मोदी के भी कुछ सपने थे। उनमें से एक था सेना की वर्दी पहनना। नरेंद्र मोदी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे। जामनगर के सैनिक स्कूल में दाखिले की इच्छा भी थी लेकिन आर्थिक हालात ने रास्ता रोक लिया था, उनका सपना अधूरा रह गया लेकिन देश सेवा का विचार मन से कभी नहीं गया।
5: ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक रहता था। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था कुछ ना कुछ। इतने में 1962 का वॉर हो गया तो हमारे यहाँ से दूर एक मेहसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था तो जाकर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है, तो कभी उस दिशा में सोचता फिर चला गया।
0: फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने दिशा ही बदल दी। करीब 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी घर छोड़कर निकल पड़े, मंजिल थी हिमालय। कई महीनों तक आश्रमों और आध्यात्मिक स्थलों में पीएम मोदी ने समय बिताया, साधु संतों के बीच रहे, आत्मचिंतन किया, अनुशासन और तपस्या को करीब से समझा। ये यात्रा केवल स्थानों की यात्रा नहीं थी बल्कि स्वयं को समझने की यात्रा भी थी। यहीं से उनके भीतर जीवन को बड़े उद्देश्य के साथ देखने का दृष्टिकोण और मजबूत हुआ। हिमालय ने प्रधानमंत्री मोदी को एक और सीख दी, समाज से दूर नहीं बल्कि समाज के बीच रहकर बदलाव लाया जा सकता है। इसी सोच के साथ नरेंद्र मोदी वापस लौटे और अहमदाबाद पहुंचे। यहीं से उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ और मजबूत हुआ। प्रचारक के रूप में उन्होंने खुद को पूरी तरह संगठन के काम में समर्पित कर दिया। सुबह से रात तक कार्यकर्ताओं के बीच रहना, यात्राएं करना और संगठन को मजबूत करना ही जीवन का हिस्सा बन गया।
5: 4:30-5 बजे उठना, पूरा दफ्तर में झाड़ू लगाना, पोता करना, फिर सबके लिए चाय बनाना और 5:20 को सबको उठाना। फिर हमारे यहाँ एक आरएसएस में प्रातः स्मरण होता है, तो प्रातः स्मरण होता था, सभी महापुरुषों का स्मरण करते हैं, फिर सबको चाय परोसता था, उसके बाद शाखा चला जाता था, फिर आकर के सबके लिए नाश्ता बनाता था। तो पोहे वगैरह बनाना मुझे बहुत अच्छा आता है, सबको मैं खिलाता था, और फिर कोई 10 बजे स्नान करता था।
0: फिर आया साल 1975, देश में आपातकाल लागू हुआ। विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर इंदिरा गांधी की ओर से जबरदस्त कार्रवाई शुरू हुई। उस दौर में नरेंद्र मोदी संगठन के काम में सक्रिय थे। पीएम मोदी को बचने के लिए कई बार पहचान छिपानी पड़ी, भेष बदलने पड़े, भूमिगत रहकर काम करना पड़ा। ये दौर उनके लिए संघर्ष, जोखिम और संगठन कौशल की बड़ी पाठशाला साबित हुआ।
7: गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब वो हमारे घर पे सरदार जी बन के रहे थे, हमारे पुराने घर पे मधुगुंज में हम लोग रहते थे, वहाँ पे रहते थे। एक बार क्या हुआ कि वो सरदार जी के वेश में बाहर निकल रहे थे और सामने से पुलिस वाला आया, तो पुलिस वाले ने उनको पूछा कि भाई यहाँ पे नरेंद्र भाई कहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को तो नहीं पता है, आप अंदर जाके पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ रहते हैं।
0: 1980 और 1990 के दशक तक आते आते नरेंद्र मोदी की पहचान एक कुशल संगठन कार्यकर्ता के रूप में बनने लगी। भारतीय जनता पार्टी में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा हो या मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा, बड़े आयोजनों के प्रबंधन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। पार्टी के भीतर उन्हें एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में देखा जाने लगा जो चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो उसे व्यवस्थित ढंग से पूरा कर सकता है।
5: 2002 गुजरात में चुनाव था, मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा कसौटी थी। वैसे मैं मेरे जीवन में करीब करीब चुनाव जीतने का अवसर मुझे बहुत मिला है, लड़ा तब भी और लड़ाया तब भी, तो मेरे जीवन में न टीवी देखा, रिजल्ट आ रहे थे, कुछ नहीं। 11-12 बजे मेरे घर के नीचे सीएम बंगलो के बाहर ढोल की आवाज आने लगी, और मैंने लोगों को कहा 12 बजे तक मुझे कुछ जानकारी मत देना। फिर हमारे ऑपरेटर ने चिट्ठी भेजी कि साहब आप 2/3 बहुमत से आप आगे चल रहे हैं वगैरह। तो
8: मैं नहीं मानता हूं कि कुछ मेरे भीतर कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन उसको ओवर पावर करने वाला मेरे पास कोई थॉट था, तो मेरे लिए वो रेस्टलेसनेस कहो, एंग्जाइटी कहो, अलग हो गया।
0: गुजरात भूकंप की त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रहा था, उसी समय पार्टी नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी थी। पहली बार नरेंद्र मोदी प्रशासनिक नेतृत्व की भूमिका में आए थे। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जो फैसले लेने में तेजी और काम में निरंतरता पर जोर देता है।

0: इसके बाद गुजरात की राजनीति में उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। विकास, प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व के मुद्दों पर उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनने लगी।
1: श्री नरेंद्र मोदी विल बी आवर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट फॉर द कमिंग लोकसभा इलेक्शन।
0: साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद शुरू हुआ देशव्यापी अभियान भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित चुनाव अभियानों में शामिल हो गया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी माँ हीराबेन को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बताते रहे हैं। मोदी ने कई बार याद किया है, जब भी वो घर से किसी काम के लिए निकलते थे, उनकी माँ चुपचाप हाथ में कुछ रुपये रख दिया करती थी। रकम भले छोटी होती थी, लेकिन उसमें माँ का स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास छिपा होता था।
1: प्यार से पैसे पकड़ाती हैं, आप उन पैसों का क्या करते हैं?
2: एक तो मेरी माँ ने मुझे जो हमेशा क्या देती है, ज्यादा से ज्यादा शायद एक बार 11 रुपया दिया था। ज्यादा से ज्यादा
1: तो नारियल और मिश्री मिली थी,
2: ज्यादा ज्यादा। लेकिन एक बार उसने मुझे 5,000 रुपया दिया।
1: अच्छा,
2: 5,000 रुपया, तो मैं सरप्राइज था जी। और क्या था, तो जिस दिन चीन के राष्ट्रपति आए थे, वो उन्होंने मेरे जन्मदिन की तारीख तय की थी खुद ने। हाँ। मेरा भी ध्यान नहीं था, और उस समय अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति आए थे। तो सुबह मैं, जन्मदिन था, तो माँ को मिलने गया, तो उसने मुझे 5,000 रुपये दिए। मैंने कहा माँ क्या बात है।
0: वडनगर की गलियों से शुरू हुई ये यात्रा आसान नहीं थी। चाय की दुकान, लाइब्रेरी, सैनिक स्कूल का अधूरा सपना, हिमालय की तपस्या, संघ का अनुशासन, आपातकाल का संघर्ष और संगठन की लंबी साधना, हर पड़ाव ने नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में एक नई परत जोड़ी। और शायद यही वजह है कि जब इतिहास ने उन्हें अवसर दिया, तो दशकों के अनुभव, संघर्ष और तैयारी के साथ देश के सामने खड़े थे।
3: वक्त एक ब्रेक का उजला है। ब्रेक के बाद खुलेंगे सत्ता के गलियारों के कुछ ऐसे किस्से, जिन्हें साझा करेंगे वो लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सबसे करीब से काम किया है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: व्हाटएवर यू आर इन द मूड फॉर, ट्यून इन हैज द म्यूजिक टू मैच, फ्रॉम टुडेज हिट्स to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: In association with
6: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
7: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
8: Samakool cooler, hawa aisi chhode puri family ko thandak se jode. Samakool cooler, life banaye wonderful.
5: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zuba kesri.
9: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
10: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
11: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
12: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
3: continue to face political pressure to reach a peace deal,
2: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
4: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
0: In association with cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: Samakool Cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Samakool Cooler, life banaye wonderful. Hind, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
6: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
7: अब वहां नहीं होने देंगे जो 2017 के पहले होता था। 17 के पहले मुझे याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था। रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू। असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है, न विकास होता है,

0: 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तब देश ने उनका राजनीतिक सफर देखा और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने चुनावी मंच पर देखा, संसद में सुना और बड़े फैसलों के जरिए महसूस भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी कार्यशैली कैसी रही, फैसले लेने का उनका तरीका क्या है, इसका जवाब उन लोगों के पास है जिन्होंने पिछले 12 वर्षों में उनके साथ सबसे करीब से काम किया है।
1: मैं ये मानता हूं कि जिस ढंग से मोदी जी का जीवन है वो जैन जी को भी आत्मविश्वास से भरेगा।
2: क्या रिटायर होने के बाद क्या करोगे? पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ाऊं इस पर सोचूंगा।
3: मैं छोटी बैग में मेरी जिंदगी थी और मैं ट्रैवलिंग करता था
4: जी, आपने बताया झोले में,
3: और तो मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद धोता था, सीएम बना तब तक मैं कपड़े खुद धोया।
1: उनके साथ काम करते करते मैंने जो अनुभव किया है, जो सीखा है, जो प्रेरणा प्राप्त की है, वो हर एक के लिए उपयोगी।
5: हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है।
6: सत्ता के गलियारों में दिखाई देने वाली तस्वीर अक्सर अधूरी होती है। मंच पर भाषण देने वाला नेता, चुनाव जीतने वाला रणनीतिकार या दुनिया के बड़े नेताओं के साथ बैठा प्रधानमंत्री तो सबको दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे छिपी कहानियां कम ही सामने आती हैं। कभी एक साधारण सी कलम किसी व्यक्ति के विश्वास का प्रतीक बन जाती है, कभी किसी वैज्ञानिक की सफलता को अपनी जिम्मेदारी बताकर उसका हौसला बढ़ाना पड़ता है। और कभी 140 करोड़ लोगों के जीवन पर असर डालने वाले फैसले दिन रात जागकर लेने पड़ते हैं। राजनीति में जीत के लिए रणनीति, मेहनत और जन समर्थन की जरूरत होती है, लेकिन कई बार कुछ चीजें भावनाओं और विश्वास का भी हिस्सा बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी में ऐसी ही एक खास कहानी जुड़ी है एक कलम से। साल 2002 में जब नरेंद्र मोदी ने राजकोट से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा तब नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर इसी कलम से किए गए थे। इसके बाद ये कलम उनके राजनीतिक सफर का एक अहम हिस्सा बन गई।
2: 2002 का चुनाव लड़ रहा था, पहली बार मैं मुझे चुनाव लड़ना था, पहली बार नामांकन भरना था और राजकोट से मैं उम्मीदवार हो रहा था। तो वहां दो संत मौजूद थे, मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिया, मैंने खोला तो अंदर एक पेन थी। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी ने भेजा है, आप जब नामांकन में हस्ताक्षर करेंगे तो इस पेन से करना। अब वहां से लेकर मैं काशी चुनाव के लिए गया, एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जब मैं नामांकन करने गया और उसके लिए मुझे हस्ताक्षर करने के लिए पेन पूज्य प्रमुख स्वामी जी के व्यक्ति आकर के खड़े न हो वहां। और जब काशी गया तब तो मेरे लिए सरप्राइज था, उस पेन का जो कलर था वो बीजेपी के झंडे के कलर का था, ढंकन उसका जो था वो ग्रीन कलर का था और नीचे का हिस्सा ऑरेंज कलर का था।
6: साल 2016, उरी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में था। सरहद पार बैठे आतंकियों को जवाब कैसे दिया जाएगा, ये सवाल हर किसी के मन में था। और फिर आई वो रात जब भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। ऑपरेशन बेहद गोपनीय था। दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे थे, लेकिन ये ऑपरेशन आसान नहीं था। प्रधानमंत्री खुद बताते हैं कि जब तक हर सैनिक सुरक्षित भारत वापस नहीं लौट आया, धड़कनें शांत नहीं हुई।
2: मैं लाइव कांटेक्ट में था, चीजें लेकिन सुबह जानकारी आना बंद हो गया। सूर्योदय होते तक मैं फिर बेचैन होने लगा। मेरे मन में होता था कि क्या हुआ भाई, घंटे भर से कुछ खबर नहीं आ रही है। पढ़ना तो लगातार आ रही थी, निकले हैं पहली टुकड़ी है, दूसरी टुकड़ी है, ऐसा है वगैरह। लेकिन सूर्योदय होने के बाद भी मुझे खबर नहीं आने लगी, तो मैं थोड़ा बेचैन होने लगा। अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कम्युनिकेट करूं, कहीं और तकलीफ हो जाए। तो काफ़ी यानी करीब करीब सूर्योदय के भी एक घंटे के बाद वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदा लौटने की खबर सुनने के लिए मैं बड़ा रहा था। वहाँ कितना नुकसान हुआ वो बात का विषय है, लेकिन मेरा जवान जिंदा लौटे मेरी पहली प्राथमिकता थी। फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद सूर्योदय कि अब वापिस हमारी सीमा में पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी दो तीन टुकड़ियां सेफ जोन में आ गई है, लेकिन चलने ते निकलते और कहीं रेंगते हुए निकलते तो समय लगेगा, लेकिन अब हमारा सेफ जोन है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुंचने तक मुझे खबर चाहिए।
6: भारत के लोकतंत्र में साल 2022 एक ऐतिहासिक पल लेकर आया।
7: मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि
8: मैं श्रद्धा पूर्वक
6: देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली। लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ राजनीतिक गणित नहीं, एक संवेदनशील सोच भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उनसे अक्सर देश के आदिवासी समाज, खासकर उन बेहद पिछड़े जनजातीय समूहों की समस्याओं की चर्चा करती थी, जिन तक विकास की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंच पाई थी। यानी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाली ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश के करोड़ों वंचित लोगों की आवाज को सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुँचाने की कहानी भी है।
2: हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी वो समाज के उस तबके से आती हैं, तो मैं जब भी उनसे मिलता था तो बहुत इमोशनल हो जाती थी। आदिवासी समाज में भी वन अति पिछड़े जो लोग हैं उन तक कुछ पहुंचा नहीं है, और छोटे छोटे समूह हैं, बिखरे हुए हैं। उन्होंने मुझे कई बार कहा कुछ करना है, मैंने उनसे कहा आप मुझे गाइड कीजिए, तो उनके मार्गदर्शन में मैंने एक स्कीम बनाई, पीएम जनमन योजना। अब ये लोग ज्यादा से ज्यादा 25 लाख लोग हैं, और वो भी 250 जगह पे हैं। पॉलिटिशियन के लिए काम का नहीं है, क्योंकि उसे वोट मिलना नहीं है, जीत हार होनी नहीं है, लेकिन जीवन के लिए बहुत बड़ा है। द्रौपदी जी उस समाज को जानती थी, उन्होंने मुझे आग्रह किया और मैंने पीएम। और आज जब मैं सुनता हूं कि साहब वहां पहले ये नहीं था अब ये हो गया, वो नहीं था हो गया, तो मेरे मन को एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है।
6: सितंबर 2019 पूरा देश चंद्रयान 2 की लैंडिंग का इंतजार कर रहा था। करोड़ों भारतीयों की निगाहें टीवी स्क्रीन पर थी, लेकिन आखिरी क्षणों में मिशन अपने लक्ष्य से चूक गया।
9: ये जो आप ग्राफ अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये विक्रम डिसेंट ट्रेजेक्ट्री है, कैसे किस तरह से जो वर्टिकल एल्टीट्यूड था, जो ऊंचाई थी वो, और आंकड़े नीचे प्राप्त हुए उसके बारे में।
6: इसरो मुख्यालय में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वो पल बेहद करीब से देखा। रात गहराती गई, लेकिन प्रधानमंत्री को नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उन्होंने फिर वैज्ञानिकों से मुलाकात की। उसी रात बोया गया आत्मविश्वास का बीज, आगे चलकर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता का आधार बना।
10: People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath.
11: लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
2: चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड बिखर गए। सारे वहां बैठे हुए लोग परेशान थे, प्रधानमंत्री को कहने की हिम्मत नहीं थी किसी की, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की जितनी समझ तो मैं देख पाता था कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं चल रहा है। आखिरकार एक जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने आके मुझे कहा साहब, मैं कहा चिंता मत कीजिए, सभी को मैं नमस्ते नमस्ते किया। मैं रात को 2 बजे कार्यक्रम था, वो मैं वहां गेस्ट हाउस में गया, लेकिन मैं सो नहीं पाया। मैंने फिर से करीब आधे पौने घंटे के बाद सबको बुलाया, मैंने कहा देखिए अगर ये लोग थक ना गए हो तो मैं सुबह 7 बजे इनको मिलना चाहता हूँ जाने से पहले, क्योंकि देश को बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन मैं सेटबैक से रोने धोने करके जिंदगी गुजारने वालों में नहीं था। मैंने कहा मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को मैंने कहा अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है, आपने प्रयास किया, आप निराश मत होइए। और मैंने उनका जितना भी आत्मविश्वास जगा सकता हूं मैंने जगाया और चंद्रयान 3 सफल हुआ।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर अक्सर चर्चा होती है। लोग हैरान होते हैं कि आखिर इतनी व्यस्त दिनचर्या के बीच वो खुद को कैसे सक्रिय रखते हैं। प्रधानमंत्री का दिन अक्सर सुबह बहुत जल्दी शुरू होता है और देर रात तक बैठकों, फाइलों, यात्राओं और कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहता है। विदेश दौरे हो या चुनावी अभियान, उनकी कार्यक्षमता को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है।
12: मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए चाहिए, आप 3.5 घंटे ही सोते हो।
3: ये बात आपकी सही है। मेरे जो जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए, बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं, मैं हम दोनों अच्छे दोस्त हैं
12: जी,
3: तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है जी, तुझे आज पता नहीं है ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है।
12: मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद?
3: नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है।
12: स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम?
3: नहीं, मैं इतना नॉर्मली, देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है, मेरा कुछ नहीं, आंख खुलती है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ। उठता मैंने बिस्तर पे उठता वैसा नहीं, बिस्तर से भी बाहर होता हूँ। अब ये हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिंदगी को मैं जी रहा था उसमें से शायद ये डेवलप हुआ है, अब वो मेरे शरीर का वो हिस्सा बन गया है।

0: साल 2020 पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। भारत जैसे 140 करोड़ आबादी वाले देश के सामने चुनौती और भी बड़ी थी। दिन रात बैठकों का दौर चलता था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद, डॉक्टरों से चर्चा और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर फैसले लिए जा रहे थे। कोरोना संकट सिर्फ स्वास्थ्य की चुनौती नहीं था बल्कि नेतृत्व की भी परीक्षा थी, और इसी दौर ने संकट प्रबंधन में मोदी सरकार की कार्यशैली को दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी हर उस शख्स का हालचाल ले रहे थे जिनको वो करीब से जानते थे।
1: मैं मुख्यमंत्री था, कोविड में ही मुख्यमंत्री बना, और मैं तो ऐसा मुख्यमंत्री था जिसका मंत्रिमंडल ही नहीं था, क्योंकि तब तक कोविड पैर पसार चुका था, दूसरे को शपथ दिलाने का मौका ही नहीं मिला, मैं अकेला था। और एक के बाद एक मेरे काम करने वाले अधिकारी सारे के सारे कोविड के कारण अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे। मेरी पीएस हेल्थ भर्ती हुई, उसके बाद फिर मेरे कमिश्नर हेल्थ एडमिट हो गया अस्पताल में, फिर मेरे सीएस को ही हो गया। तो उस समय फिर कहां विचार विमर्श करें तो एक ही सहारा मुझे दिखता था, प्रधानमंत्री जी। तब मोदी जी प्रधानमंत्री जी थे, आपको पता ही है, तो सीधे उनसे बात करते थे। मुझे कोविड हुआ तो तत्काल फोन आया उनका, मुझे भी इन्फेक्शन हो गया काम करते करते, ये ध्यान रखना, प्राणायाम करना,
2: अच्छा
1: हाँ, परिवार के बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना हो जाए इसकी चिंता करना। अब ये बिल्कुल अलग तरह की चीजें। और केवल
0: एक कलम से शुरू हुआ सफर, संकट की रातों में लिए गए फैसले, वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने वाले शब्द और लगातार काम करते रहने का अनुशासन, इन तमाम कहानियों में सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की झलक दिखाई देती है जो अपने फैसलों, अपने विश्वास और अपने काम करने के तरीके से अलग पहचान बनाता है।
3: बारह साल का ये सफर सिर्फ सरकार चलाने की कहानी नहीं है, ये कैसी कार्यशैली की कहानी है जिसमें अनुशासन है, तैयारी है, निरंतरता है और परिणाम पर लगातार फोकस है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाले उनके सहयोगी उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक नेता के तौर पर नहीं देखते बल्कि एक ऐसे कार्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं जिसने सरकार चलाने के तौर तरीकों को नई पहचान देने की कोशिश की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा पर हजारों भाषण हुए, सैकड़ों किताबें लिखी गई और अनगिनत विश्लेषण किए गए। लेकिन सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले इस नेता की कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो सुर्खियों से दूर रहीं। कुछ किस्से संघर्ष के हैं, कुछ फैसले के, कुछ भावनाओं के और कुछ उस सोच के जिसने नरेंद्र मोदी को एक अलग पहचान दी। ये कहानी उस दौर की है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। साल 2005 में अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था। उस वक्त इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा बटोरी, लेकिन सालों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को याद करते हुए कहा कि उन्हें इसका दुख व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिनिधि के तौर पर हुआ था।
1: एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का और अमेरिकन सरकार ने मुझे वीजा देने से मना कर दिया था। व्यक्ति के जीवन में तो मेरे लिए कोई अमेरिका जाना नहीं जाना कोई बड़ी चीज थी, मैं पहले भी जा चुका था तो बहुत मेरे थे। लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक स्टेट का अपमान, एक देश का अपमान मैं फील करता था और मुझे मन में कसक थी कि क्या हो रहा है। जस्ट कुछ लोगों ने झूठ चला दिया इसलिए ये निर्णय हो गए, दुनिया में ऐसे चलती है दुनिया, मेरे मन में एक भाव था। लेकिन उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि आज अमेरिकन गवर्नमेंट ने मेरा वीजा रद्द किया है, जो कहना था मैंने कहा। लेकिन मैंने एक बात कही, मुझे कुछ सवाल पूछा गया, मैंने कहा देखिए मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। ये 2005 का मेरा स्टेटमेंट है।
0: वक्त बदला, परिस्थितियां बदली और दुनिया की राजनीति भी बदली। वही नरेंद्र मोदी बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने और वैश्विक मंच पर एक प्रमुख नेता के तौर पर उभरे। प्रधानमंत्री का पद सिर्फ फैसले लेने का नहीं बल्कि देश के दुख दर्द को महसूस करने का भी होता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक ऐसा ही प्रसंग सामने आया जब निर्दोष लोगों की मौत की खबरों ने पूरे देश को झकझोर दिया।
2: मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बताते हैं कि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद व्यथित थे। आतंकी हमला सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं था बल्कि उन परिवारों के दर्द का सवाल भी था जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था।
3: जब वो आए तो बिल्कुल शांत, स्थिर, एकदम ऐसा लगा नहीं कि उद्वेलित हैं, आए बैठे और आज तक मुझको उनकी बोलते हुए वो आंखें और वो चेहरा वैसा का वैसा याद है। बिना किसी उद्वेग के, गुस्से के उन्होंने कहा कि इस बार का ऑपरेशन अलग होगा, सर्जिकल स्ट्राइक से अलग होगा, एयर स्ट्राइक से अलग होगा। आतंकवादी और उनके मुखिया आकाश, शब्द एग्जैक्ट में वो नहीं बता पा रहा हूं लेकिन भावना यही थी कि जहां भी होंगे हम ढूंढेंगे और उनको सबक सिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बार, मैं भी इतने साल मुख्यमंत्री रहा हूं, कई बार ऐसी घटनाएं व्यथित कर देती थी, गुस्से में ला देती थी लेकिन कोई चेहरे पर भाव नहीं।
0: ये कहानी बताती है कि बड़े फैसलों के पीछे कई बार गहरी संवेदनाएं और मानवीय भावनाएं भी होती है। ये सिर्फ एक नेता की कहानियां नहीं है बल्कि उन अनुभवों की दास्तान है जिन्होंने उनके फैसलों, सोच और नेतृत्व शैली को आकार दिया।
4: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
7: Advertise karne ke liye email kijiye sales@aajtak.com.
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
8: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
9: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers, with thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
10: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे हम।
1: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
0: अधूरा प्यार ही
1: तुम्हें दुनिया के सिम यार ठीक है मत दोहराओ
2: बिजुरी आई गए।
1: हाँ हाँ थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ हाँ हाँ
2: यह अब ही नसिया पाया भैया।
1: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
2: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ तुमको,
1: हाँ यही यही यही यही खुजा जोर से।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

में मदरसों पर शुभेंदु सरकार की सख्त नजर। बही खाते से लेकर तमाम दस्तावेजों का सर्वेक्षण, संचालन में नियम कायदे की जांच, 5 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट। बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में असंतोष और गहराया। विजयन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग बबूला। खड़गे को खत लिखकर नाराजगी जाहिर की। आज दिल्ली पहुंच रही हैं ममता बनर्जी। देश को महंगाई का झटके पे झटका। घरेलू गैस सिलेंडर 30 रुपए महंगा। कांग्रेस का हमला। महंगाई मैन मोदी ने फिर से चलाया चाबुक। सरकार का दावा, दुनिया में सबसे सस्ती गैस भारत में। पटना में खान कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। फायर सेफ्टी इंतजाम पूरे न होने के आरोप। प्रशासन का सेंटर सील का प्लान। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। जायदाद विवाद में बंगाल से आकर दंपति ने किया था मर्डर। दोनों गिरफ्तार।

0: खराब देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर से फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची है और वहां फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की गई है। एक दिन पहले भी फायर डिपार्टमेंट की टीम ने जांच के लिए फैजल खान यानी कि खान सर को कोचिंग सेंटर में पहुंचकर बताया था कि कौन कौन सी कमियां हैं। कई सारी कमियां पाए जाने के बाद इस डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था कि अगर इन कमियों को बहुत जल्द दूर नहीं किया जाएगा तो कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से खान सर के कोचिंग सेंटर में ये टीम पहुंची और कहा यह गया था कल भी कि कई सारे मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा और इन तमाम मानकों को अगर तय समय के भीतर पूरा नहीं किया जाता तो सेंटर को सील भी किया जा सकता है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आर्म्स एक्ट में केस दर्ज पहले ही हो चुका है, लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं खान सर की। फायर सेफ्टी को लेकर जांच जारी है, कोचिंग पर ताला लगेगा ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि हमने तय समय के भीतर तमाम कमियों को पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जुड़ गए हैं। शशि भूषण, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में मिल पा रही है, कितने दिन का समय दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या खानसर कोचिंग सेंटर की तरफ से प्रशासन को कोई जवाब दिया गया है, मतलब खानसर की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान इस मामले पर आया है क्या अभी?
1: देखिए सबसे पहली बात यह कि जो फायर ऑडिट टीम गई थी उसने अपने तरफ से सारी चीजों को ऑडिट किया है, मेजर्ड किया है, फायर सेफ्टी को लेकर के वहां पर क्या इंतजाम है, कितनी जो सड़क है मुसल्लपुर हाट के जिस इलाके में फैजल खान का खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर चलता है, कोचिंग सेंटर, उसकी मुख्य सड़क की चौड़ाई क्या है उसका भी मेजर किया गया है। क्योंकि आप जितने स्ट्रेंथ में आप बच्चों को वहां पर पढ़ाते हैं कोचिंग सेंटर में, क्या अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो बच्चे निकल पाएंगे, एग्जिट को लेकर के क्या इंतजाम है? तो पहली नजर में तो जो चीजें दिख रही हैं उसमें यह कि एक तो सीढ़ी बहुत पतली है जो वहां बातचीत कर रहे थे ऑडिट वाले ऑफिसर, लेकिन ऑफिशियली जो एक नोटिस होता है वो संभव है कि आज या फिर कल दे दिया जाए जो खान ग्लोबल स्टडीज है उसको, उसके प्रबंधकों को, जिसके हेड जो है वो फैजल खान है, तो उसके बाद उनको समय सीमा एक दी जाएगी कि आप इतने दिन में उसको दुरुस्त कराइए। अगर उस टाइम बाउंड के अंदर वो उसको दुरुस्त नहीं कराते हैं तो जाहिर तौर पर आगे की कार्रवाई जो है वो अग्निशमन विभाग करेगा। लेकिन इसके संकेत कल ही मिल गए थे क्योंकि कल ही जो डीआईजी है अग्निशमन सेवा के बिहार के मनोज कुमार नट, उन्होंने बातचीत में कहा था कि वो फायर ऑडिट कराएंगे क्योंकि फायर सेफ्टी को लेकर के जो चीजें चाहिए पहली नजर में वो चीजें नहीं दिख रही हैं, ये भी एक तरह से उन्होंने संकेत दिए थे। हालांकि संकेत की भाषा अलग होती है, जो ऑफिशियल चीजें होती हैं वो अलग होती हैं। तो ऑफिशियली जब नोटिस जाएगा और उसमें क्या कुछ कहता है अग्निशमन विभाग उस पर हमारी नजर बनी हुई है। शशि,
0: बहुत बहुत शुक्रिया शशि भूषण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और एक खबर है पुणे से जहां पुलिस ने बड़ी रेप पार्टी का खुलासा किया है। आपको बता दें कि तुलापुर इलाके में एक आलीशान बंगले में रेप पार्टी चल रही थी। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी के दौरान मौके से पुलिस ने कई युवक और युवतियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार पार्टी में 156 लोग मौजूद थे। जी हां, 156 लोग पार्टी में मौजूद पाए गए हैं, 107 जिसमें पुरुष हैं, 49 महिलाएं हैं। पुलिस को सूचना ये मिली थी कि इस बंगले में देर रात तक तेज संगीत, शराब और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों के साथ एक हाई प्रोफाइल पार्टी आयोजित की गई है। इस खबर पर पुलिस ने बंगले को चारों ही तरफ से घेर लिया और उसके बाद अचानक से छापेमारी की गई। छापा पड़ते ही पार्टी में जो मौजूद लोग थे अफरा तफरी उनमें मची। कुछ लोगों ने मौके से भागने की कोशिश भी की थी लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच में सामने ये आया है कि पार्टी के लिए प्राप्त शराब परोसने की अनुमति यानी कि लिकर परमिट 6 जून 2026 की रात 11:30 बजे तक था, जबकि इसके बाद भी कार्यक्रम जारी रखा गया। पुलिस को छापेमारी के दौरान गांजा भी बरामद हुआ है। इसके अलावा 3 हुक्का पाए गए हैं, 10 प्रतिबंधित हुक्का फ्लेवर्स भी जब्त किए गए हैं पुलिस की तरफ से। बंगले में करीब 9,22,000 रुपए की शराब भी बरामद की गई है। वहीं इस कार्रवाई में कुल जब्त जो सामग्री की कीमत है वो बताई जा रही है 85 लाख रुपए के आसपास। और यह खबर है यूपी के संभल से जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मुस्तफा कादरी मस्जिद पर आज लगातार दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन लिया गया है। प्रशासन की टीमों ने आज भी वहां तोड़फोड़ की गई है। शनिवार को भी वहां बुलडोजर अभियान चलाया गया था, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर साधा था निशाना। सियासत के बीच सरकारी अमला आज संभल पहुंचा था और ये कार्रवाई की गई। आज दो दो बुलडोजर और एक हाइड्रा मशीन लगाकर अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। शनिवार को डीएम अंकित खंडेलवाल, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कशेरुआ गांव पहुंचे हुए थे और कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। हालांकि कल वो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी, उसे प्रशासन ने आज आगे बढ़ाया है। सरकार की जमीन पर इस मस्जिद को बनाया हुआ था और इस मस्जिद को जमींदोज करने का नोटिस काफी पहले ही प्रशासन की तरफ से दे दिया गया था।
2: संभल के नखासा थाना इलाके के कसेरुआ गांव में स्थित मुस्तफ़ा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है और आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो कि सरकारी ज़मीन पर बनी हुई मस्जिद है उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। दो दो बुलडोजर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहाँ पर जो लगाए गए हैं। पूरा पुलिस फोर्स गाँव में तैनात किया गया है और ये देखा जाए तो ये 120 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी, जिसको हटाने के लिए जनवरी महीने में जो है लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी और उसके बाद इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई। लेकिन आज अब इस पूरे मस्जिद पर धारा 67 के तहत जो कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है और आप यहां जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर है वो इस पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। और एहतियातन अगर जो देखा जाए तो देखिए छतों पर आपको जो पुलिसकर्मी आपको जो तैनात नजर आएंगे यहां, अगर आपको जो देखा जाए तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फिलहाल आपको जो है ये वो पुलिसकर्मियों की आपको जो है लगातार छतों पर जो तैनाती दिखाई देगी जो है, जहां लगातार सब इंस्पेक्टर के साथ ही जो पुलिसकर्मी है जो सिपाही है उनको फिलहाल छतों पर तैनात किया गया है। और इसी के साथ आप जो नीचे देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ विशेष तौर पर सीओ कुलदीप सिंह, नायब तहसीलदार दीपक जुड़ैल के साथ ही जो तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह है वो पूरे गाँव में जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है। डीएम और एसपी की भी मौजूदगी और देखिए आप सामने देखिए तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह आपको यहाँ इस पूरे इलाके में लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए दिखाई देंगे। और इसी तरह से देखिए आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। सामने आप देखेंगे तो देखिए बुलडोजर के ठीक बराबर में देखिए भारी संख्या में आपको पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर जो तैनात जो नजर आएगा, जो कि आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी तरह से जो पूरे गाँव का अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स को तैनात करके पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
0: तो नोटिस पहले ही दे दिया गया था, पुलिस दस्ता यहां मौजूद था। तहसीलदार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कहा गया सुनिए।
2: तहसीलदार संभल यहां मौके पर मौजूद है, सर किस तरीके से सर ये पूरी कार्रवाई जो सर चल रही है और अभी सर कहां तक पहुंची?
3: ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है।
0: तो पहले दिन जब संभल में मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी तो वहां से आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर्स बरामद किए गए थे, साथ ही साथ विवादित झंडे भी वहां से पाए गए थे। मलबे से मिले इन तमाम सामानों को लेकर प्रशासन और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना यह है कि सभी पहलुओं की जांच जारी है, उसके बाद ही कोई आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी।
4: यहाँ पे चार थानों की फोर्स है, उनको डिप्लॉय किया गया है, उसके साथ में विभिन्न प्रकार के पोस्टर्स जो हैं वो भी इस मस्जिद परिसर से मिले हैं। ये कब्रिस्तान की जमीन पे बनी हुई थी, उसको तोड़ने का कार्य प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। पुलिस ने सुरक्षा यहाँ पे सुरक्षा दी जा रही है।
2: सर जो पोस्टर मिले हैं सर, क्या इनको लेकर के भी सर जांच वगैरह से की जाएगी
4: कि कौन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था?
2: क्या सर कोई झंडा वगैरह भी सर यहाँ पर?
4: हाँ, एक झंडा है जिसमें इस तरीके का झंडा है, इसके क्या मायने हैं इसके बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में पता लगाएगा। थैंक यू।
0: तो संभल की मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सोशल मीडिया पोस्ट करके राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं, कहा है कि जुल्म की इंतहा हो गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार अलग अलग मुद्दों पर योगी सरकार पर निशाना साधा जाता है। आपको बता दें कि जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने एक बार फिर से कहा है सोशल मीडिया एक्स पर कि अब जुल्म की इंतहा हो चुकी है। उनका कहना यह है कि आंखों पर पट्टी बांधकर ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। हालांकि जो ये मस्जिद है ये सरकारी जमीन पर बनी हुई थी, नोटिस पहले ही दे दिया गया था और तमाम पुलिस बल के रहते इस कार्रवाई को किया गया है, लेकिन सियासत इस पर शुरू हो चुकी है। और ये बड़ी खबर वाराणसी से है। बनारस में अब मीट की दुकानें हटा दी जाएंगी। वाराणसी शहर के बाहर सभी नॉनवेज की दुकानों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। शहर के भीतर हर गली मोहल्ले में मीट, मांस और मछली की बिक्री का दौर बहुत ही जल्द अतीत की बात हो जाएगी। नगर निगम ने शहर को व्यवस्थित और स्वच्छ रखने की दिशा में एक बड़ा निर्णय ले लिया है। इसके तहत अब मीट, मांस और मछली की सभी दुकानें शहर के बाहर, सीमा से बाहर स्थानांतरित कर दी जाएंगी और वाराणसी नगर निगम की बैठक में इस फैसले को लिया गया है, ये डिसीजन किया गया है। तो बहुत ही जल्द वाराणसी के अंदर मीट, मांस, मछली ये तमाम चीजें प्रतिबंधित होंगी, उन्हें नहीं बेचा जाएगा। इन तमाम दुकानों को शहर के बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। नगर निगम की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। व्यवस्थित और साथ ही साथ साफ सफाई के लिए इस बड़े डिसीजन को नगर निगम की तरफ से लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोशन जुड़ गए। रोशन, कब तक समय दिया जाएगा इन दुकानों को और क्या यह भी तय कर लिया गया है कि किस जगह पर इन तमाम दुकानों को स्थानांतरित किया जाएगा?
5: जी देखिए, बिल्कुल अभी जैसा कि मेयर अशोक तिवारी ने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक में पहले ही यह फैसला लिया जा चुका था और उसके बाद जैसे कि जो प्रक्रिया होती है, आम सभा की जो बैठक हुई है कल वाराणसी नगर निगम की टाउन हॉल मैदान में, तो वहां पर ये निर्णय लिया गया। तो आम सभा में भी ये प्रस्ताव पूरी तरह से सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है और जैसा कि मेयर ने अभी बताया कि अगले 6 महीनों में ये जितनी भी दुकानें हैं उसको वाराणसी के नगर निगम सीमा क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्र पे उसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा, न कि उनको उजाड़ा जाएगा। उनका साफ तौर पर ये भी कहना था कि जितनी ये दुकानें हैं वे इलीगल है और वाराणसी में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार लाखों होती है, रोज तमाम श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में वाराणसी शहर सीमा में, नगर की सीमा में इस तरह की दुकानों का संचालन जो पूरी तरह से अवैध रूप से किया जा रहा है जैसा मेयर अशोक तिवारी ने दावा किया, तो ये कहीं ना कहीं गलत है और इससे गलत मैसेज जाता है। इसलिए कुल 5 जगह ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो शहर सीमा से बाहर है और
0: तो बड़ा फैसला नगर निगम की तरफ से किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बंगाल की हम बात करेंगे क्योंकि बंगाल में चुनाव के बाद टीएमसी में मची भगदड़ के बीच ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। अब से कुछ ही देर पहले वो कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची थी जहां से वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। आपको बता दें कि सोमवार को यानी कि कल इंडिया गठबंधन की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमें वो हिस्सा लेंगी। आपको ये भी बता दें कि जो पार्टी के सांसद और उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो उस बैठक में शामिल होने के लिए एक दिन पहले ही यानी कि शनिवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस सिंह गुप्ता जुड़ गए। तापस, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सोमवार को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक मानी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी अब अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में है किसी भी तरह।
1: जी बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इस बार हार का स्वाद चखा है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया था उनके राजनीतिक भविष्य पे। लेकिन उन्होंने तुरंत बाद ही ये ऐलान कर दिया था कि वो अब एक आजाद पंछी हैं और अब वो दिल्ली के लिए गूंज करेगी। थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी दिल्ली के लिए रवाना हुई है और तकरीबन 4:30 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंचेंगी। जो सूत्रों के हवाले से खबर, कुछ अपने अपने दल के कुछ सांसदों के साथ आज वो मीटिंग कर सकते हैं शाम को। साथ में उनका कल्याण बनर्जी डोलासेन और चंदिमा भट्टाचार्य गए हैं और इनके साथ ही कुछ और भी सांसदों के साथ वो आज मीटिंग कर सकते हैं और उसके बाद कल इंडी गठबंधन के बैठक में वो और अभिषेक बनर्जी दोनों ही शामिल होंगे। इसके अलावा ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी आप जैसे दलों के साथ भी वो अलग से बैठक कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में कोई भी आधिकारिक रूप से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिल रहा है कि क्या बाकी सांसद, बहुत सारे सांसद अपने खेमे को, ममता बनर्जी के खेमे छोड़ के दूसरे खेमे में जाने के तैयार है इस खबर को लेकर। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने साफ बताया कि यह गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती होगी विधानसभा में। जिस तरीके से ऋतुव्रत और संदीपन ने एक अलग गुट बना लिया है तृणमूल कांग्रेस का ही, अगर ऐसा ही नजारा सांसद में देखने को मिलता है, पार्लियामेंट में देखने को मिलता है, तो ये खासा परेशानी का सबब होगा। तो कहीं ना कहीं
0: चुनौतियां लगातार बड़ी हुई है ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की, चाहे पार्टी की दोफाड़ की बात हो, हार की बात हो, या कटमनी वाले मामले हो, या फिर जनता का उनके प्रति गुस्सा हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लिए आपका। अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सियासत घोर आपदा में नजर आ रही है। टीएमसी चुनाव हार चुकी है, पार्टी में कलह मची हुई है, विधायक तो टूट ही चुके हैं, अब संसदीय दल में भी टूट की खबर है। टीएमसी पर आए इस संकट के बीच ममता बनर्जी विपक्षी एकता के जरिए मुसीबत को टालने की उम्मीद कर रही हैं।
6: चार मई को बंगाल के चुनावी नतीजों के अगले ही दिन जब ममता बनर्जी ने यह बयान दिया, तो क्या तभी उन्हें अपनी पार्टी पर आने वाले सियासी खतरे का अंदाजा हो गया था? क्या ममता को आभास हो गया था कि 15 साल की सत्ता हाथों से जाने का सीधा असर उनकी पार्टी पर होगा? ममता बनर्जी के मन में क्या था ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन महीने भर का घटनाक्रम ये बता रहा है टीएमसी पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। पहले फर्जी हस्ताक्षर मामले में दो विधायक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गए, ममता ने कार्रवाई की तो दोनों विधायकों ने अपना गुट बनाकर 60 MLA को साथ ले लिया। ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। लेकिन संकट अभी थमा नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीएमसी के 28 में से 23 सांसद बाकी विधायकों के संपर्क में है।
7: ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
6: यानी चुनाव के बाद बंगाल में टीएमसी के भीतर शुरू हुई लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है, और इस बदले घटनाक्रम के बीच ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन से बड़ी उम्मीद लगाए हुई है। वैसे खबर है कि इंडिया गठबंधन की यह बैठक ममता बनर्जी के ही कहने पर बुलाई जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी नतीजों के ठीक बाद कह चुकी हैं कि अब वो आजाद पंछी हैं और पूरी तरह मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता पर काम करेंगी।
8: I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister. All the allies of United Indian Alliance, they said we are totally absolutely with you.
6: पहले इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की हसरत के साथ कांग्रेस की मीटिंग से दूर रहने वाली ममता बनर्जी इस बार खुद दिल्ली की बैठक में शामिल होने वाली है, क्योंकि अब मसला सिर्फ विपक्षी एकता का नहीं, उनकी पार्टी की फूट का भी है। अगर सांसदों में टूट हुई तो टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए अभिषेक बनर्जी एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। कोशिश विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की है, ताकि टीएमसी के संकट को कुछ कम किया जा सके। आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबर बंगाल में टीएमसी नेताओं पर जारी एक्शन के बारे में करेंगे, क्योंकि आज एक और टीएमसी पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबी पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपी पार्षद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार किया है। मामला है 2023 के पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ, जिसमें जसीमुद्दीन आरोपी है, और कोलकाता पुलिस ने आज सुबह पार्षद के आवास पर पहुंचकर पूछताछ उससे की है। आपको यह भी बता दें कि उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो टीएमसी नेताओं पर एक्शन से जुड़ी अहम और बड़ी खबर भी आपको बता दें, कोलकाता में एक टीएमसी पार्षद पर फिर से अंडे से हमला किया गया है। जबरदस्ती वसूली के आरोप में गिरफ्तार टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता को पुलिस थाने से बाहर निकाल रही थी, और तभी भीड़ ने उन पर सैकड़ों अंडों के साथ एक साथ हमला बोल डाला। जरा देखिए तस्वीरें। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब टीएमसी के किसी नेता पर इस तरीके से अंडों से हमला किया गया हो, चाहे बड़ा नेता हो या कोई पार्षद या विधायक। लोगों का गुस्सा जमकर तमाम टीएमसी के नेताओं पर फूट रहा है। पुलिस थाने के भीतर ही हमला किया गया है। बड़ी संख्या में यहां लोग इकट्ठा हुए थे और जबरदस्त तरीके से अंडों की बौछार यहां इस नेता के ऊपर कर दी गई। पार्षद हैं बापादित्य दास गुप्ता। पुलिस थाने के भीतर ही हमला किया गया है। पुलिस यहां से उन्हें निकाल रही थी और तभी यहां इकट्ठा लोगों ने जबरदस्त तरीके से अंडे फेंकने शुरू कर दिए। अभिषेक बनर्जी वाला मामला आपको याद होगा कि किस तरीके से भीड़ ने नाराज होकर उनके ऊपर पत्थर और अंडे फेंके थे। अलग अलग जगहों पर कुछ इसी तरह के हालात बाकी के नेताओं को भी देखने पड़ रहे हैं, जिसमें जनता की नाराजगी, आपसी सिर्फ उठौबल, सब कुछ टीएमसी को देखना पड़ रहा है। तो एक तरफ जनता टीएमसी के तमाम नेताओं से बहुत ज्यादा नाराज है, तो दूसरी तरफ प्रशासन सख्त है, ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं उनके ऊपर। इसी बीच छावड़ा से एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई, जहां एक टीएमसी विधायक को पकड़ने गई पुलिस से बचने के लिए। आरोपी नेता साहब साड़ियों के ढेर के नीचे छुप गए, और ये चौंकाने वाली घटना हावड़ा के उदय नारायणपुर के बिलासपुर इलाके की बताई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई और टीएमसी नेता के छुपने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि व्यक्ति का नाम है ब्रह्मानंद चक्रवर्ती, जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता है। स्थानीय लोगों ने उस पर हाउसिंग स्कीम के फंड से कट मनी यानी कि अवैध कमीशन लेने के आरोप लगाए हैं। जब पुलिस स्टेशन से में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई, तो पुलिस उन्हें खोजते हुए पहुंची उसके घर। तभी वो गिरफ्तारी के डर से एक कपड़ा की दुकान में पहुंचा और स्टोर रूम में साड़ियों के ढेर में जाकर छुप गया। हालांकि पुलिस ने उसे खोज निकाला और उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। और एक और बड़ी और अहम खबर दिल्ली से। दिल्ली में प्रोफेसर की हत्या से जुड़ी हुई खबर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के मर्डर के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया है, और हत्या की वजह बताई जा रही है प्रॉपर्टी विवाद। एक महिला और एक पुरुष को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान के आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, और अब दिल्ली पुलिस उन्हें लेकर राजधानी लौट रही है। इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
10: गेट इन टू द हडल विद ट्यून इन। ट्यून इन ब्रिंग्स यू नॉनस्टॉप स्पोर्ट्स टॉक, लाइव गेम्स एंड एक्सपर्ट एनालिसिस ऑल इन वन प्लेस, फ्रॉम किक ऑफ टू फाइनल व्हिसल। फॉलो योर फेवरेट टीम्स ऑल सीजन लॉन्ग विद ESPN रेडियो, टॉक स्पोर्ट, बिग 12 रेडियो एंड मोर। Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
9: Savari, Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं,
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: you're in the mood for? TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
5: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
5: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
1: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
6: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
1: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
6: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
1: छात्रों को दिया मंच।
6: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
7: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
8: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
1: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
6: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
1: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

शुभेंदु सरकार की सख्त नजर, वही बही खाते से लेकर तमाम दस्तावेजों का सर्वेक्षण, संचालन में नियम, कायदे की जांच, 5 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट। बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में असंतोष और गहराया। विजयन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग बबूला, खड़गे को खत लेकर नाराजगी, आज दिल्ली पहुंच रही हैं ममता बनर्जी। वाराणसी में नगर निगम का बड़ा फैसला, शहरी क्षेत्र में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी पाबंदी, टाउन से बाहर शिफ्ट होंगी तमाम दुकानें, लोकेशन भी तय होगी। पटना में खान कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, फायर सेफ्टी इंतजाम पूरे न होने के आरोप, प्रशासन का सेंटर सील करने का प्लान। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, जायदाद विवाद में बंगाल से आकर दंपति ने किया था मर्डर, दोनों

लखनऊ में जीआरपी की कार्यप्रणाली की समीक्षा। सीएम योगी ने दिए निर्देश। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित बनाने पर जोर रहेगा। प्रदेश में रेल सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने की तैयारियां तेज। एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर विपक्ष का सरकार पर हमला। सहारनपुर में एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस का हमला। बोले महंगाई की मार है, सत्ता को फर्क नहीं पड़ता कि लोग खाना खा पाएंगे या नहीं। संभल में अवैध अतिक्रमण हटाने पर कार्रवाई जारी। निरीक्षण के दौरान मस्जिद में आई लव मोहम्मद पोस्टर और झंडे मिलने की बात भी सामने आई। संभल में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद सियासी तनाव तेज हो गया। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक पिंकी यादव ने प्रशासन पर साधा निशाना। कसेरुआ गांव में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद गिराए जाने के बाद माहौल गर्म। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अरिहंत अंबर सोसाइटी में दर्दनाक हादसा। टावर से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा गिरने से निवासी की मौत हुई। निवासियों ने बिल्डर की लापरवाही पर उठाए सवाल। जांच में जुटी हुई है पुलिस। चित्रकूट में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर हवा में उछल गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर। ट्रक के नीचे से निकली कार, ड्राइवर, क्लीनर समेत बाल बाल बचे लोग। बिजनौर में मंदिर में चोरी और तोड़फोड़ के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया। दानपात्र, तांबे का नाग और घंटा चोरी करने के आरोप में ग्रामीणों ने दबोचा। मूर्तियां खंडित करने की भी चर्चाएं। गाजियाबाद में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। मोदीनगर में बेगमाबाद में 14 दुकानों पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा। दो दिन में खाली नहीं करने पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी। चंदौली में लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी थी। पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। बलुआ लूटकांड में शामिल आरोपी पूर्व से कई मामलों में वांछित थे। औरैया में घरेलू एलपीजी सिलेंडर फिर से महंगा हुआ है। 29 रुपए बढ़े दाम, लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी से बिगड़ गया है लोगों के घर का बजट। ग्राहकों में नाराजगी है, महंगाई ने परेशानी बढ़ाई। बरेली में लवजाद और धर्म परिवर्तन का मामला। मुकदमा दर्ज। हिंदू नाम बताकर युवक पर युवती को प्रेम के जाल में फंसाने के आरोप। पीड़िता की शिकायत पर कैंट थाना पुलिस ने शुरू कर दिया मामले की जांच। झांसी में पुलिस का हाफ एनकाउंटर। हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हुआ है, दूसरे ने मौके से पहुंचकर सरेंडर किया। हत्या में इस्तेमाल हथियार और कारतूस भी बरामद किए जा चुके हैं। जांच जारी। देवरिया में एजुकेटर फैसल खान उर्फ खान सर पर जमीन विवाद के आरोप। स्थानीय लोगों ने धमकी और डराने के शिकायतें उठाई हैं। परिवार के इमरान खान फैजल और स्थानीय बजरंगी राय के बयान भी दर्ज किए गए। अलीगढ़ में दिल्ली अग्निकांड के बाद होटल में फायर ब्रिगेड की जांच कमियों पर चेतावनी। सुरक्षा मानकों की समीक्षा तेज हुई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर तीखा हमला। बदलाव को लेकर दिया राजनीतिक संदेश। नौजवानों और इंकलाब की बात करते हुए सिस्टम पर सवाल उठाए। लखनऊ में फर्जी पेपर लीक टेलीग्राम रैकेट का भंडाफोड़। ओम कुमार को गिरफ्तार किया गया। कई राज्यों में अभ्यर्थियों से ठगी का आरोप है। परीक्षा पेपर दिलाने के नाम पर क्यूआर कोड से पैसे वसूलने का खेल उजागर। मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। 2027 चुनाव में फोकस। महिला चौपाल में सत्ता परिवर्तन यात्रा के तहत महिलाओं से संवाद। नगीना मॉडल पर चुनाव लड़ने की घोषणा। बीजेपी के गुजरात मॉडल से तुलना। उन्नाव में सड़क निर्माण को लेकर सभासद का अनोखा विरोध। ईओ के सामने दंडवत होकर सड़क बनाने की लगाई है गुहार। नगर पालिका में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी के आरोप भी लगाए। सहारनपुर में दो मुहा सांप गैंग का शातिर आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ऑडी से घूमकर लोगों को ठगी के जाल में फंसाया करता था। पुलिस नकली नोट, फर्जी दस्तावेज और लाखों की नकदी को बरामद कर लिया है।

आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद घटना में आपको बता दें कि पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही हैं। एक बार फिर से फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है फैजल खान के कोचिंग सेंटर पर और वहां फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की जा रही है। एक दिन पहले भी फायर डिपार्टमेंट की टीम ने जांच के लिए फैजल खान के कोचिंग सेंटर पर पहुंचकर वहां जो कमियां थी उनके बारे में जानकारी जुटाई थी और विभाग की ओर से कहा यह गया था कि अगर इन कमियों को बहुत जल्द दूर नहीं किया गया तो कोचिंग सेंटर को सील कर दिया जाएगा। तो फायरिंग केस में गिरफ्तारी के संकट से जूझ रहे फैसल खान की कोचिंग सेंटर पर भी खतरा मंडराने लगा है। आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।

0: पहले आर्म्स एक्ट में केस, फिर गिरफ्तारी का संकट और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर आ गई है। खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान के कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया, जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गईं।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है या था जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है, जो यदि वे उसका मिट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहां के जो संबंधित अग्निशामक पदाधिकारी हैं और यहां के जो जिला अग्निशामक पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं।
0: इस एक्शन के एक दिन बाद ही फायर डिपार्टमेंट की टीम फिर ऑडिट करने फैजल खान की कोचिंग पहुंची और पूरे सेंटर का मुआयना किया। जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। अगर जल्द ही इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, यहां तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है।
1: देखिए जांच करने के जो प्रक्रिया है उसमें इनिशियल स्टेज होता है कि उसको जांच की जाती है, फिर उसको नोटिस किया जाता है, फिर शोकॉज किया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म है, ABCDEFG और H तक फॉर्म है, जिस फॉर्म के हिसाब से उन पर कार्रवाई की है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, चूंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है।
0: फैजल खान पहले ही आर्म्स का केस दर्ज होने के बाद संकट में घिरे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की तैयारी है।
2: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सर,
3: जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, नॉन बेलेबल सेक्शन लगा है कि उनके कहने पर गार्ड्स ने फायरिंग की थी, तो क्या लगता है कि खान सर को इस मामले में बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है?
2: बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंसर्ट कर दिया गया है FIR में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा।
3: आप लोग को क्या लगता है, आप उनके वकील हैं तो इस परिस्थिति में पुलिस उनको अरेस्ट भी कर सकती है?
2: पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
0: लेकिन इस सब के बीच अब फायर डिपार्टमेंट की जांच फैजल खान की परेशानी और बढ़ा सकती है।
1: यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी, यथाविनिश प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है।
0: दरअसल हाल में बिहार के मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद से प्रशासन हरकत में है। इसी कड़ी में फैजल खान के कोचिंग सेंटर की जांच हुई और अब कोचिंग सेंटर के सील होने का खतरा मंडरा रहा है। पटना से शशिभूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।
4: तो पटना के कोचिंग सेंटर के बाहर हुए गोलीकांड पर अब खान सर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आर्म्स एक्ट में केस दर्ज हो चुका है, उसके बाद खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इसी बीच खान सर के वकील का दावा यह है कि वो सोमवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाएंगे।
0: पटना की कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई, वीडियो पर विवाद बढ़ा, ये विवाद यूट्यूब वाले खान सर के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया। एक दिन पहले जब आर्म्स एक्ट में फैजल खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ तब से ही अटकलें लग रही थीं कि कभी भी पुलिस फैजल खान को गिरफ्तार कर सकती है, जल्द ही फैजल खान पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा गिरफ्तारी से बचने के लिए फैजल खान के वकील कोर्ट पहुंचे।
5: फैसल खान जो है एक बार कोर्ट पहुंचकर अग्रिम जमानत की याचिका भी डालना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई वकील के जरिए अग्रिम जमानत की याचिका डाली जाए और उस पर एक बार बहस हो, और अगर अग्रिम जमानत उन्हें मिल जाए तो कुछ उनको राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल मुश्किलें फैसल खान की जो है वो कम नहीं हो रही है, और इस वक्त सिविल कोर्ट में भी जो है काफी हलचल तेज है। और अगर फैसल खान अगर यहां आते हैं सरेंडर करने के लिए, जिस तरीके की संभावना जताई जा रही है, तो उसको लेकर यहां पुलिस भी मौजूद है, ताकि अगर वो सरेंडर करने के लिए पहुंचते हैं तो उससे पहले उनको गिरफ्तार किया जा सके।
0: पटना में फैसल खान के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पटना में हलचल बढ़ी हुई थी। इस तस्वीरों को देखिए, पूरी रात फैसल खान के समर्थक छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर डटे रहे। तनाव को देखते हुए पुलिस की गश्त जारी रही। पीसीआर वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती दिखी। एक दिन पहले भी पटना पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई थी कि छात्र किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। फैसल खान पर केस दर्ज होने के बाद पटना में गहमा गहमी बढ़ी हुई है। शुक्रवार शाम ही केएसजी कोचिंग सेंटर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। इस बीच वो तस्वीर भी सामने आई थी।
6: वो अब भी यहाँ पर खड़े हैं। खान सर का ये कोचिंग है, सामने ये कोचिंग रखी, खान सर का ये कोचिंग है, और कोचिंग के गेट पर जो है भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं, देखिए किस तरह से सड़क पर मौजूद हैं, और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहाँ पे खड़े हैं।
0: इस बीच वो तस्वीर भी सामने आई थी जब वकील फैसल खान के कोचिंग सेंटर पहुंचे थे। उसके बाद फैसल खान अपनी कार से कोचिंग से निकल गए थे। पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु के शिक्षक रोशन आनंद के बीच विवाद अब बड़ा मुद्दा बन गया है। कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। फैसल खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पटना से शशिभूषण और अनिकेत के साथ आज तक ब्यूरो।
4: तो कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले तो फैसल खान उर्फ खान सर ने अपने पड़ोस वाली ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार करवाया, और अब कोचिंग गोलीकांड में खुद ही खान सर फंस चुके हैं। आपको बता दें कि आखिर पूरा का पूरा विवाद कैसे बढ़ता गया और खान सर की मुश्किलें कैसे बढ़ती चली गई।
7: इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है।
0: पटना में दो मशहूर कोचिंग सेंटर्स के बीच की लड़ाई अब सड़कों तक आ गई। फैसल खान और ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद के बीच की रंजिश अब सिर्फ कोचिंग की ओर नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गई।
8: इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं, सबके सामने ये
0: दरअसल होड़ पहले से थी, लेकिन फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया। रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद विवाद तूल पकड़ गया। ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर ज्ञान बिंदु कोचिंग के अलग अलग सेंटर्स के छात्र सड़कों पर उतर गए। पोस्टर बैनर के साथ छात्रों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। ये छात्र रोशन आनंद की रिहाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल रोशन आनंद को फैसल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक नया वीडियो वायरल होने के बाद इस केस में ट्विस्ट आ गया और रोशन आनंद पर आरोप लगाने वाले फैसल खान खुद आरोपों में गिर गए। नए वीडियो में फैसल खान का गार्ड गोली चलाता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने फैसल खान के दो गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग वाली शाम का वो बयान देखिए जिसमें फैसल खान अपनी कोचिंग पर फायरिंग का आरोप लगा रहे थे।
9: इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर
10: क्या लगता है कौन क्या होगा ये
9: बगल की कोचिंग?
0: दरअसल कोचिंग संचालक फैजल खान और रोशन आनंद के बीच वर्चस्व की लड़ाई 27 मई से ही शुरू हुई थी जब बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया था। दोनों कोचिंग संचालकों ने अपने ज्यादा छात्रों की कामयाबी के दावे किए। दोनों तरफ से अपने अपने अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों ने बढ़ चढ़कर पोस्टर भी लगाए।
11: 30 मई को पटना में दोनों ही कोचिंग संस्थानों और संचालकों की तरफ से अपने अभ्यर्थियों की सफलता का जश्न भी मनाया गया। लेकिन बात जब बिगड़ गई जब 3 जून की रात अपने अपने बैनर पोस्टर को लेकर के दोनों खेमे आमने सामने आ गए और नतीजा वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।
0: आरोप है कि फैजल खान के स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और यहीं से विवाद भड़क गया। 2-3 जून की रात को दोनों कोचिंग संचालकों के बीच में बवाल हो गया और तोड़फोड़ पत्थरबाजी से लेकर गोलियां चल गई।
12: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत।
0: दो कोचिंग संचालकों के बीच की जंग अब गोलीबारी तक पहुंच गई। बच्चों का भविष्य बनाने का दावा करने वाले गुरु आपस में झगड़ रहे हैं और इस झगड़े में नए खुलासे के बाद खुद कोचिंग वाले खान सर पूरे फंसे हैं। पटना से शशिभूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और अब बात करेंगे अमेरिका और ईरान वॉर के बारे में, क्योंकि एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है। समुद्र में टकराव की शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है ये तनाव। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर उकसावे वाली कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। ईरान ने चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने का दावा किया है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि उसने ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया है।
0: अमेरिका ईरान के बीच बीते कुछ दिनों की शांति एक बार फिर धमाकों के शोर में भंग होती दिख रही है। एक बार फिर अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव की स्थिति बन रही है। एक बार फिर हॉर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने। दोनों ओर से हुए हमलों के बाद टकराव बढ़ती दिख रही है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गईं। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहे। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला गया है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोला। ईरान के सर्विलांस रेडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया। ईरान के रेडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी किया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था जिसके जवाब में उसके रेडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब हॉर्मुज पर नया मोर्चा खुल गया है। जिससे दोनों देशों में जंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: This is radio reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
16: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
15: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
17: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: सरसों पशु बिंदु सरकार के सख्त नजर, बही खाते से लेकर तमाम दस्तावेजों का सर्वेक्षण, संचालन में नियम कायदे की जांच, 5 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट। बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में असंतोष और गहराया, विजयन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग बबूला, खड़गे को खत लिखकर नाराजगी, आज दिल्ली पहुंच रहे ममता बैनर्जी। वाराणसी में नगर निगम का बड़ा फैसला, शहरी क्षेत्र में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी, टाउन से बाहर शिफ्ट होंगी तमाम दुकानें, लोकेशन भी तय होंगे। पटना में खान कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, फायर सेफ्टी इंतजाम पूरे ना होने का आरोप, प्रशासन का सेंटर सील करने का भी प्लान। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, जायदाद विवाद में बंगाल से आकर दंपति ने किया मर्डर, दोनों गिरफ्तार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
0: वाराणसी में नगर निगम का बड़ा फैसला, शहरी क्षेत्र में नॉनवेज की बिक्री पूरी तरह उस पर पाबंदी, टाउन से बाहर शिफ्ट होंगी तमाम दुकानें, लोकेशन भी तय होंगे। पटना में खान कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, फायर सेफ्टी इंतजाम पूरे ना होने का आरोप, प्रशासन का सेंटर सील करने का भी प्लान। कोचिंग विवाद में बढ़ी खान की मुश्किलें, आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराएं लगी, 3 साल तक की सजा संभव। पटना में क्यूजीएस सेंटर का फायर ऑडिट, अग्निशमन विभाग की टीम ने सुरक्षा इंतजामों की जांच की है। पटना में कल ऑटो चालकों की हड़ताल, पूरे शहर में सेवाएं रहेंगी प्रभावित। फिर बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर, उसकी

0: कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए नई दरें आज से लागू। पिछले तीन महीनों में यह दूसरी बार है जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। लगातार बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का अपवाद, कहा कि महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर से चला है, जनता से वसूली करो, दोस्त की तिजोरी भरो। पश्चिमी एशिया संकट के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर्द को बढ़ाने पर भी चर्चा। वैश्विक संकट के बीच में भारत की नई आर्थिक रणनीति, पीएम मोदी और ईएसी की एक अहम बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस। यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी, कहा 2017 से पहले यहां दुर्गा पूजा के समय दंगा हुआ। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में राम मंदिर का उठाया मुद्दा, बोले कि राम का नाम लेने का पर प्रतिबंध था, यहां गोलियां चलती थी, भगवान राम का अयोध्या तक जो है उनके भक्त नहीं जा सकते थे। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सीपीएम ने बीजेपी के साथ डील के आरोप पर कांग्रेस से मांगी सफाई, 8 जून को कांग्रेस ने बुलाई है बैठक, डीएमके ने मीटिंग में नहीं जाने का किया ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस जनता पार्टी पर साधा निशाना, कहा कि कुछ ताकतें देश के युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके पर बीजेपी अध्यक्ष का निशाना, बोले विदेश में बैठे कुछ लोग सोचते हैं कि वो भारत के युवाओं को दिशा दे सकते हैं। सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर के दावे झूठे, दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान में ये बातें कही। अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कांग्रेस जनता पार्टी के बहाने सरकार को घेरते देखे, कहा कि युवाओं में गुस्सा है, उनकी आवाज सुननी होगी। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन, वंचित वर्गों के मुद्दे पार्टी उठाएगी। रीनीट पेपर लीक की खबरें पूरी तरह से फर्जी, एनटीए ने सख्त चेतावनी भी जारी की। 8 जून को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी दिल्ली पहुंचे। 8 जून को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में डीएमके शामिल नहीं होंगे। बंगाल में मदरसों का सर्वे शुरू करने का निर्देश, 5 जुलाई तक जिला स्तर पर मांगे गए रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी। और भारतीय कैप क्रिकेटर सौरव गांगुली ने ममता के लिए यूसुफ पठान की लोकसभा सीट छोड़ने का संदेश पहुंचाने के बाद से पूरी तरह से खारिज किया, इनकार किया। गांगुली ने कहा कि ममता बैनर्जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। बक्सर वरुणा आरओबी धंसा पर बिहार सरकार का स्पष्टीकरण, बिना कमीशनिंग शुरू हुआ था यातायात। निर्माणाधीन आरओबी में आंशिक धंसा और उसकी मुख्य संरचना उसकी सुरक्षित है, जांच और मरम्मत जारी है, कहा। कटिहार में ठेले पर दिखी स्वास्थ्य व्यवस्था, घायल बुजुर्ग महिला को एम्बुलेंस न मिलने पर परिजन ठेले पर ले गए। सीजीपी के प्रदर्शन पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का तीखा वार, संघर्ष करें लेकिन नाम बदलें, कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। लखनऊ में जीआरपी की कार्यप्रणाली की समीक्षा, मुख्यमंत्री योगी ने रेलवे सुरक्षा को और आधुनिक और टेक्नोलॉजी आधारित बनाने का निर्देश दिया। एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, इंडिया गठबंधन बैठक में इससे पहले सीपीआईएम ने सवाल उठाए। सहारनपुर में एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस का हमला, बोले महंगाई की मार है, सत्ता को फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग खाना खा पाएंगे या नहीं। संबल में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मस्जिद में मिले आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर, अब जांच जारी। संभल में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद से सियासी तनाव, एसपी नेताओं ने प्रशासन पर साधा निशाना। अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला, नौजवानों और इनकलाब की बातें करते हुए सिस्टम पर सवाल उठाए। लखनऊ में फर्जी पेपर लीक, टेलीग्राफ रैकेट का भी भंडाफोड़, ओम कुमार गिरफ्तार, कई राज्यों के अभ्यर्थियों से ठगी का भी आरोप है। मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान, 2027 चुनाव पर फोकस, नगीना मॉडल पर चुनाव लड़ने का ऐलान। उन्नाव में सड़क निर्माण को लेकर सभासद का अनोखा विरोध, ईओ के सामने दंडवत होकर गुहार लगाई, भ्रष्टाचार के आरोप। उधर 24 परगना में टीएमसी विधायक मदन मित्रा का विरोध का उनको सामना करना पड़ा, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टीएमसी विधायक पर अंडे फेंके। पश्चिम मिदनापुर में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस ने पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुजय हाजरा को जमीन घोटाला मामले में अरेस्ट किया। कोलकाता में एक और तृणमूल कांग्रेस पार्षद बप्पा आदित्य दास गुप्ता को रंगदारी के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया, जांच जारी। तेलंगाना में फर्जी सरकारी दस्तावेज केस में वाईएसआरसीपी के पूर्व विधायक नायडू गिरफ्तार, जांच जारी है। दिल्ली में अवैध निर्माण पर रेखा गुप्ता सरकार का अब सख्ती दिखी, 6 दिनों में 114 प्रॉपर्टीज सील की गई। राजकोट में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, यूपी में सूर्या की हत्या की घटना को बताया फ्रिंज जिहाद, दक्षिण गुजरात में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का बड़ा बयान दिया। गुजरात के राजकोट पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, 7 जून तक हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन। सूरत में 100 से ज्यादा घरों के डिमोलिशन को लेकर विवाद, बीजेपी नेता ने की जांच की मांग, कांग्रेस ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पीलीभीत में बंद पड़े चीनी मिल को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। बारामती में टेम्पो और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर, 3 भाई बहनों की मौके पर मौत। जून के तीसरे हफ्ते में दिल्ली पहुंचेगा मॉनसून, मौसम विभाग ने जानकारी दी 4 दिन लेट केरल पहुंचा है मॉनसून। पश्चिम मध्य और मध्य पूर्व अरब सागर, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश कर चुका है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों में मानसून पूर्वोत्तर के सभी राज्यों तक पहुंचने की इसकी उम्मीद, अगले 10 दिनों में बिहार, झारखंड, ओडिशा पहुंचने की संभावना। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी, कई जिलों में कल ओले गिरे, बिहार में आंधी और बारिश से टेम्परेचर गिरा। गुजरात को छोड़कर देशभर में प्री मानसून गतिविधियां तेज, कई राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। ओडिशा के बोलांगीर में आंधी बारिश के चलते तबाही, चलती बाइक पर पेड़ गिरने से 1 शख्स की मौत, 2 लोग घायल। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में जोरदार बर्फबारी, कड़ाके की ठंड, चारों तरफ बर्फ की चादर। दक्षिण के कई राज्यों में बारिश, हैदराबाद में झमाझम बरसात, मौसम सुहाना। कर्नाटक में कई शहरों में मूसलाधार बारिश, धारवाड़ में भारी बरसात के बाद जल जमाव से दिक्कत। केरल में भी मानसून बारिश तेज, कन्नूर में गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत। दिल्ली ससुराल में कृतिका शुक्ला की मौत, 1 दिन पहले रोते हुए मां को फोन करके मायके बुलाने और बचाने की गुहार लगाई थी। भावनगर में शत्रुंजय डूंगर का जो शेर है दिखा वायरल वीडियो में, तीर्थयात्रियों में दहशत दिखी, वन विभाग को सूचना दी गई, मौके पर पहुंचा। जामनगर में पुलिसिया कार्रवाई के बाद से युवक ने जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया है, पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। पुणे के तुले गांव आलंदी रोड पर लग्जरी बंगले में रेप पार्टी का भंडाफोड़, पुलिस ने को गुप्त सूचना मिली थी, उसके बाद छापेमारी हुई, 156 लोग हिरासत में। छापेमारी में 3 ग्राम गांजा, हुक्का फ्लेवर और 9,22,000 की शराब बरामद। जांच में खुलासा, परमिट समय सीमा के बाद भी ये पार्टी चल रही थी, नियमों का उल्लंघन चल रहा था। मोरबी के होटल में लगी भीषण आग, धुएं के गुबार से अफरा तफरी, फायर टीम मौके पर पहुंचे। अमेरिका में हैदराबाद के युवक की गोली मारकर हत्या, पिज्जा डिलीवरी के दौरान बदमाशों ने निशाना बनाया। सुकमा के जंगलों से नक्सलियों का हथियारों का जखीरा बरामद, सरेंडर नक्सलियों की सूचना पर सुरक्षा बलों को बड़े कामयाबी। सूरत में ज्वेलरी कंपनी में ETP टैंक की सप्लाई, सफाई के दौरान गैस का रिसाव, 4 मजदूरों की मौत। भोपाल के गृहस्थों में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची, आग बुझाने का प्रयास। यूपी के झांसी में आधी रात के बाद से हत्यारोपियों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया, गोली लगने से घायल दूसरा डरकर सरेंडर कर दिया। दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर 24 घंटे पहले हत्या की थी, घटना में प्रयोग हथियार, तमंचा, कारतूस बरामद। बरेली में युवती का आरोप, पहचान छिपाकर प्रेम संबंध बनाए, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, मुकदमा दर्ज। शिवपुरी में सोशल मीडिया पर सोने और पैसों के साथ फोटो डालना पड़ा महंगा, चोरों ने दीवार पर लगे तार काटकर लाखों की चोरी को दिया अंजाम। दिल्ली अग्निकांड के बाद से अलीगढ़ में होटल्स की सघन जांच, फायर विभाग ने खामियों पर दी चेतावनी। एम्स भुवनेश्वर में डॉक्टर्स का कमाल, 47 साल की एक महिला के हाथ से अलग किया 7 किलोग्राम का एक बड़ा ट्यूमर। डल झील में पर्यटकों की बढ़ती आमद से शिकार, सवारी की मांग, स्थानीय नाव चालकों के कारोबार को मिली नई रफ्तार। नैनीताल के नन्हे जादूगर की प्रतिभा के मुरीद हुए देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महेंद्र, मासूम बच्चे की मदद की इच्छा जताई। जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने आम महोत्सव का किया आयोजन, 30 प्रकार के आमों की प्रदर्शनी लगी। पूर्वा एक्सप्रेस से 95 कछुओं की तस्करी नाकाम, बंगाल के रानीगंज स्टेशन पर यूपी का तस्कर गिरफ्तार। डॉन 3 विवाद के बाद ऋतिक रोशन के पोस्ट ने मचाई हलचल, पोस्ट से फैंस को लग रहा अंदाजा, एक्टर को डॉन 3 के लिए मनाने की कोशिशें कर रहे हैं निर्देशक फरहान अख्तर। रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 में इस बार अक्षय कुमार के बाद रणवीर सिंह की एंट्री की खबरें, सरप्राइज कैमियो में रणवीर का होना संभव। हुमा कुरैशी की नई फिल्म बेबी डू डाई डू का टीजर हुआ जारी, एक महिला सीरियल किलर की इर्द गिर्द कहानी। फिल्म गवर्नर से पहले मनोज वाजपेयी ने फैंस के लिए शेयर किया एक खास मैसेज, 12 जून को रिलीज हो रही फिल्म। नेहा कक्कड़ ने मना अपना 38वां बर्थडे, परिवार संग सेलिब्रेट किया बर्थडे और तस्वीरें शेयर की। अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट की ओर छोड़े गए ईरान के दो हमलावर ड्रोन को मार गिराया, सेंट्रल कमांड ने दी जानकारी। एक दिन पहले अमेरिकी सेना ने ईरान के 4 ड्रोन को हवा में नष्ट किया था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने रडार और तटीय निगरानी सुविधाओं को देखते हुए उन पर हमले को देखते हुए निंदा भी की है, युद्ध विराम का घोर उल्लंघन भी बताया। अमेरिका और ईरान में फिर से बड़े टकराव के बीच में पाकिस्तान ने राजनयिक कोशिशें तेज की। तेहरान में पाक गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने अपने ईरानी समकक्ष के साथ मुलाकात की। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ फोन ने लेबनानी सेना के गश्ती दल पर इसराइली हमले की कड़ी निंदा की। इसराइल ने एक बार फिर से गाजा के रिहायशी इलाकों पर हमला किया, 2 महिलाओं समेत एक बच्चे की मिला के 7 लोगों की अब तक मौत, इसमें 15 फिलिस्तीनी भी गंभीर रूप से घायल है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने गोला बारूद कारखाने का किया दौरा, अगले 5 सालों में मिसाइल क्षमता उत्पादन 2.5 गुना बढ़ाने का आदेश। एक दिन पहले किम ने युद्धपोत का भी दौरा किया। फ्रांस के प्रधानमंत्री लुकानो और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने नॉर्मंडी में डी डे की 82वीं वर्षगांठ पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड और नॉर्वे के प्रतिनिधि शामिल। अमेरिका में ओहायो राज्य में टोलेडो शहर में गोलीबारी हुई है, एक फेस्टिवल के दौरान फायरिंग में 8 लोगों की गोली लगने की खबर है और अस्पताल में भर्ती हैं, हमलावर की तलाश की जा रही है। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में भीषण तूफान से बेसबॉल खेल रहे के लिए लगाए गए तंबू उड़ गए, 5 लोग इसमें घायल हैं। तूफान वेस्ट वर्जीनिया विश्वविद्यालय और कैल पॉली के बीच में बेसबॉल चैंपियनशिप खेल के दौरान आया। इक्वाडोर के मांटा बंदरगाह के पास में समुद्र में भीषण आग लगी, 14 मछली पकड़ने वाली नावें और 21 छोटी नाव जलकर हुई खाक। बंदरगाह से 80 मीटर की दूरी पर लंगर डाले जहाजों तक लपटे पहुंचे। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, बंगाल में चुनाव के बीच के बाद टीएमसी में घमासान मची हुई है और इस भगदड़ के बीच में ममता बनर्जी कोलकाता से अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ममता बनर्जी का अब ये दिल्ली का दौरा है, अब से थोड़ी देर पहले वो कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे जहां से वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाली है। सोमवार को ममता बनर्जी गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल होने वाले हैं। आपको ये बता दें कि पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी भी उस बैठक में शामिल होंगे, वो एक दिन पहले ही शनिवार को दिल्ली पहुंच गए थे। ममता बनर्जी अब गठबंधन इंडिया की इस बैठक में शामिल हो रहे और ये बैठक इंपॉर्टेंट मानी भी जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सियासत घोर आपदा में है, टीएमसी चुनाव हार चुकी है, पार्टी में कलह मची है, विधायक तो टूट ही चुके हैं, अब संसदीय दल में भी टूट की खबर है। टीएमसी पर आए इस संकट के बीच में ममता बनर्जी विपक्षी एकता के जरिए मुसीबत को टालने की उम्मीद कर रहे हैं।
1: चार मई को बंगाल के चुनावी नतीजों के अगले ही दिन जब ममता बनर्जी ने यह बयान दिया तो क्या तभी उन्हें अपनी पार्टी पर आने वाले सियासी खतरे का अंदाजा हो गया था? क्या ममता को आभास हो गया था कि 15 साल की सत्ता हाथों से जाने का सीधा असर उनकी पार्टी पर होगा? ममता बनर्जी के मन में क्या था ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन महीने भर का घटनाक्रम ये बता रहा है टीएमसी पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। पहले फर्जी हस्ताक्षर मामले में 2 विधायक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गए, ममता ने कार्रवाई की तो दोनों विधायकों ने अपना गुट बनाकर 60 एमएलए को साथ ले लिया। ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, लेकिन संकट अभी थमा नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीएमसी के 28 में से 23 सांसद बाकी विधायकों के संपर्क में हैं।
2: ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था, ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
1: यानी चुनाव के बाद बंगाल में टीएमसी के भीतर शुरू हुई लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है और इस बदले घटनाक्रम के बीच ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन से बड़ी उम्मीद लगाए हुई है। वैसे खबर है कि इंडिया गठबंधन की ये बैठक ममता बनर्जी के ही कहने पर बुलाई जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी नतीजों के ठीक बाद कह चुकी हैं कि अब वो आजाद पंछी हैं और पूरी तरह मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता पर काम करेंगी।
3: I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me. Rahul Gandhi rang up me. Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you.
1: पहले इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की हसरत के साथ कांग्रेस की मीटिंग से दूर रहने वाली ममता बनर्जी इस बार खुद दिल्ली की बैठक में शामिल होने वाली है, क्योंकि अब मसला सिर्फ विपक्षी एकता का नहीं, उनकी पार्टी की फूट का भी है। अगर सांसदों में टूट हुई तो टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए अभिषेक बनर्जी एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। कोशिश विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की है, ताकि टीएमसी के संकट को कुछ कम किया जा सके। आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबर बंगाल में टीएमसी नेताओं पर जारी एक्शन की। आज एक और टीएमसी पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबी पूछताछ के बाद आरोपी पार्षद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। मामला 2023 के पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें जसीमुद्दीन आरोपी है। कोलकाता पुलिस ने आज सुबह पार्षद के आवास पर पहुंचकर पूछताछ की, फिर पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पॉक्सो एक्ट से जुड़े हुए मामले में ये बड़ा एक्शन हुआ है, ये गिरफ्तारी हुई है। पहले छापेमारी के लिए पहुंची पुलिस, पूछताछ की और पूछताछ के बाद ये गिरफ्तार कर लिया गया। और टीएमसी नेताओं पर एक्शन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। कोलकाता में एक और टीएमसी पार्षद पर फिर से अंडे से हमला किया गया है, अंडे फेंके गए। दरअसल जबरन वसूली के आरोपों में गिरफ्तार टीएमसी पार्षद बापा आदित्य दास गुप्ता को पुलिस थाने से बाहर निकाल रही थी, लेकिन एकाएक भीड़, और इस भीड़ में सैकड़ों अंडे हाथों में लिए हुए लोग थे और उन्होंने पार्षद पर हमला कर दिया।

0: वैसे किसी टीएमसी नेता पर एक्शन का ये मामला पहला नहीं, इन दिनों लगातार शुभेंदु सरकार भी एक्शन में है। किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, किसी पर जबरन उगाही के आरोप, किसी पर धमकी देने के आरोप, और तमाम मामलों को लेकर लोग भी गुस्से में हैं।
1: कहीं टीएमसी विधायक पर हमला, तो कहीं पूर्व विधायक पर एक्शन, कहीं कटमणि लौटाने को बेचैन दिखे टीएमसी नेता। बंगाल में एक महीने की सरकार के कानूनी एक्शन का साइड इफेक्ट दिख रहा है।
2: बंगाल को, कलकत्ता को, भवानीपुर को फिर खड़ा करने का काम हम लोग करेगा। गुंडा सब भाग गया, बाकी जो बचे खुचे है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सब अच्छा होगा।
1: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपना वादा दोहरा रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि बंगाल में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सरकार की सख्ती के बीच एक ओर प्रशासन दागियों की गर्दन दबोचने में दिन रात लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा पार्टी के नेताओं पर टूटा है। उत्तरी 24 परगना में टीएमसी विधायक मदन मित्रा पर भीड़ ने हमला कर दिया। नाराज लोगों ने उन पर अंडे फेंके। मदन मित्रा पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी पहुंचे थे। वहीं नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, उन्होंने मदन मित्रा पर अंडे फेंके। एक तस्वीर हुगली से भी आई है जहां भीड़ टीएमसी के नेता को सड़क पर खींचते हुए थाने तक ले गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गमछा पहने तृणमूल नेता तपस चक्रवर्ती को लोग खींचकर थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी का दावा है कि कई भ्रष्टाचार और तोलाबाजी के मामलों में इस नेता का नाम सामने आया था, लेकिन तब ये सत्ता के दम पर लोगों को डरा धमका देता था। इन दिनों बंगाल में ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहे हैं। वेस्ट मिदनापुर पुलिस ने टीएमसी के एक नेता को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के वेस्ट मिदनापुर जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुजॉय हाजरा की गिरफ्तारी जबरन उगाही और जमीन घोटाले में की गई है। जानकारी के मुताबिक हाजरा हाल ही में इलाज के लिए चेन्नई गए थे। खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचते ही पुलिस ने पकड़ा। वहीं 6 जून को कोलकाता पुलिस ने एक टीएमसी पार्षद को हिरासत में ले लिया। टीएमसी पार्षद पापादित्य दास गुप्ता पर जबरन वसूली का आरोप है। उधर उत्तर 24 परगना जिले गोपालनगर में टीएमसी ट्रेड यूनियन के नेता कथित तौर पर कटमणि के नाम पर लिए पैसे वापस करते दिखे। आरोपों के मुताबिक नेताओं ने टोटो ड्राइवरों से ये अवैध वसूली की थी। आरोप है कि स्थानीय टीएमसी नेताओं ने टोटो यूनियन में शामिल होने के लिए टोटो ड्राइवरों से कथित तौर पर कटमणि ली थी। हालांकि
0: और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत।
4: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
5: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: In association with
4: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
5: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
6: Samakool cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Samakool cooler, life banaye wonderful.
3: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zuba kesri.
7: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
8: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूं जहां पर ये आग लगी।
9: मैं आपको टॉप एंगल से तस्वीर दिखाता हूं और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
10: यहां पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
11: ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
9: 20 लोगों की जान चली गई और देखिए जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: in association with
1: cool stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंड, बड़े आराम से. विमल, बोलो जुबा केसरी.
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी. वेयर आर यू?
4: अब वहां नहीं होने देंगे जो 2017 के पहले होता था. 17 के पहले मुझे याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था. यहां भी दंगे हुए थे. मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था. रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी. पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे. बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे. प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू. असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है, न विकास होता है.
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: दरसों पर शुभेंदु सरकार के सख्त नजर, बही खाते से लेकर तमाम दस्तावेजों का सर्वेक्षण, संचालन में नियम कायदे की जांच, 5 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट। बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में असंतोष और गहराया, विजयन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग बबूला, खड़गे को खत लिखकर नाराजगी, आज दिल्ली पहुंच रहे ममता बैनर्जी। वाराणसी में नगर निगम का बड़ा फैसला, शहरी क्षेत्र में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी, टाउन से बाहर शिफ्ट होंगे तमाम दुकानें, लोकेशन भी तय होंगे। पटना में खान कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, फायर सेफ्टी इंतजाम पूरे ना होने का आरोप, प्रशासन का सेंटर सील करने का भी प्लान। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, जायदाद विवाद में बंगाल से आकर दंपति ने किया मर्डर, दोनों गिरफ्तार। वाराणसी शहर से अब मीट की दुकानें हटाए जाएंगे और सभी नॉनवेज की दुकानों को वाराणसी शहर के बाहर शिफ्ट किया जाएगा। शहर के भीतर हर गली मोहल्ले में मीट, मांस, मछली की बिक्री बंद हो जाएगी। नगर निगम ने शहर को व्यवस्थित और स्वच्छ रखने की दिशा में यह फैसला लिया। अब इसके तहत मांस मछली की दुकानें शहर के भीतर नहीं, बाहर जाएंगी। तो वाराणसी शहर में यह बड़ा फैसला लिया गया है। नगर निगम ने निर्णय लिया है कि जो भी मीट मछली बेचता है शहर में, उसको अपनी दुकान बाहर शिफ्ट करनी होगी। और इस फैसले के पीछे की दलील यह है कि हम शहर को व्यवस्थित और स्वच्छ रखना चाहते हैं। और एक और बड़ी खबर अब आपको देते हैं। आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद से पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक बार फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची और वहां पर फायर सेफ्टी के मानकों को उन्होंने देखा, जांच की। एक दिन पहले भी फायर डिपार्टमेंट की टीम जांच के लिए फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची थी, जहां पर कई कमियां पाए जाने के बाद विभाग की ओर से कहा गया था कि अगर इन कमियों को जल्द दूर नहीं किया गया तो कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है। तो कोचिंग चलाने वाले फैजल खान, जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, न पुलिस के सामने सरेंडर, लेकिन दूसरी तरफ वो जिस जगह पर कोचिंग चलाते हैं, जहां पर सैकड़ों छात्र उनके आते हैं, वहां पर अनियमितताओं के बेहद गंभीर आरोप हैं। पहले तो उन पर आरोप है, साथी जो कोचिंग संचालक है ज्ञान बिंदु के, उनको झूठे मुकदमे में फंसाने का, और दूसरी तरफ ये गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया कि फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की गई तो पता चला कमियां थी। हमारे संवाददाता शशि भूषण हमारे साथ जुड़ गए। शशि भूषण, थोड़ा बताएं, एक्सप्लेन करिए, मतलब क्या क्या कमियां थी, क्या क्या अनियमितताएं थी जिनको दूर करने के लिए कहा गया, और क्या वो दूर की जा रही है या नहीं?
1: देखिए राजीव, पहली बात तो ये कि जो केजीएस है, खान ग्लोबल स्टडीज, वो पटना के मुसल्लपुर इलाके में जो उनका कोचिंग का सेंटर है फैजल खान का, उसका 2 महीने पहले भी एक तरीके से जांच कराई गई थी, लेकिन उस जांच के बाद कई सारी जो कमियां थी वो कंटिन्यू वहां पर रही हैं। और अब फायर ऑडिट जो है वो अग्निशमन विभाग की तरफ से किया गया है, और एक दो नहीं, कुल 10 बिंदु ऐसे हैं जिन बिंदुओं पे जो कोचिंग सेंटर है उसको सील किया जा सकता है। अगर हफ्ते से 10 दिन के अंदर, मतलब 7 से 10 दिन का वक्त दिया है अग्निशमन विभाग ने, अगर इस दौरान वो दुरुस्त कर लेते हैं उन सुविधाओं को, या फिर सेफ्टी मेजर्स का वहां पर इंस्टॉल हो जाते हैं, तो सीलिंग की कार्रवाई से कोचिंग सेंटर बच जाएगा। वरना जो अगली कार्रवाई होगी वो सोकॉज के साथ सीलिंग की होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोचिंग सेंटर जिस बिल्डिंग में चलती है उसके लिए जो अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई थी केजीएस की तरफ से, उसमें यह कहा गया था कि वो G+4 है, लेकिन आज जब ऑडिट किया गया फायर को लेकर के, फायर सेफ्टी को लेकर के, तो उसमें वो G+5 पाया गया। इसके अलावा जो इंटरनल सीढ़ियां हैं वो 1 और आगे ऊपर की तरफ 2 सीढ़ियां पाई गई, मतलब उसको नाकाफी बताया है फायर डिपार्टमेंट ने। और इतना ही नहीं, जो एंट्रेंस है उसको लेकर के, और जो फिक्स्ड पाइपलाइन होनी चाहिए फायर लगने की स्थिति में पानी डिस्चार्ज करने के लिए, वो सिस्टम भी वहां इंस्टॉल नहीं है। और एक और जो सबसे बड़ी खामी रही, जो वाटर टैंक ओवरहेड वाटर टैंक है उसका भी कैपेसिटी कम रहा है। तो ये कई सारे पॉइंट्स बज रहे हैं। बजाप्ते रितेश पांडे जो अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी हैं, कमांडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि हमने नोटिस सर्व कर दिया है।
0: बहुत गंभीर लापरवाही का मामला सामने की, जहां पर उनकी शिक्षा की दुकान चल रही है वहां पर इतनी तरह की अनियमितताएं चल रही, ये सीधा सीधा खिलवाड़ है। जहां पर वो खुद एक बड़ा नंबर देते हैं कि इतने बड़े संख्या में हम छात्रों को पढ़ाते हैं, तो इतनी अनियमितताएं वहां पर थी। सवाल सिस्टम से भी पूछा जाएगा कि इतनी अनियमितताओं में छात्रों के जीवन को संकट में क्यों डाला जा रहा है और अब किस तरह की कार्रवाई होगी। बहरहाल फायरिंग केस, इस गिरफ्तारी के संकट से फैजल खान जूझ रहे हैं, कोचिंग सेंटर पर भी उनके खतरा मंडरा रहा है। पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताते हैं।

0: पहले आर्म्स एक्ट में केस, फिर गिरफ्तारी का संकट और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर आ गई है। खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान के कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया, जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गईं।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है, जो यदि वे उसका मिट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहां के जो संबंधित अग्निशामक पदाधिकारी हैं और यहां के जो जिला अग्निशामक पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं।
0: इस एक्शन के एक दिन बाद ही फायर डिपार्टमेंट की टीम फिर ऑडिट करने फैजल खान की कोचिंग पहुंची और पूरे सेंटर का मुआयना किया। जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। अगर जल्द ही इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, यहां तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है।
1: देखिए जांच करने के जो प्रक्रिया है उसमें इनिशियल स्टेज होता है कि उसको जांच की जाती है, फिर उसको नोटिस किया जाता है, फिर शोकॉज किया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म है, ABCDEF जी और एस तक फॉर्म है, जिस फॉर्म के हिसाब से उन पर कार्रवाई की है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है।
0: फैजल खान पहले ही आर्म्स का केस दर्ज होने के बाद संकट में घिरे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की तैयारी है।
2: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सर,
3: जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, नॉन बेलेबल सेक्शन लगा है कि उनके कहने पर गार्ड्स ने फायरिंग की थी, तो क्या लगता है कि खान सर को इस मामले में बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है?
2: बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंसर्ट कर दिया गया है FIR में, बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा।
3: आप लोगों को क्या लगता है, आप उनके वकील हैं, तो इस परिस्थिति में पुलिस उनको अरेस्ट भी कर सकती है?
2: पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
0: लेकिन इस सब के बीच अब फायर डिपार्टमेंट की जांच फैजल खान की परेशानी और बढ़ा सकती है।
1: यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी, यथाविनिश प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है।
0: दरअसल हाल में बिहार के मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद से प्रशासन हरकत में है। इसी कड़ी में फैजल खान के कोचिंग सेंटर की जांच हुई और अब कोचिंग सेंटर के सील होने का खतरा मंडरा रहा है। पटना से शशिभूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।
4: पटना के कोचिंग सेंटर के बाहर हुए गोलीकांड के बाद अब फैजल खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होने के बाद फैजल खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस बीच में फैजल खान के वकील का दावा है कि वो तो सोमवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाएंगे।
0: पटना की कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई, वीडियो पर विवाद बढ़ा, ये विवाद YouTube वाले खान सर के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया। एक दिन पहले जब आर्म्स एक्ट में फैजल खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ तब से ही अटकलें लग रही थीं कि कभी भी पुलिस फैजल खान को गिरफ्तार कर सकती है, जल्द ही फैजल खान पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा गिरफ्तारी से बचने के लिए फैजल खान के वकील कोर्ट पहुंचे।
5: फैसल खान जो है एक बार कोर्ट पहुंचकर अग्रिम जमानत की याचिका भी डालना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई वकील के जरिए अग्रिम जमानत की याचिका डाली जाए और उस पर एक बार बहस हो, और अगर अग्रिम जमानत उन्हें मिल जाए तो कुछ उनको राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल मुश्किलें फैसल खान की जो है वो कम नहीं हो रही है, और इस वक्त सिविल कोर्ट में भी जो है काफी हलचल तेज है। और अगर फैसल खान अगर यहां आते हैं सरेंडर करने के लिए, जिस तरीके की संभावना जताई जा रही है, तो उसको लेकर यहां पुलिस भी मौजूद है, ताकि अगर वो सरेंडर करने के लिए पहुंचते हैं तो उससे पहले उनको गिरफ्तार किया जा सके।
0: पटना में फैसल खान के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पटना में हलचल बढ़ी हुई थी। इस तस्वीरों को देखिए, पूरी रात फैसल खान के समर्थक छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर डटे रहे। तनाव को देखते हुए पुलिस की गश्त जारी रही। पीसीआर वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती दिखी। एक दिन पहले भी पटना पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई थी कि छात्र किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। फैसल खान पर केस दर्ज होने के बाद पटना में गहमा गहमी बढ़ी हुई है। शुक्रवार शाम ही केएसजी कोचिंग सेंटर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। इस बीच वो तस्वीर भी सामने आई थी,
6: वो अब भी यहाँ पर खड़े हैं। खान सर का ये कोचिंग है, सामने ये कोचिंग देखिए, खान सर का ये कोचिंग है, और कोचिंग के गेट पर जो है भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं, देखिए किस तरह से सड़क पर मौजूद हैं, और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहाँ पे खड़े हैं।
0: इस बीच वो तस्वीर भी सामने आई थी जब वकील फैसल खान के कोचिंग सेंटर पहुंचे थे। उसके बाद फैसल खान अपनी कार से कोचिंग से निकल गए थे। पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु के शिक्षक रोशन आनंद के बीच विवाद अब बड़ा मुद्दा बन गया है। कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। फैसल खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पटना से शशिभूषण और अनिकेत के साथ आज तक ब्यूरो।
4: तो कोचिंग वॉर में फैसल खान बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले तो फैसल खान उर्फ खान सर ने अपने पड़ोस वाले ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार करवाया, और अब कोचिंग गोलीकांड में खुद मिस्टर खान फंस गए। आपको बताते हैं कि आखिर पूरा का पूरा विवाद कैसे बढ़ता हुआ खुद फैसल खान की मुश्किलें बढ़ा गया।
7: इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है, और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है।
0: पटना में दो मशहूर कोचिंग सेंटर्स के बीच की लड़ाई अब सड़कों तक आ गई। फैसल खान और ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद के बीच की रंजिश अब सिर्फ कोचिंग की ओर नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गई।
8: इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लगी जा रहा है।
0: दरअसल होड़ पहले से थी, लेकिन फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया। रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद विवाद तूल पकड़ गया। ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर ज्ञान बिंदु कोचिंग के अलग अलग सेंटर्स के छात्र सड़कों पर उतर गए। पोस्टर बैनर के साथ छात्रों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। ये छात्र रोशन आनंद की रिहाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल रोशन आनंद को फैसल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक नया वीडियो वायरल होने के बाद इस केस में ट्विस्ट आ गया और रोशन आनंद पर आरोप लगाने वाले फैसल खान खुद आरोपों में गिर गए। नए वीडियो में फैसल खान का गार्ड गोली चलाता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने फैसल खान के दो गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग वाली शाम का वो बयान देखिए जिसमें फैसल खान अपनी कोचिंग पर फायरिंग का आरोप लगा रहे थे।
9: इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर
10: बगल की कोचिंग,
11: दरअसल कोचिंग संचालक फैजल खान और रोशन आनंद के बीच वर्चस्व की लड़ाई 27 मई से ही शुरू हुई थी जब बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया था। दोनों कोचिंग संचालकों ने अपने ज्यादा छात्रों की कामयाबी के दावे किए। दोनों तरफ से अपने अपने अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों ने बढ़ चढ़कर पोस्टर भी लगाए।
12: 30 मई को पटना में दोनों ही कोचिंग संस्थानों और संचालकों की तरफ से अपने अभ्यर्थियों की सफलता का जश्न भी मनाया गया। लेकिन बात जब बिगड़ गई जब 3 जून की रात अपने अपने बैनर पोस्टर को लेकर के दोनों खेमे आमने सामने आ गए और नतीजा वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।
11: आरोप है कि फैजल खान के स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और यहीं से विवाद भड़क गया। 2-3 जून की रात को दोनों कोचिंग संचालकों के बीच में बवाल हो गया और तोड़फोड़ पत्थरबाजी से लेकर गोलियां चल गई।
13: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश से हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत।
11: दो कोचिंग संचालकों के बीच की जंग अब गोलीबारी तक पहुंच गई। बच्चों का भविष्य बनाने का दावा करने वाले गुरु आपस में झगड़ रहे हैं और इस झगड़े में नए खुलासे के बाद खुद कोचिंग वाले खान सर पूरे फंसे हैं। पटना से शशिभूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
4: लेकिन कमाल की बात यह है कि बिहार पुलिस को अब तक फैजल खान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक गिरफ्तारी ही नहीं कर पाए हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव एक बार फिर से समुद्र के टकराव की शक्ल लेता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोनों एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे पर उकसावे वाली कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं। ईरान ने चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने का दावा किया जबकि अमेरिका ने कहा कि उसने ईरानी ड्रोन मार गिराया है।
0: अमेरिका ईरान के बीच बीते कुछ दिनों की शांति एक बार फिर धमाकों के शोर में भंग होती दिख रही है। एक बार फिर अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव की स्थिति बन रही है। एक बार फिर हॉर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने। दोनों ओर से हुए हमलों के बाद टकराव बढ़ती दिख रही है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गईं। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है क्योंकि एक दिन पहले पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहे। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला गया है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोला। ईरान के सर्विलांस रेडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया। ईरान के रेडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी किया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था जिसके जवाब में उसके रेडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब हॉर्मुज पर नया मोर्चा खुल गया है, जिससे दोनों देशों में जंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
4: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
16: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे।
1: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
0: अधूरा प्यार ही
1: तुम्हें दुनिया की सिम यार ठीक है मत दोहराओ।
2: बिजुरी आई गए,
1: हाँ हाँ थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट,
2: हा हा हा, यह अब नसिया पाया भैया।
3: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
2: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ,
3: हाँ यही यही यही यही खुजा जोर से।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए

बही खाते से लेकर तमाम दस्तावेजों का सर्वे 5 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट देनी है। कल बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में असंतोष और गहराया। विजयन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग, बबुला खड़गे को खत लेकर जताई नाराजगी। दिल्ली के लिए रवाना ममता बनर्जी। वाराणसी में नगर निगम का बड़ा फैसला, शहरी क्षेत्र में नॉनवेज की बिक्री पर लगी पाबंदी। टाउन से बाहर शिफ्ट होंगी तमाम दुकानें, लोकेशन भी तय होंगे। संभल में कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से नाराज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर का सरकार पर निशाना। कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी रूप से देंगे जवाब। पटना में खान कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, फायर सेफ्टी इंतजाम पूरे ना होने का आरोप। प्रशासन का सेंटर सील करने का भी प्लान।

0: नमस्कार, नमस्ते, द्रास्त विथिया, हेलो। ऑनरेबल प्रेसिडेंट पुतिन,
1: माननीय राष्ट्रपति पुतिन, मेरा आपसे प्रश्न है कि इस कक्ष में 130 देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और जब विश्व रूस के आर्थिक रूप से अलग थलग होने की बात करता है तो क्या यह वास्तव में उस तरह का प्रतीत होता है?
0: And pardon me for being a little,
1: और क्षमा करें, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ कि क्या रूस अलग थलग है या आज यूरोप आंशिक रूप से अलग थलग है?
2: आपने मुझे संकेत दिया है कि मुझे अपने उत्तर में क्या शामिल करना चाहिए, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रूस कभी अलग थलग हुआ ही नहीं। इस अलगाव की शुरुआत अमेरिका के पूर्व प्रशासन ने की थी, ये बात सभी जानते हैं, और फिर यूरोपीय देशों ने, और वर्तमान में वो अमेरिकी प्रशासन से भी अधिक सफल हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था और अमेरिका सहित कुछ साझेदारों के सहयोग से हम यहाँ अलग थलग नहीं पड़े। हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और जैसा कि आपने बताया, हमें अमेरिका के आधिकारिक प्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता है कि वे यूरोप के प्रतिनिधि हैं और यह एक ऐसी बात है जिसका हम स्वागत करते हैं। हमने कभी भी खुद को किसी से अलग नहीं किया है और अगर स्थिति इस तरह बदली है कि हमें इन देशों के लोग मिले हैं तो हम जरूर इसका स्वागत करेंगे।
0: I promise to stick to the economic questions.
1: मैं आर्थिक प्रश्नों पर ही रहना चाहती हूं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मुझे आपसे ये पूछना होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक खुला पत्र लिखा है और उन्होंने न सिर्फ आपसे सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखा है बल्कि आपको सीधी धमकी भी दी है और इसे आपका युद्ध बताया है। आपकी अनुमति से मैं उनके शब्द दोहराना चाहूंगी। उनका कहना है कि हमारे लंबी दूरी के ड्रोन ने सेंट पीटर्सबर्ग में आपके मंच का दौरा किया जिसने 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। उनका कहना है कि यह युद्ध आपकी निजी पसंद है, एक ऐसा युद्ध जिसका कोई वास्तविक कारण नहीं है। जेलेंस्की कहते हैं कि आप युद्ध से सहज हैं। उनका कहना है कि आपके लिए आपका अपना जीवन मूल्यवान है। साथ ही उन्होंने आपके और उनके बीच एक बैठक के लिए एक निश्चित तारीख तय करने का प्रस्ताव रखा है। इस पर आप क्या कहेंगे?
2: पहली बात, ये पत्र लिखने वाले ने मेरी उम्र का जिक्र किया है।

0: मैं क्या कहूँ, खैर हर किसी को अपनी उम्र के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि मेरी उम्र में भी कई अन्य राजनीतिक हस्तियां अपना काम बखूबी निभा रही हैं। उनमें से कुछ मुझसे उम्र में बड़े हैं। खैर उम्र महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं। सबसे खास बात यह है कि क्या आप ठीक से काम करने में सक्षम हैं, अपना काम ठीक से कर रहे हैं। तो मेरे कुछ सहकर्मी हैं जो उम्र में बड़े हैं और अभी भी बहुत ऊर्जावान हैं, चाहे वे सही फैसले ले रहे हों या नहीं। खैर ये कहना मेरा काम नहीं है, ये एक राजनीतिक आकलन है, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्वाचित पद पर बने रहने के बारे में कहा कि यह अहम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको चुनाव में भाग लेना होगा, चुनाव लड़ना होगा, साहसी बनना होगा और हमेशा संविधान का पालन करना होगा। क्योंकि यदि आप संवैधानिक दायरे से बाहर सत्ता पर काबिज रहते हैं तो यह सत्ता का अतिक्रमण माना जाता है और यह एक अपराध है। इसलिए किसी को डरना नहीं चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और यह मैं सभी को सुझाऊंगा। खासकर इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने कहा था कि वे चुनाव कराएंगे और फिर अचानक वे चुप हो गए। पत्र लिखने वाले ने कहा है कि एंकरेज में हुए समझौतों का पालन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच हुए समझौतों के सच्चे गारंटर की तलाश यूरोप में की जानी चाहिए। विश्वसनीय गारंटर हमेशा स्वागत योग्य होते हैं।
1: प्रेसिडेंट ट्रंप,
0: लेकिन वे अमेरिकी प्रशासन और विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश से इनकार क्यों कर रहे हैं, यह मेरी समझ से परे है। वे अमेरिका से हथियार तो चाहते हैं, लेकिन वे अमेरिकी प्रशासन या राष्ट्रपति ट्रंप को गारंटर के रूप में नहीं देखना चाहते और ये बात सवाल खड़े करती है। हमने राष्ट्रपति ट्रंप को देखा कि वो ओवल ऑफिस में जेलेंस्की को निर्देश दे रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, उन्होंने उनके पहनावे तक के बारे में बता रहे थे, ये भी कि कभी कभी खून खराबा करना शायद ठीक है लेकिन हर वक्त नहीं।
1: मनीर
0: अब शिष्टाचार की बात करें तो कुल मिलाकर मैं इस काम के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद कहना चाहूंगा। यह उपयोगी रहा, लेकिन उन्हें इस पर अभी और काम करना होगा, इसे जारी रखना होगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। यूक्रेनी पक्ष ने हमारे संबंधों को सार्वजनिक रूप से उजागर किया है, उन्होंने इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लाना सही समझा, जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से अनुचित है, लेकिन फिर भी इससे मुझे कुछ ऐसी बातें कहने का अधिकार मिल जाता है जिनके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं या शायद कोई भी नहीं जानता।
1: तो это даёт мне возможность и даёт право сказать о некоторых вещах, о которых мало кто знает или вообще пока никто не знает. О чем идет речь? И вот это уже серьезно. Это уже без всякой иронии, без всякой шутки.
0: Я гамбир мамла хэ. मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। तीन हफ्ते पहले हमारे व्यापारिक हलकों के एक प्रतिनिधि ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, श्रीमान राष्ट्रपति, मैं इस व्यक्ति को काफी समय से जानता हूँ, हम करीबी नहीं हैं, लेकिन मुझे उन पर भरोसा है, वे एक ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने आगे कहा, श्रीमान राष्ट्रपति, मुझे कीव आमंत्रित किया गया है। मैंने कहा, ठीक है आगे बढ़िए, मुझे इससे क्या लेना देना है। वो आगे बोले, लेकिन मैं आपको सूचित करना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि वे हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों से संबंधित विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मैंने कहा, मैं आपको आधिकारिक तौर पर दूत के रूप में नहीं भेज सकता क्योंकि विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विशेष सेवाओं के प्रशिक्षित लोग ही ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि इस्तांबुल में हमारी बातचीत के दौरान हुआ था। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश मैं आपको आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दे सकता, मैं बस आपको सूचित करना चाहता था, मैं वहां जाऊंगा, सुनूंगा और फिर आपको बता सकता हूं कि वे किस बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद वे कीव चले गए और वहां उन्होंने जेलेंस्की से उनके आवास पर मुलाकात की।
1: उन्हीं वो, вернулся, я с ним встретился.
0: फिर वो वापस आ गए, मैं उनसे मिला. आप जानते हैं कई बातें हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि श्री जेलेंस्की ने बैठक का अनुरोध किया है. मैंने कहा कि मैंने कभी भी मिलने से इनकार नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं कि सिर्फ मिलने के लिए मिलना ठीक नहीं है. खैर, मैंने देखा है कि मिन्स्क समझौतों का जिक्र हो रहा है, लेकिन हम पूरी रात उन मिन्स्क समझौतों पर काम कर रहे थे, उन्हें अंतिम रूप दे रहे थे, और फिर फ्रांस और जर्मनी के पूर्व नेताओं ने बाद में कहा कि ये समझौता खोखला है. सभी मिन्स्क समझौते एक ही बात पर केंद्रित थे, वो ये कि यूक्रेन के पुनर्शस्त्रीकरण के लिए और समय मिल जाए. हमें फिर से ऐसी किसी चीज की क्या जरूरत है? मैंने कहा कि मुझे बैठक में कोई मतलब नहीं दिखता. ये सिर्फ यूक्रेन के लिए जरूरी है, क्योंकि वे रूस की सेनाओं के आक्रमण को रोकना चाहते हैं. हमें समझौतों, व्यवस्थाओं की जरूरत है, 6 महीने या 1 साल के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए. पहले विशेषज्ञों को काम करने दें, कोई हल निकालने दें, और फिर हम हस्ताक्षर करने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन पहले हमें एक समाधान पर पहुंचना होगा. और यही मुख्य मुद्दा है. मुझे लगता है कि दर्शक मेरी बात समझ जाएंगे, खासकर रूस के लोग.
1: И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21-го.
0: Мне кажется, что это 21 мая की बात है. वहीं 22 मई को यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के कॉलेज छात्रावास पर एक जघन्य आतंकवादी हमला किया, जिसमें किशोरों की हत्या कर दी गई. ये एक जघन्य अपराध है. ये पत्र किस बारे में है? क्या यह व्यक्तिगत मुलाकात के लिए माहौल बनाने का एक साधन है, या फिर इस पत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्तिगत मुलाकात न हो पाए? मुझे लगता है कि उनकी दिलचस्पी बातचीत में नहीं है, लिहाजा हमें इस पत्र और उसके लिखने वाले को संबोधित नहीं करना चाहिए. इसीलिए मैं हमारे लड़ाकों और सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को संबोधित कर रहा हूं. मैं उनसे कहना चाहता हूं, साथियों, सैनिकों और नाविकों, एडमिरलों, जनरलों, अधिकारियों, देश की निगाहें आप पर टिकी हैं, देश को आप पर गर्व है, और आप ही पर सबकी आशाएं टिकी हैं. भाइयों, अपने काम में पूरी मुस्तैदी से लगे रहिए.
2: So I'll take that as a no.
3: तो मैं इसे मान लेती हूँ कि आप पत्र लिखने वाले से नहीं मिलने वाले हैं.
1: पक्का नहीं देखूँ स्मृति.
0: अभी तक मुझे इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है.
3: क्योंकि आपने अमेरिकी राष्ट्रपति का जिक्र किया है, क्या ट्रंप ही रूस यूक्रेन मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझाने का जरिया है? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ राष्ट्रपति पुतिन, क्योंकि शायद ट्रंप ही एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो यूक्रेन से बातचीत कर रहे हैं, ताकि उन्हें बातचीत की मेज पर लाया जा सके और कोई समझौता हो सके. उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की को चेतावनी दी है, अगर बाइडेन या ओबामा होते तो ये प्रस्ताव बिल्कुल नहीं दिया जाता. क्या वही जरिया है?
2: Is he the window?
0: खैर, मैंने ये बात एंकरेज में कही थी और मैं सच कह रहा था. मैंने तब भी कहा था कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते, अगर उनके साथ चुनाव में धांधली न हुई होती, क्योंकि आप जानती हैं, डाक द्वारा मतदान निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के किसी भी मानक के अनुरूप नहीं था, लेकिन उन्हें जीतने से रोका गया अगर वो राष्ट्रपति होते. हालांकि ऐसा नहीं होता, शायद उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर ज्यादा ध्यान दिया होता.
1: Я ведь уже в последние дни пребывания у власти господина Байдена.
0: राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल के आखिरी दिनों में मैंने उनसे फोन पर बात की थी. मैंने उनसे बात की और उन्हें ये बात बताई. लेकिन तत्कालीन प्रशासन ने दिसंबर 2021 में दिए गए हमारे प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया। खैर, मैं क्या कहूँ, शायद अगर राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में होते तो स्थिति अलग होती, लेकिन मैं उन्हें एक सहकर्मी मानता हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ प्रशासन का वर्तमान रवैया भी काफी हद तक वैसा ही है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध भी है जो इसी सम्मान पर आधारित है, लेकिन निश्चित रूप से प्रमुख मुद्दों को रूस और यूक्रेन को द्विपक्षीय रूप से हल करना होगा, जबकि अमेरिका और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में हमारे सहयोगी एक ऐसा माहौल बना सकते हैं और गारंटर के रूप में कार्य कर सकते हैं, और यही हमारी मान्यता है।
3: राष्ट्रपति पुतिन, हम SPIEF 2026 में बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। जब यूक्रेन द्वारा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सक्रिय रूप से निशाना बनाया जा रहा है, तो आप वास्तव में एक स्थिर आर्थिक भविष्य कैसे प्रदान कर सकते हैं और निवेशकों को रूस में कैसे आमंत्रित कर सकते हैं?
0: आप जानती हैं कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर ये हमले स्पष्ट रूप से कोई लाभ नहीं पहुंचाते, बल्कि वे निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि जब निवेशक अपने निवेश के निर्णय लेते हैं तो वे हमेशा जोखिमों और उनकी जटिलता के पूरे संचय को ध्यान में रखते हैं। कल मेरी प्रमुख मीडिया संस्थाओं के साथ बैठक हुई और हम सभी इस बात पर सहमत थे कि हमें अपनी सुरक्षा और संरक्षण को मजबूत करने में योगदान देना होगा। हमें अपने हवाई रक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा और हम ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि बड़े व्यवसाय हमेशा दीर्घकालिक रणनीति अपनाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवसाय सबसे पहले उस अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी धारणा से निर्देशित होते हैं जिसमें वे निवेश करना चुनते हैं। हम रूसी अर्थव्यवस्था में हो रही घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और हम इसे देख रहे हैं। GDP वृद्धि में कमी, हालांकि ये सब बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है। ये रूसी अर्थव्यवस्था की नींव और स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए सुनियोजित कदम हैं। हम जानबूझकर रूसी अर्थव्यवस्था को ठंडा करने के लिए प्रमुख मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों पर नजर रख रहे हैं और मैं आज आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि न तो कल और न ही निकट भविष्य में हमें कोई खतरा दिखाई देता है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि हमारे कामों से कुछ परिणाम मिल रहे हैं और मुझे पता है कि इस हॉल में अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कई सहकर्मी बैठे हैं। हम उनके साथ नियमित बैठकें करते हैं। हम सभी सवालों और मुद्दों पर चर्चा करते हैं और मैं रूसी श्रोताओं से जो अपील करना चाहता हूं, जिसे विदेशियों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो ये है कि प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों की हालत इतनी खराब है कि निवेश प्रक्रियाएं मुश्किल हो रही हैं। हाँ, हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से ये सच है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूसी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधारभूत तत्व मजबूत बने हुए हैं, जिससे हमें ये विश्वास करने की वजह मिलती है कि रूस निवेश के लिए आकर्षक बना हुआ है, न केवल रूसी निवेश के लिए बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भी। और हम मानते हैं कि इसमें रुचि है, हम इसे देखते हैं और निश्चित रूप से हम अपने साझेदारों का स्वागत करेंगे।
3: ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन अपने भाषण में आपने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, एक नए निवेश चक्र की शुरुआत करना, लेकिन आपने खुद कहा कि पिछले साल 2.3% की गिरावट आई है, फिर आप युद्धों, प्रतिबंधों, जमे हुए संपत्तियों के माहौल में विकास कैसे करेंगे, और जब आप संप्रभुता की बात करते हैं तो आप रूस में विदेशियों को आमंत्रित करने के साथ इसे कैसे संतुलित करेंगे?
0: ये थोड़ा पेचीदा है। देखिए, आप युद्धों, प्रतिबंधों की बात कर रही थीं, लेकिन अर्थव्यवस्था अभी भी विकासशील है, सब कुछ स्थिर है। रूस में घरेलू बाजार भी बढ़ रहा है, रूसी जनता का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। जैसा कि मैंने कल कहा था, हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था, 2030 तक हम गरीबी स्तर को घटाकर 7% करना चाहते हैं। वास्तव में हमने 2026 में ही 6.7% का स्तर हासिल कर लिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमने इसे उम्मीद से भी पहले हासिल कर लिया है। रूसी अर्थव्यवस्था के प्रमुख वृहद आर्थिक आधार स्थिर हैं। यही वजह है कि तमाम बाधाओं के बावजूद, और यह सच है कि बाधाएं हमेशा आती रहती हैं, रूसी अर्थव्यवस्था की खुशहाली के आधार स्थिर बने हुए हैं और आगे के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। कोई भी व्यवसाय, कोई भी कंपनी हमेशा आज के और कुछ मध्यम अवधि और उससे आगे के भविष्य के सभी जोखिमों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करती है।
1: внимательно смотрит за всеми повторяющими раз рисками и сегодняшнего дня и на ближайшую на более отдалённую перспективу.
0: लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो जोखिमों की सभी जटिलताओं का विश्लेषण करने के बाद काम करने और व्यवसाय करने के इच्छुक हैं, लेकिन निश्चित रूप से देर सवेर हम उन जोखिमों को खत्म होते देखेंगे। जहां तक सैन्य कार्रवाई की बात है, हम इस धारणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि किसी न किसी बिंदु पर वे पूरी होंगी, और वे तभी पूरी होंगी जब हमने अपने लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए होंगे। जहां तक प्रतिबंधों की बात है, तो मैं कहूंगा कि प्रतिबंध लगाने वालों के लिए ये कहीं अधिक हानिकारक होते हैं। क्या प्रतिबंधों से कोई नुकसान हुआ है? हाँ, $300 अरब फ्रीज किए गए थे, लेकिन अब हमारे पास $500 अरब से अधिक अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि है। $300 अरब फ्रीज किए गए थे, अब हमारे पास $500 अरब से अधिक हैं। ये प्रतिबंधों का परिणाम है। क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है? हाँ, लेकिन क्या प्रतिबंध लगाने वाले देशों को भी कोई नुकसान हो रहा है? बिल्कुल, विभिन्न आकलन के अनुसार यूरोपीय क्षेत्र को 1.5 से 2.5 ट्रिलियन यूरो तक का नुकसान हुआ है। ये रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों से हुआ नुकसान है, और अभी एक तरह का पुनर्मूल्यांकन, एक तरह का संशोधन हो रहा है, और परिणाम स्वरूप कई लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शायद रूस के साथ साझेदारी के रास्ते पर वापस लौटना बेहतर होगा। हम स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखेंगे और देखेंगे कि क्या वे साझेदार जिन्होंने 2 या 3 साल पहले रूसी बाजार छोड़ दिया था, हमें इस घटना से कोई खास बुरा अनुभव नहीं हुआ है, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, और कुछ इच्छुक पक्ष हैं जो वापस आने को तैयार हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम सबसे पहले रूसी व्यवसायों के हित में ही आगे बढ़ेंगे और कार्रवाई करेंगे।
1: Интересанты, да, есть, они хотят, но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
2: The fact that there was a recent...
3: हाल ही में रूस और चीन के दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई बैठक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया। कृपया इस रिश्ते के सार और इसके भविष्य की दिशा पर कुछ प्रकाश डालिए।
2: And where it's headed.
4: आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने बताया, रूस और चीन के बीच व्यापार के क्षेत्र में सहयोग आगे बढ़ रहा है, और ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। पिछले कुछ वर्षों में ये स्थिर रूप से विकसित हुआ है, और हम इस ठोस वृद्धि और स्वस्थ गतिशीलता को देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 2 सप्ताह पहले राष्ट्रपति पुतिन ने चीन की एक बेहद सफल यात्रा पूरी की। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता हुई। ये वार्ता विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के विकास और व्यापार एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में थी। कई समझौते हुए। इन सभी परिणामों ने निश्चित रूप से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, और सभी मीडिया ने इसे कवर किया। मैं 3 प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसा कि मैंने अपनी प्रस्तुति में कहा, चीन और रूस बड़े राष्ट्र हैं, हम पड़ोसी देश हैं, और दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। रूस और चीन के बीच संबंधों का विकास और इन संबंधों की मजबूती तथा सभी क्षेत्रों में पारस्परिक लाभकारी सहयोग ये दर्शाता है कि ये दोनों देशों के विकास और प्रगति को बढ़ावा दे रहा है, और साथ ही दोनों देशों की समृद्धि और खुशहाली में भी बढ़ोतरी कर रहा है। इसके अलावा ये आधुनिक विश्व में स्थिरता और लचीलेपन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरे, मुझे पता है कि आप हमारे व्यावहारिक सहयोग पर विशेष ध्यान देते हैं और ये किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध नहीं है और न ही ये किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित है। मॉडरेटर ने पहले ही एक प्रश्न पूछा था और आपने उल्लेख किया था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में हमारा भविष्य का विकास एक रणनीतिक सहयोग और साझेदारी है। ये 30 सालों से विकसित हो रहा है और इस वर्ष हम पड़ोसी देशों के बीच संबंधों और मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इस नए ठोस अर्थ के साथ अपने संबंधों को समृद्ध कर रहे हैं और ये न केवल जनसंख्या की खुशहाली में सुधार करता है बल्कि ये क्षेत्र और पूरे विश्व में स्थिरता और शांति का भी समर्थन करता है।
3: अब मैं युद्ध के प्रश्न पर वापस आती हूँ। ईरान अमेरिका युद्ध, हॉर्मुज जल अडमरु मध्य पर नाकाबंदी वाकई चिंता का विषय है। रूस इसे किस नजरिए से देख रहा है? वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव के बारे में आपका क्या आकलन है, इस तथ्य के अलावा कि हाँ, रूस को शायद थोड़ा फायदा हुआ है? ईरान पर नाकाबंदी और हमले का आपका क्या आकलन है? क्या आप इसे उकसाया हुआ मानेंगे या बिना उकसावे के?
0: हाँ, मुझे ईरान की ओर से कोई उकसावा नजर नहीं आता। मेरा मानना है कि किसी बिंदु पर हम सहमत हुए थे, हमने सहमति जताई थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर IAEA में सब कुछ नियंत्रण में था, लेकिन फिर स्थिति पूरी तरह बदल गई और इसी के चलते ये त्रासदी हुई जो हम आज देख रहे हैं। ये ईरान पर हमला था और इसमें आम नागरिकों की जान गई, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगड़ गए हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि खाड़ी देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। मैंने कल भी यही कहा था और ईरान के सहयोगियों के साथ हमारी बातचीत में भी हम यही कहते रहे कि उन्हें पड़ोसी देशों पर हमले करने से बचना चाहिए, लेकिन उनका जवाब बहुत सीधा होता है। वो कहते हैं कि हम पर हमला हुआ है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं और राज्य के सभी नेता मारे गए हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमें इस तरह से जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसलिए इस नजरिए से हाँ, स्थिति बहुत सरल नहीं है। अरब देशों के साथ, ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और हम काफी मुश्किल स्थिति में हैं। लेकिन हमारा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप का युद्ध गतिविधियों को रोकने का निर्णय सही है। युद्ध विराम से दीर्घकालिक शांति स्थापित होगी। और मैंने कई बार कहा है कि 2015 में रूस ने उस समय के संकट को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर नहीं तो हम यही उम्मीद करेंगे कि सभी संबंधित पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकाल लेंगे।
3: रूस द्वारा शांति स्थापित करने में मध्यस्थता करने के लिए क्या आप केवल राष्ट्रपति पेजेश्कियन के संपर्क में हैं या आपको नए सर्वोच्च नेता से भी बात करने का अवसर मिला है?
1: Uh,
0: खैर, ये उनके द्वारा हमसे संपर्क करने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक साल पहले या शायद कुछ समय बाद की बात है, लेकिन हमने उन्हें 2015 में किए गए अपने सहयोग की याद दिलाई, जब हमने समृद्ध यूरेनियम को रूसी क्षेत्र में वापस ले लिया था। उस समय इससे तनाव कम हुआ था। हमने कहा था कि ये एक बार फिर संभव है, और अगर सभी संबंधित पक्ष इस समय रूस द्वारा इसी तरह की भूमिका निभाने में रुचि रखते हैं, तो हम भी ऐसा करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास आवश्यक तकनीक उपलब्ध है। मैं कहना चाहूंगा कि संघर्ष में शामिल लगभग सभी पक्षों, ईरान, इजराइल और अमेरिका ने सहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि इस पर विचार करना दिलचस्प है, लेकिन फिर उन्होंने शर्तें सख्त कर दी और इसी वजह से मौजूदा स्थिति उत्पन्न हुई है। हमारा प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। हम किसी बात पर जोर नहीं दे रहे हैं। अगर संघर्ष में शामिल पक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये एक अच्छा प्रस्ताव है, तो हमें मदद करने में खुशी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम स्थिति पर नजर रखेंगे और जहां तक संभव होगा, हम मदद करने की कोशिश करेंगे। स्थिति को लेकर तनाव को कुछ हद तक कम करने का प्रयास करेंगे।
3: क्या यूरेनियम संवर्धन को रूस ले जाने का प्रस्ताव अभी भी कायम है? क्या आप इस संबंध में वॉशिंगटन डीसी के साथ बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि डीसी का रुख स्पष्ट है कि वो यूरेनियम चाहते हैं, और ईरान इस बात पर अड़ा है कि ये ईरान में ही रहे।
0: हम वॉशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव के साथ भी संपर्क में हैं।
2: Because you mentioned Tel Aviv. Do you think,
3: आपने तेल अवीव का जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मौजूदा योजनाएं अमेरिका की इस स्थिति का एक मुख्य कारण है, जहां उसे इस संकट से निकलने के तरीके खोजने पड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को गुमराह किया गया था?
0: मेरे पास ये मानने का कोई आधार नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप को गुमराह किया गया था, क्योंकि वो एक बहुत ही परिपक्व व्यक्ति और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। मुझे नहीं लगता कि बाहर का कोई भी व्यक्ति उन पर कोई खास प्रभाव डाल सकता है। हम इजराइल की चिंताओं को भली भांति जानते हैं। ये चिंताएं इस धारणा से जुड़ी हैं कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है, जबकि ईरान ने पहले भी कई बार कहा है और कहता आ रहा है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। हमारे पास इसके विपरीत मानने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है। लेकिन फिर भी इसराइल को ये चिंताएं हैं, और इस स्थिति की मुख्य समस्या दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास की कमी है, और इस विशेष मामले में इन सामग्रियों को IAEA के अधीन रखना महत्वपूर्ण है। नियंत्रण एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और IAEA के प्रमुख यहाँ हमारे संपर्क में थे, क्योंकि उज्बेकिस्तान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसलिए अगर इसे नियंत्रण में रखा जाता है, तो मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। जहां तक ईरान में संवर्धन के स्तर पर सहमति का सवाल है, ये पूरी तरह से एक अलग मामला है। मुझे लगता है कि ये उतना गंभीर नहीं है। मेरा मानना है कि ईरान को एक शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का अधिकार है, और हम शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा में ईरान के साथ सहयोग करते हैं। हमने ईरान के बुशहर में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ऊर्जा इकाई का निर्माण किया है। ये चालू है, और हम दो अन्य ऊर्जा इकाइयों का निर्माण जारी रखे हुए हैं, और हमारे विशेषज्ञ वहां मौजूद हैं। अधिकांश कर्मियों को निकाल लिया गया है, क्योंकि बुशहर लगभग हॉर्मुज जलडमरु मध्य के तट पर स्थित है। इसलिए मूल रूप से शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में कर्मियों के एक हिस्से, महिलाओं, बच्चों को हमें निकालना पड़ा है, लेकिन कुछ कर्मी अभी भी वहां मौजूद हैं। और इस मामले में मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हम इस मामले पर इजरायलियों और अमेरिकियों दोनों के संपर्क में हैं। उन्होंने हमें बताया, हाँ, कुछ मिसाइलें गिरी, ये एक संयोग था, जानबूझकर नहीं। ऐसा दोबारा होने का कोई आधार नहीं है और हमारे पास उन पर अविश्वास करने का भी कोई कारण नहीं है। हम इजराइल की चिंताओं को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि बुशहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उनकी इच्छा है, लेकिन जापोरिजिया में स्थिति बिल्कुल अलग है। वहाँ यूक्रेनी सशस्त्र बल लगातार स्टेशन के पास हमले कर रहे हैं और हाल ही में एक हमला हुआ था। मुझे लगता है कि उन्होंने अपना आपा खो दिया। उन्होंने ऊर्जा इकाई पर हमला किया, लेकिन सौभाग्य से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन इसे कोई क्षति नहीं हुई है। फिर भी स्थिति बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहाँ इस्तेमाल किया हुआ परमाणु ईंधन है, और अगर इसे ले जाने वाले जहाजों को नुकसान पहुँचता है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हवा किस तरफ बहेगी, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये रूस की तरफ ही बहेगी। संभवतः ये मामला यूक्रेन और यूरोप की ओर बढ़ेगा, इसीलिए कीव सरकार की कार्रवाइयों का समर्थन करने वाले यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। संयोगवश आईएईए के प्रमुख श्री ग्रोसी ने स्पष्ट रूप से यही बात कही थी, उन्होंने यही कहा था। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। सामान्य तौर पर स्थिति सामान्य होने पर हम अपने ईरानी मित्रों के साथ मिलकर इन परमाणु संयंत्रों का निर्माण जारी रखने का इरादा रखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम इसमें एक भूमिका निभा सकते हैं। हम ईरान की चिंताओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि हम उनके साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें उनकी परमाणु ऊर्जा के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम सहित हर चीज उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।
3: बियॉन्ड इकोनॉमिक प्रेसिडेंट आर्थिक मैत्रीपूर्ण या आर्थिक साझेदारी के संदर्भ में पश्चिमी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूस ने ईरान का समर्थन किया है, न केवल प्रतीकात्मक रूप और बयानों से, बल्कि उपग्रह चित्रों, डेटा और सूचना साझा करने के माध्यम से भी। इन खबरों पर आपकी क्या राय है?
0: सूचना हमेशा चर्चा का विषय होती है, साथ ही आधुनिक नियंत्रण भी, मतलब दोहरा उपयोग। मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ईरानियों को न केवल हमारे उपग्रहों से बल्कि वाणिज्यिक उपग्रहों से भी जानकारी मिल रही होगी। दरअसल वाणिज्यिक उपग्रह इस जानकारी को व्यावसायिक आधार पर बेचते हैं। हालांकि हथियारों के मामले में मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि ईरान ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा है और न ही हमने उन्हें कोई हथियार मुहैया कराए हैं।
2: But these wars today have shown a different...
3: लेकिन आज के इन युद्धों ने आधुनिक युद्ध का एक अलग ही पहलू दिखाया है। ड्रोन तकनीक, चाहे वह यूक्रेन हो या ईरान, ड्रोन तकनीक और एआई के उपयोग में बहुत आगे हैं। रूस की स्थिति कैसी है और यूक्रेन और ईरान की ड्रोन तकनीक के बारे में आपका आकलन क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे?
1: Что касается украинских беспилотники, их нужно сбивать и делать это еще более эффективно.
0: देखिए, जहां तक यूक्रेनी ड्रोन्स का सवाल है, उन्हें मार गिराना होगा और हमें इस मामले में और अधिक कुशल होना होगा। एआई की बात करें तो वास्तव में अमेरिका और यूरोप इस तकनीक को सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं और हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के अधिकांश स्पेयर पार्ट्स यूरोप से आते हैं, कुछ स्पेयर पार्ट्स अमेरिका से आते हैं, जबकि हमारे स्पेयर पार्ट्स पूरी तरह से रूस में ही बनाए जाते हैं।
1: Мы делаем это всё на собственной базе, на собственной основе.
3: AI को आप एक सहायक मानते हैं या फिर रुकावट पैदा करने वाली टेक्नोलॉजी?
1: Это новое средство ведения вооруженной борьбы. Ничего необычного в этом нет. Это...
0: देखिए, यह युद्ध का एक नया साधन है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है या कुछ भी नया नहीं है। बदलाव के लिए हर कोई तैयार रहता है, खास तौर पर तब जब यह वास्तविक जीवन और युद्ध का हिस्सा बन जाता है। लेकिन ये युद्ध करने के एकमात्र साधन नहीं है। परिणाम बलों, उपकरणों और औजारों के संयोजन से सुनिश्चित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सशस्त्र बलों की प्रेरणा और मनोबल के कारण यह आंतरिक एकजुटता समाज के माध्यम से भी सुनिश्चित होता है। यूक्रेन ने एक कोयला बंदरगाह पर हमला किया, फिर कुछ शोर मचाया, कोयले के कारण आग लग गई। क्या उन्होंने कुछ हासिल किया? हाँ, उन्होंने किया, पर क्या यह उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार साबित होगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि समाज में आंतरिक एकता और एकजुटता जरूरी है।
1: В этом смысле они что-то добились? Ну да, что-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет.
0: रक्षा उद्योग के लिए आपका अपना औद्योगिक आधार होना चाहिए, आपका अपना वैज्ञानिक आधार और अपने संसाधन भी होने चाहिए। रूस के पास यह सब है और हम भी ऐसा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए जो लोग हमसे लड़ रहे हैं वो जितनी जल्दी ये बात समझ लें उनके लिए उतना ही बेहतर होगा।
1: Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
3: हम अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं।
0: जी, माफ कीजिए, आपने ईरान के बारे में बात की और हमें उनकी सराहना करनी होगी। ईरान अपने समाज में आंतरिक स्थिरता बनाए रखने में कामयाब रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जब युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिम के कुछ लोगों ने सोचा कि देश अंदर से बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह विश्लेषण गलत साबित हुआ। इसके विपरीत, जैसा कि हम देख सकते हैं, ईरानी समाज लगातार मजबूत होता जा रहा है। आपने इसे देखा होगा, आपने लगभग एक महीने पहले सुना भी होगा जब संघर्ष शुरू हुआ और पहले हमले किए गए। ईरान के शासन और नेतृत्व ने अपील की, ईरान के लिए अपनी जान कुर्बान करो। 50 लाख लोगों ने अपनी मर्जी से आगे आकर अपनी जान कुर्बान करने का फैसला किया और अब यह संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इन सभी ने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने का संकल्प लिया। ये एक सच्चाई है और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, और यही बात ईरान के संघर्ष पर भी लागू होती है।
3: प्रेसिडेंट, जनता के बीच असहमति को भी देशों और नेताओं की ओर से मान्यता मिलनी चाहिए। तंजानिया में, रूस में, उज्बेकिस्तान में, चीन में और भारत में भी असहमति है। आप असहमति को किस नजरिए से देखते हैं और युवाओं को इसमें कैसे शामिल करते हैं?
0: जितने अधिक दृष्टिकोण होंगे समाज के लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप सबसे बेहतर का चुनाव कर सकते हैं।
3: ठीक है, अब मैं आपसे भारत को लेकर सवाल पूछना चाहती हूँ। कल आप कुछ एडिटर्स से मिल रहे थे और आपने Su-57 के बारे में बात की थी और सहयोग का प्रस्ताव भी रखा। क्या वह प्रस्ताव अभी भी मान्य है? इसे लेकर क्या जानकारी है और भारत के साथ आपकी क्या बातचीत चल रही है?
0: भारत और हमारे बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग और आपसी तालमेल के मामले में बहुत अच्छे और लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक बड़ा हिस्सा रूसी उपकरणों और सामग्री से लैस है। यह परंपरा सोवियत काल से चली आ रही है और आज भी कायम है। भारतीय मित्रों के साथ हमारे संबंध इस मायने में खास हैं कि ये हमारे आपसी विश्वास पर आधारित हैं। हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे। भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है, हमने प्रस्ताव दिया है और मैंने कल अपने भारतीय मित्रों से यही कहा था कि हमें मिलकर यह काम करना चाहिए। खैर, योजना सफल नहीं हुई लेकिन हमने इसे अपने दम पर किया और हम शायद जल्द ही Su-57 बेचने के लिए तैयार होंगे। आप जानते हैं कि इसमें 2 पायलट कॉन्फ़िगरेशन हैं और यह एक कमांड सेंटर के तौर पर भी काम कर सकता है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और हम न केवल एविएशन में बल्कि मैरिटाइम इक्विपमेंट, पनडुब्बियों और समुद्री जहाजों में भी खासे कुशल हैं।
1: 2 пилота и эта машина может использоваться в качестве командного пункта уже.
2: Is there a waiver or carve out?
3: क्या भारत को Su-57 और AS-500 वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद की छूट दी जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका से, और क्या वह मान्य रहेगी? आपके विचार से भारत को अमेरिका और प्रतिबंधों से कैसे निपटना चाहिए?
0: मैं कहूंगा कि भारत हमेशा एक संप्रभु देश के रूप में कार्य करता है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों का कोई भी संभावित खतरा तुरंत उल्टा पड़ जाएगा और मुझे यह निश्चित रूप से पता है। हम लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी के साथ गहन बातचीत कर रहे हैं और वे इसे अच्छी तरह जानते हैं। हम सभी को वह समय याद है जब प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, और मुझे पता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब वे प्रधानमंत्री हैं, सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और मेरी समझ से अमेरिका और भारत के संबंध सफलतापूर्वक विकसित हो रहे हैं। भारत एक संप्रभु देश है और उसे चुनने की स्वतंत्रता है। भारत उन उत्पादों को चुनता है जिन्हें वह सबसे आधुनिक और अपने लिए सबसे बेहतर मानता है और जो मुनासिब कीमत पर अच्छी क्वालिटी देते हैं। चाहे लोग कुछ भी कहें, भारत हमेशा से इसी तरह काम करता आया है। कैसे? दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे। इसी भावना से, इन्हीं नियमों के मुताबिक हम अपना काम करते हैं और इसी तरह हम आगे भी काम करते रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
3: मैंने सत्र की शुरुआत यह कहकर की कि हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते, और मेरे को मॉडरेटर राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही कहा है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगर इजाजत हो तो इस हॉल में मौजूद सभी लोगों की ओर से, पैनल में मौजूद सभी लोगों की ओर से, हम इस संयुक्त कार्य और संवाद के लिए हमारी शानदार मॉडरेटर को धन्यवाद देना चाहते हैं। सेशन मॉडरेट करने में आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: दायित्व आया है तो मैं निभा रहा हूँ, उसे अच्छे ढंग से करना ही मेरा मकसद रहता है। अगर आप अच्छे निर्णय और सही समय पर निर्णय करते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका एक उदाहरण है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: Today's jazz brings the movement forward. Modern voices, contemporary sound, and players shaping what jazz sounds like now. From Herbie Hancock to Pat Metheny, Esperanza Spalding, and more. Feel the jazzy energy with Deep Roots. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Jazz to start listening now.

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversations. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
2: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर देखिए पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे हम।
1: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
0: अधूरा प्यार ही
1: तुम्हें दुनिया के सिम यार ठीक है मत दोहराओ
2: बिजुरी आई गए।
1: हाँ हाँ थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ हाँ हाँ हाँ,
2: यह अब ही नसिया पाया भैया।
3: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
2: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ तुमको,
3: हाँ यही यही यही यही खुजा जोर से।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हिंदू सरकार का सख्त, अब पहरा बही खाते से लेकर तमाम दस्तावेजों का सर्वे 5 जुलाई तक देनी है फाइनल रिपोर्ट। संभल में कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से नाराज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर का सरकार पर निशाना, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी रूप से जवाब देंगे। वाराणसी में नगर निगम का बड़ा फैसला, शहरी क्षेत्र में नॉनवेज की बिक्री पर लगी

0: सत्ता बदली तो सिर्फ सरकार नहीं बदली, शासन की सोच और सियासत की दिशा भी बदलती दिख रही है। जो मुद्दे कभी बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र और जनसभाओं में गूंजते थे, वो अब सरकारी फाइलों और फैसलों में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ राज्य भर के मदरसों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी इसे अपने बिल्कुल पुराने आरोपों और राजनीतिक विमर्श से जोड़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी कदाचित एक ऐसे समय में हो रही है जब ममता बनर्जी विपक्ष की भूमिका में है, टीएमसी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रही है। ममता बनर्जी के दौर में जिन नीतियों को बीजेपी तुष्टीकरण का प्रतीक बताती थी, क्या बंगाल की सरकार में आने के बाद बीजेपी उन्हीं नीतियों की परतें खोलना चाहती है? सीमा सुरक्षा से लेकर वंदे मातरम तक, इमाम के भत्ते से लेकर मुस्लिमों के ओबीसी में आरक्षण की व्यवस्था तक, घुसपैठिए से लेकर गौहत्या पर सख्ती, बीजेपी की शुभेंदु सरकार के कई फैसले पहले से ही टीएमसी की आंखों में चुभ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि बंगाल में मदरसों के सर्वे के जरिए बीजेपी सिर्फ संस्थानों का सत्यापन करवा रही है या ममता के वोट बैंक की राजनीति पर सीधा वार? क्या मदरसों का सर्वे पश्चिम बंगाल की राजनीति का नया मोड़ बनेगा या ममता के राजनीतिक किले पर एक और प्रहार साबित होगा? बंगाल में शुरू हुई नई बहस पर आज होगी सबसे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: बंगाल में अब मदरसों की हकीकत कागजों पर उतरेगी। कौन चला रहा है, किस नियम के तहत चला रहा है और किसके पास क्या दस्तावेज है? शुभेंदु सरकार ने जिला प्रशासन को 5 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
2: शुरू किया मदरसों के इसीलिए कि मदरसों के खिलाफ नहीं है, कि मदरसों इतना इलीगल है, इलीगल मदरसों के खिलाफ हम लोग हैं। और ज्यादातर दिखा गया कि इलीगल मदरसों से ये जितना है ये टेररिस्ट लोग पैदा होते हैं, तो इसीलिए हम लोग इलीगल मदरसे को पहले छान कर ले और उसके बाद जो लीगल है वो रहेगा, जो इलीगल है उसको हटा देना चाहिए। कोई भी चीज इलीगल नहीं चलेगा बंगाल में, चाहे वो मदरसे हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जो जो भी हो, इलीगल चीज नहीं चलेगा।
3: देखिए, मदरसा हो या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ देखना है कि वो सही तरह से ये यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन ये तो सरकार का काम है, सरकार ये काम कर रहा है, अपना काम है सरकार का, सरकार तो अपना काम करेगा ना।
1: बंगाल में मदरसों के सर्वे के लिए 8 सवाल तैयार किए गए हैं। मदरसे की लोकेशन, स्थापना का वर्ष, रजिस्ट्रेशन की जानकारी, वैध दस्तावेजों की स्थिति, छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की जानकारी, आवासीय या गैर आवासीय, सरकारी सहायता प्राप्त या निजी, पढ़ाए जाने वाले कोर्स। क्योंकि बंगाल में मदरसे सिर्फ शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि दशकों से राजनीतिक बहस का हिस्सा भी रहे हैं।
4: हमारी सरकार है, उसने जो निर्णय लिया है सर्वे का, सारे मदरसों का, वो बहुत सराहनीय कदम है। जो भी शिक्षण संस्थान हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, सबके ऊपर जवाबदेही सरकार की है। वो वित्तीय मामला हो, कानून का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका मामला हो, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की है। तो सरकार का ये कदम जितनी सराहना की जाए उतना ही कम।
1: बंगाल में मदरसे बरसों से वोट बैंक, पहचान और तुष्टीकरण की बहस के केंद्र में रहा है। चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, महाजंगल राज के साथ इन मुद्दों को बीजेपी ने जमकर उछाला, ममता सरकार को घेरा, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खूब मिला। पहली बार बीजेपी की बंगाल में सरकार बन पाई।
5: विगत 15 सालों में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति चल रही है। झूठ, डर और हिंसा का सहारा लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का नया राजनीतिक थ्योरी ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया। कोई भी सरकार को चुनकर आने का आधार जन कल्याण के काम होते हैं। तृणमूल कांग्रेस का चुनकर आने का आधार झूठ, डर और हिंसा है।
1: अब जब मदरसों का राज्यव्यापी सर्वे शुरू हुआ है तो बीजेपी इसे अपने पुराने राजनीतिक अभियान से जोड़कर पेश कर सकती है और कह सकती है कि जिन सवालों को उसकी पार्टी चुनावी मंचों से उठाती रही, आज उन्हीं सवालों के जवाब सरकार खुद तलाश रही है।
6: पीटीएम, सीसीपीएम, कांग्रेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उनको लैयर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार फिनेंशियल सपोर्ट देने के लिए रेडी है।

0: लेकिन बंगाल में तुष्टिकरण का राजनीति नहीं होगा।
1: बीजेपी दावा करती है कि पश्चिम बंगाल में 2011 से पहले 2100 मदरसे थे, 2011 से 2026 बांग्लादेश सीमा के पास 35,000 से ज्यादा वैध और अवैध मदरसे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को सीएम पद की शपथ ली थी। 11 मई को अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 121 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंपी और 45 दिनों के भीतर 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने का फैसला किया। स्कूलों की असेंबली में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया, गो हत्या पर सख्ती दिखाई, इमामों और पुरोहितों को दिए जाने वाले भत्तों को बंद करने का ऐलान किया। नए नियम के मुताबिक ओबीसी सूची में शामिल की गई मुस्लिम उपजातियों को आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया गया। ये सर्वे ऐसे समय में हो रहा है जब ममता बनर्जी सरकार से बाहर है, उनकी पार्टी तृणमूल तृण हो गई है, रोज टीएमसी में विवाद बढ़ रहे हैं और उनके वोट बैंक पर बीजेपी ने सीधा हमला किया है।
2: समझता हूं कि बंगाल में जो सरकार बनी है वो मदरसों के उत्थान के लिए नहीं बढ़ी है, बल्कि उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर जो है अपनी सरकार को बनाया है। तो जो वो हमारे सनातनी भाई हैं उनके लिए जो काम वो अच्छा करना चाहें उसमें पहल करें, जो बेरोजगार हैं वहाँ उनको रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, मदरसों से सब स्टार्टिंग करते हैं। इसका मतलब ये होता है जो वो शपथ ले रहे हैं कि बगैर भेदभाव के हम काम करेंगे, वो शपथ के विपरीत काम कर रहे हैं।
1: यानी बंगाल में अब मदरसों की फाइलें खुलेंगी, लेकिन इसके साथ ही खुल जाएगी राजनीति की एक नई किताब, क्योंकि जिस राज्य में धर्म और राजनीति की रेखाएं अक्सर एक दूसरे को काटती रही हूं, वहां मदरसों का सर्वे सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं माना जाएगा बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। आज तक ब्यूरो।
3: अब दंगल के उन सवालों पर नजर डालते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहेगी। केंद्रीय सवाल नंबर एक, क्या बंगाल में मदरसों की गिनती ममता बनर्जी के वोट बैंक पर क्या आखिरी चोट है? सवाल नंबर दो, क्या बंगाल में जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी बदले की कार्रवाई कर रहे हैं? और सवाल नंबर तीन, क्या बंगाल में भी बीजेपी योगी मॉडल लागू करना चाहती है? अब ओपोजिशन की तरफ से कई तरह के बयान और सवाल उठाए भी जा रहे हैं। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जुड़े हैं, हमारे साथ शुभांकर भट्टाचार्य जुड़े हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मीता चक्रवर्ती जुड़ी हैं, हमारे साथ AIMIM लीडर शादाब चौहान भी जुड़े हैं, हमारे साथ MRM कन्वीनर मोहम्मद फैज खान साहब भी जुड़े हैं क्योंकि इस समय आज तक के स्टूडियो में, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एडवोकेट तौसीफ अहमद खान साहब भी जुड़े हैं। लेकिन आज अजय आलोक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि आप पर आरोप लग रहा है कि आप मदरसों को जहां जहां सरकार में आते हैं आप मदरसों को शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं।
4: शक नहीं, कंफर्म यकीन की निगाह से देखते हैं कि ये मदरसों में बांग्लादेशी भरे हुए, शक वक नहीं है।
3: मतलब सारे मदरसों,
4: दर्शकों में एकदम गलत मैसेज जाने ही मत दीजिए, कोई शक नहीं है, सारे मदरसों में नहीं, सारे मदरसों में नहीं, 2100 मदरसे थे लीगलाइज्ड, लीगल और इलीगल 2011 तक। 2011 के बाद 2026 में ये बढ़के हो गए हैं 35,000। ये मैक्सिमम मेजॉरिटी लोकेटेड है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे।
3: ओके,
4: हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन इनपुट सेंटर की भी गैदरिंग है, स्टेट की भी गैदरिंग है, इन मदरसों का मुख्य संचालन आज की तारीख में भारत विरोधी भावना को भड़काने के लिए, टेररिज्म नेटवर्क के लिए, ड्रग पेडलिंग के लिए, आर्म्स ट्रैफिकिंग के लिए, पशु तस्करी के लिए, हर वो इलीगल चीज जो हो सकती है वो हो रहा है। तो राज्य सरकार क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आज तक राज्य सरकार नहीं करते आई, इनको पनपने दिया, इनको बसाया, खिलाया, पिलाया, सरकारी योजनाओं का लाभ दिया, इनको ग्रांट भी देना शुरू कर दिया, मदरसा ग्रांट, मौलवियों को पैसे भी देना शुरू कर दिए। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी भी ऐसे ही करेगी? फिर देश का मतलब क्या रह जाएगा राजीव जी? ये जब चुनाव के पहले हम पिछले 3 साल से इसी पे हम आंदोलन करते रहे कि क्यों मुस्लिम अपीजमेंट के तहत बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, आज आप देखिए रोज दिन क्यों 25,000 से 30,000 से 40,000, किसी दिन 50,000 लोग खुद भाग रहे हैं बांग्लादेश। ये कौन है, क्यों जा रहे हैं बांग्लादेश? आप तो नहीं जाएंगे बांग्लादेश,
3: लेकिन वो आप पर ये तो आरोप लगा रहे हैं ना कि फिर आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो एक तरफा कर रहे हैं, मतलब आप सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं।
4: एक तरफा तो होगी बांग्लादेशी, नहीं, आप मुसलमान में अंतर समझिए, ये मुस्लिम को टारगेट नहीं है, ये बांग्लादेशियों को टारगेट है। अब बांग्लादेशियों को टारगेट करना जारी रखेंगे जिनके पेट में दर्द होता है, होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
3: अच्छा अच्छा, अलग जी कुछ लोग कह रहे हैं
4: बंगाल में नहीं,
3: छोटू एनआरसी
4: बिहार में भी यही काम कर रहे हैं, हम यूपी में भी यही कर रहे हैं। भाई एनआरसी तो आना ही है, लॉ बन चुका है, छोटा एनआरसी क्यों करेंगे? पहले तो खुद हमारे गृह मंत्री ने कहा, हमारे वहां के मुख्यमंत्री ने कहा जल्दी भाग जाओ, अपने से भाग जाओ ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कार्रवाई जब ऑफिशियली शुरू होगी तो बहुत दिक्कत होगी, पकड़े जाओगे, पिटाई होगी, जितना कमाए हो यहां सब कॉन्फिस्टिकेट हो जाएगा। अभी सोचिए, एक गुजरात में एक रैकेट पकड़ाया, हवाला के थ्रू बांग्लादेशी गुजरात में पैसे कमा रहा है और हवाला के थ्रू वहां पे पैसे देता है और बांग्लादेश में उसके परिवार को पैसे मिल रहे हैं। ये किसका पैसा है? ये हमारे देश की इकोनॉमी का पैसा नहीं है। अगर ये बांग्लादेश जा रहा है तो इनको दर्द किसी को नहीं होना चाहिए। क्यों भाई हमारे संसाधनों पर लूट मचाने के लिए हम फॉरनर्स को अलाउ करेंगे?
3: ठीक है,
4: उसमें हिंदू मुसलमान के
3: शुभांकर भट्टाचार्य बीजेपी क्लियर करे कि हमें कोई शक नहीं है, हमें यकीन है कि वहां पर अवैध गतिविधियां चल रही हैं, उनके पास स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन है और अब वो कार्रवाई कर रहे हैं। अगर सरकार में आए हैं वो और कार्रवाई करना चाहते हैं और लीगली इलीगल थिंग पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है?
5: राजीव जी, मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से पहले बताना चाहूंगा कि मैं सोचता हूं कि आप लोगों ने शुभेंदु अधिकारी पर बहुत ज्यादा दबाव बना दिया है। मतलब उनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव है कि 30 दिन में वो कितना सक्सेसफुल हो गए, अभी चारों तरफ यही चल रहा है कि पहले तो जीत करके आई, बहुत बड़ी जीत है, फिर उन्होंने ऑपोजिशन को नष्ट कर दिया, उनका ये हो गया, अब देखिए 30 दिन में ही उन्होंने पूरा, ये पहले होता था हम लोग कहते थे सरकार के 100 दिन, अब हो गया सरकार के 30 दिन। इन बेचारे पर बहुत ज्यादा आपने दबाव डाला है, अब उनको देखिए कहां से कहां तक आना पड़ रहा है, मंदिर से शुरू होके मदरसा तक, इतना डेवलपमेंट मतलब बंगाल सह नहीं पा रहा है। आप इसके आगे देखिए कितना कुछ है उनके पास, हिंदू मुसलमान से बेचारे बाहर नहीं निकल पा रहे, देश में पूरे जगह पे जो युवा है वो अपनी शिक्षा को लेके कॉकरोच बने घूम रहे हैं, लेकिन बंगाल में उनको जो सबसे बड़ी ज्यादा चिंता पड़ी हुई है हिंदू मुसलमान कैसे कर लिया जाए। अरे वहां पे जो रेड़ी वाले थे उनके हॉकर्स के ऊपर उनके अपने अधिकार छीन लिए, उनके अपने काम छीन लिए, काम छीनने में
3: ऐसा कोई डेटा के साथ आए हैं, वो कह रहे हैं कि 2100 थे वैध, वहां 35,000 पहुंच गए, क्या जांच ना करें? सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार क्या जांच परखे ना? और जो सवाल वो पूछ रहे हैं सर्वे में, आपको क्या आपत्ति है उनमें?
5: नहीं, बिल्कुल सही बात है।
3: हाँ
5: अरे सर, आप क्यों मेरे को खामखा अजय आलोक जी का दुश्मन करार दे रहे हैं? मैं तो उनसे दुश्मनी कर ही नहीं रहा, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं कि अगर प्रति मदरसा 100 बच्चे हैं, समझ लीजिए 35,000 मदरसे जो हैं वो सारे के सारे बांग्लादेशी से भरे, जैसे अजय आलोक कह रहे हैं, तो कुल हुए 35 लाख बच्चे। 35 लाख बच्चे का मतलब होता है कि तकरीबन कुछ नहीं तो करोड़ों आपने उनके माँ बाप को अपने साथ में जोड़ करके करोड़ों मुसलमान को बांग्लादेशी घोषित कर दिया है। तो आप ये भी बता दीजिए कि अगर इनका लिस्ट विस्ट आप लोगों को बताएंगे कि आप सीधे कतार लगा के उनको बांग्लादेश भेजेंगे, कोई ऐसा आपने उनके साथ कोई करार किया है? या बॉर्डर में लाइन करके क्या करना है, मतलब होमिसाइड का प्लान करना है, जेनोसाइड का प्लान करना है, क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं वो अजय जी जानेंगे। हमको तो इतना पता है बंगाल में डेवलपमेंट भरपूर हो रहा है, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बंगाल इतनी अच्छी तरीके से जो
3: जवाब
5: 30 दिन में देखिए कितना इसमें कर ले रहे हैं, 30 दिन में कितने लोगों को प्रताड़ित कर सकते हैं, 30 दिन में कितना हिंदू मुसलमान हो सकता है, ये सारी बातें बहुत
3: डॉक्टर अजय,
5: डेवलपमेंट ऐसे ही होता है।
4: सही बात है प्रभु, डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, और आपको तो डेवलपमेंट दिख ही रहा होगा शुभांकर जी, उसमें क्या दिक्कत है? टीएमसी का अच्छा अच्छा डेवलपमेंट आपको दिख रहा होगा, अभिषेक बनर्जी का डेवलपमेंट दिख रहा होगा, तो बहुत दर्द हो रहा होगा, पीड़ा हो रही होगी, मैं समझता हूँ। नहीं नहीं, पीड़ा हो रही होगी जंतर मंतर में, मैं भी दिल्ली में भी बैठा हुआ, मैंने भी देखा है जंतर मंतर में। जंतर मंतर की बात छोड़िए ना, बंगाल की बात करते हैं, अवैध मदरसों को बंद नहीं करे आपके
5: साथ,
4: जल गई बल नहीं गया, जिस हरकत के कारण जिस हरकत के कारण बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोल रहा,
5: एनटीए नहीं मना है,
4: जिस हरकत के कारण आपकी सरकार गई, आपकी पार्टी आ गई, आपकी लीडर, एक मिनट, आपकी लीडरशिप गई, और तब भी आपकी कोई सुधार नहीं है, आप है कि हम नहीं सुधरेंगे, हमको अभी भी मुसलमान चाहिए, हमको अभी भी बांग्लादेशी मुसलमान चाहिए, नहीं मिलेगा, अब तो नहीं मिलेगा। और 30 दिन में एक कहावत है ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जब एज्यूम करते हैं चार्ज, तो उनके लक्षण पहले 7 दिन में दिख जाते हैं, हटा दिया ना सारे के सारे मुसलमानों को जो ओबीसी बना के रखा हुआ था, संविधान का उल्लंघन करते हुए खटाखट खटाखट संविधान करते थे।
3: ठीक है, मैं लौटता हूं शुभांकर आपके आपसे बात लौटूंगा, लेकिन लेकिन शादाब चौहान
4: बंद कर दिया ना।
3: शादाब चौहान, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रहे है पश्चिम बंगाल में?
5: मैं इसका जवाब देना जरूरी समझता हूँ।
3: अभी शादाब को सुनते, शादाब
6: देखिए, विडंबना इस बात की है कि शुभेंदु अधिकारी के पास रोजगार के लिए समय नहीं है, रोजगार पे बात करने के लिए, कानून व्यवस्था के लिए समय नहीं है, उनके पास वहां कैसे निवेश लाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसके बारे में उनके पास उस पर समय ही नहीं है। उनपे समय है कि गाय को 14 साल बाद आप स्लॉटर कर सकते हैं, इस विषय के लिए समय है। उनके लिए समय है कि मस्जिद मदरसे में जो या मंदिर में जो पुरोहित और मौलाना होते हैं उनकी सैलरी कट करना है, तो हिंदू और मुसलमान दोनों पे बराबर का टारगेट हुआ। तीसरा उनके पास समय कि मस्जिद को मदरसे को लेकर के आप वो सर्वे करा रहे। मेरा सवाल ये है अजय भाई, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, आप एक कानून लेकर के आइए कि पूरे देश में जितने भी धार्मिक स्थल वैध या अवैध हैं उनकी एक सूची होगी और वैध और अवैध होने का क्या क्राइटेरिया होगा ये आप बता दीजिए। दूसरी बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई मदरसा अपनी भूमि पर बना है तो वो अवैध नहीं हो सकता, रिकॉग्निशन और नॉन रिकॉग्निशन अलग विषय है, आप रिकॉग्निशन के लिए बोल सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो आंकड़ा अजय भाई जितने गर्व के साथ दे रहे, इतने बांग्लादेशी, अरे सर 14 साल से 12 साल से आपकी सरकार केंद्र में है, आपने क्या किया है, और पिछली सरकारों में कितने बांग्लादेशी जाते थे, और आप एक तरफ आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर में पाकिस्तानियों को भूमि देते हुए गर्व महसूस करते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है। आप ये तय कर लीजिए कि विदेशियों को आपको पहले देना है या भारत के नागरिकों को देना है। 80 करोड़ लोग राशन के लिए बाध्य हैं, ये इनका सबका साथ सबका विकास है, ये इनका न्यू इंडिया है। एक निकम्मा शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता है और ये कहते हैं कि सीबीएसई के सचिव को हटा दिया हमने, और हटा करके क्या बनाया, कृषि का, उसको कृषि का सचिव बना दिया, यानी पहले शिक्षकों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया, अब वो किसानों का भविष्य बर्बाद करेगा। तो अजय आलोक भाई को मिनिस्टर बनाना चाहिए पहले, तो मेरी आपत्ति ये है, सरकार में अजय भाई जैसे काबिल लोग होने चाहिए। ये धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और अजय आलोक को बना दो, तो मुझे उम्मीद है कि छात्रों के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए कुछ बेहतर हो सकता है।
3: आप फिर दूसरी तरफ चले गए थे, लेकिन छोटा सा रिएक्शन अजय आलोक आप दे ही दीजिए, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा।
4: देखिए मुझे आश्चर्य लग रहा है, मेरी चिंता कर रहे हैं वो बात नहीं है, लेकिन ये डेविएट करने का कितना अच्छा तरीका है, और बांग्लादेशी मुसलमानों के प्रति, अपने कौम के प्रति एक कट्टरता के साथ खड़े होने का कितना नंगा खेल खेला जा रहा है टीवी पे। एक बार भी दोनों में से एक ने नहीं कहा कि बांग्लादेशियों को बाहर निकालना चाहिए।
6: अरे पाकिस्तानियों को निकालो, बांग्लादेशी को निकालो,
4: बांग्लादेशियों को क्यों ना निकाले, क्यों नहीं निकाले बांग्लादेशियों को, क्यों नहीं निकाले? एक बार भी किसी ने यह नहीं कहा कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पे मुझे ज्ञान दे रहे हैं। सुन लीजिए,
3: नहीं अजय आलोक कंप्लीट करें,
4: लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में पिछले 20 दिन में बस लॉ एंड ऑर्डर पिछले 20 दिन में अपसाइड डाउन टर्न हो गया। लॉ एंड ऑर्डर पे हमें ज्ञान दे रहे पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं था। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, जहां तक ये बात है, इतने प्रोजेक्ट लाइनअप है। कल ही केंद्र सरकार ने अनाउंस किया कि 80 मेट्रो ट्रेन और भी कलकत्ता मेट्रो को देंगे, 500 किलोमीटर ज्यादा लाइन बढ़ाने जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन फ्रॉम सिलीगुड़ी टू दिल्ली, ये कल केंद्र ने अनाउंस कर दिया है। पश्चिम बंगाल तो अपना काम करेगी सरकार, देखते तो जाइए बंगाल सोने की चिड़िया बनता कैसे। खैर आप तो यूपी में है, आप चिंता मत कीजिए। अरे बुलेट ट्रेन नहीं भाई, मेट्रो में चढ़ेंगे ना, मेट्रो में कलकत्ता की जनता चढ़ेगी ना, मेट्रो में कलकत्ता की जनता चढ़ेगी ना।
6: आप रोजगार देंगे ये बताइए, कितने शैक्षिक संस्थान आप बंगाल में बनाने वाले हैं?
3: प्रोजेक्ट ठीक है, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। ठीक है ठीक है, अजय लोग भी आपने, लेकिन मोहम्मद फैज खान साहब, ऑपोजिशन जो इस समय आरोप लगा रहा है, क्या आपको भी लग रहा है कि जो सरकार की कार्रवाई है वो भेदभावपूर्ण है?
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की जय। राजीव भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आपके माता पिता को भी धन्यवाद, इतना सुंदर नाम भगवान राजीव लोचन के नाम पर आपका रखा है, कमल आपके नाम का मतलब होता है। बहुत धन्यवाद भी आपने मुझे इस डिबेट में बुलाया। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी ज्ञान दीजिए, तो गुरु जी ने कूड़े से भरा हुआ कटोरा बढ़ा दिया और कहा शिष्य इसमें खीर डाल दो। कहा गुरु जी मैं इसमें खीर नहीं डाल सकता क्योंकि इसमें कूड़ा भरा है, जब तक इसे साफ नहीं किया जाएगा तो खीर गंदी हो जाएगी, तो पहले इसे साफ कीजिए। गुरु यही कहे कि बेटा ठीक उसी तरीके से पहले मन की गंदगी को साफ करना होता है, फिर स्वच्छ ज्ञान डाला जाता है, ठीक उसी तरीके से पहले बंगाल में मौजूद पहले से गंदगी जो है उसे साफ करना होगा, फिर विकास के कार्य होंगे, हम सीधा मेट्रो ला के दे देंगे, नए मॉल मल्टीप्लेक्स ला कर दे देंगे, नए स्कूल कॉलेज और सड़कें ला कर दे देंगे, जो पहले से गंदगी वहां पर भरी हुई है ना वो लोग मिलकर सब उसे गंदा कर देंगे। इसीलिए पहले ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अवैध मदरसे, अवैध इमाम, अवैध मस्जिदें और जो सारी इस्लाम के खिलाफ काम चल रहा है उन सबको दूर करना होगा। राजीव भाई मैं बताऊं, पश्चिम बंगाल में इस्लाम और मुसलमानों का स्वर्णिम काल है, स्वर्णिम काल है। कैसे पूछिए, अब तक इस्लाम के उसूलों पर मुसलमान नहीं चल रहा था, सड़कों पर नमाज पढ़ता था, शुभेंदु जी आए सही जगह मस्जिदों पर नमाज पढ़ने लगे, खुले में कुर्बानी करते थे ये इस्लाम का अंग नहीं था, अब ढककर कुर्बानी करने लगे, हज के लिए सब्सिडी ये इस्लाम का अंग नहीं था, अब सही इस्लाम पर आने लगे, मौलाना उलेमा मुफ्ती ये सबको तनख्वाह देने का काम मुस्लिम समाज का है, सरकार का नहीं है, उनकी तनख्वाह को खत्म किया, इसी तरीके से अपने देश के प्रति वफादारी इस्लाम सिखाता है, लेकिन वहां पर बांग्लादेश और रोहिंग्याओं के झंडे रहते थे, अब भारतीय तिरंगा झंडा रहता है, और मदरसों में पूरा वंदे मातरम गाए जाने की बात कही जा रही है। कहने का मतलब है जो जो इस्लाम की शिक्षा थी वो ममता बनर्जी नहीं कर सकी, वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कर सकी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो उस पर काम करी। और शुभेंदु अधिकारी जी ने बहुत अच्छी बात कही, भाई हम मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं, और इस्लाम में जो पहला शब्द पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की तरफ से आया वो था इकरा, इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें पैदा किया, और मुसलमान शिक्षा से सबसे ज्यादा दूर था। मदरसे नो डाउट बहुत सारे मदरसों से बहुत सारे क्रांतिकारी निकले हैं, लेकिन इस बात पर भी कोई शक नहीं कि 2100 से 3500 मदरसे हो गए, वहां आतंकवाद और विदेशी गतिविधियां पनप रही थी, तो उस पर सुधार करना जरूरी है।
3: मीता चक्रवर्ती, सरकार कह रही है कि जो गंदगी है वो हटाएंगे, जो अवैध है उसे खत्म करेंगे, तो इसमें आपको सरकार की मंशा पर सवाल क्यों हो रहा है, अगर सरकार कुछ करना चाह रही तो?
8: देखिए, पहली तो मुझे इस बात से आपत्ति है जो बीजेपी की प्रवक्ता ने अभी बताया कि कभी किसी दिन 20,000 भाग रहे, किसी दिन 50,000 भाग रहे, थोड़ा डेटा में बात कीजिए ना, भाग रहे मतलब क्या, बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश वापस जाते हैं? मैं भी एक चीज मानती हूँ कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको नहीं पना देना चाहिए, उनको नहीं शेयर मिलना चाहिए हमारी स्टेट की फिनेंशियल और नेचुरल रिसोर्सेस में, पर कितने संख्या में जा रहे हैं? अगर यूपीए 1 और यूपीए 2 का सरकार का आप देख ले कि कितनी बांग्लादेशी को चिन्हित करके रिपोर्ट करने का काम यूपीए सरकार ने किया था, और उसके बाद एनडीए सरकार ने कितने किए थे, आपके सामने संख्या हो जाएगा, यूपीए सरकार ने ज्यादा अच्छा काम किया था। अभी आप बोल रहे हो कि 20,000 50,000, इसका मतलब क्या है? आपके पास कोई ठोस डेटा ही नहीं है, आप तो एक प्रोसेस से रिपोर्ट कर रहे हो ना, एक प्रोसेस से।
3: ये घुसपैठ, ये एक प्रश्न आ गया, और जो मदरसों पर जो अभी जो सर्वे है उस पर क्या आपका टेक है?
8: मेरे पहले सवाल तो ये है कि आप क्या कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हो या कोई प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, ये जो जनरलाइजेशन चल रहा है कि 35,000 आर इलीगल मद्रासास, किस हाईकोर्ट ने बोला, किस सुप्रीम कोर्ट ने बोला, किस प्रोसेस की, किस डेटा, किस एविडेंस की बेसिस में आप ये बात कर रहे हो, या हवा में बात कर रहे हो जैसे बीजेपी हमेशा हवा में बात करता रहता है। तीसरी बात, आप बोल रहे हो जंग अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहा है, इसीलिए करप्ट है टीएमसी। मैं भी मानती हूँ टीएमसी में रैम्पेंट करप्शन था, कोल सिंडिकेट से लेके काउ स्मगलिंग तक, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम से लेके काफी लो लेवल करप्शन तक सब कुछ था टीएमसी में, इसीलिए टीएमसी पावर में नहीं है। पर एक चीज आप बता दीजिए कि आप चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कब एक्शन लोगे? उनके खिलाफ भी तो वीडियोग्राफिक एविडेंस है ना कि वो ब्राइब ले रहे हैं। पहली बार हुआ है इंडिपेंडेंट इंडिया में पश्चिम बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ वीडियोग्राफिक एविडेंस है कि वो हाथ फैला के ब्राइब ले
3: रहा है। दो सवाल हैं, मैं चाहता हूँ दोनों पर एक एक करके आप आलोक आप जवाब दें। पहले तो ये जो डेटा 35,000 का दे रहे हैं एविडेंस का है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि शुभेंदु पर तो खुद कार्रवाई होनी चाहिए।
8: व्हेन आर यू सेंडिंग हिम बिहाइंड द बार्स, इसका जवाब दे दीजिए। करप्शन की
9: सबसे पहली बात, ओके ओके प्लीज नाउ लिसन, अब सुनिए ना, शुभेंदु अधिकारी पे जो भी केस है वो कोर्ट में है,
4: उस पर हमारा फैसला नहीं दे सकते, न्यायालय ही फैसला देगा मैडम।
8: हाँ, वो कोर्ट नहीं रहेगा,
4: यहाँ पे गांधी परिवार से फैसला नहीं आएगा। जो जीवन भर करप्शन में जो इन्वॉल्व, अब बीच में क्यों बोल रही है, जीवन भर करप्शन में जो इन्वॉल्व रहे, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कांग्रेसी और गांधी परिवार करप्शन में इन्वॉल्व है, बेल पे हैं, उन पे ज्ञान नहीं देंगी। अब देखिए सबसे मजेदार बात, राजीव
8: जी ज्ञान देंगे,
4: यहाँ पूरे बैठे हुए लोग के दिमाग में वो मुस्लिम वोट बैंक चल रहा है, मुस्लिम वोट बैंक चल रहा है, क्योंकि वो मुस्लिम बैंक, वो मुसलमान का वोट बैंक अभी अब ममता से छिटकेगा, तो ममता से छिटक के किधर जाएगा? कांग्रेसी चाह रहे हैं कि ये मेरे प्याले में गिर जाए, कम्युनिस्ट चाहेंगे मेरे प्याले में गिर जाए, इसीलिए सब बांग्लादेशी के लिए बैटिंग करते रहेंगे। अब बता रही है क्या कि डेटा आपने 10 साल में यूपीए ने 82,342 डेटा देता हूं आपको, 10 साल में यूपीए ने 10 साल में यूपीए ने 10 साल में यूपीए ने
3: 82,342 डेटा सुन लेते हैं, फिर मैं तौसीफ के पास भी जाऊंगा। मीता आपने सवाल पूछना, आप जवाब भी नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा जवाब तो सुन लीजिए। हाँ अजय आलोक, जब 30 सेकंड में खत्म कर दें।
4: मीता जी को इन्हीं का डेटा देता हूँ, 10 साल में हाँ 10 साल में यूपीए ने 82,342 ऑफिशियली डिपोर्ट किए। मीता जी ये डेटा बताइए तो, 10 साल में 15 साल में ऑफिशियली बांग्लादेश से इंपोर्ट कितने किए टीएमसी ने, जो इतने वापस जा रहे हैं, जो आज तक का कैमरा भी दिखाता है और तमाम चैनल दिखाता है, और आप खुद बंगाल में बैठी हुई आपको पता है, हाँ भाग रहे हैं बांग्लादेशी वापस, सब मान रहे हैं, लेकिन चाहिए ऑफिशियल डेटा, काहे के लिए डिटेन करें, डिटेन करके उनको दमाद की तरह खिलाएं पिलाएं, उसके बाद डिपोर्ट करें, ऑफिशियल इमिग्रेशन करें, 6 महीने लगेगा उसमें, 6 महीने कौन खिलाएगा उनको, उनका मेडिकल कौन
3: करवाएगा? किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप जो है धर्म में एक तरीके से दखल अंदाजी कर रहे हैं, जहां दीनी शिक्षा दी जा रही है आप वहां जाकर जांच करना चाहते हैं, आप संस्कृत विद्यालय जो चल रहे हैं, जो गुरुकुल चल रहे हैं, उन पर तो आप कार्रवाई नहीं करते, वहां तो नहीं कर रहे आप जांच?
4: बिल्कुल कर रहे हैं, ये किसने कह दिया आपको नहीं कर रहे, किसने कह दिया नहीं कर रहे संस्कृत विद्यालय पे कार्रवाई, चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो, एक एक संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय पे कार्रवाई हो रही है, सबकी जांच हो रही है,
3: ठीक है,
4: कि कहीं फर्जी काम नहीं हो,
3: तौसीफ विद्यालय
4: चल रहे हैं तो अच्छे से चलने चाहिए,
3: ठीक है,
4: मदरसा अगर चल रहा है तो मदरसा में आतंक की शिक्षा नहीं होनी चाहिए,
3: ठीक है, तौसीफ अहमद
4: खान, अवैध जमीन पर सरकारी जमीन पर नहीं बनना चाहिए।
3: शुभेंदु अधिकारी के इस सर्वे पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सरकार अगर कुछ काम करना चाह रही है तो काम करने देना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए, उसके बाद उसकी क्या मंशा पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए? अभी काम शुरू भी नहीं हुआ, सवाल पहले खड़े।
10: सवाल तो लोग अजय आलोक जी खड़ा कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने तो ये नहीं कहा कि हमें यकीन है कि मदरसे में बांग्लादेशी है, आतंकवादी है और आर्म्स पाए गए हैं, ये तो अजय आलोक जी कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जी ने तो कहा है कि हम ऐसा शिक्षा देना चाहते हैं जिससे वो आगे चलकर डॉक्टर बने, वकील बने और सोसाइटी में बड़े बड़े पद पे आए, इस तरह का शिक्षा देना चाहते हैं। भाई आपको याद होगा कि आर्टिकल 21 एक को अपहोल्ड करते हुए राइट टू एजुकेशन एक्ट कांग्रेस के जमाने में लाया गया था, और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये सरकार की जिम्मेदारी बन गई कि वो 6 साल से लेकर 14 साल तक के उम्र के बच्चों को एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। ये सारे मामले कोर्ट्स में भी गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदरसा बोर्ड के खिलाफ मुहिम चला दिया और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड कर दिया। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को रिवर्स किया कि मदरसा बोर्ड के खिलाफ जो इस तरह का मुहिम चला रहे थे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, वो गलत है। तो पहले बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं पहले वो समझ लें कि कानूनी पोजीशन क्या है। और ना तो शुभेंदु अधिकारी ने आज ऐसा कोई बयान दिया है। मामला अब ये कहते हैं बांग्लादेश बंगाल की हिस्ट्री में जो सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहा ज्योति बासु, वो तो खुद बांग्लादेश के, उनका घर तो बांग्लादेश में आज भी मौजूद, और उनके अलावा लंबा लिस्ट है जो बांग्लादेश के लोग आए हुए यहाँ के गवर्नमेंट में रहे, गवर्नमेंट के पोजीशन पर रहे, और भी चीफ मिनिस्टर जो पुराने रहे थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, वो भी बांग्लादेश से ताल्लुक रखते। तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप करना चाहते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम किसी तरह हो जाए? अब आप हिंदू मुस्लिम क्यों करना चाहते? चुनाव भी तो नहीं है, अब तो चुनाव जीत चुके, अब तो अगला चुनाव 2029 में लोकसभा का है, तो आप फिर से हिंदू मुस्लिम क्यों करना चाहते
3: हैं?
10: हिंदू मुस्लिम करिए, 2029 तक इंतजार करिए। शुभेंदु जी खुद ही कह रहे हैं कि वो कुछ काम करना चाहते हैं, उनको काम करने दीजिए। टीवी में आकर के तो आप खुद ही ये नैरेटिव उनके खिलाफ बोले हुए बातों पे चला।
3: ठीक, मैं जी लोग आपके पास आऊंगा जब, लेकिन मोहम्मद फैज खान साहब, शैक्षणिक सुधार उद्देश्य नहीं है, राजनीतिक उद्देश्य है, सीधा सीधा विपक्ष कह रहे हैं।
7: नहीं, अभी तो हमारे तौसीफ भाई ने खुद कबूल कर लिया कि चुनाव के बाद भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप लोग तो चुनाव में करते हैं, ये प्रूफ हो गया कि चुनाव के बाद भी कर रहे हैं, यानी कि चुनावी राजनीति का अंग ये नहीं था। वास्तविक रूप से शिक्षा पे बीजेपी काम करना चाहती है और मुस्लिम बच्चों की शिक्षा पे काम करना चाहती है। देखिए 29 को चुनाव आएगा या 31 को चुनाव आएगा पश्चिम बंगाल में, पर बीजेपी अभी से काम कर रही है ना। नहीं तो आरोप क्या लगता है कि पहले जी हिंदू मुसलमान कर दिए या मुसलमानों का मदरसा तोड़ दिए, अब उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे सीधा जी 31 में करेंगे सीधा अगले चुनाव।
11: थोड़ी देर पहले फैज साहब शादाब ये बात कह रहे थे कि आप ये प्रश्न खड़े कर सकते हैं कि भाई वो रिकॉग्नाइज है या नहीं, और अगर वो मुस्लिम की भूमि या वक्फ की भूमि पर बना है तो वो चल सकता है, मतलब सरकारी सर्टिफिकेट है या नहीं, इस पर आप प्रश्न खड़े सकते हैं, लेकिन उसको अवैध कहना ही गलत है।
7: बिल्कुल, देखिए दो बातें हैं यहां पर, एक तो यदि अवैध बना है तो उस पर तो कार्रवाई होगी, और जमीन वैध है लेकिन उसके बावजूद वहां पर कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि चल रही है तब तो उस पर भी कार्रवाई होगी। दोनों तरीके से देखिए, एक होता है प्राइवेट चैनल, एक होता है सरकारी चैनल। प्राइवेट वाले ये नहीं कह सकता भैया मैं अपनी मर्जी चलूंगा, भाई आप इस देश के अंदर हो, उसी तरीके से प्राइवेट मदरसा हो, प्राइवेट मस्जिद हो, अपने स्ववित्तीय व्यवस्था से भी चल रही है तो उसको सरकार के प्रति और देश के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा। कोई भी राष्ट्र विरोधी एंटी
11: अवैध तरीके से चल रहा है तो राष्ट्र विरोधी हो गए।
7: हाँ कैसे नहीं भाई, अवैध काम तो इस्लाम विरोधी भी है और राष्ट्र विरोधी भी है, कैसे नहीं होगा? वहां पर आप भारत विरोधी शिक्षा दे रहे हो, वंदे मातरम नहीं गाओगे, बोलोगे तिरंगा नहीं फहराओगे, बोलोगे बांग्लादेश का झंडा फहराओगे केवल हरा झंडा, भाई तीन रंग का हमारा झंडा है वो तीन रंग का झंडा फहराना पड़ेगा। हम कई जगह मदरसों में 15 अगस्त में जाते हैं, 26 जनवरी में जाते हैं, राष्ट्रगान होता है, वंदे मातरम होता है, तिरंगा फहराया जाता है। यही परंपरा शुभेंदु अधिकारी जी भी वहां पर चालू कर रहे हैं, और हम अच्छे से जानते हैं भैया ये जो बड़ी है मदरसों की संख्या बॉर्डर में बड़ी है, ये सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, और भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि भारत में वोट देने का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को है, किसी बांग्लादेशी या रोहिंग्या को नहीं है।
11: ठीक है शुभांकर, इसमें कुछ आप ऐड, मतलब वो तो क्लियरली कह रहे हैं, उस पर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं आज अलग इसके बाद
12: एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, उसके बाद एक लाइन जोड़ रहा हूं, एक लाइन बस, एक लाइन
11: बोलिए,
12: बोल लेने दीजिए।
11: हां बोलिए,
12: अच्छा अधिकार बनता है,
13: मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ इनका अधिकार, नहीं अरे शुभांकर जी वो बात नहीं, आप बोलिएगा, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वक्फ एक्ट के तहत जितने जमीन थे उनकी जांच करने से ममता बनर्जी ने मना कर दिया था। तो वक्फ एक्ट के तहत जितनी पश्चिम बंगाल में जमीन है, जो कि लगभग आज की तारीख में ऑन रिकॉर्ड लगभग 57,000 एकड़ है, उनकी भी जांच करनी है ना कि किस तहत वक्फ में उनको ले लिया, हरा कपड़ा डाला, जमीन मेरी हो गई, उसकी भी जांच होगी अभी। इसलिए वक्फ के तहत जो मदरसे बने हुए हैं वो लीगल है कि नहीं, ये जांच के बाद ही कहिएगा।
11: ठीक है शुभांकर,
5: राजीव जी ऐसा है, सबसे पहले तो मैं जिन्होंने ये जो डॉक्टरेट इन बांग्लादेशी एंड रोहिंग्याओं के ऊपर जो बैठे हुए हमारे साथ जो संयोजक साहब फैज खान साहब, फैज खान जी को शुभेंदु अधिकारी जी ने तशरीफ रखने को कहा था, फैज साहब ने जो अभी जो ये आसन जो दिखाया है उसे हमारे यहां साष्टांग दंडवत कहते हैं। खैर मैं एक बात जरा बता दूं कि आप जितना चाहे करें, आप सारे मदरसाओं को क्यों नहीं कहते कि हम लड़ रहे हैं कि सारे मदरसा बंद कर दीजिए, सिर्फ एक ही वो चीज, भाई आप जब अपने आप बीजेपी से आप इतने करीबी दिख रहे हैं, आप उनकी सारी बातें मान रहे हैं, तो यूसीसी को भी लिए लड़िए ना, कहिए ना कि यहां पे भी यूसीसी लागू हो और कहा जाए कि सारे मदरसे नहीं, सिर्फ एक स्कूली शिक्षा रहेगी, एक प्रकार का एक स्कूली वो रहेगा, उसके लिए लड़िए ना, कौन मना कर रहा है आपको? अब तो और ममता बनर्जी गवर्नमेंट नहीं है, ममता बनर्जी गवर्नमेंट की कमियां थी तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया गया, खत्म होगी कहानी साहब, अब भूल जाइए उस तो, उसकी तो पार्टी के टुकड़े टुकड़े भी आपने कर दिए ना। अब आप उस पार्टी की बात करिए जो अभी है, जो बदलाव की राजनीति के लाने की बात कर रही है, बदले की राजनीति नहीं, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, आप एक बात को बहुत करीब से समझ लीजिए साहब कि वहां पे बंगाल के जो आप जब आप डेमोग्राफी की बात करते हैं तो उस डेमोग्राफी में एक बहुत मेजॉरिटी शेयर मुस्लिम्स का भी से है, और अगर आप उनकी बेटरमेंट की बात करना चाहते हैं तो उनसे भी आपको राय मशवरा लेनी पड़ेगी। और तीसरी बात जो आखिरी में इस बात को रख के मैं बाकी चीजें आप लोगों को छोड़ता हूं जिसके ऊपर, कि कम से कम जनाब अब तो डेवलपमेंट शुरू करिए, पूरे देश को तो एग्जामिनेशन तक आप एक दे नहीं पाए, लोगों को अपना अपना वो लेने के लिए युवा को उतरना पड़ रहा है कॉकरोच बन करके,
12: तो कम से कम बंगाल में और कॉकरोच मत तैयार होने दीजिए। इससे पहले युवा अपने हक की लड़ाई लड़े,
11: विकास नहीं
12: कम से कम उनकी नौकरी और उनकी शिक्षा की व्यवस्था तो करिए,
11: विकास पर फोकस करिए। और साथ साथ में वो तो खुद मांग कर रहे हैं कि आप तो यूसीसी लेकर आइए।
13: अब आप, मैं थोड़ा सा शुभांकर जी को ही याद दिला देता हूं कि विकास में शुभांकर जी बस हमारा इतना ही फोकस है कि हम पश्चिम बंगाल में सरकार में नहीं थे ना, तब भी एनएच की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बंगाल में 2700 किलोमीटर हाईवे 66 लेन बना के केंद्र सरकार ने दिए, ये विकास केंद्र सरकार का। रेलवे की लाइनों का दोहरीकरण और लंबाईकरण कम से कम 1500 किलोमीटर का हुआ, ये हम सरकार में नहीं थे। तो जब सोचिए, जब हम सरकार में नहीं थे तब हम बंगाल के लिए इतना कर रहे थे। पोर्ट का डेवलपमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब तो हम राज्य सरकार में साहब आते के साथ हमने बीएसएफ को जमीन दिया ताकि फेंसिंग शुरू हो जाए। और आपको दर्द हो गया, आपकी दिक्कत, आपकी दिक्कत, आपकी दिक्कत क्या शुभाकर जी, मैं जान रहा हूं आपका फोकस कहां है। आप हाई मुसलमान, हाई मुसलमान इसलिए कह रहे हैं, हाई मुसलमान। अब आप बिहार पे भाग गए, अब आप बिहार पे भाग गए, बंगाल में बात कर रहे हैं ना, बंगाल में रुकिए ना, अभी फिर लाऊंगा आपको बिहार से, फिर झारखंड लाऊंगा, फिर ले जाऊंगा उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली लाऊंगा। धीरे धीरे लाते हैं, एक एक जगह लाते हैं, सब जगह से, गंगा से गंगोत्री से, गंगा सागर हम ही हैं, आप नहीं हैं।
12: मैं,
13: अरे सुनिए तो सही, क्यों व्याकुल भारत हो रहे, सुनिए अभी डेवलपमेंट बहुत होगा, लेकिन आपकी
11: सबके पास आऊंगा, सबको समय मिलेगा, अपने अपने समय का इंतजार करें, दूसरे मेहमान में इंतजार करें। अच्छा, अपने टॉपिक पे रहे,
13: वो कहां जाएगा,
11: ठीक है।
13: मैं कह रहा हूं इनकी समस्या बस यही है, इनकी हो जाए, तौसीफ की हो जाए, खैर शादा भाई तो है नहीं वहां पे, और या मिता जी की हो जाए, इनका अब सब फोकस है कि ये सारे मुस्लिम भाई बंधु टूटे टीएमसी से, अब ये किधर जाएंगे, इनको लपको, अगला दो साल इनका फोकस कांग्रेस और सीपीएम आपस में मारापीटी करेंगे, क्योंकि तृणमूल तो बची नहीं, ये मारा पीटी करेंगे कि मुसलमान हमारे साथ, मुसलमान हमारे साथ।
11: अजय आलोक ठीक, वापस टॉपिक पर लाते हैं, वापस टॉपिक पर लाते हुए जो, जो सवाल है आपके सर्वे में उसमें एक ये भी है कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा, आप मतलब वहां जो दीनी शिक्षा दी जा रही है आप इतने इंटरेस्टेड क्यों है उसमें, ये जानने में क्यों, क्या पढ़ाया जा रहा
13: है इसे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो देश के बच्चे, जो देश के बच्चे हैं उनका भविष्य बने। सिर्फ दीनी शिक्षा काफी नहीं होती है, ये इस्लाम में भी कहा गया है कि शिक्षा का हमेशा मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण करना चाहिए। इस्लाम में भी कहा गया कि बच्चों को पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए, जो ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे हैं वो इस्लाम के दुश्मन हैं। अगर आज उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह पे अच्छे अच्छे मदरसों में, सऊदी अरब में, दुबई में अगर मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, तो यहां क्यों नहीं हो भाई,
11: ठीक है। शादा वो कह रहे हैं मॉडर्नाइजेशन यही हमारा मकसद है,
12: बिल्कुल उसे एनटीए को सौंप दीजिए।
6: देखिए, अगर मदरसा मॉडर्नाइजेशन इनका मकसद है तो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के ताल्लुक से कितना ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि आरएसएस के नेता फैज खान और अजय आलोक जी दोनों को चिंता है मुसलमानों की शिक्षा की, 5%
11: का क्यों मदारे,
6: अरे भाई आरएसएस का ही ऑर्गेनाइजेशन है तो सबको पता, मैंने क्या गलत कह दिया, वो भी मानते इस बात को। तो देखिये, अगर उनको चिंता है शिक्षा की, 5% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, तो आप 95% बच्चों की शिक्षा छोड़ करके मुसलमानों के बच्चों की सिर्फ 5% की चिंता करना चाहते हैं। और हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे एनटीए में, एनटीए के माध्यम से जो परीक्षा देते हैं वो लीक रोक नहीं पा रहे, सीबीएसई पे घोटाला हो रहा है, आप कह रहे हैं हम शिक्षकों की चिंता कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, शैक्षिक प्रणाली को सुधारने के लिए कितना काम कर रहे हैं। और अभी कहा फैज खान साहब ने एक बात कही कि वो पूरा वंदे मातरम गाने लगे, ये करने, अरे सर
11: मैं लेकिन शादा चौहान मतलब इस हिसाब से तो फिर सरकार कम से कम जांच तो कर रही है, सर्वे तो कर रही है, सर्वे करना भी अनुचित हो गया क्या?
6: अरे सर मैं वही तो कह रहा हूँ राजीव भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार आंकड़ा जारी करे कि जो उत्तर प्रदेश के थानों में मंदिर बने हैं, सड़कों पे मंदिर बने हैं, कौन से कानून के तहत बने हैं, और मस्जिद मदरसे मंदिर और सबका जांच करा ले आप, पता चल जाएगा किस धर्म के कितने अवैध स्थल हैं, आप कहिए ना, फिर मंदिरों की जांच करा ले वहां क्या क्या हो रहा है, सबकी करा लीजिए, यूनिफॉर्मिटी के साथ करा लीजिए। लेकिन आप चुनकर इसलिए बोलते हैं ये बात क्योंकि फिर रोजगार पे बात नहीं होगी, शिक्षा पे बात नहीं होगी, बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, बढ़ती महंगाई पे बात नहीं होगी, अमेरिका डरा करके वेनेजुएला
14: धर्मशाला का कचरा तेल हमें लेने पर मजबूर कर रहा है खरीद करने के लिए, उस पर बात नहीं होगी। ये गुद्दे भटकाने के लिए सब विषय उठाए जाते हैं। और मैं तो स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि मैं भारत को प्रेम करता हूं, मैं जय हिंद बोलता हूं कि मैं देशद्रोही हो जाऊंगा, लेकिन मैं भारत की पूजा नहीं कर सकता, मैं भारत को मां नहीं मानता। जिसको जो करना है करे। और मदरसे से देश के आजादी के आंदोलन शुरू हुए, मदरसे देश की आजादी के आंदोलन में बड़ा प्रतीक रहे। और आरएसएस के कितने लोगों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। फैज खान चुनौती दे रहा शादाब चौहान,
11: ठीक है फैज खान साहब, चूंकि आपकी तरफ है वो तो योगदान गिना रहे कि मदरसों का कितना बड़ा योगदान रहा है, और आज आपकी नजर में वो मतलब गलत ही तरीके से हो गए।
7: नहीं नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि मदरसों से बहुत सारे क्रांतिकारी निकले हैं, रेशमी रुमाल आंदोलन से लेकर हकीम अजमल खान तक तमाम, और धनपत राय, रघुपति सहाय और मुंशी प्रेमचंद सब मदरसे की उपज हैं। लेकिन इन सब की आड़ में हम आतंकवादियों को नहीं बचा सकते, उनको नहीं छुपा सकते, वही काम कर रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक स्वतंत्र संगठन है, ये कह रहे आरएसएस का, मैं मान लिया आरएसएस का हूं, ये भी तो मान लेना कि ये कासिम रिजवी और रजाकारों की पार्टी एमआईएम, ये नहीं मानेंगे। दंडवत प्रणाम करना शुभांकर भैया, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करना भारतीय संस्कृति का अंग है। शुभांकर भाई गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन आप जो शुभांकर जैसा पवित्र नाम रखकर काम कर रहे हैं ना, उसे तलवे चाटना कहते हैं, इसको थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। और हम स्वीकार करते हैं कि मदरसों से ही मोहम्मद फैज खान भी निकला है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी निकला है, लेकिन वो छिपकली रात भर कीड़े मकोड़े खाए और सुबह होते होते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर के पीछे छुप जाए और फिर निकलकर आतंकवाद फैलाए, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्रांतिकारियों की आड़ में आतंकवादी को प्रश्रय देने का काम यदि आप करेंगे तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बात को समझ लेना चाहिए।
11: छोटा सा रिएक्शन शुभंकर,
5: इन्होंने इतना ज्यादा खुद खाया और लोगों में खिला दिया कि ये सांप्रदायिकता के अलावा इनको और कुछ नहीं दिखाई देता।
11: हमारी जो डिबेट है
5: एक ही टारगेट है, और ये पूरा टारगेट यही है कि बंगाल में सांप्रदायिक
11: इसको निजी लड़ाई ना बनाया जाए, लड़ाई ना बनाया जाए। हम एक बार फिर से उस प्लान पर रहते हैं, एक बार फिर से जो सर्वे है उस पर ही केंद्रित हमारी डिबेट रहेगी तो ज्यादा बेहतर है। अजय आलोक,
13: मैं शादाब भाई की बहुत तारीफ करता हूँ, जानको काफी दिनों से जानता हूँ, ये बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे पूर्वज राजपूत थे, मैं शादाब चौहान हूँ, अब मैं मुसलमान हूँ, अब मैं इस्लाम मानता हूँ, लेकिन न मुझे मंदिर जाने में भी गुरेज नहीं है। अब इस पार्टी में आके मत कहिएगा शादाब भाई, नहीं तो वारिस पठान वाला हाल हो जाएगा। उसने एक बार गणपति बप्पा मोरिया कह दिया था, सारे पदों से हटा दिए गए थे, माफी मांगनी पड़ी सार्वजनिक रूप से गणपति बप्पा मोरिया कहने के लिए, तब वापस पार्टी में आ पाए। तो आपकी जो भावना है वो भावना में मत रहिए, यहाँ रहना है तो रजाकार की फौज बनते ही रहना
6: पड़ेगा।
13: मानिए चाहे मत, आपको बुरा लगे चाहे जो लगे,
6: आपकी चिंता है कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री,
13: मेरी चिंता मत कीजिए, हम तो यहीं पे, हम यहीं रहेंगे,
6: मुझे चिंता इस बात की,
13: हम तो यहीं रहेंगे, अरे छोड़िए, हम तो यही रहेंगे, हम यही इसी मिट्टी में रहेंगे।
6: अजय भाई को अवसर,
13: लेकिन आपके जो पूर्वज थे वो इस मिट्टी के नहीं थे।
11: फिर डिबेट दूसरी तरफ से जा रही है ना, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी मैं टॉपिक पर फिर से रहता हूँ, शादाब हो गया, मैं तौसीफ के पास काफी समय से नहीं गया, मैं तौसीफ में चाहता हूँ, आप चूंकि बड़े तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं, तो जो सर्वे के सवाल हैं उन सवालों में कहीं भी कुछ मतलब मुझे तो आपत्तिजनक नहीं लग रहा है, अगर आपको लग रहा है तो कौन सा सवाल आपत्तिजनक है?
10: देखिए पहला बात तो ये कि सर्वे में डिटेल्ड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मेरे पास में है नहीं।
11: okay.
10: मेरी ये जानकारी है कि दो हफ्ता पहले से ही पुलिस ऑफिसर्स जो है वो आकर के मदरसों से पूछ रहे थे कहाँ के, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं और डिटेल्स वगैरह
11: पूछ रहे थे कि मदरसा कहाँ है, कब शुरू हुआ, संचालन के आपके पास कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं है, संख्या कितने है छात्रों की, आवासीय है, सहायता प्राप्त है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें तो कुछ आप अनाथ ऐसा नहीं है जिस पर आपत्ति की जाए,
10: ऐसा कुछ कोई आपत्तिजनक बात फिलहाल तो मुझे नहीं दिखा। और मदरसे जो चलाते हैं उन मौलानाओं ने भी मुझे बताया है कि भाई पुलिस आई थी, ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने जो सवाल किया हमने उनको कोऑपरेशन किया, उन्हें सारे जवाब दे दिए। अब इसमें सरकार ये तय करे कि जहां जहां सरकारी एड नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को फंड की जरूरत है उन्हें वो फंड दे, क्योंकि आखिरकार ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को एजुकेशन मिले, चाहे वो उसका प्लेटफॉर्म मदरसा बने, चाहे वो कॉर्पोरेशन का स्कूल बने, चाहे वो प्राइवेट स्कूल बने,
11: ठीक है,
10: सरकार की जिम्मेदारी है एजुकेशन इम्पार्ट करना, ये तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर में। तो सरकार का काम एक निजी तौर पे अगर मदरसा कर रही तो मदरसा को हेल्प करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है।
11: समय इतनी ही ज्यादा है, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। और आज के दंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: In association with
3: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
4: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
5: Summer cool cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
2: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
6: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
7: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
8: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल,
9: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
8: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल,
9: सीबीएसई के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
8: छात्रों को दिया मंच,
9: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
10: मैम ये देखिए इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
11: आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही।
8: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर,
9: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक। और अब सरकार की तरफ से सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
8: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।

0: चार मई को बंगाल के चुनावी नतीजों के अगले ही दिन जब ममता बनर्जी ने ये बयान दिया, तो क्या तभी उन्हें अपनी पार्टी पर आने वाले सियासी खतरे का अंदाजा हो गया था? क्या ममता को आभास हो गया था कि 15 साल की सत्ता हाथों से जाने का सीधा असर उनकी पार्टी पर होगा? ममता बनर्जी के मन में क्या था ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन महीने भर का घटनाक्रम ये बता रहा है टीएमसी पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। पहले फर्जी हस्ताक्षर मामले में दो विधायक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गए, ममता ने कार्रवाई की तो दोनों विधायकों ने अपना गुट बनाकर 60 MLA को साथ ले लिया। ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। लेकिन संकट अभी थमा नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीएमसी के 28 में से 23 सांसद बाकी विधायकों के संपर्क में हैं।
1: ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
0: यानी चुनाव के बाद बंगाल में टीएमसी के भीतर शुरू हुई लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है, और इस बदले घटनाक्रम के बीच ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन से बड़ी उम्मीद लगाए हुई है। वैसे खबर है कि इंडिया गठबंधन की ये बैठक ममता बनर्जी के ही कहने पर बुलाई जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी नतीजों के ठीक बाद कह चुकी हैं कि अब वो आजाद पंछी हैं और पूरी तरह मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता पर काम करेंगी।
2: I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me. Rahul Gandhi rang up me. Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister. All the allies of United India Alliance, Indian Alliance.
0: पहले इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की हसरत के साथ कांग्रेस की मीटिंग से दूर रहने वाली ममता बनर्जी इस बार खुद दिल्ली की बैठक में शामिल होने वाली है, क्योंकि अब मसला सिर्फ विपक्षी एकता का नहीं उनकी पार्टी की फूट का भी है। अगर सांसदों में टूट हुई तो टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए अभिषेक बनर्जी एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। कोशिश विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की है ताकि टीएमसी के संकट को कुछ कम किया जा सके। आज तक ब्यूरो

0: मैं निभा रहा हूँ उसे अच्छे ढंग से करना ही मेरा मकसद रहता है। अगर आप अच्छे निर्णय और सही समय पर निर्णय करते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका एक उदाहरण है।
1: Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
2: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included.
3: Oh yeah!
2: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
5: You're listening to CNBC.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
7: Keep it on smooth jazz.
8: This is Roots Reggae.
9: Exclusively on TuneIn.
10: This is classic hip-hop.
11: Exclusively on TuneIn.
4: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
12: तीस दिन हो गए हैं और लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रा और कानूनी वैधता की जाँच की जाएगी। सर्वे की जाँच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ने वाले मौलवी की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाए। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। वैसे बंगाल में बीजेपी सरकार के 1 महीने के कार्यकाल में सीएम शुभेंदु ने कई फैसले किए हैं जिसके बहाने सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। सरकार बनने के बाद से शुभेंदु अधिकारी ने अहम फैसले किए हैं, उनमें बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य किया जा रहा, बंगाल में लाउड स्पीकर से अजान बंद करना, राज्य में इमाम मुअज्जिन का भत्ता बंद करना और सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद करने का फैसला। मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लें। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसा हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 226-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले में मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ आवंटित किया था। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डेटाबेस तैयार करना है ताकि भविष्य में मदरसे से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति पर चोट जरूरी है। मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारियां पूरी हैं। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तपस सिंह गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
13: जब उसके खिलाफ आज तक का कोई आपराधिक मुकदमा न्यायालय ने कभी सजा नहीं दी, न तो कभी चोरी में, न तो डकैती में, न तो इस तरीके के। फिर 302 का 307 का मुकदमा उसके ऊपर है और किसी ने कहा अपहरण का मुकदमा लिखा रखा है, जैसे एसपी ने कहा। तो इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप इनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है, मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर हैं, वो कुछ छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये फिर इसके मतलब इनका एलआईयू क्या कर रहा था, कैसे समाज के लोगों ने आंदोलन किया, बताया क्यों नहीं फोर्स लगाया इन लोगों ने, खाली जब आंदोलन हो गया तो कहेंगे आप राष्ट्र का लगा देंगे, ये तो डिटेक्टरशिप हो गई।

0: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के पुजाएंगे।
1: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है वो सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
0: अधूरा प्यार ही
1: तुम्हें दुनिया की यार ठीक है मत दोहराओ
2: बिजुरी आई गए।
1: हाँ हाँ थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ हाँ हाँ
2: यह अब ही नसिया पाया भैया
3: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
2: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ तुमको,
3: हाँ यही यही यही यही खुजा जोर से।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: मदरसा सर्वे पर जो सवाल थे उस पर आपने देखा दंगल, अब आगे देखिए बहस बाजीगर अंजराम कश्यप।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
7: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: ऋतव्रत बैनर्जी को बंगाल विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। वो कह रहे हैं कि आपका भतीजा हम स्वीकारेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि ममता बैनर्जी आप अपने भतीजे अभिषेक बैनर्जी को अलग कीजिए और आप आइए हमारी नेता हैं, आप हमको एडवाइस कीजिए। अब ममता बैनर्जी को चुनना है भतीजा या विधायकों के साथ जाकर अपनी पार्टी को बचाना है। वहीं तमिलनाडु चलिए, जहां टीवी के सत्ता में आई विजय की पार्टी, लेकिन वहां एडीएमके डीएमके की जो सियासी जमीन है वो दरक गई है। विधानसभा में 47 सीट जीत कर आई एडीएमके की आज स्थिति क्या है जानते हैं। उनमें से 24 विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जाकर थलपति विजय का समर्थन कर दिया है। तो एआईएडीएमके जिसके साथ बीजेपी चुनाव तमिलनाडु में लड़ी थी वो दो फाड़ हो चुकी है, आधी चली गई है सत्ता में शामिल होने के लिए विजय के साथ। महाराष्ट्र में बाला साहब वाली शिवसेना दो फाड़ हो गई है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के जूनियर पार्टनर हैं। अजित पवार शरद पवार की एनसीपी को विभाजित कर एनडीए के साथ अपनी राह चुन चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार का युग भी समाप्त हो गया है। केवल कुछ ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों के नेता मजबूत बने हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चैलेंज कर रहे हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन हैं वो मजबूत चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए आज बहस बाजीगर का मोशन है कि क्या क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है। लेकिन आज की बहस बाजीगर में हम मंच पर तमाम गेस्ट को बुलाऊं, उससे पहले आपको कुछ नियम बता दूं। सबसे पहले तालियों के साथ इस हिस्से का स्वागत जो ये मानता है खतरे में नहीं है वजूद, यही मानते हैं ना आप लोग, तो जोर से ताली बजाइए अपने लिए। तो ये वो हिस्सा है जो मानता है कि भाई क्षेत्रीय दलों का वजूद कभी खतरे में नहीं है। आज इसकी बारी है, कल किसी और की बारी होगी। और ये सफेद गमछा वाले लोग, आप लोग क्या मानते हैं, खतरे में भी है खतरे में भी नहीं है? समय बड़ा बलवान है, आप लोग को मोक्ष मिल चुका है, आप लोग ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं, वही अगर सबको हो जाए तो पूरी दुनिया में शांति मच जाए और कई सारे उछलने वाले लोग भी शांत पड़ जाएं। और ये वो हिस्सा है जो मानता है कि आज क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है, यही मानते हैं ना। तो तालियों के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले कि हम तीनों जजेस को बुलाएं और 6 पार्टिसिपेंट्स को बुलाएं, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये छोटी सी रिपोर्ट।
1: आज की बहस का मकसद और आधार बना है क्षेत्रीय छत्रपों की सिकोड़ती सियासत और हाशिए पर पहुंचा वजूद। भारतीय राजनीति का एक दौर था जब दिल्ली की सत्ता का रथ राज्य स्तर के दल अपने दम पर खींचते थे या फिर दिल्ली की नाक में दम करके रखते थे। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है और ये छत्रप अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल ममता बनर्जी आज अपनों के ही विद्रोह से घिरी हैं। वो आज अपनी विरासत और भतीजे के राजनीतिक भविष्य के बीच फंसी हुई हैं। महाराष्ट्र में बाला साहेब की विरासत और शरद पवार का पावर गेम दोनों को अपनों ने ही तोड़ दिया। दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु में विजय की टीवीके की एंट्री ने डीएमके और एडीएमके जैसे दिग्गजों की जमीन हिला दी है, जहां पाला बदलने का खेल खुलेआम जारी है। बिहार में आरजेडी भी हाशिए पर है, नीतीश सत्ता के साथ ही चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और झारखंड में हेमंत सोरेन जैसे कुछ नाम अब भी अपनी जमीन बचाए हुए हैं। लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय दल वजूद बचाने के लिए जूझ रहे हैं। इसीलिए आज हम पूछेंगे कि क्या क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है।
0: तालियों के साथ स्वागत कीजिए राशिद किदवई। वरिष्ठ पत्रकार हैं जो आज हमारे साथ जज बनकर आ रहे हैं और तीन ताल के ताऊ कमलेश जी हमारे साथ जज के तौर पर जुड़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, तीन वरिष्ठ पत्रकार जो इस देश की राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। आइए विनोद जी, और अब बुलाते हैं पहले दो वक्ताओं को। तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और हमारे साथ शामिल हो रहे हैं दीपक झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी का तो लेखनी से बहुत पहले से रिश्ता रहा है, लेकिन फिटनेस एक्सपर्ट हैं, योगा गुरु हैं दीपक झा जी, बहुत बहुत स्वागत है। अब देखते हैं क्षेत्रीय दलों के फिटनेस पर आज आप क्या कहते हैं। अपनी अपनी टीम के लिए मोर्चा संभाल लीजिए, अगले दो पार्टिसिपेंट्स को बुला

0: अलोक नागर जी, पूर्व सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे प्रोफेसर विजय राठी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राठी जी आज पहली बार आ रहे हैं बहसबाजी करने, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए आज मामला थोड़ा सा सर गड़बड़ हो गया है। लाल गमछा तो आपका है, आपकी पार्टी लाल टोपी पहनती है, बट ये लाल वाले आपके विरोध में आज गमछा लेके बैठे हैं। ये नीले गमछे वाले आपका साथ देंगे, ठीक है? तो ये लोग आपके साथ आज खड़े हैं और फिर आखिरी के दो पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं। आ गए भाई तिवारी जी, आ गए हैं मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और खास अंदाज में हमेशा पहुंचते हैं डिबेट में। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अरविंद वाजपेयी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलएम के, जो एनडीए के साथी है। और इस तरफ वो प्रेम शुक्ला जी की टीम में जाएंगे और तिवारी जी उधर झाजी की टीम में पहुंच जाएंगे। अब एक बार नियम आपको बता दें, छह वक्ताओं को बारी बारी से, ये डिबेट है, इसमें एक दूसरे पर चिल्लाने की जरूरत नहीं। यहां पर प्रेम शुक्ला जी डेढ़ मिनट बोलेंगे, डेढ़ मिनट का टाइम इनको मिलेगा, डेढ़ मिनट में सशक्त तरीके से अपनी बात बोलिए, उसके बाद से एक मिनट का रिबटल टाइम भी मिलेगा। और तीनों हिस्से से, नीले गमछे, सफेद और लाल से, हम एक एक सवाल भी आपके ले लेंगे और तीनों जजेस ये बताएंगे कि आज सबसे अच्छा किसने इस विषय पर बोला। क्योंकि हम ये मानते हैं लोकतंत्र की ताकत एक मजबूत विपक्ष से आती है, और अगर टीएमसी से लेकर एआईएडीएमके, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की जो पार्टी है, उन सब में अगर हम फूट देख रहे हैं तो एक बड़ा चैलेंज आज क्षेत्रीय दलों के सामने दिख रहा है। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रेम शुक्ला और दीपक झा। क्या क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है, इस विषय पर बोलने का आपका, शुक्ला जी, डेढ़ मिनट का समय शुरू होता है अब।
1: क्षेत्रीय दलों का विस्तार भी हुआ है, और क्षेत्रीय दल जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है, उन क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व ना केवल बचा है बल्कि उनका विस्तार हुआ है। जैसे अभी जो चुनाव हुए 5 राज्यों के, उसमें भी पुदुचेरी में भी जो है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई, तो जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का साथी है वो सत्ता में आता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम सत्ता में आता है, महाराष्ट्र में सत्ता में जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी सत्ता में आती है, बिहार में जो है वो सत्ता में जनता दल यूनाइटेड बैठता है, और जनता दल यूनाइटेड बैठता ही नहीं है, उसके विधायकों की संख्या दोगुनी होती है। जो इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथी, जहां जहां पर भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ क्षेत्रीय दल आए उनका विस्तार हुआ, और जो कांग्रेस के साथ चले गए उनका विनाश हुआ है। अभी देखिए कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो गए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी अभी देख रहे हैं किस दुर्गति को प्राप्त हुई है। इसी तरह से शरद पवार जी जो है वो सांसद बनने के लिए उनको चिरौरी करनी पड़ी जनपद के सामने बाकायदा। उद्धव ठाकरे की दशा हर कोई देख रहा है कि कहां बाला साहब ठाकरे थे और कहां उद्धव ठाकरे आकर गिरे हुए हैं। तो जो कांग्रेस के साथ जा रहा है, डीएमके का अभी अभी उसके पीठ में छुरा घोंपने का आरोप कांग्रेस पर डीएमके ने लगाया है, तो द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम से लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे तक जो जो कांग्रेस के साथ गया उसका विनाश हुआ।
0: जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन ने इधर से अच्छी पारी खेली है। अब झाजी आपकी बारी है, डेढ़ मिनट तक आपको इस पर बोलना है। हालांकि कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है, क्षेत्रीय दलों की बात हो रही है, आपने सेंचुरी तो बना ही ली लगभग सांसदों की पिछली बार
1: हार की भी।
0: डेढ़ मिनट का समय आपको मिलेगा और झाजी इस विषय पर बोलने का कि क्या क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है, आपका समय शुरू होता है अब।
2: देखिए वजूद तो इस देश में सबका खतरे में है, विद्यार्थियों का भी खतरे में है कि नीट का पेपर लीक हो जाता है, किसानों का भी वजूद खतरे में है कि महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, युवाओं का भी वजूद खतरे में है, तो देश का भी वजूद खतरे में है। लेकिन आज क्षेत्रीय दलों को वजूद की बात कर रहे हैं, जिनके कंधों पर देश की राजनीति का, देश के वजूद को बचाने की जिम्मेदारी है, उनका वजूद खतरे में क्या डाल दिया है मोदी सरकार ने? तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल डाल दिया है। क्योंकि भाई साहब ने कहा कि शिंदे को देख लो, फलाने को देख लो, राज ठाकरे को देख लो, पवार जी का नाम लिया इन्होंने बहुत अदबी के साथ, बेअदबी के साथ। मैं कहता हूं जो इनके साथ हैं वो बड़े अच्छे, जो विपक्ष में बैठे हैं वो देशद्रोही गद्दार। बात है कि भाजपा ने आज राजनीति को क्या बना दिया है, आज भाजपा ने कॉर्पोरेट बना दिया नौकरी की तरह। आपका मन करता है आप नौकरी करिए, नहीं तो कल कंपनी बदल लीजिए। भाजपा कहती है आप जिस पार्टी में हैं मन नहीं लग रहा, मेरे पास आ जाइए, मैं आपको अच्छा पैकेज दूंगा। विधायक बनना है आ जाओ, एमएलए बनना है आ जाओ, एमएलसी बनना है आ जाओ, राज्यसभा जाना है आ जाओ, मंत्री बनना है आ जाओ, लेकिन हमारे साथ खड़े रहो। महंगाई की बात मत करना, बेरोजगारी की बात मत करना, छात्रों के भविष्य की बात मत करना। अगर ये सब आप बात नहीं करोगे तो आप हमारे साथ सुरक्षित हो, आपकी पार्टी सुरक्षित है, लेकिन अगर आप सवाल करोगे तो ना आपका दल सुरक्षित रहेगा, ना आपका नेता सुरक्षित रहेगा। इसको उदाहरण है शरद पवार की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल खतरे में आ गई है। तो सारे के सारे दल आज जो विपक्ष के साथ खड़े हैं वो टूट की कगार पे इसलिए हैं क्योंकि भाजपा ने
0: भाई दोनों तरफ से धुआंधार बल्लेबाजी हुई है। कोई प्रश्न? कमलेश जी, विनोद जी,
3: दीपक जी, क्षेत्रीय दलों ने ही जो जो कांग्रेस के साथ जो क्षेत्रीय दल आए वो कांग्रेस की जमीन पर ही खड़े हुए जी। तो अगर क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है तो कांग्रेस को तो फायदा होना चाहिए, आप क्यों उनका पैरवी कर रहे हैं?
2: देखिए सर, हम सनातनी हैं और वेदों से हमारा शुरुआत होता है। वेदों की बात करता हूँ, ऋग्वेद में कहा गया है संग गच्छध्वम सम वदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना न उपास्ते। हम साथ चले, हम साथ आगे बढ़े, हमारी पूजा पद्धति तकनीकी अलग हो सकती है। इसी तरीके से आज अगर राजनीति में हम अलग मतभेद के साथ पार्टी अलग बन गई है कोई बात नहीं, लेकिन जब राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्र के मुद्दों की बात होगी तो सारे दल एक साथ खड़े होंगे क्योंकि हमें भारत माता की जय बोलना है, भारत की बात करना है, हिंदुस्तान के किसानों की बात करना है, हिंदुस्तान के छात्रों की बात करना है और वहां सारे दल एक साथ खड़े होते हैं, इसलिए कोई मतभेद नहीं है।
0: मामला तो चला गया उधर, भारत माता की जय वो बुलवा रहे हैं।
1: नहीं, अब देखिए कैसा सुधार, कितना जबरदस्त है। जो पहले बाइबल को कोट करते थे, कुरान को कोट करते थे, आजकल वेदों को कोट कर रहे हैं। यही आपने पहले से शुरू किया होता तो आज ये कहते ना, सुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए।
0: छोटा सा
2: देखिए, भगवान राम तो इन्होंने लाए हैं, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे।
1: राम तो हम
2: तो अनादि मानते हैं, आदि और अनादि दोनों हैं ईश्वर हमारे लिए, लेकिन इनके लिए तो ये सृष्टि करता है, राम के भी। तो बात है कि हम उस राम को मानते हैं, हम उस सृष्टि को मानते हैं, हम उस भारत माता को मानते हैं जो सबके लिए सार्वभौमिक है। इनके लिए सिर्फ एक आदमी है सार्वभौमिक, और कल 15 लाख करोड़ का घोटाला हो गया है, इस पे भी ये चुपचाप चले जाएंगे, बच्चों के साथ लूटेंगे, शेयर होल्डर्स को लूटेंगे, सबको लूटेंगे, लेकिन कब तक चलेंगे राम के नाम पे ये बता दीजिए।
1: चलिए, राम इनके लिए काल्पनिक था, राम कम से कम जो है वास्तविक हो गए। सुधार बहुत जबरदस्त है, इसके लिए तो तालियां बजनी चाहिए सुधार के लिए।
4: दीपक, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी, लेकिन देश में ऐसी 253 सीटें हैं लोकसभा की और 7 राज्य हैं जहां आपका जो वोटिंग परसेंटेज है, मतलब जनाधार है, वो सिंगल डिजिट में 6% 5%, जैसे बंगाल है, दिल्ली है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, इस तमाम बिहार है और पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं। तो यहाँ पर इसमें आप कैसे, आप 254 सीटें, तो बिना आप क्षेत्रीय दलों के आप कभी पनप ही नहीं सकते, अपने बूते में सरकार नहीं बना सकते हैं आप।
2: देखिए सर, हम भी चाहते हैं कि हमारी 272 सीटें आए, हम भी चाहते हैं कि सरकार हमारी अकेले पार्टी की बने, लेकिन अगर इस देश में विपक्ष के साथ या क्षेत्रीय दल हैं तो क्या इस देश के वो लोग नहीं है? क्या हम उनको पाकिस्तानी बोले? अगर वो चुनाव लड़ना चाहते तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, और लोकतांत्रिक अधिकार में अगर वो जीतते हमको हराते और हमारे साथ आते हैं तो स्वागत है उनका भी। लेकिन जो आपने बात कही, लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय दलों का होना अति आवश्यक है। लोकतंत्र में सवाल जवाब बना रहे, लोकतंत्र में तानाशाही ना आए, क्षेत्रीय दलों का होना अति आवश्यक है। भारत की विविधता ही है क्षेत्रीय दलों के साथ।
5: इस बात से मैं अग्री करता हूं कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं, उसको राष्ट्रीय पार्टियां एड्रेस नहीं कर सकती वैसे जैसे क्षेत्रीय दल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे मुद्दे होते हैं जो बहुत लोकल होते हैं, उसमें दो राज्यों के बीच में फंस जाती है राष्ट्रीय पार्टियां कि बेलगाम में किधर जाऊं, मैं महाराष्ट्र की तरफ जाऊं कि कर्नाटका की तरफ जाऊं, आप बोल नहीं सकते। ये जरूरी है, पर आपने अपने सारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया है, जिन्होंने आपको तमिलनाडु से 60 के दशक में निकाल फेंका, फिर वापस नहीं आ पाए। आपको क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को जहां से भी उखाड़ के फेंका है, फिर कांग्रेस उनकी जूनियर ही बन गई है।
0: बंगाली देखिए,
5: हाँ, और उस स्थिति में चूंकि अब भाजपा भी आपको उखाड़ फेंकने के चक्कर में रहती है यहाँ वहां, और खुल के कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो क्या आप दोनों का भी गठबंधन एक दिन
0: बंगाल में ये भिड़ भी गए ममता बनर्जी के साथ, कहां लड़ेगी कांग्रेस? तो इसका क्या फायदा है, मतलब आप भी उनको कोस ही रहे थे।
6: देखिए अंजना
7: कह रहे थे कि वो बीजेपी से भी ज्यादा कम्युनल हो गई हैं।
6: राजनीति व्यक्तिगत संबंधों की या व्यक्तिगत वार्तालाप की नहीं होती है। राजनीति जो होती है क्षेत्रीय मुद्दों की होती है, राष्ट्रीय मुद्दों की होती है। भारत की बात जब होगी तो राष्ट्रीय मुद्दों की बात होगी। तो क्षेत्रीय दल पाकिस्तान से युद्ध लड़ना है तो फिर राष्ट्रीय दल के साथ खड़े होते हैं, लेकिन गांव में सीवर जाएगा, पानी जाएगा, गल्ला जाएगा, वो वहां पे हमें उनके मुद्दों के साथ जाना है। तो आरोप और प्रत्यारोप स्वतंत्र लोकतंत्र में एक सम्मान है, आप इसको गहने की तरफ समझिए, ना कि अपमान समझिए। मोदी जी की तरह, मोदी जी के ऊपर आप एक लाइन लिख दीजिए, कल से आपका चैनल बंद। मोदी जी से एक सवाल पूछ लीजिए, आपके घर ईडी आ जाएगी। क्या हुआ वो अग्रवाल जी का, कौन है वेदांता वाले?
1: आज तक पूछा नहीं सवाल अंजना जी,
6: मैं अंजना
1: मोदी जी सवाल नहीं पूछती।
6: अरे सुनिए,
1: आज तक बंद हुआ।
6: अरे सुनिए तो
1: भाई,
6: अरे सुनिए
1: साफ साफ सफेद
6: सुनिए तो सही।
7: अच्छा ये जजेस के साथ आज क्या हो गया, आप लोग सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं?
6: बीच में नहीं, बीच में नहीं,
7: मेरा कहने का मतलब सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं आप लोग?
5: नहीं, उनसे तो पूछना
7: है, इनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं?
5: जो कांग्रेस के साथ विभिन्न मतों वाले दल हैं उनसे ज्यादा भिन्न मतों वाले दल तो उनके साथ हैं। दोनों जो है आइडियोलॉजी नहीं देखते, जो भी साथ आ रहा है आप मिला रहे हैं तो अंतर क्या रह गया है?
8: और प्रेम शुक्ला
5: जी, भाजपा नई कांग्रेस है
6: सर, ये कॉर्पोरेट है, मैंने कहा ना, एक कॉर्पोरेट सिस्टम हो गया है।
8: प्रेम शुक्ला जी ये भी कल आप बताएं कि एक मुख्यमंत्री के नाम पे आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और उसको मुख्यमंत्री को आप राज्यसभा भेज देते हैं, एक मुख्यमंत्री के बाद में चुनाव लड़ते हैं आप महाराष्ट्र में, वो उप मुख्यमंत्री हो जाता है, ये कौन सी कला है?
1: नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ विधायक दल बाद में तय करता है मुख्यमंत्री को, जो नियम है संवैधानिक व्यवस्था ये है कि विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा।
8: विधायक दल तो करता है,
1: विधायक दल तय कर लेता है,
8: क्षेत्रीय दल जो है अपना वो क्लेम खत्म कर देते हैं।
6: इतने
1: नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री को विश्वास कितना, सोचिए ना आप, नीतीश कुमार जी को कितना विश्वास है कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री पद का दायित्व जो है वो सम्राट चौधरी को सौंपने में स्वयं का गौरव महसूस करते हैं। यही तो देखिए, इसी कहते हैं गठबंधन धर्म का निर्वाह कैसे सर्वोत्तम ढंग से हो।
7: अरे भाई ये हुनर है, आप सीखिए। आपका ये हाल है कि डीएमके वाले आपके बगल में बैठना नहीं चाह रहे हैं अब।
6: देखिए त्याग, इनके इतने महान त्याग है, कर्ण भी इतना बड़ा त्याग नहीं होगा।
7: अंजना
6: जी 10 सेकंड में बोलूंगा, मैंने सवाल की पत्रकारिता, मैंने आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आपने सवाल उठाया, आपके ऊपर बहुत लोग उंगली उठा रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कोचिंग सेंटर को आपने लपेटा है, उनके ऊपर सवाल उठाया, तो आप बधाई की पात्र है, स्वागत की पात्र है और मैं आपके साथ खड़ा हूं। दूसरी बात मैं कहूंगा, लेकिन सरकार क्या कर रही है, 90,000 स्कूल बंद कर दिए, उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर स्कूल बंद करोगे तो कोचिंग संस्थान आएंगे, इस तरीके से लूट खसोट करने वाले लोग आएंगे, तो आपने स्कूल ना बंद करिए। प्रेम शुक्ला जी,
1: कहां से आंकड़ा ले आता है, मेरी समझ में 90,000 स्कूल बंद, आंकड़ा कहां से आया?
6: पिछले 10 सालों में भारत सरकार की वेबसाइट पे देख लीजिए, शिक्षा वेबसाइट पे देख लीजिए,
1: कोई इस तरह से नहीं है। विद्यालयों की संख्या बढ़ी है।
5: शिक्षा पर बहस अंजना जी कर चुकी है, आपने उनका धन्यवाद ज्ञापन भी कर दिया है, आज हम क्षेत्रीय दलों के वजूद पर ही टिके रहे तो अच्छा।
6: नहीं बस वो मैं इसलिए गया क्योंकि मैंने कहा कि पत्रकार अगर सवाल कर ले तो मैंने कहा कि अंजना जी ने आप देश का ज्वलंत मुद्दा उठाया छात्रों का भविष्य के लिए, इसलिए उसको बधाई देना चाह रहा था।
7: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत धन्यवाद। अगले दो कंटेस्टेंट्स आइए, तो मलुक नागर जी और प्रोफेसर विजय राठी अब इस विषय पर बोलेंगे। डेढ़ डेढ़ मिनट का समय आप दोनों को मिलेगा। मलुक नागर जी, आपका डेढ़ मिनट का इस विषय पर बोलने का समय शुरू होता है अब।
9: देखिए अभी हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल के गए अंजना जी, आपने उनसे पूछा कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व क्या खतरे में है, उन्होंने कहा सभी खतरे में है। एडमिट फैक्ट है कि उन्होंने बात स्वीकार कर ली। और जहां तक एनडीए की बात है, मोदी जी के नेतृत्व में सारे छोटे दलों ने तरक्की करी है, पूरे देश में एक भी दल ऐसा नहीं है जिसने तरक्की ना करी हो। और जब प्रदेशों के चुनाव होते हैं, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां एनडीए में भाजपा और क्षेत्रीय दलों के साथ लड़ाई होती हो। और अंजना जी, एक भी प्रदेश इस पूरे देश में ऐसा नहीं है जो पहले यूपीए और पिछले कुछ दिनों में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, उसकी जितनी भी साथी पार्टियां हैं सब आपस में लड़ती हैं, टकरती हैं, टूटती हैं, भिड़ती हैं, चूर चूर होती हैं, खत्म होती हैं। और एक उदाहरण सबसे बढ़िया, इस देश की बढ़िया दलित नेता मायावती जी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, राजस्थान में 6 विधायक थे, बगैर शर्त के उन्हें तोड़ के ले गए, डांका डाल के ले गए। उत्तराखंड में सपोर्ट करती थी, उनके 3 विधायक छीन के ले गए, 7 विधायक उनके मध्य प्रदेश में थे उन्हें छीन के ले गए। इनकी सोच ये रहती है, ये सारी पार्टियां हम में से निकली हैं, क्षेत्रीय दलों को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए खुद ही खत्म हो गए हैं और खुद ही क्षेत्रीय दल बन रहे हैं। सुधरे नहीं तो इनसे भी ज्यादा इनका नुकसान भुगतना पड़ेगा। जो
7: समय समाप्त हुआ, मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। चलिए अब आपकी बारी है, आप लाल गमछा पहने हैं तो उम्मीद है कि इधर वाले भी और इधर वाले भी दोनों ताली बजाएंगे आपके लिए। आपका 1.5 मिनट का समय इस पर बोलने का प्रोफेसर साहब, शुरू होता है।
10: दोनों ही हम लोगों के अपने हैं। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेंगे लेकिन अगर इतिहास को आप उठाएं, इतिहास गवाह है कि राष्ट्रीय पार्टी हमेशा जब बढ़ती है वो क्षेत्रीय पार्टी के कंधे पे चढ़ के बढ़ती है। राष्ट्रीय पार्टी का बढ़ना ही तब होता है जब क्षेत्रीय पार्टी का कमजोर होना होता, और राष्ट्रीय पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि क्षेत्रीय पार्टी को कमजोर करें। अगर आप इतिहास उठाइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक तरीके से गठबंधन की शुरुआत की, लेकिन उस समय की भारतीय जनता पार्टी और आज देखिए, आप उत्तर से शुरू कीजिए, उत्तर से पश्चिम, पूर्व, दक्षिण कहीं चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टी को निगलने का काम किया। शिवसेना का क्या हाल है? शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए। बीजू जनता दल का क्या हाल है? नवीन पटनायक जी कहां हैं? इनके साथ थे। उसके बाद महाराष्ट्र में आए शरद पवार जी की पार्टी के क्या हाल हैं? और अभी अगर मैं पश्चिम की बात करूं, राष्ट्रीय लोकदल जिसका वोट बैंक इंटैक्ट, देखिए मेनली किसानों के नेता थे हम सबके, हमारे पूर्वज थे, लेकिन मेनली जाट प्लस मुस्लिम, अब क्या किया आपने, साथ मिला लिया। अगर वापस आएंगे तो मुस्लिम नहीं मिलने वाला, और दूसरा जाट कुछ मिलेंगे, कुछ नहीं बचा, मजबूरी है, रहना पड़ेगा। आज का सबसे लास्ट वाला जो है वो यही है कि राष्ट्रीय लोकदल भी एक तरीके से खत्म होने की कगार पे है। और उदाहरण देखिए, उड़ीसा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, पीडीपी कहां है आज? कहीं नहीं है। जितने उदाहरण हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के, बिहार देख लीजिए, रामविलास पासवान जी की पार्टी का क्या हुआ, कहां है आज वो? अगर अलग घटेंगे तो खत्म है, और किसी राज्य में जाएंगे।
7: समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा, मिडिल ऑर्डर ने दोनों तरफ से बढ़िया अच्छी बल्लेबाजी।
10: भारतीय जनता पार्टी के जो
7: कुछ सवाल, बिल्कुल प्रश्न मिलेंगे इनका, तो क्या है दोनों तरफ खुश रहते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, फिर जो सत्ता में आए थे इधर आ जाते हैं।
3: ये राठी जी से मेरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और ये सही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो ज्यादातर वोट बैंक जो लिया वो कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा लिया उन्होंने, तो आप कांग्रेस से गठबंधन भी करते हैं और आपको कांग्रेस से डर भी लगता है, तो क्या राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खतरा है?
10: नहीं देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां खतरे की बात नहीं है, बात यह है जब दोस्ती होती है तो ईमानदारी से होनी चाहिए। दोस्ती में अगर आप कुछ ऐसी चीजें शुरू करेंगे तोड़फोड़ की, तो उस चीजों पर हम लोग हमेशा सावधान रहते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, एक सवाल ये भी रहता है इसी के साथ में कि हमें तो खतरा किसी पार्टी से नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारी पार्टी का वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, और वो पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं है, दे आर कनेक्टेड इमोशनली एज वेल। अखिलेश यादव जी एक विचारधारा है, जो भी व्यक्ति उनसे मिलता है या जाता है वो पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं होता। ऐसा नहीं है 90% की सब लोगों को विधायक एमएलसी बनना, सब लोग नहीं मांगते। और राजनीति में जो भैया के नाम से मशहूर है कि भैया मिल जाए एक बार और दिख जाए या बात कर ले, वो अखिलेश यादव जी हैं। और उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो लोकल स्तर पे है, आप गांव में जाइए, गांव के प्रधान से मिलिए, बीडीसी से मिलिए, लोगों से मिलिए, वो आज भी समाजवादी में है, बहुत सारे लोग जोर लगा रहे हैं उस पर। पश्चिम में भी क्या, आप आ जाइए, वो कहते हैं हमें पसंद ही नहीं है दूसरी पार्टी, हमें जाना ही नहीं है, समाजवादी सरकार में हो या नहीं है हमें तो रहना ही नहीं के साथ है, हमें इनसे कुछ चाहिए भी नहीं। तो आने वाले टाइम में भविष्य में कोई सी पार्टी टूट जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी जिंदगी में ना टूटेगी और ना इसके कार्यकर्ता नेताओं के ये लोग अपने पास ला सकते हैं।
7: आप या
8: मैं पूछ रहा था, आपके क्षेत्रीय दलों का क्यों अस्तित्व क्यों ना खत्म हो जाए, क्योंकि आप लोगों के पास में कोई विजन नहीं रहती, एक तो विचारधारा नहीं रहती, दूसरी बात विदेश मतलब पॉलिसी का मामला हो, वित्तीय मामले हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, भाषा की बात हो, इन सब में क्षेत्रीय दल सिर्फ अपनी क्षेत्रीय सोच रहती है, उनकी राष्ट्रीय सोच ही नहीं होती।
9: जहां तक हमारी बात है, चौधरी चरण सिंह केवल एक ही देश में नेता हुआ जिसे किसानों का देवता, किसानों का मसीहा कहते हैं, और माननीय मुलायम सिंह जी ने उनका आशीर्वाद लेके शुरुआत करी। तो जो आरएलडी की बात है, जो सपा के साथी कह रहे हैं खत्म होने की, छोड़ दो, भूल जाओ, चौधरी जयंत जी के रूप में चौधरी चरण सिंह का अवतार आ गया है। और विदेश पॉलिसी पे जिस तरह चौधरी जयंत जी अंग्रेजी में बोलते हैं, विदेशों में जाके जिस तरह चौधरी जयंत जी भाषण करते हैं, विदेश नीति किसान नीति का संगम ऐसा कोई नहीं है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अब तो राजस्थान में भी हमारे एमएलए बिल्कुल कांग्रेस और समाजवादी चौकन्ने हो जाओ। मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, झंडा गाड़ देंगे पूरे देश में और यूपी से सपा और कांग्रेस को पूरी तरह उखाड़ देंगे।
10: अच्छा, हमारे जाटों से अलग थोड़ा सा
7: किसका वोट लाएंगे? मार्क्स तो इन्होंने अच्छे बना लिए, ज्यादा बढ़ाई उन्हीं की कर ली।
10: दो सेकंड,
7: एक बार एक सवाल हो जाए उस पर आप जवाब दे दीजिएगा।
5: सवाल नहीं है, अब ये दिख रहा है कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, हमको देश में घुल मिल के रहना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को भी मिल के रहना चाहिए, घुलना नहीं चाहिए। जो भी घुलते हैं ना वो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, ये सत्य है। और पर इसको स्वीकार नागर साहब करें ना करें, बशीर बद्र साहब, अभी उनका इंतकाल हो गया पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा था कि बड़े लोगों से मिलना तो हमेशा फासला रखना, जो दरिया समंदर में मिला तो दरिया नहीं रहता।
7: क्या बात है,
9: उनकी बात से ऐसा लगता है कि यूपी में सपा घुलेगी या कांग्रेस घुलेगी ये तो वक्त बताएगा। क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस है यूपी में या सपा है ये तो वक्त बताएगा, पर दोनों का धुआं उड़ने वाला
7: है। इनका एक मंत्री पद बना रहेगा।
10: दो सेकंड में एक सवाल मैं भी पूछ लूं। अगर किसी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी से अलग हो जाए तो बस मुझे ये बताइए, कुछ अगर हमसे थोड़े से उनसे उनसे अलग कौन वोट देगा आपको, एक बार बताइए सबको। अगर बीजेपी से अलग हो जाए,
9: शायद पता नहीं है, इस देश में 80% लोग किसान हैं और किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। और चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए जो किया है, मुलायम सिंह जी ने उनका आशीर्वाद लेकर के समाजवादी की शुरुआत करी है, तो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा जैन
10: अब
9: जी
10: तो किसान कानूनों की भी सपोर्ट
9: मोदी जी के नेतृत्व में साथ आकर के जिस तरह काम कर रहे हैं,
10: किसान कानूनों की सपोर्ट कर रहे हैं
9: यूपी में।
10: आप लोग कह रहे थे किसान कानूनों पे जो किसान बैठे वो भी नहीं बैठने चाहिए,
9: सुपड़ा साहब पूरे देश।
10: अच्छा, आप बोल रहे थे किसान नहीं बैठने चाहिए थे किसान कानूनों पे, अब तो आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं, उस समय कह रहे थे किसान ठीक बैठे, तो पहले आप सही थे कि अब आप सही हैं?
9: हमारे साथी प्रोफेसर हैं, ये थोड़ा उम्र में भी कच्चे हैं, इनको समझ नहीं आती है राजनीति दो तरीके से होती है। जब सरकार के साथ होते हैं तो अंदर बैठ के किसानों के हितों की रक्षा करी जाती है, और जब विपक्ष में होते हैं तो सड़क पर टकर के जूझ के भिड़ के ठोक के जब राजनीति की जाती
10: है। आपसे बोल रहा हूं मैं, बस दो सेकंड आपसे मेरा सवाल नहीं है, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग फैसला करिए।
9: चार सेकंड
10: ले लो, कहा कि जब
7: कांग्रेस से बचो
9: विपक्ष में जाएगी,
7: चार सेकंड पर
9: कांग्रेस से बचो कांग्रेस छटक जाएगी तुम्हें, कांग्रेस तुम्हारे पीछे लगी हुई है यूपी में।
3: नागर जी, अब ये तो कवाली होती रहेगी,
7: कवाली चलेगी।
3: एक मेरा सवाल है, गंभीर सवाल है, चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, अजीत सिंह जी उनके बेटे थे, जयंत चौधरी उनके वारिस हैं, और किसान 80% है देश में, लेकिन आपकी जो पार्टी है वो क्षेत्रीय से भी रह के जिले की पार्टी क्यों बन के रह गई, दो जिलों की?
9: देखिए, अगर राजस्थान में हमारा विधायक है और हमारे आज की तारीख में 11 विधायक हैं और 3 MP हैं, और उसे आप जिले की पार्टी कह रहे हो, तो मैं आपकी बात को काट तो सकता नहीं, पर आपकी बात से सहमत नहीं हूं।
7: ओफो, आज तो अलग ही फॉर्म में है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर मलुक नागर, जाइए बैठिए, आइए। बहुत अच्छा बोला प्रोफेसर साहब ने भी, दोनों के लिए जबरदस्त तालियां। अब आ रहे हैं तिवारी जी और वाजपेयी जी, आइए।
3: लेकिन अंजना जी, जो नए खिलाड़ी आते हैं आपके यहाँ, पिछले उसमें भी थे, वो कुछ नई खोज कुछ ज्यादा
7: नई खोज ज्यादा लाते हैं मलुक जी, लेकिन पुराने खिलाड़ी हैं। मलुक जी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं भाई, संसद में एकदम कूद गए थे जब ऐसी स्थिति आई। तो अरविंद वाजपेयी जी, इस विषय पर बोलने का, क्योंकि अरविंद जी आप भी पहले चिराग जी के साथ थे, अब यहाँ पर हैं, तो आपने तो सारा दुख देखा ही हुआ है, तो आप बोलिए भाई। डेढ़ मिनट आपका समय, 90 सेकंड का, शुरू हो रहा है वाजपेयी जी, अब शुरू हो रहा है वाजपेयी जी, अब
11: देखिए, डेमोक्रेसी में राजनीति करना या राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, और आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 2800 पार्टियां रजिस्टर्ड है पूरी देश।
7: शुरू हो रहा है वाजपेयी जी, अब
11: देखिए, डेमोक्रेसी में राजनीति करना या राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, और आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 2800 पार्टियां रजिस्टर्ड है पूरी देश में, और उसमें से 8 या 9 या 10 पार्टियां नेशनल पार्टियां जो रिकॉग्नाइज भी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे? क्षेत्रीय दल खत्म होंगे, राष्ट्रीय दल खत्म होंगे, ये जनता डिसाइड करेगी। जनता जनार्दन बैठी हुई है। अगर क्षेत्रीय दल की पॉलिसी अच्छी है, ये भी गलत कहना होगा कि क्षेत्रीय दल का विजन क्षेत्र तक है। नहीं, बड़े बड़े नेता हुए, मुलायम सिंह का नाम है, रामविलास पासवान का नाम है, जॉर्ज फर्नांडिस का नाम है, बहुत से नाम है। तो विजन तो सब पार्टियों का होता है, लेकिन किस पार्टी की क्या कंडक्ट रहा है और जनता के लिए उसका क्या विजन है, जनता के लिए जब वो सत्ता में आते हैं तब वो पार्टियां क्या काम करती हैं, ये देखने की बात होती है। और उसी के हिसाब से क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों को वोट मिला करता है। अब सवाल ये दूसरा है कि आज की क्या स्थिति है। देखिए, एक स्थिति तो तय है कि कांग्रेस का 88 में जब वीपी सिंह निकल के आए बाहर, तो वीपी सिंह के आने के बाद क्षेत्रीय दल की एंट्री शुरू होती है और कांग्रेस का वोट लग के क्षेत्रीय दल बने, चाहे वो लालू यादव हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हैं, चाहे बीजू पटनायक हैं, चाहे और जितने भी दल हैं, वो सब उसके बाद बने। और कितने सर्वाइव कर रहे हैं, सभी पार्टियां सर्वाइव कर रही हैं। लेकिन अब दूसरा विषय है कि गठबंधन किसके साथ है, एनडीए के साथ है या कांग्रेस के साथ
7: है? समाप्त हुआ।
11: कांग्रेस का जहां तक सवाल है,
7: जल्दी जल्दी एक लाइन,
11: कांग्रेस का जहां तक सवाल है, उनके साथ जो पार्टियां हैं, कांग्रेस उनका वोट वापस लेना चाहती है, ये सबसे बड़ी विडंबना है।
7: ठीक है,
11: तो उनके
7: ठीक है, टाइम खत्म हुआ। इनको भी दोनों तरफ का अनुभव है। चलिए, अब आरजेडी की तरफ से तिलकधारी मृत्युंजय तिवारी अब बोलेंगे 90 सेकंड के लिए, बोलिए।
12: देखिए, क्षेत्रीय दलों की अपनी अहमियत है और क्षेत्रीय दलों की अहमियत को कोई नकार नहीं सकता है, ये भी सच्चाई है। ये ठीक है कि समय के साथ साथ गठबंधन बदलते रहते हैं। जो बहुत लोग अभी एनडीए के साथ हैं, वो कभी हमारे साथ भी इंडिया गठबंधन में थे, चाहे जेडीयू हो, चाहे चिराग पासवान जी की पार्टी हो। तो इस तरह से जो परिस्थितियां देश में उत्पन्न होती है, तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी ताकत को अगर कोई नज़रअंदाज करता है तो फिर उसे मुंह की खानी पड़ती है। अगर बिहार में बीजेपी को हैसियत नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन अकेले बीजेपी चुनाव वहां नहीं लड़ सकती है। छोटे छोटे कई दल आज जिस पार्टी में वाजपेयी जी हैं, चाहे छोटे छोटे दलों को मिलाकर वो लड़ाई लड़ते हैं। आज भी राष्ट्रीय जनता दल को सीट भले हमें कम मिला हो, लेकिन 1,90,00,000 वोट बिहार में तेजस्वी जी को मिला है। तो हमारी ये ताकत है हर जगह पर। तो क्षेत्रीय दल को अगर कोई नजरअंदाज करता है तो समय और परिस्थितियों के अनुसार उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए लालू जी लगातार इस बात को लेकर के कहते रहे हैं कि सबको मिल करके संयुक्त मोर्चा बना हो, चाहे इंडिया गठबंधन बना हो, बिहार से ही बना, मिलकर लड़ेंगे तो भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। ये हमारे वोट के बिखराव का फायदा इनको मिलता है।
7: तो तिवारी जी खुद ही मान रहे हैं कि हमारा जो बिखराव है वो भाजपा को फायदा पहुंचाता है। सवाल ताओ आपसे शुरू करते हैं इस बार।
4: मैं पूछूं तिवारी, ये बताइए, ये क्षेत्रीय दल का पूरा ये परिवारवाद के इर्द गिर्द होती है, तो क्या परिवारवाद क्षेत्रीय दलों का सबसे बड़ा अभिशाप है?
12: अब तो परिवारवाद पर हमारे धुर विरोधी जो बीजेपी है उनको तो कम से कम बोलने का नैतिक बल नहीं होना चाहिए। बिहार में आपने देख लिया, लंबी फहरिस्त है ये सरकार जो बनी है अभी, उसमें जो आदरणीय नीतीश कुमार जी बोलते थे परिवारवाद पर, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे, सारे लोग कौन हैं? बीजेपी का लंबा लिस्ट है। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। हम क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय दल कांग्रेस के साथ आज लोकतंत्र को, संविधान को, देश को बचाने के लिए साथ में है, और हम हाथ और गले मिलाकर नहीं, दिल मिलाकर लड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे विरोधी हमारे ऊपर एक उंगली दिखाते हैं, तो उनके ऊपर भी चार उंगली उठ रही है परिवारवाद पर, भ्रष्टाचार पर। अब किस मुंह से वो परिवारवाद पर ज्ञान देंगे?
7: ताओ
5: नहीं, परिवारवाद पर किदवाई साहब तो भाजपा के नहीं है, यहाँ जज बन
12: भाजपा के, हम इनको नहीं बोल
5: पत्रकार हैं,
12: ये तो न्यायमूर्ति है,
5: भाजपा वाले पूछ नहीं रहे। पर देखिए, वो जो परिवारवाद होता है ना, वो होता है राजा का बेटा राजा बने तो, सिपाही का बेटा सिपाही बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, तो वो परिवारवाद नहीं कहलाता। मालिक के सत्ता का हस्तांतरण अगर उनके बच्चों में होता है तभी परिवारवाद होता है। बाकी तो फिर जर्नलिस्ट के बेटे जर्नलिस्ट बन जाए तो परिवार
13: बाकी जो भी पार्टियां हैं बिहार में आज सरकार में हैं एनडीए में आप एक एक कर सब के बारे में आप जानते भी
3: तिवारी जी जी ताऊ के बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। दो तरह के परिवारवाद है, एक है रिटेल एक होलसेल। तो रिटेल वाला तो बहुत दिखाई पड़ता है फुटकर कि उनके बेटे एमएलए के बेटे एमएलए बन गए एमपी बेटे एमपी। एक होलसेल की जो राजा का बेटा राजा बने पार्टी पूरी जो है परिवार के कब्जे में रहे।
13: आप होलसेल रिटेल की बात कर रहे हैं वहां तो एनडीए में सीएनएफ है। आप होलसेल रिटेल में कहां जा रहे हैं? आप हमारे ऊपर जो चार्ज कर रहे हैं हमारी पार्टी के ऊपर तो जनता से चुनकर आए तेजस्वी जी, जनता से चुनकर आई मीसा भारती जी, जनता से चुनकर आई तेज प्रताप जी, जनता से चुनकर आई राबड़ी देवी जी। वहां बताइए तो सदस्य भी नहीं थे सीधे शपथ ले लिया। ये कौन सा परिवारवाद का परिभाषा आप होलसेल रिटेल की बात सीएनएफ है तो इसलिए ये अब बोलने का दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है।
7: चलिए तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले दोनों गेस्ट यहाँ पर आ जाएं, मैं एक एक सवाल भी तीनों हिस्से से लेती हूँ। आइए,
14: हम तो यही कहेंगे समय का पहिया है चलता रहता है, आज आपका है कल उनका होगा परसों किनका होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। इसलिए
7: शायरी के मूड में सफेद गमछे के साथ एकदम मोक्ष प्राप्त कर चुके हो।
14: हाँ, हम तो मोक्षी हैं, नहीं न्यूट्रल ही हैं, सभी अच्छे हैं, सभी आगे बढ़े,
7: सब अच्छे हैं, सब आगे।
14: हाँ सभी हम भी आगे बढ़े।
7: सवाल तो था ही ना, लाल हिस्से से कौन बोलेगा? नहीं, बच्चों को मौका दीजिए, आप आइए बच्चे, आइए आइए आगे।
15: सर, जो आप बार बार ये पार्टी बदल रहे हैं तो आप अपने सिद्धांत के लिए बदल रहे हैं या फिर राजनीति के लिए बदल रहे हैं?
7: किससे पूछ रही हैं आप? ये दोनों अब तो रीजनल पार्टी वाले चले गए, ठीक है, वो अगले राउंड में रिबटल राउंड में आप लोग जवाब दीजिएगा। अब एक इस हिस्से से नीले हिस्से से कौन बोलेगा?
16: ये हमारे देश में है कि जो अलोकतांत्रिक पार्टी सिस्टम है, मतलब कि एक आदमी ही पार्टी बनाता है वो इसका सब कुछ है, वो देश का लोकतंत्र चला रहा है क्या? ये ठीक बात है? कम से कम पार्टी के अंदर भी तो चुनाव होने चाहिए। क्षेत्रीय पार्टी कैसे बनती है? वो तो मतलब एक एक इंसान के उस पर है कि उसका एक पार्टी से नहीं दिल भरा तो उसने अपनी पार्टी बना ली और बाद में वही पार्टी का होलसेल रहता है, चेंज नहीं होती वो पार्टी।
7: रीजनल पार्टीज तो ऐसे ही है ज्यादातर, अगर आप देखिए तो उनमें एक परिवार का पार्टी जो है ना वो पार्टी उनकी हो जाती है, परिवार लिमिटेड नहीं। धीरे से तिवारी जी मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या बोलें? अब हम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तिवारी जी भी अध्यक्ष बनेंगे अपनी पार्टी। आपका एक मिनट का रिबटल टाइम शुरू होता है शुक्ला जी। अब
1: देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है क्षेत्रीय दलों के विस्तार को बढ़ाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी जितने साथी रहे उनका विकास हुआ। बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस की साथी थी, बहुजन समाज पार्टी समाप्त। टीएमसी साथी थी, टीएमसी विखंडन के दौर पर। कम्युनिस्ट पार्टी उनके बहुत साथी थे, 2004 की सरकार उनके कारण थी, कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से साफ। डीएमके इनके साथी थे, डीएमके का बंटाधार, शरद पवार की पार्टी का बंटाधार, उद्धव ठाकरे की पार्टी का बंटाधार। और जो समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी तो भाई 2009 तक, भाई 2006 में श्रीमती सोनिया गांधी ने क्यों त्यागपत्र दिया था? क्योंकि मुलायम सिंह यादव के यहां से जो है हमले हो रहे थे और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस, विश्वनाथ चतुर्वेदी कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता और हैदरगढ़ से कांग्रेस का प्रत्याशी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के खिलाफ उसने जो है बेहिसाबी संपत्ति का मामला दर्ज कराया और सीबीआई के डंडा चलवाए। ये साथी हैं, गजब के भाई हैं।
7: समय समाप्त हुआ, जबरदस्त। अब आप मोर्चा संभालिए रिबटल राउंड में, आपका एक मिनट का समय शुरू होता है।
6: देखिए अंजना जी, यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता, सॉरी इनसे पहले जो नागर जी और वाजपेयी जी थे, उन्होंने कांग्रेस को बहुत बार प्यार से बुलाया कि कांग्रेस है कांग्रेस। मैं इनको एक बात बोलना चाहता हूँ, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो रण से भागे हैं या प्रण से प्रण को तोड़ा है, सत्ता की खातिर एक बता देंगे। बात आज ये है कि कांग्रेस वर्सेस और बीजेपी का नहीं है, बात आज है कि राष्ट्रीय दलों के साथ क्षेत्रीय दलों का संवाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूं ये लोकतंत्र है, जितना ज्यादा विकल्प रहेगा उतना ज्यादा अच्छे रहेंगे। कल को अगर ये ऑप्शन दिया जाए देश में दो ही चैनल होने चाहिए, सारे पत्रकारों की काम धंधा चौपट कर दो, तो क्या कहां जाएगा देश? सारे पत्रकार, सारे चैनल, सारे मीडिया, सब कुछ होना चाहिए इस देश में। जितने ज्यादा दल होंगे उतने ज्यादा आपके लिए ऑप्शंस होंगे। बात है कि भाजपा का एकाधिकार करना चाहती है, सत्ता के केंद्र में रहना चाहती है, किसानों के ऊपर कब्जा चाहती है, व्यापारियों के ऊपर कब्जा चाहती है, छात्रों के ऊपर कब्जा चाहती है। तो जो कब्जा करने की मानसिकता है उसका एक ही जवाब है कि सारे क्षेत्रीय दलों को अपने लिए लड़ना होगा, खड़े होना होगा।
7: दोनों ने धमाकेदार तरीके से जवाब दिया, आप दोनों जाइए। अब दोनों जाइए, अगले दोनों कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं। आइए नागर जी, आइए, पिच तैयार है, फिर से आइए। प्रोफेसर साहब आप इधर आइए। अब रिबाटल राउंड में कुछ सवाल अगर आपका है स्पेसिफिक इनसे, विनोद जी आप पूछ नहीं पाते, पूछिए राशिद जी।
8: प्रोफेसर राठी साहब, ये बताएंगे आप, ये जो कॉकरोच जनता दल है, ये राष्ट्रीय जनता पार्टी जो है, ये राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय है?
7: अभी क्या बताएं उसके, मतलब अभी तो सबको समझ में
17: ऐसा है।
7: एक साथ रिबाटल राउंड में 60 सेकंड्स आपका शुरू होता है। आप
9: देखिए, जो हमारे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल करके गए हैं आरएलडी के बारे में और हमारे बारे में, तो इससे ये तो बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि वो भी मानते हैं कि हम मजबूत स्थिति में हैं और हम आने वाले समय में मजबूत रहेंगे और हमें कोई खतरा नहीं है कांग्रेस की बात से, जिस तरह उन्होंने पलटवार हम पे करा। जहां तक बात कांग्रेस की है, ये खुद कन्फ्यूजन, 3 साल तक अध्यक्ष नहीं रहा इनका, वहां पे हमारे साथ पार्लियामेंट में एलओपी राष्ट्र की पत्नी बोलता था महामहिम राष्ट्रपति को, और जिस दिन खड़गे साहब बने सनातन धर्म के खिलाफ बोले, इनके नेता क्या क्या बयान देते हैं, इनमें ग्रुप G23 बने, इनमें कोई प्रियंका गांधी जी को नेता कहते हैं, कुछ राहुल गांधी जी को नेता कहते हैं। जिस भी प्रदेश में लड़ाई होती है ये क्षेत्रीय दल से लड़ते हैं, एनडीए से लड़ते ही नहीं है, और यही कारण है 8.5% में सुकड़ के रह गए हैं और इनका बिल्कुल कोई भी अब साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो कह रहे थे छोड़ के, अरे नीतीश जी छोड़ के चले गए, आपके बस का ही नहीं है, आज भी सो कॉल्ड इंडिया बिखर रहा है, टूट रहा है, जुड़ रहा है, तुम्हें रह के करें क्या?
7: चलिए आपका समय शुरू होता है, 1 मिनट का। अब
10: देखिए ऐसा है कि सीधा सीधा क्लियर कट अगर बोले कि राष्ट्रीय पार्टी बढ़िया है रीजनल पार्टी, इसका कोई जवाब नहीं है। राजनीतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी की भी अच्छाइयां हैं और उसकी भी कमियां हैं, और रीजनल पार्टी की भी अच्छाइयां और उसकी कमियां हैं। हमें देखना है होता है कि कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, और जो अभी कॉकरोच पार्टी की जिसकी बात कर रहे थे, ये एक सेंटीमेंट से, ये इमोशन से उन लोगों के बीच में, अभी मैं देख रहा था परसों फिर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है लेटर लिख के कि मैं दोबारा से नीट का एग्जाम नहीं दे सकती। इस पर चर्चा ही नहीं है देश में। देश में चर्चा किस चीज पे है? चर्चा उस चीज पे है जो पढ़ाई से बिल्कुल अलग है। बीजेपी के कोई नेता आप देख लो, मैं ये नहीं कह रहा कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन ये तो सच बात है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पढ़ाई की बात ही नहीं करते, कोई थ्योरी की बात ही नहीं करते, ना फिजिक्स की बात है, ना केमिस्ट्री की बात है, ना बायोलॉजी की बात है, ना इकोनॉमिक्स की बात है, ना ज्योग्राफी की बात है, कोई बात ही नहीं है। बात सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रही है, इसी से जीविका चलती है क्या? मैं तो देखता हूँ घर में जब भी हम लोग जाते हैं लोगों के, वो पढ़ाई की नौकरी की बात करते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता है नौकरी और पढ़ाई, और उस पर समाजवादी पार्टी ने काम किया है और हम लोग करेंगे, इसलिए रीजनल पार्टी यूपी में बढ़िया।
7: बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी दो पार्टिसिपेंट जल्दी से आ जाइए, तिवारी जी और वाजपेयी जी। वाजपेयी जी आपका रिबटल राउंड में 1 मिनट का समय इस विषय पर बोलने का, और जितने सवाल बच्चों के भी आए हैं उन्होंने भी पार्टी को लेकर पूछा है, कई चीजों पर कहा है, और इनके भी सवाल हैं, उन सब पर जवाब देने का आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है।
11: देखिए मेरा जो मैंने पहले कहा उसी बात पे स्टैंड करता हूँ कि सवाल क्षेत्रीय पार्टियों के सर्वाइवल का नहीं है, सवाल इस बात का है कि गठबंधन कौन सा सर्वाइव कर रहा है, गठबंधन कौन सा देश की जनता की सेवा कर रहा है, या किसके गठबंधन में पार्टियां ज्यादा सेफ है। तो ये बड़ा साफ है कि कांग्रेस अपने गठबंधन को ना बचा पा रही है ना चला पा रही है, और आपस में ही लड़े जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस की अपनी समस्या है, कांग्रेस का वोट रीजनल पार्टियां ले गई थी 88 में, उसको वापस लेने की इनकी जो मुश्किल है और जो इनकी इच्छा है उसकी वजह से इनका गठबंधन सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। इसीलिए इनकी गठबंधन में कभी कोई मीटिंग नहीं होती, कभी कोई पार्टी की बात नहीं होती, कभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता, कभी सीट एडजस्टमेंट नहीं होती। और दूसरी तरफ हमारा गठबंधन एनडीए का है, हम लोगों ने सर्वमान्य नेता माना है मोदी जी को, कहीं किसी तरह का कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। जो गठबंधन की पार्टियां हैं आपस में सीट एडजस्टमेंट करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, जीत के आती हैं, तो हम लोगों का भविष्य सर्वथा सुरक्षित है, ये मान के चलना।
7: समय समाप्त हुआ, बहुत अच्छा, चलिए आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है।
12: देखिए गठबंधन आज समय का मांग है, और हमारा गठबंधन जो है वो देश हित में लड़ रहा है, लेकिन बीजेपी का तो गठबंधन असली चुनाव आयोग से है। अब क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की मंशा बीजेपी पालकर रखी हुई है, और हर एक क्षेत्रीय दल के नेता इस बात की आशंका से जूझ रहे हैं कि आज न कल बीजेपी उन्हें खा लेगी। चाहे बहुत सारे उदाहरण हैं, बीजेपी नहीं चाहती है कि क्षेत्रीय दल का अस्तित्व बचे, लेकिन जनता सब देख रही है। आज समय जब परिवर्तन होगा, समय जब बदलेगा,
13: तो जिस तरह से जनता का जनसैलाब आएगा तो फिर पता चल जाएगा बीजेपी को भी। आज बिहार में ही देख लीजिए, छोटे छोटे दलों को लेकर के बीजेपी गठबंधन कर रही है। और एक समय था 2020 के चुनाव में जेडीयू को 41 पर ला दिया, खड़ा कर दिया, किस तरह से किया बीजेपी ने। तो बीजेपी अपने ही सहयोगियों को नहीं रहने देगी अस्तित्व में, ये तय है।
7: समय समाप्त हुआ, बहुत अच्छा। अच्छा अब आप लोग दोनों यहीं खड़े रहिए, आप में से कोई ऐसा है जो गमछा बदलना चाहता है? अगर आपके पास ये मौका है, अगर आपको गमछा बदलना है तो आप लाल या सफेद ले सकते हैं। और आप सफेद वालों के लिए भी ऑप्शन है, लाल वालों के लिए भी ऑप्शन है। इधर वाले बुला रहे हैं आपको, आप सफेद लेना चाहते हैं? ठीक है, लीजिए सफेद गमछा लीजिए। इधर है सर, आइए सर गमछा लीजिए। और भी जितनों को लेना है घबराइए मत, आप लोग ले सकते हैं, इधर से उधर से बीच से सफेद वाले गमछा लीजिए। सब शांति प्रिय हो रहे हैं भाई, सफेद की तरफ ज्यादा लोग जा रहे हैं। कितने लोगों ने सफेद गमछा लिया? ये लीजिए, ये सफेद वाले जा रहे हैं उधर लाल गमछा लेने। इतने गुस्से में काहे ले रहे हैं? चलिए तो कितने लोगों ने बदल कर लाल गमछा लिया है? दो लोग। आपने भी मैम बदल कर लिया? हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा दीजिए जिन्होंने बदल कर लाल गमछा लिया है। अच्छा आपने भी? तीन लोग। और कितने लोगों ने सफेद गमछा ले लिया है? भाई ये मेरे शो में पहली बार हो रहा है कि सफेद गमछे वाले ज्यादा लोग आ जाए हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स देखकर कहा कि हो गया यार।
8: अंजना क्षेत्रीय दलों का असर है,
7: हो गया
3: अंजना जी।
8: हाँ। ये क्षेत्रीय दलों की कामयाबी
3: आशंका है, कहीं कह नहीं सकते जीत जाए इस बार।
7: हाँ।
13: क्षेत्रीय दलों की कामयाबी
7: इतना तो नहीं होगा, इतना तो नहीं होगा, लेकिन अभी भी काफी संख्या में लाल और नीले गमछे वाले हैं। तो आप तीन दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत अच्छा बोला। और अब मौका है जब हमारे तमाम दर्शक जो घर पर भी इस शो को देख रहे हैं, आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको जो QR कोड दिख रहा है उसको स्कैन करके आप अपना वोट डाल सकते हैं। और इस बीच जितनी ऑडियंस यहां पर है आप भी फटाफट आपके सामने जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए। क्या क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है? अगर आप मानते हैं हाँ तो आप टीम प्रेम शुक्ला के लिए वोट करेंगे, अगर आप हाँ पर क्लिक करते हैं। अगर आप मानते हैं नहीं तो आप टीम दीपक झा के लिए वोट करेंगे नहीं पर। और कह नहीं सकते वालों को तो सफेद पंछी बनके कह नहीं सकते पर वोट डाल ही देना चाहिए। तो अब इस विषय पर वोटिंग करने के लिए वोटिंग लाइन्स हम खोल रहे हैं, 60 सेकंड का आपको समय मिलेगा, आप वोट डाल सकते हैं। क्या क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में? हाँ अगर प्रेम शुक्ला की टीम को आप वोट करना चाहते हैं, नहीं अगर आप दीपक झा की टीम को वोट करना चाहते हैं, और अगर आप स्वच्छ वातावरण में आजाद पंछी बनकर रहना चाहते हैं तो कह नहीं सकते पर आप अपना वोट डाल सकते हैं। आपका वोटिंग का समय शुरू होता है अब। पूरे 60 सेकंड आपको मिलेंगे और नहीं वाले अभी 35% हैं, हाँ वाले आगे बढ़ गए हैं 45 पर। कह नहीं सकते वाले इस बार लगता है मुझे ईमानदारी से वोट डाल रहे हैं, वरना लोग पहन लेते हैं सफेद गमछा, अंदर अंदर वोट डाल देते हैं एक तरफ। 19-20% कहा जा सकता है जितने लोग दिख रहे हैं यहाँ सफेद गमछे में, हाँ वो कायम है अपने कह नहीं सकते पर। 24%, 40% हैं हाँ वाले, अब 39 हो गए हैं और 38 मामला बहुत करीब आ चुका है, 38-37 का 40 और 37 फिर हो गया है। क्या क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है? 40% कह रहे हैं हाँ, 37% कह रहे हैं नहीं, फिर मामला करीब का आ गया है, 39-39, 40-38 मामला करीब का आ रहा है। झाजी मुस्कुरा रहे हैं कि हर बार तो बड़े परेशान होते हैं हम लोग, इस बार थोड़ा मामला टक्कर का है। हालांकि आपके लिए बहुत खुशी की बात नहीं है, आपको लड़ना है उन्हीं से है क्योंकि उनके स्पेस में ही लड़ाई है। बहरहाल 43% कह रहे हैं हाँ, 37% कह रहे हैं नहीं, 20%। और इसी के साथ समय समाप्त हुआ, तालियों के साथ टीम प्रेम शुक्ला जीत गई है। टीम प्रेम शुक्ला मलुक नागर जी और अरविंद वाजपेयी जी जीत गए हैं भाई, ये वाली टीम जीत गई है, तो आप लोग ताली बजा लीजिए अपने लिए। और वहीं दूसरी टीम भी, अब देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए वाजपेयी जी सबसे हाथ मिला रहे हैं, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। और अब वो समय है जब बहसबाजी कर बताया जाएगा। अब तीनों जजेस पर कैमरा डाल दीजिए।
3: तो हम लोगों ने जो तय किया है वो बड़ा दिलचस्प नाम है, पिछली बार भी अंजना जी आपकी अपने शो में जो है जो हम लोगों ने जिस तरह से तय किया था कि जो नई खोज होती है ना,
7: हाँ।
3: वो कुछ आजकल ज्यादा ही अच्छी हो रही है।
7: हाँ।
3: लीजिए बाकी
5: चुनाव देखिए, किसी भी चुनाव का चैलेंज ये होता है कि जिनका मन बना हुआ है, जो पार्टी के डेडिकेटेड लोग हैं, वो तो बदलेंगे नहीं। मामला होता है फैन सिटर को बदलने का, अपनी तरफ लाने का। आज पहला ऐसा चुनाव है जहां डेडिकेटेड लोग फैन सिटर हो गए हैं।
7: हम सही बात कही आपने, पहली बार ऐसा हुआ है।
5: हाँ, कि लोग जो है व्हाइट वाले को बदलना था, व्हाइट यहाँ पे लोगों ने ले लिया।
7: हाँ।
5: तो एक तरह से कहिए कि डिबेट जो है वो असफल रहा है ना, चुनाव में, चुनाव में सारे नेता हारे,
8: एजेंसीज का दबाव भी तो नहीं था।
5: खैर अगर देखिए चुनाव का जो निर्णय है वो शुक्ला जी के पक्ष में गया, पर मामला दीपक झा जी के पक्ष में गया, क्योंकि कम लोग मानते हैं कि खतरे में नहीं है।
7: हाँ।
5: हैं खतरे में, वो ज्यादा लोग मान रहे हैं।
7: हाँ। पर आज का बहसबाजीगर कुछ बात, हाँ, मतलब इसीलिए हमें बहस
5: बाजीगर चुनने में जो है तकलीफ नहीं हुई। आज जो है हमारे जिन्होंने डेब्यू किया यहाँ पे, प्रोफेसर विजय राठी,
7: प्रोफेसर राठी बहुत अच्छा विषय पर रहे, बहुत अच्छा बोले, बहुत बहुत बधाई आपको। इसी के साथ बहसबाजीगर में आज के लेते हैं, अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात, देखते रहिए आज का।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तो आया है तो मैं निभा रहा हूँ उसे अच्छे ढंग से कर।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तो आया है तो मैं निभा रहा हूँ उसे अच्छे ढंग से करना ही मेरा मकसद रहता है। अगर आप अच्छे निर्णय और सही समय पर निर्णय करते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं इसका एक उदाहरण है।
3: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
14: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
15: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
16: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
17: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
18: ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
16: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।

बंगाल में अब मदरसों की हकीकत कागजों पर उतरेगी। कौन चला रहा है, किस नियम के तहत चला रहा है और किसके पास क्या दस्तावेज है। शुभेंदु सरकार ने जिला प्रशासन को 5 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बंगाल में मदरसों के सर्वे के लिए 8 सवाल तैयार किए गए हैं। मदरसे की लोकेशन, स्थापना का वर्ष, रजिस्ट्रेशन की जानकारी, वैध दस्तावेजों की स्थिति, छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की जानकारी, आवासीय या गैर आवासीय, सरकारी सहायता प्राप्त या निजी, पढ़ाए जाने वाले कोर्स। क्योंकि बंगाल में मदरसे सिर्फ शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि दशकों से राजनीतिक बहस का हिस्सा भी रहे हैं। बंगाल में मदरसे बरसों से वोट बैंक, पहचान और तुष्टिकरण की बहस के केंद्र में रहा है। चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, महाजंगल राज के साथ इन मुद्दों को बीजेपी ने जमकर उछाला, ममता सरकार को घेरा, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खूब मिला। पहली बार बीजेपी की बंगाल में सरकार बन पाई। अब जब मदरसों का राज्यव्यापी सर्वे शुरू हुआ है तो बीजेपी इसे अपने पुराने राजनीतिक अभियान से जोड़कर पेश कर सकती है और कह सकती है कि जिन सवालों को उसकी पार्टी चुनावी मंचों से उठाती रही, आज उन्हीं सवालों के जवाब सरकार खुद तलाश रही है। बीजेपी दावा करती है कि पश्चिम बंगाल में 2011 से पहले 2100 मदरसे थे, 2011 से 2026 बांग्लादेश सीमा के पास 35,000 से ज्यादा वैध और अवैध मदरसे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को सीएम पद की शपथ ली थी। 11 मई को अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 121 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंपी और 45 दिनों के भीतर 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने का फैसला किया। स्कूलों की असेंबली में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया, गो हत्या पर सख्ती दिखाई, इमामों और पुरोहितों। ये सर्वे ऐसे समय में हो रहा है जब ममता बनर्जी सरकार से बाहर है, उनकी पार्टी तृणमूल तृण तृण हो गई है, रोज टीएमसी में विवाद बढ़ रहे हैं और उनके वोट बैंक पर बीजेपी ने सीधा हमला किया है। यानी बंगाल में अब मदरसों की फाइलें खुलेंगी, लेकिन इसके साथ ही खुल जाएगी राजनीति की एक नई किताब। क्योंकि जिस राज्य में धर्म और राजनीति की रेखाएं अक्सर एक दूसरे को काटती रही हूं, वहां मदरसों का सर्वे सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं माना जाएगा बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। आज तक ब्यूरो।

0: उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है। एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुरमत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्हीं आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं है, टीएमसी के नेताओं पर लोगों का आक्रोश ऐसा फूट रहा है कि वो जहां भी दिखते हैं उन पर अंडे टमाटर बरसाए जा रहे हैं। टीएमसी के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ गए।
0: पुलिस थाने के बाहर टीएमसी के नेता पर अंडे बरस रहे हैं। नाराज लोग सैकड़ों की तादाद में अंडे बरसा रहे हैं। पुलिस वाले टीएमसी नेता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर लोग लगातार अंडे फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता को निशाना बनाया जा रहा है। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी। आज जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर पुलिस ले जा रही थी, तभी अटैक हुआ। टीएमसी नेताओं पर हो रही कार्रवाई की दूसरी तस्वीर देखिए। साड़ी के गट्ठर के नीचे टीएमसी नेता छिपने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस ने खोज निकाला। ये चौंकाने वाली घटना हावड़ा के उदय नारायणपुर के बिलासपुर इलाके में हुई। पुलिस की कार्रवाई और टीएमसी नेता के छिपने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम ब्रह्मानंद चक्रवर्ती है, जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता है। स्थानीय लोगों ने उस पर हाउसिंग स्कीम के फंड से कट मनी यानी अवैध कमीशन लेने का आरोप लगाया है। जब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, तो पुलिस उसे खोजने पहुंच गई। तभी वो गिरफ्तारी के डर से एक कपड़ा दुकान के स्टोर रूम में साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गया। हालांकि पुलिस ने इसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। शुभेंदु सरकार के आने के बाद टीएमसी के दागी नेताओं पर धुआंधार कार्रवाई हो रही है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
1: टीएमसी के नेताओं पर लोगों के हमले के अब वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कहीं पर टीएमसी नेता को घसीटा जा रहा है, कहीं पर लोग हमला कर रहे हैं।
0: टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर जोरदार हमला हुआ। नाराज लोग मदन मित्रा पर अंडे फेंक रहे हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी पहुंचे थे। वहीं नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक तस्वीर हुगली से भी आई है, जहां भीड़ टीएमसी के नेता को सड़क पर खींचते हुए थाने तक ले गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गमछा पहने तृणमूल नेता तपस चक्रवर्ती को लोग खींचकर थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी का दावा है कि कई भ्रष्टाचार और तोलाबाजी के मामलों में इस नेता का नाम सामने आया था। वेस्ट मिदनापुर में पुलिस ने टीएमसी के एक और नेता को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक सुजोय हाजरा की गिरफ्तारी जबरन उगाही और जमीन घोटाले में की गई है। उधर उत्तर 24 परगना जिले के गोपाल नगर में टीएमसी ट्रेड यूनियन के नेता कथित तौर पर कट मनी के नाम पर लिए पैसे वापस करते दिखे। इन्होंने टोटो ड्राइवरों से ये अवैध वसूली की थी।

0: उधर लंबी पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपी पार्षद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मामला 2023 के पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है जिसमें जसीमुद्दीन आरोपी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद से टीएमसी के दागियों में खलबली मची हुई है। हुगली से पार्था राहा तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
1: अब इस बीच कांग्रेस की ओर से टीएमसी पर निशाना साधा गया। कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए चोरी की थी तो कार्रवाई तो होगी।
2: अगर तृणमूल पार्टी सबाय जानता है वेस्ट बंगाल का साथ बहुत अन्याय काम किया, बहुत चोरी किया, अभी से नहीं दो पार्टी पावर आने का 2011 साल आने का बाद आप लोग जानता है वो सब। एक तो सैम कंडो का नाम है, उसका बाद टीचर स्कैम था, उसका बाद कितना स्कैम आदमी से कब से, ये नया चीज नहीं है।
1: की हार के बाद बंगाल में प्रहार तो हो ही रहा है मगर अब विपक्ष में हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी के सामने कैसे रणनीति बनाए जाए इसे लेकर गठबंधन इंडिया दिल्ली में अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की। लेकिन इस तरह बीजेपी कह रहे हैं कि गठबंधन इंडिया के इस बैठक का कोई भी असर पड़ने वाला ही नहीं है क्योंकि ये सब लोग हताश हैं।
3: इसमें कोई जाने वाला नहीं और इसमें कोई आदमी को फर्क भी होने वाला नहीं है। देश को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है इन लोग का गठबंधन से। सब अचड़ा कचड़ा लेके ये गठबंधन बना है। रिजेक्टेड पर्सन सब है, समाज जिसको एकदम रिजेक्ट कर दिया है उन लोग एक साथ बैठ के कुछ खाना उना खाएंगे। इतना घोटाला किया इस सब पैसा थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा, उसी का व्यवस्था है और कुछ नहीं है।
1: अब एक बड़ी खबर आपको देते हैं। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष मित्रव्रत बनर्जी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में दावा किया है। मित्रव्रत ने कहा है कि कई टीएमसी सांसद उनके संपर्क में। मित्रव्रत ने कहा है कि मैं टीएमसी सांसदों से लगातार बात कर रहा हूं। ये बातचीत भी एक्सक्लूसिव बातचीत भी थोड़ी देर बाद आज तक पर आपको दिखाई जाएगी। बनर्जी बड़ा दावा कर रहे हैं, टीएमसी में पहले बड़ी टूट दिखाई दे रहे हैं लेकिन अब सांसदों के संदर्भ में बहुत बड़ा दावा ऋतुव्रत बनर्जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टीएमसी के कई सांसद मेरे संपर्क में हैं, यानी कि उनका एक एक बयान ममता बनर्जी की मुश्किलों को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। आज संभल में दूसरे दिन भी मस्जिद पर बुलडोजर चला और बुलडोजर एक्शन के बाद से समाजवादी पार्टी अब सरकार पर हमलावर है। बुलडोजर पर जोरदार सियासत भी चल रही है।
0: गरज रहा है बाबा का बुलडोजर और जमींदोज हो रहा है अवैध निर्माण। तस्वीरें संभल की। संभल में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। मेहराबें गिराई जा रही हैं, मीनारें ढहाई जा रही हैं।
4: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही थी। और इसी तरह से जो लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहां पर लगातार जो जारी है। और इसी के साथ देखिए ठीक आपको मैं पीछे अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप जो देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर जो बनी हुई है। यहां पर आप ये बुलडोजर आपको मशीनों में जो है नजर आएंगे और देखिए किस तरीके से जो यहां पर बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें हैं वो लगातार यहां पर जो है मौके पर मौजूद है।
0: ये मस्जिद 120 वर्ग मीटर में बनी हुई थी।
5: ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है।
0: अब इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी की सियासत सुलग रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है।
6: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर ही काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जाकर के कोई स्टे वगैरह ले सके।
0: 27 के समर में अभी समय है, मगर यूपी की सियासत में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
1: अगली खबर काशी से, जहां पर तय किया गया है कि महादेव की नगरी में शहर के भीतर मांस मछली की दुकानें शहर के बाहर शिफ्ट की जाएंगे और इसके लिए बकायदा जगह भी तय की जा चुकी है। फैसला लिया गया है कि शहर के भीतर मीट मांस मछली बेची ही नहीं जाएगी।

0: वाराणसी में बटर चिकन और मटन कोरमा के शौकीनों को झटका लगा है। रोगन जोश और फिश करी खाने वालों के स्वाद पर भी संकट गहराया है, क्योंकि आदेश ऐसा आया है कि वाराणसी में शहर के भीतर मीट मांस मछली की दुकानें हटाई जाएंगी। तय किया गया है कि शहर के बाहर 5 जगह चिन्हित की जाएंगी और वहां दुकानें बनवाई जाएंगी, ताकि दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट कर सके।
1: मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। बकासी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है। 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए।
0: बता दें कि सदन में पार्षद गुलशन अली ने मीट मांस की दुकानों को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव दिया था। अब इस पर अमल हुआ है तो मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले को गैर मुनासिब बता रहे हैं।
2: हम ये समझते हैं कि फैसला गैर मुनासिब है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट डेटा अराउंड 70% जो आवाम है नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी 70% आवाम नॉन वेजिटेरियन है। तो जितनी दूर आप इन दुकानों को करेंगे उतनी ही ज्यादा गरानी में इजाफा होगा, कस्टमर्स को जहमत होगी, बिजनेस पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा।
0: लेकिन शिया धर्मगुरु ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और एक नई मांग करते हैं।
3: जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं, उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए। ये गांजा का ठेके जो है ये भी हटना चाहिए। किसी भी तरीके के ये जो गलत खाम के अड्डे हैं, ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहाँ तीर्थ स्थल है।
0: अब यूपी में स्वाद पर सियासत हो रही है, जिसके केंद्र में हिंदुत्व की राजनीति के बीज छिपे हैं। रोशन कुमार, वाराणसी आज तक।
4: आर्म्स एक्ट के केस दर्ज होने के बाद से पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची, वहां पर फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की गई।

0: सेट में केस, गिरफ्तारी का संकट और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर पर आ गई है। खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान की कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गयी।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है।
0: जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। अगर जल्द ही इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, यहां तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है।
1: ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, चूंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं।
0: इस एक्शन के एक दिन बाद ही फायर डिपार्टमेंट की टीम फिर ऑडिट करने फैजल खान की कोचिंग पहुंची और पूरे सेंटर का मुआयना किया। फैजल खान पर पहले ही आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होने के बाद वो संकट में घिरे हुए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की अब तैयारी है।
2: फिर लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंसर्ट कर दिया गया है FIR में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा।
0: कुल मिलाकर फैजल खान संकट में है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।
3: अब बात पुणे की, जहां रेव पार्टी चल रही थी और पुलिस ने खुद इस बात का खुलासा किया है। तुलापुर इलाके में एक आलिशान बंगले में रेव पार्टी चल रही थी, इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, छापा मारा। छापेमारी के दौरान मौके से पुलिस ने कई युवक और युवतियों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक पार्टी में 156 लोग मौजूद थे, इनमें 107 पुरुष और 49 महिलाएं थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि बंगले में देर रात तक तेज संगीत, शराब और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों के साथ एक हाई प्रोफाइल पार्टी आयोजित की गई थी। इस खबर पर पुलिस ने बंगले को चारों तरफ से घेरा और अचानक छापेमारी की और छापा पड़ते ही पार्टी में मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। कुछ लोगों ने इस मौके से भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस पार्टी के लिए प्राप्त शराब पर उसने की अनुमति, लिकर परमिट 6 जून 2026 की रात 11:30 बजे तक ही थी, यानी कि 11:30 बजे तक के लिए वैध थी, जबकि इसके बाद भी कार्यक्रम जारी था। पुलिस को छापेमारी के दौरान गांजा भी बरामद हुआ है। इसके अलावा 3 हुक्का पॉट, 10 प्रतिबंधित हुक्का फ्लेवर्स जब्त किए गए हैं। बंगले से लगभग 9,22,000 रुपए की शराब बरामद की गई है और इस कार्रवाई में कुल जब्त सामग्री की कीमत लगभग 85 लाख रुपए बताई जा रही है। बात अब महंगाई की, महंगाई की एक और मार आम जनता को पड़ी है। आज घरेलू गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है।
0: फिर पड़ी है महंगाई की मार, फिर बिगड़ेगा किचन का बजट, फिर से कटी है आम आदमी की जेब। जी हाँ, आज फिर से घरेलू गैस LPG के दाम में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में अब 14 किलो 300 ग्राम वाला गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 का हो गया है। इसके पहले भी गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था। 3 महीने में दूसरी बार LPG के दाम बढ़े हैं। 7 मार्च को LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। 3 महीने में घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हुआ है। गैस के दाम बढ़े तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घरेलू LPG दामों में आग की लपटें आम आदमी की रसोई को भस्म करने पर तुली हुई है।
4: महंगाई की मार गरीब पे जो पड़ती है ना, वो उसका ऐसा साइन हो नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी मार होती है कि पेट्रोल डीजल के साथ में गैस के बराबर LPG का दाम बढ़ता ही जा रहा है।
0: विपक्ष सरकार पर हमलावर है मगर सरकार कह रही है कि दुनिया में सबसे कम कीमत पर कुकिंग गैस हमारे ही देश में मिलती है। अब गैस पर सियासी गदर है। आज तक ब्यूरो।
3: बात अब क्रिकेट की भी कर लेते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत ने शिकंजा कस दिया है। पहली पारी में पहाड़ सा स्कोर खड़ा करने के बाद अफगानिस्तान की आधी टीम को टीम इंडिया ने 113 रनों पर पवेलियन लौटा दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं दूसरे दिन का पूरा एक्शन।
0: टेस्ट में शानदार जीत की ओर बढ़े भारत के कदम। गेंदबाजी के बाद अब बल्लेबाजी में निकला अफगानिस्तान का दम। सीरीज के इकलौते टेस्ट की पहली पारी में अफगानिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है और उसके रन बने हैं सिर्फ 113। अभी भी वो भारत से 451 रन पीछे है, यानी पारी की हार का खतरा दूसरे ही दिन मंडराने लगा है और इसका सहरा बंधा मानव सुथार के सिर पर, जिन्होंने डेब्यू टेस्ट में 3 शिकार कर डाले हैं। पहली पारी में 564 रन बनाए टीम इंडिया ने, शानदार शतक जमाए गिल और राहुल ने, अर्धशतक जमाए ऋषभ, साई और सुंदर ने। टीम इंडिया ने पहली ही पारी में इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है ताकि उसे दूसरी पारी खेलने की जरूरत ही ना पड़े। साई के बाद ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर ने भी हाफ सेंचुरी जमाई, जिसे भी मौका मिला रन बरसाने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव एक बार फिर समुद्र में टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर उकसावे वाली कार्रवाई के आरोप लगाए हैं और ईरान ने चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने कहा कि उसने ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं।

0: एक बार फिर अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव की स्थिति बन रही है। एक बार फिर हॉर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। दोनों ओर से हुए हमलों के बाद टकराव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गई। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पशुपेश में डाल दिया है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहा। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब हॉर्मुज पर नया मोर्चा खुल गया है, जिससे दोनों देशों में जंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
1: Oh no, बहुत बोर लग रहा है.
2: Take a date, not bites.
3: No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया. Lion Dates Nut Bites.
2: Lion Date Nut Bites.
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cool Stylish Fans. Enhance home decor with beautiful fans.
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
3: समर कूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े समर कूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल
0: हिंट बड़े आराम से विमल बोलो जुबा केसरी
1: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
4: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर ये है खबरें सात तक देखते रहिए आज तक
5: शेयर बाजार जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है कौन सी सोच कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिजटेक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है जानेंगे उनकी जर्नी बड़े फैसले निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच मनी मेकर्स बाजार के बड़े नाम बड़ी सीख सिर्फ बिजटेक पर

0: चार मई को बंगाल के चुनावी नतीजों के अगले ही दिन जब ममता बनर्जी ने ये बयान दिया, तो क्या तभी उन्हें अपनी पार्टी पर आने वाले सियासी खतरे का अंदाजा हो गया था? क्या ममता को आभास हो गया था कि 15 साल की सत्ता हाथों से जाने का सीधा असर उनकी पार्टी पर होगा? ममता बनर्जी के मन में क्या था ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन महीने भर का घटनाक्रम ये बता रहा है टीएमसी पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। पहले फर्जी हस्ताक्षर मामले में दो विधायक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गए, ममता ने कार्रवाई की तो दोनों विधायकों ने अपना गुट बनाकर 60 MLA को साथ ले लिया। ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। लेकिन संकट अभी थमा नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीएमसी के 28 में से 23 सांसद बाकी विधायकों के संपर्क में है।
1: ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
0: यानी चुनाव के बाद बंगाल में टीएमसी के भीतर शुरू हुई लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है, और इस बदले घटनाक्रम के बीच ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन से बड़ी उम्मीद लगाए हुई है। वैसे खबर है कि इंडिया गठबंधन की यह बैठक ममता बनर्जी के ही कहने पर बुलाई जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी नतीजों के ठीक बाद कह चुकी हैं कि अब वो आजाद पंछी हैं और पूरी तरह मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता पर काम करेंगी।
2: I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejasvi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance.
0: पहले इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की हसरत के साथ कांग्रेस की मीटिंग से दूर रहने वाली ममता बनर्जी इस बार खुद दिल्ली की बैठक में शामिल होने वाली है, क्योंकि अब मसला सिर्फ विपक्षी एकता का नहीं, उनकी पार्टी की फूट का भी है। अगर सांसदों में टूट हुई तो टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए अभिषेक बनर्जी एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। कोशिश विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की है, ताकि टीएमसी के संकट को कुछ कम किया जा सके। आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: में लिया गया फैसला कानूनी रूप से देंगे जवाब। कल की बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में बढ़ी दरार। पिटियन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग बबूला। खड़गे को लिखा खत, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। अशोक गहलोत का छल का दर्द, कहा मैं बनना चाहता था कांग्रेस अध्यक्ष लेकिन अचानक हो गई साजिश। बोले कोई अनपढ़ भी बन सकता है आलाकमान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढौंडियाल। बंगाल में शुभेंदु सरकार का नया फरमान आया है। फरमान है सभी मदरसों के सर्वे का। हिंदुत्व के नारे बुलंद करने के क्रम में शुभेंदु सरकार का यह फैसला अहम है। राज्य सरकार ने जो फरमान जारी किया है उसके मुताबिक सभी मदरसों का सर्वे होगा, उनकी वैधता जांची जाएगी, कागजों की जांच होगी। सरकार भविष्य की प्लानिंग का हवाला देकर मदरसों के आंकड़े जुटाने का हवाला दे रही है।
3: ओ माता की गंगा माता की जय जय श्री राम।
4: बंगाल में बीजेपी की सरकार और एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएं। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था।
5: मदरसा हो या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ देखना है कि वो सही तरह से ये यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन ये तो सरकार का काम है, सरकार ये काम कर रहा है, अपना काम है सरकार का, सरकार तो अपना काम करेगा ना।
4: बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया।
3: बंगाल का भूमि में धीरे धीरे धीरे धीरे सेकुलरिज्म और अपने वोट बैंक की लालच, इसमें विकास प्रगति पीछे चला गया। तुष्टिकरण की राजनीति आगे चलना पड़ा।
4: मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं।
6: कहाँ पे घोटाला चल रहा है, इतना घोटाला क्यों चल रहा है? तो हम सीएम, हमारा जो चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी है ना, तो उन्होंने एकदम ध्यान तरीके से, मतलब इतना ध्यान दे रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहाँ पे तो कम से कम टीचर को रिक्रूट करना है, तो फिर जहाँ पे स्कूल का कोई बच्चों नहीं है तो वहाँ पे फिर टीचर रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खोखला को कहाँ पे गैप है, कहाँ पे सिर्फ टीचर भी नहीं है, टीचर आता भी नहीं है, फिर भी पेमेंट लेते हैं, तो ध्यान देना चाहिए। एकदम हमारा सीएम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
4: बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।
7: उसने जो निर्णय लिया है सर्वे का, सारे मदरसों का, वो बहुत सराहनीय कदम है। जो भी शिक्षण संस्थान हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, सबके ऊपर जवाबदेही सरकार की है। वो वित्तीय मामला हो, कानून का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका मामला हो, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की है। तो सरकार का ये कदम जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है।
4: मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार 713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी।
3: तुष्टिकरण की राजनीति से बंगाल झील रहा था, खास करके पिछले कुछ वर्षों में, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ खराब हुआ।
4: मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: शुभेंदु अधिकारी जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो बड़े फैसले ले रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने आदेश दिया है कि स्कूलों के बाद अब बंगाल के सभी मदरसों में भी वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा, और जो इस आदेश को नहीं मानेगा उस मदरसे के खिलाफ कार्रवाई होगी। और इतना ही नहीं, आपको एक रिपोर्ट के जरिए बता देंगे कैसे शुभेंदु के फैसले बता रहे हैं कि वो हिंदुत्व की राजनीति को तेजी से विस्तारित कर रहे
8: हैं। শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
4: বঙ্গাল মে শুভেন্দু অধিকারী কি সরকার বনে কে সাথ হি বঙ্গাল কি সিয়াসত কা দৌর ভি বদল গয়া और दस्तूर भी बदल गया। शपथ लेने के साथ ही बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए, वो फैसले जो चुनाव जीतने के पहले तक वादे थे। और शुभेंदु जो फैसले ले रहे हैं वो बंगाल की राजनीति को बदलने वाले हैं। सीएम की कुर्सी संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन नेक इलाके की 121 हेक्टेयर जमीन सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सौंप दी। इसके अलावा 9 सीमावर्ती जिलों में भी बीएसएफ को कुल 142.79 एकड़ जमीन ट्रांसफर की गई, जिसका इस्तेमाल बॉर्डर आउटपोस्ट और फेंसिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा।
3: आज के हमारा प्रथम दिन ही हमारा केंद्रीय स्वराष्ट्र दफ्तर तथा बीएसएफ सीमांत सुरक्षित करार जन्य जमी ट्रांसफार प्रक्रिया हमारा आज के अनुमोदन दिलाम एवं आज थेके लैंड ट्रांसफार प्रक्रिया शुरू होबे। भूमि और राजस्व सचिव ताके एवं मुख्य सचिव के दायित्व देवा हलो 45 দিনের মধ্যে বিএসএফ এর প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর সম্পূর্ণ করতে হবে।
4: শুভেন্দু অধিকারী কা ইয়ে ফয়সলা বতা রহা থা কি ও কড়ে ফয়সলে লেনে কে লিয়ে তৈয়ার হ্যায়। শুভেন্দু নে সিএম বননে কে বাদ জো দূসরা বড়া ফয়সলা লিয়া থা ও থা ইমাম মুয়াজ্জিন অর পুজারিও কো দিয়ে জানে ওয়ালা ভত্তা বন্ধ কিয়া জায়।
9: সরকার কা কাম इमाम मुआज्जिन पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुआज्जिन को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
4: बताते चले कि 2012 में ममता सरकार ने इमाम मुआज्जिन और पुजारियों को भत्ता देने का ऐलान किया था। इमामों को हर महीने 3,000 रुपए भत्ता मिलता था, मुअज्जिनों को हर महीने 1,500 रुपए भत्ता मिलता था और पुजारियों को हर महीने 2,000 रुपए भत्ता मिलता था। मगर शुभेंदु ने सीएम बनते ही इस योजना को खत्म कर दिया। शुभेंदु का ये फैसला बता रहा था कि वो हिंदुत्व की डगर पर बंगाल को लेकर चल पड़े हैं।
10: नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा।
4: लेकिन इसके बाद शुभेंदु ने जो फैसले लिए उसने साबित कर दिया कि बंगाल में अब भगवा झंडा लहरा रहा है। शुभेंदु सरकार ने ऐलान किया कि बंगाल में जहां जहां भी अवैध निर्माण है वहां बुलडोजर एक्शन शुरू होगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। हावड़ा, कोलकाता, मेदिनीपुर, कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अंदर खाने बातें होने लगी कि बंगाल यूपी मॉडल पर चल पड़ा है। ये बातें इसलिए हो रही थी क्योंकि जो शुभेंदु कर रहे हैं वो यूपी में पहले ही हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने अगला फैसला लिया कि बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। बंगाल सरकार ने पहले सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया था, लेकिन शुभेंदु ने साफ कर दिया कि बंगाल में हर मदरसे में वंदे मातरम गाना ही होगा, और जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
10: सरकार चले तथ्यर उपरे, सरकार चले नियमेर उपरे, এবং সরকারি সিদ্ধান্ত হয় সংবিধানের কতগুলো বিষয়ের উপরে। তাই এই গভর্নমেন্ট আমিতে বিশ্বাস করে না, আমরা নীতিতে চলবে এবং রুলস, অ্যাক্টস, সংবিধান একে প্রায়োরিটি দিয়েই আমরা কাজ করব।
4: एक और अहम मुद्दा था जिस पर अक्सर हिंदू मुस्लिमों के बीच तनाव देखने को मिलता है, यह है अजान का मुद्दा। सीएम बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने आदेश दिया कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगी, और इसका पालन न हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी।
9: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है।
4: इसके साथ ही शुभेंदु ने एक और फैसला लिया कि पश्चिम बंगाल में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी के ये आदेश देने के बाद जब बकरीद हुई तो पहली बार ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज पढ़ी गई, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया था कि रेड रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी घुसपैठियों को लेकर बेहद सख्ती दिखा रहे हैं। उनके सरकार में आने के बाद चेतावनी दी गई कि घुसपैठिए बंगाल छोड़ दें।
11: देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, ये दामाद है।
12: सुवेंद्र जो
11: करना है सरकार करेगा।
4: शुभेंदु बंगाल के नए अधिकारी हैं, और जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि बंगाल में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा वही है। आज तक ब्यूरो।
0: अभी आपने तस्वीर देखी बंगाल की, जहां शुभेंदु सरकार की नजर उन मदरसों पर सख्त हो गई है जो नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये सख्ती उत्तर प्रदेश में नजर आ चुकी है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कई फैसलों से अवैध मदरसों और अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चलवा चुके हैं। अपने 9 साल के कार्यकाल में योगी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि धार्मिक इमारतों में अतिक्रमण उन्हें बर्दाश्त नहीं है।
13: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसका सीधा और स्पष्ट ऐलान है कि प्रदेश में ना तो एक भी अवैध मदरसा चलेगा और ना ही एक भी गैर कानूनी मस्जिद रहेगी। कानून के दायरे में अतिक्रमण वाली सभी धार्मिक इमारतों पर प्रशासन का हथौड़ा चलेगा, जिसकी ताजा बानगी दिख रही है संबल की मुस्तफा कादरी मस्जिद पर, जहाँ लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। ये दो तस्वीरें दो राज्यों में बीजेपी सरकार के तेवर को बयान कर रही है। एक ओर जहां बंगाल में मदरसों पर शुभेंदु की सख्त नजर पड़ चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले से ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर और हथौड़ा चला रही है। हालांकि सियासत में आरोप ये भी लग रहा है कि पहले यूपी और अब बंगाल में एक खास वर्ग विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। पहले नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर जो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों और अवैध धार्मिक स्थलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं। जून 2026 में ही गाजियाबाद के कनावनी और लोनी में 2 अवैध मदरसे सील किए गए। मोदी नगर में मस्जिद के साथ बनी 14 दुकानों को भी ध्वस्त करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं बागपत में अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है। साथ ही संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर तो चल ही रहा है।
14: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है।
15: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर ही काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जाकर के कोई स्टे वगैरह ले सके।
13: हम आपको बता दें कि फरवरी 2026 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तार से जांच कराने का फैसला किया था। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना था। सीएम योगी ने भी बार बार चेतावनी दी है कि यूपी में किसी भी तरीके के धार्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
16: जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई, आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं।
17: पर ये तो बन चुके हैं, अब
16: बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार नहीं।
13: उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्ती सिर्फ अवैध मदरसों तक ही सीमित नहीं है, कुछ ऐसे फैसले और एक्शन भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है। हाल ही में सीएम योगी ने ईद में सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले नए मदरसों को सरकारी पैसा नहीं देने का योगी ने फैसला किया था। 2022 में गैर रजिस्टर्ड और अवैध मदरसों के सर्वे के आदेश पारित हुए। नवंबर 2023 में यूपी में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा सैकड़ों अवैध बूचड़ खानों को बंद कराया जा चुका है। साथ ही मई 2025 में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में बीजेपी सरकारों के कामकाज का तरीका बता रहा है कि उनकी सियासत का फॉर्मूला क्या है और इससे ना तो उन्हें गुरेज है और ना ही परहेज है। खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव की जंग ही इन्हीं मुद्दों की बुनियाद में लड़ी जाएगी। संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल के नेता प्रतिपक्ष मित्रव्रत बैनर्जी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में एक बड़ा दावा किया है। मित्रव्रत ने कहा कि कई टीएमसी सांसद उनके संपर्क में। मित्रव्रत ने यह भी कहा कि मैं टीएमसी सांसदों से लगातार बात कर रहा हूं। तो कई टीएमसी सांसद भी विधायकों ने तो समर्थन दिखाया अपना और वो नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन इस बीच में सांसदों को लेकर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है और ये चिंताएं लगातार ममता बनर्जी के बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि कई सांसद मेरे साथ संपर्क में हैं, मैं उनके साथ बातचीत कर रहा हूं।
18: कितने एमपीज हैं जो आपके खेमे के साथ जुड़ना चाहते हैं?
19: ये तो मैं बताना नहीं पाऊंगा क्योंकि एमपी लोगों से कल तक, कल में असेंबली से फोन लगाया था चार पांच लोगों को, मगर सबका फोन आइदर नॉट रीचेबल और स्विच्ड ऑफ था। तो आज कुछ एमपी से मेरा बात हुआ है, तो जिससे भी बात हुआ देखा वो दिल्ली में है, तो मैं बोला दिल्ली में तो हो सकता है पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी होता है, दूसरी काम हो सकता है, मगर ये लोग दिल्ली में है। जितने लोगों से भी मेरा बात हुआ मैं पूछा नहीं क्यों वो लोग दिल्ली में है, अगर कुछ होता है तो दिखने को मिलेगा, अगर कोई मुझे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे तो मैं नॉर्मली बात किया कुछ लोगों से।
18: नहीं लेकिन कितनी जल्दी कुछ हो सकता है?
19: कल कुछ होगा,
18: कल होगा कुछ बड़ा कुछ मंडे को,
19: ये सुनने में आ रहा है, मुझे रियल मुझे मालूम नहीं है, देखते हैं।
0: और विशेष में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब उसके खिलाफ आज तक का कोई आपराधिक मुकदमा न्यायालय ने कभी सजा नहीं दी, न तो कभी चोरी में, न तो डकैती में, न तो इस तरीके के, फिर एक 302 का 307 का मुकदमा उसके ऊपर है और किसी ने अपहरण का मुकदमा लिखा रखा है, जैसे एसपी ने कहा। तो इतना तो बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप इनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है, मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर हैं, वो कुछ छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये फिर इसके मतलब इनका एलआईयू क्या कर रहा था, कैसे समाज के लोगों ने आंदोलन किया बताया, क्यों नहीं फोर्स लगाया इन लोगों ने, खाली जब आंदोलन हो गया तो कहेंगे आप राष्ट्र का लगा देंगे, ये तो डिटेक्टरशिप हो गई।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: दायित्व आया है तो मैं निभा रहा हूँ, उसे अच्छे ढंग से करना ही मेरा मकसद रहता है। अगर आप अच्छे निर्णय और सही समय पर निर्णय करते हैं, तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका एक उदाहरण है।
3: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
4: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
3: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
4: They score!
3: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: बंगाल में अब मदरसों की हकीकत कागजों पर उतरेगी। कौन चला रहा है, किस नियम के तहत चला रहा है और किसके पास क्या दस्तावेज है। शुभेंदु सरकार ने जिला प्रशासन को 5 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बंगाल में मदरसों के सर्वे के लिए 8 सवाल तैयार किए गए हैं। मदरसे की लोकेशन, स्थापना का वर्ष, रजिस्ट्रेशन की जानकारी, वैध दस्तावेजों की स्थिति, छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की जानकारी, आवासीय या गैर आवासीय, सरकारी सहायता प्राप्त या निजी, पढ़ाए जाने वाले कोर्स। क्योंकि बंगाल में मदरसे सिर्फ शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि दशकों से राजनीतिक बहस का हिस्सा भी रहे हैं। बंगाल में मदरसे बरसों से वोट बैंक, पहचान और तुष्टिकरण की बहस के केंद्र में रहा है। चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, महाजंगल राज के साथ इन मुद्दों को बीजेपी ने जमकर उछाला, ममता सरकार को घेरा, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खूब मिला। पहली बार बीजेपी की बंगाल में सरकार बन पाई। अब जब मदरसों का राज्यव्यापी सर्वे शुरू हुआ है तो बीजेपी इसे अपने पुराने राजनीतिक अभियान से जोड़कर पेश कर सकती है और कह सकती है कि जिन सवालों को उसकी पार्टी चुनावी मंचों से उठाती रही, आज उन्हीं सवालों के जवाब सरकार खुद तलाश रही है। बीजेपी दावा करती है कि पश्चिम बंगाल में 2011 से पहले 2100 मदरसे थे, 2011 से 2026 बांग्लादेश सीमा के पास 35,000 से ज्यादा वैध और अवैध मदरसे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को सीएम पद की शपथ ली थी। 11 मई को अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 121 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंपी और 45 दिनों के भीतर 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने का फैसला किया। स्कूलों की असेंबली में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया, गो हत्या पर सख्ती दिखाई, इमामों और पुरोहितों। ये सर्वे ऐसे समय में हो रहा है जब ममता बनर्जी सरकार से बाहर है, उनकी पार्टी तृणमूल तृण हो गई है, रोज टीएमसी में विवाद बढ़ रहे हैं और उनके वोट बैंक पर बीजेपी ने सीधा हमला किया है। यानी बंगाल में अब मदरसों की फाइलें खुलेंगी, लेकिन इसके साथ ही खुल जाएगी राजनीति की एक नई किताब। क्योंकि जिस राज्य में धर्म और राजनीति की रेखाएं अक्सर एक दूसरे को काटती रही हूं, वहां मदरसों का सर्वे सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं माना जाएगा बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
6: एकोजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा वो ही मेरा सामर्थ्य है। मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता, हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग उनके सपनों को लेकर के उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूं।
1: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि गरीबों के आशीर्वाद से ही आज मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है। देश के कोटि कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी।
0: सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है।

0: जैसे जल की मिशन के लिए पैदा हुआ।
1: 12 वर्ष के राजनीतिक सफर में कई नारे गूंजे।
2: भारत का आम नागरिक कहता है, मोदी है तो मुमकिन है,
3: मोदी है तो मुमकिन है।
1: कई नारे जन आंदोलन बन गए।
4: आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है।
1: कई नारों ने देश की राजनीति का रुख पलट कर रख दिया।
5: मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी।
1: लेकिन जो कभी नहीं बदला तो वो है दो शब्दों का एक नाम जो नारा बन गया। समर्थक 12 वर्षों से निरंतर समर्थन को विकास का युग कहते हैं।
6: नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, फैसला ले लिया।
7: कई प्रधानमंत्री आ गए, कई प्रधानमंत्री गए, मगर धारा 370 को छूने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता।
8: वो जो सोचते हैं देश के लिए परफेक्ट सोचते हैं,
1: विरोधी अंतहीन चुनौतियों का समय मानते हैं।
9: पहला एक्शन लिया है जो प्रधानमंत्री के लायक एक्शन।
10: भारतीय जनता पार्टी को बातों में कोई नहीं हरा सकता है।
1: सरकार नए भारत का उदय कहती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसे सेवा का वो संकल्प मानते हैं जो असंभव को भी संभव बनाने का मादा रखता है। और धीरे धीरे भगवा होता देश का नक्शा।
5: हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास का है। हमारा मॉडल गुड गवर्नेंस का है। इसलिए हर राज्य में जनता बीजेपी को दूसरी बार तीसरी बार फिर से सेवा करने का अवसर देती है।
1: संख्या शास्त्र में 12 गणित का एक अंक होता है, लेकिन जीवन शास्त्र में ये 12-12 में विभाजित समय, आस्था के 12 ज्योतिर्लिंग और 12वें महीने में साल के अंत और प्रारंभ का प्रतीक होता है। राजनीति शास्त्र में मोदी शासन के 12 वर्ष लोकप्रियता और चुनौतियों का संतुलन बनाते हुए निरंतरता कायम रखी।
5: आपके इस आशीर्वाद की शक्ति से मैं दिन रात देशवासियों की सेवा में जुटा रहा हूं।

इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे। बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है।

अलग अलग संस्कृतियों और मान्यताओं वाले देश में एक चेहरे की स्वीकार्यता कभी आसान नहीं रही, लेकिन गंगा से गंगा सागर तक राज्यों में जीत इस मिथक को तोड़ती है। बीते 12 वर्षों में अंग बंग कलिंग तक की विजय ने बड़े सियासी संदेश दिए हैं।

0: 12 साल में राजनीति कैसे बदली है ये दो तस्वीरों से स्पष्ट होता है।
1: आज हमने जो कुछ भी पाया है वो पांच पांच पीढ़ी खप गई है तब आया है। दीवारों पर दिया जलाते जलाते खपे हुए अनेक परिवार हैं।
2: बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है, एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है।
3: सिलीगुड़ी निवासी श्री माखनलाल सरकार,
0: कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी उम्र दे दी,
3: पूरी प्रतीक्षा मुद्दों दीर्घ प्रतीक्षा, भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
0: कितने ही लोगों के प्राण चले गए, बीजेपी के वैचारिक संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर स्वप्न दृष्टा अटल बिहारी वाजपेयी तक कितनी ही पीढ़ियां पश्चिम बंगाल में पार्टी का सूरज उगाने का ख्वाब लेकर संसार से विदा ले गए।
4: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल, पंजाब और आसाम के अधिकाधिक हिस्सों को भारत का अंग रखने के लिए अभियान किया और उसमें काफी दूर तक सफलता पाई।
2: भाजपा का तो जन्म ही डॉक्टर मुखर्जी के आशीर्वाद से हुआ है। वे भारत के औद्योगिक विकास के जनक रहे हैं।
0: खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12 साल पहले जो संभावनाओं का सरोवर तैयार किया था उसमें अब जाकर कमल खिले।
2: बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है।
0: आसान नहीं था एक दशक में 2 से 77 और फिर 207 तक का सफर तय करना। आसान नहीं था वामपंथ और तृणमूल के किले को ध्वस्त करके जीत का झंडा उठाना।
2: बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है। बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है।
0: पर नीति, रणनीति और राजनीति का अथक प्रयास ऐसा कि बीजेपी को वो हासिल हो गया जो सभी राजनीतिक विश्लेषकों को असंभव लगता था। उत्तर से पूर्वोत्तर तक देश का राजनीतिक नक्शा बदल चुका है। इस समय 22 राज्यों में बीजेपी की अकेले या सहयोगियों के साथ सरकार है। देश के 72% भूभाग और 76% आबादी पर अब बीजेपी या एनडीए का शासन है।

0: पश्चिम बंगाल भारतीय राजनीति में मोदी मैजिक का सबसे नया अध्याय है, लेकिन इसके साथ देश का चुनावी नक्शा जिस तरह बदला वो बीजेपी के लिए भी अकल्पनीय था।
1: पश्चिम बंगाल की पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन।
0: बंगाल की जीत सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं है, बल्कि मोदी शासन के 12 साल की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जा सकती है।
1: जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज
0: बंगाल में पार्टी का विस्तार बीजेपी की लंबे समय से चली आ रही महत्वाकांक्षा थी। साल पहले 2014 में नरेंद्र मोदी जब केंद्र की सत्ता में स्थापित हुए, तब बीजेपी और उसके सहयोगियों की सिर्फ 7 राज्यों में सरकारें थी, बीजेपी सिर्फ 5 राज्यों में और शेष 2 पर एनडीए के साथ। बीजेपी और एनडीए का शासन सिर्फ देश की 26% आबादी पर ही था, जबकि 14 राज्यों में कांग्रेस या दूसरे दलों की सरकारें थी और देश की 37% आबादी पर गैर बीजेपी शासन था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह देश के कमजोर तबके को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई, उसने राज्यों की राजनीति पर भी असर डालना शुरू कर दिया। शौचालय, पानी, बिजली, गैस जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को अपने साथ भावनात्मक रूप से जोड़ लिया।
2: मैं गरीबी का जीवन जी कर आया हूं, मैंने गरीबी को जिया है। गरीब की जिंदगी कितनी तकलीफ वाली होती है ना, उससे मैं गुजरते गुजरते यहां आया हूं। इसलिए गरीब कल्याण की हर योजना की प्रेरणा मेरे अपने जीवन के अनुभव से जन्म लिया है।
0: 2014 से 2018 यानी सिर्फ 4 साल में देश के राजनीतिक मानचित्र पर मोदी फैक्टर का असर ऐतिहासिक रूप से दिखने लगा। 2018 तक बीजेपी या एनडीए की 21 राज्यों में सरकारें हो गईं। देश की 71% आबादी पर बीजेपी और सहयोगियों का शासन हो गया। ये बीजेपी और एनडीए का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। कांग्रेस सिर्फ 4 राज्यों में सिमट गई।
2: कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में ना देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का।
0: आंदोलनों और विपक्ष के आक्रामक विरोध के कारण 2023 तक एक समय ऐसा भी आया जब बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकारें सिर्फ 16 राज्यों में रह गई। ब्रांड मोदी की चमक पर सवाल उठने लगे। इसी बीच हुआ 2024 का लोकसभा चुनाव। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 पर सिमट गई। तब विपक्ष को लगा अब मोदी मैजिक खत्म हुआ।
3: बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा और एक सेकंड में खत्म।
4: जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया।
0: लेकिन इसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी आने वाली राजनीति का भी संकेत दे दिया।
2: तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है।
0: उसके बाद जो हुआ वो देश के राजनीतिक इतिहास में एक अलग ही कहानी है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने 7 में जीत दर्ज की। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने अब तक की सबसे शानदार जीत हासिल की। 27 साल बाद दिल्ली जीत ली और 2025 में बिहार चुनाव में तो ऐतिहासिक जीत हासिल करके गर्दा ही उड़ा दिया।

0: हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र ने एनडीए को अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद दिया है और लगातार अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: असम और पुडुचेरी की शानदार जीत अपनी जगह।
2: आमीन शुभेंदु अधिकारी।
1: लेकिन मोदी नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की जीत ने वो कर दिखाया जिसकी भविष्यवाणी कभी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किया करता था।
3: मैं भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।

0: बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। एकमात्र झारखंड के अपवाद को छोड़ दें, जहां जहां पीएम मोदी के नेतृत्व में कमल खिला वहां से फिर मुरझाया नहीं। रिपीट जीत से लेकर बीजेपी सरकारों की जीत की हैट्रिकों से राजनीति शास्त्र के पन्ने भर गए।
1: बीजेपी अपने विचार, विजन और विकास के विश्वास पर खरा उतरकर देश की पसंद बन रही है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद प्राप्त कर रही है।
2: हमी शुभेंदु अधिकारी,
1: भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अडिग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है।
3: 9 मई को प्रधानमंत्री मोदी 9वें ऐसे राज्य में अपनी पार्टी का इकबाल बुलंद होते देख रहे थे, जहां पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा था।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी,
3: याद आया होगा वो वक्त भी जब पूरे देश में बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर थी। आज 22 राज्यों में है और उनमें भी 9 राज्यों में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री है।
2: निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिबो।
1: आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास।
3: समर्थक इसे प्रधानमंत्री मोदी के शासन में बीजेपी का स्वर्णिम काल कहते हैं। गुजरात में 1995 से बीजेपी की निरंतर सरकार है। 2003 से मध्य प्रदेश में बीच के 15 महीने छोड़ दें तो 2 दशक से अधिक समय से बीजेपी की सरकार है। गोवा में 2012 के बाद से बीजेपी का मुख्यमंत्री है। बीजेपी के विचार पुरुषों ने सरकारों के स्थायित्व की जो परिपाटी डाली थी, नरेंद्र मोदी उसे बुलंदियों के छोर तक ले गए और न सिर्फ स्थायी सरकारों के रिकॉर्ड का विस्तार किया बल्कि असंभव राज्यों में भी सरकारें बनाकर राजनीति का स्थायी परिवर्तन संभव किया। जहां बीजेपी कभी थी ही नहीं वहां भी उसका मुख्यमंत्री हुआ। 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। अविभाजित शिवसेना के साथ पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। 2014 में ही हरियाणा की जीत के बाद पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ली। बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। 2016 में पहली बार बीजेपी असम में जीती और पूर्वोत्तर में मोदी युग शुरू हुआ। सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने। यहाँ भी बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी ने 2016 में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई और पेमा खांडू मुख्यमंत्री बने। 2017 में बीजेपी ने मणिपुर में गठबंधन सरकार बनाई और पहली बार बीजेपी के एन वीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने। सीमावर्ती राज्य में ये बीजेपी की पहली सरकार थी। 2018 में वाम दलों के सबसे मजबूत समझे जाने वाले गढ़ त्रिपुरा में बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की और अब तक लगातार 2 बार से वहां बीजेपी की सरकार है। 2024 में नवीन पटनायक के 24 वर्षों के शासन को खत्म करके पहली बार बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई। 2026 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली। 2026 में पश्चिम बंगाल में भी पहली बार बीजेपी का राज स्थापित हो चुका है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं।

0: भारतीय राजनीति का सूचकांक मानो मोदी की मौजूदगी से तय होता है। उनकी एक रैली, एक बयान, एक रणनीति, एक फैसला राजनीतिक तापमान को बदल देते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, चुनावी गणित हो या राजनीतिक विमर्श, नरेंद्र मोदी विरोधियों को अपनी पिच पर खेलने को मजबूर कर देते हैं। किसने सोचा था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वर्चस्व वाले उत्तर प्रदेश में 14 वर्ष से सत्ता का वनवास भोग रही बीजेपी बहुमत से लौट सकेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये भी संभव हुआ। बीजेपी 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश में सत्ता में बनी हुई है और इस बार 2027 में तीसरी बार जीत के लिए तैयारियों में जुटी है।
1: उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं।
2: मैं विष्णु देव साय ईश्वर की।
0: छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी है, राजस्थान में फिर से बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार ढाई दशक बाद बनी है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी विजयी गठबंधन का हिस्सा है, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी लगातार दस्तक दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 12 वर्षों में विपक्षी राजनीति के लिए लगातार शत्रुंजय साबित हुए। 2014 में उन्होंने कांग्रेस के लंबे दौर को समाप्त कर विकास, मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, राष्ट्रीय सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के सहारे पहले से भी बड़ा जनादेश हासिल किया। 2024 में कड़ी चुनौतियां थी, संपूर्ण विपक्षी एकजुटता थी, लेकिन उसके बावजूद तीसरी बार सत्ता में लौटकर नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक पकड़ और जन स्वीकृति को फिर साबित किया। दो हजार 2014 को बीते 12 वर्ष हो गए, लेकिन राजनीति के विश्लेषक अब भी उस दौर की समीक्षाओं में जुटे हैं। जब पहली बार राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गूंजा,
3: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
0: कई कयास थे कि जो कभी सांसद भी नहीं बना वो प्रधानमंत्री के पदभार को कैसे संभालेगा, जिसने इससे पहले कभी दिल्ली की राजनीति में कदम भी नहीं रखा था, वो दिल्ली की राजनीति में कामयाब कैसे होगा।
3: मैं पहली बार यहाँ आया, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। शरीर का प्रत्येक कण, समय का प्रत्येक पल, पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसके लिए पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है।
0: प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए। उनकी नजरें आम जनजीवन की बुनियादी सुविधाओं,
4: गैस कनेक्शन पे परेशानी खत्म, घर वाले बहुत खुश हैं,
0: देश के विकास में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आकांक्षाओं पर रही तो उनका राजनीतिक दर्शन ये भी स्पष्ट करता था कि राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में कैसा होगा।
1: शिलान्यास का अवसर मिला था, ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा।
0: जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ होगी तो देश का ढांचा कैसा होना चाहिए।
5: साथियों, हम आज की नहीं बल्कि अगले 25-50 साल की जरूरतों के मुताबिक देश को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे ना, विकसित भारत बना के रहना है दोस्तों, आपके लिए बनाना है, आपके बच्चों के लिए बनाना है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाना।
0: पीएम मोदी ने सार्वजनिक जीवन की छोटी बातों से बड़े अभियान शुरू किए। राष्ट्रहित के फैसलों में बेबाकी रखी, दुनिया के सामने देश की नीति स्पष्ट रखी।
6: न हम झुकेंगे, हम परिश्रम की पराकाष्ठा करते रहेंगे और अपनी आंखों के सामने 2047 में विकसित भारत बना करके रहेंगे।
0: नरेंद्र मोदी ने राजनीति का कठेरा वर्षों तक संगठन के लिए काम करके सीखा था। वर्षों वो आम लोगों के बीच रहे थे, प्रधानमंत्री बने तो ये अनुभव बहुत काम आया। पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति से इतर उन्होंने नया वोट वर्ग तैयार कर लिया।
7: मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं।
0: राजनीति तो परीक्षा ले ही रही थी, लेकिन राष्ट्रनीति में प्रधानमंत्री मोदी के सब्र की परीक्षा का समय भी आया। 18 सितंबर 2016 उरी में पाकिस्तानी हमले में जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। देश ये जानना चाहता था कि इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, और जवाब मिला भी।
7: आतंकवादी कान खोल के सुन ले, ये देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है।
5: भारत को किसने छोड़ा, वो छोड़ता भी नहीं।
0: 29 सितंबर की रात दुनिया ने देखा कि शांति के कबूतर उड़ाने वाला भारत कैसे बाज बन गया। सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरी बलिदान का बदला ले लिया गया। पाकिस्तान पर ऐसी कार्रवाई हुई कि अब तक का भारत पाकिस्तान इतिहास के सारी समीकरण ही बदल गए।
3: जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता।
0: शासन के 5 वर्ष बीते तो समर्थकों ने सेवा के तौर पर मनाया, और विपक्ष ने अपनी वापसी की उम्मीदों के तौर पर देखना शुरू किया। अगले टर्म के चुनावों की तैयारी में देश जुटा था। कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब की बार क्या फिर नरेंद्र मोदी सरकार। लेकिन फिर एक बार राष्ट्रनीति की परीक्षा की घड़ी आ गई। 14 फरवरी 2019 में पाकिस्तान की शह पर पुलवामा अटैक हो गया। 40 जवान शहीद हो गए। पूरा देश दुख और गुस्से में था।
8: इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है।
7: हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी।
0: 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया गया कि पाकिस्तान का वजूद कांप गया।
9: जो रात जो है सहरी के वक्त जो है जो कुछ हुआ है 3:30 बजे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम ना सिर्फ पाकिस्तान की जुग्राफियाई हदूद की उसका तहफ्फुज मांगते हैं, बल्कि अपनी इज्जत और आन का भी तहफ्फुज मांगते हैं।
0: पूरे विश्व को ये संदेश गया कि ये नया भारत है जो घर में घुस कर मारता है। लेकिन यही वो समय भी था जब देश की राजनीति में 2019 के आम चुनावों का गणित बिठाया जा रहा था। 2019 के चुनाव के चुनाव इस मुद्दे पर थे कि क्या 2014 की मोदी जीत एक चुनावी टुक्का थी या वाकई देश का जनादेश उनके साथ था। विपक्ष के आरोप तीखे थे तो जवाब भी पूरे जोर से दिया गया।
10: नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। अब बताइए भैया, वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, बोल रहे कि नहीं बोल रहे? लेकिन नोटे कहां से निकलती है, नोटों के बंडल कहां से निकल रहे हैं, असली चोर कौन है?
0: नतीजा आया तो ब्रांड मोदी पर जनता ने विश्वास की मुहर और मजबूती से लगा दी। बीजेपी को 303 सीटों का महाबहुमत मिला। राष्ट्रपति भवन में फिर एक बार वही आवाज गूंजी,
11: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं।
0: प्रचंड बहुमत ने साबित कर दिया कि 2014 की जीत तुक्का नहीं थी, 2019 की जीत बता रही थी कि मोदी एक ऐसे ब्रांड है जिन पर देश के बहुवर्ग को भरोसा है। दूसरी बार सरकार वही थी लेकिन मोदी के तेवर इस बार अलग थे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 का नासूर जो दशकों से देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा था उसे उखाड़ फेंका।
12: एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे इसके लिए।
0: 3 तलाक कानून बना और देश की राजनीतिक धारा ही बदल गई।
13: सशक्तिकरण की दिशा से, नारी गरिमा और सम्मान की दिशा से 3 तलाक विधेयक का संसद में पारित होना भारत के संसदीय इतिहास का एक गौरवशाली दिन है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का नारी गरिमा के प्रति इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण कदम उठाना इसके लिए अभिनंदन करते हैं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि नारी सशक्तिकरण की इस दिशा में इस बहुत बड़े कदम को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे।
0: कोविड के रूप में वैश्विक रूप से परीक्षा का समय आया तो राष्ट्र मोदी की एक अपील के पीछे खड़ा हो गया।
14: पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।
0: इस बीच चीन ने गलवान में दुस्साहस किया तो जवाब सेना ने दिया, लेकिन चीन के करीब सीमा पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह चीन को ललकारा उसने ये स्पष्ट कर दिया कि नए भारत के तेवर भी नए हैं।
14: अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है।
0: मोदी शासन का एक दशक खत्म होते होते देश सांस्कृतिक रूप से भी वैभवशाली हो चुका था। काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर,
15: बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा की जय हो। हर हर महादेव।
0: और अयोध्या में श्री राम मंदिर इसकी गवाही दे रहा था। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की घेराबंदी भारी पड़ गई। बीजेपी 240 पर सिमट गई। बीजेपी 240 पर सिमटी जरूर थी लेकिन एनडीए को बहुमत प्राप्त था। एनडीए ने फिर नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना और 2024 में तीसरी बार वही आवाज राष्ट्रपति भवन में गूंजी।
3: मैं नरेंद्र दामोदर दास बोल रहा हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
0: 400 पार के नारे को विपक्ष ने बहुत भुनाया था। पीएम मोदी ने इस नारे की कहानी के पीछे की रणनीति भी समझाई।
16: आपका यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आना ये साफ साफ संदेश दे रहा है, यही बार एनडीए सरकार 400 पार।
0: इसके बाद देश के राजनीतिक इतिहास नया अध्याय शुरू होता है। जहाँ बीजेपी कमजोर थी, हर उस राज्य में पीएम मोदी ने कमान संभाली और 2024 के आम चुनावों में बहुमत से पीछे रह जाने की कसक पूरी कर ली। एक के बाद एक विधानसभा चुनावों में बीजेपी इतिहास रचती चली गई। कई जगह विपक्ष सम्मानजनक स्थितियों तक में नहीं रहा। अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होना है, जो अभी दूर है, लेकिन चर्चाएं अभी से चल रही हैं कि क्या तब मोदी का विजय रथ रुक पाएगा। पीएम मोदी भारतीय राजनीति के उन विरले नेताओं में शामिल हैं जिनकी राजनीतिक यात्रा लगातार सत्ता और प्रभाव के केंद्र में रही है। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, यानी प्रधानमंत्री के तौर पर भी 12 साल पूरे उनके हो गए। मोदी कभी सत्ता से दूर नहीं हुए। इस दौरान ढाई दशक से अधिक समय तक लगातार शीर्ष नेतृत्व में बने रहना भारतीय राजनीति में असाधारण उदाहरण है।
17: जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, उपलब्धियों की दृष्टि से सबसे स्वर्णिम काल के रूप में मोदी जी की क्रिटिक एनालिसिस करने वालों ने भी नोट करना पड़ेगा।
18: 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना, 27 फरवरी पहली बार में असेंबली में गया। दायित्व आया है तो मैं निभा रहा हूँ, उसे अच्छे ढंग से करना ही मेरा मकसद रहता।
0: मार्च 2026 की तारीख जैसे ही बीती, पीएम मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के सबसे लंबे सरकार के प्रमुख के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये रिकॉर्ड एक मील का पत्थर जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का पूरा सेवा काल ऐसे रिकॉर्ड्स की किताब तैयार कर चुका है। 2001 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने और इसके पहले वो एक पार्षद तक नहीं थे, यानी सीधे मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने गुजरात में सरकार की हैट्रिक लगाई। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तो उसके पहले वो संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं थे, वो सीधे चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बने और यहाँ भी सरकार की हैट्रिक का इतिहास दोहराया।
19: मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है।
0: अद्भुत है ये रिकॉर्ड कि 25 वर्षों से नरेंद्र मोदी सरकार के प्रमुख बनने के बाद एक भी दिन बिना पावर के नहीं रहे। 25 जुलाई 2025 को नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4,077 दिन के लगातार प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को पार कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू के नाम सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। नेहरू 4,398 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। 9 जून को नरेंद्र मोदी ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे और देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाएगा।
3: इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने, उससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है।
0: 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी एक भी छुट्टी न लेने का दावा करते हैं, लेकिन देश की राजनीति में वो अभी तक ऐसे असंभव लक्ष्य बनकर सामने आए हैं जिसका जवाब विपक्ष के पास फिलहाल नहीं दिखता। प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा राजनीतिक विश्लेषकों के लिए रिसर्च का एक विषय है। 75 वर्ष की उम्र में भी वो नए प्रयोगों से पीछे नहीं हटते। वैश्विक पटल पर वर्ल्ड लीडर की छवि में वो मजबूत दिखते हैं। विदेशी सम्मान पाने वाले नेताओं में वो दुनिया में पहले नंबर पर आते हैं। नरेंद्र मोदी को अब तक 33 अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से अधिकतर कई देशों के सर्वोच्च सम्मान हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने भविष्य की चर्चाओं को हंसकर टाल देते हैं, लेकिन 2047 तक विकसित भारत का रोडमैप तैयार करने में जुटे हैं। तीसरे कार्यकाल के 2 वर्ष बीत गए, मोदी आजादी के 100 वर्ष का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।
5: हम आज की नहीं बल्कि अगले 25-50 साल की जरूरतों के मुताबिक देश को तैयार कर रहे हैं।
0: 75 वर्ष के हो चुके प्रधानमंत्री मोदी का फोकस पीछे क्या छूट गया या कितना क्या बीत गया पर नहीं रहता। वो अब भी बात करते हैं उन लक्ष्यों की जो उन्होंने पहले से तय कर रखे हैं।
7: विकसित भारत 2047 इस तरफ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं।
0: पीएम मोदी का शासन 1.5 दशक की सीमाओं को छूने लगा है। अब तक विपक्ष के लिए वो अजेय रहे हैं। कई छत्रपों के नक्षत्र सियासी आसमान से लुप्त हो गए। कई मोदी नेतृत्व के परिवर्तन का सपना संजोए हाशिए पर चले गए, लेकिन विपक्ष की कोशिशें अब भी जारी हैं।
20: मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना।
21: बांग्ला जो आगुन लगन आसाम नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड उड़ीसा और दिल्ली में थकबे ना अपना चेयरटा हमरा टलोमलो करे देबो।
0: समर्थकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले से अधिक ऊर्जा के साथ चल रहे हैं।
22: आमतौर पर पॉलिटिशियन का पहला स्वभाव होता है कि जो कहा है लोग जल्द से जल्द भूल जाए। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैंने जो कहा है वो लोग याद रखें और मैं भी उसको न भूलूं कि मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा, कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा, मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई काम नहीं करूंगा।

उनका दावा आज भी फेंके हुए पत्थरों से सीढ़ियां बना लेने का रहता है। वो आज भी सत्ता को सेवा के संकल्प से जोड़ते हैं। वो आज भी जनता की उम्मीदों का भारत बनाने की बातें करते हैं। वो बस चल रहे हैं और साथ साथ चल रही है देश की राजनीति। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: जो आया है तो मैं निभा रहा हूँ, उसे अच्छे ढंग से करना है मेरा मकसद रहता है। अगर आप अच्छे निर्णय और सही समय पर निर्णय करते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका एक उदाहरण है। सही समय पर निर्णय करते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका एक उदाहरण है।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
2: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज किए।
1: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
3: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
4: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
5: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
6: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
7: लायन डेट नट बाइट्स।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
5: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
4: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTA को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: बड़ी खबर आपको देते हैं, बंगाल के नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी ने आज तक एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि कई टीएमसी सांसद उनके संपर्क में है। ऋतव्रत ने कहा कि मैं टीएमसी सांसदों से लगातार बात कर रहा हूं। ममता बनर्जी को लेकर भी उन्होंने अपनी बात की कि उनको अब सलाहकार के तरीके से भूमिका में आ जाना चाहिए। मैं टीएमसी सांसदों के साथ लगातार संपर्क में हूं, ये भी उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सांसद इस समय दिल्ली में और कुछ से संपर्क नहीं हो पा रहा। आपको सुनाते हैं क्या कहा है ऋतव्रत बनर्जी ने।
3: एमपीज हैं जो आपके खेमे के साथ जुड़ना चाहते हैं,
4: ये तो मैं बताना नहीं पाऊंगा क्योंकि एमपी लोगों से कल तक, कल में असेंबली से फोन लगाया था चार पांच लोगों को, मगर सबका फोन आइदर नॉट रीचेबल और स्विच ऑफ था। तो आज कुछ एमपी से मेरा बात हुआ है, तो जिससे भी बात हुआ देखा वो दिल्ली में है, तो मैं बोला दिल्ली में तो हो सकता है ना, पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी होता है, दूसरी काम हो सकता है, मगर ये लोग दिल्ली में हैं। जितने लोगों से भी मेरा बात हुआ मैं पूछा नहीं क्यों वो लोग दिल्ली में हैं। अगर कुछ होता है तो दिखने को मिलेगा, अगर कोई मुझे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे तो मैं नॉर्मली बात किया कुछ लोगों से।
3: नहीं लेकिन कितनी जल्दी कुछ हो सकता
4: है, कल कुछ होगा,
3: कल होगा कुछ बड़ा कुछ मंडे को,
4: ये सुनने में आ रहा है, मुझे रियल मुझे मालूम नहीं है, देखते हैं।
2: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। टीएमसी की सत्ता में रहे जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बंगाल के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें आक्रोशित लोग खुद ही टीएमसी नेताओं से इंसाफ मांग रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर भी आई जिसमें आक्रोशित लोगों ने टीएमसी के एक नेता का सरेआम मानमर्दन किया।
5: जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है। एक आदमी का आधा सर मुंडवा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है, एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुरमत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्हीं आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता, आज तक। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता, आज तक।
2: आप रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। एकोजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

जांचने की कोशिश की कि वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन जांचने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि ऐसे बयान ही तो सरकार पर सियासी हमले के काम आते हैं। इसमें तथ्य सबसे पहले बलि चढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती टूटने वाली है। 28 फरवरी को जब ईरान युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कहने पर ही ईरान पर हमला किया था। उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप इसराइल पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने सारी आलोचनाओं के बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक एक बात मानी। ये तक कहा कि इसराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। और मुस्लिम देशों को भी यह धमकी दी कि अगर उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करके इसराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी तो अमेरिका ईरान के साथ समझौता नहीं करेगा। यानी जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर पूरा भरोसा था और दोनों की दोस्ती अटूट मानी जा रही थी, तभी एक बड़ा खेल हुआ। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की एक नई रिपोर्ट आई जिसमें यह दावा हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू से सिर्फ नाराज नहीं है बल्कि वो अब उन पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। 1 जून को राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बताया जा रहा है फोन पर बात हुई, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एहसान फरामोश कहा है। ये बोला कि अगर वो नहीं होते तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू जेल के अंदर होते। बात यही नहीं रुकी, आगे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब हर कोई प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नफरत करता है, उनके कारण दुनिया में इसराइल के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और अगर इसराइल ने लेबनान में अपने हमले नहीं रोके तो अमेरिका इसे स्वीकार नहीं करेगा। यहां हम आपको इस बातचीत का वो हिस्सा पढ़कर नहीं बता रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने गाली गलौज की है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है। अब तक युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। इस कड़वाहट के पीछे भी एक ऐसा कारण है जो ये बताता है कि इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप खुद को कितना कमजोर महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि अगर इसराइल ने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए तो ईरान के साथ उनकी डील बीच में अटक जाएगी और ये डर कहीं ना कहीं सही भी है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि लेबनान पर हुए हमलों के कारण ईरान ने अमेरिका के साथ अपनी बातचीत बंद करने का फैसला किया। ईरान की सरकार का कहना है कि अब अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी संदेश आएगा तो उसे कचरे के डिब्बे में उठाकर फेंक दिया जाएगा। यही नहीं, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूर्ण रूप से बंद रखने का ऐलान किया। ये धमकी दी कि लेबनान के हमलों का बदला ईरान लेगा। यानी स्थिति यह है कि अमेरिका इस वक्त एक दलदल में फंस गया है और भारत की नजर इस पर क्यों रहनी चाहिए? भारत की नजर इसलिए रहनी चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल, गैस सबकी कीमतों पर किस तरह का असर इस युद्ध से हो रहा है। और नए सिरे से अगर ये भड़कता है, ये पीस डील नहीं होता है तो भारत के लिए भी चिंता की बात है। अमेरिका एक ऐसे दलदल में है जिसके पास ना तो इसराइल खड़ा रहना चाहता है और ना ही ईरान इस दलदल में फंसे अमेरिका से कोई डील करना चाहता है। अब तक हॉलीवुड में 1000 से ज्यादा ऐसी फिल्में बनी जिनमें यह दिखाया गया कि जब भी दुनिया पर कोई संकट आया, जब भी दुनिया में कोई प्रलय आए, धरती पर एलियंस आए, हर संकट से दुनिया को बचाने की एकमात्र उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होगा। अमेरिका ने हमें सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जैसे कई सुपर हीरोज दिए और इनसे अपनी एक ऐसी छवि बनाई कि दुनिया के हर संकट का समाधान बस अमेरिका ही है। लेकिन आज हकीकत यह है कि अमेरिका के पास अपनी खुद की समस्याओं का समाधान नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच 7 अप्रैल को सीज फायर लागू हुआ था और उस दिन से लेकर आज 2 जून तक अमेरिका ईरान के साथ एक डील नहीं कर पाया है। डील तो छोड़िए, मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका काफी मजबूर नजर आता है जिसे अब इसराइल भी ना यानी नो कहना सीख गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन करके यह दबाव बनाया कि वो दक्षिणी लेबनान में अपनी जो सैन्य कार्रवाई है उसको रोक दे, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना। आज भी उन्होंने दक्षिणी लेबनान पर कई हमले किए जिनमें सबसे भीषण हमला टायर शहर पर हुआ। इस हमले में एक घर तबाह हो गया और 2 लोग घायल हुए। आप तस्वीरें देखिए और ये समझिए कि क्यों इन हमलों से राष्ट्रपति ट्रंप का खून खौल रहा है।

0: अब ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद इसराइल लेबनान में अपने हमलों को क्यों नहीं रोक रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इसराइल का कम क्षेत्रफल। जब बात अर्थव्यवस्था की होती है तो मिडल ईस्ट के सभी 18 देशों में इसराइल की अर्थव्यवस्था सऊदी अरब के बाद दूसरे स्थान पर आती है। जब बात विकास की आती है तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी इसराइल मिडल ईस्ट के सभी देशों में सबसे आगे है। जब बात सेना की आधुनिक हथियारों की आती है तो इसमें भी इसराइल ईरान को छोड़कर मिडल ईस्ट के सभी देशों से बहुत आगे है। और टेक्नोलॉजी में भी इसराइल का कोई मुकाबला नहीं, ना ही इंटेलिजेंस में। यानी ज्यादातर मामलों में इसराइल मिडल ईस्ट के बाकी देशों के मुकाबले बहुत बहुत मजबूत है। लेकिन इसी जगह क्षेत्रफल का मामला, यही उसकी कमजोर नब्ज है। क्षेत्रफल के मामले में वो बहुत पीछे है। उसका क्षेत्रफल लगभग उतना है जितनी हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास जमीन। जब मिडल ईस्ट का नक्शा देखा जाता है तो इसमें इसराइल बहुत छोटा नजर आता है। इसराइल का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 21,937 वर्ग किलोमीटर है। और आपको यकीन नहीं होगा कि एक ईरान में इसराइल जैसे 75 देश समा सकते हैं। ये देखिए मैप, ये जो आपको पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का, डार्क बैगनी रंग का, जो गाढ़ा बैगनी रंग का कलर दिख रहा है, ये इसराइल है। अब इसके मुकाबले आप देखिए जॉर्डन भी बड़ा दिख रहा है, इराक, ईरान और सऊदी अरब तो खैर बहुत ही बड़ा। तो इस इसराइल जैसे 75 देश ईरान में समा सकते हैं। सऊदी अरब के कुल क्षेत्रफल में 98 इसराइल, यूएई में 4 इसराइल, इराक में 20 इसराइल और जॉर्डन के भी क्षेत्रफल में इसराइल जैसे 4 देश बन सकते हैं। और यही कारण है कि जब भी कोई संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो उसमें इसराइल अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने के बारे में सोचता है और इस युद्ध में वो यही कर रहा है। वो दक्षिणी लेबनान को बफर जोन बनाकर उसे अपने नियंत्रण में करना चाहता है, जबकि गाजा में भी उसने 70% जमीन को अपने नियंत्रण के लिए में लेने के आदेश दिए हैं, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं। और नाराज इसलिए हैं क्योंकि लेबनान पर इसराइल के हमलों से वो ईरान के साथ डील नहीं कर पा रहे। ईरान चाहता है कि लेबनान में उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह रोका जाए, वरना वो भी इसराइल पर हमले करेगा। अब इसराइल अपनी जगह, अपनी सुरक्षा चाहता है। IRGC की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मुसावी ने कहा कि लेबनान में दुश्मन के अपराधों के सामने ईरान का सब्र अब जवाब देने वाला है और अगर ये हमले रोके नहीं गए तो इसराइल को इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहां यह भी समझना जरूरी है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप और PM नेतन्याहू की दोस्ती टूटती है तो इसका असर आपकी जेब और रसोई दोनों पर पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान में सैन्य कार्रवाई को नहीं रोकेंगे तो अमेरिका इसराइल से खुद को अलग कर लेगा और ऐसी स्थिति में अमेरिका और ईरान के बीच डील होने की संभावना मुश्किल में आएगी। ईरान यह कहेगा कि वो और हिजबुल्ला अलग नहीं है। अगर लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ युद्ध जारी रहता है तो इस डील का कोई मतलब नहीं है। इसराइल लेबनान पर अटैक अगर नहीं रोकता है तो ऐसे में ये डील नहीं होगी, ईरान अड़ा रहेगा। डील नहीं होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान खोलेगा नहीं। अगर हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो 20% तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं होगी और अगर यह आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो भारत के लिए संकट गहराएगा। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पहले ही भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 बार बढ़ चुकी हैं और ये 7.5% महंगा हो चुका है। यहां बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें दुनिया के 98 देशों में बढ़ी हैं, ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत के मामले में पेट्रोल डीजल का महंगा होना आम लोगों की जेब के लिए अच्छा नहीं है। भारत के आम लोगों की पेट्रोल डीजल खरीदने की क्षमता अगर आप देखिए तो लोगों के लिए चैलेंज है। अमेरिका के लोग प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हर दिन 198.7 लीटर पेट्रोल, जापान में 92 लीटर पेट्रोल, ब्रिटेन में 74.3 लीटर, जर्मनी में 69 लीटर, फ्रांस में 55.3, इटली में 50.8, रशिया में 41.6, चाइना में 28.7 और भारत में आम लोगों की प्रतिदिन 7.6 लीटर पेट्रोल खरीदने की क्षमता है। यही कारण है कि भारत के लिहाज से इस युद्ध का और फैलना सही नहीं है और इससे भारत के चैलेंजेस बढ़ेंगे। कि आखिर भारतीय राजनीति में सब कुछ जायज क्यों माना जाता है और ऐसा क्यों है कि जैसे ही कोई मुद्दा सरकार को घेरने का अवसर देता है वैसे ही तथ्य पीछे हो जाते हैं, राष्ट्रहित पीछे चले जाते हैं या धकेल दिए जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पर किसी को कोई असहजता भी नहीं होती, किसी को यह चिंता नहीं होती कि राजनीतिक लाभ के लिए देश की छवि, देश की प्रतिष्ठा, देश के तथ्य दांव पर लगाए जा रहे हैं। आज राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर एक बयान दिया और ये कहा कि पहले व्यापार के मामले में भारत अमेरिका का खूब फायदा उठाता था, लेकिन अब अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है। इस बयान को भारत की राजनीति में ब्रह्म वाक्य मान लिया गया और इसे ऐसे पेश किया गया जैसे राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है और भारत ने अमेरिका के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। लेकिन आज हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या किसी ने रुककर पूछा कि इस दावे का आधार क्या है? क्या किसी ने व्यापार के असली आंकड़े निकाले? क्या किसी ने यह जांचने की कोशिश की कि वास्तविक स्थिति क्या है? और क्या किसी ने यह देखा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संतुलन आखिर कहता क्या है? या किसी ने यह समझने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी निजी राजनीति को साधने के लिए भारत के खिलाफ बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इस बयान की सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि इससे रणनीतिक और राजनीतिक हमला किया जा सके। हमारे देश में जब राजनीति का मौका दिखाई देता है तो अक्सर तथ्य सबसे पहले बलि चढ़ जाते हैं। विडंबना देखिए, आज के दौर में हर तरफ फैक्ट चेक की बातें होती हैं। कई तथाकथित फैक्ट चेकर इसकी सोशल मीडिया पर दुकान सजाते हैं, लेकिन हकीकत में कई बार यही लोग राजनीतिक रूप से सुविधाजनक बयानों को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेते हैं और इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि यहां ऐसे बयान उनके एजेंडे को सूट करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान आज उनको बड़ा मजेदार लग रहा है, आज यही हुआ है। आप पहले इस बयान को सुनिए, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। सुनिए।
1: Look, India for years has, and I don't blame them, I blame us because we had stupid people here. India for years really took advantage of the United States. You know, they charged us tremendous tariffs. And they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example, in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that that happened, but it happens. It was before me. But they charged tremendous amounts of tariffs to our company. And we didn't charge them anything. You know, they sold motorbikes here too. You know, we charged them nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India. But we'll get to a deal, because I like, you know, and we're making a lot of money with India. But we'll get to a deal, because I like, you know, I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great. And we're going to make a deal. We have a very good relationship. And we're making a lot of money with India. But we'll get to a deal, because I like, you know, I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great. And we're going to make a deal. We have a very good relationship.
0: इस बयान को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि क्या वाकई में अमेरिका भारत का फायदा उठा रहा है और इसमें आखिर कितनी सच्चाई है। तो आज आंकड़ों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यही कहते हुए भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था ना, कि हम अमेरिका के साथ बराबरी का व्यापार नहीं करते। अमेरिका तो हम पर काफी कम टैरिफ लगाता है, लेकिन हम अमेरिका के सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, जिससे भारत को फायदा होता है। अब आंकड़े बताते हैं कि यह फायदा होता भी था। साल 2024-25 में भारत ने अमेरिका को 7,33,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया, जबकि इसी दौरान अमेरिका ने हमें 3,86,000 करोड़ रुपए का ही निर्यात किया और इससे अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार मुनाफा है वो 3,47,000 करोड़ रुपए का था। तो इतना हम फायदे में रहते थे। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि पहले कम टैरिफ के कारण भारत अमेरिका का बहुत फायदा उठाता था, लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि अब ये स्थिति बदल गई है और अब अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है। इस बयान से ऐसा लगता है कि टैरिफ लगने के बाद भारत का ट्रेड सरप्लस खत्म हो गया। ये नंबर याद रखिएगा, 3,47,00,000 रुपए, यही है ना हमारा मुनाफा जो 24-25 में था। और ऐसा लग रहा है जैसे अब हम अमेरिका हमसे व्यापार मुनाफा कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे, जबकि ये बात सरासर गलत है। टैरिफ लगने के बाद साल 2025-26 में भारत और अमेरिका के बीच 12,43,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। यह व्यापार पिछले साल से 1,24,000 करोड़ रुपए ज्यादा है और इसमें भी भारत ने अमेरिका को 7,70,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है, जबकि अमेरिका ने हमें 4,73,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। यानी मतलब ये हुआ कि टैरिफ लगने के बाद भी भारत का अमेरिका के साथ व्यापार मुनाफे में है, 2,97,000 करोड़ रुपए का है। और अब भी अगर हम देखें तो हम ट्रेड सरप्लस में है, पिछली बार से कमी जरूर आई है, पहले से लगभग 25,000 करोड़ की। लेकिन आज भी भारत फायदा उठाने की बात, भारत फायदा उठा रहा है। और जो ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी निजी राजनीति के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब हमें फायदा हो रहा है, ये बात किसी भी फैक्ट की सच्चाई पर, कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। आज भी भारत का व्यापार मुनाफा 3,00,000 करोड़ के आसपास है। ये बात सही है कि अमेरिका का निर्यात पिछले साल से 87,000 करोड़ रुपए बढ़ा है और हमारा व्यापार मुनाफा 50,000 करोड़ रुपए कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका फायदे में है। भारत आज भी फायदे में है और नंबर आपके सामने है लगभग 3,00,000 करोड़ का। आगे बढ़िए। हकीकत तो यह है कि हम अब भी लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए के ट्रेड सरप्लस में चल रहे हैं, लगभग 3,00,000। अगर कुछ लोगों को परेशानी है तो एग्जैक्ट नंबर बता देते हैं, 2,97,000 करोड़। ठीक है, तो हम आज भी ट्रेड सरप्लस में ही हैं। अगर मार्च 2026 के भी आंकड़े देखें तो इस एक महीने में अमेरिका और भारत के बीच 1,21,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जिसमें भारत कुल 38,146 करोड़ रुपए के फायदे में रहा। लेकिन फिर भी जब राष्ट्रपति ट्रंप इन आंकड़ों से इतर गलत दावा करते हैं तो हमारे देश में विपक्षी नेता इसे सच मान लेते हैं और इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि आप करिए राजनीति, सरकार पर सवाल उठाइए, लेकिन सवाल है कि राष्ट्रपति ट्रंप जब जब भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी राजनीति को, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को साधने के लिए, तो हम सबको एक आवाज में उनके खिलाफ बोलना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप गलत दावा करके हमारे देश की छवि ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे अमेरिका हमारा फायदा उठा रहा हो, लेकिन आज भी हम 3,00,000 करोड़ के सरप्लस में चल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ लगने से अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन यहां भी उनका दावा गलत है। न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व बैंक कहता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों से अमेरिका का औसत टैरिफ 2.6% से 13% हुआ, लेकिन इस टैरिफ का बोझ दुनिया के दूसरे देशों पर नहीं पड़ा। टैरिफ का 90% भुगतान अमेरिका के लोगों ने ही किया, जबकि 10% भुगतान कंपनियों ने किया। यानी अगर भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लागू भी हुआ तब भी इस टैरिफ को हमने और हमारी कंपनियों ने भरा ही नहीं, इसे तो अमेरिका के लोगों ने भरा। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो भारत से खूब पैसा कमा रहे हैं, हमारे देश के विपक्षी नेता इसे सच मान लेते हैं। अगर अमेरिका की इस रिपोर्ट पर यकीन ना हो तो जर्मनी के केल इंस्टीट्यूट के आंकड़े देखिए, जो ये कहता है कि टैरिफ का 96% बोझ अमेरिका के लोगों ने उठाया, सिर्फ 4% बोझ कंपनीज ने उठाया। हमारा सोर्स है केल। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच ऐसा कोई बहुत बड़ा समझौता नहीं हुआ जिसके आधार पर यह कहा जाए कि अमेरिका भारत का फायदा उठा रहा है। 31 अक्टूबर 2025 को भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा समझौता हुआ वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टेक्नोलॉजी के साझा इस्तेमाल को लेकर था। उसी का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 19 मई 2026 को भी एक करार हुआ जिसमें यह तय हुआ कि अमेरिका भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए जरूरी सेवा, जरूरी उपकरण देगा, लेकिन यह भी कोई ऐसा समझौता नहीं था जिससे अमेरिका ने हमारा फायदा उठा लिया। अगर हमने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं तो उनकी मेंटेनेंस के लिए ऐसे समझौते हमें करने ही होंगे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप हर बार की तरह ऐसे दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, हमारे देश में इस पर राजनीति होती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लेकर यह दावा किया था कि वो अमेरिका से टैरिफ से डरे हुए हैं, अमेरिका के टैरिफ से, और ऐसा दावा था कि जिस पर फ्रांस के विपक्षी दल राजनीति कर सकते थे और यह भी कह सकते थे कि उनके राष्ट्रपति अमेरिका के टैरिफ से डर गए हैं, उनके दबाव में हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा कुछ हुआ नहीं और वहां के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति ट्रंप पर ही सवाल उठाया और उनके देश के लिए ऐसी टिप्पणी। ऐसा दावा था कि जिस पर फ्रांस के विपक्षी दल राजनीति कर सकते थे और यह भी कह सकते थे कि उनके राष्ट्रपति अमेरिका के टैरिफ से डर गए हैं, उनके दबाव में हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा कुछ हुआ नहीं और वहां के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति ट्रंप पर ही सवाल उठाया और उनके देश के लिए ऐसी टिप्पणी, आखिर वो कैसे कर सकते हैं, ये जमकर उन्होंने बात रखी। कनाडा को लेकर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया था कि वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी उनके टैरिफ से आशंकित हैं। और अब तक कनाडा अमेरिका का फायदा उठाता था, लेकिन अब अमेरिका कनाडा का फायदा उठाएगा। लेकिन सोचिए, कनाडा में भी इस पर पॉलिटिक्स नहीं हुई, सारा देश एक साथ मिलकर कनाडा के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर खूब सवाल किए। यही चीज जर्मनी के मामले में हुई, स्पेन के मामले में, नेटो के मामले में, यूरोपियन यूनियन के मामले, यहां तक कि चाइना के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप ने जो दावे किए उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। और अमेरिका के मीडिया ने खुद कई बार इन बयानों का फैक्ट चेक किया, लेकिन हमारे देश में इसको लेकर खूब पॉलिटिक्स हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप के दावे को आज खूब महिमामंडन किया जा रहा है। इसी के साथ यह आंकड़ा हमारा नहीं है, यह आंकड़ा जो वहां पर छापे गए वॉशिंगटन पोस्ट में है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तक के आंकड़े को अगर आप देखिए तो वॉशिंगटन पोस्ट ये दावा करता है, वॉशिंगटन पोस्ट ये दावा करता है, एक बार फिर से वो नंबर दिखा दीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट ये दावा कर रहा है कि खुद ट्रंप ने अपने कार्यकाल में 30,573 झूठ बोले हैं। ये किसी और का दावा नहीं है, ये हमारे आंकड़े भी नहीं है, अमेरिका के मीडिया का है। और आप ईरान को ही याद कर लीजिए, ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या क्या दावे नहीं किए, लेकिन सोचिए क्या वहां इन दावों पर आंख मूंद कर कोई विश्वास कर रहा है। याद कीजिए जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल भारत को डेड इकोनॉमी बताया था तब भी कई विपक्षी नेताओं ने इस पर आपत्ति नहीं जताई, बल्कि हां में हां मिलाया। लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे की भी पोल खुल गई। चलिए आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आज साल 2025-26 की जीडीपी के आंकड़े क्या हैं। तो डेड इकोनॉमी जिसे बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और हमारे देश में हां में हां मिलाया जा रहा था, तो एक बार ये नजर मार लीजिए, ये 2025-26 के आज नंबर्स आए हैं, 7.7%। पिछले साल का अगर आप नंबर देखिएगा तो ये देखिए 7.1%। इसी के नजरिए से अगर आप अमेरिका का देखें तो मौजूदा नंबर है 2.1% का की वृद्धि, और वहीं जब आप पिछले साल का देखेंगे तो 2.8% का, इसी के आसपास ये झूल रहे हैं। वहीं पर चाइना में भी देखेंगे तो चाहे वो इस साल का हो या फिर पिछले साल का हो, दोनों में ही 5% है जीडीपी। फिर आप आ जाइए जर्मनी पर, जर्मनी में हालत इन दिनों दुरुस्त नहीं है और ये गिरावट है -0.5% की उनकी जीडीपी में, जो कि पूरी तरह से आप कह सकते हैं एक रेड सिग्नल यहां पर ब्लिंक कर रहा है। वहीं अगर आप देखें तो अभी जो नंबर ये पिछली बार का है, पिछले साल का है, इस बार वो 0.2% आगे बढ़े हैं, इससे उभरे हैं। अब जापान पर आ जाइए, जापान 0.1% है, 0.1% पिछले साल था और इस बार कितना है वो 1.1%। और वैसे ही ब्रिटेन में 1.3%, मतलब आप समझ लीजिए कि ये दोनों देश लगभग आसपास ही हैं, इनसे 1% ऊपर ये अमेरिका है और यहां पर आप देखिए तो पिछले साल में इनके नंबर्स 1.1% थे। तो इससे अंदाजा आपको लग जाएगा कि चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना, जर्मनी, जापान, जीडीपी के मामले में जो नंबर्स आए हैं वो साफ तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर एक बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यही है कि आज इन सब के इर्द गिर्द हो रही पॉलिटिक्स के बीच सच कहीं छिप ना जाए। बात सिर्फ भारत की डेड इकोनॉमी बताने की नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 बार ये दावा किया कि भारत ने रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है, खूब हमारे देश में इसमें पॉलिटिक्स हुई। लेकिन सच यही है कि आज तक एक बार ऐसा नहीं हुआ जब हमने रशिया से अपने कच्चे तेल के आयात को बंद किया हो। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये आंकड़े देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 अगस्त 2025 को भारत पर रशिया से तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाया था। रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो, लेकिन तब भी हम नहीं झुके। और मुझे आज भी व्लादिमीर पुतिन का मेरा वो इंटरव्यू याद आता है जिसमें यह सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि वो तो हमसे यूरेनियम खरीदते हैं तो खुद पर टैरिफ क्यों नहीं लगा देते। तो अमेरिका अगर यूरेनियम खरीद सकता है तो भारत तेल क्यों नहीं। और अगस्त 2025 में हमने रशिया से प्रतिदिन 16,90,000 बैरल कच्चा तेल आयात किया था। अगस्त के बाद सितंबर में भी ये प्रतिदिन 16,10,000 बैरल रहा। और जब हमारे देश के बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भारत अमेरिका से डर गया है और हमने रशिया से कच्चे तेल की खरीद कम कर दी है, तब यही खरीद अब ने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची और नवंबर महीने में हमने रशिया से प्रतिदिन 18,40,000 बैरल तेल खरीदा। और ये पूरा ग्राफ आप देख सकते हैं। कि इसके बाद भी हमने रशिया से कच्चे तेल की खरीद बंद नहीं की और रशिया हमारा सबसे बड़ा ऑयल पार्टनर बना रहा। दुख की बात यह है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो भारत से खूब पैसा कमा रहे हैं तो हमारा विपक्ष इस बयान को उठाकर मुद्दा बनाता है। जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि अमेरिका ने भारत पर जो दबाव बनाया वो सारा दबाव बेकार गया, भारत अमेरिका से डरा नहीं, तो ये बयान कोई कोट नहीं करता। लेकिन आज हम आपको राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह बयान भी दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने उसी वक्त दिया जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत को लेकर ये भ्रामक दावा कर रहे थे। सुनिए।
2: हमें खुशी है कि भारत दुनिया के सभी देशों के साथ अपने संबंध विकसित कर रहा है। भारत एक महान देश है, ये लगभग 1.5 अरब लोगों का देश है, इसकी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। भारत अपने हितों के अनुसार उन देशों के साथ आर्थिक और अन्य संबंध विकसित करेगा जिन्हें भारत आवश्यक समझता है। अमेरिका कुछ मुद्दों पर भारत पर दबाव डालने की कोशिश करता है, खासकर रूस के साथ भारत के सहयोग को लेकर, लेकिन हर कोई चुका है कि नरेंद्र मोदी और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और द्विपक्षीय रिश्तों के लिए नुकसानदायक है। ये मायने नहीं रखता कि ये दबाव कहां से आ रहा है, ऐसा दबाव वैश्विक संबंधों के लिए अच्छा नहीं है।
0: आज जब हमारे देश में ये सारी राजनीति हो रही है तब हम आपको 6 जनवरी 2021 की ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये वही तस्वीरें हैं जब अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने चुनावी नतीजों के खिलाफ दंगे किए थे और अमेरिका की संसद का मजाक बनाकर रखा था। इन दंगों में जो लड़का कैपिटल हिल की खिड़कियों को तोड़कर अंदर घुसा था और जिसे अमेरिका की अदालत ने इसके लिए दोषी माना था, जानते हैं इस दंगाई के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया है। एलियस इरिजारी नाम के इस लड़के को राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन में यानी अमेरिका के रक्षा विभाग में नौकरी दे दी है और जब इस पर सवाल खड़े हुए तो पेंटागन के प्रेस सचिव जोएल वाल्डेज ने कहा कि यह लड़का देशभक्त है, इसके जैसे लड़कों की अमेरिका के रक्षा विभाग को सख्त जरूरत है। सोचिए, अब तक हम नहीं सोचते थे कि भारत में बाहुबलियों, अपराधियों, दंगाइयों को चुनावों में टिकट कैसे ये पार्टियां दे देती हैं। सांसद विधायक वो बन जाते हैं, जेल से चुनाव लड़कर जीत जाते हैं, लेकिन अमेरिका तो इससे भी एक कदम आगे निकल गया। उसने अमेरिकी संसद में हिंसा करने वाले लड़के को रक्षा विभाग में नौकरी ही दे दी। वह क्या गजब हो रहा है राष्ट्रपति ट्रंप के राज में। बात करेंगे ईरान की, जहां एक बार फिर से युद्ध की आग धधक उठी है। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर अटैक किया जिसके जवाब में अमेरिका ने केशम द्वीप पर बमबारी शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि शांति लंबे समय तक शायद कायम रहेगी लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी ऐसा लग रहा है। इन हमलों के बीच एक और बड़ी खबर आई है। इस साल 28 फरवरी के बाद से एक सवाल पूरी दुनिया पूछ रही थी कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई का क्या हुआ, उनकी अंतिम विदाई का कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। अब इन सवालों का ठोस जवाब मिलने लगा है। ईरान के सरकारी मीडिया IRNA के मुताबिक पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम यात्रा 16 जून से 26 जून के बीच किसी एक दिन निकाली जाएगी। हालांकि अभी तक तारीख तय नहीं है लेकिन खबरों के मुताबिक इसी महीने मुहर्रम के दौरान अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। IRNA की खबर के मुताबिक अली खामनेई के जनाजे के लिए ईरान में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा जाएगा और इन 3 दिनों के अंदर अलग अलग जितने शहर हैं तमाम शहरों में शोक सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। अनुमान है कि उनके जनाजे में करीब 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। खबर के मुताबिक अली खामनेई का जनाजा तेहरान के अलावा देश के 2 प्रमुख धार्मिक शहर कोम और मशहद में भी गुजरेगी। योजना के मुताबिक मशहद में अली खामनेई के शव को सुपुर्द खाक किया जाएगा क्योंकि ये शहर उनका घर था। दुनिया के ज्यादातर धार्मिक परंपराओं में व्यक्ति की मृत्यु के कुछ ही दिनों के अंदर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन अली खामनेई के मामले में करीब 3 महीने बाद जनाजा उठेगा। अली खामनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमलों में हुई थी और उसी के बाद से ईरान के वरिष्ठ नेता और सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उनके शव को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। अपने पूर्व सुप्रीम लीडर की अंतिम यात्रा की तैयारियों के बीच ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता को फिलहाल रोक दिया है और अटैक शुरू कर दिए हैं। ईरान की फार्स और तस्निम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान की तरफ से शांति वार्ता के मीडिएटर्स से बातचीत बंद कर दी गई है और बातचीत बंद करने की वजह इसराइल द्वारा लेबनान पर किए जा रहे हमले हैं। युद्ध विराम के पहले शर्त यह रखी गई कि इसराइल लेबनान पर हमले नहीं करेगा, लेकिन हमने आपको बीते दिन बताया लेबनान पर हमले करने के लिए ट्रंप कह रहे हैं नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। दोनों के बीच बकझक हो गई, लेकिन हिजबुल्ला की ओर से किए गए हालिया हमलों के बाद इसराइल ने फिर से लेबनान में अपने सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिए और दक्षिण लेबनान और बेरूत पर जबरदस्त बमबारी की है। इसी सैन्य ऑपरेशन को आधार बनाते हुए ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और इसी के साथ साथ उसने बातचीत को बंद कर दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन दावों को झूठा बताया गया है। उनके मुताबिक ईरान के साथ बातचीत लगातार जारी है और अब समय आ गया है कि किसी ना किसी तरह के एक समझौता किया जाए। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर और ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमले किए, उसे देखते हुए दोनों देशों में शांति बहाली की उम्मीद कम होती जा रही है। कल अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी के दौरान ईरान की ओर जा रहे एक ऑयल टैंकर पर मिसाइल फायर किए थे। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकेबंदी को पार करके एक शिप खार्ग द्वीप की ओर जा रहा था। कई चेतावनी दी गई, कई चेतावनियों के बाद भी जब जहाज को नहीं मोड़ा गया तब अमेरिकी फाइटर जेट्स ने शिप के इंजन पर हेल फायर मिसाइल्स दाग दी, जिसके बाद जहाज को काफी नुकसान हुआ। 13 अप्रैल के बाद से अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी लगाई हुई है और वहां जाने वाले 100 से ज्यादा जहाजों को वापस भेजा गया है। जहाज को रोकने से ईरान भड़क गया, जिसके जवाब में उसने कुवैत बहरीन पर मिसाइल ड्रोन अटैक किए। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि IRGC ने कुवैत एयरपोर्ट के अलावा बहरीन में मौजूद US नेवी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। IRGC का दावा है कि इस हमले में काफी नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सभी हमले को समय रहते हुए इंटरसेप्ट किया गया, नाकाम कर दिया गया। US सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था। ईरान ने 2 मिसाइलें कुवैत पर, 3 मिसाइलें बहरीन पर दागी, जिन्हें नाकाम कर दिया गया। आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिका को उत्तर कोरिया में ईरान नजर आता है। जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपने यूरेनियम को सरेंडर करे, तब जानते हैं किम जोंग उन क्या कर रहे हैं। किम जोंग उन ने एक गजब का खेल किया है। उत्तर कोरिया की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्होंने एक ऐसी फैक्ट्री का दौरा किया जहां यूरेनियम को परमाणु हथियारों के लिए एनरिच किया जाता है और तस्वीरें जारी कर दी। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने खुद इन तस्वीरों को जारी किया है, जो अमेरिका के लिए बड़ा संदेश मानी जा रही है। और इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि क्या इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर उसका यूरेनियम सरेंडर करने के लिए दबाव बना रहे हैं। असल में परमाणु हथियारों को लेकर जो दबाव आज ईरान पर है, वही दबाव आज से 40 साल पहले उत्तर कोरिया पर भी था। उस वक्त अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर कई प्रतिबंध लगाए ताकि वो परमाणु हथियार बनाने की अपनी जो कोशिशें हैं उसको बंद कर दे। कई बार उत्तर कोरिया ने यह वादा भी किया कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उस वक्त अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर निगरानी रखी, लेकिन ईरान की तरह उसे अपना यूरेनियम सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं किया। और इसी बात का फायदा उठाकर गोपनीय तरीके से उत्तर कोरिया ने साल 2006 में अपना पहला परमाणु हथियार बना लिया। और यह वो क्षण है जिसके कारण आज अमेरिका ईरान के मामले में कोई लापरवाही नहीं करना चाहता है। अमेरिका को लगता है कि अगर उसने ईरान का यूरेनियम उससे हासिल नहीं किया तो कुछ सालों के बाद ईरान भी परमाणु हथियार बना लेगा और वहां के सुप्रीम लीडर भी इसी तरह से परमाणु हथियार बनाने वाले कारखानों का दौरा करेंगे, जैसे किम जोंग उन उत्तर कोरिया में कर रहे हैं। देखिए,

0: तो उत्तर कोरिया की तस्वीर आपने देख ली, किम जोंग उन का अपना एक स्टाइल है और उस स्टाइल में आप देख रहे हैं उनका एक मॉडल है और उसी मॉडल पर उत्तर कोरिया काम कर रहा है, जिसके कारण वो अपने यूरेनियम को अमेरिका के हवाले नहीं करना चाहता। ये तस्वीरें करीब साल भर पहले की हैं, जब इसराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। यह अमेरिका का दावा था। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने यही कहा था कि ईरान का यूरेनियम अमेरिकी हमलों के कारण जमीन के नीचे दब गया है और यह अब भी सुरक्षित है। लेकिन आज संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि ईरान का यही यूरेनियम अब गायब हो चुका है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसकी निगरानी से बाहर निकल गया है। वो अब इतना तक बता सक पाने की हालत में नहीं है कि ईरान के पास इस वक्त कुल कितना यूरेनियम है, उसका क्या फॉर्म में वो यूरेनियम है, किस स्वरूप में है, उसे किस खुफिया जगह पर छिपा कर रखा गया है। IAEA ये तक नहीं बता पा रही कि ईरान ने यूरेनियम को और ज्यादा ताकतवर बनाने की अपनी जितनी भी उसकी गतिविधियां थी उसको पूरी तरह से रोका है या नहीं। ये समझ से परे है कि दुनिया भर की न्यूक्लियर साइट्स और कार्यक्रमों की देखरेख नियंत्रण करने वाली संस्था इतनी बेबस और असहाय नजर आ रही है। और ऐसा क्या ऐसा हो भी सकता है कि ईरान पिछले साल अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बचाने में कामयाब हो गया था और यूरेनियम को उसने किसी और जगह सुरक्षित छिपा दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि भारत को दूसरे देशों से सर्टिफिकेट लेने की आखिर क्या जरूरत है। अगर कोई विदेशी अखबार, कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, कोई ग्लोबल थिंक टैंक भारत के बारे में कोई दावा कर दे तो हमारे यहां उसे लगभग अंतिम सत्य की तरह स्वीकार कर लिया जाता है। आज बात सोने की होगी, उसे शेयर किया जाता है, उसके आधार पर बहसें होती हैं, राजनीतिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सरकारों को घेरा जाता है। लेकिन जब उसी दावे को देश का केंद्रीय बैंक, आधिकारिक आंकड़े, जिम्मेदार संस्थाएं तथ्यों के साथ खारिज करती हैं तो अचानक लोगों को सबूत कम और संदेह ज्यादा दिखाई देने लगता है। आखिर ऐसा क्यों और क्यों विदेशी होने भर से कोई दावा विश्वसनीय नहीं हो जाता। इस हफ्ते 2 जून 2026 को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिसमें ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता ने अनुमान लगाया कि 22 मई तक के 2 हफ्तों में RBI ने $12 बिलियन यानी लगभग 1,16,000 करोड़ रुपए का सोना बेचा है और इसी दौरान $7.5 बिलियन की विदेशी मुद्रा खरीदी है। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा तर्क यह था कि ईरान युद्ध के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर काफी दबाव है और शायद इसीलिए RBI ने अपने सोने का कुछ हिस्सा बेच दिया और बेचकर डॉलर रिजर्व को मजबूत किया है। बड़ी बात यह है कि इस अनुमान का कोई विश्वसनीय आधार था ही नहीं। भारत को लेकर इतनी बड़ी बात सिर्फ ये सोचकर लिख दी गई कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ रही है और फिर भी RBI के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में इजाफा नहीं हो रहा है तो शायद RBI ने कुछ सोना बेच दिया होगा। अब ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई, हमारे देश में खूब हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब देश का सोना बेचा गया, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इस रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी ने यह कहा कि भारत में आर्थिक सुनामी आने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अगले 1 साल में गिर जाएगी। इतना हंगामा हुआ, RBI ने इस खबर का फैक्ट चेक किया, ये बताया कि 3 जून को भारत की फिजिकल होल्डिंग, जो गोल्ड होल्डिंग है, वो 880.52 टन थी और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। RBI के बाद PIB ने भी यही बताया कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का महत्व तो बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। दिसंबर 2025 में यह हिस्सेदारी 13.92% थी जो 31 मार्च 2026 को 16.70% हुई और 22 मई को 2026 को 16.85%। जानते हैं, इस फैक्ट चेक के बाद ब्लूमबर्ग ने अपनी गलती मानी, अपनी रिपोर्ट को हर प्लेटफॉर्म से डिलीट किया। जब तक ब्लूमबर्ग ने खुद माफी नहीं मांगी थी और खुद रिट्रैक्ट नहीं किया अपने इस खबर को, तब तक कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं था। अब ब्लूमबर्ग ने यह भी कहा कि उसकी पुरानी रिपोर्ट गलत थी, इनएक्यूरेट शब्द उन्होंने लिखा है और वो इसके लिए खेद प्रकट करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ब्लूमबर्ग ने तो इस रिपोर्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन हमारे देश के जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने, जिन यूट्यूबर्स ने इस रिपोर्ट पर आधारित बड़े बड़े एक्सप्लेनर्स बना दिए, इस पर पोस्ट लिखे उन्होंने अब तक इसे डिलीट नहीं किया है। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अब भी ये खबर एक लेबल की तरह चिपकी हुई है, जबकि ब्लूमबर्ग इस रिपोर्ट को डिलीट कर चुका है। और इसीलिए सवाल यह है कि अगर फेक न्यूज फैलाकर ब्लूमबर्ग उस खबर को हटा सकता है, उस पर खेद प्रकट कर सकता है, तो इस रिपोर्ट पर लंबे चौड़े पोस्ट लिखने वाले जो अलग अलग लोग हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वो एक फर्जी खबर पर अपने पोस्ट और एक्सप्लेनर को क्यों नहीं हटा रहे हैं? और क्या इससे ये नहीं पता चलता है कि हमारे देश में सिर्फ राजनीति के लिए कितनी गंदी राजनीति की जाती है? अगली खबर का रुख करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या भारत में हर्षद मेहता से भी एक बड़ा स्कैम हुआ है, और क्या ये स्कैम 15 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है? 15 लाख करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। ये पैसा हमारे 2 साल के रक्षा बजट के बराबर है, पाकिस्तान जैसे देश की आधी GDP। और यहां तो ये मामला सीधे भारत के शेयर मार्केट और LIC से जुड़ा हुआ है। राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की जिस कंपनी पर इस घोटाले के आरोप लग रहे हैं, उसमें सरकारी बीमा कंपनी LIC की 10.8% की हिस्सेदारी है, और इसी वजह से ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। हम आपको एक एक करके वो सारी बातें बताएंगे जिससे आप इस पूरे मामले को समझ सकें। ये पूरा विवाद शुरू होता है सेबी के एक अंतरिम आदेश ने। वही सेबी जो भारत के शेयर बाजार का चौकीदार है, उसकी निगरानी करने वाला एक रेगुलेटर है। अब सेबी ने क्या किया? सेबी ने कड़ा एक्शन लिया और सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ 109 पन्नों का एक अंतरिम आदेश जारी किया है। राजेश एक्सपोर्ट्स भारत की एक बड़ी कंपनी है। करती क्या है ये कंपनी? सोने की रिफाइनिंग और गोल्ड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स का ये काम करती है। सेबी ने आरोप लगाया कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू और सेल्स के आंकड़ों में बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। अब ये गड़बड़ी इसलिए चिंताजनक थी क्योंकि रेवेन्यू में हेरफेर कुछ पैसों का नहीं हुआ। आरोप है कि इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच पूरे 15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार दिखाया, जो वास्तविकता से कहीं ज्यादा था। आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी कह रही थी कि उसने इन 4 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया, जबकि सेबी का कहना है कि इतना कारोबार इस कंपनी ने कभी किया ही नहीं है। मतलब 15 लाख करोड़ का जो उसने नंबर दिया वो पूरी तरह से गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, और कैसे किया अब वो भी समझिए। दरअसल ये कंपनी कहती थी कि उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू स्विट्जरलैंड की एक गोल्ड रिफाइनरी से आता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू, नाम है वाल्कैम्बी। अब इस दावे के आधार पर सेबी ने इस विदेशी कंपनी के भी बैंक खातों की जांच की, और जब जांच हुई तो ये पता चला कि जितना कारोबार राजेश एक्सपोर्ट्स ने इसके साथ होने का दावा किया है वो इस कंपनी के रिकॉर्ड से मेल ही नहीं खाता। सेबी का यह भी आरोप है कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू के सही और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं कराए, जैसे उन ग्राहकों की पूरी सूची नहीं दी जिन्हें सोना बेचने का दावा था। जो सप्लायर्स सोना इससे खरीद और बेच रहे थे उनकी भी जानकारी नहीं दी। इस कंपनी की जो सहायक कंपनियां हैं और जो विदेशों में काम कर रही हैं उनका भी वित्तीय रिकॉर्ड सेबी को सौंपा नहीं गया, और इसी वजह से ऑडिटर इस कंपनी की पूरी तरह से जांच नहीं कर पाए। अब मान लीजिए कोई दुकानदार आपसे ये कहे कि उसने पूरे साल काम करके 1 करोड़ रुपए कमाए लेकिन उसका मुनाफा सिर्फ 1 लाख रुपए रहा, तो आप क्या कहेंगे? आप यही सोचेंगे कि इतनी बड़ी बिक्री के बावजूद मुनाफा इतना कम। और आरोप है कि इस मामले में भी यही खेल चल रहा था। राजेश एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू तो करोड़ों में था लेकिन इसका कुल बाजार मूल्य सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़े भी इस साल के हैं जब ये कंपनी 7,80,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का दावा कर रही है। सेबी का यह भी कहना है कि इस कंपनी ने अफ्रीका में सोने की खदानों में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने का दावा किया, लेकिन जब जांच हुई तो सेबी को इसके पास से वैल्यूएशन रिपोर्ट, निवेश के प्रमाण और पर्याप्त दस्तावेज मिले ही नहीं। इससे यह सवाल उठता है कि यह निवेश हुआ भी था, यह सिर्फ कंपनी की आमदनी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए किया गया था। अब आप पूछेंगे कि अगर इस कंपनी ने 15 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया तो यह भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेट घोटाला कैसे हो गया? तो इसके पीछे है शेयर बाजार की कहानी। शेयर बाजार में जब निवेशक किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो वहां उसकी आर्थिक सेहत देखी जाती है, यानी उस कंपनी का कारोबार कितना बड़ा है, उसकी सेल कितनी है, उसका रेवेन्यू कितना है, उसमें निवेश करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। आप भी अगर शेयर में इन्वेस्ट करते होंगे तो यही सब देखते होंगे, तमाम जो हेल्थ पैरामीटर्स एक कंपनी के कहलाते हैं। अब क्योंकि इस कंपनी पर आरोप लग रहा है कि उसने अपने रेवेन्यू को वास्तविकता से ज्यादा बताया था, इसीलिए शेयर बाजार में उसका माहौल बना, उसने दिखाया बढ़ा चढ़ा कर नंबर, उसके हक में पूरा शेयर बाजार में एक माहौल बना और सबको लगा कि यहां पर अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। निवेशकों ने सोचा कि इस कंपनी में पैसा लगाने से उनको फायदा होगा, और इन निवेशकों में सिर्फ आम लोग नहीं थे। यह खबर इसीलिए बहुत बड़ी है, इनमें सरकारी बीमा कंपनी LIC भी थी। इन आंकड़ों को देखिए, मार्च 2016 में इस कंपनी में LIC की हिस्सेदारी सिर्फ 1.99% थी, साल 2022 में बढ़कर हो गई 11.22%, मार्च 26 में 10.8%। इसका मतलब यह है कि LIC ने पिछले 10 सालों में अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में 5 गुना बढ़ाई, और यह भी तब हुआ जब म्यूचुअल फंड्स को पहले दिन से इस कंपनी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 2016 में म्यूचुअल फंड्स की इस कंपनी में 0.5% की हिस्सेदारी थी, जो आज 0 है। पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी के रेवेन्यू को संदिग्ध मानकर इससे दूर रहा, लेकिन इसी जगह LIC ने इसमें अपना निवेश 5 गुना बढ़ा दिया। LIC एक सरकारी बीमा कंपनी है, जो लोग LIC में पॉलिसी खरीदते हैं उन्हें पैसे को ये कंपनी आगे निवेश करती है, जिससे ये मामला बड़ा हो जाता है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही, अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहरीली फसलों को सींचने वालों से कभी मीठे फलों की उम्मीद नहीं रख सकते। इतिहास गवाह है कि जालसाज अपने ही जाल में उलझकर दम तोड़ देते हैं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: दायित्व आया है तो मैं निभा रहा हूँ, उसे अच्छे ढंग से करना ही मेरा मकसद रहता है। अगर आप अच्छे निर्णय और सही समय पर निर्णय करते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका एक उदाहरण है।
4: Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of 5-star reviews?
5: Where did you see all this?
4: Online at APGE.com.
6: Watson, you're always so plugged in.
7: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
8: Schwarber to right field, and it will.
7: From the first pitch of the season to the stretch run,
8: that's the ball game.
7: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
9: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
10: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
9: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
11: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे PNB वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हूँ या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या FD, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
12: PNB वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
3: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
2: ज्यादा बड़ी ना है।
3: छोटे ऑन कर दे,
4: ऑन कर दे, ऑन कर दे,
2: पैक कर दे समर कूल।
3: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
6: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
7: In association with
8: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
9: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
10: Summer cool cooler, hawa aisi chhode puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
7: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
11: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
12: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
13: कूल फैंस, जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
12: कूल फैंस, स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
2: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
1: ज्यादा बड़ी ना है।
2: छोटे ऑन कर दे,
3: ऑन कर दे, ऑन कर दे,
1: पैक कर दे समर कूल।
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
4: In association with
5: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank, bharose ka prateek.
6: Summer cool cooler, hawa aisi chhode puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
4: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
7: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
8: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
9: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
8: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
10: जब उसके खिलाफ आज तक का कोई आपराधिक मुकदमा न्यायालय ने कभी सजा नहीं दी, न तो कभी चोरी में, न तो डकैती में, न तो इस तरीके के। फिर एक 302 का 307 का मुकदमा उसके ऊपर है और किसी ने अपहरण का मुकदमा लिखा रखा है, जैसे एसपी ने कहा। तो इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप इनकाउंटर। अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर हैं, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है। प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये फिर इसके मतलब इनका एलआईयू क्या कर रहा था? कैसे समाज के लोगों ने आंदोलन किया बताए? क्यों नहीं फोर्स लगाया इन लोगों ने? खाली जब आंदोलन हो गया तो कहेंगे आप राष्ट्रपति लगा देंगे। ये तो डिटेक्टरशिप हो गई।
11: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: बंगाल में नेता विपक्ष मित्रव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों से भी हो रही है बात, 61 विधायक हमारे साथ, बोले पार्टी के सलाहकार बने ममता। अखिलेश यादव के पोस्ट से सियासी तूफान तय, लिखा अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब, कहा सरकार के चुप्पी संदिग्ध, आरोपों को ट्रस्ट ने नकारा। संभल में कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से नाराज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, सरकार पर निशाना, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी रूप से जवाब देंगे। कल की बैठक से पहले गठबंधन इंडिया में दरार बढ़ी, विजयन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से आग बबूला, लेफ्ट खड़गे को लिखा पत्र, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा, ईरान से समझौते करा, कहा हम डील के बेहद करीब, तेहरान के पास विकल्प ही नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
3: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। नरेंद्र मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन 12 वर्षों में देश ने कई बड़े फैसले देखे, कई राजनीतिक पड़ाव देखे और नेतृत्व की एक ऐसी शैली देखी जिसने भारतीय राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ चुनावी जीत और सरकारी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। इस कहानी में उनका संघर्ष है, उनकी सोच है, उनका विजन है और इन लोगों के अनुभव है जिन्होंने उन्हें करीब से देखा और उनके साथ काम किया। आज कहानी में मोदी सरकार के नेतृत्व की इनसाइड स्टोरी।
4: मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना, 27 फरवरी पहली बार मैं असेंबली में गया, जीवन में पहली बार विधानसभा गृह में गया, सीएम बना तो मुझे आश्चर्य था मैं सीएम कैसे बन गया। दायित्व आया है तो मैं निभा रहा हूं, उसे अच्छे ढंग से करना ही मेरा मकसद रहता है।
5: मां अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन

0: बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं।
1: भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
2: श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
3: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि

0: एक नेता को देश उनके भाषणों से पहचानता है और एक प्रधानमंत्री को उनके फैसलों से।
1: कल 370 देश की एकता में रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा था। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी, जो कि हमारी संविधान की भावना थी, और इसलिए धारा 370 को हमने जमीन पर उतार दिया।
2: मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के नर्क से मुक्ति दिलाने का बीड़ा भी हमारी सरकार ने उठाया।
3: GST लाकर हमने वन नेशन वन टैक्स का संकल्प साकार किया। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी।
0: लेकिन किसी शख्स की असली पहचान उन लोगों से होती है जो उनके साथ काम करते हैं, जो उसे करीब से देखते हैं, जो उनकी कार्यशैली के गवाह होते हैं।
4: मुझे ये लगा कि मोदी जी ये चाहते हैं कि तिरंगा केवल श्रीनगर के लाल चौक पर नहीं, देश की जनता के मन में लहराना चाहिए, हर युवा के दिल में लहराना चाहिए। तो जोड़ो सबको। उसके जो आइडियाज देखे तो मैंने पहचाना कि ये तो अलग ही पर्सनालिटी है और अलग ढंग से काम करते हैं।
5: संघ के माध्यम से देश का युवा क्या कर सकता है, वो उन्होंने बहुत अच्छे सटीक तरीके से बहुत कम समय में समझाया था।
0: साल बदले, चुनाव बदले, राजनीतिक समीकरण बदले, लेकिन एक तस्वीर बार बार दोहराई गई, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में नरेंद्र मोदी का शपथ लेना।
6: मैं नरेंद्र दामोदर दास ईश्वर की शपथ लेता।
0: 3 बार चुनाव हुए, 3 बार जनादेश और 3 बार देश की बागडोर संभालने का रिकॉर्ड। लेकिन सवाल है कि आखिर वो कौन सी बात है जो नरेंद्र मोदी को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। वडनगर की गलियों से निकलकर दिल्ली के सत्ता शिखर पर पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, यह अनुशासन, समर्पण और लगातार खुद को चुनौती देने की कहानी भी है। आज कहानी में देखिए आखिर कौन से अनुभव थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को गढ़ा, हिमाचल की यात्रा ने उनकी सोच को कैसे बदला, संघ के जीवन ने कौन से संस्कार दिए और कौन से ऐसे निर्णायक मोड़ थे जिन्होंने आगे चलकर उनके राजनीतिक सफर की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 12 सालों से देश देख रहा है, उनकी रैलियों में शामिल होता है, उनके फैसलों पर विचार करता है, उनके भाषणों को सुनता है और उनकी राजनीति पर नजर रखता है। लेकिन हर बड़े फैसले के पीछे कुछ ऐसे पल भी होते हैं जो कैमरों से दूर रह जाते हैं।
5: गांव के लिए, व्यक्ति के लिए और क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट के काम ढूंढे, और आज ट्राइबल क्षेत्र गुजरात का सभी ट्राइबल क्षेत्रों में सबसे डेवलप क्षेत्र है।
7: मेरा बचपन बीता है लेकिन वो जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है जी, और शायद वही मेरा एक प्रकार से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुसीबत यूनिवर्सिटी है मेरे लिए जो मुझे सिखाती है।
0: 10 जून 2026 भारतीय राज्य

0: राजनीति के इतिहास में एक और तारीख दर्ज होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। एक ऐसा पड़ाव जो अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था। कुछ ऐसी कहानियां जो सिर्फ इतिहास नहीं बनाती बल्कि उस व्यक्ति को भी गढ़ती हैं जो इतिहास लिख रहा होता है। आज कहानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से जिन्होंने उनके नेतृत्व, सोच और व्यक्तित्व को आकार दिया।
1: वडनगर की गलियों से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर हर किसी ने देखा, लेकिन उस सफर के पीछे अनुभव, संघर्ष और सोच को कम ही लोग जानते हैं। बचपन में तालाब के किनारे बिताए दिन, हिमालय की यात्रा, संघ का जीवन और फिर राजनीति के शिखर तक पहुंचने की कहानी में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को आकार दिया है।
2: दूध पिया है जो लाल चौक में आके
3: हमारे राम आ गए।

0: किसी भी नेता की कहानी सिर्फ उसके पद से नहीं बनती, उसकी असली कहानी उन रास्तों में छिपी होती है जिन पर चलकर वो वहां तक पहुंचता है। नरेंद्र मोदी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1950 में जन्म और उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने भारतीय राजनीति के स्थापित समीकरणों को बदल कर रख दिया। नरेंद्र मोदी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। सपने बड़े थे लेकिन साधन सीमित थे। संघर्ष था, जिज्ञासा थी और कुछ अलग करने की बेचैनी भी।
1: गली गली में गूंजे नारा मां गुजरात।
0: गुजरात के मेहसाणा जिले का छोटा सा कस्बा है वडनगर और यहीं से शुरू हुई नरेंद्र मोदी की कहानी। रेलवे स्टेशन पर पिता दामोदरदास मोदी की छोटी सी चाय की दुकान थी। परिवार बड़ा था और आर्थिक संसाधन सीमित थे। ऐसे में छोटी उम्र से ही नरेंद्र मोदी पिता का हाथ बटाने लगे।
2: अरे नरेंद्र बेटा, ये सब अभी बराबर है, पहले बाकड़ा साफ करे, लोगों को बैठना है। और सुन, काम जरा जल्दी जल्दी करा है।
3: अरे तुम्हारा बेटा नरेंद्र बहुत अच्छा लड़का है,
2: आज्ञाकारी पुत्र है, देखना बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा ये।
4: बाबूजी केतली में चाय निकाल दो, ट्रेन आने वाली है।
2: आ बस बेटा ये निकाल दी है, ये ले जा। और सुन, ज्यादा तेज नहीं भागना, नहीं तो दोनों गिर जाओगे, चाय भी और तुम भी। हैं?
0: कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां उन्होंने लोगों को पढ़ना सीखा।
5: जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। जहां तक रेलवे स्टेशन की बात है, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है, मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया और जिंदगी अपने लिए नहीं औरों के लिए भी हो सकती है ये रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उससे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा समझा।
0: नरेंद्र मोदी के बचपन का एक और दिलचस्प अध्याय है वडनगर की लाइब्रेरी। जब दूसरे बच्चे खेल के मैदान में ज्यादा वक्त बिताते थे तब नरेंद्र मोदी घंटों किताबों के बीच दिखाई देते थे। इतिहास, संस्कृति, समाज और अध्यात्म से जुड़ी किताबें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर्षित करती थीं। खास तौर पर स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। विवेकानंद के लेखन ने उनमें आत्मविश्वास, राष्ट्रभाव और सेवा के संस्कार को मजबूत किया।
6: मुझ पर जो प्रभाव पैदा हुआ वो स्वामी विवेकानंद जी का हुआ। मैं छोटी आयु में मेरे गांव के अंदर भी एक अच्छी लाइब्रेरी थी, गायकवाड़ जी ने बनाई हुई थी। कोई भी मुझे मिलना चाहता था, खोजना चाहता था तो मैं ज़्यादातर लाइब्रेरी में मिलता था। और लाइब्रेरी की जो व्यवस्थापक थे वो भी मुझे बहुत नाराज रहते थे क्योंकि 5 बजे को बंद करने का समय है तो 5 बजे के 1 मिनट के बाद मैं बाहर निकलता था तो वो उनको अगर 2 मिनट पहले ही बंद करना होता तो कर नहीं पाते थे। उसी के नाते मुझे अभी भी याद रखते हैं, वो अभी तो बहुत वयोवृद्ध हो गए लेकिन अभी भी वो याद रखते हैं। और विवेकानंद जी को मैं बहुत पढ़ता रहता था।
0: हर बच्चे की तरह नरेंद्र मोदी के भी कुछ सपने थे। उनमें से एक था सेना की वर्दी पहनना। नरेंद्र मोदी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे। जामनगर के सैनिक स्कूल में दाखिले की इच्छा भी थी लेकिन आर्थिक हालात ने रास्ता रोक लिया था, उनका सपना अधूरा रह गया। लेकिन देश सेवा का विचार मन से कभी नहीं गया।
5: ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था, किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक रहता था। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था कुछ नहीं। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो हमारे यहाँ से दूर एक मेहसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था, तो जा कर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है, तो कभी उस दिशा में सोचता फिर चला गया।
0: फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने दिशा ही बदल दी। करीब 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी घर छोड़कर निकल पड़े, मंजिल थी हिमालय। कई महीनों तक आश्रमों और आध्यात्मिक स्थलों में पीएम मोदी ने समय बिताया, साधु संतों के बीच रहे, आत्मचिंतन किया, अनुशासन और तपस्या को करीब से समझा। ये यात्रा केवल स्थानों की यात्रा नहीं थी बल्कि स्वयं को समझने की यात्रा भी थी। यहीं से उनके भीतर जीवन को बड़े उद्देश्य के साथ देखने का दृष्टिकोण और मजबूत हुआ। हिमालय ने प्रधानमंत्री मोदी को एक और सीख दी, समाज से दूर नहीं बल्कि समाज के बीच रहकर बदलाव लाया जा सकता है। इसी सोच के साथ नरेंद्र मोदी वापस लौटे और अहमदाबाद पहुंचे। यहीं से उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ और मजबूत हुआ। प्रचारक के रूप में उन्होंने खुद को पूरी तरह संगठन के काम में समर्पित कर दिया। सुबह से रात तक कार्यकर्ताओं के बीच रहना, यात्राएं करना और संगठन को मजबूत करना ही जीवन का हिस्सा बन गया।
5: 4:30-5 बजे उठना, पूरा दफ्तर में झाड़ू लगाना, पोता करना, फिर सबके लिए चाय बनाना और 5:20 को सबको उठाना। फिर हमारे यहाँ एक आरएसएस में प्रातः स्मरण होता है, तो प्रातः स्मरण होता था, सभी महापुरुषों का स्मरण करते हैं, फिर सबको चाय परोसता था, उसके बाद शाखा चला जाता था, फिर आकर के सबके लिए नाश्ता बनाता था। तो पोहे वगैरह बनाना मुझे बहुत अच्छा आता है,
7: अच्छा।
5: सबको मैं खिलाता था और फिर कोई 10 बजे स्नान करता था।
0: फिर आया साल 1975, देश में आपातकाल लागू हुआ। विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर इंदिरा गांधी की ओर से जबरदस्त कार्रवाई शुरू हुई। उस दौर में नरेंद्र मोदी संगठन के काम में सक्रिय थे। पीएम मोदी को बचने के लिए कई बार पहचान छिपानी पड़ी, भेष बदलने पड़े, भूमिगत रहकर काम करना पड़ा। ये दौर उनके लिए संघर्ष, जोखिम और संगठन कौशल की बड़ी पाठशाला साबित हुआ।
8: गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब वो हमारे घर पे सरदार जी बन के रहे थे, हमारे पुराने घर पे मधुगुंज में हम लोग रहते थे, वहां पे रहते थे। एक बार क्या हुआ कि वो सरदार जी के वेश में बाहर निकल रहे थे और सामने से पुलिस वाला आया, तो पुलिस वाले ने उनको पूछा कि भाई यहाँ पे नरेंद्र भाई कहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को तो नहीं पता है, आप अंदर जाके पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ रहते हैं।
0: 1980 और 1990 के दशक तक आते आते नरेंद्र मोदी की पहचान एक कुशल संगठन कार्यकर्ता के रूप में बनने लगी। भारतीय जनता पार्टी में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा हो या मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा, बड़े आयोजनों के प्रबंधन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। पार्टी के भीतर उन्हें एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में देखा जाने लगा जो चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो उसे व्यवस्थित ढंग से पूरा कर सकता है।
9: 2002 गुजरात में चुनाव था, मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा कसौटी थी। वैसे मैं मेरे जीवन में करीब करीब चुनाव जीतने का अवसर मुझे बहुत मिला है, लड़ा तब भी और लड़ाया तब भी, तो मेरे जीवन में न टीवी देखा, रिजल्ट आ रहे थे, कुछ नहीं। 11-12 बजे मेरे घर के नीचे सीएम बंगलों के बाहर ढोल की आवाज आने लगी, और मैंने लोगों को कहा भाई 12 बजे तक मुझे कुछ जानकारी मत देना। फिर हमारे ऑपरेटर ने चिट्ठी भेजी कि साहब आप 2/3 बहुमत से आप आगे चल रहे हैं वगैरह। तो मैं नहीं मानता हूं कि कुछ मेरे भीतर कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन उसको ओवर पावर करने वाला मेरे पास कोई थॉट था, तो मेरे लिए वो रेस्टलेसनेस कहो, एंग्जाइटी कहो, अलग हो गया।
0: गुजरात भूकंप की त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रहा था, उसी समय पार्टी नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी थी। पहली बार नरेंद्र मोदी प्रशासनिक नेतृत्व की भूमिका में आए थे। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जो फैसले लेने में तेजी और काम में निरंतरता पर जोर देता है।

0: इसके बाद गुजरात की राजनीति में उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। विकास, प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व के मुद्दों पर उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनने लगी।
1: श्री नरेंद्र मोदी विल बी अवर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट फॉर द कमिंग लोकसभा इलेक्शन।
0: साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद शुरू हुआ देशव्यापी अभियान भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित चुनाव अभियानों में शामिल हो गया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी माँ हीराबेन को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बताते रहे हैं। मोदी ने कई बार याद किया है, जब भी वो घर से किसी काम के लिए निकलते थे, उनकी माँ चुपचाप हाथ में कुछ रुपये रख दिया करती थी। रकम भले छोटी होती थी, लेकिन उसमें माँ का स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास छिपा होता था।
1: प्यार से पैसे पकड़ाती हैं, आप उन पैसों का क्या करते हैं?
2: एक तो मेरी माँ ने मुझे जो हमेशा क्या देती है, ज्यादा से ज्यादा शायद एक बार 11 रुपया दिया था। ज्यादा से ज्यादा
3: तो नारियल और मिश्री मिली थी,
2: ज्यादा ज्यादा। लेकिन एक बार उसने मुझे 5,000 रुपया दिया।
1: अच्छा,
2: 5,000 रुपया, तो मैं सरप्राइज था जी। और क्या था, तो जिस दिन चीन के राष्ट्रपति आए थे, वो उन्होंने मेरे जन्मदिन की तारीख तय की थी खुद ने, मेरा भी ध्यान नहीं था। और उस समय अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति आए थे, तो सुबह मैं जन्मदिन था तो माँ को मिलने गया, तो उसने मुझे 5,000 रुपये दिए। मैंने कहा माँ क्या बात है।
0: वडनगर की गलियों से शुरू हुई ये यात्रा आसान नहीं थी। चाय की दुकान, लाइब्रेरी, सैनिक स्कूल का अधूरा सपना, हिमालय की तपस्या, संघ का अनुशासन, आपातकाल का संघर्ष और संगठन की लंबी साधना, हर पड़ाव ने नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में एक नई परत जोड़ी। और शायद यही वजह है कि जब इतिहास ने उन्हें अवसर दिया, तो दशकों के अनुभव, संघर्ष और तैयारी के साथ देश के सामने खड़े थे।
4: वक्त एक ब्रेक का उजला है। ब्रेक के बाद खुलेंगे सत्ता के गलियारों के कुछ ऐसे किस्से, जिन्हें साझा करेंगे वो लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सबसे करीब से काम किया है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included.
1: Oh yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers with thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
3: बहुत टाइर्ड हो गई.
4: Take a date, not bites.
5: No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
4: Lion Date Nut Bites.
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
12: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
13: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
14: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
12: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
15: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
13: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
12: जहां खबर वहां खबरदार.
16: इन एसोसिएशन विद
17: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
18: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
19: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी.
20: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है.
21: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था.
22: ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है.
20: 20 लोगों की जान चली गई. और देखिए, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे.
23: झारखंड दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रांची में बुद्धिजीवियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान इशारों इशारों में कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भारत का युवा राष्ट्र निर्माण और इनोवेशन पर ध्यान दे रहा है. रांची में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिना किसी का नाम लिए विपक्षी ताकतों पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि विदेशों में बैठे कुछ लोग ये मानते हैं कि वे भारत के युवाओं को दिशा दे सकते हैं, लेकिन देश का युवा किसी के हाथ की कठपुतली बनने वाला नहीं है.
24: कुछ लोग विदेश से बैठकर, विदेश की जमीन पर बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा दे देंगे. भारत का युवा चंद लोगों की मुट्ठी से कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला.
23: इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि विरोध करना लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए. नितिन नवीन ने पड़ोसी देशों में चलाए गए व्यवस्था विरोधी अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति भारत के युवाओं के हित में नहीं है. उनका कहना था कि देश का युवा अनुशासन, समर्पण और विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है.
24: चेतावनी देता हूं कि भारत का युवा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेगा। हम लोकतंत्र के आधार पर निश्चित रूप से हर प्रकार का विरोध करेंगे, पर लोकतंत्र के मापदंड को खत्म नहीं करेंगे। भारत का युवा निर्माण करने के लिए जानता है, भारत का युवा अनुशासन के साथ देश के निर्माण के लिए काम करेगा।
23: कुल मिलाकर झारखंड से बीजेपी ने युवाओं और विकास के मुद्दे को केंद्र में रखकर विपक्ष पर निशाना साधा है। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी का राजनीतिक असर आने वाले दिनों में कितना दिखाई देता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: बंगाल में नेता विपक्ष मित्रव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों से भी हो रही है बात, 61 विधायक हमारे साथ, बोले पार्टी के सलाहकार बने ममता। अखिलेश यादव के पोस्ट से सियासी तूफान तय, लिखा अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब, कहा सरकार की चुप्पी संदिग्ध, आरोपों को ट्रस्ट ने नकारा। संभल में कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से नाराज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, सरकार पर निशाना, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी रूप से जवाब देंगे। कल की बैठक से पहले गठबंधन इंडिया में दरार बढ़ी, विजयन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से आग बबूला, लेफ्ट खड़गे को लिखा पत्र, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा, ईरान से समझौते करा, कहा हम डील के बेहद करीब, तेहरान के पास विकल्प ही नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
3: 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तब देश ने उनका राजनीतिक सफर देखा, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने चुनावी मंच पर देखा, संसद में सुना और बड़े फैसलों के जरिए महसूस भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी कार्यशैली कैसी रही, फैसले लेने का उनका तरीका क्या है, इसका जवाब उन लोगों के पास है जिन्होंने पिछले 12 वर्षों में उनके साथ सबसे करीब से काम किया है।
4: मैं ये मानता हूं कि जिस ढंग से मोदी जी का जीवन है वो जैन जी को भी आत्मविश्वास से भरेगा।
5: क्या रिटायर होने के बाद क्या करोगे? पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ाऊं इस पर सोचूंगा।
6: मैं छोटी बैग में मेरी जिंदगी थी और मैं ट्रैवलिंग भी करता रहता
7: जी, आपने बताया झूले
6: और तो मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद धोता था, सीएम बना तब तक मैं कपड़े खुद धोया।
4: उनके साथ काम करते करते मैंने जो अनुभव किया है, जो सीखा है, जो प्रेरणा प्राप्त की है, वो हर एक के लिए उपयोगी
8: है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है।
9: सत्ता के गलियारों में दिखाई देने वाली तस्वीर अक्सर अधूरी होती है। मंच पर भाषण देने वाला नेता, चुनाव जीतने वाला रणनीतिकार या दुनिया के बड़े नेताओं के साथ बैठा प्रधानमंत्री तो सबको दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे छिपी कहानियां कम ही सामने आती हैं। कभी एक साधारण सी कलम किसी व्यक्ति के विश्वास का प्रतीक बन जाती है, कभी किसी वैज्ञानिक की सफलता को अपनी जिम्मेदारी बताकर उसका हौसला बढ़ाना पड़ता है। और कभी 140 करोड़ लोगों के जीवन पर असर डालने वाले फैसले दिन रात जागकर लेने पड़ते हैं। राजनीति में जीत के लिए रणनीति, मेहनत और जन समर्थन की जरूरत होती है, लेकिन कई बार कुछ चीजें भावनाओं और विश्वास का भी हिस्सा बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी में ऐसी ही खास कहानी जुड़ी है एक कलम से। साल 2002 में जब नरेंद्र मोदी ने राजकोट से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा तब नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर इसी कलम से किए गए थे। इसके बाद ये कलम उनके राजनीतिक सफर का एक अहम हिस्सा बन गई।
10: 2002 का चुनाव लड़ रहा था, पहली बार मैं मुझे चुनाव लड़ना था, पहली बार नामांकन भरना था और राजकोट से मैं उम्मीदवार हो रहा था। तो वहां दो संत मौजूद थे, मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिया, मैंने खोला तो अंदर एक पेन थी। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी ने भेजा है, आप जब नामांकन में हस्ताक्षर करेंगे तो इस पेन से करना। अब वहां से लेकर मैं काशी चुनाव के लिए गया, एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जब मैं नामांकन करने गया और उसके लिए मुझे हस्ताक्षर करने के लिए पैन पूज्य प्रमुख स्वामी जी के व्यक्ति आकर के खड़े न हुआ। और जब काशी गया तब तो मेरे लिए सरप्राइज था, उस पैन का जो कलर था वो बीजेपी के झंडे के कलर का था, ढंकन उसका जो था वो ग्रीन कलर का था और नीचे का हिस्सा ऑरेंज कलर का था।
9: साल 2016 उरी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में था। सरहद पार बैठे आतंकियों को जवाब कैसे दिया जाएगा, ये सवाल हर किसी के मन में था। और फिर आई वो रात जब भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। ऑपरेशन बेहद गोपनीय था। दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे थे, लेकिन ये ऑपरेशन आसान नहीं था। प्रधानमंत्री खुद बताते हैं कि जब तक हर सैनिक सुरक्षित भारत वापस नहीं लौट आया, धड़कनें शांत नहीं हुई।
10: मैं लाइव कांटेक्ट में था चीजें तो, लेकिन सुबह जानकारी आना बंद हो गया। सूर्योदय होते तक मैं फिर बेचैन होने लगा। मेरे मन में होता था कि क्या हुआ भाई, घंटे भर से कुछ खबर नहीं आ रही है, पढ़ना तो लगातार आ रही थी, निकले हैं पहली टुकड़ी है दूसरी टुकड़ी है ऐसा है वगैरह। लेकिन सूर्योदय होने के बाद भी मुझे खबर नहीं आने लगी तो मैं थोड़ा बेचैन होने लगा। अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कम्युनिकेट करूं, कहीं और तकलीफ हो जाए तो। काफ़ी यानी करीब करीब सूर्योदय के भी एक घंटे के बाद वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदा लौटने की खबर सुनने के लिए मैं बड़ा रहा था। वहाँ कितना नुकसान हुआ वो बात का विषय है, लेकिन मेरा जवान जिंदा लौटे मेरी पहली प्राथमिकता थी। फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद सूर्योदय कि अब वापिस हमारी सीमा में पहुँचे नहीं है, लेकिन हमारी दो तीन टुकड़ियां सेफ जोन में आ गई है, लेकिन चलने ते निकलते और कहीं रेंगते हुए निकलते तो समय लगेगा, लेकिन अब हमारा सेफ जोन है इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुंचने तक मुझे खबर चाहिए।
9: भारत के लोकतंत्र में साल 2022 एक ऐतिहासिक पल लेकर आया।
11: मैं द्रौपदी मुर्मू
12: ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि
11: ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि
12: मैं श्रद्धा पूर्वक
9: देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली। लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ राजनीतिक गणित नहीं, एक संवेदनशील सोच भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उनसे अक्सर देश के आदिवासी समाज, खासकर उन बेहद पिछड़े जनजातीय समूहों की समस्याओं की चर्चा करती थी, जिन तक विकास की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंच पाई थी। यानी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाली ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश के करोड़ों वंचित लोगों की आवाज को सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुँचाने की कहानी भी है।
10: राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी वो समाज के उस तबके से आती है, तो मैं जब भी उनसे मिलता था तो बहुत इमोशनल हो जाती थी। आदिवासी समाज में भी वन अति पिछड़े जो लोग हैं उन तक कुछ पहुंचा नहीं है और छोटे छोटे समूह है बिखरे हुए हैं। उन्होंने मुझे कई बार कहा कुछ करना है, मैंने उनसे कहा आप मुझे गाइड कीजिए, तो उनके मार्गदर्शन में मैंने एक स्कीम बनाई पीएम जनमन योजना। अब ये लोग ज्यादा से ज्यादा 25 लाख लोग हैं और वो भी 250 जगह पे हैं। पॉलिटिशियन के लिए काम का नहीं है, क्योंकि उसे वोट मिलना नहीं है, जीत हार होनी नहीं है, लेकिन जीवन के लिए बहुत बड़ा है। द्रौपदी जी उस समाज को जानती थी, उन्होंने मुझे आग्रह किया और मैंने पीएम। और आज जब मैं सुनता हूं कि साहब वहां पहले ये नहीं था अब ये हो गया, वो नहीं था हो गया, तो मेरे मन को एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है।
9: सितंबर 2019 पूरा देश चंद्रयान 2 की लैंडिंग का इंतजार कर रहा था। करोड़ों भारतीयों की निगाहें टीवी स्क्रीन पर थी, लेकिन आखिरी क्षणों में मिशन अपने लक्ष्य से चूक गया।
13: ये जो आप ग्राफ अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये विक्रम डिसेंट ट्रेजेक्टरी है, कैसे किस तरह से जो वर्टिकल एल्टीट्यूड था, जो ऊंचाई थी वो, और आंकड़े नीचे प्राप्त हुए उसके बारे में।
9: इसरो मुख्यालय में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वो पल बेहद करीब से देखा। रात गहराती गई, लेकिन प्रधानमंत्री को नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उन्होंने फिर वैज्ञानिकों से मुलाकात की। उसी रात बोया गया आत्मविश्वास का बीज, आगे चलकर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता का आधार बना।
14: पीपल आर अप्लॉडिंग, लेट अस ऑल वेट टू हियर फ्रॉम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ।
15: लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
10: चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड बिखर गए, सारे वहां बैठे हुए लोग परेशान थे, प्रधानमंत्री को कहने की हिम्मत नहीं थी किसी की, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की जितनी समझ तो मैं देख पाता था, हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं चल रहा है। आखिरकार एक जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने आके मुझे कहा साहब, मैं कहा चिंता मत कीजिए, सभी को मैं नमस्ते नमस्ते किया, मैं रात को 2 बजे कार्यक्रम था वो, मैं वहां गेस्ट हाउस पर गया, लेकिन मैं सो नहीं पाया, मैंने फिर से करीब आधे पौने घंटे के बाद सबको बुलाया, मैंने कहा देखिए अगर ये लोग थक ना गए हो तो मैं सुबह 7 बजे इनको मिलना चाहता हूँ जाने से पहले, क्योंकि देश को बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन मैं सेटबैक से रोने धोने करके जिंदगी गुजारने वालों में नहीं था। मैंने कहा मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को मैंने कहा अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है, आपने प्रयास किया, आप निराश मत होइए, और मैंने उनका जितना भी आत्मविश्वास जगा सकता हूं मैंने जगाया और चंद्रयान 3 सफल हुआ।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर अक्सर चर्चा होती है। लोग हैरान होते हैं कि आखिर इतनी व्यस्त दिनचर्या के बीच वो खुद को कैसे सक्रिय रखते हैं। प्रधानमंत्री का दिन अक्सर सुबह बहुत जल्दी शुरू होता है और देर रात तक बैठकों, फाइलों, यात्राओं और कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहता है। विदेश दौरे हो या चुनावी अभियान, उनकी कार्यक्षमता को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है।
16: मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए चाहिए, आप 3.5 घंटे ही सोते हो।
17: ये बात आपकी सही है। मेरे जो जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सब का मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए, बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं
16: जी,
17: तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है जी, तुझे आज पता नहीं है ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे लेकिन तुम्हें बहुत तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो, नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है।
16: मतलब आपको नींद आती नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद?
17: नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है।
16: स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम?
17: नहीं, मैं इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है, मेरा कुछ नहीं, आंख खुलती है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ, उठता मैंने बिस्तर पे उठता वैसा नहीं, बिस्तर से भी बाहर होता हूं। अब ये हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिंदगी को मैं जी रहा था उसमें से शायद ये डेवलप हुआ है, अब वो मेरा मेरे मेरे शरीर का वो हिस्सा बन गया है।

0: साल 2020 पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। भारत जैसे 140 करोड़ आबादी वाले देश के सामने चुनौती और भी बड़ी थी। दिन रात बैठकों का दौर चलता था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद, डॉक्टरों से चर्चा और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर फैसले लिए जा रहे थे। कोरोना संकट सिर्फ स्वास्थ्य की चुनौती नहीं था बल्कि नेतृत्व की भी परीक्षा थी, और इसी दौर ने संकट प्रबंधन में मोदी सरकार की कार्यशैली को दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी हर उस शख्स का हालचाल ले रहे थे जिनको वो करीब से जानते थे।
1: मैं मुख्यमंत्री था, कोविड में ही मुख्यमंत्री बना, और मैं तो ऐसा मुख्यमंत्री था जिसका मंत्रिमंडल ही नहीं था, क्योंकि तब तक कोविड पैर पसार चुका था, दूसरे को शपथ दिलाने का मौका ही नहीं मिला, मैं अकेला था। और एक के बाद एक मेरे काम करने वाले अधिकारी सारे के सारे कोविड के कारण अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे। मेरी पीएस हेल्थ भर्ती हुई, उसके बाद फिर मेरे कमिश्नर हेल्थ एडमिट हो गया अस्पताल में, फिर मेरे सीएस को ही हो गया। तो उस समय फिर कहां विचार विमर्श करें तो एक ही सहारा मुझे दिखता था, प्रधानमंत्री जी। तब मोदी जी प्रधानमंत्री जी थे, आपको पता ही है, तो सीधे उनसे बात करते थे। मुझे कोविड हुआ तो तत्काल फोन आया उनका, मुझे भी इन्फेक्शन हो गया काम करते करते, ये ध्यान रखना, प्राणायाम करना,
2: अच्छा
1: हाँ, परिवार के बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना हो जाए इसकी चिंता करना। अब ये बिल्कुल अलग तरह की चीजें। और केवल
0: एक कलम से शुरू हुआ सफर, संकट की रातों में लिए गए फैसले, वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने वाले शब्द और लगातार काम करते रहने का अनुशासन, इन तमाम कहानियों में सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की झलक दिखाई देती है जो अपने फैसलों, अपने विश्वास और अपने काम करने के तरीके से अलग पहचान बनाता है।
3: बारह साल का ये सफर सिर्फ सरकार चलाने की कहानी नहीं है, ये कैसी कार्यशैली की कहानी है जिसमें अनुशासन है, तैयारी है, निरंतरता है और परिणाम पर लगातार फोकस है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाले उनके सहयोगी उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक नेता के तौर पर नहीं देखते बल्कि एक ऐसे कार्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं जिसने सरकार चलाने के तौर तरीकों को नई पहचान देने की कोशिश की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा पर हजारों भाषण हुए, सैकड़ों किताबें लिखी गई और अनगिनत विश्लेषण किए गए। लेकिन सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले इस नेता की कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो सुर्खियों से दूर रहीं। कुछ किस्से संघर्ष के हैं, कुछ फैसले के, कुछ भावनाओं के और कुछ उस सोच के जिसने नरेंद्र मोदी को एक अलग पहचान दी। ये कहानी उस दौर की है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। साल 2005 में अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था। उस वक्त इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा बटोरी, लेकिन सालों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को याद करते हुए कहा कि उन्हें इसका दुख व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिनिधि के तौर पर हुआ था।
1: एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का और अमेरिकन सरकार ने मुझे वीजा देने से मना कर दिया था। व्यक्ति के जीवन में तो मेरे लिए कोई अमेरिका जाना नहीं जाना कोई बड़ी चीज थी, मैं पहले भी जा चुका था, तो बहुत मेरे थे। लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक स्टेट का अपमान, एक देश का अपमान मैं फील करता था और मुझे मन में कसक थी कि क्या हो रहा है, जस्ट कुछ लोगों ने झूठ चला दिया इसलिए ये निर्णय होंगे, दुनिया में ऐसे चलती है दुनिया, मेरे मन में एक भाव था। लेकिन उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि आज अमेरिकन गवर्नमेंट ने मेरा वीजा रद्द किया है, जो कहना था मैंने कहा। लेकिन मैंने एक बात कही, मुझे कुछ सवाल पूछा गया, मैंने कहा देखिए मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। ये 2005 का मेरा स्टेटमेंट है।
0: वक्त बदला, परिस्थितियां बदली और दुनिया की राजनीति भी बदली। वही नरेंद्र मोदी बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने और वैश्विक मंच पर एक प्रमुख नेता के तौर पर उभरे। प्रधानमंत्री का पद सिर्फ फैसले लेने का नहीं बल्कि देश के दुख दर्द को महसूस करने का भी होता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक ऐसा ही प्रसंग सामने आया जब निर्दोष लोगों की मौत की खबरों ने पूरे देश को झकझोर दिया।
2: मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बताते हैं कि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद व्यथित थे। आतंकी हमला सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं था बल्कि उन परिवारों के दर्द का सवाल भी था जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था।
3: जब वो आए तो बिल्कुल शांत, स्थिर, एकदम ऐसा लगा नहीं कि उद्वेलित हैं, आए बैठे और आज तक मुझको उनकी बोलते हुए वो आंखें और वो चेहरा वैसा का वैसा याद है। बिना किसी उद्वेग के, गुस्से के उन्होंने कहा कि इस बार का ऑपरेशन अलग होगा, सर्जिकल स्ट्राइक से अलग होगा, एयर स्ट्राइक से अलग होगा। आतंकवादी और उनके मुखिया आकाश, शब्द एग्जैक्ट में वो नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन भावना यही थी कि जहां भी होंगे हम ढूंढेंगे और उनको सबक सिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बार, मैं भी इतने साल मुख्यमंत्री रहा हूं, कई बार ऐसी घटनाएं व्यथित कर देती थी, गुस्से में ला देती थी, लेकिन कोई चेहरे पर भाव नहीं थे।
0: ये कहानी बताती है कि बड़े फैसलों के पीछे कई बार गहरी संवेदनाएं और मानवीय भावनाएं भी होती है। ये सिर्फ एक नेता की कहानियां नहीं है बल्कि उन अनुभवों की दास्तान है जिन्होंने उनके फैसलों, सोच और नेतृत्व शैली को आकार दिया।
4: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: Mummy, Papa, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी. पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर. पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है. सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का.
5: सोचिए, ये शब्द किसका कलेजा नहीं चीर देंगे.
6: हम कर्ज ले लेके पढ़ा रहे थे, हम किसी से मांग मांग के उसकी फीस भर रहे थे.
7: कितने सारे सपने दिखा के चली गई उसके नाम की आगे का कर.
5: मध्य प्रदेश की आकांक्षा की मौत सिस्टम पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सुनाई तो पड़ रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कुछ दिनों के हंगामे के बाद पेपर लीक माफिया और शिक्षा तंत्र में बैठे धंधेबाजों पर फिर तो चुप्पी नहीं ओढ़ ली जाएगी. आज जो विपक्ष में है वे नीट पेपर लीक और सीबीएसई ओएसएम की गड़बड़ी पर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं.
8: दुख है हमें, लेकिन कार्रवाई में कभी कमी नहीं रखा.
9: How many questions normally will someone apply for?
10: I guess अभी जो problem आ रही है, they can apply for all the questions.
9: So how many total questions?
10: 30-35 around questions होते हैं.
9: So huge amount of money.
10: Huge amount of money is involved.
5: विपक्ष को सवाल पूछने भी चाहिए, जवाबदेही तय होनी ही चाहिए, लेकिन शिक्षा तंत्र को फेल करने वालों का जाल बहुत गहरा है और बहुत पुराना है. 2002 से 2025 के बीच 100,000 से अधिक उम्मीदवारों वाली 45 लीक परीक्षाओं ने 3,86,00,000 छात्रों को प्रभावित किया. लीक के इन मामलों में 1,658 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 925 पर चार्जशीट दाखिल की गई, 2 मामलों में 18 लोग दोषी करार दिए गए, 43 आरोपी जेल में बंद हैं. आरोपों के मुताबिक पेपर लीक माफिया का कोचिंग माफिया के साथ सांठगांठ होता है. इस बार की नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी आरोपियों के तार कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं. इसलिए शिक्षा तंत्र के ओवरहॉल की जरूरत है. छात्र तो अपना भविष्य बनाने की परीक्षा देते हैं, अब की बार सरकार को परीक्षा में पास होकर दिखाना है. आज तक ब्यूरो.
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: बंगाल में नेता विपक्ष मित्रव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों से भी हो रही है बात, 61 विधायक हमारे साथ, बोले पार्टी के सलाहकार बने ममता। अखिलेश यादव के पोस्ट से सियासी तूफान तय, लिखा अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब, कहा सरकार की चुप्पी संदिग्ध, आरोपों को ट्रस्ट ने नकारा। संभल में कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से नाराज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, सरकार पर निशाना, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी रूप से जवाब देंगे। कल की बैठक से पहले गठबंधन इंडिया में दरार बढ़ी, विजयन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से आग बबूला, लेफ्ट खड़गे को लिखा पत्र, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा, ईरान से समझौते करा, कहा हम डील के बेहद करीब, तेहरान के पास विकल्प ही नहीं।
1: आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट की एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में रोजाना की तरह बहुत सारे मामलों की सुनवाई चल रही थी। लोग आ रहे थे, उनमें आरोपी भी थे, सजायाफ्ता भी थे, कैदी भी थे, वकील भी थे, जो आरोपी उनके परिवार वाले भी थे। रोजमर्रा का काम चल रहा था, गर्मी का दिन है, लोग परेशान, कोर्ट में आना जाना लगा हुआ था। सब कुछ ठीक हुआ, कोर्ट अपने वक्त के हिसाब से शुरू, फिर अपने वक्त के हिसाब से बंद, कार्यवाही खत्म, जो भी कानूनी कार्रवाई होनी थी सब हो गया। लेकिन इत्तेफाक से मंडे को इसी कोर्ट के अंदर किसी एक शख्स ने एक तस्वीर खींची, फिर एक वीडियो बनाया और इसके बाद उसने इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। जिस शख्स ने भी ये तस्वीर खींची या वीडियो बनाया, अगर वो ऐसा ना करता तो शायद आज मैं बैठकर आपको ये कहानी भी ना सुना रहा होता।

हमला किया है। जब मामला पता चला तब और हैरान हुआ और उसके बाद वो वीडियो वो तस्वीर सामने आ गई। अब मैं आपको वही वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट की और मंडे की है, मंडे दोपहर की। आगे एक सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस वाला है शायद, पीछे दो लोग हैं जो एक बुजुर्ग को पकड़कर सहारा देकर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्ग की हालत ऐसी है कि न उससे ठीक से खड़ा हुआ जा रहा है, कमर झुकी हुई है, उम्र का असर है, बुढ़ापा है और शायद ठीक से नजरें भी नहीं उठा पा रहा है। सहारा देने के बावजूद वो कमर के बल झुकता हुआ चला जा रहा है। पता चला कि उम्र करीब 84 साल है इसकी, 84 ईयर्स। 84 ईयर्स में आमतौर पर इस उम्र में वो दादा परदादा बन गया होगा, उसके बेटे पोते, बेटे की उम्र 50-60 से तो ऊपर होगी। अब एक तो पहले हैरानी की चीज़ ये कि 84 साल की उम्र में एक शख्स कोर्ट में क्या कर रहा है और दूसरा उसके आगे आगे पुलिस वाला या सुरक्षा क्यों, और तीसरा उसको इस तरीके से इस मजबूरी की हालत में कोई पकड़ कर सहारा देकर क्यों चला रहा है, कहाँ ले जा रहा है। तो पता चला कि इस बुजुर्ग की कोर्ट में पेशी थी और आज फैसला सुनाया जाना था। अदालत बैठी, बुजुर्ग कोर्ट के अंदर पेश किया गया, मुलजिम के कटघरे में इसे खड़ा किया गया। इसके बाद वकीलों की दलीलें शुरू हुई, फिर जज साहब ने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि ये बुजुर्ग जिसकी उम्र 84 साल है, 34 साल पुराने एक मामले में गुनहगार घोषित किया जाता है, ये एक दोषी है, यह मुलजिम नहीं एक मुजरिम है, और यह अदालत इसे मुजरिम करार देते हुए इसके हिस्से की इसे सजा देती है, लेकिन सजा का ऐलान हम कल करेंगे यानी ट्यूसडे को यानी आज। अब जैसे ही दोषी करार दिया गया तो जाहिर सी बात है कि अब बुजुर्ग को कस्टडी में तो लेना पड़ेगा, हिरासत में, तो वही काम किया, पुलिस ने हिरासत में लिया। अब पुलिस वाले भी परेशान, सोच रहे मैं क्या करूं, ये बुजुर्ग खुद से चल नहीं पा रहा है, दो दो लोगों को सहारा देना पड़ रहा है, कमर से उठ नहीं पा रहा है, अब इस आलम में इसको यहां से ले जाऊं जेल, उधर जेल में जब जाएगा तो जेल वाले भी कहेंगे ये क्या हो गया भाई, यहां इस कैदी की देखभाल के लिए अलग से सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। खैर जो भी सोचते रहे, अदालत ने फैसला सुना दिया। उसके बाद 84 साल की उम्र में इस उम्र दराज बुजुर्ग को पुलिस ने कस्टडी में लिया और जेल पहुंचा दिया और अब इंतजार होने लगा मंगलवार कि दोषी तो ठहरा दिया, अब अदालत सजा क्या देगी। बहुत सारे लोगों ने आपस में बातें की, सोचा, देखा, तस्वीरें देखी, वीडियो देखी, वकीलों ने बात की, उन्हें लगा अब इतनी उम्र हो गई, 34 साल पुराना मामला है, क्या पता कोर्ट कम सजा दे, इतनी सजा दे जितनी इसने जेल में काट ली है, अब इसे आजाद कर दिया जाए, क्योंकि इसके लिए तो अब सजा यह है कि जेल में इसको भेजा जाए तो जेल वालों के लिए सजा है कि कैसे इसको हर सुबह आपको उठाना पड़ेगा, दो लोगों को जेल के स्टाफ को, इसको लहलाने के लिए लोगों की मदद चाहिए, खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल माजूर है, लाचार है, उम्र का असर है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंगलवार को कोर्ट बैठी और कोर्ट ने फिर ये कहा कि चूंकि हमने इसे दोषी करार दिया है लिहाजा अब इसे क्या सजा देंगे उस सजा को सुनाने का वक्त आ गया। तो इसके बाद इस शख्स को अदालत ने जो सजा सुनाई और जिस जुर्म के लिए सजा सुनाई, जिस सेक्शन के तहत सजा सुनाई, वो पूरी सजा यूं है। अदालत ने कहा कि बीएनएस यानी भारतीय न्यायिक संहिता, जो अब पुराना भारतीय दंड संहिता से बदल चुका है, कि उसके सेक्शन यानी धारा 147 राइटिंग दंगा फैलाने के इल्जाम, सेक्शन 148 खतरनाक हथियारों के साथ लड़ाई झगड़ा, और सेक्शन 307 जान से मारने की कोशिश, इन सभी धाराओं को लागू करते हुए अदालत मानती है कि यह बुजुर्ग गुनहगार है, इसलिए इसे 10 साल की सजा दी जाती है। 84 साल की उम्र में अब अदालत ने इसे 10 साल की सजा दे दी। अगर यह सजा बरकरार रही और 10 साल तक रही

0: 94 ईयर ओल्ड, यानी कि अगर किस्मत अच्छी रही तो 94 साल की उम्र में ये बुजुर्ग जेल से बाहर होगा। अब पता नहीं उम्र साथ दे, बाकी चीजें साथ दे, तब की बात है। अब सवाल यह है कि ये 84 साल की उम्र में 34 साल पुराने मामले में इतनी देर से ये सजा क्यों, और इस शख्स ने क्या जुर्म किया जिसकी वजह से सजा दी गई। तो अब पेश है पूरी कहानी, और इस कहानी के जरिए हम आपको हमारी देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, जो उसमें देरी है, कैसे एक एक केस के लिए कितना कितना वक्त लगता है, इसका आईना भी दिखाता चलूंगा। तो पहले 84 साल के इस बुजुर्ग की पूरी कहानी। ये कहानी है बिहार के वैशाली जिले के राघवपुरा गांव की, और ये कहानी है 1992 की, 1992, यानी आज से 34 साल पहले की। तब राघवपुरा गांव में पूरा गांव बसा हुआ था। दीप राय नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ रहा करता था, और ठीक दीप राय के घर के बराबर में एक और शख्स था, उसका नाम था अदालत राय। नाम याद रखेगा, अदालत राय। तो दोनों के घर के बीच में एक बाउंड्री थी, और उस बाउंड्री को लेकर अक्सर झगड़ा होता था गांव में, जमीन जायदाद या इस तरह की चीजें पर विवाद आम बात है और लोग बोलते नहीं है। तो दीप राय और अदालत राय के बीच में एक दीवार को लेकर दोनों के घर के बीच की बाउंड्री जो थी उसको झगड़ा होता रहता था। कई बार कहा सुनी हुई, फिर बीच बचाव हुआ। 10 नवंबर 1992 शाम का वक्त था, अदालत राय पुलिस स्टेशन पहुंचता है, और पुलिस स्टेशन गया जब वो घायल था। पुलिस स्टेशन जाकर वो कहता है कि मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है। पुलिस वाले पूछते हैं क्या हुआ। उसने कहा कि उसका पड़ोसी दीप राय अपने फैमिली के 5 लोगों के साथ सुबह उसके घर पर आया, उसने घर पर तोड़फोड़ की, मारपीट की और फिर गोलियां चलाई बाकायदा बंदूक से, जान से मारने की कोशिश की थी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखाई, अदालत राय का मेडिकल कराया और इसके बाद केस दर्ज कर लिया। बाद में दीप राय और उसके साथ 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 4 महीने बाद, ये नवंबर का मामला है, नवंबर 1992, मार्च 1993 में राघवपुरा की पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी, और उस चार्जशीट में दीप राय और बाकी 4 अन्य लोगों पर हत्या की कोशिश, बलवा करना, झगड़ा करना, मारपीट, इसके सारे सेक्शन लगा दिए। अब मार्च 1993 में चार्जशीट दाखिल हुई, नवंबर 1992 में झगड़ा हुआ था, अब मामला कोर्ट के हाथ में था। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, चार्जशीट दाखिल होने के बाद 1993 में चार्जशीट दाखिल हुई थी, 13 मार्च 1993, मतलब पुलिस ने लगभग अपना काम ठीक किया था, 4 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। लेकिन फिर कोर्ट भूल गई इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए। कानून ये कहता है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत उस चार्जशीट को देखती है, फिर ये देखती है कि पुलिस ने सही धाराएं लगाई हैं, क्या विटनेस, शुरुआती सबूत, ये सब उसको सपोर्ट करते हैं, और अगर लगता है तो पुलिस चार्जशीट में चार्जेस फ्रेम कर देती है। यानी अगर 5 सेक्शन लगाए गए हैं अलग अलग, और अदालत को लगता है ये सब सही है, तो 5 सेक्शन आरोपी पर लगा दिए जाते हैं, और अगर अदालत को लगता है कि नहीं, इसने पुलिस में कुछ ज़्यादा ही ज्यादती कर दी, 5 में से 3 ही सेक्शन लग सकता है, कुछ सेक्शन ज़्यादा लगा दिया, भारी हल्का कर दो, तो उस सेक्शन में अदालत हेर फेर करके फिर चार्जेस फ्रेम कर देती है। तो 13 मार्च 1993 को चार्ज फ्रेम हो गया, लेकिन इसके बाद 6 साल बीत जाते हैं, 1999 आ जाता है। 1999 17 जून को अब ये सेशन कोर्ट 93 में दाखिल की गई चार्जशीट के 6 साल बाद पहली बार कहती है, अच्छा ठीक है, पुलिस की चार्जशीट ठीक है, चलो सारे चार्जेस यही हैं, इन्हीं चार्जेस पर अब मुकदमा चलेगा। मतलब 93 की चार्जशीट पर मुहर लगाने के लिए अदालत को 6 साल लगे, 6 साल के बाद चार्जेस फ्रेम हो गए, अब अदालत में कायदे से मुकदमे की बारी होनी चाहिए थी शुरू, और फिर फैसला आ जाना चाहिए था। अब यहां से वक्त बीतना शुरू हुआ, इधर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, 6 साल में तो चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए, तो जमानत पर छोड़ दिया गया। अब सारे आरोपी जमानत पर बाहर हैं, उसमें दीप राय भी है। और जब ये इंसिडेंट हुआ तो करीब 49-50 साल की उम्र रही होगी, तब जवान भी नहीं था दीप राय। धीरे धीरे वक्त बीता, कुछ शुरुआती तारीखें पड़ी, ये लोग गए। उधर अदालत राय, जिसका नाम ही अदालत राय है, जो पीड़ित है, और उसकी बीवी रमा सखी देवी, ये दोनों चूंकि विटनेस थे और पीड़ित भी और कंप्लेनेंट भी, अभी भी दोनों पति पत्नी अदालत जाते। इधर परिवार दोनों घर में ही, गांव वालों ने कुछ बोला तो फिर थोड़ी सी शांति हुई, लेकिन अब अदालत के चक्कर काट रहे हैं। धीरे धीरे तारीख पे तारीख लगती गई। अब पता नहीं क्या नाम अदालत राय घर वालों ने रखा था बेचारे को, कि सचमुच से दिन रात अदालत ही दिखने लगा। तो अदालत राय भी चक्कर काट काट के अदालत के परेशान हो गया, फिर इसने जाना छोड़ दिया। उधर आरोपियों को भी लगा कि अदालत जाते हैं तारीख आगे बढ़ जाती है, कई बार खर्चा होता है, उन्होंने भी जाना छोड़ दिया। अदालत को भी लगा अब नए केसेस इतने आ गए हैं, कहाँ 92 के केस पे अपना दिमाग परेशान करो, वो भी धीरे धीरे भूलते गए। वक्त बीतता गया, सालों का पहिया आगे सालों में घूमता रहा। इस दौरान में 10 गवाह पेश हुए थे, 10 गवाहों की गवाही हुई, और ये भी फैक्ट था कि हाँ अदालत राय और उनके घर पर उस दिन तोड़फोड़ हुई, वो जख्मी भी थे, मारपीट हुई, गोलियां चली, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस अदालत को फैसला देना था, सजा सुनानी थी या बरी करना था, वो अपनी उसी रफ्तार से चल रहा है। फिर एक वक्त आया ऐसा कि दीप राय के साथ जो 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, उम्र की वजह से, क्योंकि ये चारों जो पकड़े गए थे लगभग इन सभी की उम्र 50 की थी उस वक्त, तो 8-10 साल बीतते बीतते पहला आरोपी, उसकी मौत। फिर कुछ साल बीते, दूसरा निकल लिया, फिर तीसरे की मौत, फिर चौथे की मौत। अब ले देकर 1992 के इस केस में एक ही शख्स बचा और वह है दीप राय। बाकी चारों अदालत कोई सजा सुनाती उससे पहले ही वो परलोक से धार चुके थे। अब ले देके एक आरोपी, फिर ये भी लगाओ आप कहाँ एक के लिए क्या किया जाए। वक्त बीतता गया, 34 साल बीत गए। 34 साल के बाद अब 2026 में अदालत को याद आया, कह रहे एक पुराना केस है, चलो फैसला सुनाते। इसके बाद याद आया कि इसमें एक दीप राय है, कहाँ पता करो। पता क्या, नहीं साहब 4 निकल लिए लेकिन वो है अभी, हाँ उम्र ज्यादा हो गई है। अब चूंकि किसी ने दीप राय को देखा भी नहीं, तो फरमान जारी, दीप राय को कोर्ट में पेश किया जाए, अदालत फैसला सुनाना चाहती है। अब खुद अदालत को, जज साहब को भी पता नहीं होगा कि जिसे बुला रहे हैं उसकी हालत क्या होगी। अब जब मंडे को यानी सोमवार को दीप राय अदालत 2 लोगों का सहारा लेकर पहुंचा, तो शायद अब दीप राय को यह भी याद नहीं था कि वो यहां है, ये अदालत है, वो कौन है, उसकी वैसे भी याददाश्त बहुत कम हो गई, तो उसके लिए भी सब कुछ नया। कोर्ट के लोग हैरान, कह रहे यार इस बेचारे को कहां लेके इस तरह से चले आ रहे हो। कहते हैं कि जब कोर्ट में पेश किया गया तो अदालत के स्टाफ भी हैरान, ये क्या है। फिर पता चला मुलजिम के कटघरे में, और हैरान। फिर पता चला अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, और हैरान। और उसके बाद जो हैरानी हुई वो फैसले पर हुई कि ही इज गिल्टी, दोषी। और फिर जब दोषी करार दिया गया और अब पुलिस वालों को जेल पुलिस के हवाले करना है, तो जेल पुलिस वाले हैरान कि ये क्या है, मतलब इसको सजा देने के लिए ले जा रहे हैं, हम लोगों के लिए सजा है। खैर ये सब हुआ, उसके बाद 8-10 साल की सजा सुना दी गई। अब 84 साल की उम्र में दीप राय क्या करेगा। अगर 34 साल पहले 1992 में ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अगले 10 साल में भी ये सजा सुना दी जाती, तो आराम से दीप राय अपनी सजा काट के आज बाहर होता। लेकिन अब इस उम्र में उसको जेल जाना पड़ा। अब जेल में कैसे दिन कटेंगे, क्या होगा, पता नहीं। इसीलिए एक चीज़ याद आई कि अगर अदालत, कोर्ट, इंसाफ, जस्टिस, इनका इनकी भी एक्सपायरी डेट होती तो क्या होता। बहुत सारे ऐसे देश में है कि अगर आप 20-25 साल में कोई केस नहीं सुलझा पाते, उस मुलजिम को या मुजरिम को नहीं पकड़ पाते, और 20-25 साल के बाद वो पकड़ा जाता है, तो फिर उसे सजा नहीं मिलती है। तो हमारे देश में भी अगर ऐसे केसेस में तो एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, लेकिन फिर ये भी एक एक्सपायरी डेट का भी लोग फायदा उठा लेंगे। लेकिन यहां इस केस को क्या कहेंगे? अब जरा आप तस्वीर देखिए हमारे इंसाफ, उसके पहिए, उसकी रफ्तार की। 140 करोड़ से ज्यादा हैं हम हिंदुस्तानी, और हमारे देश में हर 10 लाख हिंदुस्तानी पर इस वक्त 22 जज हैं, 22। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 लाख लोगों पर कम से कम मिनिमम 50 जज होने चाहिए, यानी कि हम 28 जज अभी कम हैं। अब 22 जज 10 लाख लोगों पर मुकदमे का फैसला सुनाते हैं, क्या होगा? क्या होगा? इस वक्त 5.5 करोड़ केस हमारे देश में पेंडिंग है, 5.5 करोड़ केस। इन 5.5 करोड़ केस में से मैक्सिमम जो केस है वो लोअर कोर्ट में है। जैसे दीप राय का केस था, लोअर ही कोर्ट में था। 5.5 करोड़ में से करीब करीब 4 करोड़ के आसपास, या 4.25 से 4 करोड़ के आसपास जो केसेस पेंडिंग है वो लोअर कोर्ट में है। हमारे देश में 3 तरह के कोर्ट हैं, आपको पता है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो 5.5 करोड़ पूरे देश में केस पेंडिंग है, करीब 4.25 करोड़ सिर्फ लोअर कोर्ट में पेंडिंग है, और लोअर कोर्ट में भी जो पेंडिंग है उनमें से 1,80,000 इस वक्त ऐसे केस हैं, इन सारे केसों में 5.5 करोड़ में, जो 30 साल ज्यादा पुराने हैं, यानी दीप राय जैसे केसेस हैं। 1,80,000 केस 30 सालों से उसका फैसला ही नहीं आया, इसको ऐसे समझिए। तो फिर अब इसके अलावा आप ये देखिए, हमारे जो देश अभी लेटेस्ट है 2026-27 का बजट जुडिशरी का, ये जो अदालतें होती हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट में, जाहिर से बात है इनका खर्चा है, जज साहब, कोर्ट के रख रखाव, बाकी स्टाफ की फीस, फिर कई बार इन्वेस्टिगेशन, आना जाना। अभी करंटली इसी फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे देश की जुडिशरी का बजट है वो है करीब 4,500 करोड़ रुपए। हालांकि आबादी और केस को देखते हुए बहुत नहीं है, 4.5 करोड़ केस, $540 मिलियन, ये हमारी जुडिशरी का बजट है इस साल का, अभी करंटली जो चल रहा है। तो जहां 5.5 करोड़ केस होंगे, अब बिहार का ही एवरेज ले लीजिए, जिस वैशाली से यह फैसला आया, 34 साल लगे दीप राय के इस फैसले को। बिहार का एक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, एवरेज एक निकाला गया है कि बिहार में किसी एक मुकदमे पर कम से कम 10.5 साल लगते हैं एक मुकदमे पर फाइनल जजमेंट आने में, और ये मैं लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर उन सालों को जोड़ लीजिए तो अलग चीज़ है कितने साल लगेंगे। लेकिन सिर्फ लोअर कोर्ट का जो डेटा है वो ये है कि लोअर कोर्ट में एक केस के निपटारे में मिनिमम 10.5 साल लगते हैं, पर दीप राय के मामले में ये 3 गुना हो गया, 34 साल लग गए। तो इस तरीके से अगर इंसाफ की चाल रहेगी तो क्या होगा? और मुझे लगता है जिसने भी ये वीडियो और तस्वीर दी, इस तस्वीर को सिर्फ और इस वीडियो को आप देखिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए एक 84 साल का बुजुर्ग है या एक दीप राय नाम का शख्स है जिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर और बाकी चीजों के चार्जेस हैं और 10 साल की सजा हुई। ये जिस तरीके से चल रहा है, बिल्कुल झुका हुआ, और जिस तरीके से इसे सहारा देकर ले जाया जा रहा है, ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है। हमारे यहां इंसाफ की चाल लगभग दीप राय की इसी चाल और इसी रफ्तार जैसी है। अगर ना होती तो 5.5 करोड़ केस पेंडिंग ना होते।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
2: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
1: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
3: बात यूपी के जहां पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है, संभल में दूसरे दिन भी मस्जिद पर बुलडोजर चला और बुलडोजर एक्शन के बाद से समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला हो रहा है और बुलडोजर पर जोरदार सियासत चल रही है।
4: गरज रहा है बाबा का बुलडोजर और जमींदोज हो रहा है अवैध निर्माण। तस्वीरें संभल की। संभल में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। मेहराबें गिराई जा रही हैं, मीनारें ढहाई जा रही हैं।
5: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही थी और इसी तरह से जो लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहां पर लगातार जो जारी है और इसी के साथ देखिए ठीक आपको मैं पीछे अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप जो देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर जो बनी हुई है। यहां पर आप ये बुलडोजर आपको मशीनों में जो सर नजर आएंगे और देखिए किस तरीके से जो यहां पर बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें हैं वो लगातार यहां पर जो है मौके पर मौजूद है।
4: ये मस्जिद 120 वर्ग मीटर में बनी हुई थी।
6: ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है।
4: अब इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी की सियासत सुलग रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है।
7: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जाकर के कोई स्टे वगैरह ले सके।
4: 27 के समर में अभी समय है मगर यूपी की सियासत में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
3: आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बार फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची और फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की।

0: सेशन्स एक्ट में केस, गिरफ्तारी का संकट और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर पर आ गई है। खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान के कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गयी।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है।
0: जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। अगर जल्द ही इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, यहां तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है।
1: ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, चूंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं।
0: इस एक्शन के एक दिन बाद ही फायर डिपार्टमेंट की टीम फिर ऑडिट करने फैजल खान की कोचिंग पहुंची और पूरे सेंटर का मुआयना किया। फैजल खान पर पहले ही आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होने के बाद वो संकट में घिरे हुए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की अब तैयारी है।
2: फिर लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंसर्ट कर दिया गया है एफआईआर में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा।
0: कुल मिलाकर फैजल खान संकट में है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह आज तक।
3: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे यहां से, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
5: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: से तूफान तय लिखा, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब, कहा सरकार की चुप्पी संदिग्ध, ट्रस्ट ने आरोपों को नकारा। संभल में कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से नाराज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर का सरकार पर निशाना, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी रूप से जवाब देंगे। बंगाल में नेता विपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों के साथ हो रही है बात, 61 विधायक हमारे साथ, बोले पार्टी की सलाहकार बने ममता। कल की बैठक से पहले गठबंधन इंडिया में बढ़ी दरार, विजयन पर राहुल की टिप्पणी से लेफ्ट आग, बबूला खड़गे को लिखा पत्र, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिली ममता। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा ईरान से समझौते करा, कहा कि हम डील के बेहद करीब, तेहरान के पास नहीं है कोई विकल्प। बंगाल में शुभेंदु सरकार का नया फरमान आया है, फरमान है सभी मदरसों के सर्वे का, हिंदुत्व के नारे बुलंद करने के क्रम में शुभेंदु सरकार का यह फैसला अहम है और राज्य सरकार ने जो फरमान जारी किया उसके मुताबिक मदरसों का सर्वे होगा, उनकी वैधता जांचे जाएंगे, कागजों की पड़ताल होगी।
1: ओ माता की, गंगा माता की जय जय श्री राम।
2: बंगाल में बीजेपी की सरकार और एक्शन लगातार जारी है, शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं, वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं, सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा, आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि

0: संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएं। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था।
1: मदरसा हो या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ देखना है कि वो सही तरह से ये यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन ये तो सरकार का काम है, सरकार ये काम कर रहा है, अपना काम है सरकार का, सरकार तो अपना काम करेगा ना।
0: बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया।
2: बंगाल का भूमि में धीरे धीरे धीरे धीरे सेकुलरिज्म और अपने वोट बैंक की लालच, इसमें विकास प्रगति पीछे चला गया। तुष्टिकरण की राजनीति आगे चलना पड़ा।
0: मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं।
3: कहाँ पे घोटाला चल रहा है, इतना घोटाला क्यों चल रहा है, तो हम सीएम हमारा जो चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी है ना, तो उन्होंने एकदम ध्यान तरीके से मतलब इतना ध्यान दे रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहाँ पे तो कम से कम टीचर को रिक्रूट करना है, तो फिर जहाँ पे स्कूल का कोई बच्चों नहीं है तो वहाँ पे फिर टीचर रखने का कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खोखला को कहाँ पे गैप है, कहाँ पे सिर्फ टीचर भी नहीं है, टीचर आते भी नहीं है, फिर भी पेमेंट लेते हैं, तो ध्यान देना चाहिए। एकदम हमारा सीएम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
0: बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।
4: उसने जो निर्णय लिया है सर्वे का, सारे मदरसों का, वो बहुत सराहनीय कदम है। जो भी शिक्षण संस्थान हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, सबके ऊपर जवाबदेही सरकार की है। वो वित्तीय मामला हो, कानून का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका मामला हो, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की है। तो सरकार का ये कदम जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है।
0: मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी।
2: तुष्टिकरण की राजनीति से बंगाल झील रहा था, खास करके पिछले कुछ वर्षों में, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ खराब हुआ।
0: मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
5: शुभेंदु अधिकारी जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो फैसले पर ले रहे हैं, और अब शुभेंदु की सरकार ने आदेश दिया है कि स्कूलों के बाद बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा।
6: शुभेंदु अधिकारी ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
0: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के साथ ही बंगाल की सियासत का दौर भी बदल गया और दस्तूर भी बदल गया। शपथ लेने के साथ ही बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए, वो फैसले जो चुनाव जीतने के पहले तक वादे थे। और शुभेंदु जो फैसले ले रहे हैं वो बंगाल की राजनीति को बदलने वाले हैं। सीएम की कुर्सी संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन नेक इलाके की 121 हेक्टेयर जमीन सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सौंप दी। इसके अलावा 9 सीमावर्ती जिलों में भी

0: एसएफ को कुल 142.79 एकड़ जमीन ट्रांसफर की गई, जिसका इस्तेमाल बॉर्डर आउटपोस्ट और फेंसिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा।
1: आज के अमरा प्रथम दिन ही अमरा केंद्रीय स्वराष्ट्र दफ्तर तथा बीएसएफ सीमांत सुरक्षित करार जन्य जमी ट्रांसफार प्रक्रिया अमरा आज के अनुमोदन दिलाम एवं आज थेके लैंड ट्रांसफार प्रक्रिया शुरू हबे। भूमि और राजस्व सचिव ताके एवं मुख्य सचिव के दायित्व देवा हलो 45 दिनेर मध्ये बीएसएफ एर प्रयोजनीय जमी हस्तांतर सम्पूर्ण करते हबे।
0: शुभेंदु अधिकारी का ये फैसला बता रहा था कि वो कड़े फैसले लेने के लिए तैयार हैं। शुभेंदु ने सीएम बनने के बाद जो दूसरा बड़ा फैसला लिया था वो था इमाम मुअज्जिन और पुजारियों को दिए जाने वाला भत्ता बंद किया जाए।
2: सरकार का काम इमाम मुअज्जिन पुरोहित का भत्ता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है, इमाम मुअज्जिन को भत्ता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
0: बताते चलें कि 2012 में ममता सरकार ने इमाम मुअज्जिन और पुजारियों को भत्ता देने का ऐलान किया था। इमामों को हर महीने 3,000 रुपए भत्ता मिलता था, मुअज्जिनों को हर महीने 1,500 रुपए भत्ता मिलता था और पुजारियों को हर महीने 2,000 रुपए भत्ता मिलता था। मगर शुभेंदु ने सीएम बनते ही इस योजना को खत्म कर दिया। शुभेंदु का ये फैसला बता रहा था कि वो हिंदुत्व की डगर पर बंगाल को लेकर चल पड़े हैं।
3: नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा।
0: लेकिन इसके बाद शुभेंदु ने जो फैसले लिए उसने साबित कर दिया कि बंगाल में अब भगवा झंडा लहरा रहा है। शुभेंदु सरकार ने ऐलान किया कि बंगाल में जहां जहां भी अवैध निर्माण है वहां बुलडोजर एक्शन शुरू होगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। हावड़ा, कोलकाता, मेदिनीपुर, कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अंदर खाने बातें होने लगी कि बंगाल यूपी मॉडल पर चल पड़ा है। ये बातें इसलिए हो रही थी क्योंकि जो शुभेंदु कर रहे हैं वो यूपी में पहले ही हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने अगला फैसला लिया कि बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। बंगाल सरकार ने पहले सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया था, लेकिन शुभेंदु ने साफ कर दिया कि बंगाल में हर मदरसे में वंदे मातरम गाना ही होगा और जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
1: सरकार चले तथ्य उपरे, सरकार चले नियमेर उपरे, এবং সরকারি সিদ্ধান্ত হয় সংবিধানের কতগুলো বিষয়ের উপরে। তাই এই গভর্নমেন্ট আমিতে বিশ্বাস করে না, আমরা নীতিতে চলবে এবং রুলস, অ্যাক্টস, সংবিধান একে প্রায়োরিটি দিয়েই আমরা কাজ করব।
0: एक और अहम मुद्दा था जिस पर अक्सर हिंदू मुस्लिमों के बीच तनाव देखने को मिलता है, यह है अजान का मुद्दा। सीएम बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने आदेश दिया कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगी और इसका पालन न हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी।
2: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है।
0: इसके साथ ही शुभेंदु ने एक और फैसला लिया कि पश्चिम बंगाल में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी के ये आदेश देने के बाद जब बकरीद हुई तो पहली बार ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज पढ़ी गई, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया था कि रेड रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी घुसपैठियों को लेकर बेहद सख्ती दिखा रहे हैं। उनके सरकार में आने के बाद चेतावनी दी गई कि घुसपैठिए बंगाल छोड़ दें।
4: देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, ये दामाद है।
5: शुभेंदु
4: जो करना है सरकार करेगा।
0: शुभेंदु बंगाल के नए अधिकारी हैं और जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि बंगाल में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा वही है। आज तक ब्यूरो।
5: पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं जहां शुभेंदु सरकार की नजर उन मदरसों पर अब सख्त हो गए हैं जो नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इससे पहले ये सख्ती उत्तर प्रदेश में दिख चुकी है जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों से अवैध मदरसों और अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चला है।
6: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिसका सीधा और स्पष्ट ऐलान है कि प्रदेश में ना तो एक भी अवैध मदरसा चलेगा और न ही एक भी गैर कानूनी मस्जिद रहेगी। कानून के दायरे में अतिक्रमण वाली सभी धार्मिक इमारतों पर प्रशासन का हथौड़ा चलेगा, जिसकी ताजा बानगी दिख रही है संबल की मुस्तफा कादरी मस्जिद पर जहाँ लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। ये दो तस्वीरें दो राज्यों में बीजेपी सरकार के तेवर को बयान कर रही है। एक ओर जहां बंगाल में मदरसों पर शुभेंदु की सख्त नजर पड़ चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले से ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर और हथौड़ा चला रही है। हालांकि सियासत में आरोप ये भी लग रहा है कि पहले यूपी और अब बंगाल में एक खास वर्ग विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। पहले नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर जो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों और अवैध धार्मिक स्थलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं। जून 2026 में ही गाजियाबाद के कनावनी और लोनी में दो अवैध मदरसे सील किए गए। मोदी नगर में मस्जिद के साथ बनी 14 दुकानों को भी ध्वस्त करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं बागपत में अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है, साथ ही संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर तो चल ही रहा है।
7: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब ये इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है।
8: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर ही काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जा करके कोई स्टे वगैरह ले सके।
6: हम आपको बता दें कि फरवरी 2026 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तार से जांच कराने का फैसला किया था। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना था। सीएम योगी ने भी बार बार चेतावनी दी है कि यूपी में किसी भी तरीके के धार्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
9: जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं।
10: पर ये तो बन चुके हैं, अब
9: बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकारे नहीं।
6: उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्ती सिर्फ अवैध मदरसों तक ही सीमित नहीं है, कुछ ऐसे फैसले और एक्शन भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है। हाल ही में सीएम योगी ने ईद में सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले नए मदरसों को सरकारी पैसा नहीं देने का योगी ने फैसला किया था। 2022 में गैर रजिस्टर्ड और अवैध मदरसों के सर्वे के आदेश पारित हुए। नवंबर 2023 में यूपी में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा सैकड़ों अवैध बूचड़खानों को बंद कराया जा चुका है। साथ ही मई 2025 में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में बीजेपी सरकारों के कामकाज का तरीका बता रहा है कि उनकी सियासत का फॉर्मूला क्या है और इससे ना तो उन्हें गुरेज है और ना ही परहेज है। खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव की जंग ही इन्हीं मुद्दों की बुनियाद में लड़ी जाएगी। संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
5: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन है। टीएमसी की सत्ता में रहे जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बंगाल के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रहे हैं जिसमें आक्रोशित लोग खुद ही टीएमसी नेताओं से इंसाफ मांग रहे हैं, यहां तक कि सरेआम मान मर्दन

0: कर रहा है।
1: जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है। एक आदमी का आधा सर मुंडवा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है। एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुरमत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्हीं आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: बात सिर्फ इतनी नहीं है, टीएमसी के नेताओं पर लोगों का आक्रोश ऐसा फूट रहा है कि वो जहां भी दिखते हैं उन पर अंडे टमाटर बरसाए जा रहे हैं। टीएमसी के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ गए।
1: पुलिस थाने के बाहर टीएमसी के नेता पर अंडे बरस रहे हैं। नाराज लोग सैकड़ों की तादाद में अंडे बरसा रहे हैं। पुलिस वाले टीएमसी नेता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं मगर लोग लगातार अंडे फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं जहां टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता को निशाना बनाया जा रहा है। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी। आज जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर पुलिस ले जा रही थी तभी अटैक हुआ। टीएमसी नेताओं पर हो रही कार्रवाई की दूसरी तस्वीर देखिए। साड़ी के गट्ठर के नीचे टीएमसी नेता छिपने की कोशिश कर रहे थे मगर पुलिस ने खोज निकाला। ये चौंकाने वाली घटना हावड़ा के उदय नारायणपुर के बिलासपुर इलाके में हुई। पुलिस की कार्रवाई और टीएमसी नेता के छिपने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम ब्रह्मानंद चक्रवर्ती है जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता है। स्थानीय लोगों ने उस पर हाउसिंग स्कीम के फंड से कट मनी यानी अवैध कमीशन लेने का आरोप लगाया है। जब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस उसे खोजने पहुंच गई। तभी वो गिरफ्तारी के डर से एक कपड़ा दुकान के स्टोर रूम में साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गया। हालांकि पुलिस ने इसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। शुभेंदु सरकार के आने के बाद टीएमसी के दागी नेताओं पर धुआंधार कार्रवाई हो रही है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी के नेताओं पर लोगों के हमले के अब वीडियोस वायरल हैं जहां टीएमसी नेताओं को घसीटा जा रहा है, कहीं पर लोग हमला कर रहे हैं।
1: टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर जोरदार हमला हुआ। नाराज लोग मदन मित्रा पर अंडे फेंक रहे हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी पहुंचे थे। वहीं नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक तस्वीर हुगली से भी आई है जहां भीड़ टीएमसी के नेता को सड़क पर खींचते हुए थाने तक ले गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गमछा पहने तृणमूल नेता तपस चक्रवर्ती को लोग खींचकर थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी का दावा है कि कई भ्रष्टाचार और तोलाबाजी के मामलों में इस नेता का नाम सामने आया था। वेस्ट मिदनापुर में पुलिस ने टीएमसी के एक और नेता को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक सुजोय हाजरा की गिरफ्तारी जबरन उगाही और जमीन घोटाले में की गई है। उधर उत्तर 24 परगना जिले के गोपाल

0: टीएमसी ट्रेड यूनियन के नेता कथित तौर पर कट मनी के नाम पर लिए पैसे वापस करते दिखे। इन्होंने टोटो ड्राइवरों से ये अवैध वसूली की थी। उधर लंबी पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपी पार्षद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मामला 2023 के पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें जसीमुद्दीन आरोपी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद से टीएमसी के दागियों में खलबली मची हुई है। हुगली से पार्था राहा, तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
1: इस बीच कांग्रेस की ओर से टीएमसी पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए चोरी की थी तो कार्रवाई तो होगी।
2: अगर तृणमूल पार्टी सबाई जानता है वेस्ट बंगाल का साथ बहुत अन्याय काम किया है, बहुत चोरी किया है। अभी से नहीं, दो पार्टी पावर आने का 2011 साल आने का बाद अब लोग जानता है वो सब। एक तो सैम कांडो का नाम है, उसका बाद टीचर स्कैम, उसका बाद कितना स्कैम रहा आदमी से, कब से, ये नया चीज नहीं है।
1: अगली खबर काशी की, जहां पर तय किया गया है कि महादेव की नगरी में शहर के भीतर मांस मछली की दुकानें शहर से बाहर शिफ्ट की जाएंगी और बकायदा जगह तय की जा चुकी है और फैसला लिया गया कि शहर के भीतर मांस मछली नहीं बेची जाएगी।
0: वाराणसी में बटर चिकन और मटन कोरमा के शौकीनों को झटका लगा है। रोगन जोश और फिश करी खाने वालों के स्वाद पर भी संकट गहराया है, क्योंकि आदेश ऐसा आया है कि वाराणसी में शहर के भीतर मीट मांस मछली की दुकानें हटाई जाएंगी। तय किया गया है कि शहर के बाहर 5 जगह चिन्हित की जाएंगी और वहां दुकानें बनवाई जाएंगी ताकि दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट कर सके।
3: मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। बकासी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है, 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए।
0: बता दें कि सदन में पार्षद गुलशन अली ने मीट मांस की दुकानों को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव दिया था। अब इस पर अमल हुआ है तो मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले को गैर मुनासिब बता रहे हैं।
4: हम ये समझते हैं कि फैसला गैर मुनासिब है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट डेटा अराउंड 70% जो आवाम है नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी 70% आवाम नॉन वेजिटेरियन है। तो जितनी दूर आप इन दुकानों को करेंगे उतनी ही ज्यादा गरानी में इजाफा होगा, कस्टमर्स को जहमत होगी, बिजनेस पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा।
0: लेकिन शिया धर्मगुरु ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और एक नई मांग करते हैं।
5: जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए, ये गांजा का ठेके जो है ये भी हटना चाहिए, किसी भी तरीके के ये जो गलत खाम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहाँ तीर्थ स्थल है।
0: अब यूपी में स्वाद पर सियासत हो रही है, जिसके केंद्र में हिंदुत्व की राजनीति के बीज छिपे हैं। रोशन कुमार, वाराणसी आज तक।
1: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
8: Oh, ouch.
7: However you make money work, we can work with that.
9: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: जब उसके खिलाफ आज तक का कोई आपराधिक मुकदमा न्यायालय ने कभी सजा नहीं दी न तो कभी चोरी में न तो डकैती में न तो इस तरीके के फिर एक 302 का 307 का मुकदमा उसके ऊपर है और किसी ने अपहरण का मुकदमा लिखा रखा है जैसे एसपी ने कहा तो इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप इनकाउंटर अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया मुख्य आरोपी कोई और है मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर हैं वो छुएंगे नहीं आज जो साधारण है जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं ये अधिकारी क्या कर रहे हैं ये फिर इसके मतलब इनका एलआईयू क्या कर रहा था कैसे समाज के लोगों ने आंदोलन किया बताए क्यों नहीं फोर्स लगाए इन लोगों ने खाली जब आंदोलन हो गया तो कहेंगे आप रासुका लगा देंगे ये तो डिटेक्टरशिप हो गई।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब, कहा सरकार की चुप्पी। संदिग्ध आरोपों को ट्रस्ट ने नकारा। संभल में कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से नाराज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ख। सरकार पर साधा निशाना, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी रूप से जवाब देंगे। बंगाल में नेता विपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों से भी हो रही है बात। 61 विधायक हमारे साथ बोले, पार्टी की सलाहकार बने ममता। आज की बैठक से पहले गठबंधन इंडिया में बढ़ी दरार, विजन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग। बबूला खड़गे को लिखा पत्र, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा, ईरान से समझौते करा, कहा कि हम डील के बेहद करीब, तेहरान के पास नहीं है कोई विकल्प।

मंत्री अरूप विश्वास कप को फिर से समन, लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम में गड़बड़ी मामले में पूछताछ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, अयोध्या में राम मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा खाया। अखिलेश के समर्थन के दावे के बाद मंडी ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने आरोपों को क्या खारिज कहा, पाई पाई का हिसाब लिखित हिसाब। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान बनना चाहता था कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन अचानक साजिश हुई और हालात बदल गए। झारखंड से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी नहीं उतारेगी प्रत्याशी, सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय परिमल नथवानी को समर्थन करेगी बीजेपी। 3 दिनों के बिहार दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुंगेर में स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन करेंगे। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दुनिया में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का कद बढ़ा, आज भारत पहले जैसा नहीं रहा। दिल्ली में अयप्पा मंदिर कैंपस में सबरी कॉम्प्लेक्स का गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन, धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियां होंगी सशक्त। रांची पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, ओर मांझी में वृक्षारोपण अभियान में लिया भाग। नागपुर में मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गाया गाना, नागपुर सांसद खेल महोत्सव समापन कार्यक्रम में सुरों का जलवा बिखेरा। जयपुर में नंदपुरी में मस्जिद हटाई जाएगी, 50 अधिकारियों और 3,000 पुलिसकर्मियों की टीम रहेगी मौजूद, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर यह बड़ा फैसला। रसोई गैस 29 रुपए महंगे, दिल्ली में 942 रुपए में अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। हरियाणा में विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना, बोले कि बीजेपी ने गैस की कीमतें बढ़ाकर फिर से जनता की जेब पर डाका डाला। वैश्विक मंच पर भारत के लिए गौरव कपल, भारत की मेजर अभिलाषा को प्रतिष्ठित यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। दिल्ली में आज से शुरू होगा बीएसएफ बीजीबी डीजी सम्मेलन, घुसपैठ फेंसिंग और सीमा सुरक्षा पर निर्णायक चर्चा होगी। संगीत में हुआ अटारी बॉर्डर पर माहौल, पहली बार ऑस्कर विजेते संगीतकार एआर रहमान ने किया परफॉर्म। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग अब काशी में स्थापित होगा, प्रशासन से मिली मंजूरी, वीडियो बिचारे। डीआरआई मुंबई ने सोना तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़, लगभग 5 करोड़ रुपए की कीमत का सोना जब्त, 7 गिरफ्तार। मुंबई में फिट इंडिया साइकिल्स ऑन संडे रैली का आयोजन, अभिनेता जैकी श्रॉफ और अमृता फडणवीस ने समारोह में की शिरकत। दिल्ली में फिट इंडिया संडे में साइकिल रैली का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लिया भाग। जयपुर में भी फिट इंडिया संडे का किया गया आयोजन, राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लिया भाग। कोलकाता में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की ओर से मोटरसाइकिल रैली, भारत अमेरिका सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने को लेकर दिया गया मैसेज। पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में इस्कॉन मंदिर से निकाली गई साइकिल रैली, लोगों ने गायों को चारा खिलाया। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एचयूएल सुविधा केंद्र का किया उद्घाटन, कम आय वर्ग के इलाकों में आधुनिक शौचालय देना मकसद है। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला वैली ब्रिज का उद्घाटन, 34 मीटर लंबे और 3.5 मीटर चौड़े वैली ब्रिज पर वन वे ट्रैफिक के साथ शुरू होगी आवाजाही। कर्नाटक के सीएम डी के शिव कुमार ने श्री केनका राम मंदिर में पूजा अर्चना की, माथा टेका। संभल में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, दूसरे दिन भी चला, आई लव मोहम्मद के पोस्टर और चांद सितारे वाले झंडे मिले और 8 पर केस दर्ज किए। गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन स्वीप, शहीद नगर में हिस्ट्री शीटर और स्नैचर्स का सत्यापन, आय और संपत्ति की जांच। दिल्ली में फिर बरसे राहत के बादल, कुछ इलाकों में बारिश के साथ तापमान में गिरावट। दार्जिलिंग में हुई झमाझम बारिश, बरसात के बाद मौसम सुहाना। एमपी के सीहोर में आंधी बारिश का कहर, सोलर पैनल उखड़कर सड़क पर जा गिरा, एक शख्स घायल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, खुले में रखा हुआ धान बारिश में भीग कर खराब। हिमाचल के पंडो में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर ट्रैफिक जाम, मनाली की ओर जा रहे पर्यटकों की भारी भीड़। मुलापुर टेस्ट में भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की करारी हार का अब खतरा मंडरा, दूसरे दिन पारी में उसने 5 विकेट पर 113 रन ही बनाए। अफगानिस्तान अब भी पहली पारी में भारत से 451 रन पीछे, पहली पारी में भारत ने 564 रन बनाकर इनिंग घोषित की थी। अपने डेब्यू टेस्ट में मानव सुथार ने 3 विकेट झटके, कप्तान शुभमन गिल ने बनाए 126 रन, के एल राहुल का भी शतक। ऋषभ पंत और साई सुदर्शन ने भी 81 रनों की पारी खेली, अफगानिस्तान के मोहम्मद सलीम ने 6 विकेट लिए। जर्मनी के ज्वेरेव ने जीता फ्रेंच ओपन का सिंगल्स खिताब, फाइनल में इटली की कोबोली को 5 रोमांचक सेट में हरा। यूपी के हरदोई में इज्जत की खातिर बेटी ने पिता, चाचा और चाची ने पीट पीट कर हत्या कर दी, मां के शिकायत पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी में बच्चियों के साथ छेड़खानी करने वाला गिरफ्तार, मानसिक रूप से आरोपी विक्षिप्त युवक को पॉक्सो एक्ट में जेल भेजा गया।
यूपी के बांदा में

छोटे भाई ने बड़े भाई की निर्मम हत्या की, आरोपी भाई गिरफ्तार। पटना में एक अस्पताल में आईटीबीपी दरोगा ने वॉशरूम की खिड़की से कूदकर खुदकुशी की, 3 जून से हॉस्पिटल में भर्ती थे। बिहार के बगहा में रील बनाने के लिए के दौरान गंडक नहर में डूबे 2 युवक, दोनों की जानकारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दरोगा का रील वायरल, वर्दी और गार्ड के साथ होगा थानेदार तो गाने पर बनाई रील, थानेदार से स्पष्टीकरण मांगा गया। हरिद्वार में 10 मई को चंडी देवी मंदिर के रोपवे के करीब अज्ञात महिला का शव मामले में खुलासा, हत्या में यूपी बांदा से 3 आरोपी अरेस्ट किए गए। यूपी के गाजीपुर सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने वाला कटरा गैंग, फरसा गैंग समेत कई गैंग पर प्रहार, 5 दिन के अभियान में 401 अपराधियों की शनाख्त। चित्रकूट में लालापुर नदी पुल पर अनियंत्रित होकर एक ट्रक पलट गया, सामने आए बोलेरो बाल बाल बच गए। मुंबई के कुरार इलाके में चाकूबाजी, 1 की मौत, 3 लोग घायल, पैसों के लेन देन को लेकर वारदात। लखनऊ में मामूली विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी, गैस सिलेंडर से वार किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हत्याकांड में शामिल आरोपियों का सीसीटीवी सामने आया, बंगाल से आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार, नाबालिग को हिरासत में लिया गया। टीडी जिले के कौड़ियाला इलाके में गंगा में लापता युवक की तलाश, दूसरे दिन भी जारी एसडीएफ का सर्च ऑपरेशन, अज्ञात महिला का शव मिला। नागपुर में कन्हान नदी में बड़ा हादसा हुआ, पिकनिक मनाने गए पिता पुत्र समेत 3 लोग नदी में डूबे, मौत। सूरत में आवारा कुत्तों का आतंक, घर के पास खेल रहे 7 साल के मासूम पर जानलेवा हमला किया, घटना सीसीटीवी में। उत्तराखंड के दयारा बुग्याल में लापता बबीता पांडे की तलाश जारी, अब उच्च हिमालयी सर्च विशेषज्ञों की मदद दे रहा प्रशासन, हेलीकॉप्टर से भी सर्च ऑपरेशन। समस्तीपुर में जाम में फंसी एम्बुलेंस, मरीज को गोद में लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। वैष्णो देवी में सुबह 4 बजे रोकी गई पूजा और दर्शनों के लिए रजिस्ट्रेशन, भक्तों की भीड़ को देखते हुए फैसला, 48,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में अब तक 32 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन, केदारनाथ पहुंचे सबसे ज्यादा 11,41,000 लोग। मथुरा की ब्रजभूमि में हरियाणा के लोक गायिका काजल चौधरी ने पेश की सेवा और समर्पण की मिसाल, अपने 95 साल की सास को सिर पर रखकर 84 कोस की परिक्रमा की। रूस का बड़ा दावा, पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने मार गिराया यूक्रेन के 900 से ज्यादा ड्रेन, यूक्रेन का दावा है कि रूस के कई अहम सैन्य लॉजिस्टिक ठिकानों पर हमला किया। यूक्रेन को मिल सकता है नेटो देशों की तरफ से भारी भरकम मदद, यूक्रेन के लिए 70 अरब यूरो की नई सैन्य सहायता पैकेज नेटो देश उसको देने पर कर रहे विचार। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, रविवार को रूस ने चेर्नोबिल प्रतिबंधित क्षेत्र में मौजूद परमाणु ईंधन भंडार सुविधा पर किया हमला, ज़ेलेंस्की ने बताया कि इसे रूस का बेहद ये घृणित काम रहा। इसराइल के मृतनियों का बड़ा दबाव, बीते 1 हफ्ते में इसराइली सेना ने लेबनान के भीतर मार गिराए 350 लड़ाके, कहा कि अंतिम चरण में सैन्य कार्रवाई। मध्य इसराइल में वेस्ट बैंक के पास में भीषण गोलीबारी, 1 शख्स की मौत, 5 घायल, इसराइली पुलिस का दावा संदिग्ध हमलावर ढेर। अमेरिका ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए ईरानी फुटबॉल टीम को नहीं दिया वीजा, ईरानी सरकार ने जताई नाराजगी, ईरान फुटबॉल महासंघ ने कहा कि ये खेल भावना के खिलाफ। आसिम मुनीर चिट्ठी लेकर पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी अब ईरान पहुंचे, ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की। गजा पर इसराइली सेना का बड़ा हमला, 2 रिहायशी इमारतें तबाह, हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। जापान ने रविवार को माउंट फूजी के पास में किया अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास, मिलिट्री डील में जापानी सुरक्षा बलों ने लगभग उनके 3,000 सैनिक भाग हिस्सा लिया। कैटरीना और टेलर टॉमसन ने फ्रेंच ओपन का महिला युगल खिताब जीता और इसमें सिनियाकोवा टॉमसन की जोड़ी ने अन्ना डेनिलिया और एलेक्जेंड्रा को 6-2, 7-5 से हरा दिया।

0: मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या भारत में हर्षद मेहता से भी बड़ा स्कैम हो चुका है, क्या कोई कॉरपोरेट घपला 15 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। ये वो रकम है जो पाकिस्तान की आधी GDP भारत के 2 साल के रक्षा बजट के बराबर है। आरोप लगे हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी पर। सेबी के मुताबिक इस कंपनी ने पिछले 4 सालों में अपना रेवेन्यू फर्जी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। सेबी ने सख्त एक्शन लिया है, लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि इसमें सरकारी बीमा कंपनी LIC की करीब 11% हिस्सेदारी है। सोचिए, आम लोगों का पैसा LIC के जरिए यहां लगा और क्या हाल हुआ। इसके बाद आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को लेकर दिए गए बयान के बारे में बताएंगे। उन्होंने दावा किया कि पहले व्यापार में भारत अमेरिका का खूब फायदा उठाता था, लेकिन अब अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है। जो लोग इस बयान को सत्य मान रहे हैं, उनसे सवाल है कि क्या किसी ने एक पल रुककर पूछा कि इस दावे का आधार क्या है, या किसी ने व्यापार के असली आंकड़े निकाले, क्या किसी ने यह जांचने की कोशिश की कि वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन जांचने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि ऐसे बयान ही तो सरकार पर सियासी हमले के काम आते हैं। इसमें तथ्य सबसे पहले बलि चढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती टूटने वाली है। 28 फरवरी को जब ईरान युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कहने पर ही ईरान पर हमला किया था। उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप इसराइल पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने सारी आलोचनाओं के बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक एक बात मानी। ये तक कहा कि इसराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, और मुस्लिम देशों को भी यह धमकी दी कि अगर उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करके इसराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी तो अमेरिका ईरान के साथ समझौता नहीं करेगा। यानी जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर पूरा भरोसा था और दोनों की दोस्ती अटूट मानी जा रही थी, तभी एक बड़ा खेल हुआ। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की एक नई रिपोर्ट आई जिसमें यह दावा हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू से सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि वो अब उन पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। 1 जून को राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बताया जा रहा है फोन पर बात हुई, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एहसान फरामोश कहा है। ये बोला कि अगर वो नहीं होते तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू जेल के अंदर होते। बात यही नहीं रुकी, आगे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब हर कोई प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नफरत करता है, उनके कारण दुनिया में इसराइल के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, और अगर इसराइल ने लेबनान में अपने हमले नहीं रोके तो अमेरिका इसे स्वीकार नहीं करेगा। यहां हम आपको इस बातचीत का वो हिस्सा पढ़कर नहीं बता रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने गाली गलौज की है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। अब तक युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। इस कड़वाहट के पीछे भी एक ऐसा कारण है जो ये बताता है कि इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप खुद को कितना कमजोर महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि अगर इसराइल ने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए तो ईरान के साथ उनकी डील बीच में अटक जाएगी, और यह डर कहीं ना कहीं सही भी है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि लेबनान पर हुए हमलों के कारण ईरान ने अमेरिका के साथ अपनी बातचीत बंद करने का फैसला किया। ईरान की सरकार का कहना है कि अब अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी संदेश आएगा तो उसे कचरे के डिब्बे में उठाकर फेंक दिया जाएगा। यही नहीं, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूर्ण रूप से बंद रखने का ऐलान किया। ये धमकी दी कि लेबनान के हमलों का बदला ईरान लेगा। यानी स्थिति यह है कि अमेरिका इस वक्त एक दलदल में फंस गया है, और भारत की नजर इस पर क्यों रहनी चाहिए? भारत की नजर इसलिए रहनी चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल, गैस सबकी कीमतों पर किस तरह का असर इस युद्ध से हो रहा है, और नए सिरे से अगर ये भड़कता है, ये पीस डील नहीं होता है तो भारत के लिए भी चिंता की बात है। अमेरिका एक ऐसे दलदल में है जिसके पास ना तो इसराइल खड़ा रहना चाहता है और ना ही ईरान इस दलदल में फंसे अमेरिका से कोई डील करना चाहता है। अब तक हॉलीवुड में 1000 से ज्यादा ऐसी फिल्में बनी जिनमें यह दिखाया गया कि जब भी दुनिया पर कोई संकट आया, जब भी दुनिया में कोई प्रलय आए, धरती पर एलियंस आए, हर संकट से दुनिया को बचाने की एकमात्र उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होगा। अमेरिका ने हमें सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जैसे कई सुपर हीरोज दिए, और इनसे अपनी एक ऐसी छवि बनाई कि दुनिया के हर संकट का समाधान बस अमेरिका ही है। लेकिन आज हकीकत यह है कि अमेरिका के पास अपनी खुद की समस्याओं का समाधान नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच 7 अप्रैल को सीज फायर लागू हुआ था और उस दिन से लेकर आज 2 जून तक अमेरिका ईरान के साथ एक डील नहीं कर पाया है। डील तो छोड़िए, मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका काफी मजबूर नजर आता है, जिसे अब इसराइल भी ना यानी नो कहना सीख गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन करके ये दबाव बनाया कि वो दक्षिणी लेबनान में अपनी जो सैन्य कार्रवाई है उसको रोक दे, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना। आज भी उन्होंने दक्षिणी लेबनान पर कई हमले किए, जिनमें सबसे भीषण हमला टायर शहर पर हुआ। इस हमले में एक घर तबाह हो गया और 2 लोग घायल हुए। आप तस्वीरें देखिए और ये समझिए कि क्यों इन हमलों से राष्ट्रपति ट्रंप का खून खौल रहा है। अब ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद इजराइल लेबनान में अपने हमलों को क्यों नहीं रोक रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इजराइल का कम क्षेत्रफल। जब बात अर्थव्यवस्था की होती है तो मिडल ईस्ट के सभी 18 देशों में इजराइल की अर्थव्यवस्था सऊदी अरब के बाद दूसरे स्थान पर आती है। जब बात विकास की आती है तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी इजराइल मिडल ईस्ट के सभी देशों में सबसे आगे है। जब बात सेना की आधुनिक हथियारों की आती है तो इसमें भी इजराइल ईरान को छोड़कर मिडल ईस्ट के सभी देशों से बहुत आगे है। और टेक्नोलॉजी में भी इजराइल का कोई मुकाबला नहीं, ना ही इंटेलिजेंस में। यानी ज्यादातर मामलों में इजराइल मिडल ईस्ट के बाकी देशों के मुकाबले बहुत बहुत मजबूत है, लेकिन इसी जगह क्षेत्रफल का मामला, यही उसकी कमजोर नब्ज है। क्षेत्रफल के मामले में वो बहुत पीछे है। उसका क्षेत्रफल लगभग उतना है जितनी हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास जमीन। जब मिडल ईस्ट का नक्शा देखा जाता है तो इसमें इजराइल बहुत छोटा नजर आता है। इजराइल का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 21,937 वर्ग किलोमीटर है। और आपको यकीन नहीं होगा कि एक ईरान में इजराइल जैसे 75 देश समा सकते हैं। ये देखिए मैप, ये जो आपको पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का, डार्क बैगनी रंग का, जो गाढ़ा बैगनी रंग का कलर दिख रहा है, ये इजराइल है। अब इसके मुकाबले आप देखिए, जॉर्डन भी बड़ा दिख रहा है, इराक, ईरान और सऊदी अरब तो खैर बहुत ही बड़ा। तो इस इजराइल जैसे 75 देश ईरान में समा सकते हैं। सऊदी अरब के कुल क्षेत्रफल में 98 इजराइल, यूएई में 4 इजराइल, इराक में 20 इजराइल और जॉर्डन के भी क्षेत्रफल में इजराइल जैसे 4 देश बन सकते हैं। और यही कारण है कि जब भी कोई संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो उसमें इजराइल अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने के बारे में सोचता है और इस युद्ध में वो यही कर रहा है। वो दक्षिणी लेबनान को बफर जोन बनाकर उसे अपने नियंत्रण में करना चाहता है, जबकि गाजा में भी उसने 70% जमीन को अपने नियंत्रण के लिए में लेने के आदेश दिए हैं, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं। और नाराज इसलिए हैं क्योंकि लेबनान पर इसराइल के हमलों से वो ईरान के साथ डील नहीं कर पा रहे। ईरान चाहता है कि लेबनान में उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह रोका जाए, वरना वो भी इसराइल पर हमले करेगा। अब इसराइल अपनी जगह, अपनी सुरक्षा चाहता है। IRGC की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मुसावी ने कहा कि लेबनान में दुश्मन के अपराधों के सामने ईरान का सब्र अब जवाब देने वाला है और अगर ये हमले रोके नहीं गए तो इसराइल को इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहां ये भी समझना जरूरी है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप और PM नेतन्याहू की दोस्ती टूटती है तो इसका असर आपकी जेब और रसोई दोनों पर पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान में सैन्य कार्रवाई को नहीं रोकेंगे तो अमेरिका इसराइल से खुद को अलग कर लेगा और ऐसी स्थिति में अमेरिका और ईरान के बीच डील होने की संभावना मुश्किल में आएगी। ईरान ये कहेगा कि वो और हिजबुल्ला अलग नहीं है। अगर लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ युद्ध जारी रहता है तो इस डील का कोई मतलब नहीं है। इसराइल लेबनान पर अटैक अगर नहीं रोकता है तो ऐसे में ये डील नहीं होगी, ईरान अड़ा रहेगा, डील नहीं होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान खोलेगा नहीं, अगर हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो 20% तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं होगी, और अगर ये आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो भारत के लिए संकट गहराएगा। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पहले ही भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 बार बढ़ चुकी हैं और ये 7.5% महंगा हो चुका है। यहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें दुनिया के 98 देशों में बढ़ी हैं, ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत के मामले में पेट्रोल डीजल का महंगा होना आम लोगों की जेब के लिए अच्छा नहीं है। भारत के आम लोगों की पेट्रोल डीजल खरीदने की क्षमता अगर आप देखिए तो लोगों के लिए चैलेंज है। अमेरिका के लोग प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हर दिन 198.7 लीटर पेट्रोल, जापान में 92 लीटर पेट्रोल, ब्रिटेन में 74.3 लीटर, जर्मनी में 69 लीटर, फ्रांस में 55.3, इटली में 50.8, रशिया में 41.6, चाइना में 28.7 और भारत में आम लोगों की प्रतिदिन 7.6 लीटर पेट्रोल खरीदने की क्षमता है। यही कारण है कि भारत के लिहाज से इस युद्ध का और फैलना सही नहीं है और इससे भारत के चैलेंजेस बढ़ेंगे। कि आखिर भारतीय राजनीति में सब कुछ जायज क्यों माना जाता है और ऐसा क्यों है कि जैसे ही कोई मुद्दा सरकार को घेरने का अवसर देता है वैसे ही तथ्य पीछे हो जाते हैं, राष्ट्रहित पीछे चले जाते हैं या धकेल दिए जाते हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पर किसी को कोई असहजता भी नहीं होती, किसी को यह चिंता नहीं होती कि राजनीतिक लाभ के लिए देश की छवि, देश की प्रतिष्ठा, देश के तथ्य दांव पर लगाए जा रहे हैं। आज राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर एक बयान दिया और ये कहा कि पहले व्यापार के मामले में भारत अमेरिका का खूब फायदा उठाता था, लेकिन अब अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है। इस बयान को भारत की राजनीति में ब्रह्म वाक्य मान लिया गया और इसे ऐसे पेश किया गया जैसे राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है और भारत ने अमेरिका के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। लेकिन आज हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या किसी ने रुककर पूछा कि इस दावे का आधार क्या है, क्या किसी ने व्यापार के असली आंकड़े निकाले, या किसी ने यह जांचने की कोशिश की कि वास्तविक स्थिति क्या है, और क्या किसी ने यह देखा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संतुलन आखिर कहता क्या है, या किसी ने यह समझने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी निजी राजनीति को साधने के लिए भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इस बयान की सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि इससे रणनीतिक और राजनीतिक हमला किया जा सके। हमारे देश में जब राजनीति का मौका दिखाई देता है तो अक्सर तथ्य सबसे पहले बलि चढ़ जाते हैं। विडंबना देखिए, आज के दौर में हर तरफ फैक्ट चेक की बातें होती हैं, कई तथाकथित फैक्ट चेकर इसकी सोशल मीडिया पर दुकान सजाते हैं, लेकिन हकीकत में कई बार यही लोग राजनीतिक रूप से सुविधाजनक बयानों को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेते हैं और इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि यहां ऐसे बयान उनके एजेंडे को सूट करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान आज उनको बड़ा मजेदार लग रहा है, आज यही हुआ है। आप पहले इस बयान को सुनिए, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। सुनिए।
1: लुक, इंडिया फॉर इयर्स हैज, एंड आई डोंट ब्लेम देम, आई ब्लेम अस बिकॉज़ वी हैड स्टूपिड पीपल हियर। इंडिया फॉर इयर्स रियली टुक एडवांटेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यू नो, दे चार्ज अस ट्रेमेंडस टैरिफ्स. And they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example, in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. Mm-hmm. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that that happened, but it happens. It was before me. But they charged tremendous amounts of tariffs to our company. And we didn't charge them anything. You know, they sold motorbikes here too. You know, we charged them nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India. But we'll get to a deal. Because I like, you know, I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great. And we're going to make a deal. We have a very good relationship.
0: इस बयान को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि क्या वाकई में अमेरिका भारत का फायदा उठा रहा है और इसमें आखिर कितनी सच्चाई है। तो आज आंकड़ों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यही कहते हुए भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था ना कि हम अमेरिका के साथ बराबरी का व्यापार नहीं करते। अमेरिका तो हम पर काफी कम टैरिफ लगाता है लेकिन हम अमेरिका के सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं जिससे भारत को फायदा होता है। अब आंकड़े बताते हैं कि यह फायदा होता भी था। साल 2024-25 में भारत ने अमेरिका को 7,33,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया, जबकि इसी दौरान अमेरिका ने हमें 3,86,000 करोड़ रुपए का ही निर्यात किया, और इससे अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार मुनाफा है वो 3,47,000 करोड़ रुपए का था। तो इतना हम फायदे में रहते थे, और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि पहले कम टैरिफ के कारण भारत अमेरिका का बहुत फायदा उठाता था, लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि अब ये स्थिति बदल गई है और अब अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है। इस बयान से ऐसा लगता है कि टैरिफ लगने के बाद भारत का ट्रेड सरप्लस खत्म हो गया। ये नंबर याद रखिएगा, 3,47,00,000 रुपए, यही है ना हमारा मुनाफा जो 24-25 में था। और ऐसा लग रहा है जैसे अब हम अमेरिका हमसे व्यापार मुनाफा कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे, जबकि ये बात सरासर गलत है। टैरिफ लगने के बाद साल 2025-26 में भारत और अमेरिका के बीच 12,43,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। ये व्यापार पिछले साल से 1,24,000 करोड़ रुपए ज्यादा है, और इसमें भी भारत ने अमेरिका को 7,70,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है, जबकि अमेरिका ने हमें 4,73,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। यानी मतलब यह हुआ कि टैरिफ लगने के बाद भी भारत का अमेरिका के साथ व्यापार मुनाफे में है, 2,97,000 करोड़ रुपए का है। और अब भी अगर हम देखें तो हम ट्रेड सरप्लस में है, पिछली बार से कमी जरूर आई है, पहले से लगभग 1,25,000 करोड़ की, लेकिन आज भी भारत फायदा उठाने की बात, भारत फायदा उठा रहा है। और जो ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी निजी राजनीति के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब हमें फायदा हो रहा है, ये बात किसी भी फैक्ट की सच्चाई पर, कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। आज भी भारत का व्यापार मुनाफा 3,00,000 करोड़ के आसपास है। ये बात सही है कि अमेरिका का निर्यात पिछले साल से 87,000 करोड़ रुपए बढ़ा है और हमारा व्यापार मुनाफा 50,000 करोड़ रुपए कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका फायदे में है। भारत आज भी फायदे में है और नंबर आपके सामने है लगभग 3,00,000 करोड़ का। आगे बढ़िए, हकीकत तो यह है कि हम अब भी लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए के ट्रेड सरप्लस में चल रहे हैं, लगभग 3,00,000। अगर कुछ लोगों को परेशानी है तो एग्जैक्ट नंबर बता देते हैं, 2,97,000 करोड़। ठीक है, तो हम आज भी ट्रेड सरप्लस में ही है। अगर मार्च 2026 के भी आंकड़े देखें तो इस एक महीने में अमेरिका और भारत के बीच 1,21,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जिसमें भारत कुल 38,146 करोड़ रुपए के फायदे में रहा। लेकिन फिर भी जब राष्ट्रपति ट्रंप इन आंकड़ों से इतर गलत दावा करते हैं तो हमारे देश में विपक्षी नेता इसे सच मान लेते हैं और इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि आप करिए राजनीति, सरकार पर सवाल उठाइए, लेकिन सवाल है कि राष्ट्रपति ट्रंप जब जब भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी राजनीति को, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को साधने के लिए, तो हम सबको एक आवाज में उनके खिलाफ बोलना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप गलत दावा करके हमारे देश की छवि ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे अमेरिका हमारा फायदा उठा रहा हो, लेकिन आज भी हम 3,00,000 करोड़ के सरप्लस में चल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ लगने से अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन यहां भी उनका दावा गलत है। न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व बैंक कहता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों से अमेरिका का औसत टैरिफ 2.6% से 13% हुआ, लेकिन इस टैरिफ का बोझ दुनिया के दूसरे देशों पर नहीं पड़ा। टैरिफ का 90% भुगतान अमेरिका के लोगों ने ही किया, जबकि 10% भुगतान कंपनियों ने किया। यानी अगर भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लागू भी हुआ तब भी इस टैरिफ को हमने और हमारी कंपनियों ने भरा ही नहीं, इसे तो अमेरिका के लोगों ने भरा। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो भारत से खूब पैसा कमा रहे हैं, हमारे देश के विपक्षी नेता इसे सच मान लेते हैं। अगर अमेरिका की इस रिपोर्ट पर यकीन ना हो तो जर्मनी के केल इंस्टीट्यूट के आंकड़े देखिए, जो ये कहता है कि टैरिफ का 96% बोझ अमेरिका के लोगों ने उठाया, सिर्फ 4% बोझ कंपनीज ने उठाया। हमारा सोर्स है केल। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच ऐसा कोई बहुत बड़ा समझौता नहीं हुआ जिसके आधार पर यह कहा जाए कि अमेरिका भारत का फायदा उठा रहा है। 31 अक्टूबर 2025 को भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा समझौता हुआ वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टेक्नोलॉजी के साझा इस्तेमाल को लेकर था। उसी का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 19 मई 2026 को भी एक करार हुआ जिसमें यह तय हुआ कि अमेरिका भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए जरूरी सेवा, जरूरी उपकरण देगा, लेकिन यह भी कोई ऐसा समझौता नहीं था जिससे अमेरिका ने हमारा फायदा उठा लिया। अगर हमने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं तो उनकी मेंटेनेंस के लिए ऐसे समझौते हमें करने ही होंगे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप हर बार की तरह ऐसे दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। हमारे देश में इस पर राजनीति होती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लेकर यह दावा किया था कि वो अमेरिका से टैरिफ से डरे हुए हैं, अमेरिका के टैरिफ से, और ऐसा दावा था कि जिस पर फ्रांस के विपक्षी दल राजनीति कर सकते थे और ये भी कह सकते थे कि उनके राष्ट्रपति अमेरिका के टैरिफ से डर गए हैं, उनके दबाव में हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा कुछ हुआ नहीं और वहां के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति ट्रंप पर ही सवाल उठाया और उनके देश के लिए ऐसी टिप्पणी आखिर वो कैसे कर सकते हैं, ये जमकर उन्होंने बात रखी। कैनेडा को लेकर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया था कि वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी उनके टैरिफ से आशंकित हैं। और अब तक कनाडा अमेरिका का फायदा उठाता था लेकिन अब अमेरिका कनाडा का फायदा उठाएगा। लेकिन सोचिए, कनाडा में भी इस पर पॉलिटिक्स नहीं हुई, सारा देश एक साथ मिलकर कनाडा के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर खूब सवाल किए। यही चीज जर्मनी के मामले में हुई, स्पेन के मामले में, नेटो के मामले में, यूरोपियन यूनियन के मामले, यहां तक कि चाइना के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप ने जो दावे किए उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। और अमेरिका के मीडिया ने खुद कई बार इन बयानों का फैक्ट चेक किया लेकिन हमारे देश में इसको लेकर खूब पॉलिटिक्स हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप के दावे को आज खूब महिमामंडन किया जा रहा है। इसी के साथ यह आंकड़ा हमारा नहीं है, यह आंकड़ा जो वहां पर छापे गए वॉशिंगटन पोस्ट में है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तक के आंकड़े को अगर आप देखिए तो वॉशिंगटन पोस्ट यह दावा करता है, वॉशिंगटन पोस्ट यह दावा करता है, एक बार फिर से वो नंबर दिखा दीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट यह दावा कर रहा है कि खुद ट्रंप ने अपने कार्यकाल में 30,573 झूठ बोले हैं। ये किसी और का दावा नहीं है, ये हमारे आंकड़े भी नहीं है, अमेरिका के मीडिया का है। और आप ईरान को ही याद कर लीजिए, ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या क्या दावे नहीं किए, लेकिन सोचिए क्या वहां इन दावों पर आंख मूंद कर कोई विश्वास कर रहा है। याद कीजिए जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल भारत को डेड इकोनॉमी बताया था तब भी कई विपक्षी नेताओं ने इस पर आपत्ति नहीं जताई बल्कि हां में हां मिलाया। लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे की भी पोल खुल गई। चलिए आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आज साल 2025-26 की जीडीपी के आंकड़े क्या हैं। तो डेड इकोनॉमी जिसे बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और हमारे देश में हां में हां मिलाया जा रहा था, तो एक बार ये नजर मार लीजिए, ये 2025-26 के आज नंबर्स आए हैं, 7.7%। पिछले साल का अगर आप नंबर देखिएगा तो ये देखिए 7.1%। इसी के नजरिए से अगर आप अमेरिका का देखें तो मौजूदा नंबर है 2.1% का की वृद्धि, और वहीं जब आप पिछले साल का देखेंगे तो 2.8% का, इसी के आसपास ये झूल रहे हैं। वहीं पर चाइना में भी देखेंगे तो चाहे वो इस साल का हो या फिर पिछले साल का हो, दोनों में ही 5% है जीडीपी। फिर आप आ जाइए जर्मनी पर, जर्मनी में हालत इन दिनों दुरुस्त नहीं है और ये गिरावट है -0.5% की उनकी जीडीपी में, जो कि पूरी तरह से आप कह सकते हैं एक रेड सिग्नल यहां पर ब्लिंक कर रहा है। वहीं अगर आप देखें तो अभी जो नंबर ये पिछली बार का है, पिछले साल का है, इस बार वो 0.2% आगे बढ़े हैं, इससे उभरे हैं। अब जापान पर आ जाइए, जापान 0.1% है, 0.1% पिछले साल था और इस बार कितना है वो 1.1%। और वैसे ही ब्रिटेन में 1.3%, मतलब आप समझ लीजिए कि ये दोनों देश लगभग आसपास ही हैं, इनसे 1% ऊपर ये अमेरिका है और यहां पर आप देखिए तो पिछले साल में इनके नंबर्स 1.1% थे। तो इससे अंदाजा आपको लग जाएगा कि चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना, जर्मनी, जापान, जीडीपी के मामले में जो नंबर्स आए हैं वो साफ तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर एक बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यही है कि आज इन सब के इर्द गिर्द हो रही पॉलिटिक्स के बीच सच कहीं छिप ना जाए। बात सिर्फ भारत की डेड इकोनॉमी बताने की नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 बार यह दावा किया कि भारत ने रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है, खूब हमारे देश में इसमें पॉलिटिक्स हुई। लेकिन सच यही है कि आज तक एक बार ऐसा नहीं हुआ जब हमने रशिया से अपने कच्चे तेल के आयात को बंद किया। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये आंकड़े देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 अगस्त 2025 को भारत पर रशिया से तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाया था। रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो? लेकिन तब भी हम नहीं झुके। और मुझे आज भी व्लादिमीर पुतिन का मेरा वो इंटरव्यू याद आता है जिसमें ये सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि वो तो हमसे यूरेनियम खरीदते हैं तो खुद पर टैरिफ क्यों नहीं लगा देते। तो अमेरिका अगर यूरेनियम खरीद सकता है तो भारत तेल क्यों नहीं? और अगस्त 2025 में हमने रशिया से प्रतिदिन 16,90,000 बैरल कच्चा तेल आयात किया था। अगस्त के बाद सितंबर में भी ये प्रतिदिन 16,10,000 बैरल रहा। और जब हमारे देश के बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भारत अमेरिका से डर गया है और हमने रशिया से कच्चे तेल की खरीद कम कर दी है, तब यही खरीद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची और नवंबर महीने में हमने रशिया से प्रतिदिन 18,40,000 बैरल तेल खरीदा। और ये पूरा ग्राफ आप देख सकते हैं कि इसके बाद भी हमने रशिया से कच्चे तेल की खरीद बंद नहीं की और रशिया हमारा सबसे बड़ा ऑयल पार्टनर बना रहा। दुख की बात यह है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो भारत से खूब पैसा कमा रहे हैं तो हमारा विपक्ष इस बयान को उठाकर मुद्दा बनाता है। जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि अमेरिका ने भारत पर जो दबाव बनाया वो सारा दबाव बेकार गया, भारत अमेरिका से डरा नहीं, तो ये बयान कोई कोट नहीं करता। लेकिन आज हम आपको राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह बयान भी दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने उसी वक्त दिया जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत को लेकर यह भ्रामक दावा कर रहे थे। सुनिए।
2: हमें खुशी है कि भारत दुनिया के सभी देशों के साथ अपने संबंध विकसित कर रहा है। भारत एक महान देश है, ये लगभग 1.5 अरब लोगों का देश है, इसकी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। भारत अपने हितों के अनुसार उन देशों के साथ आर्थिक और अन्य संबंध विकसित करेगा जिन्हें भारत आवश्यक समझता है। अमेरिका कुछ मुद्दों पर भारत पर दबाव डालने की कोशिश करता है, खासकर रूस के साथ भारत के सहयोग को लेकर, लेकिन हर कोई समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और द्विपक्षीय रिश्तों के लिए नुकसानदायक है। ये मायने नहीं रखता कि ये दबाव कहां से आ रहा है, ऐसा दबाव वैश्विक संबंधों के लिए अच्छा नहीं है।
0: आज जब हमारे देश में ये सारी राजनीति हो रही है तब हम आपको 6 जनवरी 2021 की ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये वही तस्वीरें हैं जब अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने चुनावी नतीजों के खिलाफ दंगे किए थे और अमेरिका की संसद का मजाक बनाकर रखा था। इन दंगों में जो लड़का कैपिटल हिल की खिड़कियों को तोड़कर अंदर घुसा था और जिसे अमेरिका की अदालत ने इसके लिए दोषी माना था, जानते हैं इस दंगाई के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया है? एलियस इरिजारी नाम के इस लड़के को राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन में यानी अमेरिका के रक्षा विभाग में नौकरी दे दी है और जब इस पर सवाल खड़े हुए तो पेंटागन के प्रेस सचिव जोएल वाल्डेज ने कहा कि यह लड़का देशभक्त है, इसके जैसे लड़कों की अमेरिका के रक्षा विभाग को सख्त जरूरत है। सोचिए, अब तक हम नहीं सोचते थे कि भारत में बाहुबलियों, अपराधियों, दंगाइयों को चुनाव में टिकट कैसे ये पार्टियां दे देती हैं। सांसद विधायक वो बन जाते हैं, जेल से चुनाव लड़कर जीत जाते हैं। लेकिन अमेरिका तो इससे भी एक कदम आगे निकल गया, उसने अमेरिकी संसद में हिंसा करने वाले लड़के को रक्षा विभाग में नौकरी ही दे दी। वह क्या गजब हो रहा है राष्ट्रपति ट्रंप के राज में। करेंगे ईरान की, जहां एक बार फिर से युद्ध की आग धधक उठी है। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर अटैक किया जिसके जवाब में अमेरिका ने केशम द्वीप पर बमबारी शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि शांति लंबे समय तक शायद कायम रहेगी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी ऐसा लग रहा है। इन हमलों के बीच एक और बड़ी खबर आई है। इस साल 28 फरवरी के बाद से एक सवाल पूरी दुनिया पूछ रही थी कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई का क्या हुआ, उनकी अंतिम विदाई का कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। अब इन सवालों का ठोस जवाब मिलने लगा है। ईरान के सरकारी मीडिया IRNA के मुताबिक पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम यात्रा 16 जून से 26 जून के बीच किसी एक दिन निकाली जाएगी। हालांकि अभी तक तारीख तय नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक इसी महीने मुहर्रम के दौरान अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। IRNA की खबर के मुताबिक अली खामनेई के जनाजे के लिए ईरान में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा जाएगा और इन 3 दिनों के अंदर अलग अलग जितने शहर हैं तमाम शहरों में शोक सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। अनुमान है कि उनके जनाजे में करीब 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। खबर के मुताबिक अली खामनेई का जनाजा तेहरान के अलावा देश के 2 प्रमुख धार्मिक शहर कोम और मशहद में भी गुजरेगी। योजना के मुताबिक मशहद में अली खामनेई के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा क्योंकि ये शहर उनका घर था। दुनिया के ज्यादातर धार्मिक परंपराओं में व्यक्ति की मृत्यु के कुछ ही दिनों के अंदर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन अली खामनेई के मामले में करीब 3 महीने बाद जनाजा उठेगा। अली खामनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमलों में हुई थी और उसी के बाद से ईरान के वरिष्ठ नेता और सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उनके शव को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। अपने पूर्व सुप्रीम लीडर की अंतिम यात्रा की तैयारियों के बीच ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता को फिलहाल रोक दिया है और अटैक शुरू कर दिए हैं। ईरान की फार्स और तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान की तरफ से शांति वार्ता के मीडिएटर्स से बातचीत बंद कर दी गई है और बातचीत बंद करने की वजह इसराइल द्वारा लेबनान पर किए जा रहे हमले हैं। युद्ध विराम के पहले शर्त यह रखी गई कि इसराइल लेबनान पर हमले नहीं करेगा, लेकिन हमने आपको बीते दिन बताया लेबनान पर हमले करने के लिए ट्रंप कह रहे हैं नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। दोनों के बीच बकझक हो गई, लेकिन हिजबुल्ला की ओर से किए गए हालिया हमलों के बाद इसराइल ने फिर से लेबनान में अपने सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिए और दक्षिण लेबनान और बेरूत पर जबरदस्त बमबारी की है। इसी सैन्य ऑपरेशन को आधार बनाते हुए ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और इसी के साथ साथ उसने बातचीत को बंद कर दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन दावों को झूठा बताया गया है। उनके मुताबिक ईरान के साथ बातचीत लगातार जारी है और अब समय आ गया है कि किसी ना किसी तरह के एक समझौता किया जाए। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर और ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमले किए, उसे देखते हुए दोनों देशों में शांति बहाली की उम्मीद कम होती जा रही है। कल अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी के दौरान ईरान की ओर जा रहे एक ऑयल टैंकर पर मिसाइल फायर किए थे। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकेबंदी को पार करके एक शिप खार्ग द्वीप की ओर जा रहा था। कई चेतावनी दी गई, कई चेतावनियों के बाद भी जब जहाज को नहीं मोड़ा गया तब अमेरिकी फाइटर जेट्स ने शिप के इंजन पर हेल फायर मिसाइल्स दाग दी, जिसके बाद जहाज को काफी नुकसान हुआ। 13 अप्रैल के बाद से अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी लगाई हुई है और वहां जाने वाले 100 से ज्यादा जहाजों को वापस भेजा गया है। जहाज को रोकने से ईरान भड़क गया, जिसके जवाब में उसने कुवैत बहरीन पर मिसाइल ड्रोन अटैक किए। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि IRGC ने कुवैत एयरपोर्ट के अलावा बहरीन में मौजूद US नेवी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। IRGC का दावा है कि इस हमले में काफी नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सभी हमले को समय रहते हुए इंटरसेप्ट किया गया, नाकाम कर दिया गया। US सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था। ईरान ने 2 मिसाइलें कुवैत पर, 3 मिसाइलें बहरीन पर दागी, जिन्हें नाकाम कर दिया गया। आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिका को उत्तर कोरिया में ईरान नजर आता है? जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपने यूरेनियम को सरेंडर करे, तब जानते हैं किम जोंग उन क्या कर रहे हैं। किम जोंग उन ने एक गजब का खेल किया है। उत्तर कोरिया की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्होंने एक ऐसी फैक्ट्री का दौरा किया जहां यूरेनियम को परमाणु हथियारों के लिए एनरिच किया जाता है और तस्वीरें जारी कर दी। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने खुद इन तस्वीरों को जारी किया है जो अमेरिका के लिए बड़ा संदेश मानी जा रही है और इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि क्या इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर उसका यूरेनियम सरेंडर करने के लिए दबाव बना रहे हैं। असल में परमाणु हथियारों को लेकर जो दबाव आज ईरान पर है, वही दबाव आज से 40 साल पहले उत्तर कोरिया पर भी था। उस वक्त अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर कई प्रतिबंध लगाए। ताकि वो परमाणु हथियार बनाने की अपनी जो कोशिशें हैं उसको बंद कर दे। कई बार उत्तर कोरिया ने यह वादा भी किया कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उस वक्त अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर निगरानी रखी, लेकिन ईरान की तरह उसे अपना यूरेनियम सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं किया। और इसी बात का फायदा उठाकर गोपनीय तरीके से उत्तर कोरिया ने साल 2006 में अपना पहला परमाणु हथियार बना लिया। और ये वो क्षण है जिसके कारण आज अमेरिका ईरान के मामले में कोई लापरवाही नहीं करना चाहता है। अमेरिका को लगता है कि अगर उसने ईरान का यूरेनियम उससे हासिल नहीं किया तो कुछ सालों के बाद ईरान भी परमाणु हथियार बना लेगा और वहां के सुप्रीम लीडर भी इसी तरह से परमाणु हथियार बनाने वाले कारखानों का दौरा करेंगे, जैसे किम जोंग उन उत्तर कोरिया में कर रहे हैं। देखिए,

0: उत्तर कोरिया की तस्वीर आपने देख ली, किम जोंग उन का अपना एक स्टाइल है और उस स्टाइल में आप देख रहे हैं उनका एक मॉडल है और उसी मॉडल पर उत्तर कोरिया काम कर रहा है, जिसके कारण वो अपने यूरेनियम को अमेरिका के हवाले नहीं करना चाहता। ये तस्वीरें करीब साल भर पहले की हैं, जब इसराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। यह अमेरिका का दावा था। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने यही कहा था कि ईरान का यूरेनियम अमेरिकी हमलों के कारण जमीन के नीचे दब गया है और यह अब भी सुरक्षित है। लेकिन आज संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि ईरान का यही यूरेनियम अब गायब हो चुका है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसकी निगरानी से बाहर निकल गया है। वो अब इतना तक बता सक पाने की हालत में नहीं है कि ईरान के पास इस वक्त कुल कितना यूरेनियम है, उसका क्या फॉर्म में वो यूरेनियम है, किस स्वरूप में है, उसे किस खुफिया जगह पर छिपा कर रखा गया है। आईएईए ये तक नहीं बता पा रही कि ईरान ने यूरेनियम को और ज्यादा ताकतवर बनाने की अपनी जितनी भी उसकी गतिविधियां थी उसको पूरी तरह से रोका है या नहीं। ये समझ से परे है कि दुनिया भर की न्यूक्लियर साइट्स और कार्यक्रमों की देखरेख नियंत्रण करने वाली संस्था इतनी बेबस और असहाय नजर आ रही है। और ऐसा क्या ऐसा हो भी सकता है कि ईरान पिछले साल अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बचाने में कामयाब हो गया था और यूरेनियम को उसने किसी और जगह सुरक्षित छिपा दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि भारत को दूसरे देशों से सर्टिफिकेट लेने की आखिर क्या जरूरत है। अगर कोई विदेशी अखबार, कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, कोई ग्लोबल थिंक टैंक भारत के बारे में कोई दावा कर दे तो हमारे यहां उसे लगभग अंतिम सत्य की तरह स्वीकार कर लिया जाता है। आज बात सोने की होगी, उसे शेयर किया जाता है, उसके आधार पर बहसें होती हैं, राजनीतिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सरकारों को घेरा जाता है। लेकिन जब उसी दावे को देश का केंद्रीय बैंक, आधिकारिक आंकड़े, जिम्मेदार संस्थाएं तथ्यों के साथ खारिज करती हैं तो अचानक लोगों को सबूत कम और संदेह ज्यादा दिखाई देने लगता है। आखिर ऐसा क्यों और क्यों विदेशी होने भर से कोई दावा विश्वसनीय नहीं हो जाता। इस हफ्ते 2 जून 2026 को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिसमें ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता ने अनुमान लगाया कि 22 मई तक के दो हफ्तों में आरबीआई ने $12 बिलियन यानी लगभग 1,16,000 करोड़ रुपए का सोना बेचा है और इसी दौरान $7.5 बिलियन की विदेशी मुद्रा खरीदी है। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा तर्क यह था कि ईरान युद्ध के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर काफी दबाव है और शायद इसीलिए आरबीआई ने अपने सोने का कुछ हिस्सा बेच दिया और बेचकर डॉलर रिजर्व को मजबूत किया है। बड़ी बात यह है कि इस अनुमान का कोई विश्वसनीय आधार था ही नहीं। भारत को लेकर इतनी बड़ी बात सिर्फ ये सोचकर लिख दी गई कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ रही है और फिर भी आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में इजाफा नहीं हो रहा है तो शायद आरबीआई ने कुछ सोना बेच दिया होगा। अब ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई, हमारे देश में खूब हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब देश का सोना बेचा गया, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इस रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी ने यह कहा कि भारत में आर्थिक सुनामी आने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अगले एक साल में गिर जाएगी। इतना हंगामा हुआ, आरबीआई ने इस खबर का फैक्ट चेक किया, ये बताया कि 3 जून को भारत की फिजिकल होल्डिंग जो गोल्ड होल्डिंग है वो 880.52 टन थी और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आरबीआई के बाद पीआईबी ने भी यही बताया कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का महत्व बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। दिसंबर 2025 में यह हिस्सेदारी 13.92% थी जो 31 मार्च 2026 को 16.70% हुई और 22 मई 2026 को 16.85%। जानते हैं, इस फैक्ट चेक के बाद ब्लूमबर्ग ने अपनी गलती मानी, अपनी रिपोर्ट को हर प्लेटफॉर्म से डिलीट किया। जब तक ब्लूमबर्ग ने खुद माफी नहीं मांगी थी और खुद रिट्रैक्ट नहीं किया अपने इस खबर को, तब तक कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं था। अब ब्लूमबर्ग ने यह भी कहा कि उसकी पुरानी रिपोर्ट गलत थी, इनएक्यूरेट शब्द उन्होंने लिखा है और वो इसके लिए खेद प्रकट करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ब्लूमबर्ग ने तो इस रिपोर्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन हमारे देश के जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने, जिन यूट्यूबर्स ने इस रिपोर्ट पर आधारित बड़े बड़े एक्सप्लेनर्स बना दिए, इस पर पोस्ट लिखे उन्होंने अब तक इसे डिलीट नहीं किया है। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अब भी यह खबर एक लेबल की तरह चिपकी हुई है, जबकि ब्लूमबर्ग इस रिपोर्ट को डिलीट कर चुका है। और इसीलिए सवाल यह है कि अगर फेक न्यूज फैलाकर ब्लूमबर्ग उस खबर को हटा सकता है, उस पर खेद प्रकट कर सकता है, तो इस रिपोर्ट पर लंबे चौड़े पोस्ट लिखने वाले जो अलग अलग लोग हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वो एक फर्जी खबर पर अपने पोस्ट और एक्सप्लेनर को क्यों नहीं हटा रहे हैं? और क्या इससे ये नहीं पता चलता है कि हमारे देश में सिर्फ राजनीति के लिए कितनी गंदी राजनीति की जाती है? अगली खबर का रुख करते हैं, खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या भारत में हर्षद मेहता से भी एक बड़ा स्कैम हुआ है, और क्या ये स्कैम 15 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है? 15 लाख करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, ये पैसा हमारे 2 साल के रक्षा बजट के बराबर है, पाकिस्तान जैसे देश की आधी GDP। और यहां तो ये मामला सीधे भारत के शेयर मार्केट और LIC से जुड़ा हुआ है। राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की जिस कंपनी पर इस घोटाले के आरोप लग रहे हैं, उसमें सरकारी बीमा कंपनी LIC की 10.8% की हिस्सेदारी है, और इसी वजह से ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। हम आपको एक एक करके वो सारी बातें बताएंगे जिससे आप इस पूरे मामले को समझ सकें। ये पूरा विवाद शुरू होता है सेबी के एक अंतरिम आदेश ने, वही सेबी जो भारत के शेयर बाजार का चौकीदार है, उसकी निगरानी करने वाला एक रेगुलेटर है। अब सेबी ने क्या किया? सेबी ने कड़ा एक्शन लिया और सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ 109 पन्नों का एक अंतरिम आदेश जारी किया है। राजेश एक्सपोर्ट्स भारत की एक बड़ी कंपनी है। करती क्या है यह कंपनी? सोने की रिफाइनिंग और गोल्ड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स का ये काम करती है। सेबी ने आरोप लगाया कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू और सेल्स के आंकड़ों में बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। अब ये गड़बड़ी इसलिए चिंताजनक थी क्योंकि रेवेन्यू में हेरफेर कुछ पैसों का नहीं हुआ। आरोप है कि इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच पूरे 15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार दिखाया, जो वास्तविकता से कहीं ज्यादा था। आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी कह रही थी कि उसने इन 4 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया, जबकि सेबी का कहना है कि इतना कारोबार इस कंपनी ने कभी किया ही नहीं है। मतलब 15 लाख करोड़ का जो उसने नंबर दिया वो पूरी तरह से गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, और कैसे किया अब वो भी समझिए। दरअसल ये कंपनी कहती थी कि उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू स्विट्जरलैंड की एक गोल्ड रिफाइनरी से आता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू, नाम है वालकैम्बी। अब इस दावे के आधार पर सेबी ने इस विदेशी कंपनी के भी बैंक खातों की जांच की, और जब जांच हुई तो ये पता चला कि जितना कारोबार राजेश एक्सपोर्ट्स ने इसके साथ होने का दावा किया है वो इस कंपनी के रिकॉर्ड से मेल ही नहीं खाता। सेबी का यह भी आरोप है कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू के सही और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, जैसे उन ग्राहकों की पूरी सूची नहीं दी जिन्हें सोना बेचने का दावा था। जो सप्लायर्स सोना इससे खरीद और बेच रहे थे उनकी भी जानकारी नहीं दी। इस कंपनी की जो सहायक कंपनियां हैं और जो विदेशों में काम कर रही हैं उनका भी वित्तीय रिकॉर्ड सेबी को सौंपा नहीं गया, और इसी वजह से ऑडिटर इस कंपनी की पूरी तरह से जांच नहीं कर पाए। अब मान लीजिए कोई दुकानदार आपसे यह कहे कि उसने पूरे साल काम करके 1 करोड़ रुपए कमाए लेकिन उसका मुनाफा सिर्फ 1 लाख रुपए रहा, तो आप क्या कहेंगे? आप यही सोचेंगे कि इतनी बड़ी बिक्री के बावजूद मुनाफा इतना कम। और आरोप है कि इस मामले में भी यही खेल चल रहा था। राजेश एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू तो करोड़ों में था लेकिन इसका कुल बाजार मूल्य सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़े भी इस साल के हैं जब ये कंपनी 7,80,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का दावा कर रही है। सेबी का यह भी कहना है कि इस कंपनी ने अफ्रीका में सोने की खदानों में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने का दावा किया, लेकिन जब जांच हुई तो सेबी को इसके पास से वैल्यूएशन रिपोर्ट, निवेश के प्रमाण और पर्याप्त दस्तावेज मिले ही नहीं। इससे यह सवाल उठता है कि यह निवेश हुआ भी था, ये सिर्फ कंपनी की आमदनी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए किया गया था। अब आप पूछेंगे कि अगर इस कंपनी ने 15 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया तो ये भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला कैसे हो गया? तो इसके पीछे है शेयर बाजार की कहानी। शेयर बाजार में जब निवेशक किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो वहां उसकी आर्थिक सेहत देखी जाती है, यानी उस कंपनी का कारोबार कितना बड़ा है, उसकी सेल कितनी है, उसका रेवेन्यू कितना है, उसमें निवेश करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। आप भी अगर शेयर में इन्वेस्ट करते होंगे तो यही सब देखते होंगे, तमाम जो हेल्थ पैरामीटर्स एक कंपनी के कहलाते हैं। अब क्योंकि इस कंपनी पर आरोप लग रहा है कि उसने अपने रेवेन्यू को वास्तविकता से ज्यादा बताया था, इसीलिए शेयर बाजार में उसका माहौल बना, उसने दिखाया बढ़ा चढ़ा कर नंबर, उसके हक में पूरा शेयर बाजार में एक माहौल बना और सबको लगा कि यहां पर अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। निवेशकों ने सोचा कि इस कंपनी में पैसा लगाने से उनको फायदा होगा, और इन निवेशकों में सिर्फ आम लोग नहीं थे। ये खबर इसीलिए बहुत बड़ी है, इनमें सरकारी बीमा कंपनी LIC भी थी। इन आंकड़ों को देखिए, मार्च 2016 में इस कंपनी में LIC की हिस्सेदारी सिर्फ 1.99% थी, साल 2022 में बढ़कर हो गई 11.22%, मार्च 26 में 10.8%। इसका मतलब यह है कि LIC ने पिछले 10 सालों में अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में 5 गुना बढ़ाई, और यह भी तब हुआ जब म्यूचुअल फंड्स को पहले दिन से इस कंपनी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 2016 में म्यूचुअल फंड्स की इस कंपनी में 0.5% की हिस्सेदारी थी, जो आज 0 है। पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी के रेवेन्यू को संदिग्ध मानकर इससे दूर रहा, लेकिन इसी जगह LIC ने इसमें अपना निवेश 5 गुना बढ़ा दिया। LIC एक सरकारी बीमा कंपनी है, जो लोग LIC में पॉलिसी खरीदते हैं उन्हें पैसे को ये कंपनी आगे निवेश करती है, जिससे ये मामला बड़ा हो जाता है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहरीली फसलों को सींचने वालों से कभी मीठे फलों की उम्मीद नहीं रख सकते। इतिहास गवाह है कि जालसाज अपने ही जाल में उलझकर दम तोड़ देते हैं।
1: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन है। टीएमसी के सत्ता में रहे जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बंगाल के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें आक्रोशित लोग खुद ही टीएमसी नेताओं से इंसाफ मांग रहे हैं, यहां तक कि सरेआम मान मर्दन कर रहे हैं।
2: जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है। एक आदमी का आधा सर मुंडवा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है, एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुरमत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्हीं आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता, आज तक।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं है, टीएमसी के नेताओं पर लोगों का आक्रोश ऐसा फूट रहा है कि वो जहां भी दिखते हैं उन पर अंडे टमाटर बरसाए जा रहे हैं। टीएमसी के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ गए।
2: पुलिस थाने के बाहर टीएमसी के नेता पर अंडे बरस रहे हैं। नाराज लोग सैकड़ों की तादाद में अंडे बरसा रहे हैं। पुलिस वाले टीएमसी नेता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर लोग लगा

0: 6 जून को बाबादित्य की गिरफ्तारी हुई थी। आज जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर पुलिस ले जा रही थी तभी अटैक हुआ। टीएमसी नेताओं पर हो रही कार्रवाई की दूसरी तस्वीर देखिए। साड़ी के गट्ठर के नीचे टीएमसी नेता छिपने की कोशिश कर रहे थे मगर पुलिस ने खोज निकाला। ये चौंकाने वाली घटना हावड़ा के उदय नारायणपुर के बिलासपुर इलाके में हुई। पुलिस की कार्रवाई और टीएमसी नेता के छिपने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम ब्रह्मानंद चक्रवर्ती है जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता है। स्थानीय लोगों ने उस पर हाउसिंग स्कीम के फंड से कट मनी यानी अवैध कमीशन लेने का आरोप लगाया है। जब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस उसे खोजने पहुंच गई। तभी वो गिरफ्तारी के डर से एक कपड़ा दुकान के स्टोर रूम में साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गया। हालांकि पुलिस ने इसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। शुभेंदु सरकार के आने के बाद टीएमसी के दागी नेताओं पर धुआंधार कार्रवाई हो रही है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
1: टीएमसी के नेताओं पर लोगों के हमले के अब वीडियोस वायरल हैं जहां टीएमसी नेताओं को घसीटा जा रहा है, कहीं पर लोग हमला कर रहे हैं।

0: टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर जोरदार हमला हुआ। नाराज लोग मदन मित्रा पर अंडे फेंक रहे हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र कमरहटी पहुंचे थे। वहीं नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक तस्वीर हुगली से भी आई है जहां भीड़ टीएमसी के नेता को सड़क पर खींचते हुए थाने तक ले गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गमछा पहने तृणमूल नेता तपस चक्रवर्ती को लोग खींचकर थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी का दावा है कि कई भ्रष्टाचार और तोलाबाजी के मामलों में इस नेता का नाम सामने आया था। वेस्ट मिदनापुर में पुलिस ने टीएमसी के एक और नेता को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक सुजोय हाजरा की गिरफ्तारी जबरन उगाही और जमीन घोटाले में की गई है। उधर उत्तर 24 परगना जिले के गोपाल नगर में टीएमसी ट्रेड यूनियन के नेता कथित तौर पर कट मनी के नाम पर लिए पैसे वापस करते दिखे। इन्होंने टोटो ड्राइवरों से ये अवैध वसूली की थी। उधर लंबी पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपी पार्षद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मामला 2023 के पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है जिसमें जसीमुद्दीन आरोपी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद से टीएमसी के दागियों में खलबली मची हुई है। हुगली से पार्था राहा तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
1: इस बीच कांग्रेस की ओर से टीएमसी पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए चोरी की थी तो कार्रवाई तो होगी।
2: अगर तृणमूल पार्टी सबाई जानता है वेस्ट बंगाल का साथ बहुत अन्याय काम किया है, बहुत चोरी किया है। अभी से नहीं, दो पार्टी पावर आने का 2011 साल आने का बाद अब लोग जानता है वो सब। एक तो सैम कंडो का नाम है, उसका बाद टीचर स्कैम था, उसका बाद कितना स्कैम रहा आदमी से कब से, ये नया चीज नहीं है।
1: बंगाल में शुभेंदु सरकार का नया फरमान आया है। फरमान है मदरसों के सर्वे का। हिंदुत्व के नारे बुलंद करने के क्रम में शुभेंदु सरकार का यह फैसला अहम है। राज्य सरकार ने जो फरमान जारी किया है उसके मुताबिक सभी मदरसों का सर्वे होगा, उनकी वैधता जांची जाएगी, कागजों की पड़ताल होगी। सरकार भविष्य की प्लानिंग का हवाला देकर मदरसों के जो आंकड़े हैं वो जुटाने का हवाला दे रही है।
3: ओ माता की गंगा माता की जय जय सिरा।
0: बंगाल में बीजेपी की सरकार और एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित

0: मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएं। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था।
1: मदरसा हो या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ देखना है कि वो सही तरह से ये यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन ये तो सरकार का काम है, सरकार ये काम कर रहा है, अपना काम है सरकार का, सरकार तो अपना काम करेगा ना।
0: बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया।
2: बंगाल का भूमि में धीरे धीरे सेकुलरिज्म और अपने वोट बैंक की लालच, इसमें विकास प्रगति पीछे चला गया। तुष्टिकरण की राजनीति आगे चलना पड़ा।
0: मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं।
3: कहाँ पे घोटाला चल रहा है, इतना घोटाला क्यों चल रहा है, तो हम सीएम हमारा जो चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी है ना, तो उन्होंने एकदम ध्यान तरीके से मतलब इतना ध्यान दे रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहाँ पे तो कम से कम टीचर को रिक्रूट करना है, तो फिर जहाँ पे स्कूल का कोई बच्चों नहीं है तो वहाँ पे फिर टीचर रखने का कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खोखला को कहाँ पे गैप है, कहाँ पे सिर्फ टीचर भी नहीं है, टीचर आता भी नहीं है, फिर भी पेमेंट लेते हैं, तो ध्यान देना चाहिए। एकदम हमारा सीएम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
0: बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।
4: उसने जो निर्णय लिया है सर्वे का, सारे मदरसों का, वो बहुत सराहनीय कदम है। जो भी शिक्षण संस्थान हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, सबके ऊपर जवाबदेही सरकार की है। वो वित्तीय मामला हो, कानून का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका मामला हो, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की है। तो सरकार का ये कदम जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है।
0: मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी।
2: तुष्टिकरण की राजनीति से बंगाल झील रहा था, खास करके पिछले कुछ वर्षों में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ खराब हुआ।
0: मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
5: पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, जहां शुभेंदु सरकार की नजर उन मदरसों पर अब सख्त हो गए हैं जो नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इससे पहले ये सख्ती उत्तर प्रदेश में दिख चुकी है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों से अवैध मदरसों और अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चला है।
6: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसका सीधा और स्पष्ट ऐलान है कि प्रदेश में ना तो एक भी अवैध मदरसा चलेगा और न ही एक भी गैर कानूनी मस्जिद रहेगी। कानून के दायरे में अतिक्रमण वाली सभी धार्मिक इमारतों पर प्रशासन का हथौड़ा चलेगा, जिसकी ताजा बानगी दिख रही है संबल की मुस्तफा कादरी मस्जिद पर, जहां लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। ये दो तस्वीरें दो राज्यों में बीजेपी सरकार के तेवर को बयान कर रही है। एक ओर जहां बंगाल में मदरसों पर शुभेंदु की सख्त नजर पड़ चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले से ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर और हथौड़ा चला रही है। हालांकि सियासत में आरोप ये भी लग रहा है कि पहले यूपी और अब बंगाल में एक खास वर्ग विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। पहले नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर जो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों और अवैध धार्मिक स्थलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं। जून 2026 में ही गाजियाबाद के कनावनी और लोनी में दो अवैध मदरसे सील किए गए। मोदीनगर में मस्जिद के साथ बनी 14 दुकानों को भी ध्वस्त करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं बागपत में अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है। साथ ही संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर तो चल ही रहा है।
7: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब ये इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही
8: है। जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जाकर के कोई स्टे वगैरह ले सके।
6: हम आपको बता दें कि फरवरी 2026 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तार से जांच कराने का फैसला किया था। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना था। सीएम योगी ने भी बार बार चेतावनी दी है कि यूपी में किसी भी तरीके के धार्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
9: जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई, आपको उपासना विधि की पूरी छूट है कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं।
10: पर ये तो बन चुके हैं, अब
9: बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकारे नहीं।
6: उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्ती सिर्फ अवैध मदरसों तक ही सीमित नहीं है, कुछ ऐसे फैसले और एक्शन भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है। हाल ही में सीएम योगी ने ईद में सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले नए मदरसों को सरकारी पैसा नहीं देने का योगी ने फैसला किया था। 2022 में गैर रजिस्टर्ड और अवैध मदरसों के सर्वे के आदेश पारित हुए। नवंबर 2023 में यूपी में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा सैकड़ों अवैध बूचड़खानों को बंद कराया जा चुका है। साथ ही मई 2025 में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में बीजेपी सरकारों के कामकाज का तरीका बता रहा है कि उनकी सियासत का फॉर्मूला क्या है और इससे ना तो उन्हें गुरेज है और ना ही परहेज है। खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव की जंग ही इन्हीं मुद्दों की बुनियाद में लड़ी जाएगी। संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
5: अब बात यूपी के जहां पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है, संभल में दूसरे दिन भी मस्जिद पर बुलडोजर चला और बुलडोजर एक्शन के बाद से समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर है और बुलडोजर पर जोरदार सियासत चल रही है।
0: गरज रहा है बाबा का बुलडोजर और जमींदोज हो रहा है अवैध निर्माण। तस्वीरें संभल की। संभल में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। मेहराबे गिराई जा रही है, मीनारे ढहाई जा रही हैं।
7: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब ये इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर है वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो है पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही थी, और इसी तरह से जो लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहां पर लगातार जो है जारी है। और इसी के साथ देखिए ठीक आपको मैं पीछे अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप जो देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर जो बनी हुई है। यहां पर आप ये बुलडोजर आपको मशीनों में जो है सर नजर आएंगे, और देखिए किस तरीके से जो यहां पर बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें हैं वो लगातार यहां पर जो है मौके पर मौजूद है।
0: ये मस्जिद 120 वर्ग मीटर में बनी हुई थी।
11: ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी, लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी, और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है।
0: अब इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी की सियासत सुलग रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है।
8: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर ही काम किया गया है कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जा करके कोई स्टे वगैरह ले सके।
0: 27 के समर में अभी समय है, मगर यूपी की सियासत में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
5: अगली खबर काशी की, जहां पर तय किया गया है कि महादेव की नगरी में शहर के भीतर मांस मछली की दुकानें शहर से बाहर शिफ्ट की जाएंगी, और बकायदा जगह तय की जा चुकी है और फैसला लिया गया कि शहर के भीतर मांस मछली नहीं बेची जाएगी।
0: वाराणसी में बटर चिकन और मटन कोरमा के शौकीनों को झटका लगा है। रोगन जोश और फिश करी खाने वालों के स्वाद पर भी संकट गहराया है, क्योंकि आदेश ऐसा आया है कि वाराणसी में शहर के भीतर मीट मांस मछली की दुकानें हटाई जाएंगी। तय किया गया है कि शहर के बाहर 5 जगह चिन्हित की जाएंगी और वहां दुकानें बनवाई जाएंगी ताकि दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट कर सके।
12: मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। बकासी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है, 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं, और मुझे लगता है कि मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए।
0: बता दें कि सदन में पार्षद गुलशन अली ने मीट मांस की दुकानों को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव दिया था। अब इस पर अमल हुआ है तो मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले को गैर मुनासिब बता रहे हैं।
13: हम ये समझते हैं कि फैसला गैर मुनासिब है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट डेटा अराउंड 70% जो आवाम है नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी 70% आवाम नॉन वेजिटेरियन है, तो जितनी दूर आप इन दुकानों को करेंगे उतने ही ज्यादा गरानी में इजाफा होगा, कस्टमर्स को जहमत होगी, बिजनेस पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा।
0: लेकिन शिया धर्मगुरु ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और एक नई मांग करते हैं।
14: जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए, ये गांजा का ठेके जो है ये भी हटना चाहिए, किसी भी तरीके के ये जो गलत खाम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहाँ तीर्थ स्थल है।
0: अब यूपी में स्वाद पर सियासत हो रही है जिसके केंद्र में हिंदुत्व की राजनीति के बीज छिपे हैं। रोशन कुमार, वाराणसी आज तक।
5: आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बार फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची और फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की।

0: फिल्म सेट में केस, गिरफ्तारी का संकट और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर पर आ गई है। खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान की कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गईं।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है।
0: जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। अगर जल्द ही इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, यहाँ तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है।
1: ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं।
0: इस एक्शन के एक दिन बाद ही फायर डिपार्टमेंट की टीम फिर ऑडिट करने फैजल खान की कोचिंग पहुंची और पूरे सेंटर का मुआयना किया। फैजल खान पर पहले ही आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होने के बाद वो संकट में घिरे हुए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की अब तैयारी है।
2: जड़ लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंस्टॉल कर दिया गया है FIR में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा।
0: कुल मिलाकर फैजल खान संकट में है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।
3: महंगाई की एक और मार आम जनता पर पड़ी है और घरेलू गैस की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं।
0: फिर पड़ी है महंगाई की मार, फिर बिगड़ेगा किचन का बजट, फिर से कटी है आम आदमी की जेब। जी हाँ, आज फिर से घरेलू गैस LPG के दाम में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में अब 14 किलो 300 ग्राम वाला गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 का हो गया है। इसके पहले भी गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था। तीन महीने में दूसरी बार LPG के दाम बढ़े हैं। 7 मार्च को LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। तीन महीने में घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हुआ है। गैस के दाम बढ़े तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घरेलू LPG दामों में आग की लपटें आम आदमी की रसोई को भस्म करने पर तुली हुई है।
4: महंगाई की मार गरीब पे जो पड़ती है ना, वो उसका उसका ऐसा साइन हो नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी मार होती है कि पेट्रोल डीजल के साथ में गैस के बराबर LPG का दाम बढ़ता ही जा रहा है।
0: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, मगर सरकार कह रही है कि दुनिया में सबसे कम कीमत पर कुकिंग गैस हमारे ही देश में मिलती है। अब गैस पर सियासी गदर है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर समुद्र की टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। होर्मुज स्ट्रेट के पास दोनों देशों ने एक दूसरे पर उकसाने वाली कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। ईरान ने चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने कहा कि उसने ईरानी ड्रोन मार गिराया है।
0: एक बार फिर अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव की स्थिति बन रही है। एक बार फिर होर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। दोनों ओर से हुए हमलों के बाद टकराव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने होर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गई। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने होर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पशुपेश में डाल दिया है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहा। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब हॉर्मूज पर नया मोर्चा खुल गया है, जिससे दोनों देशों में जंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: रिश्ते में चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब, कहा सरकार की चुप्पी, संदिग्ध आरोपों को ट्रस्ट ने नकारा। संभल में कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से नाराज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, सरकार पर साधा निशाना, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी रूप से जवाब देंगे। बंगाल में नेता विपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों से भी हो रही है बात, 61 विधायक हमारे साथ बोले, पार्टी की सलाहकार बने ममता। आज की बैठक से पहले गठबंधन इंडिया में पड़ी दरार, विजन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग, बबूला खड़गे को लिखा पत्र, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा, ईरान से समझौते करा, कहा कि हम डील के बेहद करीब, तेहरान के पास नहीं है कोई विकल्प। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन है, टीएमसी की सत्ता में रहे जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बंगाल के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें आक्रोशित लोग खुद ही टीएमसी नेताओं से इंसाफ मांग रहे हैं, यहां तक कि सरेआम मान मर्दन कर रहे हैं।
1: जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है, एक आदमी का आधा सर मुंडवा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है, एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुरमत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्हीं आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: बात सिर्फ इतनी नहीं है, टीएमसी के नेताओं पर लोगों का आक्रोश ऐसा फूट रहा है कि वो जहां भी दिखते हैं उन पर अंडे टमाटर बरसाए जा रहे हैं। टीएमसी के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ गए।
1: पुलिस थाने के बाहर टीएमसी के नेता पर अंडे बरस रहे हैं। नाराज लोग सैकड़ों की तादाद में अंडे बरसा रहे हैं। पुलिस वाले टीएमसी नेता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं मगर लोग लगातार अंडे फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं जहां टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता को निशाना बनाया जा रहा है। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी, आज जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर पुलिस ले जा रही थी तभी अटैक हुआ। टीएमसी नेताओं पर हो रही कार्रवाई की दूसरी तस्वीर देखिए। साड़ी के गट्ठर के नीचे टीएमसी नेता छिपने की कोशिश कर रहे थे मगर पुलिस ने खोज निकाला। ये चौंकाने वाली घटना हावड़ा के उदय नारायणपुर के बिलासपुर इलाके में हुई। पुलिस की कार्रवाई और टीएमसी नेता के छिपने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम ब्रह्मानंद चक्रवर्ती है जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता है। स्थानीय लोगों ने उस पर हाउसिंग स्कीम के फंड से कट मनी यानी अवैध कमीशन लेने का आरोप लगाया है। जब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस उसे खोजने पहुंच गई, तभी वो गिरफ्तारी के डर से एक कपड़ा दुकान के स्टोर रूम में साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गया। हालांकि पुलिस ने इसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। शुभेंदु सरकार के आने के बाद टीएमसी के दागी नेताओं पर धुआंधार कार्रवाई हो रही है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी के नेताओं पर लोगों के हमले के अब वीडियोस वायरल हैं, जहां टीएमसी नेताओं को घसीटा जा रहा है, कहीं पर लोग हमला कर रहे हैं।
1: टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर जोरदार हमला हुआ। नाराज लोग मदन मित्रा पर अंडे फेंक रहे हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र कमरहटी पहुंचे थे। वहीं नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक तस्वीर हुगली से भी आई है, जहां भीड़ टीएमसी के नेता को सड़क पर खींचते हुए थाने तक ले गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गमछा पहने तृणमूल नेता तपस चक्रवर्ती को लोग खींचकर थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी का दावा है कि कई भ्रष्टाचार और तोलाबाजी के मामलों में इस नेता का नाम सामने आया था। वेस्ट मिदनापुर में पुलिस ने टीएमसी के एक और नेता को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक सुजोय हाजरा की गिरफ्तारी जबरन उगाही और जमीन घोटाले में की गई है। उधर उत्तर 24 परगना जिले के गोपाल नगर में टीएमसी ट्रेड यूनियन के नेता कथित तौर पर कट मनी के नाम पर लिए पैसे वापस करते दिखे। इन्होंने टोटो ड्राइवरों से ये अवैध वसूली की थी। उधर लंबी पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपी पार्षद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मामला 2023 के पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें जसीमुद्दीन आरोपी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद से टीएमसी के दागियों में खलबली मची हुई है। हुगली से पार्था राहा तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
0: इस बीच कांग्रेस की ओर से टीएमसी पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए चोरी की थी तो कार्रवाई तो होगी।
2: अगर तृणमूल पार्टी सबाई जानता है वेस्ट बंगाल का साथ बहुत अन्याय काम किया है, बहुत चोरी किया है। अभी से नहीं, दो पार्टी पावर आने का 2011 साल आने का बाद अब लोग जानता है वो सब। एक तो सैम कंडो का नाम है, उसका बाद टीचर स्कैम था, उसका बाद कितना स्कैम रहा आदमी से, कब से, ये नया चीज नहीं है।
0: बंगाल में शुभेंदु सरकार का नया फरमान आया है। फरमान है मदरसों के सर्वे का। हिंदुत्व के नारे बुलंद करने के क्रम में शुभेंदु सरकार का यह फैसला अहम है। राज्य सरकार ने जो फरमान जारी किया है उसके मुताबिक सभी मदरसों का सर्वे होगा, उनकी वैधता जांची जाएगी, कागजों की पड़ताल होगी। सरकार भविष्य की प्लानिंग का हवाला देकर मदरसों के जो आंकड़े हैं वो जुटाने का हवाला दे रही है।
3: ओ माता की, गंगा माता की जय जय सिरा।
1: बंगाल में बीजेपी की सरकार और एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएं। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था।
4: मदरसा हो या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ देखना है कि वो सही तरह से ये यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन ये तो सरकार का काम है, सरकार ये काम कर रहा है, अपना काम है सरकार का, सरकार तो अपना काम करेगा ना।
1: बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया।
3: बंगाल का भूमि में धीरे धीरे धीरे धीरे सेकुलरिज्म और अपने वोट बैंक की लालच, इसमें विकास प्रगति पीछे चला गया। तुष्टिकरण की राजनीति आगे चलना पड़ा।
1: मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं।
5: कहाँ पे घोटाला चल रहा है, इतना घोटाला क्यों चल रहा है? तो हम सीएम हमारा जो चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी है ना, तो उन्होंने एकदम ध्यान तरीके से मतलब इतना ध्यान दे रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहाँ पे तो कम से कम टीचर को रिक्रूट करना है, तो फिर जहाँ पे स्कूल का कोई बच्चों नहीं है तो वहाँ पे फिर टीचर रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। घोखला को कहाँ पे गैप है, कहाँ पे सिर्फ टीचर भी नहीं है, टीचर आता भी नहीं है, फिर भी पेमेंट लेते हैं, तो ध्यान देना चाहिए। एकदम हमारा सीएम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
1: बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।
6: उसने जो निर्णय लिया है सर्वे का, सारे मदरसों का, वो बहुत सराहनीय कदम है। जो भी शिक्षण संस्थान हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, सबके ऊपर जवाबदेही सरकार की है। वो वित्तीय मामला हो, कानून का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका मामला हो, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की है। तो सरकार का ये कदम जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है।
1: मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी।
3: तुष्टिकरण की राजनीति से बंगाल झील रहा था, खास करके पिछले कुछ वर्षों में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ खराब हुआ।
1: मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, जहां शुभेंदु सरकार की नजर उन मदरसों पर अब सख्त हो गए हैं जो नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इससे पहले ये सख्ती उत्तर प्रदेश में दिख चुकी है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों से अवैध मदरसों और अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चला है।
7: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसका सीधा और स्पष्ट ऐलान है कि प्रदेश में ना तो एक भी अवैध मदरसा चलेगा और ना ही एक भी गैर कानूनी मस्जिद रहेगी। कानून के दायरे में अतिक्रमण वाली सभी धार्मिक इमारतों पर प्रशासन का हथौड़ा चलेगा, जिसकी ताजा बानगी दिख रही है संबल की मुस्तफा कादरी मस्जिद पर, जहां लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। ये दो तस्वीरें दो राज्यों में बीजेपी सरकार के तेवर को बयान कर रही है। एक ओर जहां बंगाल में मदरसों पर शुभेंदु की सख्त नजर पड़ चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले से ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर और हथौड़ा चला रही है। हालांकि सियासत में आरोप ये भी लग रहा है कि पहले यूपी और अब बंगाल में एक खास वर्ग विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। पहले नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर जो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों और अवैध धार्मिक स्थलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं। जून 2026 में ही गाजियाबाद के कनावनी और लोनी में दो अवैध मदरसे सील किए गए। मोदीनगर में मस्जिद के साथ बनी 14 दुकानों को भी ध्वस्त करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं बागपत में अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है। साथ ही संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर तो चल ही रहा है।
8: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर है वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही
9: है। जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जा करके कोई स्टे वगैरह ले सके।
7: हम आपको बता दें कि फरवरी 2026 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तार से जांच कराने का फैसला किया था। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना था। सीएम योगी ने भी बार बार चेतावनी दी है कि यूपी में किसी भी तरीके के धार्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
10: जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई, आपको उपासना विधि की पूरी छूट है कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं।
11: पर ये तो बन चुके हैं, अब
10: बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकारे नहीं।
7: उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्ती सिर्फ अवैध मदरसों तक ही सीमित नहीं है, कुछ ऐसे फैसले और एक्शन भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है। हाल ही में सीएम योगी ने ईद में सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले नए मदरसों को सरकारी पैसा नहीं देने का योगी ने फैसला किया था। 2022 में गैर रजिस्टर्ड और अवैध मदरसों के सर्वे के आदेश पारित हुए। नवंबर 2023 में यूपी में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा सैकड़ों अवैध बूचड़खानों को बंद कराया जा चुका है। साथ ही मई 2025 में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में बीजेपी सरकारों के कामकाज का तरीका बता रहा है कि उनकी सियासत का फॉर्मूला क्या है और इससे ना तो उन्हें गुरेज है और ना ही परहेज है। खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव की जंग ही इन्हीं मुद्दों की बुनियाद में लड़ी जाएगी। संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब बात यूपी के जहां पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। संभल में दूसरे दिन भी मस्जिद पर बुलडोजर चला और बुलडोजर एक्शन के बाद से समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला और बुलडोजर पर जोरदार सियासत चल रही है।
1: गरज रहा है बाबा का बुलडोजर और जमींदोज हो रहा है अवैध निर्माण। तस्वीरें संभल की। संभल में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। मेहराबे गिराई जा रही है, मीनारे ढहाई जा रही हैं।
8: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही थी। और इसी तरह से जो लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहां पर लगातार जो जारी है। और इसी के साथ देखिए ठीक आपको मैं पीछे अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप जो देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर जो बनी हुई है। यहां पर आप ये बुलडोजर आपको मशीनों में जो है सर नजर आएंगे और देखिए किस तरीके से जो यहां पर बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें हैं वो लगातार यहां पर जो है मौके पर मौजूद है।
1: ये मस्जिद 120 वर्ग मीटर में बनी हुई थी।
12: ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी, लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है।
1: अब इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी की सियासत सुलग रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है।
9: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जाकर के कोई स्टे वगैरह ले सके।
1: 27 के समर में अभी समय है, मगर यूपी की सियासत में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
0: अगली खबर काशी की, जहां पर तय किया गया है कि महादेव की नगरी में शहर के भीतर मांस मछली की दुकानें शहर से बाहर शिफ्ट की जाएंगी और बकायदा जगह तय की जा चुकी है और फैसला लिया गया कि शहर के भीतर मांस मछली नहीं बेची जाएगी।
1: वाराणसी में बटर चिकन और मटन कोरमा के शौकीनों को झटका लगा है। रोगन जोश और फिश करी खाने वालों के स्वाद पर भी संकट गहराया है, क्योंकि आदेश ऐसा आया है कि वाराणसी में शहर के भीतर मीट मांस मछली की दुकानें हटाई जाएंगी। तय किया गया है कि शहर के बाहर 5 जगह चिन्हित की जाएंगी और वहां दुकानें बनवाई जाएंगी ताकि दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट कर सके।
13: मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। बकासी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है। 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए।
1: बता दें कि सदन में पार्षद गुलशन अली ने मीट मांस की दुकानों को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव दिया था। अब इस पर अमल हुआ है तो मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले को गैर मुनासिब बता रहे हैं।
14: हम ये समझते हैं कि फैसला गैर मुनासिब है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट डेटा अराउंड 70% जो आवाम है नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी 70% आवाम नॉन वेजिटेरियन है। तो जितनी दूर आप इन दुकानों को करेंगे उतने ही ज्यादा गरानी में इजाफा होगा, कस्टमर्स को जहमत होगी, बिजनेस पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा।
1: लेकिन शिया धर्मगुरु ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और एक नई मांग करते हैं।
15: जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए, ये गांजा का ठेके जो हैं ये भी हटना चाहिए। किसी भी तरीके के ये जो गलत काम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहाँ तीर्थ स्थल है।
1: अब यूपी में स्वाद पर सियासत हो रही है, जिसके केंद्र में हिंदुत्व की राजनीति के बीज छिपे हैं। रोशन कुमार, वाराणसी आज तक।
0: आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बार फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची और फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की।

0: पहले आर्म्स एक्ट में केस, गिरफ्तारी का संकट और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर पर आ गई है। खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान के कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया, जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गईं।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो टूटी पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है।
0: जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। अगर जल्द ही इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, यहाँ तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है।
1: ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं।
0: इस एक्शन के एक दिन बाद ही फायर डिपार्टमेंट की टीम फिर ऑडिट करने फैजल खान की कोचिंग पहुंची और पूरे सेंटर का मुआयना किया। फैजल खान पर पहले ही आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होने के बाद वो संकट में घिरे हुए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की अब तैयारी है।
2: जेल लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंसर्ट कर दिया गया है एफआईआर में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा।
0: कुल मिलाकर फैजल खान संकट में है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।
3: महंगाई की एक और मार आम जनता पर पड़ी है और घरेलू गैस की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं।
0: फिर पड़ी है महंगाई की मार, फिर बिगड़ेगा किचन का बजट, फिर से कटी है आम आदमी की जेब। जी हाँ, आज फिर से घरेलू गैस एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में अब 14 किलो 300 ग्राम वाला गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 का हो गया है। इसके पहले भी गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था। तीन महीने में दूसरी बार एलपीजी के दाम बढ़े हैं। 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। तीन महीने में घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हुआ है। गैस के दाम बढ़े तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घरेलू एलपीजी दामों में आग की लपटें आम आदमी की रसोई को भस्म करने पर तुली हुई है।
4: महंगाई की मार गरीब पे जो पड़ती है ना, वो उसका ऐसा साइन हो नहीं रहा है। बहुत बड़ी मार होती है कि पेट्रोल डीजल के साथ में गैस के बराबर एलपीजी का दाम बढ़ता ही जा रहा है।
0: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, मगर सरकार कह रही है कि दुनिया में सबसे कम कीमत पर कुकिंग गैस हमारे ही देश में मिलती है। अब गैस पर सियासी गदर है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर समुद्र की टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। होर्मुज स्ट्रेट के पास दोनों देशों ने एक दूसरे पर उकसाने वाली कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। ईरान ने चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने कहा कि उसने ईरानी ड्रोन मार गिराया।
0: एक बार फिर अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव की स्थिति बन रही है। एक बार फिर होर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। दोनों ओर से हुए हमलों के बाद टकराव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने होर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गईं। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने होर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पशुपेश में डाल दिया है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहा। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब हॉर्मुज पर नया मोर्चा खुल गया है, जिससे दोनों देशों में जंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
5: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.

0: मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब, कहा सरकार के चुप्पे, संदिग्ध आरोपों को ट्रस्ट ने नकारा। संभल में कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से नाराज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, सरकार पर साधा निशाना, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी रूप से जवाब देंगे। बंगाल में नेता विपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों से भी हो रही है बात, 61 विधायक हमारे साथ बोले, पार्टी की सलाहकार बने ममता। आज की बैठक से पहले गठबंधन इंडिया में पड़ी दरार, विजन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग, बबूला खड़गे को लिखा पत्र, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा, ईरान से समझौते करा, कहा कि हम डील के बेहद करीब, तेहरान के पास नहीं है कोई विकल्प। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन है। टीएमसी की सत्ता में रहे जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बंगाल के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें आक्रोशित लोग खुद ही टीएमसी नेताओं से इंसाफ मांग रहे हैं, यहां तक कि सरेआम मान मर्दन कर रहे हैं।
1: जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है। एक आदमी का आधा सर मुंडवा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है, एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुरमत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्हीं आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है।

0: पुलिस वाले टीएमसी नेता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर लोग लगातार अंडे फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता को निशाना बनाया जा रहा है। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी, आज जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर पुलिस ले जा रही थी तभी अटैक हुआ। टीएमसी नेताओं पर हो रही कार्रवाई की दूसरी तस्वीर देखिए। साड़ी के गट्ठर के नीचे टीएमसी नेता छिपने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस ने खोज निकाला। ये चौंकाने वाली घटना हावड़ा के उदय नारायणपुर के बिलासपुर इलाके में हुई। पुलिस की कार्रवाई और टीएमसी नेता के छिपने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम ब्रह्मानंद चक्रवर्ती है, जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता है। स्थानीय लोगों ने उस पर हाउसिंग स्कीम के फंड से कट मनी यानी अवैध कमीशन लेने का आरोप लगाया है। जब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, तो पुलिस उसे खोजने पहुंच गई। तभी वो गिरफ्तारी के डर से एक कपड़ा दुकान के स्टोर रूम में साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गया। हालांकि पुलिस ने इसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। शुभेंदु सरकार के आने के बाद टीएमसी के दागी नेताओं पर धुआंधार कार्रवाई हो रही है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
1: टीएमसी के नेताओं पर लोगों के हमले के अब वीडियोस वायरल हैं, जहां टीएमसी नेताओं को घसीटा जा रहा है, कहीं पर लोग हमला कर रहे हैं।
0: टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर जोरदार हमला हुआ। नाराज लोग मदन मित्रा पर अंडे फेंक रहे हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र कमरहटी पहुंचे थे। वहीं नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक तस्वीर हुगली से भी आई है, जहां भीड़ टीएमसी के नेता को सड़क पर खींचते हुए थाने तक ले गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गमछा पहने तृणमूल नेता तपस चक्रवर्ती को लोग खींचकर थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी का दावा है कि कई भ्रष्टाचार और तोलाबाजी के मामलों में इस नेता का नाम सामने आया था। वेस्ट मिदनापुर में पुलिस ने टीएमसी के एक और नेता को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक सुजोय हाजरा की गिरफ्तारी जबरन उगाही और जमीन घोटाले में की गई है। उधर उत्तर 24 परगना जिले के गोपाल नगर में टीएमसी ट्रेड यूनियन के नेता कथित तौर पर कट मनी के नाम पर लिए पैसे वापस करते दिखे। इन्होंने टोटो ड्राइवरों से ये अवैध वसूली की थी। उधर लंबी पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपी पार्षद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मामला 2023 के पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें जसीमुद्दीन आरोपी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद से टीएमसी के दागियों में खलबली मची हुई है। हुगली से पार्था रहा तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
1: इस बीच कांग्रेस की ओर से टीएमसी पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए चोरी की थी तो कार्रवाई तो होगी।
2: अगर तृणमूल पार्टी सबा ही जानता है, वेस्ट बंगाल का साथ बहुत अन्याय काम किया, बहुत चोरी किया। अभी से नहीं, दो पार्टी पावर आने का 2011 साल आने का बाद अब लोग जानता है। वो सब एक तो सैम कंडो का नाम है, उसका बाद टीचर स्कैम था, उसका बाद कितना स्कैम रहा आदमी से, कब से, ये नया चीज नहीं है।
1: बंगाल में शुभेंदु सरकार का नया फरमान है। फरमान है मदरसों के सर्वे का। हिंदुत्व के नारे बुलंद करने के क्रम में शुभेंदु सरकार का यह फैसला अहम है। राज्य सरकार ने जो फरमान जारी किया है, उसके मुताबिक सभी मदरसों का सर्वे होगा, उनकी वैधता जांची जाएगी, कागजों की पड़ताल होगी। सरकार भविष्य की प्लानिंग का हवाला देकर मदरसों के जो आंकड़े हैं वो जुटाने का हवाला दे रही है।
3: ओ माता की, गंगा माता की जय जय श्री राम।
0: बंगाल में बीजेपी की सरकार और एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे

0: के दौरान उनकी कार्य प्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएं। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था।
1: मदरसा हो या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ देखना है कि वो सही तरह से ये यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन ये तो सरकार का काम है, सरकार ये काम कर रहा है, अपना काम है सरकार का, सरकार तो अपना काम करेगा ना।
0: बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया।
2: बंगाल का भूमि में धीरे धीरे धीरे धीरे सेकुलरिज्म और अपने वोट बैंक की लालच, इसमें विकास प्रगति पीछे चला गया। तुष्टिकरण की राजनीति आगे चलना पड़ा।
0: मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं।
3: कहाँ पे घोटाला चल रहा है, इतना घोटाला क्यों चल रहा है, तो हम सीएम हमारा जो चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी है ना, तो उन्होंने एकदम ध्यान तरीके से मतलब इतना ध्यान दे रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहाँ पे तो कम से कम टीचर को रिक्रूट करना है, तो फिर जहाँ पे स्कूल का कोई बच्चों नहीं है तो वहाँ पे फिर टीचर रखने का कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खोखला को कहाँ पे गैप है, कहाँ पे सिर्फ टीचर भी नहीं है, टीचर आता भी नहीं है, फिर भी पेमेंट लेते हैं, तो ध्यान देना चाहिए। एकदम हमारा सीएम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
0: बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।
4: उसने जो निर्णय लिया है सर्वे का, सारे मदरसों का, वो बहुत सराहनीय कदम है। जो भी शिक्षण संस्थान हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, सबके ऊपर जवाबदेही सरकार की है। वो वित्तीय मामला हो, कानून का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका मामला हो, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की है। तो सरकार का ये कदम जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है।
0: मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी।
2: तुष्टिकरण की राजनीति से बंगाल झील रहा था, खास करके पिछले कुछ वर्षों में, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ खराब हुआ।
0: मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापस्यन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
5: पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, जहां शुभेंदु सरकार की नजर उन मदरसों पर अब सख्त हो गए हैं जो नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इससे पहले ये सख्ती उत्तर प्रदेश में दिख चुकी है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों से अवैध मदरसों और अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चला है।
6: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसका सीधा और स्पष्ट ऐलान है कि प्रदेश में ना तो एक भी अवैध मदरसा चलेगा और न ही एक भी गैर कानूनी मस्जिद रहेगी। कानून के दायरे में अतिक्रमण वाली सभी धार्मिक इमारतों पर प्रशासन का हथौड़ा चलेगा, जिसकी ताजा बानगी दिख रही है संबल की मुस्तफा कादरी मस्जिद पर, जहां लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। ये दो तस्वीरें दो राज्यों में बीजेपी सरकार के तेवर को बयान कर रही हैं। एक ओर जहां बंगाल में मदरसों पर शुभेंदु की सख्त नजर पड़ चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले से ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर और हथौड़ा चला रही है। हालांकि सियासत में आरोप ये भी लग रहा है कि पहले यूपी और अब बंगाल में एक खास वर्ग विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। पहले नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर जो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों और अवैध धार्मिक स्थलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं। जून 2026 में ही गाजियाबाद के कनावनी और लोनी में दो अवैध मदरसे सील किए गए। मोदी नगर में मस्जिद के साथ बनी 14 दुकानों को भी ध्वस्त करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं बागपत में अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है। साथ ही संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर तो चल ही रहा है।
7: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है।
8: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जा करके कोई स्टे वगैरह ले सके।
6: हम आपको बता दें कि फरवरी 2026 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तार से जांच कराने का फैसला किया था। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना था। सीएम योगी ने भी बार बार चेतावनी दी है कि यूपी में किसी भी तरीके के धार्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
9: जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई, आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं।
10: पर ये तो बन चुके हैं, अब
9: बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार नहीं।
6: उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्ती सिर्फ अवैध मदरसों तक ही सीमित नहीं है, कुछ ऐसे फैसले और एक्शन भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है। हाल ही में सीएम योगी ने ईद में सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले नए मदरसों को सरकारी पैसा नहीं देने का योगी ने फैसला किया था। 2022 में गैर रजिस्टर्ड और अवैध मदरसों के सर्वे के आदेश पारित हुए। नवंबर 2023 में यूपी में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा सैकड़ों अवैध बूचड़खानों को बंद कराया जा चुका है। साथ ही मई 2025 में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में बीजेपी सरकारों के कामकाज का तरीका बता रहा है कि उनकी सियासत का फॉर्मूला क्या है और इससे ना तो उन्हें गुरेज है और ना ही परहेज है। खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव की जंग ही इन्हीं मुद्दों की बुनियाद में लड़ी जाएगी। संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
5: अब बात यूपी के जहां पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है, संभल में दूसरे दिन भी मस्जिद पर बुलडोजर चला और बुलडोजर एक्शन के बाद से समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला हुआ है और बुलडोजर पर जोरदार सियासत चल रही है।
0: गरज रहा है बाबा का बुलडोजर और जमींदोज हो रहा है अवैध निर्माण। तस्वीरें संभल की। संभल में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। मेहराबें गिराई जा रही हैं, मीनारें ढहाई जा रही हैं।
7: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर है वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो है पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही थी। और इसी तरह से जो लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहां पर लगातार जो है जारी है। और इसी के साथ देखिए ठीक आपको मैं पीछे अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप जो देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर जो बनी हुई है। यहां पर आप ये बुलडोजर आपको मशीनों में जो है सर नजर आएंगे। और देखिए किस तरीके से जो यहां पर बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें हैं वो लगातार यहां पर जो है मौके पर मौजूद है।
0: ये मस्जिद 120 वर्ग मीटर में बनी हुई थी।
11: ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी, लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी। और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है।
0: अब इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी की सियासत सुलग रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है।
8: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जाकर के कोई स्टे वगैरह ले सके।
0: 27 के समर में अभी समय है, मगर यूपी की सियासत में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
5: अगली खबर काशी की, जहां पर तय किया गया है कि महादेव की नगरी में शहर के भीतर मांस मछली की दुकानें शहर से बाहर शिफ्ट की जाएंगी और बकायदा जगह तय की जा चुकी है और फैसला लिया गया है कि शहर के भीतर मांस मछली नहीं बेची जाएगी।
0: वाराणसी में बटर चिकन और मटन कोरमा के शौकीनों को झटका लगा है। रोगन जोश और फिश करी खाने वालों के स्वाद पर भी संकट गहराया है, क्योंकि आदेश ऐसा आया है कि वाराणसी में शहर के भीतर मीट मांस मछली की दुकानें हटाई जाएंगी। तय किया गया है कि शहर के बाहर 5 जगह चिन्हित की जाएंगी और वहां दुकानें बनवाई जाएंगी ताकि दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट कर सके।
12: मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। बकासी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है, 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए।
0: बता दें कि सदन में पार्षद गुलशन अली ने मीट मांस की दुकानों को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव दिया था। अब इस पर अमल हुआ है तो मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले को गैर मुनासिब बता रहे हैं।
13: हम ये समझते हैं कि फैसला गैर मुनासिब है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट डेटा अराउंड 70% जो आवाम है नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी 70% आवाम नॉन वेजिटेरियन है, तो जितनी दूर आप इन दुकानों को करेंगे उतनी ही ज्यादा गरानी में इजाफा होगा, कस्टमर्स को जहमत होगी, बिजनेस पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा।
0: लेकिन शिया धर्मगुरु ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और एक नई मांग करते हैं।
14: जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए, ये गांजा का ठेके जो है ये भी हटना चाहिए, किसी भी तरीके के ये जो गलत खाम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहाँ तीर्थ स्थल है।
0: अब यूपी में स्वाद पर सियासत हो रही है जिसके केंद्र में हिंदुत्व की राजनीति के बीज छिपे हैं। रोशन कुमार, वाराणसी आज तक।
5: आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बार फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची और फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की।

0: पहले आर्म्स एक्ट में केस, गिरफ्तारी का संकट और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर पर आ गई है। खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान की कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया, जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गईं।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है, यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्युपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है।
0: जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। अगर जल्द ही इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, यहाँ तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है।
1: ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं।
0: इस एक्शन के एक दिन बाद ही फायर डिपार्टमेंट की टीम फिर ऑडिट करने फैजल खान की कोचिंग पहुंची और पूरे सेंटर का मुआयना किया। फैजल खान पर पहले ही आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होने के बाद वो संकट में घिरे हुए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की अब तैयारी है।
2: जड़ लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंसर्ट कर दिया गया है FIR में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा।
0: कुल मिलाकर फैजल खान संकट में है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।
3: महंगाई की एक और मार आम जनता पर पड़ी है और घरेलू गैस की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं।
0: फिर पड़ी है महंगाई की मार, फिर बिगड़ेगा किचन का बजट, फिर से कटी है आम आदमी की जेब। जी हाँ, आज फिर से घरेलू गैस LPG के दाम में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में अब 14 किलो 300 ग्राम वाला गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 का हो गया है। इसके पहले भी गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था। 3 महीने में दूसरी बार LPG के दाम बढ़े हैं। 7 मार्च को LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। 3 महीने में घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हुआ है। गैस के दाम बढ़े तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घरेलू LPG दामों में आग की लपटें आम आदमी की रसोई को भस्म करने पर तुली हुई है।
4: महंगाई की मार गरीब पे जो पड़ती है ना, वो उसका एहसास शायद हो नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी मार होती है कि पेट्रोल डीजल के साथ में गैस के बराबर LPG का दाम बढ़ता ही जा रहा है।
0: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, मगर सरकार कह रही है कि दुनिया में सबसे कम कीमत पर कुकिंग गैस हमारे ही देश में मिलती है। अब गैस पर सियासी कदर है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर समुद्र की टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। होर्मुज स्ट्रेट के पास दोनों देशों ने एक दूसरे पर उकसाने वाली कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। ईरान ने चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने कहा कि उसने ईरानी ड्रोन मार गिराए।
0: एक बार फिर अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव की स्थिति बन रही है। एक बार फिर होर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। दोनों ओर से हुए हमलों के बाद टकराव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने होर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गई। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने होर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पशुपेश में डाल दिया है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहा। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब होर्मुज पर नया मोर्चा खुल गया है, जिससे दोनों देशों में जंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करें।

0: मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब, कहा सरकार की चुप्पी, संदिग्ध आरोपों को ट्रस्ट ने नकारा। संभल में कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से नाराज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, सरकार पर साधा निशाना, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी रूप से जवाब देंगे। बंगाल में नेता विपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों से भी हो रही है बात, 61 विधायक हमारे साथ बोले, पार्टी की सलाहकार बने ममता। आज की बैठक से पहले गठबंधन इंडिया में पड़ी दरार, विजन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग, बबूला खड़गे को लिखा पत्र, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा, ईरान से समझौते करा, कहा कि हम डील के बेहद करीब, तेहरान के पास नहीं है कोई विकल्प। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन है, टीएमसी की सत्ता में रहे जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बंगाल के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें आक्रोशित लोग खुद ही टीएमसी नेताओं से इंसाफ मांग रहे हैं, यहां तक कि सरेआम मान मर्दन कर रहे हैं।
1: जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है, एक आदमी का आधा सर मुंडवा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है, एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुरमत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्हीं आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेन गुप्ता, कोलकाता, आज तक।
0: बात सिर्फ इतनी नहीं है, टीएमसी के नेताओं पर लोगों का आक्रोश ऐसा फूट रहा है कि वो जहां भी दिखते हैं उन पर अंडे टमाटर बरसाए जा रहे हैं। टीएमसी के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ गए।
1: पुलिस थाने के बाहर टीएमसी के नेता पर अंडे बरस रहे हैं। नाराज लोग सैकड़ों की तादाद में अंडे बरसा रहे हैं। पुलिस वाले टीएमसी नेता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं मगर लोग लगातार अंडे फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं जहां टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता को निशाना बनाया जा रहा है। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी, आज जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर पुलिस ले जा रही थी तभी अटैक हुआ। टीएमसी नेताओं पर हो रही कार्रवाई की दूसरी तस्वीर देखिए। साड़ी के गट्ठर के नीचे टीएमसी नेता छिपने की कोशिश कर रहे थे मगर पुलिस ने खोज निकाला। ये चौंकाने वाली घटना हावड़ा के उदय नारायणपुर के बिलासपुर इलाके में हुई। पुलिस की कार्रवाई और टीएमसी नेता के छिपने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम ब्रह्मानंद चक्रवर्ती है जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता है। स्थानीय लोगों ने उस पर हाउसिंग स्कीम के फंड से कट मनी यानी अवैध कमीशन लेने का आरोप लगाया है। जब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस उसे खोजने पहुंच गई, तभी वो गिरफ्तारी के डर से एक कपड़ा दुकान के स्टोर रूम में साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गया। हालांकि पुलिस ने इसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। शुभेंदु सरकार के आने के बाद टीएमसी के दागी नेताओं पर धुआंधार कार्रवाई हो रही है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी के नेताओं पर लोगों के हमले के अब वीडियोस वायरल हैं, जहां टीएमसी नेताओं को घसीटा जा रहा है, कहीं पर लोग हमला कर रहे हैं।
1: टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर जोरदार हमला हुआ। नाराज लोग मदन मित्रा पर अंडे फेंक रहे हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र कमरहटी पहुंचे थे। वहीं नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक तस्वीर हुगली से भी आई है, जहां भीड़ टीएमसी के नेता को सड़क पर खींचते हुए थाने तक ले गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गमछा पहने तृणमूल नेता तपस चक्रवर्ती को लोग खींचकर थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी का दावा है कि कई भ्रष्टाचार और तोलाबाजी के मामलों में इस नेता का नाम सामने आया था। वेस्ट मिदनापुर में पुलिस ने टीएमसी के एक और नेता को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक सुजोय हाजरा की गिरफ्तारी जबरन उगाही और जमीन घोटाले में की गई है। उधर उत्तर 24 परगना जिले के गोपाल नगर में टीएमसी ट्रेड यूनियन के नेता कथित तौर पर कट मनी के नाम पर लिए पैसे वापस करते दिखे। इन्होंने टोटो ड्राइवरों से ये अवैध वसूली की थी। उधर लंबी पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपी पार्षद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मामला 2023 के पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें जसीमुद्दीन आरोपी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद से टीएमसी के दागियों में खलबली मची हुई है। हुगली से पार्था राहा तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
0: इस बीच कांग्रेस की ओर से टीएमसी पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए चोरी की थी तो कार्रवाई तो होगी।
2: अगर तृणमूल पार्टी सबाय जानता है वेस्ट बंगाल का साथ बहुत अन्याय काम किया, बहुत चोरी किया। अभी से नहीं, दो पार्टी पावर आने का 2011 साल आने का बाद अब लोग जानता है वो सब। एक तो सैम कंडो का नाम है, उसका बाद टीचर स्कैम था, उसका बाद कितना स्कैम आदमी से, कब से, ये नया चीज नहीं है।
0: बंगाल में शुभेंदु सरकार का नया फरमान है मदरसों के सर्वे का। हिंदुत्व के नारे बुलंद करने के क्रम में शुभेंदु सरकार का यह फैसला अहम है। राज्य सरकार ने जो फरमान जारी किया है उसके मुताबिक सभी मदरसों का सर्वे होगा, उनकी वैधता जांची जाएगी, कागजों की पड़ताल होगी। सरकार भविष्य की प्लानिंग का हवाला देकर मदरसों के जो आंकड़े हैं वो जुटाने का हवाला दे रही है।
3: ओ माता की, गंगा माता की जय जय श्री राम।
1: बंगाल में बीजेपी की सरकार और एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएं। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था।
4: मदरसा हो या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ देखना है कि वो सही तरह से ये यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन ये तो सरकार का काम है, सरकार ये काम कर रहा है, अपना काम है सरकार का, सरकार तो अपना काम करेगा ना।
1: बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया।
3: बंगाल का भूमि में धीरे धीरे धीरे धीरे सेकुलरिज्म और अपने वोट बैंक की लालच, इसमें विकास प्रगति पीछे चला गया। तुष्टिकरण की राजनीति आगे चलना पड़ा।
1: मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं।
5: कहाँ पे घोटाला चल रहा है, इतना घोटाला क्यों चल रहा है? तो हम सीएम हमारा जो चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी है ना, तो उन्होंने एकदम ध्यान तरीके से, मतलब इतना ध्यान दे रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहाँ पे तो कम से कम टीचर को रिक्रूट करना है, तो फिर जहाँ पे स्कूल का कोई बच्चों नहीं है तो वहाँ पे फिर टीचर रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खोखला को कहाँ पे गैप है, कहाँ पे सिर्फ टीचर भी नहीं है, टीचर आते भी नहीं है, फिर भी पेमेंट लेते हैं, तो ध्यान देना चाहिए। एकदम हमारा सीएम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
1: बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।
6: उसने जो निर्णय लिया है सर्वे का, सारे मदरसों का, वो बहुत सराहनीय कदम है। जो भी शिक्षण संस्थान हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, सबके ऊपर जवाबदेही सरकार की है। वो वित्तीय मामला हो, कानून का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका मामला हो, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की है। तो सरकार का ये कदम जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है।
1: मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी।
3: तुष्टिकरण की राजनीति से बंगाल झील रहा था, खास करके पिछले कुछ वर्षों में, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ खराब हुआ।
1: मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापसेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, जहां शुभेंदु सरकार की नजर उन मदरसों पर अब सख्त हो गई है जो नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इससे पहले ये सख्ती उत्तर प्रदेश में दिख चुकी है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों से अवैध मदरसों और अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चला है।
7: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसका सीधा और स्पष्ट ऐलान है कि प्रदेश में ना तो एक भी अवैध मदरसा चलेगा और न ही एक भी गैर कानूनी मस्जिद रहेगी। कानून के दायरे में अतिक्रमण वाली सभी धार्मिक इमारतों पर प्रशासन का हथौड़ा चलेगा, जिसकी ताजा बानगी दिख रही है संबल की मुस्तफा कादरी मस्जिद पर, जहां लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। ये दो तस्वीरें दो राज्यों में बीजेपी सरकार के तेवर को बयान कर रही है। एक ओर जहां बंगाल में मदरसों पर शुभेंदु की सख्त नजर पड़ चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले से ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर और हथौड़ा चला रही है। हालांकि सियासत में आरोप ये भी लग रहा है कि पहले यूपी और अब बंगाल में एक खास वर्ग विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। पहले नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर जो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों और अवैध धार्मिक स्थलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं। जून 2026 में ही गाजियाबाद के कनावनी और लोनी में दो अवैध मदरसे सील किए गए। मोदी नगर में मस्जिद के साथ बनी 14 दुकानों को भी ध्वस्त करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं बागपत में अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है। साथ ही संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर तो चल ही रहा है।
8: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर है वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो है पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही
9: है। जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जा करके कोई स्टे वगैरह ले सके।
7: हम आपको बता दें कि फरवरी 2026 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तार से जांच कराने का फैसला किया था। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना था। सीएम योगी ने भी बार बार चेतावनी दी है कि यूपी में किसी भी तरीके के धार्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
10: जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई, आपको उपासना विधि की पूरी छूट है कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं।
11: पर ये तो बन चुके हैं, अब
10: बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार नहीं।
7: उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्ती सिर्फ अवैध मदरसों तक ही सीमित नहीं है, कुछ ऐसे फैसले और एक्शन भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है। हाल ही में सीएम योगी ने ईद में सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले नए मदरसों को सरकारी पैसा नहीं देने का योगी ने फैसला किया था। 2022 में गैर रजिस्टर्ड और अवैध मदरसों के सर्वे के आदेश पारित हुए। नवंबर 2023 में यूपी में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा सैकड़ों अवैध बूचड़खानों को बंद कराया जा चुका है। साथ ही मई 2025 में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में बीजेपी सरकारों के कामकाज का तरीका बता रहा है कि उनकी सियासत का फॉर्मूला क्या है और इससे ना तो उन्हें गुरेज है और ना ही परहेज है। खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव की जंग ही इन्हीं मुद्दों की बुनियाद में लड़ी जाएगी। संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब बात यूपी के जहां पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है, संभल में दूसरे दिन भी मस्जिद पर बुलडोजर चला और बुलडोजर एक्शन के बाद से समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर है और बुलडोजर पर जोरदार सियासत चल रही है।
1: गरज रहा है बाबा का बुलडोजर और जमींदोज हो रहा है अवैध निर्माण। तस्वीरें संभल की। संभल में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। मेहराबे गिराई जा रही है, मीनारे ढहाई जा रही हैं।
8: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैन मशीन को यहां पर लाया गया है और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही थी और इसी तरह से जो लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहां पर लगातार जो है जारी है। और इसी के साथ देखिए ठीक आपको मैं पीछे अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप जो देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर जो बनी हुई है। यहां पर आप ये बुलडोजर आपको मशीनों में जो है सर नजर आएंगे और देखिए किस तरीके से जो यहां पर बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें हैं वो लगातार यहां पर जो है मौके पर मौजूद है।
1: ये मस्जिद 120 वर्ग मीटर में बनी हुई थी।
12: ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है।
1: अब इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी की सियासत सुलग रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है।
9: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जाकर के कोई स्टे वगैरह ले सके।
1: 27 के समर में अभी समय है, मगर यूपी की सियासत में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
0: अगली खबर काशी की, जहां पर तय किया गया है कि महादेव की नगरी में शहर के भीतर मांस मछली की दुकानें शहर से बाहर शिफ्ट की जाएंगी और बकायदा जगह तय की जा चुकी है और फैसला लिया गया है कि शहर के भीतर मांस मछली नहीं बेची जाएगी।
1: वाराणसी में बटर चिकन और मटन कोरमा के शौकीनों को झटका लगा है। रोगन जोश और फिश करी खाने वालों के स्वाद पर भी संकट गहराया है, क्योंकि आदेश ऐसा आया है कि वाराणसी में शहर के भीतर मीट मांस मछली की दुकानें हटाई जाएंगी। तय किया गया है कि शहर के बाहर 5 जगह चिन्हित की जाएंगी और वहां दुकानें बनवाई जाएंगी ताकि दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट कर सके।
13: मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। बकासी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है। 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए।
1: बता दें कि सदन में पार्षद गुलशन अली ने मीट मांस की दुकानों को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव दिया था। अब इस पर अमल हुआ है तो मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले को गैर मुनासिब बता रहे हैं।
14: हम ये समझते हैं कि फैसला गैर मुनासिब है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट डेटा अराउंड 70% जो आवाम है नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी 70% आवाम नॉन वेजिटेरियन है। तो जितनी दूर आप इन दुकानों को करेंगे उतनी ही ज्यादा गरानी में इजाफा होगा, कस्टमर्स को जहमत होगी, बिजनेस पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा।
1: लेकिन शिया धर्मगुरु ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और एक नई मांग करते हैं।
15: जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए, ये गांजा का ठेके जो है ये भी हटना चाहिए। किसी भी तरीके के ये जो गलत खाम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहाँ तीर्थ स्थल है।
1: अब यूपी में स्वाद पर सियासत हो रही है, जिसके केंद्र में हिंदुत्व की राजनीति के बीज छिपे हैं। रोशन कुमार, वाराणसी आज तक।
0: आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बार फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची और फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की।

0: पहले आर्म्स एक्ट में केस, गिरफ्तारी का संकट और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर पर आ गई है। खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान के कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया, जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गयी।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है।
0: जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। अगर जल्द ही इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, यहां तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है।
1: ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, चूंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं।
0: इस एक्शन के एक दिन बाद ही फायर डिपार्टमेंट की टीम फिर ऑडिट करने फैजल खान की कोचिंग पहुंची और पूरे सेंटर का मुआयना किया। फैजल खान पर पहले ही आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होने के बाद वो संकट में घिरे हुए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की अब तैयारी है।
2: गिर लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंसर्ट कर दिया गया है FIR में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा।
0: कुल मिलाकर फैजल खान संकट में है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।
3: महंगाई की एक और मार आम जनता पर पड़ी है और घरेलू गैस की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं।
0: फिर पड़ी है महंगाई की मार, फिर बिगड़ेगा किचन का बजट, फिर से कटी है आम आदमी की जेब। जी हाँ, आज फिर से घरेलू गैस LPG के दाम में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में अब 14 किलो 300 ग्राम वाला गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 का हो गया है। इसके पहले भी गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था। 3 महीने में दूसरी बार LPG के दाम बढ़े हैं। 7 मार्च को LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। 3 महीने में घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हुआ है। गैस के दाम बढ़े तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घरेलू LPG दामों में आग की लपटें आम आदमी की रसोई को भस्म करने पर तुली हुई है।
4: महंगाई की मार गरीब पे जो पड़ती है ना, वो उसका उसका ऐसा साइन हो नहीं रहा है। बहुत बड़ी मार होती है कि पेट्रोल डीजल के साथ में गैस के बराबर LPG का दाम बढ़ता ही जा रहा है।
0: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, मगर सरकार कह रही है कि दुनिया में सबसे कम कीमत पर कुकिंग गैस हमारे ही देश में मिलती है। अब गैस पर सियासी कदर है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर समुद्र की टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास दोनों देशों ने एक दूसरे पर उकसाने वाली कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। ईरान ने चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने कहा कि उसने ईरानी ड्रोन मार गिराया।
0: एक बार फिर अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव की स्थिति बन रही है। एक बार फिर हॉर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। दोनों ओर से हुए हमलों के बाद टकराव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गईं। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पशुपेश में डाल दिया है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहा। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब हॉर्मुज पर नया मोर्चा खुल गया है, जिससे दोनों देशों में जंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
5: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

0: में चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब, कहा सरकार की चुप्पी, संदिग्ध आरोपों को ट्रस्ट ने नकारा। संभल में कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से नाराज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, सरकार पर साधा निशाना, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी रूप से जवाब देंगे। बंगाल में नेता विपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों से भी हो रही है बात, 61 विधायक हमारे साथ बोले, पार्टी की सलाहकार बने ममता। आज की बैठक से पहले गठबंधन इंडिया में बड़ी दरार, विजन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग, बबूला खड़गे को लिखा पत्र, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा, ईरान से समझौते करा, कहा कि हम डील के बेहद करीब, तेहरान के पास नहीं है कोई विकल्प। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन है, टीएमसी के सत्ता में रहे जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बंगाल के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें आक्रोशित लोग खुद ही टीएमसी नेताओं से इंसाफ मांग रहे हैं, यहां तक कि सरेआम मान मर्दन कर रहे हैं।
1: जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है, एक आदमी का आधा सर मुंडवा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है, एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर

0: जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं है, टीएमसी के नेताओं पर लोगों का आक्रोश ऐसा फूट रहा है कि वो जहां भी दिखते हैं उन पर अंडे टमाटर बरसाए जा रहे हैं। टीएमसी के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ गए।
0: पुलिस थाने के बाहर टीएमसी के नेता पर अंडे बरस रहे हैं। नाराज लोग सैकड़ों की तादाद में अंडे बरसा रहे हैं। पुलिस वाले टीएमसी नेता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर लोग लगातार अंडे फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता को निशाना बनाया जा रहा है। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी। आज जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर पुलिस ले जा रही थी, तभी अटैक हुआ। टीएमसी नेताओं पर हो रही कार्रवाई की दूसरी तस्वीर देखिए। साड़ी के गट्ठर के नीचे टीएमसी नेता छिपने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस ने खोज निकाला। ये चौंकाने वाली घटना हावड़ा के उदय नारायणपुर के बिलासपुर इलाके में हुई। पुलिस की कार्रवाई और टीएमसी नेता के छिपने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम ब्रह्मानंद चक्रवर्ती है, जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता है। स्थानीय लोगों ने उस पर हाउसिंग स्कीम के फंड से कट मनी यानी अवैध कमीशन लेने का आरोप लगाया है। जब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, तो पुलिस उसे खोजने पहुंच गई। तभी वो गिरफ्तारी के डर से एक कपड़ा दुकान के स्टोर रूम में साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गया। हालांकि पुलिस ने इसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। शुभेंदु सरकार के आने के बाद टीएमसी के दागी नेताओं पर धुआंधार कार्रवाई हो रही है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
1: टीएमसी के नेताओं पर लोगों के हमले के अब वीडियोस वायरल हैं, जहां टीएमसी नेताओं को घसीटा जा रहा है, कहीं पर लोग हमला कर रहे हैं।
0: टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर जोरदार हमला हुआ। नाराज लोग मदन मित्रा पर अंडे फेंक रहे हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र कमरहटी पहुंचे थे। वहीं नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक तस्वीर हुगली से भी आई है, जहां भीड़ टीएमसी के नेता को सड़क पर खींचते हुए थाने तक ले गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गमछा पहने तृणमूल नेता तपस चक्रवर्ती को लोग खींचकर थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी का दावा है कि कई भ्रष्टाचार और तोलाबाजी के मामलों में इस नेता का नाम सामने आया था। वेस्ट मिदनापुर में पुलिस ने टीएमसी के एक और नेता को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक सुजोय हाजरा की गिरफ्तारी जबरन उगाही और जमीन घोटाले में की गई है। उधर उत्तर 24 परगना जिले के गोपाल नगर में टीएमसी ट्रेड यूनियन के नेता कथित तौर पर कट मनी के नाम पर लिए पैसे वापस करते दिखे। इन्होंने टोटो ड्राइवरों से ये अवैध वसूली की थी। उधर लंबी पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपी पार्षद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मामला 2023 के पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें जसीमुद्दीन आरोपी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद से टीएमसी के दागियों में खलबली मची हुई है। हुगली से पार्था रहा तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
1: इस बीच कांग्रेस की ओर से टीएमसी पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए चोरी की थी, तो कार्रवाई तो होगी।
2: अगर तृणमूल पार्टी सभा जानता है वेस्ट बंगाल का साथ बहुत अन्याय काम किया, बहुत चोरी किया। अभी से नहीं, दो पार्टी पावर आने का 2011 साल आने का बाद अब लोग जानता है वो सब। एक तो सैम कंडो का नाम है, उसका बाद टीचर स्कैम था, उसका बाद कितना स्कैम रहा आदमी से, कब से, ये नया चीज नहीं है।
1: बंगाल में शुभेंदु सरकार का नया फरमान आया है। फरमान है मदरसों के सर्वे का। हिंदुत्व के नारे बुलंद करने के क्रम में शुभेंदु सरकार का यह फैसला अहम है। राज्य सरकार ने जो फरमान जारी किया है, उसके मुताबिक सभी मदरसों का सर्वे होगा, उनकी वैधता जांच

0: जाएगी, कागजों की पड़ताल होगी। सरकार भविष्य की प्लानिंग का हवाला देकर मदरसों के जो आंकड़े हैं वो जुटाने का हवाला दे रही है।
1: ओ माता की, गंगा माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
2: बंगाल में बीजेपी की सरकार और एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएं। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था।
3: मदरसा हो या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ देखना है कि वो सही तरह से ये यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन ये तो सरकार का काम है, सरकार ये काम कर रहा है, अपना काम है सरकार का, सरकार तो अपना काम करेगा ना।
2: बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया।
1: बंगाल का भूमि में धीरे धीरे धीरे धीरे सेकुलरिज्म और अपने वोट बैंक की लालच, इसमें विकास प्रगति पीछे चला गया। तुष्टिकरण की राजनीति आगे चलना पड़ा।
2: मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं।
4: कहाँ पे घोटाला चल रहा है, इतना घोटाला क्यों चल रहा है? तो हम सीएम, हमारा जो चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी है ना, तो उन्होंने एकदम ध्यान तरीके से, मतलब इतना ध्यान दे रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहाँ पे तो कम से कम टीचर को रिक्रूट करना है, तो फिर जहाँ पे स्कूल का कोई बच्चों नहीं है तो वहाँ पे फिर टीचर रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खोखला को कहाँ पे गैप है, कहाँ पे सिर्फ टीचर भी नहीं है, टीचर आता भी नहीं है, फिर भी पेमेंट लेते हैं, तो ध्यान देना चाहिए। एकदम हमारा सीएम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
2: बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।
5: उसने जो निर्णय लिया है सर्वे का, सारे मदरसों का, वो बहुत सराहनीय कदम है। जो भी शिक्षण संस्थान हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, सबके ऊपर जवाबदेही सरकार की है। वो वित्तीय मामला हो, कानून का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका मामला हो, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की है। तो सरकार का ये कदम जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है।
2: मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी।
1: तुष्टिकरण की राजनीति से बंगाल झेल रहा था, खास करके पिछले कुछ वर्षों में, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ खराब हुआ।
2: मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, जहां शुभेंदु सरकार की नजर उन मदरसों पर अब सख्त हो गए हैं जो नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इससे पहले ये सख्ती उत्तर प्रदेश में दिख चुकी है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों से अवैध मदरसों और अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चला है।
6: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसका सीधा और स्पष्ट ऐलान है कि प्रदेश में ना तो एक भी अवैध मदरसा चलेगा और न ही एक भी गैर कानूनी मस्जिद रहेगी। कानून के दायरे में अतिक्रमण वाली सभी धार्मिक इमारतों पर प्रशासन का हथौड़ा चलेगा, जिसकी ताजा बानगी दिख रही है संबल की मुस्तफा कादरी मस्जिद पर, जहां लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। ये दो तस्वीरें दो राज्यों में बीजेपी सरकार के तेवर को बयान कर रही है। एक ओर जहां बंगाल में मदरसों पर शुभेंदु की सख्त नजर पड़ चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले से ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर और हथौड़ा चला रही है। हालांकि सियासत में आरोप ये भी लग रहा है कि पहले यूपी और अब बंगाल में एक खास वर्ग विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। पहले नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर जो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों और अवैध धार्मिक स्थलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं। जून 2026 में ही गाजियाबाद के कनावनी और लोनी में दो अवैध मदरसे सील किए गए। मोदीनगर में मस्जिद के साथ बनी 14 दुकानों को भी ध्वस्त करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं बागपत में अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है। साथ ही संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर तो चल ही रहा है।
7: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही
8: है। जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जा करके कोई स्टे वगैरह ले सके।
6: हम आपको बता दें कि फरवरी 2026 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तार से जांच कराने का फैसला किया था। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना था। सीएम योगी ने भी बार बार चेतावनी दी है कि यूपी में किसी भी तरीके के धार्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
9: जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई, आपको उपासना विधि की पूरी छूट है कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं।
10: पर ये तो बन चुके हैं, अब
9: बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकारे नहीं।
6: उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्ती सिर्फ अवैध मदरसों तक ही सीमित नहीं है, कुछ ऐसे फैसले और एक्शन भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है। हाल ही में सीएम योगी ने ईद में सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले नए मदरसों को सरकारी पैसा नहीं देने का योगी ने फैसला किया था। 2022 में गैर रजिस्टर्ड और अवैध मदरसों के सर्वे के आदेश पारित हुए। नवंबर 2023 में यूपी में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा सैकड़ों अवैध बूचड़खानों को बंद कराया जा चुका है। साथ ही मई 2025 में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में बीजेपी सरकारों के कामकाज का तरीका बता रहा है कि उनकी सियासत का फॉर्मूला क्या है और इससे ना तो उन्हें गुरेज है और ना ही परहेज है। खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव की जंग ही इन्हीं मुद्दों की बुनियाद में लड़ी जाएगी। संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब बात यूपी के, जहां पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। संभल में दूसरे दिन भी मस्जिद पर बुलडोजर चला और बुलडोजर एक्शन के बाद से समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला हुआ है और बुलडोजर पर जोरदार सियासत चल रही है।
2: बाबा का बुलडोजर और जमींदोज हो रहा है अवैध निर्माण। तस्वीरें संभल की। संभल में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। मेहराबे गिराई जा रही है, मीनारे ढहाई जा रहे हैं।
7: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही थी। और इसी तरह से जो लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहां पर लगातार जो जारी है। और इसी के साथ देखिए ठीक आपको मैं पीछे अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप जो देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर जो बनी हुई है। यहां पर आप ये बुलडोजर आपको मशीनों में जो है नजर आएंगे और देखिए किस तरीके से जो यहां पर बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें हैं वो लगातार यहां पर जो है मौके पर मौजूद है।
2: ये मस्जिद 120 वर्ग मीटर में बनी हुई थी।
11: ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी, लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी। और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है।
2: अब इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी की सियासत सुलग रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है।
8: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर ही काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जाकर के कोई स्टे वगैरह ले सके।
2: 27 के समर में अभी समय है, मगर यूपी की सियासत में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
0: अगली खबर काशी की, जहां पर तय किया गया है कि महादेव की नगरी में शहर के भीतर मांस मछली की दुकानें शहर से बाहर शिफ्ट की जाएंगी और बकायदा जगह तय की जा चुकी है और फैसला लिया गया कि शहर के भीतर मांस मछली नहीं बेची जाएगी।
2: वाराणसी में बटर चिकन और मटन कोरमा के शौकीनों को झटका लगा है। रोगन जोश और फिश करी खाने वालों के स्वाद पर भी संकट गहराया है, क्योंकि आदेश ऐसा आया है कि वाराणसी में शहर के भीतर मीट मांस मछली की दुकानें हटाई जाएंगी। तय किया गया है कि शहर के बाहर 5 जगह चिन्हित की जाएंगी और वहां दुकानें बनवाई जाएंगी ताकि दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट कर सके।
12: मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। बकासी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है, 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए।
2: बता दें कि सदन में पार्षद गुलशन अली ने मीट मांस की दुकानों को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव दिया था। अब इस पर अमल हुआ है तो मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले को गैर मुनासिब बता रहे हैं।
13: हम ये समझते हैं कि फैसला गैर मुनासिब है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट डेटा अराउंड 70% जो आवाम है नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी 70% आवाम नॉन वेजिटेरियन है, तो जितनी दूर आप इन दुकानों को करेंगे उतने ही ज्यादा गरानी में इजाफा होगा, कस्टमर्स को जहमत होगी, बिजनेस पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा।
2: लेकिन शिया धर्मगुरु ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और एक नई मांग करते हैं।
14: जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए, ये गांजा का ठेके जो है ये भी हटना चाहिए, किसी भी तरीके के ये जो गलत काम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहाँ तीर्थ स्थल है।
2: अब यूपी में स्वाद पर सियासत हो रही है जिसके केंद्र में हिंदुत्व की राजनीति के बीज छिपे हैं। रोशन कुमार, वाराणसी, आज तक।
0: आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बार फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची और फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की।

0: पहले आर्म्स एक्ट में केस, गिरफ्तारी का संकट और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर पर आ गई है। खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान के कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया, जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गईं।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्युपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है।
0: जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। अगर जल्द ही इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, यहां तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है।
1: ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं।
0: इस एक्शन के एक दिन बाद ही फायर डिपार्टमेंट की टीम फिर ऑडिट करने फैजल खान की कोचिंग पहुंची और पूरे सेंटर का मुआयना किया। फैजल खान पर पहले ही आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होने के बाद वो संकट में घिरे हुए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की अब तैयारी है।
2: गेड़ लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंस्टॉल कर दिया गया है FIR में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता चलेगा।
0: कुल मिलाकर फैजल खान संकट में है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।
3: महंगाई की एक और मार आम जनता पर पड़ी है और घरेलू गैस की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं।
0: फिर पड़ी है महंगाई की मार, फिर बिगड़ेगा किचन का बजट, फिर से कटी है आम आदमी की जेब। जी हाँ, आज फिर से घरेलू गैस LPG के दाम में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में अब 14 किलो 300 ग्राम वाला गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 का हो गया है। इसके पहले भी गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था। तीन महीने में दूसरी बार LPG के दाम बढ़े हैं। 7 मार्च को LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। तीन महीने में घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हुआ है। गैस के दाम बढ़े तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घरेलू LPG दामों में आग की लपटें आम आदमी की रसोई को भस्म करने पर तुली हुई है।
4: महंगाई की मार गरीब पे जो पड़ती है ना, वो उसका उसका एहसास शायद हो नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी मार होती है कि नहीं रहा है, ये बहुत बड़ी मार होती है कि पेट्रोल डीजल के साथ में गैस के बराबर LPG का दाम बढ़ता ही जा रहा है।
0: विपक्ष सरकार पर हमलावर है मगर सरकार सियासी कदर है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर समुद्र की टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। होर्मुज स्ट्रेट के पास दोनों देशों ने एक दूसरे पर उकसाने वाली कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। ईरान ने चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने कहा कि उसने ईरानी ड्रोन मार गिराया।
0: एक बार फिर अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव की स्थिति बन रही है। एक बार फिर होर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। दोनों ओर से हुए हमलों के बाद टकराव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने होर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गई। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने होर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पशुपेश में डाल दिया है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहा। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब हॉर्मुज पर नया मोर्चा खुल गया है, जिससे दोनों देशों में जंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: में चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब, कहा सरकार के चुप्पी, संदिग्ध आरोपों को ट्रस्ट ने नकारा। संभल में कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से नाराज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, सरकार पर साधा निशाना, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी रूप से जवाब देंगे। बंगाल में नेता विपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों से भी हो रही है बात, 61 विधायक हमारे साथ बोले, पार्टी की सलाहकार बने ममता। आज की बैठक से पहले गठबंधन इंडिया में पड़ी दरार, विजन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग, बबूला खड़गे को लिखा पत्र, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा, ईरान से समझौते करा, कहा कि हम डील के बेहद करीब, तेहरान के पास नहीं है कोई विकल्प। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन है, टीएमसी के सत्ता में रहे जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बंगाल के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें आक्रोशित लोग खुद ही टीएमसी नेताओं से इंसाफ मांग रहे हैं, यहां तक कि सरेआम मान मर्दन कर रहे हैं।
1: जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है, एक आदमी का आधा सर मुंडवा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है, एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुरमत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्ही आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: बात सिर्फ इतनी नहीं है, टीएमसी के नेताओं पर लोगों का आक्रोश ऐसा फूट रहा है कि वो जहां भी दिखते हैं उन पर अंडे टमाटर बरसाए जा रहे हैं। टीएमसी के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ गए।
1: पुलिस थाने के बाहर टीएमसी के नेता पर अंडे बरस रहे हैं। नाराज लोग सैकड़ों की तादाद में अंडे बरसा रहे हैं। पुलिस वाले टीएमसी नेता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं मगर लोग लगातार अंडे फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं जहां टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता को निशाना बनाया जा रहा है। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी, आज जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर पुलिस ले जा रही थी तभी अटैक हुआ। टीएमसी नेताओं पर हो रही कार्रवाई की दूसरी तस्वीर देखिए। साड़ी के गट्ठर के नीचे टीएमसी नेता छिपने की कोशिश कर रहे थे मगर पुलिस ने खोज निकाला। ये चौंकाने वाली घटना हावड़ा के उदय नारायणपुर के बिलासपुर इलाके में हुई। पुलिस की कार्रवाई और टीएमसी नेता के छिपने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम ब्रह्मानंद चक्रवर्ती है जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता है। स्थानीय लोगों ने उस पर हाउसिंग स्कीम के फंड से कट मनी यानी अवैध कमीशन लेने का आरोप लगाया है। जब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस उसे खोजने पहुंच गई, तभी वो गिरफ्तारी के डर से एक कपड़ा दुकान के स्टोर रूम में साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गया। हालांकि पुलिस ने इसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। शुभेंदु सरकार के आने के बाद टीएमसी के दागी नेताओं पर धुआंधार कार्रवाई हो रही है। कोलकाता से तापस सेनगुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी के नेताओं पर लोगों के हमले के अब वीडियोस वायरल हैं, जहां टीएमसी नेताओं को घसीटा जा रहा है, कहीं पर लोग हमला कर रहे हैं।
1: टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर जोरदार हमला हुआ। नाराज लोग मदन मित्रा पर अंडे फेंक रहे हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र कमरहटी पहुंचे थे। वहीं नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक तस्वीर हुगली से भी आई है, जहां भीड़ टीएमसी के नेता को सड़क पर खींचते हुए थाने तक ले गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गमछा पहने तृणमूल नेता तपस चक्रवर्ती को लोग खींचकर थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी का दावा है कि कई भ्रष्टाचार और तोलाबाजी के मामलों में इस नेता का नाम सामने आया था। वेस्ट मिदनापुर में पुलिस ने टीएमसी के एक और नेता को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक सुजोय हाजरा की गिरफ्तारी जबरन उगाही और जमीन घोटाले में की गई है। उधर उत्तर 24 परगना जिले के गोपाल नगर में टीएमसी ट्रेड यूनियन के नेता कथित तौर पर कट मनी के नाम पर लिए पैसे वापस करते दिखे। इन्होंने टोटो ड्राइवरों से ये अवैध वसूली की थी। उधर लंबी पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपी पार्षद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मामला 2023 के पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें जसीमुद्दीन आरोपी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद से टीएमसी के दागियों में खलबली मची हुई है। हुगली से पार्था राहा तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
0: इस बीच कांग्रेस की ओर से टीएमसी पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए चोरी की थी तो कार्रवाई तो होगी।
2: अगर तृणमूल पार्टी सबाई जानता है वेस्ट बंगाल का साथ बहुत अन्याय काम किया, बहुत चोरी किया। अभी से नहीं, दो पार्टी पावर आने का 2011 साल आने का बाद अब लोग जानता है वो सब। एक तो सैम कंडो का नाम है, उसका बाद टीचर स्कैम था, उसका बाद कितना स्कैम रहा आदमी से, कब से, ये नया चीज नहीं है।
0: बंगाल में शुभेंदु सरकार का नया फरमान आया है। फरमान है मदरसों के सर्वे का। हिंदुत्व के नारे बुलंद करने के क्रम में शुभेंदु सरकार का यह फैसला अहम है। राज्य सरकार ने जो फरमान जारी किया है उसके मुताबिक सभी मदरसों का सर्वे होगा, उनकी वैधता जांची जाएगी, कागजों की पड़ताल होगी। सरकार भविष्य की प्लानिंग का हवाला देकर मदरसों के जो आंकड़े हैं वो जुटाने का हवाला दे रही है।
3: ओ माता की, गंगा माता की जय जय सिरा।
1: बंगाल में बीजेपी की सरकार और एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएं। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था।
4: मदरसा हो या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ देखना है कि वो सही तरह से ये यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन ये तो सरकार का काम है, सरकार ये काम कर रहा है, अपना काम है सरकार का, सरकार तो अपना काम करेगा ना।
1: बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया।
3: बंगाल का भूमि में धीरे धीरे धीरे धीरे सेकुलरिज्म और अपने वोट बैंक की लालच, इसमें विकास प्रगति पीछे चला गया। तुष्टिकरण की राजनीति आगे चलना पड़ा।
1: मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं।
5: कहाँ पे घोटाला चल रहा है, इतना घोटाला क्यों चल रहा है? तो हम सीएम हमारा जो चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी है ना, तो उन्होंने एकदम ध्यान तरीके से मतलब इतना ध्यान दे रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहाँ पे तो कम से कम टीचर को रिक्रूट करना है, तो फिर जहाँ पे स्कूल का कोई बच्चों नहीं है तो वहाँ पे फिर टीचर रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। घोखला को कहाँ पे गैप है, कहाँ पे सिर्फ टीचर भी नहीं है, टीचर आता भी नहीं है, फिर भी पेमेंट लेते हैं, तो ध्यान देना चाहिए। एकदम हमारा सीएम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
1: बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।
6: उसने जो निर्णय लिया है सर्वे का, सारे मदरसों का, वो बहुत सराहनीय कदम है। जो भी शिक्षण संस्थान हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, सबके ऊपर जवाबदेही सरकार की है। वो वित्तीय मामला हो, कानून का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका मामला हो, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की है। तो सरकार का ये कदम जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है।
1: मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी।
3: तुष्टिकरण की राजनीति से बंगाल झील रहा था, खास करके पिछले कुछ वर्षों में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ खराब हुआ।
1: मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, जहां शुभेंदु सरकार की नजर उन मदरसों पर अब सख्त हो गए हैं जो नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इससे पहले ये सख्ती उत्तर प्रदेश में दिख चुकी है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों से अवैध मदरसों और अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चला है।
7: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसका सीधा और स्पष्ट ऐलान है कि प्रदेश में ना तो एक भी अवैध मदरसा चलेगा और न ही एक भी गैर कानूनी मस्जिद रहेगी। कानून के दायरे में अतिक्रमण वाली सभी धार्मिक इमारतों पर प्रशासन का हथौड़ा चलेगा, जिसकी ताजा बानगी दिख रही है संबल की मुस्तफा कादरी मस्जिद पर, जहां लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। ये दो तस्वीरें दो राज्यों में बीजेपी सरकार के तेवर को बयान कर रही है। एक ओर जहां बंगाल में मदरसों पर शुभेंदु की सख्त नजर पड़ चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले से ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर और हथौड़ा चला रही है। हालांकि सियासत में आरोप ये भी लग रहा है कि पहले यूपी और अब बंगाल में एक खास वर्ग विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। पहले नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर जो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों और अवैध धार्मिक स्थलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं। जून 2026 में ही गाजियाबाद के कनावनी और लोनी में दो अवैध मदरसे सील किए गए। मोदीनगर में मस्जिद के साथ बनी 14 दुकानों को भी ध्वस्त करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं बागपत में अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है। साथ ही संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर तो चल ही रहा है।
8: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर है वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी, जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही
9: है। जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर ये काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जा करके कोई स्टे वगैरह ले सके।
7: हम आपको बता दें कि फरवरी 2026 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तार से जांच कराने का फैसला किया था। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना था। सीएम योगी ने भी बार बार चेतावनी दी है कि यूपी में किसी भी तरीके के धार्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
10: जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई, आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं।
11: पर ये तो बन चुके हैं, अब
10: बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकारे नहीं।
7: उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्ती सिर्फ अवैध मदरसों तक ही सीमित नहीं है, कुछ ऐसे फैसले और एक्शन भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है। हाल ही में सीएम योगी ने ईद में सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले नए मदरसों को सरकारी पैसा नहीं देने का योगी ने फैसला किया था। 2022 में गैर रजिस्टर्ड और अवैध मदरसों के सर्वे के आदेश पारित हुए। नवंबर 2023 में यूपी में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा सैकड़ों अवैध बूचड़खानों को बंद कराया जा चुका है। साथ ही मई 2025 में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में बीजेपी सरकारों के कामकाज का तरीका बता रहा है कि उनकी सियासत का फॉर्मूला क्या है और इससे ना तो उन्हें गुरेज है और ना ही परहेज है। खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव की जंग ही इन्हीं मुद्दों की बुनियाद में लड़ी जाएगी। संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब बात यूपी के जहां पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। संभल में दूसरे दिन भी मस्जिद पर बुलडोजर चला और बुलडोजर एक्शन के बाद से समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर है और बुलडोजर पर जोरदार सियासत चल रही है।
1: गरज रहा है बाबा का बुलडोजर और जमींदोज हो रहा है अवैध निर्माण। तस्वीरें संभल की। संभल में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। मेहराबें गिराई जा रही हैं, मीनारें ढहाई जा रही हैं।
8: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी, जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही थी और इसी तरह से जो लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहां पर लगातार जो जारी है। और इसी के साथ देखिए ठीक आपको मैं पीछे अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप जो देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर जो बनी हुई है। यहां पर आप ये बुलडोजर आपको मशीनों में जो है सर नजर आएंगे और देखिए किस तरीके से जो यहां पर बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें हैं वो लगातार यहां पर जो है मौके पर मौजूद है।
1: ये मस्जिद 120 वर्ग मीटर में बनी हुई थी।
12: ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है।
1: अब इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी की सियासत सुलग रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है।
9: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर ये काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जाकर के कोई स्टे वगैरह ले सके।
1: 27 के समर में अभी समय है, मगर यूपी की सियासत में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
0: अगली खबर काशी की, जहां पर तय किया गया है कि महादेव की नगरी में शहर के भीतर मांस मछली की दुकानें शहर से बाहर शिफ्ट की जाएंगी और बकायदा जगह तय की जा चुकी है और फैसला लिया गया कि शहर के भीतर मांस मछली नहीं बेची जाएगी।
1: वाराणसी में बटर चिकन और मटन कोरमा के शौकीनों को झटका लगा है। रोगन जोश और फिश करी खाने वालों के स्वाद पर भी संकट गहराया है, क्योंकि आदेश ऐसा आया है कि वाराणसी में शहर के भीतर मीट मांस मछली की दुकानें हटाई जाएंगी। तय किया गया है कि शहर के बाहर 5 जगह चिन्हित की जाएंगी और वहां दुकानें बनवाई जाएंगी ताकि दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट कर सके।
13: मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। बकासी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है। 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए।
1: बता दें कि सदन में पार्षद गुलशन अली ने मीट मांस की दुकानों को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव दिया था। अब इस पर अमल हुआ है तो मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले को गैर मुनासिब बता रहे हैं।
14: हम ये समझते हैं कि फैसला गैर मुनासिब है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट डेटा अराउंड 70% जो आवाम है नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी 70% आवाम नॉन वेजिटेरियन है। तो जितनी दूर आप इन दुकानों को करेंगे उतने ही ज्यादा गरानी में इजाफा होगा, कस्टमर्स को जहमत होगी, बिजनेस पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा।
1: लेकिन शिया धर्मगुरु ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और एक नई मांग करते हैं।
15: जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए, ये गांजा का ठेके जो है ये भी हटना चाहिए। किसी भी तरीके के ये जो गलत खाम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहाँ तीर्थ स्थल है।
1: अब यूपी में स्वाद पर सियासत हो रही है, जिसके केंद्र में हिंदुत्व की राजनीति के बीज छिपे हैं। रोशन कुमार, वाराणसी आज तक।
0: आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बार फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची और फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की।

0: पहले आर्म सेक्ट में केस, गिरफ्तारी का संकट और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर पर आ गई है। खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान के कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया, जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गईं।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है।
0: जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। अगर जल्द ही इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, यहां तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है।
1: ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं।
0: इस एक्शन के एक दिन बाद ही फायर डिपार्टमेंट की टीम फिर ऑडिट करने फैजल खान की कोचिंग पहुंची और पूरे सेंटर का मुआयना किया। फैजल खान पर पहले ही आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होने के बाद वो संकट में घिरे हुए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की अब तैयारी है।
2: बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंस्टॉल कर दिया गया है FIR में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा।
0: कुल मिलाकर फैजल खान संकट में है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।
3: महंगाई की एक और मार आम जनता पर पड़ी है और घरेलू गैस की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं।
0: फिर पड़ी है महंगाई की मार, फिर बिगड़ेगा किचन का बजट, फिर से कटी है आम आदमी की जेब। जी हाँ, आज फिर से घरेलू गैस LPG के दाम में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में अब 14 किलो 300 ग्राम वाला गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 का हो गया है। इसके पहले भी गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था। 3 महीने में दूसरी बार LPG के दाम बढ़े हैं। 7 मार्च को LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। 3 महीने में घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हुआ है। गैस के दाम बढ़े तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घरेलू LPG दामों में आग की लपटें आम आदमी की रसोई को भस्म करने पर तुली हुई है।
4: महंगाई की मार गरीब पे जो पड़ती है ना, वो उसका ऐसा साइन हो नहीं रहा है। बहुत बड़ी मार होती है कि पेट्रोल डीजल के साथ में गैस के बराबर LPG का दाम बढ़ता ही जा रहा है।
0: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, मगर सरकार कह रही है कि दुनिया में सबसे कम कीमत पर कुकिंग गैस हमारे ही देश में मिलती है। अब गैस पर सियासी गदर है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर समुद्र की टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास दोनों देशों ने एक दूसरे पर उकसाने वाली कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। ईरान ने चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने कहा कि उसने ईरानी ड्रोन मार गिराया है।
0: एक बार फिर अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव की स्थिति बन रही है। एक बार फिर हॉर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। दोनों ओर से हुए हमलों के बाद टकराव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गई। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पशुपेश में डाल दिया है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहा। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब हॉर्मूज पर नया मोर्चा खुल गया है, जिससे दोनों देशों में जंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: रास्ते में चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब, कहा सरकार की चुप्पी, संदिग्ध आरोपों को ट्रस्ट ने नकारा। संभल में कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से नाराज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, सरकार पर साधा निशाना, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी रूप से जवाब देंगे। बंगाल में नेता विपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों से भी हो रही है बात, 61 विधायक हमारे साथ बोले, पार्टी की सलाहकार बने ममता। आज की बैठक से पहले गठबंधन इंडिया में पड़ी दरार, विजन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग, बबूला खड़गे को लिखा पत्र, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा, ईरान से समझौते करा, कहा कि हम डील के बेहद करीब, तेहरान के पास नहीं है कोई विकल्प। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन है, टीएमसी के सत्ता में रहे जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बंगाल के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें आक्रोशित लोग खुद ही टीएमसी नेताओं से इंसाफ मांग रहे हैं, यहां तक कि सरेआम मान मर्दन कर रहे हैं।
1: जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है, एक आदमी का आधा सर मुंडवा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है, एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुरमत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्ही आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: बात सिर्फ इतनी नहीं है, टीएमसी के नेताओं पर लोगों का आक्रोश ऐसा फूट रहा है कि वो जहां भी दिखते हैं उन पर अंडे टमाटर बरसाए जा रहे हैं। टीएमसी के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ गए।
1: पुलिस थाने के बाहर टीएमसी के नेता पर अंडे बरस रहे हैं। नाराज लोग सैकड़ों की तादाद में अंडे बरसा रहे हैं। पुलिस वाले टीएमसी नेता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं मगर लोग लगातार अंडे फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं जहां टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता को निशाना बनाया जा रहा है। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी

0: गट्ठर के नीचे टीएमसी नेता छिपने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस ने खोज निकाला। ये चौंकाने वाली घटना हावड़ा के उदय नारायणपुर के बिलासपुर इलाके में हुई। पुलिस की कार्रवाई और टीएमसी नेता के छिपने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम ब्रह्मानंद चक्रवर्ती है, जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता है। स्थानीय लोगों ने उस पर हाउसिंग स्कीम के फंड से कट मनी यानी अवैध कमीशन लेने का आरोप लगाया है। जब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, तो पुलिस उसे खोजने पहुंच गई। तभी वो गिरफ्तारी के डर से एक कपड़ा दुकान के स्टोर रूम में साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गया। हालांकि पुलिस ने इसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। शुभेंदु सरकार के आने के बाद टीएमसी के दागी नेताओं पर धुआंधार कार्रवाई हो रही है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
1: टीएमसी के नेताओं पर लोगों के हमले के अब वीडियोस वायरल हैं, जहां टीएमसी नेताओं को घसीटा जा रहा है, कहीं पर लोग हमला कर रहे हैं।

0: टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर जोरदार हमला हुआ। नाराज लोग मदन मित्रा पर अंडे फेंक रहे हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र कमरहटी पहुंचे थे। वहीं नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक तस्वीर हुगली से भी आई है जहां भीड़ टीएमसी के नेता को सड़क पर खींचते हुए थाने तक ले गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गमछा पहने तृणमूल नेता तपस चक्रवर्ती को लोग खींचकर थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी का दावा है कि कई भ्रष्टाचार और तोलाबाजी के मामलों में इस नेता का नाम सामने आया था। वेस्ट मिदनापुर में पुलिस ने टीएमसी के एक और नेता को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक सुजोय हाजरा की गिरफ्तारी जबरन उगाही और जमीन घोटाले में की गई है। उधर उत्तर 24 परगना जिले के गोपाल नगर में टीएमसी ट्रेड यूनियन के नेता कथित तौर पर कट मनी के नाम पर लिए पैसे वापस करते दिखे। इन्होंने टोटो ड्राइवरों से ये अवैध वसूली की थी। उधर लंबी पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपी पार्षद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मामला 2023 के पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है जिसमें जसीमुद्दीन आरोपी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद से टीएमसी के दागियों में खलबली मची हुई है। हुगली से पार्था राहा तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
1: इस बीच कांग्रेस की ओर से टीएमसी पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए चोरी की थी तो कार्रवाई तो होगी।
2: अगर तृणमूल पार्टी सबाई जानता है वेस्ट बंगाल का साथ बहुत अन्याय काम किया है, बहुत चोरी किया है। अभी से नई दो पार्टी पावर आने का 2011 साल आने का बाद अब लोग जानता है वो सब। एक तो सैम कंडो का नाम है, उसका बाद टीचर स्कैम था, उसका बाद कितना स्कैम रहा आदमी से कब से, ये नया चीज नहीं है।
1: बंगाल में शुभेंदु सरकार का नया फरमान आया है। फरमान है मदरसों के सर्वे का। हिंदुत्व के नारे बुलंद करने के क्रम में शुभेंदु सरकार का यह फैसला अहम है। राज्य सरकार ने जो फरमान जारी किया है उसके मुताबिक सभी मदरसों का सर्वे होगा, उनकी वैधता जांची जाएगी, कागजों की पड़ताल होगी। सरकार भविष्य की प्लानिंग का हवाला देकर मदरसों के जो आंकड़े हैं वो जुटाने का हवाला दे रही है।
3: ओ माता की, गंगा माता की जय जय सिरा।
0: बंगाल में बीजेपी की सरकार और एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की

0: शिक्षा, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएं। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था।
1: मदरसा हो या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ देखना है कि वो सही तरह से ये यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन ये तो सरकार का काम है, सरकार ये काम कर रहा है, अपना काम है सरकार का, सरकार तो अपना काम करेगा ना।
0: बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है, अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया।
2: बंगाल का भूमि में धीरे धीरे धीरे धीरे सेकुलरिज्म और अपने वोट बैंक की लालच, इसमें विकास प्रगति पीछे चला गया। तुष्टिकरण की राजनीति आगे चलना पड़ा।
0: मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं।
3: कहाँ पे घोटाला चल रहा है, इतना घोटाला क्यों चल रहा है, तो हम सीएम हमारा जो चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी है ना, तो उन्होंने एकदम ध्यान तरीके से मतलब इतना ध्यान दे रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहाँ पे तो कम से कम टीचर को रिक्रूट करना है, तो फिर जहाँ पे स्कूल का कोई बच्चों नहीं है तो वहाँ पे फिर टीचर रखने का कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। घोखला को कहाँ पे गैप है, कहाँ पे सिर्फ टीचर भी नहीं है, टीचर आता भी नहीं है फिर भी पेमेंट लेते हैं, तो ध्यान देना चाहिए। एकदम हमारा सीएम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
0: बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।
4: उसने जो निर्णय लिया है सर्वे का, सारे मदरसों का, वो बहुत सराहनीय कदम है। जो भी शिक्षण संस्थान हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, सबके ऊपर जवाबदेही सरकार की है। वो वित्तीय मामला हो, कानून का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका मामला हो, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की है। तो सरकार का ये कदम जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है।
0: मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी।
2: तुष्टिकरण की राजनीति से बंगाल झील रहा था, खास करके पिछले कुछ वर्षों में, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ खराब हुआ।
0: मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
5: पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, जहां शुभेंदु सरकार की नजर उन मदरसों पर अब सख्त हो गए हैं जो नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इससे पहले ये सख्ती उत्तर प्रदेश में दिख चुकी है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों से अवैध मदरसों और अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चला है।
6: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसका सीधा और स्पष्ट ऐलान है कि प्रदेश में ना तो एक भी अवैध मदरसा चलेगा और न ही एक भी गैर कानूनी मस्जिद रहेगी। कानून के दायरे में अतिक्रमण वाली सभी धार्मिक इमारतों पर प्रशासन का हथौड़ा चलेगा, जिसकी ताजा बानगी दिख रही है संबल की मुस्तफा कादरी मस्जिद पर, जहां लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। ये दो तस्वीरें दो राज्यों में बीजेपी सरकार के तेवर को बयान कर रही है। एक ओर जहां बंगाल में मदरसों पर शुभेंदु की सख्त नजर पड़ चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले से ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर और हथौड़ा चला रही है। हालांकि सियासत में आरोप ये भी लग रहा है कि पहले यूपी और अब बंगाल में एक खास वर्ग विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। पहले नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर जो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों और अवैध धार्मिक स्थलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं। जून 2026 में ही गाजियाबाद के कनावनी और लोनी में दो अवैध मदरसे सील किए गए। मोदीनगर में मस्जिद के साथ बनी 14 दुकानों को भी ध्वस्त करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं बागपत में अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है। साथ ही संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर तो चल ही रहा है।
7: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही
8: है। जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जा करके कोई स्टे वगैरह ले सके।
6: हम आपको बता दें कि फरवरी 2026 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तार से जांच कराने का फैसला किया था। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना था। सीएम योगी ने भी बार बार चेतावनी दी है कि यूपी में किसी भी तरीके के धार्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
9: जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई, आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं।
10: पर ये तो बन चुके हैं, अब
9: बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकारे नहीं।
6: उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्ती सिर्फ अवैध मदरसों तक ही सीमित नहीं है, कुछ ऐसे फैसले और एक्शन भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं। हाल ही में सीएम योगी ने ईद में सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले नए मदरसों को सरकारी पैसा नहीं देने का योगी ने फैसला किया था। 2022 में गैर रजिस्टर्ड और अवैध मदरसों के सर्वे के आदेश पारित हुए। नवंबर 2023 में यूपी में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा सैकड़ों अवैध बूचड़खानों को बंद कराया जा चुका है। साथ ही मई 2025 में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में बीजेपी सरकारों के कामकाज का तरीका बता रहा है कि उनकी सियासत का फॉर्मूला क्या है, और इससे ना तो उन्हें गुरेज है और ना ही परहेज है। खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव की जंग ही इन्हीं मुद्दों की बुनियाद में लड़ी जाएगी। संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
5: अब बात यूपी की, जहां पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। संभल में दूसरे दिन भी मस्जिद पर बुलडोजर चला और बुलडोजर एक्शन के बाद से समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला हो रहा है और बुलडोजर पर जोरदार सियासत चल रही है।
0: गरज रहा है बाबा का बुलडोजर और जमींदोज हो रहा है अवैध निर्माण। तस्वीरें संभल की। संभल में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। मेहराबे गिराई जा रही है, मीनारे ढहाई जा रही हैं।
7: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर है वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही थी, और इसी तरह से जो लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहां पर लगातार जो है जारी है। और इसी के साथ देखिए ठीक आपको मैं पीछे अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप जो देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर जो बनी हुई है। यहां पर आप ये बुलडोजर आपको मशीनों में जो है सर नजर आएंगे, और देखिए किस तरीके से जो यहां पर बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें हैं वो लगातार यहां पर जो है मौके पर मौजूद है।
0: ये मस्जिद 120 वर्ग मीटर में बनी हुई थी।
11: ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी, लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी, और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है।
0: अब इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी की सियासत सुलग रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है।
8: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर ही काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जा करके कोई स्टे वगैरह ले सके।
0: 27 के समर में अभी समय है, मगर यूपी की सियासत में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
5: अगली खबर काशी की, जहां पर तय किया गया है कि महादेव की नगरी में शहर के भीतर मांस मछली की दुकानें शहर से बाहर शिफ्ट की जाएंगी, और बकायदा जगह तय की जा चुकी है और फैसला लिया गया कि शहर के भीतर मांस मछली नहीं बेची जाएगी।
0: वाराणसी में बटर चिकन और मटन कोरमा के शौकीनों को झटका लगा है। रोगन जोश और फिश करी खाने वालों के स्वाद पर भी संकट गहराया है, क्योंकि आदेश ऐसा आया है कि वाराणसी में शहर के भीतर मीट मांस मछली की दुकानें हटाई जाएंगी। तय किया गया है कि शहर के बाहर 5 जगह चिन्हित की जाएंगी और वहां दुकानें बनवाई जाएंगी ताकि दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट कर सके।
12: मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। बकासी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है, 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं, और मुझे लगता है कि मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए।
0: बता दें कि सदन में पार्षद गुलशन अली ने मीट मांस की दुकानों को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव दिया था। अब इस पर अमल हुआ है तो मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले को गैर मुनासिब बता रहे हैं।
13: हम ये समझते हैं कि फैसला गैर मुनासिब है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट डेटा अराउंड 70% जो आवाम है नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी 70% आवाम नॉन वेजिटेरियन है, तो जितनी दूर आप इन दुकानों को करेंगे उतनी ही ज्यादा गरानी में इजाफा होगा, कस्टमर्स को जहमत होगी, बिजनेस पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा।
0: लेकिन शिया धर्मगुरु ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और एक नई मांग करते हैं।
14: जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए, ये गांजा का ठेके जो है ये भी हटना चाहिए, किसी भी तरीके के ये जो गलत खाम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहाँ तीर्थ स्थल है।
0: अब यूपी में स्वाद पर सियासत हो रही है जिसके केंद्र में हिंदुत्व की राजनीति के बीज छिपे हैं। रोशन कुमार, वाराणसी आज तक।
5: आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बार फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची और फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की।

0: पहले आर्म्स एक्ट में केस, गिरफ्तारी का संकट और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर पर आ गई है। खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान के कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया, जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गईं।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है।
0: जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। अगर जल्द ही इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, यहाँ तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है।
1: ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं।
0: इस एक्शन के एक दिन बाद ही फायर डिपार्टमेंट की टीम फिर ऑडिट करने फैजल खान की कोचिंग पहुंची और पूरे सेंटर का मुआयना किया। फैजल खान पर पहले ही आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होने के बाद वो संकट में घिरे हुए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की अब तैयारी है।
2: पेड़ लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंस्टॉल कर दिया गया है FIR में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता चलेगा।
0: कुल मिलाकर फैजल खान संकट में है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।
3: महंगाई की एक और मार आम जनता पर पड़ी है और घरेलू गैस की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं।
0: फिर पड़ी है महंगाई की मार, फिर बिगड़ेगा किचन का बजट, फिर से कटी है आम आदमी की जेब। जी हाँ, आज फिर से घरेलू गैस LPG के दाम में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में अब 14 किलो 300 ग्राम वाला गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 का हो गया है। इसके पहले भी गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था। तीन महीने में दूसरी बार LPG के दाम बढ़े हैं। 7 मार्च को LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। तीन महीने में घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हुआ है। गैस के दाम बढ़े तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घरेलू LPG दामों में आग की लपटें आम आदमी की रसोई को भस्म करने पर तुली हुई है।
4: महंगाई की मार गरीब पे जो पड़ती है ना, वो उसका उसका एहसास शायद हो नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी मार होती है कि पेट्रोल डीजल के साथ में गैस के बराबर LPG का दाम बढ़ता ही जा रहा है।
0: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, मगर सरकार कह रही है कि दुनिया में सबसे कम कीमत पर कुकिंग गैस हमारे ही देश में मिलती है। अब गैस पर सियासी गदर है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर समुद्र की टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। होर्मुज स्ट्रेट के पास दोनों देशों ने एक दूसरे पर उकसाने वाली कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। ईरान ने चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने कहा कि उसने ईरानी ड्रोन मार गिराया है।
0: एक बार फिर अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव की स्थिति बन रही है। एक बार फिर होर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। दोनों ओर से हुए हमलों के बाद टकराव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने होर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गई। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने होर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पशुपेश में डाल दिया है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहा। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब हॉर्मूज पर नया मोर्चा खुल गया है, जिससे दोनों देशों में जंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब, कहा सरकार की चुप्पी। संदिग्ध आरोपों को ट्रस्ट ने नकारा। संभल में कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से नाराज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क। सरकार पर साधा निशाना, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी रूप से जवाब देंगे। बंगाल में नेता विपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों से भी हो रही है बात। 61 विधायक हमारे साथ बोले, पार्टी की सलाहकार बने ममता। आज की बैठक से पहले गठबंधन इंडिया में पड़ी दरार, विजन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग। बबूला खड़गे को लिखा पत्र, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा, ईरान से समझौते करा, कहा कि हम डील के बेहद करीब, तेहरान के पास नहीं है कोई विकल्प। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन है। टीएमसी की सत्ता में रहे जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बंगाल के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें आक्रोशित लोग खुद ही टीएमसी नेताओं से इंसाफ मांग रहे हैं, यहां तक कि सरेआम मान मर्दन कर रहे हैं।
1: जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है। एक आदमी का आधा सर मुंडवा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है, एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुरमत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्हीं आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेन गुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: बात सिर्फ इतनी नहीं है, टीएमसी के नेताओं पर लोगों का आक्रोश ऐसा फूट रहा है कि वो जहां भी दिखते हैं उन पर अंडे टमाटर बरसाए जा रहे हैं। टीएमसी के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ गए।
1: पुलिस थाने के बाहर टीएमसी के नेता पर अंडे बरस रहे हैं। नाराज लोग सैकड़ों की तादाद में अंडे बरसा रहे हैं। पुलिस वाले टीएमसी नेता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं मगर लोग लगातार अंडे फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं जहां टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता को निशाना बनाया जा रहा है। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी। आज जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर पुलिस ले जा रही थी तभी अटैक हुआ। टीएमसी नेताओं पर हो रही कार्रवाई की दूसरी तस्वीर देखिए। साड़ी के गट्ठर के नीचे टीएमसी नेता छिपने की कोशिश कर रहे थे मगर पुलिस ने खोज निकाला। ये चौंकाने वाली घटना हावड़ा के उदय नारायणपुर के बिलासपुर इलाके में हुई। पुलिस की कार्रवाई और टीएमसी नेता के छिपने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम ब्रह्मानंद चक्रवर्ती है जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता है। स्थानीय लोगों ने उस पर हाउसिंग स्कीम के फंड से कट मनी यानी अवैध कमीशन लेने का आरोप लगाया है। जब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस उसे खोजने पहुंच गई। तभी वो गिरफ्तारी के डर से एक कपड़ा दुकान के स्टोर रूम में साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गया। हालांकि पुलिस ने इसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। शुभेंदु सरकार के आने के बाद टीएमसी के दागी नेताओं पर धुआंधार कार्रवाई हो रही है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी के नेताओं पर लोगों के हमले के अब वीडियोस वायरल हैं, जहां टीएमसी नेताओं को घसीटा जा रहा है, कहीं पर लोग हमला कर रहे हैं।

0: टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर जोरदार हमला हुआ। नाराज लोग मदन मित्रा पर अंडे फेंक रहे हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र कमरहटी पहुंचे थे। वहीं नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक तस्वीर हुगली से भी आई है, जहां भीड़ टीएमसी के नेता को सड़क पर खींचते हुए थाने तक ले गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गमछा पहने तृणमूल नेता तपस चक्रवर्ती को लोग खींचकर थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी का दावा है कि कई भ्रष्टाचार और तोलाबाजी के मामलों में इस नेता का नाम सामने आया था। वेस्ट मिदनापुर में पुलिस ने टीएमसी के एक और नेता को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक सुजोय हाजरा की गिरफ्तारी जबरन उगाही और जमीन घोटाले में की गई है। उधर उत्तर 24 परगना जिले के गोपाल नगर में टीएमसी ट्रेड यूनियन के नेता कथित तौर पर कट मनी के नाम पर लिए पैसे वापस करते दिखे। इन्होंने टोटो ड्राइवरों से ये अवैध वसूली की थी। उधर लंबी पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपी पार्षद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मामला 2023 के पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें जसीमुद्दीन आरोपी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद से टीएमसी के दागियों में खलबली मची हुई है। हुगली से पार्था राहा तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
1: इस बीच कांग्रेस की ओर से टीएमसी पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए चोरी की थी तो कार्रवाई तो होगी।
2: अगर तृणमूल पार्टी सबा जानता है वेस्ट बंगाल का साथ बहुत अन्याय काम किया, बहुत चोरी किया। अभी से नहीं, दो पार्टी पावर आने का 2011 साल आने का बाद अब लोग जानता है। वो सब एक तो सैम कंडो का नाम है, उसका बाद टीचर स्कैम था, उसका बाद कितना स्कैम रहा आदमी से, कब से, ये नया चीज नहीं है।
1: बंगाल में शुभेंदु सरकार का नया फरमान है। फरमान है मदरसों के सर्वे का। हिंदुत्व के नारे बुलंद करने के क्रम में शुभेंदु सरकार का यह फैसला अहम है। राज्य सरकार ने जो फरमान जारी किया है उसके मुताबिक सभी मदरसों का सर्वे होगा, उनकी वैधता जांची जाएगी, कागजों की पड़ताल होगी। सरकार भविष्य की प्लानिंग का हवाला देकर मदरसों के जो आंकड़े हैं वो जुटाने का हवाला दे रही है।
3: ओ माता की, गंगा माता की जय जय श्री राम।
0: बंगाल में बीजेपी की सरकार और एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएं। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था।
4: मदरसा हो या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ देखना है कि वो सही तरह से ये यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन ये तो सरकार का काम है, सरकार ये काम कर रहा है, अपना काम है सरकार का, सरकार तो अपना काम करेगा ना।
0: बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया।
3: बंगाल का भूमि में धीरे धीरे धीरे धीरे सेकुलरिज्म और अपने वोट बैंक की लालच, इसमें विकास प्रगति पीछे चला गया। तुष्टिकरण की राजनीति आगे चलना पड़ा।
0: मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं।
5: कहाँ पे घोटाला चल रहा है, इतना घोटाला क्यों चल रहा है? तो हम सीएम, हमारा जो चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी है ना, तो उन्होंने एकदम ध्यान तरीके से, मतलब इतना ध्यान दे रहा है, क्योंकि देखिए जहां पे टीचर्स नहीं है वहां पे तो कम से कम टीचर को रिक्रूट करना है, तो फिर जहां पे स्कूल का कोई बच्चों नहीं है तो वहां पे फिर टीचर रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खोखला को कहां पे गैप है, कहां पे सिर्फ टीचर भी नहीं है, टीचर आता भी नहीं है, फिर भी पेमेंट लेते हैं, तो ध्यान देना चाहिए। एकदम हमारा सीएम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
0: बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।
6: उसने जो निर्णय लिया है सर्वे का, सारे मदरसों का, वो बहुत सराहनीय कदम है। जो भी शिक्षण संस्थान हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, सबके ऊपर जवाबदेही सरकार की है। वो वित्तीय मामला हो, कानून का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका मामला हो, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की है। तो सरकार का ये कदम जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है।
0: मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी।
3: तुष्टिकरण की राजनीति से बंगाल झील रहा था, खास करके पिछले कुछ वर्षों में, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ खराब हुआ।
0: मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापसेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
1: पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, जहां शुभेंदु सरकार की नजर उन मदरसों पर अब सख्त हो गए हैं जो नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इससे पहले ये सख्ती उत्तर प्रदेश में दिख चुकी है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों से अवैध मदरसों और अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चला है।
7: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसका सीधा और स्पष्ट ऐलान है कि प्रदेश में ना तो एक भी अवैध मदरसा चलेगा और न ही एक भी गैर कानूनी मस्जिद रहेगी। कानून के दायरे में अतिक्रमण वाली सभी धार्मिक इमारतों पर प्रशासन का हथौड़ा चलेगा। जिसकी ताजा बानगी दिख रही है संबल की मुस्तफा कादरी मस्जिद पर, जहां लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। ये दो तस्वीरें दो राज्यों में बीजेपी सरकार के तेवर को बयान कर रही है। एक ओर जहां बंगाल में मदरसों पर शुभेंदु की सख्त नजर पड़ चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले से ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर और हथौड़ा चला रही है। हालांकि सियासत में आरोप ये भी लग रहा है कि पहले यूपी और अब बंगाल में एक खास वर्ग विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। पहले नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर, जो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों और अवैध धार्मिक स्थलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं। जून 2026 में ही गाजियाबाद के कनावनी और लोनी में दो अवैध मदरसे सील किए गए। मोदीनगर में मस्जिद के साथ बनी 14 दुकानों को भी ध्वस्त करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं बागपत में अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है। साथ ही संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर तो चल ही रहा है।
8: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी, जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही
9: है। जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर ही काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जाकर के कोई स्टे वगैरह ले सके।
7: हम आपको बता दें कि फरवरी 2026 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तार से जांच कराने का फैसला किया था। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना था। सीएम योगी ने भी बार बार चेतावनी दी है कि यूपी में किसी भी तरीके के धार्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
10: जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई, आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं।
11: पर ये तो बन चुके हैं, अब
10: बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाए गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार नहीं।
7: उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्ती सिर्फ अवैध मदरसों तक ही सीमित नहीं है, कुछ ऐसे फैसले और एक्शन भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है। हाल ही में सीएम योगी ने ईद में सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले नए मदरसों को सरकारी पैसा नहीं देने का योगी ने फैसला किया था। 2022 में गैर रजिस्टर्ड और अवैध मदरसों के सर्वे के आदेश पारित हुए। नवंबर 2023 में यूपी में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा सैकड़ों अवैध बूचड़खानों को बंद कराया जा चुका है। साथ ही मई 2025 में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में बीजेपी सरकारों के कामकाज का तरीका बता रहा है कि उनकी सियासत का फॉर्मूला क्या है और इससे ना तो उन्हें गुरेज है और ना ही परहेज है। खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव की जंग ही इन्हीं मुद्दों की बुनियाद में लड़ी जाएगी। संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब बात यूपी के जहां पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। संभल में दूसरे दिन भी मस्जिद पर बुलडोजर चला और बुलडोजर एक्शन के बाद से समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला हुआ है और बुलडोजर पर जोरदार सियासत चल रही है।
0: गरज रहा है बाबा का बुलडोजर और जमींदोज हो रहा है अवैध निर्माण। तस्वीरें संभल की। संभल में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। मेहराबे गिराई जा रही है, मीनारे ढहाई जा रही हैं।
8: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही थी। और इसी तरह से जो लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहां पर लगातार जो जारी है। और इसी के साथ देखिए ठीक आपको मैं पीछे अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप जो देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर जो बनी हुई है। यहां पर आप ये बुलडोजर आपको मशीनों में जो है नजर आएंगे और देखिए किस तरीके से जो यहां पर बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें हैं वो लगातार यहां पर जो है मौके पर मौजूद है।
0: ये मस्जिद 120 वर्ग मीटर में बनी हुई थी।
12: ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है।
0: अब इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी की सियासत सुलग रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है।
9: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर ही काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जाकर के कोई स्टे वगैरह ले सके।
0: 27 के समर में अभी समय है मगर यूपी की सियासत में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
1: अगली खबर काशी की, जहां पर तय किया गया है कि महादेव की नगरी में शहर के भीतर मांस मछली की दुकानें शहर से बाहर शिफ्ट की जाएंगी और बकायदा जगह तय की जा चुकी है और फैसला लिया गया कि शहर के भीतर मांस मछली नहीं बेची जाएगी।
0: वाराणसी में बटर चिकन और मटन कोरमा के शौकीनों को झटका लगा है। रोगन जोश और फिश करी खाने वालों के स्वाद पर भी संकट गहराया है, क्योंकि आदेश ऐसा आया है कि वाराणसी में शहर के भीतर मीट मांस मछली की दुकानें हटाई जाएंगी। तय किया गया है कि शहर के बाहर 5 जगह चिन्हित की जाएंगी और वहां दुकानें बनवाई जाएंगी ताकि दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट कर सके।
13: मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। बकासी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है। 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए।
0: बता दें कि सदन में पार्षद गुलशन अली ने मीट मांस की दुकानों को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव दिया था। अब इस पर अमल हुआ है तो मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले को गैर मुनासिब बता रहे हैं।
14: हम ये समझते हैं कि फैसला गैर मुनासिब है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट डेटा अराउंड 70% जो आवाम है नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी 70% आवाम नॉन वेजिटेरियन है। तो जितनी दूर आप इन दुकानों को करेंगे उतनी ही ज्यादा गरानी में इजाफा होगा, कस्टमर्स को जहमत होगी, बिजनेस पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा।
0: लेकिन शिया धर्मगुरु ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और एक नई मांग करते हैं।
15: जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए, ये गांजा का ठेके जो है ये भी हटना चाहिए। किसी भी तरीके के ये जो गलत खाम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहाँ तीर्थ स्थल है।
0: अब यूपी में स्वाद पर सियासत हो रही है, जिसके केंद्र में हिंदुत्व की राजनीति के बीज छिपे हैं। रोशन कुमार, वाराणसी आज तक।
1: आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बार फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची और फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की।

0: आर्म एक्ट में केस, गिरफ्तारी का संकट और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर पर आ गई है। खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान की कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया, जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गयी।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है।
0: जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। अगर जल्द ही इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, यहां तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है।
1: ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, चूंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं।
0: इस एक्शन के एक दिन बाद ही फायर डिपार्टमेंट की टीम फिर ऑडिट करने फैजल खान की कोचिंग पहुंची और पूरे सेंटर का मुआयना किया। फैजल खान पर पहले ही आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होने के बाद वो संकट में घिरे हुए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की अब तैयारी है।
2: जेल लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंसर्ट कर दिया गया है एफआईआर में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा।
0: कुल मिलाकर फैजल खान संकट में है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।
3: महंगाई की एक और मार आम जनता पर पड़ी है और घरेलू गैस की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं।
0: फिर पड़ी है महंगाई की मार, फिर बिगड़ेगा किचन का बजट, फिर से कटी है आम आदमी की जेब। जी हाँ, आज फिर से घरेलू गैस एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में अब 14 किलो 300 ग्राम वाला गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 का हो गया है। इसके पहले भी गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था। तीन महीने में दूसरी बार एलपीजी के दाम बढ़े हैं। 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। तीन महीने में घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हुआ है। गैस के दाम बढ़े तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घरेलू एलपीजी दामों में आग की लपटें आम आदमी की रसोई को भस्म करने पर तुली हुई है।
4: महंगाई की मार गरीब पे जो पड़ती है ना, वो उसका उसका ऐसा साइन हो नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी मार होती है कि पेट्रोल डीजल के साथ में गैस का बराबर एलपीजी का दाम बढ़ता ही जा रहा है।
0: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, मगर सरकार कह रही है कि दुनिया में सबसे कम कीमत पर कुकिंग गैस हमारे ही देश में मिलती है। अब गैस पर सियासी कदर है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर समुद्र की टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। होर्मुज स्ट्रेट के पास दोनों देशों ने एक दूसरे पर उकसाने वाली कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। ईरान ने चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने कहा कि उसने ईरानी ड्रोन मार गिराया।
0: एक बार फिर अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव की स्थिति बन रही है। एक बार फिर होर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। दोनों ओर से हुए हमलों के बाद टकराव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने होर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गई। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने होर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पशुपेश में डाल दिया है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहा। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब हॉर्मुज पर नया मोर्चा खुल गया है, जिससे दोनों देशों में जंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: पे चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब, कहा सरकार के चुप्पे संदिग्ध आरोपों को ट्रस्ट ने नकारा। संभल में कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से नाराज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, सरकार पर साधा निशाना, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी रूप से जवाब देंगे। बंगाल में नेता विपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों से भी हो रही है बात, 61 विधायक हमारे साथ बोले, पार्टी की सलाहकार बने ममता। आज की बैठक से पहले गठबंधन इंडिया में पड़ी दरार, विजन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग, बबूला खड़गे को लिखा पत्र, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा, ईरान से समझौते करा, कहा कि हम डील के बेहद करीब, तेहरान के पास नहीं है कोई विकल्प। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन है। टीएमसी की सत्ता में रहे जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बंगाल के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें आक्रोशित लोग खुद ही टीएमसी नेताओं से इंसाफ मांग रहे हैं, यहां तक कि सरेआम मान मर्दन कर रहे हैं।
1: जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है। एक आदमी का आधा सर मुंडवा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है, एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुरमत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्हीं आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: बात सिर्फ इतनी नहीं है, टीएमसी के नेताओं पर लोगों का आक्रोश ऐसा फूट रहा है कि वो जहां भी दिखते हैं उन पर अंडे टमाटर बरसाए जा रहे हैं। टीएमसी के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ गए।
1: पुलिस थाने के बाहर टीएमसी के नेता पर अंडे बरस रहे हैं। नाराज लोग सैकड़ों की तादाद में अंडे बरसा रहे हैं। पुलिस वाले टीएमसी नेता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं मगर लोग लगातार अंडे फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं जहां टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता को निशाना बनाया जा रहा है। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी, आज जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर पुलिस ले जा रही थी तभी अटैक हुआ। टीएमसी नेताओं पर हो रही कार्रवाई की दूसरी तस्वीर देखिए। साड़ी के गट्ठर के नीचे टीएमसी नेता छिपने की कोशिश कर रहे थे मगर पुलिस ने खोज निकाला। ये चौंकाने वाली घटना हावड़ा के उदय नारायणपुर के बिलासपुर इलाके में हुई। पुलिस की कार्रवाई और टीएमसी नेता के छिपने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम ब्रह्मानंद चक्रवर्ती है जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता है। स्थानीय लोगों ने उस पर हाउसिंग स्कीम के फंड से कट मनी यानी अवैध कमीशन लेने का आरोप लगाया है। जब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस उसे खोजने पहुंच गई। तभी वो गिरफ्तारी के डर से एक कपड़ा दुकान के स्टोर रूम में साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गया। हालांकि पुलिस ने इसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। शुभेंदु सरकार के आने के बाद टीएमसी के दागी नेताओं पर धुआंधार कार्रवाई हो रही है।

0: घसीटा जा रहा है, कहीं पर लोग हमला कर रहे हैं।
1: टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर जोरदार हमला हुआ। नाराज लोग मदन मित्रा पर अंडे फेंक रहे हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र कमरहटी पहुंचे थे। वहीं नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक तस्वीर हुगली से भी आई है, जहां भीड़ टीएमसी के नेता को सड़क पर खींचते हुए थाने तक ले गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गमछा पहने तृणमूल नेता तपस चक्रवर्ती को लोग खींचकर थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी का दावा है कि कई भ्रष्टाचार और तोलाबाजी के मामलों में इस नेता का नाम सामने आया था। वेस्ट मिदनापुर में पुलिस ने टीएमसी के एक और नेता को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक सुजोय हाजरा की गिरफ्तारी जबरन उगाही और जमीन घोटाले में की गई है। उधर उत्तर 24 परगना जिले के गोपाल नगर में टीएमसी ट्रेड यूनियन के नेता कथित तौर पर कट मनी के नाम पर लिए पैसे वापस करते दिखे। इन्होंने टोटो ड्राइवरों से ये अवैध वसूली की थी। उधर लंबी पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपी पार्षद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मामला 2023 के पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें जसीमुद्दीन आरोपी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद से टीएमसी के दागियों में खलबली मची हुई है। हुगली से पार्था राहा तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
0: इस बीच कांग्रेस की ओर से टीएमसी पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए चोरी की थी तो कार्रवाई तो होगी।
2: अगर तृणमूल पार्टी सबा ही जानता है वेस्ट बंगाल का साथ बहुत अन्याय काम किया, बहुत चोरी किया। अभी से नहीं, दो पार्टी पावर आने का 2011 साल आने का बाद अब लोग जानता है। वो सब एक तो सैम कंडो का नाम है, उसका बाद टीचर स्कैम, उसका बाद कितना स्कैम आदमी से, कब से, ये नया चीज नहीं है।
0: बंगाल में शुभेंदु सरकार का नया फरमान है। फरमान है मदरसों के सर्वे का। हिंदुत्व के नारे बुलंद करने के क्रम में शुभेंदु सरकार का यह फैसला अहम है। राज्य सरकार ने जो फरमान जारी किया है उसके मुताबिक सभी मदरसों का सर्वे होगा, उनकी वैधता जांची जाएगी, कागजों की पड़ताल होगी। सरकार भविष्य की प्लानिंग का हवाला देकर मदरसों के जो आंकड़े हैं वो जुटाने का हवाला दे रही है।
3: ओ माता की, गंगा माता की जय जय श्री राम।
1: बंगाल में बीजेपी की सरकार और एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएं। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था।
4: मदरसा हो या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ देखना है कि वो सही तरह से ये यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन ये तो सरकार का काम है, सरकार ये काम कर रहा है, अपना काम है सरकार का, सरकार तो अपना काम करेगा ना।
1: बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया।
3: बंगाल का भूमि में धीरे धीरे धीरे धीरे सेकुलरिज्म और अपने वोट बैंक की लालच, इसमें विकास प्रगति पीछे चला गया। तुष्टिकरण की राजनीति आगे चलना पड़ा।
1: मदरसों

0: का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं।
1: कहाँ पे घोटाला चल रहा है, इतना घोटाला क्यों चल रहा है? तो हम सीएम हमारा जो चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी है ना, तो उन्होंने एकदम ध्यान तरीके से, मतलब इतना ध्यान दे रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहाँ पे तो कम से कम टीचर को रिक्रूट करना है, तो फिर जहाँ पे स्कूल का कोई बच्चों नहीं है तो वहाँ पे फिर टीचर रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खोखला को कहाँ पे गैप है, कहाँ पे सिर्फ टीचर भी नहीं है, टीचर आते भी नहीं है, फिर भी पेमेंट लेते हैं, तो ध्यान देना चाहिए। एकदम हमारा सीएम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
0: बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।
2: उसने जो निर्णय लिया है सर्वे का, सारे मदरसों का, वो बहुत सराहनीय कदम है। जो भी शिक्षण संस्थान हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, सबके ऊपर जवाबदेही सरकार की है। वो वित्तीय मामला हो, कानून का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका मामला हो, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की है। तो सरकार का ये कदम जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है।
0: मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी।
3: तुष्टिकरण की राजनीति से बंगाल झील रहा था, खास करके पिछले कुछ वर्षों में, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ खराब हुआ।
0: मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
4: पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, जहां शुभेंदु सरकार की नजर उन मदरसों पर अब सख्त हो गए हैं जो नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इससे पहले ये सख्ती उत्तर प्रदेश में दिख चुकी है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों से अवैध मदरसों और अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चला है।
5: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसका सीधा और स्पष्ट ऐलान है कि प्रदेश में ना तो एक भी अवैध मदरसा चलेगा और न ही एक भी गैर कानूनी मस्जिद रहेगी। कानून के दायरे में अतिक्रमण वाली सभी धार्मिक इमारतों पर प्रशासन का हथौड़ा चलेगा, जिसकी ताजा बानगी दिख रही है संबल की मुस्तफा कादरी मस्जिद पर, जहां लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। ये दो तस्वीरें दो राज्यों में बीजेपी सरकार के तेवर को बयान कर रही है। एक ओर जहां बंगाल में मदरसों पर शुभेंदु की सख्त नजर पड़ चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले से ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर और हथौड़ा चला रही है। हालांकि सियासत में आरोप ये भी लग रहा है कि पहले यूपी और अब बंगाल में एक खास वर्ग विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। पहले नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर जो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों और अवैध धार्मिक स्थलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं। जून 2026 में ही गाजियाबाद के कनावनी और लोनी में दो अवैध मदरसे सील किए गए। मोदीनगर में मस्जिद के साथ बनी 14 दुकानों को भी ध्वस्त करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं बागपत में अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है। साथ ही संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर तो चल ही रहा है।
6: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब ये इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी, जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही
7: है। जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जा करके कोई स्टे वगैरह ले सके।
5: हम आपको बता दें कि फरवरी 2026 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तार से जांच कराने का फैसला किया था। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना था। सीएम योगी ने भी बार बार चेतावनी दी है कि यूपी में किसी भी तरीके के धार्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
8: जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं।
9: पर ये तो बन चुके हैं, अब
8: बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार्य नहीं।
5: उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्ती सिर्फ अवैध मदरसों तक ही सीमित नहीं है, कुछ ऐसे फैसले और एक्शन भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है। हाल ही में सीएम योगी ने ईद में सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले नए मदरसों को सरकारी पैसा नहीं देने का योगी ने फैसला किया था। 2022 में गैर रजिस्टर्ड और अवैध मदरसों के सर्वे के आदेश पारित हुए। नवंबर 2023 में यूपी में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा सैकड़ों अवैध बूचड़खानों को बंद कराया जा चुका है। साथ ही मई 2025 में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में बीजेपी सरकारों के कामकाज का तरीका बता रहा है कि उनकी सियासत का फॉर्मूला क्या है और इससे ना तो उन्हें गुरेज है और ना ही परहेज है। खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव की जंग ही इन्हीं मुद्दों की बुनियाद में लड़ी जाएगी। संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब बात यूपी के जहां पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है, संभल में दूसरे दिन भी मस्जिद पर बुलडोजर चला और बुलडोजर एक्शन के बाद से समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर है और बुलडोजर पर जोरदार सियासत चल रही है।
0: गरज रहा है बाबा का बुलडोजर और जमींदोज हो रहा है अवैध निर्माण। तस्वीरें संभल की। संभल में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। मेहराबे गिराई जा रही है, मीनारे ढहाई जा रही हैं।
6: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैन मशीन को यहां पर लाया गया है और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही थी और इसी तरह से जो लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहां पर लगातार जो जारी है और इसी के साथ देखिए ठीक आपको मैं पीछे अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप जो देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर जो बनी हुई है। यहां पर आप ये बुलडोजर आपको मशीनों में जो ऐसा नजर आएंगे और देखिए किस तरीके से जो यहां पर बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें हैं वो लगातार यहां पर जो है मौके पर मौजूद है।
0: ये मस्जिद 120 वर्ग मीटर में बनी हुई थी।
10: ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है।
0: अब इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी की सियासत सुलग रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है।
7: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जा करके कोई स्टे वगैरह ले सके।
0: 27 के समर में अभी समय है मगर यूपी की सियासत में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
4: अगली खबर काशी की, जहां पर तय किया गया है कि महादेव की नगरी में शहर के भीतर मांस मछली की दुकानें शहर से बाहर शिफ्ट की जाएंगी और बकायदा जगह तय की जा चुकी है और फैसला लिया गया कि शहर के भीतर मांस मछली नहीं बेची जाएगी।
0: वाराणसी में बटर चिकन और मटन कोरमा के शौकीनों को झटका लगा है। रोगन जोश और फिश करी खाने वालों के स्वाद पर भी संकट गहराया है, क्योंकि आदेश ऐसा आया है कि वाराणसी में शहर के भीतर मीट मांस मछली की दुकानें हटाई जाएंगी। तय किया गया है कि शहर के बाहर 5 जगह चिन्हित की जाएंगी और वहां दुकानें बनवाई जाएंगी ताकि दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट कर सके।
11: मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। बकासी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है। 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए।
0: बता दें कि सदन में पार्षद गुलशन अली ने मीट मांस की दुकानों को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव दिया था। अब इस पर अमल हुआ है तो मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले को गैर मुनासिब बता रहे हैं।
12: हम ये समझते हैं कि फैसला गैर मुनासिब है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट डेटा अराउंड 70% जो आवाम है नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी 70% आवाम नॉन वेजिटेरियन है। तो जितनी दूर आप इन दुकानों को करेंगे उतनी ही ज्यादा गरानी में इजाफा होगा, कस्टमर्स को जहमत होगी, बिजनेस पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा।
0: लेकिन शिया धर्मगुरु ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और एक नई मांग करते हैं।
13: जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए, ये गांजा का ठेके जो हैं ये भी हटना चाहिए। किसी भी तरीके के ये जो गलत खाम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहाँ तीर्थ स्थल है।
0: अब यूपी में स्वाद पर सियासत हो रही है, जिसके केंद्र में हिंदुत्व की राजनीति के बीज छिपे हैं। रोशन कुमार, वाराणसी आज तक।
4: आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बार फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची और फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की।

0: पहले आर्म्स एक्ट में केस, गिरफ्तारी का संकट और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर पर आ गई है। खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान की कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया, जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गईं।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्युपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है।
0: जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। अगर जल्द ही इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, यहां तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है।
1: ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, चूंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ पूछने की बात ही नहीं।
0: इस एक्शन के एक दिन बाद ही फायर डिपार्टमेंट की टीम फिर ऑडिट करने फैजल खान की कोचिंग पहुंची और पूरे सेंटर का मुआयना किया। फैजल खान पर पहले ही आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होने के बाद वो संकट में घिरे हुए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की अब तैयारी है।
2: गिरफ्तार लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंसर्ट कर दिया गया है FIR में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा।
0: कुल मिलाकर फैजल खान संकट में है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।
3: महंगाई की एक और मार आम जनता पर पड़ी है और घरेलू गैस की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं।
0: फिर पड़ी है महंगाई की मार, फिर बिगड़ेगा किचन का बजट, फिर से कटी है आम आदमी की जेब। जी हाँ, आज फिर से घरेलू गैस LPG के दाम में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में अब 14 किलो 300 ग्राम वाला गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 का हो गया है। इसके पहले भी गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था। 3 महीने में दूसरी बार LPG के दाम बढ़े हैं। 7 मार्च को LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। 3 महीने में घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हुआ है। गैस के दाम बढ़े तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घरेलू LPG दामों में आग की लपटें आम आदमी की रसोई को भस्म करने पर तुली हुई है।
4: महंगाई की मार गरीब पे जो पड़ती है ना, वो उसका ऐसा साइन हो नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी मार होती है कि पेट्रोल डीजल के साथ में गैस के बराबर LPG का दाम बढ़ता ही जा रहा है।
0: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, मगर सरकार कह रही है कि दुनिया में सबसे कम कीमत पर कुकिंग गैस हमारे ही देश में मिलती है। अब गैस पर सियासी कदर है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर समुद्र की टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। होर्मुज स्ट्रेट के पास दोनों देशों ने एक दूसरे पर उकसाने वाली कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। ईरान ने चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने कहा कि उसने ईरानी ड्रोन मार गिराए।
0: एक बार फिर अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव की स्थिति बन रही है। एक बार फिर होर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। दोनों ओर से हुए हमलों के बाद टकराव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने होर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गई। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने होर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पशुपेश में डाल दिया है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहा। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब होर्मुज पर नया मोर्चा खुल गया है, जिससे दोनों देशों में जंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

रिश्ते में चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब, कहा सरकार की चुप्पी, संदिग्ध आरोपों को ट्रस्ट ने नकारा। संभल में कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से नाराज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, सरकार पर साधा निशाना, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी रूप से जवाब देंगे। बंगाल में नेता विपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों से भी हो रही है बात, 61 विधायक हमारे साथ बोले, पार्टी की सलाहकार बने ममता।